0: काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांको नदियों के संगम के पास ये झील बनी है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और बांध टूटने की स्थिति में संभावित परिणामों का आकलन करने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैयारी कर रहे हैं। चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है। ये चेतावनी नेपाल चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक और भीषण बाढ़ आने के एक दिन बाद आई है। इस विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में नई झील के निर्माण ने नेपाल की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके टूटने से अचानक पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आ सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के तीन जिलों की विनाश लीला ने भारत को भी दहला दिया है। जी हां, नेपाल की इस आपदा में 285 भारतीय अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। भारत ने नेपाल को राहत कार्यों के लिए 50 टन राहत सामग्री भी भेजी है। तो आइए देखते हैं कैसे तहस नहस हो गया है नेपाल।
0: तिब्बत की आई तबाही नेपाल में विनाश लीला मचाई। पल भर में प्रलय, घर पुल सड़कें पावर प्लांट भी तबाह। हर तरफ तबाही के निशान, डरा रही है नेपाल की त्रासदी। विनाशकारी बाढ़ में जिंदगी गुम, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। साढ़े 300 के करीब मौत का आंकड़ा, 200 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाघ की ये तस्वीरें न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती हैं, बल्कि विनाश लीला की वो त्रासदी दिखाती हैं जिसमें पूरा नेपाल सिसक रहा है। चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है। गूंज रही है चीखे, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है। थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। नेपाल के तीन जिले रसुआ, नुवाकोट और धाडिंग विनाश लीला की त्रासदी झेल रहे हैं। महाप्रलय का मंजर ऐसा है, सब कुछ मलबे में मिला हुआ नजर आता है। नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में ऐसा विनाशकारी सैलाब आया कि जो उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गया। मौत का आंकड़ा 350 के पास पहुंच रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हो गए हैं। 13 पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इस विनाश लीला से नेपाल थर्राया है तो भारत भी दहल उठा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल में विनाश लीला क्यों मची, क्यों इसके पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पहले बात उन भारतीयों की करते हैं जो उस त्रासदी में लापता हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इनमें नेपाल के त्रिशूली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में फंसे 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बताया गया है। इनमें से 11 लोगों की पहचान हो चुकी है। तमिलनाडु से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर दो अलग अलग जत्थे गए थे, जिनमें एक ग्रुप में 37 लोग और दूसरे ग्रुप में 49 लोग थे। वहीं पश्चिम बंगाल से 32 नागरिक नेपाल में रसुवा जिले के तिमुरे गए थे। केरल के 33 नागरिक और दूसरे राज्य से 61 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय भी फंसे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है।
2: 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं।
0: जिनके अपने अभी तक लापता हैं वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। विमला रवि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई थी लेकिन विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका और उनके समूह का संपर्क टूट गया। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
3: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चौलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
0: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थी। हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
4: तुम संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहां से कनेक्शन कट हुआ।
0: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 50 टन राहत सामग्री भेजी है। पहली खेप भारत ने 26 अगस्त को C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन मानवीय सहायता और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी थी जो काठमांडू पहुंच चुकी हैं। दूसरी खेप गुरुवार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए नेपाल भेजी है जिसमें लगभग 37 टन और राहत सामग्री शामिल है।
5: मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे जो है भारतीय राजदूत भी मौजूद है जो इन राहत सामग्री को नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से वो हैंडओवर करेंगे। कल पहला खेप जो है 10 टन का सबसे पहले नेपाल ने जो भारत की तरफ से नेपाल में भेजा गया, नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे पहले सहयोग का हाथ जो है भारत ने बढ़ाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है और दोनों देशों की टीमें राहत कार्यों में समन्वय कर रही हैं। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसुवा के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो।
1: और फिर नेपाल के रसुआ से नुवाकोट से होते हुए धांडिक तक विनाश का सैलाब काल बनता चला गया। आपको दिखाते हैं नेपाल के जिले दर जिले ग्राउंड रिपोर्ट। यकीन मानिए, जब आज तक की रिपोर्टर तबाही के एपिसेंटर तक पहुंचे तो महाप्रलय का पूरा मंजर आज तक के कैमरों में कैद होता चला गया।
0: सबसे पहले बाढ़ रसुआ में आई। देखिए बाढ़ ने इस कस्बे का क्या हाल कर दिया है। नेपाल चीन बॉर्डर की गेरुम पोस्ट रसुआ गढ़ी में ही स्थित है। ये नुवाकोट के उत्तर में स्थित जिला है जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। चीन बॉर्डर पर होने की वजह से ये एक व्यापारिक कस्बा है जहां बहुत सी इमारतें थी, होटल थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। ये वीडियो आपने देखा होगा जहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ मजदूर यहां अपनी जान बचाते भी दिखे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये रसुआ का ही वीडियो है जहां बहुत से पुल और बिजली परियोजनाएं बह गई। ये नेपाल के रसुआ का एरियल वीडियो आया है। ये हेलीकॉप्टर से लिया गया वीडियो है। देखिए क्या तबाही मची है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रसुआ बाजार का पूरा हुलिया ही बदल गया है। इसके बाद विनाशकारी बाढ़ ने नुवाकोट में कहर बरपाया। नुवाकोट नेपाल का एक बड़ा सेंटर है। इस कस्बे की जनसंख्या 59,000 है। नुवाकोट नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पूर्व की तरफ एक जिला है जो एक ग्रामीण और पहाड़ी इलाका है। टूरिज्म डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ बहुत सी हेरिटेज साइट और धार्मिक मंदिर है। नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही मची है त्रिशूली बाजार में। अब त्रिशूली बाजार कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई खंडर होगा, जैसे कोई कब्रिस्तान होगा। जहाँ कभी पूरा बाजार था वहाँ अब खाली मैदान है, कीचड़ है और मलबा भरा पड़ा है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कितना खूबसूरत दिखता था। यहाँ दोनों किनारों को जोड़ने के लिए पुल था। ये पूरा रिहायशी इलाका था। यहाँ बहुत से होटल थे, स्कूल थे, सरकारी दफ्तर थे। बीच में खूबसूरत त्रिशूली नदी बहती थी और अब यहाँ मौत का सन्नाटा है। कल जब बाढ़ आई तो बहुत से लोगों को तो यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला।
6: मैं समय त्रिशूली बाजार पहुंचा हूं। अब सोचिए कि 24 घंटे में कैसे तस्वीरें बदल जाती हैं। एक बेहद गुलजार शहर कैसे मानो कब्रिस्तान में बदल गया हो। ये वो शहर है और जब एक दिन पहले मंजर आने के ठीक पहले यहां पर क्या कुछ नहीं था और आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ता है। अब यहां एक पुल हुआ करता था। दरअसल शहर को दोनों ओर से चौराहों से जोड़ने के लिए यहां एक पुल था, लेकिन अब पुल जो है ये देखिए किस हाल में है। इतना तेज प्रवाह था कि इस पुल को चीरते हुए, इसको ध्वस्त करते हुए ये त्रिशूली नदी अपने प्रवाह में ले गई। यहाँ घर हैं, मकान हैं, लोग यहाँ रहते थे, दुकानें थी। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है मानो कहीं पर बमबारी हुई हो, लेकिन कुदरत का प्रवाह और उसका गुस्सा इस नदी का इतना था, इस सैलाब के आगे पूरा शहर जो है बर्बाद हो गया।
0: त्रिशूली बाजार में तो लगता है कि जैसे मौत पसरी हुई है। नदी ने सारे घर साफ कर दिए, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। नदी का पार्ट बहुत चौड़ा हो गया है। जहाँ जहाँ निर्माण था सब उजड़ गया।
6: त्रिशूली गांव में यहाँ पर एक पुल था, वो पुल अब मुझे सिर्फ तार यहाँ दिखाई देते हैं, बह चुका है। पीछे पूरा मैदान है, ये मैदान नहीं हुआ करता था। यहाँ पर घर थे, दुकान थे, रंग बिरंगे घर की छतें दिखाई देती पुरानी तस्वीरों में। और अब जो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वो अपने घरों की छतों पर आसपास इस कीचड़ में आए हैं देखने कि क्या घर में कुछ बचा है। जान बचाने के लिए लोग यहां से सीधा पहाड़ी इलाकों की ओर भागे। जब नदी का स्तर बढ़ा, पानी तो घटने लगा है, लेकिन पानी अपने साथ जो तबाही का मंजर लेकर के आया है वो इसके निशान छोड़ गया है इन छतों पर जहां उनके बच्चे खेला करते थे। अब यहां पर मलबे का ढेर है और इस सैलाब ने जो दर्द दिया है वो घाव लोगों को सालों तक याद रहेंगे।
0: और अब नेपाल के थाडिंग जिले में बची तबाही भी आपको दिखाते हैं। यहाँ बहुत से झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं। ये सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन इस बाढ़ ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई पुल तोड़े, खास तौर पर यहाँ मालेकू को हिट किया जहाँ बहुत से वाटर स्पोर्ट्स होते थे।
7: ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा। ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से। कुछ यहां पर जेसीबी हमें दिख रही है जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत, ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी। रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है।
0: और अब आपको नेपाल के चितवन की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाते हैं, कैसे यहाँ त्रिशूल नदी काल बनी है।
8: आज तक की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है नेपाल के चितवन जिले में, जहां पर किस तरीके की तबाही कल सैलाब ने मचाया था उसकी तस्वीरें दिखाने के लिए। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, दरअसल ये त्रिशूली नदी है जो यहाँ से बह रही है और आगे जब ये भारत में प्रवेश करेगी बिहार के रास्ते तो फिर गंडक कहलाया जाता है। और यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं नेपाल आर्म पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो लोग लगातार यहाँ पर गश्ती कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। कहीं कोई लाश अगर पानी में तैरता हुआ गुजर रहा है तो उसको भी जो है वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से कल जो हालात सामने आए थे, जिस तरीके का सैलाब नेपाल में देखने को मिला था, उसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं जब भारत प्रवेश करेगा तो ज़्यादा तबाही बिहार में भी होगी, लेकिन उस तरीके से जो है वो जन सैलाब माफ़ कीजिएगा उस तरीके का सैलाब जो है वो यहाँ जब ये भारत पहुंचा तो उस तरीके का जो है विकराल रूप नहीं था। लेकिन फिलहाल चितवन में इस वक्त आज तक की टीम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही हैं। चितवन में आज तक की टीम मौजूद हैं और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बर्बादी की तस्वीरें। और बर्बादी खासकर जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जिनकी मौत हुई है इस सैलाब में वो जाहिर सी बात है वो तमाम लाशें जो हैं पानी में बहती हुई इस तरफ ही आएंगी। तो उन लाशों को जो है अब खोजा जा रहा है और जहां भी लाशें पानी में तैरती हुई मिल रही हैं उनको खोजने का काम इस वक्त नेपाल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान कर रहे हैं।
0: नेपाल में तिब्बत से आई ये विनाश लीला न सिर्फ एक त्रासदी के तौर पर झकझोर रही है, बल्कि नेपाल के तीन जिले जिस तरह से तहस नहस हुए हैं इससे उबरने में इन्हें सालों लग जाएंगे। धाडिंग से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, रसुआ, नेपाल आज तक।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी सीखने की डेडलाइन एक साल बढ़ा दी है। इस फैसले से गैर मराठी ड्राइवर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। उधर विपक्ष ने सरकार के इस यूटर्न पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना यूपीटी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में नुकसान के डर से सरकार ने यह फैसला लिया और इसी के साथ बीजेपी, विपक्ष और शिवसेना के बीच कलह बढ़ने की दावे भी किए जा रहे हैं।

0: महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए आज बड़ी खुशखबरी आई, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मराठी सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दे दिया है। सीएम फडणवीस ने साफ कहा कि एक साल तक ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ मराठी भाषा को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठना के लोग मुझे मिले, उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए जी। वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं, कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए एक साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, एक साल का समय उनको दिया जा रहा है, इस एक साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके, लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा।
0: दरअसल ये बड़ा फैसला बीजेपी ट्रांसपोर्ट यूनियन और रिक्शा चालकों के प्रतिनिधियों

0: और क्या।
1: तो आप लगता है कि अगले एक साल की मोहलत बढ़ा के दी है तो आप सीख पाओगे अच्छी से मराठी?
0: हाँ, सीख लेंगे।
1: हाँ। अभी कितना बोल पाते हो?
0: ये हल्का बोल लेता हूँ, मतलब जितना पैसेंजर बैठता है, मला अंधेरी जाचे, आप बसा किटी मिटा रहा है, यही सब हल्का फुल्का।
1: इतनी ही मराठी आनी चाहिए?
0: हाँ हाँ, उतना आता है।
2: इस फैसले से सरकार के अंदर ही खिंचाव नजर आ रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ किया है कि नियम रद्द नहीं हुआ है, सिर्फ वक्त बढ़ाया गया है।
3: देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया वो निर्णय महायुति सरकार का निर्णय है। परिवहन खाते का मंत्री होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है, मगर महाराष्ट्र की भूमि में हमारे जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक बहुत सालों से व्यवसाय करते हैं या कुछ कम साल से अगर व्यवसाय करते हैं तो 1989 का एक हमारा रूल था, उसमें हमने बदल करते हुए 12 अगस्त 2026 में रूल बनाया जिसमें एक महीने का मोहलत दिया जाएगा रिक्शा टैक्सी चालक को। उस दरमियान अगर उसको हिंदी नहीं आई तो 3 महीने की मोहलत दी जाएगी, और 3 महीने में यानी 4 महीने में अगर नहीं आई तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उस नियम के आधार पर हमें प्राप्त था। उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे थे। बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठना ने हमारे पास मांग की थी कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी थी।
2: लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इस यू टर्न से मायूति सरकार के भीतर की अंदरूनी कलह बाहर आ गई, क्योंकि शिवसेना कोटे के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का फैसला बीजेपी ने जानबूझकर पलट दिया।
4: जो अमराठी लोग हैं उनको हम मराठी सिखाएंगे, मराठी की पाठशाला चलाएंगे, उनको अगर मराठी नहीं आएगी तो उनके लाइसेंस रद्द करेंगे, उनके ऊपर फाइन लगाएंगे, उनको रोजी रोटी पर भगा देंगे। और उन्हीं के मुख्यमंत्री जी आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी उन्हीं के निर्णय को बदल दिया, कहा कि भैया एक साल का समय देते हैं, सीख लीजिए मराठी, आराम से सीखिए। मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसका नफा नुकसान भारतीय जनता पार्टी देख रही है।
2: शिवसेना कोटे से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि हमारी मंशा अच्छी है, इसीलिए लगातार यूपी बिहार से आए ड्राइवर बड़ी संख्या में मराठी भाषा सीख रहे हैं।
5: तो हमारी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि उन्होंने महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, भाषा ही संस्कृति होती है, तो उसका जतन करना चाहिए और उसके कुछ बोल बोलने आने चाहिए। हम क्या 100% मराठी आनी चाहिए ऐसे भी नहीं बोल रहे, जो भी बेसिक है वो तो आना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑनरेबल सीएम सर ने जो उसमें टाइम दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर अगर ये करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ होने का सवाल नहीं उठता।
2: कुल मिलाकर गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी बोलने के लिए एक साल का ग्रेस पीरियड दिया गया है, लेकिन अब क्रेडिट वॉर भी छिड़ गया है। कुछ लोग केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चिट्ठी तो कुछ लोग उत्तर भारतीय वोटरों का दबाव और आने वाले विधानसभा चुनाव को इस फैसले के पीछे इनसाइड स्टोरी मान रहे हैं।
1: कमर्शियल मराठी का ज्ञान होना जरूरी है ऐसा बताया जा रहा था। कुछ मराठी तो बोल लेते हैं लेकिन अब क्योंकि मोहलत मिली है खुशी की लहर भी इन रिक्शा और टैक्सी चालकों के बीच नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजेश रेवनकर के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: और इसी के साथ हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

پر جنتا ناخوش. सर्वे में पीएम मोदी की नीतियों पर दिखा भारत का भरोसा. एसआईआर, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर देशवासियों का समर्थन, लेकिन परीक्षा सिस्टम पर जेनजी को पूरा भरोसा नहीं. कोलकाता में टीएमसी के ममता गुट और पुलिस में जबरदस्त झड़प. सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में होर्डिंग हटाने पहुंची टीम से धक्का मुक्की. अभिषेक ने कहा सियासी बदला. बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग सरकार ने मानी. अब तक चरण में टीआरई 4 की परीक्षा होगी और पटना में कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन भी खत्म.

389 लोगों की मौत की पुष्टि, रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, भारत से मदद की पहली खेप पहुंची।

0: सभी का, मैं हूं आपके साथ पूजा। चीन नेपाल सीमा पर भीषण बाढ़ की तबाही के बीच अब एक और बड़ा खतरे की चेतावनी जारी है। ऐसे में नेपाल सीमा के पास ग्योरुंग से करीब 18 किलोमीटर ऊपर मलबे के कारण एक बैरियर झील पर बन गई है और चीनी अधिकारियों के मुताबिक झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 72 घंटे में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी पहुंच सकता है। ऐसे में झील टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन ने इलाके में सेना, बचाव दल और इंजीनियरिंग टीमें तैनात कर दी हैं। हालांकि हालात पर लगातार नजर भी बनाई जा रही है। चीन ने नेपाल को एक और बाढ़ को लेकर चेता दिया है। 18 किलोमीटर ऊपर मलबे के कारण एक बैरियर झील बन गई है ग्योरुंग से करीब। वहीं चीनी अधिकारियों के मुताबिक झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है। तो एक बड़ी चेतावनी नेपाल के लिए चीन ने दोबारा जारी की है। बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। तिब्बत में लेंदे नदी का बहाव फिर से रुका है, चीन ने ऐसा कहा है। तो लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं इंजीनियरिंग टीमें, बचाव दल और चीन ने इलाके में सेना को भी तैनात कर दिया है। 18 किलोमीटर दूर तिब्बत में फिर से एक तबाही आ सकती है। नेपाल को एक और बाढ़ को लेकर चेता दिया गया है। वहीं नेपाल में बाढ़ की वजह से कई इलाकों में हालात खराब हो चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र के कुछ पर्यटक भी वहां पर फंसे हुए हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को इन पर्यटकों से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत भी की। उन्होंने पर्यटकों का हालचाल जाना और उनकी परेशानी के बारे में भी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। पर्यटकों से सुरक्षित रहने, धैर्य बनाए रखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र के पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पर्यटकों की सुरक्षित निकासी को प्राथमिकता दी जाए।
1: पूर्ण आपली टीम कामी लागलेली आहे, तुम्हाला सुखरूप आम्ही आणू महाराष्ट्रामध्ये, काही काळजी करू नका। नाही नाही, घाबरू नका, आम्ही सगळे टच मध्ये आहोत आणि मी स्वतः लक्ष घालतोय, काय काळजी करू नका।
0: हो हो हो। तो वही विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को एक बार फिर से झटका लगा है। गुरुवार देर रात नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 बताई गई है। नेपाल के विभिन्न हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले जो तबाही मची है उसके लिए भूकंप को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। वैसे तो इस भूकंप का झटका बहुत तेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में काफी ज्यादा दहशत भर गई है। अभी भयंकर बाढ़ को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता और फिर से एक नई आपदा की आहट सुनाई देने लगी है।

0: तो क्या नेपाल में एक और नई झील फटने की तैयारी है और अगले 72 घंटे बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। ऐसे में तो नेपाल में एक नई बैरियर झील का निर्माण भी हुआ है जो कि कभी भी फट सकती है। अगर ये झील फटती है तो नेपाल को फिर से एक बार जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है।
1: तिब्बत से विनाश लीला ने जो तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि नेपाल को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन नेपाल पर अभी खतरा कम नहीं हुआ है। नेपाल में भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बीच एक और बैरियर झील का निर्माण हुआ है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस झील से पहले से ही पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने पर ये टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांको नदियों के संगम के पास ये झील बनी है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और बांध टूटने की स्थिति में संभावित परिणामों का आकलन करने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैयारी कर रहे हैं। चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है। ये चेतावनी नेपाल चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक और भीषण बाढ़ आने के एक दिन बाद आई है। इस विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में नई झील के निर्माण ने नेपाल की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके टूटने से अचानक पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आ सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों की विनाश लीला ने भारत को भी दहला दिया है। जी हां, नेपाल की इस आपदा में 285 भारतीय अब भी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। भारत ने नेपाल को राहत कार्यों के लिए लगभग 50 टन राहत सामग्री भी भेजी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे तहस नहस हो गया है पूरा नेपाल।
1: तिब्बत की आई तबाही नेपाल में विनाश लीला मचाई। पल भर में प्रलय, घर पुल सड़कें पावर प्लांट भी तबाह। हर तरफ तबाही के निशान, डरा रही है नेपाल की त्रासदी। विनाशकारी बाढ़ में जिंदगी गुम, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। साढ़े 300 के करीब मौत का आंकड़ा, 200 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ की ये तस्वीरें न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती हैं, बल्कि विनाश लीला की वो त्रासदी दिखाती हैं जिसमें पूरा नेपाल सिसक रहा है। चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है। गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है। थम गई हैं सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। नेपाल के तीन जिले रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग विनाश लीला की त्रासदी झेल रहे हैं। महाप्रलय का मंजर ऐसा है, सब कुछ मलबे में मिला हुआ नजर आता है। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में ऐसा विनाशकारी सैलाब आया कि जो उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गया। मौत का आंकड़ा 350 के पास पहुंच रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हो गए हैं। 13 पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इस विनाश लीला से नेपाल थर्राया है तो भारत भी दहल उठा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल में विनाश लीला क्यों मची, क्यों इसके पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पहले बात उन भारतीयों की करते हैं जो उस त्रासदी में लापता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इनमें नेपाल के त्रिशूली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में फंसे 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बताया गया है। इनमें से 11 लोगों की पहचान हो चुकी है। तमिलनाडु से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर दो अलग अलग जत्थे गए थे, जिनमें एक ग्रुप में 37 लोग और दूसरे ग्रुप में 49 लोग थे। वहीं पश्चिम बंगाल से 32 नागरिक नेपाल में रसुवा जिले के तिमुरे गए थे। केरल के 33 नागरिक और दूसरे राज्य से 61 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय भी फंसे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है।
2: 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है।
1: जिनके अपने अभी तक लापता है वो

0: पाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। विमला रवि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई थी, लेकिन विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका और उनके समूह का संपर्क टूट गया। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
1: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
0: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थी। हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
2: तुम संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहां से कनेक्शन कट हुआ।
0: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 50 टन राहत सामग्री भेजी है। पहली खेप भारत ने 26 अगस्त को C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन मानवीय सहायता और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी थी, जो काठमांडू पहुंच चुकी है। दूसरी खेप गुरुवार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए नेपाल भेजी है, जिसमें लगभग 37 टन और राहत सामग्री शामिल है।
3: वक्त मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे जो है भारतीय राजदूत भी मौजूद हैं, जो इन राहत सामग्री को नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से वो हैंडओवर करेंगे। कल पहला खेप जो है 10 टन का सबसे पहले नेपाल ने जो भारत की तरफ से नेपाल में भेजा गया, नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे पहले सहयोग का हाथ जो है भारत ने बढ़ाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है, और दोनों देशों की टीमें राहत कार्यों में समन्वय कर रही हैं। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था, आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसुआ के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे, लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं, और भारत राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो।
4: और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल में तिब्बत से विनाशकारी बाढ़ आई। तो नेपाल की भूटेकोशी नदी बड़ी आबादी के लिए काल बनती चली गई। दरअसल यहां पर सैकड़ों की आबादी वाले इलाके काल के गाल में समा गए, और नेपाल के रसुवा जिले का टुमेरे बाजार तो पूरी तरह से खत्म हो गया है।
0: नेपाल में कैसे आया विनाश का महासैलाब? नेपाल के 3 जिले कैसे तबाही के मलबे में मिले?

0: कैसे नेपाल में सैकड़ों की आबादी ने छेड़ी विनाश की त्रासदी। विदेशी नागरिकों की मौत, सैकड़ों लापता, रेस्क्यू का चैलेंज। महाप्रलय की ग्राउंड रिपोर्ट, तबाही के एपिसेंटर तक आज तक। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ को लेकर तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं। आखिर ये महाप्रलय आया कैसे? क्या वाकई ग्लेशियर टूटा या फिर कोई और बड़ी वजह है? सैकड़ों की मौत हो चुकी है, हजारों लापता हैं, विदेशी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, और जिस तरह से सब कुछ मलबे में मिल चुका है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा चैलेंज है। नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहाँ बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे त्रिशूली नदी में आई ये तबाही नेपाल को बर्बाद करती चली गई। जैसे जैसे ये बाढ़ आगे बढ़ी, इसने कैसे कस्बे के कस्बे, गांव के गांव मलबे में मिला दिए। लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और जिसको मौका मिला वो भाग गया, जो नहीं भाग पाया वो मारा गया। नेपाल में तबाही की शुरुआत इसी केरूम पोर्ट से होती है, जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, उसे वो अपना स्वायत्त प्रांत बताता है, इसलिए इसे चीन नेपाल बॉर्डर कहा जाता है। सबसे पहले फ्लैश फ्लड ने यहीं पर हिट किया। नेपाल और चीन के व्यापार का करीब एक तिहाई हिस्सा यहीं से होता है, और साथ ही नेपाल के रास्ते मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी इसी गेरुंग पोर्ट से होकर गुजरता है, और यही मानसरोवर यात्रियों के लिए इमिग्रेशन पॉइंट है। यहीं से ये वीडियो आए थे जहां लोग दौड़ते भागते दिखते हैं। तबाही ऐसी कि जैसी कभी किसी ने नहीं देखी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यहाँ से तबाही का ये सैलाब आगे बढ़ता है, पूरा इलाका पहाड़ी है। ऊपर ये भोटे कोशी नदी थी जो नीचे आकर त्रिशूली बनती है। सैलाब से भरी भोटे कोशी नदी जैसे जैसे नीचे आती गई, तबाही मचाती चली गई। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन तीन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनके नाम हैं रसुआ, नुवाकोट और धाडिक। यही से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन तीन जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: और फिर नेपाल के रसुआ से नुवाकोट से होते हुए धाडिंग तक विनाश का सैलाब और काल बनता चला गया। आइए अब आपको नेपाल के जिले दर जिले ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। यकीन मानिए, जब आज तक के रिपोर्टर तबाही के एपिसेंटर तक पहुंचे तो महाप्रलय का पूरा मंजर आज तक के कैमरे में कैद होता है।
0: सबसे पहले बाढ़ रसुआ में आई। देखिए बाढ़ ने इस कस्बे का क्या हाल कर दिया है। नेपाल चीन बॉर्डर की गेरुंग पोस्ट रसुआ गढ़ी में ही स्थित है। ये नुवाकोट के उत्तर में स्थित जिला है, जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। चीन बॉर्डर पर होने की वजह से ये एक व्यापारिक कस्बा है, जहां बहुत सी इमारतें थी, होटल थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। ये वीडियो आपने देखा होगा जहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ मजदूर यहां अपनी जान बचाते भी दिखे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये रसुआ का ही वीडियो है जहां बहुत से पुल और बिजली परियोजनाएं बह गई। ये नेपाल के रसुआ का एरियल वीडियो आया है। ये हेलीकॉप्टर से दिया गया वीडियो है। देखिए क्या तबाही मची है। सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रसुआ बाजार का पूरा हुलिया ही बदल गया है। इसके बाद विनाशकारी बाढ़ ने नुवाकोट में कहर बरपाया। नुवाकोट नेपाल का एक बड़ा सेंटर है। इस कस्बे की जनसंख्या 59,000 है। नुवाकोट नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पूर्व की तरफ एक जिला है जो एक ग्रामीण और पहाड़ी इलाका है। टूरिज्म डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ बहुत सी हेरिटेज साइट और धार्मिक मंदिर है। नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही मची है त्रिशूली बाजार में। अब त्रिशूली बाजार कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई खंडर होगा, जैसे कोई कब्रिस्तान होगा। जहाँ कभी पूरा बाजार था वहाँ अब खाली मैदान है, कीचड़ है और मलबा भरा पड़ा है। देखिए पहले ये त्रिशूली बाजार कितना खूबसूरत दिखता था। यहाँ दोनों किनारों को जोड़ने के लिए पुल था। ये पूरा रिहायशी इलाका था। यहाँ बहुत से होटल थे, स्कूल थे, सरकारी दफ्तर थे। बीच में खूबसूरत त्रिशूली नदी बहती थी और अब यहाँ मौत का सन्नाटा है। कल जब बाढ़ आई तो बहुत से लोगों को तो यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिला।
2: मैं समय त्रिशूली बाजार पहुंचा हूं। अब सोचिए कि 24 घंटे में कैसे तस्वीरें बदल जाती हैं। एक बेहद गुलजार शहर कैसे मानो कब्रिस्तान में बदल गया हो। ये वो शहर है और जब एक दिन पहले मंदिर आने के ठीक पहले यहां पर क्या कुछ नहीं था और आपको यहां पर क्या दिखाई पड़ता है। अब यहां एक पुल हुआ करता था। दरअसल शहर को दोनों ओर से चौराहों से जोड़ने के लिए यहां एक पुल था, लेकिन अब पुल जो है ये देखिए किस हाल में है। इतना तेज प्रवाह था कि इस पुल को चीरते हुए, इसको ध्वस्त करते हुए ये त्रिशूली नदी अपने प्रवाह में ले गई। यहाँ घर हैं, मकान हैं, लोग यहाँ रहते थे, दुकानें थी। ये देखिए क्या हाल हुआ है। ऐसा लगता है मानो कहीं पर बमबारी हुई हो, लेकिन कुदरत का प्रवाह और उसका गुस्सा इस नदी का इतना था, इस सैलाब के आगे पूरा शहर जो है बर्बाद हो गया।
0: त्रिशूली बाजार में तो लगता है कि जैसे मौत पसरी हुई है। नदी ने सारे घर साफ कर दिए, सब कुछ ध्वस्त कर दिया। नदी का पार बहुत चौड़ा हो गया है। जहाँ जहाँ निर्माण था सब उजड़ गया।
2: त्रिशूली गांव में यहाँ पर एक पुल था, वो पुल अब मुझे सिर्फ तार यहाँ दिखाई देते हैं, बह चुका है। पीछे पूरा मैदान है, ये मैदान नहीं हुआ करता था। यहाँ पर घर थे, दुकान थे, रंग बिरंगे घर की छतें दिखाई देती पुरानी तस्वीरों में। और अब जो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वो अपने घरों की छतों पर आसपास इस कीचड़ में आए हैं देखने कि क्या घर में कुछ बचा है। जान बचाने के लिए लोग यहां से सीधा पहाड़ी इलाकों की ओर भागे। जब नदी का स्तर बढ़ा, पानी तो घटने लगा है, लेकिन पानी अपने साथ जो तबाही का मंजर लेकर के आया है वो इसके निशान छोड़ गया है इन छतों पर जहां उनके बच्चे खेला करते थे। अब यहां पर मलबे का ढेर है और इस सैलाब ने जो दर्द दिया है वो घाव लोगों को सालों तक याद रहेंगे।
0: और अब नेपाल के थाडिंग जिले में बची तबाही भी आपको दिखाते हैं। यहां बहुत से झरने हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, गुफाएं हैं। ये सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन इस बाढ़ ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई पुल तोड़े, खास तौर पर यहाँ मालेकू को हिट किया जहाँ बहुत से वाटर स्पोर्ट्स होते थे।
3: ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा। ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से। कुछ यहां पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धंस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत, ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर
1: आप रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
6: क्या है रक्षाबंधन के पर्व का महत्व? क्या इस बार के रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया है? रक्षाबंधन मनाने का तरीका क्या है और रक्षाबंधन पर कामनाएं कैसे पूरी होंगी? जानिए रक्षाबंधन की पूरी बातें मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

नेपाल त्रासदी में अब तक 379 लोगों की मौत की पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। भारत से मदद की पहली खेप पहुंची। जेंजी आंदोलन के बावजूद मोदी का जलवा बरकरार। आज तक से वोटर सर्वे में एनडीए को तो 326 सीट का अनुमान, लेकिन अपने दम पर बहुमत से दूर बीजेपी। रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर जनता नाखुश। सर्वे में पीएम मोदी की नीतियों पर दिखा भारत का भरोसा। एसआईआर, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर देशवासियों का समर्थन, लेकिन परीक्षा सिस्टम पर जेंजी को पूरा भरोसा नहीं। कोलकाता में टीएमसी के ममता गुट और पुलिस में जबरदस्त झड़प। सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में होर्डिंग हटाने पहुंची टीम से धक्का मुक्की। अभिषेक ने कहा सियासी बदला। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, सरकार ने मानी। अब एक चरण में ही होगी टीआरई 4 की परीक्षा। पटना में कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन भी खत्म।

0: के साथ पूजा। चीन नेपाल सीमा पर भीषण बाढ़ की तबाही के बीच अब एक और बड़े खतरे की चेतावनी जारी हुई है। दरअसल नेपाल सीमा के पास युरुंग से करीब 18 किलोमीटर ऊपर मलबे के कारण एक बैरियर झील बन गई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 72 घंटे में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी पहुंच सकता है। तो ऐसे में झील टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन ने इलाके में सेना, बचाव दल और इंजीनियरिंग टीमें तैनात कर दी हैं और हालात पर भी लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। चीन ने नेपाल को एक और बाढ़ को लेकर चेता दिया है और ऐसे में इंजीनियरिंग टीमें, सेना को भी तैनात कर दिया है, हालात पर नजर बनाए हुए है। तिब्बत में लेहंदे नदी का बहाव भी फिर से रुका गया। तो वही विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को एक बार फिर से झटका लगा है। गुरुवार देर रात नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 बताई गई है। नेपाल के विभिन्न हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि दो दिन पहले जो तबाही मची है उसके लिए भूकंप को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। वैसे तो इस भूकंप का झटका बहुत ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में काफी ज्यादा दहशत भर गई है। अभी भयंकर बाढ़ को 24 घंटे का समय भी नहीं बीता और फिर से एक नई आपदा की आहट सुनाई देने लगी है। नेपाल में एक और नई झील फटने को तैयार है और अगले 72 घंटे बेहद नाजुक बताए जा रहे हैं। नेपाल में एक नई बैरियर झील का निर्माण हुआ जो कभी भी फट सकती है और अगर ये झील फटती है तो नेपाल को एक बार फिर से जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है।
1: तिब्बत से विनाश लीला ने जो तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि नेपाल को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन नेपाल पर अभी खतरा कम नहीं हुआ है। नेपाल में भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बीच एक और बैरियर झील का निर्माण हुआ है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस झील से पहले से ही पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने पर ये टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु सांको नदियों के संगम के पास ये झील बनी है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और बांध टूटने की स्थिति में संभावित परिणामों का आकलन करने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैयारी कर रहे हैं। चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटे कशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटे कोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है। ये चेतावनी नेपाल चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक और भीषण बाढ़ आने के एक दिन बाद आई है। इस विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में नई झील के निर्माण ने नेपाल की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके टूटने से अचानक पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आ सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों की विनाश लीला ने भारत को दहला दिया है। जी हां, नेपाल की इस आपदा में 285 भारतीय अभी भी लापता हैं, जिनकी खोज जारी है। भारत ने नेपाल को राहत कार्यों के लिए 50 टन राहत सामग्री भी भेजी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे तहस नहस हो गया है नेपाल।
1: तिब्बत की आई तबाही नेपाल में विनाश लीला मचाई। पल भर में प्रलय
2: घर, पुल, सड़कें, पावर प्लांट भी तबाह। हर तरफ तबाही के निशान, डरा रही है नेपाल की त्रासदी। विनाशकारी बाढ़ में जिंदगी गुम, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। साढ़े 300 के करीब मौत का आंकड़ा, 200 से ज्यादा भारतीय लापता। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाघ की ये तस्वीरें न सिर्फ रोंगटे खड़े कर देती हैं, बल्कि विनाश लीला की वो त्रासदी दिखाती हैं जिसमें पूरा नेपाल सिसक रहा है। चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है। गूंज रही है चीखे, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है। थम गई हैं सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। नेपाल के 3 जिले रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग विनाश लीला की त्रासदी झेल रहे हैं। महाप्रलय का मंजर ऐसा है, सब कुछ मलबे में मिला हुआ नजर आता है। नेपाल के रसुवा क्षेत्र में भोटे कोशी नदी में ऐसा विनाशकारी सैलाब आया कि जो उसके रास्ते में आया सब कुछ बहा ले गया। मौत का आंकड़ा 350 के पास पहुंच रहा है। 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज तबाह हो गए हैं। 13 पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इस विनाश लीला से नेपाल थर्राया है तो भारत भी दहल उठा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि नेपाल में विनाश लीला क्यों मची, क्यों इसके पीछे चीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन पहले बात उन भारतीयों की करते हैं जो उस त्रासदी में लापता हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में 288 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इनमें नेपाल के त्रिशूली 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 73 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में फंसे 21 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बताया गया है। इनमें से 11 लोगों की पहचान हो चुकी है। तमिलनाडु से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 2 अलग अलग जत्थे गए थे, जिनमें एक ग्रुप में 37 लोग और दूसरे ग्रुप में 49 लोग थे। वहीं पश्चिम बंगाल से 32 नागरिक नेपाल में रसुवा जिले के तिमुरे गए थे। केरल के 33 नागरिक और दूसरे राज्य से 61 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। इसके अलावा चीन के तिब्बत क्षेत्र की तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय भी फंसे हुए हैं और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है।
3: 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है 137 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं, ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है जिसके बारे में जिक्र कर रहा था पहले, वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से है।
2: जिनके अपने अभी तक लापता है वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। विमला रवि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गई थी, लेकिन विनाशकारी बाढ़ के बाद से उनका और उनके समूह का संपर्क टूट गया। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
4: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था, अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
2: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थी। हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
5: तुम संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, दो तीन फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहां से कनेक्शन कट हुआ।
2: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 50 टन राहत सामग्री भेजी है। पहली खेप भारत ने 26 अगस्त को C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन मानवीय सहायता और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी थी, जो काठमांडू पहुंच चुकी हैं। दूसरी खेप गुरुवार को C-17 ग्लोब मास्टर विमान के जरिए नेपाल भेजी है, जिसमें लगभग 37 टन और राहत सामग्री शामिल है।
6: वक्त मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे जो है भारतीय राजदूत भी मौजूद है, जो इन राहत सामग्री को नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से वो हैंडओवर करेंगे। कल पहला खेप जो है 10 टन का सबसे पहले नेपाल ने, जो भारत की तरफ से नेपाल में भेजा गया, नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे पहले सहयोग का हाथ जो है भारत ने बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है और दोनों देशों की टीमें राहत कार्यों में समन्वय कर रही हैं। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुआ के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था, आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसुआ के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे, लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको दिखाते हैं कि कैसे नेपाल में तिब्बत से विनाशकारी बाढ़ आई, तो नेपाल की भूटकोशी नदी बड़ी आबादी के लिए काल बनती चली गई। जी हां, सैकड़ों की आबादी वाले इलाके काल के गाल में समा गए हैं। नेपाल के रसुआ जिले का टिमुर बाजार तो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आइए देखते हैं कि नेपाल में आई विनाश लीला की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, तबाही वाले इलाकों से आज तक की सबसे बड़ी कवरेज।
2: नेपाल में कैसे आया विनाश का महासैलाब? नेपाल के 3 जिले कैसे तबाही के मलबे में मिले? कैसे नेपाल में सैकड़ों की आबादी ने छेड़ी विनाश की त्रासदी? विदेशी नागरिकों की मौत, सैकड़ों लापता, रेस्क्यू का चैलेंज। महाप्रलय की ग्राउंड रिपोर्ट, तबाही के एपिसेंटर तक आज तक। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ को लेकर तरह तरह की थ्योरीज चल रही हैं। आखिर ये महाप्रलय आया कैसे?
1: क्या वाकई ग्लेशियर टूटा या फिर कोई और बड़ी वजह है? सैकड़ों की मौत हो चुकी है, हजारों लापता हैं, विदेशी नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, और जिस तरह से सब कुछ मलबे में मिल चुका है, अब रेस्क्यू ऑपरेशन का बड़ा चैलेंज है। नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहाँ बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहाँ आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे त्रिशूली नदी में आई ये तबाही नेपाल को बर्बाद करती चली गई। जैसे जैसे ये बाढ़ आगे बढ़ी, इसने कैसे कस्बे के कस्बे, गांव के गांव मलबे में मिला दिए। लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला, और जिसको मौका मिला वो भाग गया, जो नहीं भाग पाया वो मारा गया। नेपाल में तबाही की शुरुआत इसी केरूम पोर्ट से होती है, जो नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है। तिब्बत पर चीन का कब्जा है, उसे वो अपना स्वायत्त प्रांत बताता है, इसलिए इसे चीन नेपाल बॉर्डर कहा जाता है। सबसे पहले फ्लैश फ्लड ने यहीं पर हिट किया। नेपाल और चीन के व्यापार का करीब एक तिहाई हिस्सा यहीं से होता है, और साथ ही नेपाल के रास्ते मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी इसी गेरुंग पोर्ट से होकर गुजरता है, और यही मानसरोवर यात्रियों के लिए इमिग्रेशन पॉइंट है। यहीं से ये वीडियो आए थे जहां लोग दौड़ते भागते दिखते हैं। तबाही ऐसी कि जैसी कभी किसी ने नहीं देखी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यहाँ से तबाही का ये सैलाब आगे बढ़ता है, पूरा इलाका पहाड़ी है। ऊपर ये भोटे कोशी नदी थी जो नीचे आकर त्रिशूली बनती है। सैलाब से भरी भोटे कोशी नदी जैसे जैसे नीचे आती गई, तबाही मचाती चली गई। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन तीन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, उनके नाम हैं रसुआ, नुवाकोट और धाडिक। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन तीन जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
0: और फिर नेपाल के रसुआ से नुवाकोट से होते हुए धाडिंग तक विनाश का सैलाब, जी हाँ, काल बनता चला गया ये सैलाब। और अब आपको दिखाते हैं कि नेपाल के जिले दर जिले ग्राउंड रिपोर्ट। यकीन मानिए, जब आज तक के रिपोर्टर तबाही के एपिसेंटर तक पहुंचे तो महाप्रलय का पूरा मंजर आज तक के कैमरे में कैद होता चला गया।
1: सबसे पहले बाढ़ रसुआ में आई। देखिए बाढ़ ने इस कस्बे का क्या हाल कर दिया है। नेपाल चीन बॉर्डर की गेरुंग पोस्ट रसुआ गढ़ी में ही स्थित है। ये नुवाकोट के उत्तर में स्थित जिला है जहां करीब 50,000 लोग रहते हैं। चीन बॉर्डर पर होने की वजह से ये एक व्यापारिक कस्बा है जहां बहुत सी इमारतें थी, होटल थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन बाढ़ में सब कुछ तबाह हो गया। ये वीडियो आपने देखा होगा जहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। कुछ मजदूर यहां अपनी जान बचाते भी दिखे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये रसुआ का ही वीडियो है जहां बहुत से पुल और बिजली परियोजनाएं बह गई। ये नेपाल के रसुआ का एरियल वीडियो आया है। ये हेलीकॉप्टर से दिया गया वीडियो है। देखिए क्या तबाही मची है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। रसुआ बाजार का पूरा हुलिया ही बदल गया है। इसके बाद विनाशकारी बाघ ने नुवाकोट में कहर बरपाया। नुवाकोट नेपाल का एक बड़ा सेंटर है। इस कस्बे की जनसंख्या 59,000 है। नुवाकोट नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पूर्व की तरफ एक जिला है, जो एक ग्रामीण और पहाड़ी इलाका है। टूरिज्म डेस्टिनेशन है क्योंकि यहाँ बहुत सी हेरिटेज साइट और धार्मिक मंदिर है। नुवाकोट में सबसे ज्यादा तबाही मची है त्रिशूली बाजार में। अब त्रिशूली बाजार कुछ ऐसा दिखता है जैसे कोई खंडर होगा, जैसे कोई कब्रिस्तान होगा। जहां कभी पूरा बाजार था, वहां अब खाली मैदान है, कीचड़ है और मलबा भरा पड़ा है। देखिए, पहले ये त्रिशूली बाजार कितना खूबसूरत दिखता था। यहां दोनों किनारों को जोड़ने के लिए पुल था। ये पूरा रिहायशी इलाका था। यहां बहुत से होटल थे, स्कूल थे, सरकारी दफ्तर थे।
0: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: क्या है रक्षाबंधन के पर्व का महत्व? क्या इस बार के रक्षाबंधन पर ग्रहण का साया है? रक्षाबंधन मनाने का तरीका क्या है और रक्षाबंधन पर कामनाएं कैसे पूरी होंगी? जानिए रक्षाबंधन की पूरी बातें मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: सो सॉरी।

नेपाल त्रासदी में अब तक 379 लोगों की मौत की पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। भारत से मदद की पहली खेप पहुंची। जेंजी आंदोलन के बावजूद मोदी का जलवा बरकरार। आज तक से वोटर सर्वे में एनडीए को तो 326 सीट का अनुमान, लेकिन अपने दम पर बहुमत से दूर बीजेपी। रोजगार, महंगाई, शिक्षा पर जनता नाखुश। सर्वे में पीएम मोदी की नीतियों पर दिखा भारत का भरोसा। एसआईआर, यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर देशवासियों का समर्थन, लेकिन परीक्षा सिस्टम पर जेंजी को पूरा भरोसा नहीं। कोलकाता में टीएमसी के ममता गुट और पुलिस में जबरदस्त झड़प। सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में होर्डिंग हटाने पहुंची टीम से धक्का मुक्की। अभिषेक ने कहा सियासी बदला। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग सरकार ने मानी। अब एक चरण में ही होगी टीआरई 4 की परीक्षा। पटना में कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन भी खत्म।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज तक के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रक्षाबंधन के महत्व की, इसके पूजा विधान की। और आज चूंकि दुनिया में चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो इस चंद्र ग्रहण का रक्षाबंधन पर क्या असर है, इस विषय पर भी बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, प्रातः 9:48 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा अपनी भावनाओं के साथ बांधा जाता है उसको रक्षा सूत्र या रक्षाबंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहने अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा का, उनकी सहायता का वचन देते हैं। महाभारत काल में एक कथा आती है, मान्यता है कि राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र के रूप में आंचल का टुकड़ा बांधा था। इसी के बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो गई। प्राचीन काल से ये परंपरा चली आ रही है कि ब्राह्मण अपने यजमानों को राखी बांधते हैं और उनकी शुभता की, रक्षा की मंगल कामना करते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ करते हैं, इसलिए इस दिन शिक्षा का आरंभ करना अच्छा माना जाता है। तो रक्षाबंधन के पर्व को पारंपरिक रूप से श्रावणी भी कहा जाता है और इस दिन ब्राह्मण यजमानों को सूत्र बांधते हैं और ज्ञान का, विद्या का आरंभ भी इस दिन से किया जाता है। रक्षाबंधन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन के पावन महीने का अंतिम दिन है, सावन का एक विशेष उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग हैं, संतान पक्ष से लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो रक्षाबंधन का पर्व है आज, और बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी मंगल कामना करेंगी। क्या सही तरीका होगा रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का? बहनें एक थाल ले लें, थाल में रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। घी का एक दीपक भी रखेंगी जिससे भाई की आरती की जाएगी। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवाकर बैठाएं। पहले भाई को तिलक लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर भाई की आरती करें, फिर मिठाई खिला करके भाई की मंगल कामना करें। रक्षा बंधवाने के बाद भाई अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लें, इसके बाद अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार देंगे। उपहार में अपनी बहन को ऐसी वस्तुएं देंगे जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले वस्त्र, तीखा या नमकीन खाद्य पदार्थ अपनी बहन को ना दें। रक्षाबंधन पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है
और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

करियर में लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विमला देवी ने हमें लिखा है, पटना से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1962, जन्म का समय सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है दरभंगा बिहार। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। विमला जी, अप्रैल 2027 तक अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चोट चपेट दुर्घटना की समस्याओं से थोड़ा बचना आपके लिए जरूरी रहेगा। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में रविवार को प्रातः माणिक्य पहने। रोज सुबह 1 बार नारायण कवच का पाठ करें या सुने तो आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि आपके भाई का कल्याण हो, आपके भाई की मनोकामना पूरी हो, इसके लिए बहने अपने भाई को कैसा रक्षा सूत्र बांधेंगी। भाई की अच्छी शिक्षा के लिए और भाई की अच्छी एकाग्रता के लिए अपने भाई को नारंगी रंग का रक्षा सूत्र बांधिएगा। भाई के शीघ्र विवाह के लिए कि आपके भाई का विवाह जल्दी हो जाए, ऐसा रक्षा सूत्र बांधिए जिसमें सफेद रंग के नग लगे हों या सफेद रंग का रक्षा सूत्र हो। अगर भाई के विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्या है तो पीले रंग का रक्षा सूत्र बांधना बेहतर होगा। भाई के रोजगार के लिए और भाई की आर्थिक संपन्नता के लिए

सकारात्मक ऊर्जा से रक्षा हो, दुर्घटना से रक्षा हो, भाई का स्वास्थ्य बेहतर रहे, लाल रंग का रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। आपके भाई की हर प्रकार से रक्षा हो, भाई का स्वास्थ्य और जीवन हर प्रकार से बेहतर हो, लाल पीले और सफेद रंग के धागों से बना हुआ रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधिएगा। अगर आप इन रंगों का रक्षा सूत्र भाई की आवश्यकता के अनुसार बांधती हैं, तो आपके भाई को विशेष लाभ होगा, भाई का विशेष कल्याण अवश्य होगा। रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण पर आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचिएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में शांति रखें, यात्रा में सावधानी रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी, कोई नया अवसर मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात करते हैं भाइयों की। अपनी बहन को भाई कैसा उपहार दें कि बहन की मनोकामनाएं पूरी हों, बहन का कल्याण और मंगल हो। अपनी बहन के अच्छे करियर के लिए, बहन की अच्छी नौकरी के लिए, बहन को अच्छी कलम, पुस्तक और लैंप, ये आप उपहार में दे सकते हैं। आपकी बहन का शीघ्र विवाह हो जाए, इसके लिए सुगंध और पीले वस्त्र आप बहन को उपहार में दे सकते हैं। बहन का वैवाहिक जीवन बेहतर हो और सुखी रहे, इसके लिए बहन को चांदी के आभूषण और फुटवियर, चप्पल जूते उपहार में दे सकते हैं। बहन के जीवन में अगर संतान संबंधी कोई समस्या है तो बाल कृष्ण की मूर्ति और संगीत की चीजें उपहार में

बहन की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहे, इसके लिए बहन को लाल वस्त्र, मिठाई और चावल ये उपहार में दें, निश्चित रूप से आपकी बहन के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। आज श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा है और भारतीय समय से आज सुबह से चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। पहले जानते हैं कि इस चंद्र ग्रहण की विशेषता क्या है। देखिए, ये विशिष्ट चंद्र ग्रहण नहीं है, ये एक उप छाया ग्रहण है। इसकी शुरुआत 28 अगस्त को यानी आज हो रही है। ये 28 अगस्त को प्रातः काल 6:53 पर आरंभ हो रहा है और इसका समापन पूरी तरह से दोपहर में 12:31 पर होगा। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। एक तो ये पूर्ण ग्रहण नहीं है, उप छाया ग्रहण है, और दूसरा ये भारत में दिखाई नहीं देगा। देखिए, उप छाया जो ग्रहण होता है उसमें किसी तरह की कोई वर्जना नहीं होती, किसी तरह का कोई नियम नहीं होता, और चूंकि भारत में दिखेगा नहीं इसीलिए कोई सूतक के नियम, कोई खान पान का परहेज, ये सब बिल्कुल लागू नहीं होगा। उप छाया ग्रहण है, कोई सूतक नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, किसी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि रक्षाबंधन का पर्व भी है आज, तो देखिए रक्षाबंधन के पर्व का ग्रहण से कोई संबंध नहीं है। रक्षाबंधन पर भद्रा महत्वपूर्ण होती है, भद्रा काल को देखा जाता है रक्षाबंधन के पर्व पर, और ये भद्रा 28 अगस्त को सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही समाप्त हो रही है, यानी सुबह बीत चुकी है। तो इस बार आप पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। कोई ग्रहण लागू नहीं है, कोई भद्रा लागू नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की रुकावट, किसी भी तरह के नियमों का पालन करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

के योग हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, व्यर्थ की चिंता ना करें, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा क्रीम।

मानसिक तनाव हो सकता है, करियर में धैर्य बनाए रखें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। बहनें जब अपने भाई को राखी बांधती हैं तो उस समय बहनों को कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए? देखिए, रक्षा सूत्र बांधने का मंत्र शास्त्र में बताया गया है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। इस श्लोक को पढ़कर बहनें राखी बांध सकती हैं। और अगर श्लोक पढ़ना कठिन है तो जो आपके इष्ट देव हैं शिव जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण, उनसे प्रार्थना करते हुए कि इस रक्षा सूत्र के माध्यम से मेरे भाई की रक्षा हो, ये प्रार्थना करते हुए भी रक्षा सूत्र बांध सकती हैं। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 3, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, धन लाभ के योग हैं। नंबर 6, यात्रा के योग हैं। नंबर 7, धन खर्च पर ध्यान दें। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, सफेद मिठाई खाकर घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक गुलाब का फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को आज सावधान रहना होगा।

कुंभ राशि वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा। मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा। कर्क राशि वालों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज पूर्णिमा तिथि है और बड़ी पवित्र पूर्णिमा है। आज सात्विकता बनाए रखें और आज किसी भी शिव मंदिर में शाम को जाकर एक दीपक अवश्य जलाइएगा। सावन के पावन महीने का आज अंतिम दिन है, तो चलिए बताते हैं कि आज के लिए भाग्य बढ़ाने का विशेष उपाय क्या है सावन सूत्र में। सावन की पूर्णिमा पर यानी आज के दिन सफेद वस्तुओं का दान निर्धन व्यक्ति को करिएगा। ऐसा करने से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

नेपाल के भीषण बाढ़ में अब तक 389 मौत, भूटेकोशी नदी में फिर से उफान का खतरा, कुल 1500 से ज्यादा लापता, सैकड़ों लोग लापता, मलबे में जारी है जीवन की तलाश, रसुआ से लेकर चितवन तक में भयंकर तबाही, सड़क पुल से लेकर मकान दुकान और होटल भी बाढ़ में बहे। नेपाल में आई बाढ़ के कारण 290 भारतीय नागरिकों से फिलहाल कोई भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, तलाश जारी, राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों ने सफलता हासिल करते हुए 84 भारतीयों को सुरक्षित बचाया, रेस्क्यू किए गए लोगों में त्रिशूली वन प्रोजेक्ट में फंसे 63 वर्कर और साथ ही तमिलनाडु के रहने वाले 21 लोग शामिल। नेपाल में ग्लेशियर ढहने की वजह से तबाही का शक, लेहंदे नदी में आई भीषण बाढ़, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे टूटे हुए ग्लेशियर। नेपाल में लेहंदे नदी का बहाव थमा, 0.11 वर्ग किलोमीटर में बनी अस्थायी झील, बांध टूटने पर निचले इलाकों में भीषण बाढ़ का खतरा, रसुआगढ़ी में सीमा के ऊपर नदी में बड़ी रुकावट से बनी झील, नेपाल सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, निचले तटीय इलाकों को सतर्क रहने की चेतावनी। नेपाल में बाढ़ के मलबे से सामान निकालने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, पुलिस ने वीडियो जारी कर दी सुरक्षित रहने की चेतावनी। तिब्बत में बाढ़ प्रभावित इलाके पहुंचे चीनी पीएम ली चियांग, चीन नेपाल सीमा पर राहत बचाव अभियान तेज, नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने लॉन्च किया इंटरनेशनल डोनेशन पोर्टल, विदेशी दाता सीधे राहत कोष में जमा कर सकेंगे रकम, नेपाल में बाढ़ के बीच हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू, नेपाली सेना ने संभाला मोर्चा, नेपाल में आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री बालन शाह हालात का जायजा लेने के लिए नुवाकोट पहुंचे, मौके से शाह की तस्वीरें भी सामने आई, सुरक्षा बलों से बातचीत करते हुए और हालात का मुआयना करते नजर आए। बालन शाह ने प्रभावित नागरिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सुरक्षाकर्मियों, डॉक्टर्स और राहत कार्य में जुटी टीमों से सीधे बात कर जमीनी हकीकत जानी, निरीक्षण के बाद काठमांडू लौटे प्रधानमंत्री बालन शाह ने कहा कि स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, राज्य के सभी प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में तैनात। तो नेपाल बाढ़ में फंसे महाराष्ट्र के 114 पर्यटक 53 सुरक्षित, सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉल पर कहा कि डरिए मत, सरकार आपके साथ है, फडणवीस ने विदेश मंत्रालय से बात की, 24 घंटे कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन जारी। नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही, ड्रोन फुटेज में दिखा खौफनाक मंजर, नदी किनारे बस्तियां तबाह, फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में भारी तबाही, ड्रोन से सामने आई तस्वीरें, त्रिशूली बाजार में फ्लैश फ्लड की भीषण तबाही, ड्रोन फुटेज में मलबे और कीचड़ से घिरी बस्तियां, नेपाल में बाढ़ भूकंप का डबल अलर्ट, बैरियर झील ओवरफ्लो, टूटने का बड़ा खतरा, 350 मजदूरों का रेस्क्यू, नेपाल में बाढ़ के बाद नई मुसीबत, 3.2 तीव्रता का भूकंप, ओवरफ्लो बैरियर झील से तबाही का डर, नेपाल में बाढ़ भूकंप के बीच बड़ा खतरा, झील में 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का अनुमान, भारत की मदद जारी, भारत भेजेगा C-130J। और इसी मन पर सियासत तेज, खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग, राहुल गांधी को विशेष अधिकार समिति का नोटिस, 28 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश, महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू, सरकार ने आधिकारिक घोषणा की, पटना में TRE-4 को लेकर छात्रों का धरना खत्म, सम्राट सरकार से मांगों पर बनी सहमति, TRE-4 छात्रों के आंदोलन का अंत, मांगे माने जाने के बाद जश्न में डूबे प्रदर्शनकारी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक, राज्यों के चुनावी रोडमैप पर मंथन, कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा, जादवपुर में शुभेंदु अधिकारी गाएंगे वंदे मातरम, देशभक्ति के जरिए सियासी संदेश की तैयारी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम के दौरान एक्स अकाउंट बहाल, कुछ देर के सस्पेंशन के बाद VR बैकअप, उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील घोषित, सीएम धामी ने नियमित निगरानी के लिए निर्देश दिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा मजबूत, मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर ऑटो टैक्सी यूनियन की मांग मंजूर, सीएम फडणवीस ने डेडलाइन 1 साल बढ़ाई, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत देकर बोले सीएम फडणवीस, इस दौरान नहीं होगी कोई भी कार्रवाई, बिल पावर के 160 करोड़ रुपए बैंक फ्रॉड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई वडोदरा में 10 ठिकानों पर छापेमारी, ईडी की रेड में 43,90,000 कैश और करीब 12.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त, बिल पावर मामले में 2 बैंक खाते और 3 लॉकर फ्रीज, महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून से पहले चर्च में बढ़ी हलचल, मुंबई पालघर में नए श्रद्धालुओं का सेल्फ डिक्लेरेशन शुरू हुआ, पादरी बोले उत्पीड़न से बचने की तैयारी, बजरंग दल ने उठाए सवाल, आरक्षण हटाओ आंदोलन पर अभिजीत दीपके का जेपी नड्डा से सवाल, बोले 21 अगस्त के आंदोलन पर पीएम मोदी का क्या कहना है, देश जानना चाहता है, FDA भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच में लव अफेयर एंगल का दावा, शिक्षक कोचिंग संचालक की भूमिका भी जांच के घेरे में,
अंबादास दानवे ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब आम बात हो गई है, सिस्टम में नैतिकता खत्म हो चुकी है और सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रहा। गोवा में एफडीए का बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों की 3 कैंटीन बंद, किचन हाइजीन और स्ट्रक्चर में मिली गंभीर खामियां। जालना में शिक्षक की कमी को लेकर अभिभावकों ने जिला परिषद स्कूल को लगाया ताला, 4 साल से एक शिक्षक गैर हाजिर, पहली से पांचवीं तक की पढ़ाई एक शिक्षक के भरोसे। पालघर में 620 करोड़ रुपए खर्च, फिर से हाईवे बहाल, दरअसल वैतरणा पुल पर बड़ा एक गड्ढा पड़ा, हादसे का खतरा बढ़ा। कानपुर में नगर निगम के खिलाफ समाजवादी पार्टी विधायक ने 20 फीट गड्ढे में शुरू किया धरना, विधायक का ऐलान, नगर निगम अधिकारी जब तक नहीं आएंगे बैठा रहूंगा गड्ढे में। इंदौर में 9 दिन में दूसरी सड़क धसी, 20 फीट गहरा गड्ढा, वाल्मीकि बस्ती की सड़क से रोज 10,000 वाहन गुजरते हैं, ड्रेनेज लाइन से धसने की आशंका। तो वही महाराष्ट्र के बीड में सूखे से बिगड़े हालात, चारे के बिना बिलख रहे हैं मवेशी, महिला किसानों की आंखों में आंसू, बाराबंकी में मासूम बच्ची की डीएम से गुहार, डीएम अंकल रोड बनवा दीजिए, कहा कि वायरल वीडियो में ये सामने आया और वीडियो वायरल हो रहा है, प्रशासन ने लिया एक्शन। दिल्ली के तिलक नगर में एनकाउंटर मुस्कान हत्याकांड का आरोपी इमरान दोनों पैरों में गोली लगने से घायल हुआ, जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में लगी गोली। उधमपुर में NH-44 पर भीषण हादसा, फ्यूल टैंकर और डंपर की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने के स्टोर रूम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, मशक्कत से पाया गया आग पर काबू। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। अलवर में सरकारी अस्पताल पर लोगों ने जड़ा ताला, 15 दिन से डॉक्टर ड्यूटी से गायब। ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी का मामला, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में दी शिकायत। मेरठ में दोस्त की गर्लफ्रेंड की शादी कराने पर हुई थी युवक की हत्या, होटल में गोली मारकर शव नहर में फेंका गया, 3 गिरफ्तार 1 फरार। बिजनौर में स्कूटी सवार को कुचलकर भाग रहे ट्रक की सामने से आ रहे कैंटर से भीषण भिड़ंत हुई, दोनों वाहनों में लगी भयंकर आग, ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। कानपुर में AI से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को गर्लफ्रेंड बताया तंग आकर नीट छात्रा ने सुसाइड किया। गाजीपुर में 2 सगे नाबालिग भाइयों की हत्या, मां गिरफ्तार, 9 साल की बहन के बयान से खुला राज, लोहे की रॉड बरामद। नागपुर के कोंडाली स्थित फार्म हाउस में लगी भीषण आग, 40 मिनट में फार्म हाउस जलकर खाक हुआ। चंद्रपुर में फर्जी डिग्री का करोड़ों का खेल, 5 से 10 लाख में बिक रही थी नामी यूनिवर्सिटी की बोगस डिग्रियां, 1 गिरफ्तार। पुणे में चेंबर में फंसकर 2 मजदूरों की मौत हुई, पिछले साल इसी चेंबर में 3 लोगों की गई थी जान। जयपुर में 2 दिन में 2 स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या, निम्स यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में पत्नी ने पति की गला घोटकर हत्या कर दी, पत्नी हुई गिरफ्तार, पत्नी ने के अवैध संबंध और शराब पीकर पति का पत्नी को पीटने का प्रकरण आया सामने। पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, मारुति इको खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 3 घायल। रायगढ़ में सब्जी बनाने को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या, शव जलाकर हड्डियां दफन की, DNA रिपोर्ट से खुला अंधे कत्ल का राज। रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से घर लौट रही दलित युवती की हत्या, शिकोहाबाद में मिला शव। पटना में दलान पर सो रहे युवक को मारी गई गोली, हालात गंभीर, मौके पर वारदात से पुलिस ने किए भारी मात्रा में हथियार बरामद। मुंबई के परोल में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव मचा, पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा विवाद, SRPF तैनात। मुंबई के भांडुप में 10वीं मंजिल की छत से गिरी एक महिला, पेड़ की डालियों में जाकर फंसी, मशक्कत से रेस्क्यू कर उतारा नीचे। टिहरी में मां की हत्या कर जंगल में छिपा आरोपी बेटा गिरफ्तार, 4 पुलिस टीमों ने चलाया सघन कॉम्बिंग अभियान। रोहतास में इलेक्ट्रिक स्कूटी के गोदाम में लगी भीषण आग, 85 इलेक्ट्रिक स्कूटी और 200 बैटरी जलकर राख हुई। करनाल में नेशनल हाईवे किनारे एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 10 से 12 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, भारी नुकसान की आशंका। लखनऊ के बुधेश्वर शिव मंदिर में चेन चोरी करने वाला हैरान करने वाला एक मामला सामने आया, महिला ने दांत से काटकर श्रद्धालु की सोने की चेन उड़ाई, CCTV में कैद वारदात। आज से भाई बहन के प्यार का खास त्यौहार रक्षाबंधन, इस दिन बहन भाई की कलाई पर बांधती है राखी। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, प्यार और विश्वास की है निशानी, भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन और उपहार देते हैं। यह त्यौहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसके पीछे इंद्र और इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना जैसी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई। आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन भर रहेगा मौजूद, बहनें सुबह दोपहर या शाम किसी भी समय बांध सकेंगी राखी। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई है तस्वीर।
श्रीलंका ने भारत को नहीं जीतने दिया दूसरा टेस्ट, फॉलो ऑन खेलने के बावजूद मैच ड्रॉ कराया। श्रीलंका ने आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बनाए। मैच में सिर्फ 17 ओवर बचे थे तब दोनों टीमों ने आपसी सहमति से टेस्ट ड्रॉ करा लिया। भारत ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज 1-0 से जीती। भारत ने गोल में हुआ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता था। कोलंबो में हुए दूसरे टेस्ट मैच के हीरो श्रीलंका के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सोनल दिनुषा रहे, दोनों पारियों में लगाया शतक। एक्टर यश की फिल्म टॉक्सिक का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, वर्ल्ड वाइड 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई का दावा। आज अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का खोसला 2 हो रही है रिलीज, लगभग 20 साल बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा आज हो रही है ओटीटी पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बंदर, आज से Z5 पर स्ट्रीम होगी अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी, सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देवेन भोजानी और अमायरा का अहम रोल। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल, 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर हो रही है रिलीज। रूस का यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमला, राजधानी की ओडिशा और साथ ही सूमी पर बरसाए गए बम, तीनों हमलों में एक की मौत, 7 लोग घायल। मुस्तफा खामेनेई की मौत की अटकलों पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा मुझे नहीं लगता ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हुई है, वो जिंदा है। ईरान दौरे पर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद, राजधानी तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से की मुलाकात, अमेरिका ईरान में ठप पड़ी बातचीत को शुरू करने पर दिया जोर। नेटो सदस्य देशों पर हमले की खबर को रूस ने किया खारिज, क्रेमलिन में कहा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी। रूस ने यूरोपीय संघ को दी सख्त चेतावनी, क्रेमलिन ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ फ्रीज संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करता है तो गैर कानूनी कदम को रोकने के लिए कोर्ट जाएगा रूस।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर
1: करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा. अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया.
2: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद. लायन कश्मीर हनी,
1: असली शहद, असली स्वाद.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

0: दिल्ली के तिलक नगर में जिम ट्रेनर इमरान ने मॉडल मुस्कान को मार डाला। इमरान ने मुस्कान को क्यों मारा? क्या ये लव जिहाद का मामला है? मुस्कान की हत्या करके कहां भागा इमरान? देश की राजधानी दिल्ली में 21 साल की एक मॉडल की हत्या हो गई है। वो लड़की अपने घर पर अकेली थी, दिल्ली में मॉडलिंग करती थी, लेकिन बुधवार की शाम अचानक एक शख्स चाकू लेकर उसके घर में घुसा और इसके बाद चाकू से इतने वार किए कि मुस्कान की मौत हो गई। ये शख्स कोई और नहीं, मुस्कान का पूर्व जिम ट्रेनर इमरान था। मुस्कान तिलक नगर के एक जिम में मेंबर थी, वहीं पर उसकी मुलाकात इमरान से हुई। इमरान फिटनेस ट्रेनर के तौर पर जिम में नौकरी करता था, लेकिन बाद में उसे नौकरी से निकाल दिया गया। जबकि मुस्कान ने 6 महीने की मेंबरशिप ले रखी थी, तो जैसे ही उसकी मेंबरशिप खत्म हुई तो मुस्कान ने भी जिम जाना छोड़ दिया। मुस्कान ने तिलक नगर के इसी 7 जोन जिम की सदस्यता ले रखी थी। इमरान भी यहीं पर ट्रेनर था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इमरान ने मुस्कान की हत्या कर दी? जिम की मालकिन ने बताया कि दोनों का व्यवहार अच्छा था। इमरान टाइम पर ड्यूटी नहीं आता था, इसीलिए उसे निकाल दिया गया और मुस्कान ने मेंबरशिप रिन्यू नहीं करवाई। एक बात तो साफ है कि मुस्कान और इमरान एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हत्या किन वजह से हुई ये साफ नहीं हो पाया। मुस्कान अपनी 2 बहनों और एक भाई के साथ तिलक नगर में रहती थी, लेकिन घटना के वक्त वो घर पर अकेली थी। उसकी बहनें चंडीगढ़ गई हुई थी। पड़ोसी बताते हैं कि घर के एंट्रेंस का मेन गेट हमेशा बंद रहता है, कोई अंदर से आकर खोलता है तभी बाहर का व्यक्ति अंदर जा सकता है। क्या मुस्कान ने खुद मेन गेट खोला था? क्या मुस्कान और इमरान में कोई विवाद था जिसे सुलझाने के लिए उसने ही इमरान को बुलाया और फिर बात इतनी बढ़ गई कि इमरान ने हत्या कर दी? मुस्कान को चाकू मारने के बाद इमरान बड़ी तेजी से भागता गली से निकलता हुआ दिखा था।
1: आखिरी वजह क्या है ये अभी तक दिल्ली पुलिस को पता नहीं लग पाया है। इमरान जिसको मेन अक्यूज बताया जा रहा है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है, उसको अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं ले पाई है। अब ये देखना होगा कि कितनी जल्दी पुलिस जो भी अक्यूज है, चाहे वो इमरान हो जिसका नाम अभी सामने आ रहा है या उसके अलावा भी अगर कोई और हो, तो कितनी जल्दी उसे अपने गिरफ्त में लेती है ताकि ये पता लग पाए कि आखिर वो कौन सी वजहें थी जिसके वजह से मुस्कान जो कि अपने घर के अंदर थी उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
0: अंशुल सिंह, दिल्ली आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: ओह सॉरी।

क्या चीन ही नेपाल में तबाही का जिम्मेदार है? क्या चीन ने नेपाल को समय रहते अलर्ट नहीं किया? क्या ग्लेशियर से आपदा पर झूठ बोल रहा चीन? जिनपिंग की जिद क्या नेपाल में फिर तबाही मचाएगी? सबसे पहले नेपाल में चीन के प्रवक्ता की ओर से जारी पोस्ट पर गौर कीजिए। चीन कह रहा है कि समय पर नेपाल को वार्निंग ना देने के कारण नेपाल में बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने की बात फेक न्यूज है। चीन ने उसके नीचे इस खबर को भी फेक न्यूज बता दिया कि चीन के हिस्से में बने मलबे के बांध के ध्वस्त होने से नेपाल में भारी तबाही मची। तो चीन के हिसाब से सच क्या है? उसके हिसाब से सच ये है कि भूकंप या ग्लेशियर के ढहने से भूकंप नेपाल के हिस्से में आया, जिससे इतने लोग मारे गए और तबाही बची। चीन जिसे फेक न्यूज बता रहा है वो सही खबर है, और जिसे वो सच बता रहा है वो सफेद झूठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी यानी प्लैनेट लैब्स की तस्वीरें और स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने साफ दिखाया है कि मलबे का मुख्य बहाव तिब्बत के अंदर लिंडे नदी के ब्लॉक होने से शुरू हुआ था। अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के विश्लेषण से भी साबित हो चुका है कि मुख्य घटना तिब्बत के हिस्से में हुई थी। वहीं पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटने के बाद मलबे ने लिंडे नदी का रास्ता रोका था। यहां कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं आया था, बल्कि ग्लेशियर गिरने की ताकत से ही भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड हुए थे। इस वजह से ही नेपाल के पत्रकार चीन पर सही समय पर चेतावनी न देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर चीन पर नेपाली पत्रकारों को भरोसा क्यों नहीं? नेपाल के कई पत्रकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने तिब्बत सीमा पर पहाड़ों को काटकर और नदियों का रुख बदलकर जो शाओकान स्मार्ट विलेज बनाया है, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। निर्माण कार्यों के कारण ही अब हर साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन और विनाशकारी बाढ़ आ रही है। यही नहीं, नेपाल के जल विज्ञानी और अधिकारियों का लंबे समय से आरोप रहा है कि चीन सीमा पार की नदियों के जल स्तर और बारिश का रियल टाइम डेटा साझा करने में हमेशा हिचकिचाता है। आरोपों को चीनी मूल के स्वतंत्र लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शिनयांग यांग ने अपनी पोस्ट से मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR की 60वीं वर्षगांठ के जश्न के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यादोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हर हाल में आगे बढ़ाने की जिद कर रहे हैं। यांग का दावा है कि ये प्रोजेक्ट उसी इलाके में है जहां वो जीरोंग पोर्ट है जो तबाही में तिनके की तरह उड़ गया। शियांग कहते हैं कि चीनी इंजीनियर चाहे कितनी भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर ले, प्रकृति के प्रकोप के आगे सब बेकार है। नंगा पर्वत ब्लॉक के पास थोड़ी सी भी हलचल पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पल भर में तबाह कर देगी। उनका आरोप है कि अपनी राजनीतिक जिद और महत्वाकांक्षा के चक्कर में जिनपिंग जानबूझकर एक और बड़ी तबाही को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि जिनपिंग बार बार कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं रखते। शियांग के मुताबिक असल में ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल। त्रासदी में अब तक 390 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि। रसुआ से लेकर चितवन तक भयंकर तबाही। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। भारत से मदद की पहुंची खेप।

0: बीजेपी रोजगार शिक्षा महंगाई पर असंतोष। सर्वे में पीएम मोदी की नीतियों पर दिखा भारत का भरोसा। एसआईआर यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन पर देशवासियों का समर्थन, लेकिन परीक्षा सिस्टम पर जेनजी को पूरा भरोसा नहीं। कोलकाता में टीएमसी के ममता गुट और पुलिस में जबरदस्त झड़प। सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में होर्डिंग हटाने पहुंची टीम से धक्का मुक्की। अभिषेक ने कहा सियासी बदला। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग सरकार ने मानी। अब तक एक चरण में ही होगी टीआरई चार की परीक्षा। पटना में कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन खत्म।
1: I'm going to go to the

0: बज चुके हैं और अब इस वक्त भी नेपाल में बाढ़ से मची तबाही के बाद लोगों को बचाने का काम वहां चल रहा है। दिन रात नेपाल की सेना मौत के मलबे से जिंदगी की तलाश कर रही है। नेपाल में भीषण बाढ़ के चलते मरने वालों का आंकड़ा अब 390 के पार भी पहुंच गया है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है। इनमें 290 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। नेपाल के पीएम बालन शाह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और हालात को गंभीर बताया है। वहीं नेपाल में फिर से बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं नेपाल में और एक बार फिर से नेपाल में खतरा मंडरा रहा है बाढ़ का। नेपाल में फिर से बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल आपदा में अब तक कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। 290 भारतीय पर्यटक शामिल हैं जो अभी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। तो वही नेपाल फ्लैश फ्लड का एक नया वीडियो सामने आया। तस्वीर देखकर वहां आए प्रलय रूपी सैलाब का आप अंदाजा साफ तौर पर लगा सकते हैं। भारी भरकम पत्थर पानी में लुढ़कते हुए करीब 50 मील तक बहता हुआ तारुका गांव में देखा गया। जिस जगह से फ्लैश फ्लड ट्रिगर हुआ है वहां ये विशालकाय चट्टान का टुकड़ा गेंद की तरह लुढ़कते हुए नीचे बहते नजर आया। ये नया वीडियो नेपाल त्रासदी का जारी कर दिया गया है। किस तरीके से ये जो पत्थर है, भारी भरकम पत्थर, लुढ़कते हुए करीब 50 मील तक बहता हुआ तारुका गांव में देखा गया है। देखिए कैसे लोग वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल त्रासदी का ये नया वीडियो आप देख रहे हैं। तो नेपाल फ्लैश फ्लड की वजह से त्रिशूली हाइड्रो पावर के जो टनल है उसमें भी रेस्क्यू किया गया। वहां पर फंसे 350 मजदूरों और कर्मचारियों को नेपाली सेना की टीम ने रेस्क्यू किया। इस हाइड्रो पावर में कई भारतीय मजदूर भी काम कर रहे थे। नेपाली सेना ने टनल में फंसे हुए सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया है और लगातार फंसे हुए जिंदगी को बचाने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: नेपाल की धरती पर पानी ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते नदियां तबाही की धार बन गई। रसुआ में भोटेकोशी नदी ने ऐसा रौद्र रूप लिया कि मौत का आंकड़ा 392 तक पहुंच गया, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है, क्योंकि लापता लोगों में 290 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। हालात इतने खराब हैं कि करीब 1500 लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है और इनकी तलाश जारी है। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि लापता लोगों में 290 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। मरने वाले 392 लोगों में से 389 की मौत नेपाल में हुई, जबकि 3 लोगों की मौत तिब्बत में हुई। सबसे बड़ी चिंता अब भी लापता लोगों को लेकर है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक भोटेकोशी में आई बाढ़ के बाद से 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इनकी तलाश के लिए नेपाल में राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं राहत की एक बड़ी खबर रसुआ जिले से आई है, जहां त्रिशूली हाइड्रोपावर की टनल में फंसे करीब 350 मजदूरों और कर्मचारियों को नेपाली सेना की टीम ने रेस्क्यू कर लिया। इस परियोजना में कई भारतीय मजदूर भी काम कर रहे थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रसुआ जिले में त्रिशूली वन परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीय श्रमिकों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल गए थे। विदेश मंत्रालय की ओर से रेस्क्यू किए गए 63 भारतीयों की सूची भी जारी की गई है, लेकिन दूसरी तरफ कई भारतीयों के परिवार अब भी अपने परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में पर्यटकों के नेपाल में फंसे होने की आशंका है। महाराष्ट्र आपदा प्रबंधन विभाग और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक कम से कम 114 पर्यटकों के वहां फंसे होने की जानकारी सामने आई है। इनमें से 53 पर्यटकों के सागा मानसरोवर क्षेत्र में सुरक्षित होने की पुष्टि हो चुकी है। बताया गया है कि करीब 61 लोग ट्रैवल एजेंसी के जरिए यात्रा पर गए थे, जबकि बाकी लोग व्यक्तिगत रूप से नेपाल पहुंचे थे। लेकिन नेपाल में खतरा अभी टला नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से सामने आया है कि रसुवा घड़ी सीमा से करीब 18 किलोमीटर ऊपर लेंडे नदी का बहाव पूरी तरह रुक गया है। नदी के रास्ते में आई इस रुकावट के कारण एक अस्थायी झील बन गई है। सबसे बड़ा खतरा अब इस प्राकृतिक झील को लेकर है। अगर इसका अस्थायी बांध टूटा तो नीचे की ओर बसे इलाकों में अचानक और भीषण बाढ़ आ सकती है। यानी नेपाल में एक तरफ राहत और बचाव का अभियान जारी है तो दूसरी तरफ नई बाढ़ का खतरा प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग अब भी लापता हैं और बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा। सबकी नजर अब राहत बचाव अभियान और उस अस्थायी झील पर टिकी है जिसके टूटने की स्थिति में निचले इलाकों के लिए खतरा और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: तो चीन नेपाल सीमा पर भीषण बाढ़ की तबाही के बीच अब एक और बड़े खतरे की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल नेपाल सीमा के पास युरोंग से करीब 18 किलोमीटर ऊपर मलबे के कारण एक बैरियर झील बन गई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक झील में करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 72 घंटे में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी पहुंच सकता है। तो ऐसे में झील टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन ने इलाके में सेना, बचाव दल और इंजीनियरिंग टीमें तैनात कर दी हैं और हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 18 किलोमीटर दूर तिब्बत में फिर से ये झील देखी गई है। चीन ने नेपाल को एक और बार बाढ़ को लेकर चेता दिया है। हमारे सहयोगी काठमांडू से पंकज दास हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, क्या अपडेट है, कितना खतरा अब नेपाल में एक और बार बाढ़ को लेकर जताया गया है चीन के द्वारा?
2: अभी जब से चाइना की तरफ से ऑफिशियली कल नेपाल गवर्नमेंट को इस बात की जानकारी दी गई कि अगले 3 दिनों तक जो है खतरा टला नहीं है और जो नेपाल में फिर से एक बार उसी तरह का कहर हो सकता है, तब से नेपाल सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और जिन रास्तों से वो नदियां घोटे कोसी, त्रिशूली, नारायणी नदी बहती है जहां पे पानी आने की संभावना है, उन पूरे तटीय इलाकों को खाली करवा लिया गया है और एहतियात के तौर पर जो है सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। जो रास्ते हाईवे हैं उन नदियों के किनारे, वहां से उन रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, किसी भी वाहन को वहां चलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन प्रधानमंत्री जो कल खुद नुआकोट होकर आए, जो एक एफेक्टेड एरिया है, वहां से जब वो आए रात को काठमांडू, तो उन्होंने अपने फेसबुक में लिखा कि स्थिति अभी काफी चुनौतीपूर्ण है, स्थिति काफी गंभीर होने की संभावना है और आने वाले दिनों में हम सभी को बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। वहीं नेपाल में एक और नई झील फटने की तैयारी है और अगले 72 घंटे बेहद ही नाजुक बताए जा रहे हैं। जी हां, नेपाल में एक नई बैरियर झील का निर्माण हुआ है जो कभी भी फट सकती है। अगर ये झील फटती है तो नेपाल को एक बार फिर से जल प्रलय का सामना करना पड़ सकता है।
1: तिब्बत से विनाश लीला ने जो तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है कि नेपाल को तहस नहस करके रख दिया है। लेकिन नेपाल पर अभी खतरा कम नहीं हुआ है। नेपाल में भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ के बीच एक और बैरियर झील का निर्माण हुआ है। चीन ने चेतावनी दी है कि इस झील से पहले से ही पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने पर यह टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चाइना सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाल में छोचेन खोला और पूरे पुत्सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील बनी है। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और बांध टूटने की स्थिति में संभावित परिणामों का आकलन करने और आपातकालीन बचाव कार्यों में सहायता के लिए तैयारी कर रहे हैं। चौचेन और पुरपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है। ये चेतावनी नेपाल चीन सीमा से लगे क्षेत्रों में अचानक और भीषण बाढ़ आने के एक दिन बाद आई है। इस विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। नेपाल में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऐसे में नई झील के निर्माण ने नेपाल की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके टूटने से अचानक पानी का तेज बहाव नीचे की ओर आ सकता है, जिससे नदी के किनारे बसे लोगों और बुनियादी ढांचों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। आज तक ब्यूरो।
0: विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे नेपाल को एक बार फिर से झटका लगा है। गुरुवार देर रात नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 बताई गई है और इसके विभिन्न हिस्सों में ये झटके महसूस किए गए। तो भूकंप के झटके बहुत ज्यादा तेज नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में काफी ज्यादा दहशत भर गई है। अभी भयंकर बाढ़ की त्रासदी से नेपाल जूझ रहे हैं और ऐसे में ही इसी बीच एक नई आपदा की आहट ने लोगों को डरा दिया है और ऐसे में भूकंप के झटके नेपाल में देर रात महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई है। इसके बाद लोग काफी ज्यादा डर गए। एक तरफ बाढ़ का कहर और उसके बाद भूकंप के झटके, और वहीं दूसरी तरफ नेपाल में एक बार फिर से एक बड़ी आपदा की आहट ने लोगों को डरा दिया है।

और इस वक्त की एक बड़ी खबर, नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है। 469 तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। लगातार कई लोग वहां पर लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। ऐसे में नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है, 469 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। लोगों की तलाश वहां पर की जा रही है, लेकिन अब इसी बीच 469 लोग जिनकी मौत हो चुकी है और 1500 से ज्यादा लोग जो लापता है, लापता लोगों की तलाश वहां पर अभी भी की जा रही है। बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है नेपाल के आपदा प्रभावित इलाकों में। ऐसे में अब ये आंकड़ा मरने वालों की संख्या का एक बार फिर से बढ़ चुका है और उम्मीद पहले से ही ये की जा रही थी। जिस तरीके की ये तबाही आई है नेपाल में, मरने वालों की संख्या बढ़ी।

0: है, एक बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चल रहा है और जो तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही हैं उससे साफ तौर पर समझ आता है कि कितनी बड़ी तबाही थी जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गई है। कई इलाके उससे प्रभावित हुए जहां पर अब फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा वहां नजर आ रहा है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रोहित सिंह जुड़ गया है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। रोहित, देखिए मरने वालों का आंकड़ा अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अभी नेपाल में कहां कहां अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि एक और खतरा नेपाल में मंडरा रहा है। रोहित,
1: बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से चीन ने एक बार फिर से जो है अलर्ट जारी किया है कि जिस तरीके की घटना दो दिन पहले नेपाल में तिब्बत के सीमा पर हुई थी वैसी घटना एक बार फिर से हो सकती है और इसको लेकर जो है एक अलर्ट जारी किया गया है और इससे पूरे नेपाल में एक बार फिर से उसी प्रकार की आपदा का, उसी तरीके की त्रासदी का जो है कह सकते हैं अलर्ट जारी किया गया है और शंका भी बढ़ी हुई है। लेकिन जहां तक अगर हम मौत के आंकड़े की बात करें तो देखिए मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है, 469 तक जो है ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और ये मौत का आंकड़ा देखिए इस बात की आशंका है कि और ज़्यादा बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी तकरीबन 500 से ज़्यादा जो विदेशी नागरिक है खासकर वो अभी भी लापता है जिसमें से तकरीबन 170
0: नई चेतावनी जारी की गई है नेपाल को लेकर। क्या इसका असर बिहार में भी पड़ सकता है, बिहार में भी कहीं पर अलर्ट जारी किया गया है?
1: बिल्कुल, देखिए चाइना ने जो अलर्ट जारी किया है और अगर इस तरीके की त्रासदी आपदा एक बार फिर से आती है तो आप समझिए जो जिस तरीके का अगर आप ज्योग्राफिक कंडीशंस है नेपाल और बिहार का, तमाम वो जो पानी जो अगर वो नेपाल से आता है या तिब्बत से आता है वो तमाम पानी आखिरकार वो बिहार में ही प्रवेश करेगा अंततः। हमने कल भी देखा कितनी लाशें जो है वो पानी में तैर के बिहार के तरफ जो है वो पहुंच रही थी, हालांकि उसको रास्ते में ही जो APF नेपाल की आर्म्ड पुलिस फोर्स है उनके गोताखोरों ने उन बॉडीज़ को जो है वो पानी से निकाला और उनको अस्पताल जो है वो ले जाया गया। तो वो तमाम पानी जो है वो आना बिहार में ही है और UP में ही आना है, 90% बिहार में ही आना है। तो जाहिर सी बात है अभी भी राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और ये चीन की जो नई चेतावनी आई है इसने वाकई नेपाल के साथ साथ बिहार के लिए भी जो है वो चिंता बढ़ा दी है। पूजा,
0: चलिए ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 469 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है, अभी आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ गया है और ऐसे में ये खतरा सिर्फ नेपाल में ही नहीं बिहार तक पहुंच चुका है और नई चेतावनी जारी की गई है नेपाल को लेकर। अब देखिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो वहां पर चलाया जा रहा है, हालात तो बेहद ही खराब हैं, काफी दिक्कतों का सामना रेस्क्यू में करना पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह पर ढेरों मलबा नजर आ रहा है। जो पानी इतना तेज आया जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया वहां पर सिर्फ अब मलबा ही नजर आ रहा है और ऐसे में अब एक नई चेतावनी लोगों को डरा रही है नेपाल में, लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है एक नई आपदा की आहट को लेकर। और अभी भयंकर बाढ़ की त्रासदी से नेपाल जूझ रहा था, वहीं एक तरफ भूकंप के झटके भी कल देर रात नेपाल में महसूस किए गए।
2: आज तक इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं आगे रुसवा जाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं लेकिन बंद रास्तों के चलते मुश्किलें काफी ज्यादा है। नुआकोट के आगे त्रिशूली की तस्वीरें मैं दिखाई लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे चीन नेपाल में आई इस आपदा के लिए दोषी साबित हो गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर तैयार होता तो संभवतः इस खतरे को टाला जा सकता था, समय रहते उसने अपने ग्लेशियर में होने वाले उस बदलाव की जानकारी नेपाल को नहीं दी। दरअसल मेरे पीछे जो पहाड़ियां आपको देख रही हैं ये रुसवा का इलाका है, ये बर्फीली पहाड़ियां और इसी के बाद ये लिंगोर रेंज है और ये रुसवा जिले में आता है। अब इन्हीं पहाड़ियों के पीछे दरअसल जो आप रेंज देख रहे हैं यहां से तिब्बत की शुरुआत होती है, ये चीन और नेपाल की सीमा है और इसी के ठीक पीछे तिब्बत की सीमा जो है शुरू होती है और इन्हीं इलाकों में इन पहाड़ी ग्लेशियर्स को आप जब देख रहे हैं इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच में दरअसल बोल शेप लेक फॉर्मेशन इसे कहा जाता है लेक फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन अगर वहां बदलाव के चलते एक बड़ा टुकड़ा या तो आइस रॉक एवलॉन्च या फिर एक बड़ा टुकड़ा गिर करके उन नदियों में जाता है जिसके वो तालाब जो जलाशय हैं वो उन पर दबाव पड़ता है टूट जाते हैं, लेकिन वो तब क्योंकि चीन की सैटेलाइट लगातार इन इलाकों पर नजर रखती है, समय रहते अगर वो ये जानकारी दे पाते तो जो पानी नीचे रफ्तार में आया उसके पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम अलार्म बजाया जा सकता था ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये रेंज दरअसल हम इसीलिए इसको आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये बिल्कुल जो बेहद फ्रेजाइल सिस्मिक रूप से बहुत एक्टिविटी हिमालय है और जिस ऊंचाई से पानी की रफ्तार आप सोचिए कि आई होगी

0: वो अपने साथ इतनी तबाही कैसे लेकर के आएगी, इतना सारा मलबा, इतना सारा पानी उन इलाकों से बचते हुए। तो बिल्कुल इसी तरह के ग्लेशियर फॉर्मेशन है और ये ऐसे ही वो टेरेन है जहां से जो पानी है ढेर सारा मलबा लेके वो नीचे आया। पहले वो जो बॉर्डर पोस्ट है चीन और नेपाल की उसको ध्वस्त करता गया और उसके बाद आगे त्रिशूली जो बैराज है उसको तोड़ता हुआ गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया और उसके बाद त्रिशूली शहर के साथ नुआकोट और इस तरह भयानक त्रासदी लेकर के आया है। ग्राउंड जीरो पर मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: तो आप सुन रहे थे आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा का। उन्होंने बताया कि कितनी तबाही नेपाल में मची है और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कितने युद्ध स्तर पर चल रहा है, हेलीकॉप्टर से वहां पर लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सब कुछ तबाह हो चुका है, ना घर बचे हैं, ना कोई दुकान ना मकान बचा है। जो लोग वहां पर बचे हुए हैं जो उनको लगातार वहां से ढूंढ निकाल कर वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। तो जगह जगह पर हमारी टीम पहुंची हुई है और एक एक अपडेट लगातार हम आपको इस त्रासदी से जुड़ी दे रहे हैं। तो नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद सेना, सशस्त्र पुलिस और जेसीबी मशीनों की मदद से राहत और बचाव अभियान जारी है। संकट की इस स्थिति में भारत ने भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर और C-130J हरक्यूलिस विमानों के माध्यम से 50 टन से अधिक राहत सामग्री नेपाल में भेजी है, जिसमें मेडिकल किट, टेंट और राशन शामिल है।
2: बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। भारत ने नेपाल में अब तक लगभग 50 टन राहत सामग्री भेजी है। पहली खेप भारत ने 26 अगस्त को C-130J हरक्यूलिस विमान के जरिए 10 टन मानवीय सहायता और आवश्यक दवाएं नेपाल भेजी थी, जो काठमांडू पहुँच चुकी है। दूसरी खेप गुरुवार को C-17 ग्लोबमास्टर विमान के जरिए नेपाल भेजी है, जिसमें लगभग 37 टन और राहत सामग्री शामिल है।
3: इस वक्त मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुँच चुकी है। अब यहाँ पे जो है भारतीय राजदूत भी मौजूद है, जो इन राहत सामग्री को नेपाल सरकार को आधिकारिक रूप से वो हैंड ओवर करेंगे। कल पहला खेप जो है 10 टन का सबसे पहले नेपाल ने जो भारत की तरफ से नेपाल में भेजा गया, नेपाल में आई त्रासदी के बाद सबसे पहले सहयोग का हाथ जो है भारत ने बढ़ाया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया है और दोनों देशों की टीमें राहत कार्यों में समन्वय कर रही हैं। लोगों को बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में नेपाली सेना को बड़ी कामयाबी भी मिली है। रसुवा के टिमुरे से 116 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें 95 नेपाली और 21 भारतीय नागरिक शामिल हैं। यानी जिन लोगों का कल तक कोई पता नहीं था, आज वो सुरक्षित जगह पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि रसुवा के हाकू में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में 7 लोग फंस गए थे। बाहर मलबा था, पानी था, रास्ते बंद थे, लेकिन सेना की टीमों ने सुरंग में पहुंचकर 7 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया है। अब भी 3 दूसरी सुरंगों में फंसे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। यानी हर सुरंग, हर मलबे का ढेर रेस्क्यू टीमों के लिए जिंदगी की तलाश का एक नया मोर्चा है। नेपाली सेना और सुरक्षा एजेंसियां दिन रात ऑपरेशन जिंदगी में जुटी हैं और भारत राहत और बचाव के इस अभियान में नेपाल के साथ खड़ा है। आज तक ब्यूरो।
1: चलिए सुपर 8 में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: एक तो एक ए श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का। और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना। ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: Your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
5: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
2: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार अटूट भरोसा।
7: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
8: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
9: लायन डेट नट बाइट्स।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Honey, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बाय एकदम सॉलिड.

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल त्रासदी में फिर से बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 469 से ज्यादा लोगों की गई जान, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी रेस्क्यू, भारत से पहुंची मदद की खेप। नेपाल में फिर से जल विस्फोट की वार्निंग, कभी भी फट सकती है एक और उफंती झील, कुछ दिन बारिश हुई तो दोबारा आ सकता है ऐसा जानलेवा सैलाब, चीन ने जारी की खतरनाक चेतावनी। जेंजी आंदोलन के बावजूद आज तक से वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी, रोजगार, शिक्षा, महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। कोलकाता में टीएमसी के ममता गुट और पुलिस में जबरदस्त झड़प, सांसद अभिषेक बनर्जी के दफ्तर में होर्डिंग हटाने पहुंची टीम से धक्का मुक्की, अभिषेक ने कहा सियासी बदला। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग, सरकार ने मानी, अब एक चरण में ही होगी टीआरई 4 की परीक्षा, पटना में कई दिनों से जारी धरना प्रदर्शन खत्म।

0: सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, नेपाल के त्रिशूली से जो आ रही है। त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया। सुरंग के अंदर भारतीय नागरिक भी फंसे थे। ये लोग यहां पर मजदूरी कर रहे थे और सुरंग का प्रवेश द्वार मलबे से भर गया है, उसमें से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यह तस्वीर आप देखिए, एक नया वीडियो जारी किया गया है त्रिशूली सुरंग के अंदर लोगों के फंसे होने का। त्रिशूली सुरंग में भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े स्तर पर और उसमें से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे में जो 1500 से ज्यादा लोग पूरे नेपाल में फंसे हुए हैं इस त्रासदी के बाद, त्रिशूली सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो भारतीय नागरिक हैं और उनको वहां से लगातार बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नया वीडियो जारी किया गया है, ये तस्वीर आप देखिए, त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट सुरंग के दौरान का ये वीडियो। सुरंग का प्रवेश द्वार मलबे से पूरी तरह से भर गया है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के सुरंग के अंदर रेस्क्यू का ये नया वीडियो सामने आया है और देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। ये नया वीडियो त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट का आप देख रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोग अभी भी पूरे त्रासदी में लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों की वहां पर तलाश की जा रही है, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पावर प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से वहां खराब हो गया, जहां पर लोग मजदूर वहां फंसे हुए थे वो भारतीय हैं, उनको बचाया जा रहा है। तो नेपाल में आज तक की टीम मौजूद है, वहां की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रसुआ, नुवाकोट, त्रिशूली, ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे अधिक तबाही हुई। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट देखिए।
1: सबसे पहले आपको आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के साथ हम नेपाल के धादिंग की तरफ ले चलते हैं, जहां त्रिशूली नदी जब बुधवार को सब कुछ बहाने लगी तो लोग रोते बिलखते किसी तरह बचते हुए भागते दिखे, अपनों को तलाशते दिखे। जहां नेपाली सेना लोगों को एक एक करके तबाही के मलबे के बीच से निकालने में जुटी हुई है, जहां त्रिशूली नदी के बह जाने के बाद धादिंग इलाके में अब जो कुछ बचा है उसे समेटने में लोग जुटे हैं। वहीं आज तक संवाददाता श्वेता सिंह जब त्रिशूली नदी में आए सैलाब के गुजरने के बाद के हालात को रिपोर्ट करती हैं, तो मिट्टी के ऊपर नजर आता है एक हाथ का निशान। वो निशान जो बताता है कि जिंदगी यहाँ बचने को छटपटाई होगी, सैलाब के बाद कहीं से बचने की आस तो जगाई होगी। ये निशान देने वाला हाथ पता नहीं बचा या नहीं, लेकिन नेपाल में तबाही के निशान बहुत कुछ बताते हैं।
2: घरों का हाल देखिए आप, ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा। ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से। कुछ यहां पर जेसीबी हमें दिख रही है जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धस गया था इस मलबे में। रेत ही रेत, ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी। रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है। ये इनका घर भी है, अब घर और सड़क के बीच में पूरा दलदल आ गया है। घर में भी भर गया क्या भैया? घर में भी भर गया है पूरा, ऊपर तक आ गया था। उनके इशारों से हम समझते हैं वो दूर है, ना वो हम तक आ सकते हैं ना हम उन तक जा सकते हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर के हिस्से तक आया था वो मलबा।
1: मुश्किल से 3 लाख की आबादी वाले धादिंग के लोग याद करते हैं वो मंजर तो सहम जाते हैं।
2: कितना यहाँ पर घरों को नुकसान हुआ है अभी तक, क्या आप लोग ने आकलन किया है?
3: यो इन्सिडेन्टमा झन्डै 100 भन्दा बढी घरहरू नोक्सानी भएको छन् र त्यो घरभित्र गरिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू सबै ध्वस्त भएका छन्। यहाँ धेरै अब व्यावसायिक मान्छेहरूका ठूलो नोक्सानी पनि भएको छ र अब जे हिसाबले पूर्वदेखि बसोबास गरे उनीहरू बेघर बार भएका छन् र यो अकल्पनीय रूपमा जे खालको क्षति हामीले बेहोर्नु परेको छ योले हामीलाई असाध्यै पीड़ा पनि भएको छ।
1: 26 अगस्त की सुबह से पहले 1920 वर्ग किलोमीटर यानी दिल्ली से थोड़ा बड़ा जितना शहर धादिंग नेपाल का जो बसा रहा खुशहाली के साथ, जहां 26 अगस्त को आए विनाश के बाद अब खामोशी पसरी पड़ी।
2: सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन इस सड़क को माना जाता है, यहाँ पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबीज के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतनी फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धंसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है वहां की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक है, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका एक हिस्सा और अहम हिस्सा वो खुला रहे। देखिए जेसीबी के साथ इस मलबे को किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, एक तरफ कम से कम किया जाए ताकि सड़क यहाँ पर चल पाए। ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है। अब देखिए कि है बहुत मुश्किल, ये काम है बहुत मुश्किल काम, एक जेसीबी यहाँ पर लगी है क्योंकि पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है।
1: नेपाल में रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती तौर पर 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज और 50 किलोमीटर से ज्यादा की पक्की सड़कें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। आगे और विनाश का ब्यौरा जुटाया जा रहा है।
2: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूट कर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काट कर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कॉन्क्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेत।
0: नुवाकोट अब सिर्फ मलबे का ढेर है, मलबों में लोग अपनों को खोज रहे हैं, घर सुनसान पड़े हुए हैं, कई मकानों का तो नामोनिशान मिट गया है।
1: नेपाल में तबाही के ठीक बाद ऐसे वीडियो सुकून की सांस लेने देते हैं जहां जिंदगी बचती दिखती है। जिस नेपाल में हर घंटे बीतने के साथ मरने वालों की संख्या और शवों के मिलने का नंबर बढ़ता जा रहा है, वहां एक नागरिक भी बचता दिखता है तो लगता है ईश्वर ने रक्षा की। क्योंकि बुधवार को आए विनाश का एक भी वीडियो अब सामने आता है तो लगता है कोई नहीं बचा होगा, सब खत्म हो गया होगा। और तब आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा त्रिशूली नदी के दूसरे उस किनारे तक पहुंचते हैं जहां सबसे ज्यादा तबाही का असर दिखता है। जगह का नाम है नुवाकोट। ये नेपाल के उस शहर की खबर है जो एक पहाड़ी जिला है जो नेपाल के बागमती प्रांत में मौजूद है। 2,63,000 से ज्यादा आबादी वाला शहर जहां 7 मंजिला नुवाकोट महल मौजूद है जिसे राजा पृथ्वी नारायण शाह ने बनवाया। इसे 9 किलो का शहर भी कहा गया। यहाँ की अधिकांश आबादी हिंदू धर्म को मानती है और इसके बाद नुवाकोट में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे ज्यादा है। त्रिशूली नदी और तांडी नदी, जिसे सूर्यमती नदी भी कहा गया है, वो नुवाकोट की मुख्य नदियां हैं। लेकिन उसी नदी में आई बाढ़ ने ये हाल कर दिया। घरों में बाढ़ का पानी, मिट्टी, गाद, सब कुछ भरा हुआ है। लोग घर के भीतर से विनाश वाला मलबा निकालते दिखते हैं।
4: पूरा का पूरा शहर समझिए बंदर हो चुका है, कीचड़ में दब चुका है। तो जो इक्का दुक्का लोग हैं जिनकी मालमत्ता बची है वो इन पहाड़ों के रास्ते ऊपर के रास्ते से जा रहे हैं उस पार, ताकि जो है जरूरत का सामान है वो बचा सके, और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो इन रास्तों से आ रहे हैं। अभी देखिए जगह है, ये पूरा ट्रैक है, और यहाँ स्थानीय जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करने के लिए खड़े हैं, और ऐसे कुछ जा करके ये रास्ता होगा तब पार होगा। मुश्किल भरा समय है, इसीलिए जो यहाँ के नेपाली लोग हैं वही एक दूसरे की मदद के लिए सामने आए हुए हैं।
1: जहाँ चंद मकान बचे दिखते हैं बाकी मानो बह गए, कुछ खड़े सुनसान चारों तरफ गाद मिट्टी पत्थर फैला हुआ।
4: शहर के जिस हिस्से पर मैं आया हूँ एक रास्ता छोड़ करके देखिए, यहाँ पर कृषि विकास कार्यालय था नुआकोट का, पूरी की पूरी पहली और दूसरी मंजिल जो है इस समय मलबे में है। तो आप समझिए कि नदी जो उससे भी 50 मीटर पीछे है वो आगे आई, और उसकी धारा इतनी ऊंची थी कि उसने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। आगे लिए चलते हैं, देखिए मकान का पहला हिस्सा है, हम ऊंचाई पर हैं, और मलबा कहाँ तक आया था, जब पानी इसके साथ आया तो मलबा तो है यहाँ तक आ जाइए। देखिए ये ऊंचाई है, इससे आप समझ सकते हैं 60 से 70 फीट आया होगा, और उसके साथ प्रवाह में उसके मलबे में ताकत कितनी ज्यादा रही होगी कि उसके रास्ते में जो कुछ भी आया सब कुछ वो उसे बहा कर लेकर चला गया है। वो इतना ताकतवर ये सैलाब था कि आगे से लेकर यानी जिस ऊंचाई से वो नीचे आया, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, मलबे की ताकत, ये देखिए सब कुछ न सिर्फ उसने मलबे में तब्दील कर दिया बल्कि बर्बादी का वो मंजर लाया जो नेपाल में इन पहाड़ी इलाकों में रहने वाले शायद सालों तक कभी नहीं भूल पाएंगे। थे घर में जब ये हुआ, शुरू हुआ था,
5: यही ऊपर में था सर, हम सब यही ऊपर में था, यही एक तला ऊपर।
4: कितना मौका मिला था भागने के लिए यहाँ?
5: भागने के लिए तो वही 4-5 मिनट मात्र बचा था सर, हम सब यहाँ से भागने के लिए
6: बचे थे सर, सिर्फ 2 मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दह जाते सर। ऐसा भूकंप, ऐसा पानी आया ना कि हम लोग देख नहीं पाया, डर से इतना करेजा धक धक करने लगा कि बातें छोड़ दो।
4: सामान वामान तो सब चला गया,
5: सामान सब चला गया साहब, सामान एक भी नहीं है, सामान एक भी नहीं है साहब, सब पैसा चानी सब चला गया, पैसा कौड़ी सब चला गया,
4: खाना पीना
6: था, गाड़ी घोड़ा सब था, वो सब
4: चला गया, बर्बाद। यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही है, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंचा है, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
5: बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है, एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है।
4: सोचिए तबाही अपने साथ ऐसी बर्बादी लेकर के आई है कि सब कुछ जो बचत थी, जमा पूंजी थी और जो कुछ घर में था वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है। पानी का स्तर कम हुआ है लेकिन पानी अपने साथ इतना मलबा लेकर के आई है, ये कैसे कम होगा? ये जरा मलबे की तस्वीर में आपको फिर दिखाते हैं कि इस मलबे को कम करने में ये तो साफ ही नहीं हो सकता। एक पूरा का पूरा शहर मानिए जैसे मलबे में दब चुका है, जमींदोज हो चुका है, और इसके आगे दरअसल पैर रखना मेरे लिए भी इतना रिस्की है कि यहाँ जाना अपने आप पे बेहद जानलेवा है। लेकिन इसके साथ देखिए ये पूरा जो इलाका है ना, इसके नदी के किनारे, त्रिशूली के किनारे बना ये पूरा शहर अब बर्बाद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ मलबा दिखाई देता है।
0: नेपाल की आपदा में कई भारतीय परिवार उजड़ गए, सैकड़ों भारतीय लापता हैं, और अब भारत में उनके परिजन इस इंतजार में है कि कोई तो अच्छी खबर आए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं।
7: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए हैं, इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आकर नेपाल घूमने गए थे। ये दीक्षा चौरसिया है, इनके ताऊ का परिवार नेपाल के त्रिशूली बाजार में रहता था लेकिन परिवार लापता है। दीक्षा बताती है कि गुरुवार की सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ आने वाली है, इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया और फिर दोबारा संपर्क नहीं हो सका।
8: फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है, इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल जो कि मिल नहीं रहे हैं।
7: रसुआ के त्रिशूली बाजार में ऐसे ही ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, चौरसिया परिवार भी उन्हीं में से एक है। तबाही के बाद दीक्षा के ताऊ का तो पता चल गया कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन 54 साल की ताई और 18 साल का भाई लापता है। नेपाल के जल प्रलय में गुजरात के विमल पटेल भी लापता है। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जब आपदा आई तो विमल पटेल में अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उस तबाही के बाद विमल और उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला।
9: जो लापता हुए वो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, उसका नाम है विमल पटेल और उसकी वाइफ का नाम है जयमीना बेन पटेल। वो नेपाल गए हुए थे, वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका।
7: विमल पटेल मूल रूप से गुजरात के आनंद के रहने वाले थे, अमेरिका में रहकर नौकरी करते थे। 28 जुलाई को अमेरिका से अपने घर आनंद गए और फिर आनंद से प्लान बनाया कि नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाना है। कागजी कार्रवाई के लिए वो चीन के इमिग्रेशन दफ्तर गए थे, उस वक्त तक परिवार वालों के संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही आपदा आई सब कुछ खत्म हो गया। विमल पटेल अपनी पत्नी के साथ गए थे, अब दोनों लापता हैं। उनका एक बेटा भी है जिसे उन लोगों ने अपने बड़े भाई के साथ कर दिया था। गुजरात के 3 और लोग नेपाल में लापता हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा है।
10: स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार 3 यात्री मिसिंग है जो सूरत के बताए जाते, और जो हमें प्राप्त माहिती के अनुसार उसमें से 2 USA के निवासी है, 1 मुंबई के निवासी है। उनके किसी पहचान वाले गीताबेन ने ये सूचना दी है, उसके अनुसार ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हमें ये सूचना मिली है। जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों यात्री पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है।
7: नेपाल में कुदरत के कहर ने तबाही मचा दी है, सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग अब भी लापता हैं। इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता है, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
11: 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेत्रावेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब उधर से बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले हैं, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंदे हैं, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
7: नेपाल त्रासदी ने कई परिवारों को कभी खत्म होने वाले दर्द दिए हैं। इस आपदा में कई परिवार लापता हो गए जिनकी तलाश जारी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया तो कुछ ने ग्लेशियल झील के फटने का, लेकिन अब अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है। शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मोहर लगा दी क्योंकि ये चीन को सूट करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूएसजीएस के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीज़मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर दिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो।

0: कोई गले तक कीचड़ में फंसा था, कोई जान बचाने के लिए किसी जर्जर छत पर चढ़ा था, कहीं मलबे में मौत से दो दो हाथ करती जिंदगी फंसी थी। नेपाल तबाही की तस्वीरें रोंगटे खड़े करने देने वाली है। नुकसान कितना हुआ उसका आकलन जब होगा तब होगा, लेकिन अभी की जरूरत ये है कि अगर कहीं किसी के भी जिंदा बचे होने की संभावना है तो उस तक मदद पहुंचे। मुसीबत की इस घड़ी में नेपाल की सेना मानो देवदूत बनकर आई है। जितने भी संसाधन नेपाली सेना के पास है सब झोंक दिया है, मकसद सिर्फ इतना कि किसी की जिंदगी बच जाए। रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखिए, घुटने तक कीचड़ है। नेपाली सेना के जवान लाइन बनाकर खड़े हैं और एक डरे सहमे शख्स को अपनी पीठ पर लेकर ये जवान निकालने की कोशिश कर रहा है। ये लोग 26 अगस्त की आपदा से बच निकले वो भाग्यशाली है जिन्होंने मौत को सामने से चकमा दे दिया। एक और तस्वीर को देखिए, नीचे कीचड़ है, हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता। पहले एक रस्सी नीचे डाली, खुद नीचे उतरे और फिर एक रेस्क्यू कैरियर में शख्स को रख कर एयरलिफ्ट किया। इस सैलाब में न जाने कितने परिवार उजड़ गए, कितने घरों का नामो निशान मिट गया। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। नेपाली सेना ने एक नवजात बच्चे का रेस्क्यू किया, इसके परिवार के बाकी लोग कहां हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन बच्चा और माँ दोनों को सेना ने बचा लिया। इस त्रासदी से नेपाल में गांव के गांव समतल हो गए हैं। जो इलाके पहले गुलजार रहते थे वहां अब सिर्फ मलबा है। ये नेपाल के रुसा के बाजार की तस्वीरें हैं। तबाही के बाद का मंजर देखिए, इस आपदा में न जाने कितने घर उजड़ गए, कितने लोग लापता हो गए। पानी निकल जाने के बाद त्रिशूली में सिर्फ मलबा बचा है। इन घरों में रहने वाले कितने लोग बचे होंगे ये कहा नहीं जा सकता। फ्लैश फ्लड के बाद अब वहां सन्नाटा है। नेपाल में तबाही अचानक आई, जब तक लोग भाग पाते तब तक पानी सिर के ऊपर से निकल गया। तबाही की खबर लगते ही नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में हेलीकॉप्टर के अलावा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है प्रभावित लोगों तक तेजी से पहुंचने के लिए, हवाई मार्ग का ही विकल्प है। नेपाली सेना और वहां की एयरफोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस आपदा में सबसे बड़ी चुनौती लोगों को खोजना है, क्योंकि तबाही की वजह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्वस्त हो गया है। सैकड़ों लोग पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तबाही की वजह से कई इलाकों का परिवहन और संचार ढांचा भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 35 पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज बह गए हैं। नेशनल हाईवे का 40 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच बह गया। काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, नेपाल आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
3: In association with
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नेपाल त्रासदी में फिर बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 469 से ज्यादा लोगों की गई जान, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी है रेस्क्यू, भारत से पहुंची मदद की खेप। नेपाल फिर जल विस्फोट की वार्निंग, कभी भी फट सकती है एक और उफनती झील, कुछ दिन बारिश हुई तो दोबारा आ सकता है ऐसा जानलेवा सैलाब, चीन ने जारी की खतरनाक चेतावनी। जेन जी आंदोलन के बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी, रोजगार शिक्षा महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। आज रक्षाबंधन के मौके पर पश्चिम बंगाल के जाधवपुर यूनिवर्सिटी में सीएम शुभेंदु अधिकारी करेंगे वंदे मातरम का गान, एसएफआई और एबीवीपी में टकराव के बाद राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने की मुहिम। बिहार में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग सरकार ने मानी, अब एक चरण में होगी टीआरई 4 की परीक्षा, पटना में कई दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का, आपके साथ हूं मैं नेहा वातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, खबरें रफ्तार से विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। नेपाल की बात करेंगे प्रमुखता, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन का आज वहां तीसरा दिन है, सामने कई दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं, वहां की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे कैसे बन जा रहा है एक और बड़ा खतरा नेपाल पर, क्या है अपडेट, किस तरीके से चीन ने दी है चेतावनी। जिक्र भारत की चिंता का भी होगा, अब यूपी और बिहार में कैसे हालात, क्या अभी भी वहां पर है खतरा, यही आपको दिखाएंगे। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं नेपाल से आ रही खबर के साथ, जहां पर 26 अगस्त को हुई तबाही में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, अब बाढ़ की विभीषिका में मरने वालों की संख्या 469 हो चुकी है, यानी अब तक 469 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। आज सुबह 7 बजे तक का ये आंकड़ा है, नेपाल के 8 जिलों से ये मौत के आंकड़े आ चुके हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक अब तक सबसे ज्यादा मौत चितवन में 178 लोगों की हुई है, यहां पर सबसे ज्यादा शव बरामद हुए हैं, पूर्वी नवलपरासी में 110, गोरखा में 44, नोवाकोट में 37, धाडिड में 33, तनहू में 28, पश्चिमी नवलपरासी में 27 शव और रसुआ में 12 लोगों के शव मिलने की पुष्टि हुई। शहरवार आपको दिखाते हैं कहां कितने शव बरामद हुए, इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा 469 हो चुका है। कुछ तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली हैं, कैसे लोग जान बचाने के लिए तितर बितर भाग रहे थे लेकिन ऐसा हो ना सका, मलबे के नीचे वो दब गए। धाडिंग में 33 शव बरामद हुए हैं, तनहू में 28 हैं, पश्चिमी नवलपरासी में 27 और रसुआ में 12 शव बरामद हुए हैं, अब तक मौत का आंकड़ा 469 है। चितवन में 178 लोगों की मौत हुई है, पूर्वी नवलपरासी में भी मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, 460 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आपदा में। ये देखिए कैसे भीषण तरीके से इतनी स्पीड के साथ ये मलबा शहरों के भीतर दाखिल हुआ, और जब तक लोग समझ पाते और दौड़ पाते वो मौत के मुंह में समा चुके थे। और इस बीच बड़ी खबर रसुआ से, यहां पर टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू की मुहिम जारी है, नेपाल सेना के अधिकारी ने जानकारी दी है कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, फिलहाल 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जानकारी के मुताबिक टनल से अब तक 350 लोगों को बचा लिया गया है। नेपाली सेना की कोशिश है कि सुरंग में फंसे अन्य लोगों को भी आज किसी तरह से बचाया जा सके, क्योंकि इसके बाद जिंदगी की आस कम हो जाएगी जैसे जैसे वक्त बीतेगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन की आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरीके से टनल में फंसे हुए लोगों को निकाला गया, क्योंकि इसके अंदर भी मलबा आ गया था, कई ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी थे जहां पर लोग फंस गए थे। रसुआ टनल में अभी भी 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, और धीरे धीरे करके देखिए कैसे रस्सी के सहारे ये सेना के जवान वहां पर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि मलबा काफी ज्यादा है, इसमें चल पाना दरअसल संभव नहीं है, फिसलन है भारी और ऐसे में मुश्किलें ज्यादा हैं।

0: और कुछ तस्वीरें आपको नुवाकोट रसुवा की दिखा देते हैं। नेपाल चीन सीमा पर बर्फ से ढकी दिखने वाली चोटियों के पास से ये तस्वीरें आई हैं और ये 6 तस्वीरें तबाही की भयावह मंजर को बयां कर रही हैं। कैसे टनल में अभी भी लोग फंसे हुए हैं, 460 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। मरने वालों का और लापता लोगों का सही आंकड़ा किसी के लिए भी बता पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। कोई खेत में काम कर रहा था, कोई अपने घरों में था, और ऐसे में मलबे ने सबको अपनी चपेट में ले लिया। नुवाकोट रसुवा नेपाल चीन सीमा पर बर्फ से ढकी दिखने वाली चोटियों के पास से बताया जा रहा है कि कैसे GLOF यानी कि ग्लेशियर झील के फटने से नेपाल में तबाही आई।
1: आज तक इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। मैं आगे रसुवा जाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बंद रास्तों के चलते मुश्किलें काफी ज्यादा है। नुवाकोट के आगे त्रिशूली की तस्वीरें मैं दिखाई, लेकिन आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कैसे चीन नेपाल में आई इस आपदा के लिए दोषी साबित हो गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर तैयार होता तो संभवतः इस खतरे को टाला जा सकता था। समय रहते उसने अपने ग्लेशियर में होने वाले उस बदलाव की जानकारी नेपाल को नहीं दी। दरअसल मेरे पीछे जो पहाड़ियां आपको देख रही हैं, ये रसुवा का इलाका है, ये बर्फीली पहाड़ियां और इसी के बाद ये लिंगोर रेंज है और ये रसुवा जिले में आता है। अब इन्हीं पहाड़ियों के पीछे दरअसल जो आप रेंज देख रहे हैं, यहां से तिब्बत की शुरुआत होती है। ये चीन और नेपाल की सीमा है और इसी के ठीक पीछे तिब्बत की सीमा जो है शुरू होती है। और इन्हीं इलाकों में इन पहाड़ी ग्लेशियर्स को आप जब देख रहे हैं, इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच में दरअसल बोल शेप लेक फॉर्मेशन, इसे कहा जाता है, लेक फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन अगर वहां बदलाव के चलते एक बड़ा टुकड़ा या तो आइस रॉक एवलॉन्च या फिर एक बड़ा टुकड़ा गिर करके उन नदियों में जाता है, जिसके वो तालाब जो जलाशय हैं वो उन पर दबाव पड़ता है, टूट जाते हैं। लेकिन वो तब, क्योंकि चीन की सैटेलाइट लगातार इन इलाकों पर नजर रखती है, समय रहते अगर वो ये जानकारी दे पाते तो जो पानी नीचे रफ्तार में आया उसके पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम अलार्म बजाया जा सकता था, ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये रेंज दरअसल, हम इसीलिए इसको आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये बिल्कुल जो बेहद फ्रेजाइल सिस्मिक रूप से बहुत एक्टिविटी हिमालय है और जिस ऊंचाई से पानी की रफ्तार आप सोचिए कि आई होगी, वो अपने साथ इतनी तबाही कैसे लेकर के आएगी, इतना सारा मलबा इतना सारा पानी उन इलाकों से बचते हुए। तो बिल्कुल इसी तरह के ग्लेशियर फॉर्मेशन है और ये ऐसे ही वो टेरेन है जहां से जो पानी है ढेर सारा मलबा लेके वो नीचे आया। पहले वो जो बॉर्डर पोस्ट है चीन और नेपाल की उसको ध्वस्त करता गया और उसके बाद आगे त्रिशूली जो बैराज है उसको तोड़ता हुआ गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया और उसके बाद त्रिशूली शहर के आता नुवाकोट और इस तरह भयानक त्रासदी लेकर के आया है। ग्राउंड जीरो पर मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
0: और आशुतोष की तरह ग्राउंड जीरो पर हमारे तीन और संवाददाता मौजूद हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। श्वेता सिंह इस वक्त बेरेनी नेपाल में मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा त्रिशूली में उनकी मौजूदगी है, रोहित कुमार सिंह चितवन नेपाल में, वहीं पंकज दास काठमांडू में हैं जो बता रहे हैं और हम तक ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की और त्रासदी की। तो नेपाल में 26 अगस्त को हुई त्रासदी के बाद से 389 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, वहीं अब तक करीब 900 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रसुवा नुवाकोट और धादिंग में सबसे ज्यादा तबाही है, वहां से आ रही तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आपदा कितनी भीषण है। अब तक पूरी बर्बादी का आकलन भी नहीं हो पाया।

0: जहां जिंदगी गुलजार थी वहां अब सन्नाटा पसरा है। जहां बस्तियां बसी थीं, वहां अब वीरानगी है। नेपाल में हुई विनाश लीला की ऐसी तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। वहां कई इलाकों में बर्बादी का मंजर है। हालात ऐसे हैं कि इमारतों के एक या दो मंजिल कीचड़ में धंस चुके हैं। सड़कें गायब हो चुकी हैं, पुल टूट कर बिखर चुके हैं। नेपाल के नुवाकोट से आई ड्रोन की तस्वीरों में भारी तबाही देखी जा सकती है। ये तबाही तब हुई जब बर्फ, कीचड़ और चट्टाने पहाड़ी नदी में आफत बनकर टूटी। इस वजह से रसुआ और अन्य इलाकों में 26 अगस्त को फ्लैट फ्लड आ गया। इस महाविनाश का आज तीसरा दिन है। स्थिति इतनी गंभीर है कि प्रभावित इलाकों से अब तक फंसे हुए सभी लोगों को बाहर तक नहीं निकाला जा सकता। नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं। तबाह बस्तियों तक पहुंचकर जिंदगी की तलाश हो रही है। बड़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी भी सैकड़ों जिंदगियां ऐसे मलबे में फंसी हुई हैं। अब त्रिशूली के हाइड्रो पावर टनल की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ 350 श्रमिक और कर्मचारी फंसे हुए थे। इस हाइड्रो पावर में कई भारतीय मजदूर भी काम कर रहे थे, जिनके लापता होने की बात भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दिन पहले की थी। लेकिन उसी दिन इस टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेपाली सेना की टीम ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कई घंटे की मशक्कत के बाद नेपाली सेना ने इस टनल में फंसे सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। नेपाल में 26 अगस्त को जो तबाही हुई है, उसका गंभीर असर अब भी दिख रहा है। सबसे ज्यादा रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में तबाही हुई है। हेलीकॉप्टर से मुआयने के दौरान रिकॉर्ड की गई ये तस्वीरें नेपाल के हालात की गवाही दे रही हैं। बसें और कारें तबाह होकर बिखरी पड़ी, ऊंची ऊंची इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं। रेस्क्यू अभियान के दौरान नेपाल के प्रभावित इलाकों में फंसे लोग मदद का इंतजार करते दिखे।
1: So many our known people were, you know, missing. Like, you know, few agencies, staff, and there was even, you know, so many people who work in Nepal-China border. We know them. So many people are missing. Even tourists also. Since we are in tourism, so it's a huge loss for us.
0: अभी वहाँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग चल रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाई जा सके। बेरेनी से श्वेता सिंह, चितवन से रोहित कुमार सिंह और काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
2: पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस टनल की बात की जा रही है जहां पर 100 से ज्यादा लोग फंसे हो सकते हैं, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी तक कहां तक पहुंचे हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं?
3: कल जब नेपाली आर्मी ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, उसके बाद वहां का मौसम भी शाम को बिगड़ गया और अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। कल शाम तक 350 लोगों को वहां बचाया जा चुका था और कल ये पता लगा था कि शायद इससे ज्यादा लोग नहीं, लेकिन आज सुबह ही नेपाल आर्मी ने कहा कि करीब 100 लोग अभी भी अंदर टनल में मौजूद है, जिनको बचाने के लिए आज सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन नेपाल आर्मी ने फिर से शुरू कर दिया। तो उम्मीद है कि आज शाम तक इन 100 लोगों को वहां से बचा लिया जाएगा।
2: इसके अलावा मरने वालों का आंकड़ा जो अभी तक सामने आया है वो लगभग 600, 650 से ज्यादा है। सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के किस शहर में हुआ है, वहां पर किस तरीके से लोग अपनी जिंदगियां बचा नहीं सके और क्या वजह रही उसके पीछे?
3: सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रसुआ जिले को हुआ, उसके बाद नुवाकोट। ये दो जिले जो है ये सबसे ज्यादा नुकसान इन दो जिलों को हुआ है, जिसमें कई सारी बस्तियां, कई सारे गांव जो है बिल्कुल ही वहां साफ हो गए। कई सैटेलाइट तस्वीर अब जो सामने आ रही है उसे दिख रहा है कि पहले के हालात क्या थे और अभी के हालात क्या है। बिल्कुल कोई नामो निशान वहां घरों का बस्तियों का नहीं दिख रहा है। अचानक आए इस बाढ़ के कारण कोई अपनी जान बचा नहीं पाया। ये इतनी जल्दी में हुआ और इतनी तेजी से पानी का बहाव था। कल से हम ये बात लगातार बता रहे
2: जी,
3: हैं।
2: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब आपको दिखाते हैं कैसे वहां पर आपदा आई और रेस्क्यू ऑपरेशन रसुआ में चलाया गया, क्या वहां से अपडेट है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा, देखिए उनकी ये रिपोर्ट।
4: नेपाल पर अब एक और आपदा, एक और संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि चीन ने नेपाल को चेतावनी एडवाइजरी जारी की है कि एक बार फिर उसकी ऐसी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। दरअसल नेपाल कन्फ्लुएंस में चीन के पास से बनती हुई नदियों में एक बार फिर ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने रुसवा में देखा था। इस ग्लेशियर फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि 27 अगस्त की सुबह तक 2 मिलियन क्यूबिक अगर पानी जमा हुआ है और अगले 3 दिनों में यहां पर 3 मिलियन क्यूबिक पानी और जमा हो सकता था। तो जाहिर है पहाड़ की ऊंची चोटियों में जो बाउल बनेंगे, जो लेक बनेंगे, उस लेक की दीवारें टूट सकती हैं और वो पानी नीचे आ सकता है। इसके चलते नेपाल ने नदियों के किनारे अपने तमाम रहने वाले लोगों को आगाह कर दिया है, उन्हें कह दिया कि वो किनारे पर रहें। इस समय नेपाल हाई अलर्ट पर है, लेकिन अगले 3 दिनों के भीतर जो खतरा

0: 5 मिलियन क्यूबिक पानी अपने साथ मलबा लेकर के रफ्तार में आता है, तो ऐसी नदियों का जलस्तर इस कदर बढ़ जाएगा, इसके पास रहने वाले तमाम जो गांव हैं वो खतरे की जद में आ जाएंगे। और उसी में नदी अपनी धारा में बह रही है, लेकिन जब इस प्रवाह से ये पूरा मलबा नीचे आएगा तो अपनी धारा तोड़ते हुए न जाने कितने गांवों को अपनी चपेट में ले लेगी। अब ऐसे में नेपाल पर जो खतरा है, चीन के चेतावनी के बाद पूरे इलाके को अलर्ट कर दिया गया है। ग्राउंड जीरो से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं 26 अगस्त को नेपाल में आई तबाही की तस्वीर। वहां त्रिशूली बाजार में अफरा तफरी कैसे मची, लोग जान बचाने के लिए उधर उधर भागते हुए दिखाई दिए।
2: अगस्त को नेपाल में जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें अब आई। बुधवार को यह जिंदगी और मौत की जंग थी। जिस वक्त नेपाल में पहाड़ से सैलाब मौत बनकर दौड़ा, उस वक्त लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये भयावह तस्वीरें नेपाल के नुआकोट जिले के त्रिशूली बाजार की। काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये बाजार सबसे खौफनाक सैलाब की चपेट में आया। 26 अगस्त भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। लहरें बाजार को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थीं। लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागे जा रहे थे। जो जहां था, जिस भी स्थिति में था, वो बस भागे जा रहा था। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, हर कोई बेबस था। मार्केट से बड़ी संख्या में गाड़ियों में सवार लोग सुरक्षित इलाके की ओर जाने की कोशिश में जुटे थे। साइकिल सवार भी भागे जा रहे थे, तो दूसरी ओर तबाही मचाता सैलाब सब कुछ बर्बाद करके आगे बढ़ता जा रहा था। 26 अगस्त को आपदा के वक्त की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। त्रिशूली बाजार की हालत देखिए, सैलाब के साथ मलबा तेजी से बाजार में फैल गया। भारी भरकम सामान और बाइक बहते नजर आए। अब ये एक और तस्वीर देखिए। 26 अगस्त को तारुका इलाके में ऐसे हालात हो गए कि वजनदार पत्थर भी बेजान सा पड़ गया। बाढ़ की विभीषिका में बड़े बड़े पत्थर तैरते नजर आए। ये वीडियो नदी के उद्गम स्थल से 50 मील दूर तारुका गांव का है। कुदरत के इस क्रोध ने नेपाल को बड़ा सदमा दे दिया है। बेरैनी से श्वेता सिंह, चितवन से रोहित कुमार सिंह और काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
3: गाड़ी बाइक सब
1: नेपाल के धादिंग इलाके में मेरी सहयोगी श्वेता सिंह पहुंची। वहां पुल तबाह दिखाई दिए, हालात काफी गंभीर दिखे।
4: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूट कर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काट कर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
1: धादिंग में किस तरीके से तबाही मची है उसके आपने अवशेष देखे, और इसी तरीके से अन्य इलाकों में धादिंग के कहां पर क्या कुछ बिखरा हुआ सा है, जिंदगी कैसे तबाह हो चुकी है, श्वेता सिंह दिखा रही है।
4: सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन सड़क को माना जाता है, यहां पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबी के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतनी फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धंसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहां पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है वहां की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहां पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक है, वो सब यहां उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका एक हिस्सा और अहम हिस्सा वो खुला रहे। देखिए जेसीबी के साथ इस मलबे को किसी तरीके से यहां से हटा दिया जाए, एक तरफ कम से कम किया जाए,

0: ताकि सड़क यहां पर चल पाए। ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है। अब देखिए कि है बहुत मुश्किल, ये काम है बहुत मुश्किल काम। एक JCB यहां पर लगी है क्योंकि पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है। और इस एरिया में और कितनी JCB पलटी हुई ट्रक्स हैं वो भी आप देख लीजिए, यहां पर आपको दिख जाएगा, उसके पीछे एक पलटी हुई ट्रक आपको दिख जाएगी। मेरे पीछे जो घर है इन पर जो मलबे का जो पूरा का पूरा बवंडर आया होगा वो कहां तक ऊपर तक आ गया है वो देखिए, उसके निशान यहां बच गए हैं। यहां पर घर में कोई रह नहीं सकता है, वो सब निकलकर वहां से बाहर आए हैं। उस घर में ऊपर तक वो निशान आप देख रहे हैं, उसके बगल में ऊपर क्रैक्स भी देख रहे हैं और पूरा ऊपर की टीन की शेड तक पहुंच गया, सामने की तो दीवार ही ढह गई है। ये इसीलिए अथक प्रयास अभी चल रहे हैं, लोगों को ढूंढने की भी कोशिश चल रही है और साथ में इन इलाकों में राहत जल्द से जल्द आ पाए। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, बरेली, नेपाल आज तक।
1: सैटेलाइट तस्वीरों से नेपाल में हुए नुकसान की, अचानक आई बाढ़ की फ्लैश फ्लड में किस तरीके से कम 359 लोगों की जान गई है इसका पता चलता है। पहले की तस्वीर आप देखिए और अब की तस्वीर, जो अब की तस्वीर है उसमें आपको बड़ी संख्या में मलबा दिखाई देगा, त्रिशूली नदी का ये किनारा दिखाई देगा जिसमें हजार लोग लगभग लापता हो गए। 26 अगस्त की सुबह ग्लेशियर टूटने से चट्टान, बर्फ, कीचड़ और मलबा सब कुछ एक साथ एक विशाल सैलाब की तरह हिमालय की नदियों में बहने लगा। इसने काठमांडू को तिब्बत के लासा से जोड़ने वाले उस रास्तों पर गांव और जरूरी बुनियादी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया जहां ट्रेकर्स और तीर्थयात्रियों की भीड़ रहती है। लापता लोगों में कम 540 विदेशी हैं। पानी और मलबे की भारी मात्रा से अब एक और आपदा का खतरा पैदा हो गया है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बाढ़ वाली जगह पर भूटे कोशी नदी के मलबे से बनी झील का जलस्तर बढ़ रहा है, उसके फटने का खतरा एक बार फिर है। वहीं सीमा के दूसरी ओर चीन ने कहा है कि अगले 3 दिन में लगभग 30 लाख यानी लगभग 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी, जो लगभग 1200 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर है, पहले से ही बांध जैसी स्थिति वाली झील में बहकर आने की उम्मीद है। वहीं नेपाल के त्रिशूली बाजार में भारी तबाही हुई है, वहां के गांव में भी मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा, देखिए।
2: हम इस समय मौजूद हैं त्रिशूली में। दरअसल रोसुआ में जो हुआ उसका असर जो दिखाई दिया वो एक त्रिशूली में दिखाई दिया और त्रिशूली के बाद आगे नोवाकोटा में। तो अब नोवाकोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ आंखों से ओझल इसलिए है क्योंकि ये बसा बसाया एक शहर था। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भगवान बुद्ध का एक मंदिर था और यहाँ पर एक पुल था, हैंगिंग पुल हुआ करता था, लेकिन ये पुल अब बह चुका है। पानी का सैलाब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये त्रिशूली नदी बह रही है। ऊंचाई देखिए, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, ये 100 फीट तक पानी ऊपर चला गया था। ये जो पानी के निशान आप देख रहे हैं ये सैलाब लेकर के आया था। इसी के साथ अब आपको ये जो मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है, दरअसल ये त्रिशूली का बस स्टैंड था। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो नदी का किनारा कोई बीच है, ये एक बस स्टैंड था, ये समतल है। और अभी भी लगातार हवा में जो हेलीकॉप्टर है वो मंडरा रहे हैं जो रोसोवो तक लोगों को रेस्क्यू करके आगे पहुंचा रहे हैं सुरक्षित। लेकिन बस स्टैंड पूरी तरह अब एक मलबे में तब्दील हो चुका है, लगता ही नहीं कि यहाँ का भी बस स्टैंड रहा होगा। इसके आगे देखिए, ये जो खाली मैदानी इलाका आपको दिखाई दे रहा है दरअसल ये एक स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब पूरा का पूरा स्कूल जो है वो समतल हो चुका है। झूले पर लोग थे कहाँ गए नहीं पता, स्कूल में बच्चे थे कहाँ गए नहीं पता, इन मकानों में जो आपको कई सारी मंजिलें जो है जमीन के नीचे दब गई हैं वो लोग कहाँ थे नहीं पता, जितनों को लोग निकाल पाए, बाकी जो कहाँ हैं कोई नहीं जानता। और इसीलिए ये संख्या, ये वो तस्वीरें हैं जो आप आज तक पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर, खासकर कैसे एक नदी प्रलय लेकर के आती है, तिब्बत से पानी और मलबा अपने साथ नेपाल में घुसती है तो ऐसा सैलाब लेकर के आती है कि उसके बाद मानो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया हो। त्रिशूली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोवाकोटा में, यही त्रिशूली नदी जिसके नाम पर ये त्रिशूली बाजार बना हुआ है और अब त्रिशूली बाजार का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
1: वहीं त्रिशूली गांव में भी गंभीर हालत है, आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। वो नदी के दूसरे हिस्से में पहुंचे और वहां से देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट।
2: त्रिशूली गांव में यहां पर एक पुल था, वो पुल अब मुझे सिर्फ तार यहां दिखाई देते हैं बह चुका है, पीछे पूरा मैदान है, ये मैदान नहीं हुआ करता था, यहाँ पर घर थे, दुकान थे, रंग बिरंगे घर की छतें दिखाई देती है पुरानी तस्वीरों में, और अब जो इक्का दुक्का लोग दिखाई दे रहे हैं वो अपने घरों की छतों पर आसपास इस कीचड़ में आए हैं देखने कि क्या घर में कुछ बचा है। जान बचाने के लिए लोग यहां से सीधा पहाड़ी इलाकों की ओर भागे, जब नदी का स्तर बढ़ा, पानी तो घटने लगा है लेकिन पानी अपने साथ जो तबाही का मंजर लेकर के आया है वो इसके निशान छोड़ गया है। इन छतों पर जहां उनके बच्चे खेला करते थे अब यहां पर मलबे का ढेर है, और इस सैलाब ने जो दर्द दिया है वो घाव लोगों को सालों तक याद रहेंगे। वो डर सहमे हुए लोग जैसे ही सैलाब आया, जैसे उन्होंने आवाजें सुनी, उस डर से लोग भागे, क्या वो डर कभी भी यहाँ के लोग, त्रिशूली के लोग अपने मन से निकाल पाएंगे? त्रिशूली ग्राउंड जीरो से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: वहीं चीन नेपाल सीमा पर भीषण बाढ़ की तबाही के बीच अब एक और बड़े खतरे की चेतावनी जारी हो चुकी है। नेपाल सीमा के पास ग्योरोंग से लगभग 18 किलोमीटर ऊपर मलबे के कारण एक बैरियर झील बन गई है। चीनी अधिकारियों के मुताबिक झील में करीब 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है और अगले 72 घंटे में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर और पानी पहुंच सकता है। ऐसे में झील टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन ने इलाके में सेना, बचाव दल और इंजीनियरिंग टीमें तैनात कर दी, हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। यानी कि एक और सैलाब की चेतावनी चीन द्वारा जारी की गई है। इतना ही भीषण एक और सैलाब नेपाल को परेशान कर सकता है। वहीं नेपाल और चीन के कुछ हिस्सों में आई भयानक बाढ़ से अब तक कम से कम 469 लोगों की मौत हो चुकी है, हजार से ज्यादा लोग लापता हैं, इनमें से कई विदेशी थे जो ट्रेकिंग, गाइडेड टूर और तीर्थ यात्रा के लिए आए थे। अब आपको बताते हैं किन किन देशों के कितने नागरिक की मौत हुई है या वो लापता है इस आपदे में। नेपाल में भारत के 288 लोगों का कोई सुराग नहीं है, वहीं चीन के करीब 100 लोग लापता हैं। अमेरिका के मुताबिक उनके 90 नागरिक चीन और नेपाल में मौजूद थे जिनमें 3 का रेस्क्यू हुआ है, किसी की मौत की खबर नहीं है। वहीं मलेशिया के 51 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूक्रेन विदेश मंत्रालय के मुताबिक उनके 55 नागरिक लापता हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 30, ब्रिटेन के 33, कनाडा के 25 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले दक्षिण कोरिया के 9 नागरिक लापता हैं। सिंगापुर के 9 नागरिक, जर्मनी और रूस के 8-8, नेपाल की त्रासदी में लापता लोगों को हम दिखा रहे हैं, और अब तक जिनका कोई सुराग नहीं लगा है वो आंकड़े आ चुके हैं। तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी है रेस्क्यू, भारत से पहुंची मदद की खेप। नेपाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग, कभी भी फट सकती है एक और अफंती झील, कुछ दिन बारिश हुई तो दोबारा आ सकता है ऐसा जानलेवा सैलाब, चीन ने जारी की खतरनाक चेतावनी। बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी, रोजगार शिक्षा महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पति पत्नी, सैन्य ठिकानों की तस्वीरें भेज रहे थे पाकिस्तान, साइलर समीरा को जानकारी के बदले पैसे देते थे हैंडलर्स।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ से अब तक 469 मौत, बोटे कोशी नदी में उफान का खतरा, कुल 1500 से ज्यादा लापता, सैकड़ों लोग लापता। मलबे में जारी है जीवन की तलाश, रसुआ से लेकर चितवन तक भयंकर तबाही, सड़क पुल, मकान, दुकान, होटल, सब कुछ तबाह। नेपाल में आई बाढ़ के कारण 290 भारतीय नागरिकों का फिलहाल कोई संपर्क नहीं, तलाश जारी। राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमों ने सफलता हासिल करते 84 भारतीयों को सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों में त्रिशुली वन प्रोजेक्ट में फंसे 63 वर्कर्स और तमिलनाडु के रहने वाले 21 लोग शामिल हैं। नेपाल में ग्लेशियर ढहने से तबाही का शक, लेहंदे नदी में आई भीषण बाढ़, 7 लाख तस्वीरों में दिखे टूटे ग्लेशियर। यूएसजीएस ने भूकंप के दावे को नकारा, ग्लोबल वार्मिंग से तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। नेपाल में लेने नदी का बहाव थमा, 0.11 वर्ग किलोमीटर में बनी अस्थायी झील, बांध टूटने पर निचले इलाकों में भीषण बाढ़ का खतरा। रसुवा गढ़ी सीमा के ऊपर नदी में बड़ी रुकावट से बनी झील, नेपाल सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, निचले तटीय इलाकों में चेतावनी जारी। नेपाल में बाढ़ के मलबे में सामान निकालने के जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग, पुलिस ने वीडियो जारी कर सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। तिब्बत में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे चीनी पीएम ली चियांग, चीन नेपाल सीमा पर राहत बचाव तेज। नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने लॉन्च किया इंटरनेशनल डोनेशन पोर्टल, विदेशी दाता सीधे राहत कोष में जमा कर सकेंगे दान। नेपाल में बाढ़ के बीच हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू, नेपाली सेना ने संभाला मोर्चा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह हालात का जायजा लेने नुवाकोट पहुंचे, मौके से बालेन शाह की तस्वीरें आई सामने, सुरक्षा बलों से बातचीत करते और हालात का मुआयना करते आए नजर। बालेन शाह ने प्रभावित नागरिकों को स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टर्स और राहत कार्य में जुटी टीमों से सीधी बात करके जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के बाद काठमांडू लौटे प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कहा स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण है। नेपाल बाढ़ में फंसे महाराष्ट्र के 114 पर्यटक, 53 सुरक्षित, सीएम फडणवीस से वीडियो कॉल पर कहा डरिए मत सरकार आपके साथ है, फडणवीस से विदेश मंत्रालय से की बात, 24 घंटे कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन जारी। नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही, ड्रोन फुटेज में दिखा खौफनाक मंजर, नदी किनारे बस्तियां तबाह, फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में भारी तबाही। त्रिशूली बाजार में फ्लैश फ्लड की भीषण तबाही, ड्रोन फुटेज में मलबा और कीचड़ से घिरी दिखाई दी बस्तियां। नेपाल में बाढ़ भूकंप का डबल अटैक, बैरियर झील ओवरफ्लो, टूटने का बड़ा खतरा, 350 मजदूरों का रेस्क्यू। नेपाल में बाढ़ के बाद आई नई मुसीबत, 3.2 तीव्रता के भूकंप, ओवरफ्लो बैरियर झील से तबाही का डर। नेपाल में बाढ़ भूकंप के बीच बड़ा खतरा, झील में 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का अनुमान, भारत की मदद जारी, भारत भेजेगा C-130J। परिसीमन पर सियासत तेज, खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग, राहुल गांधी के विशेषाधिकार समिति का नोटिस, 28 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू, सरकार ने आधिकारिक घोषणा की। पटना में TRE-4 को लेकर छात्रों का धरना खत्म, सम्राट सरकार से मांगों पर बनी सहमति। TRE-4 छात्रों के आंदोलन का अंत, मांगे माने जाने के बाद जश्न दुबे प्रदर्शनकारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक, राज्यों के चुनावी रोड मैप पर मंथन। कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत, अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा। जादवपुर में शुभेंदु अधिकारी गाएंगे वंदे मातरम, देशभक्ति के जरिए सियासी संदेश की तैयारी। RSS प्रमुख मोहन भागवत के मैडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम के आयोजकों का एक्स अकाउंट बहाल, कुछ देर के सस्पेंशन के बाद VR बैकअप। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीले संवेदनशील घोषित, CM धामी नियमित निगरानी के दिए निर्देश, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा मजबूत। मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर ऑटो टैक्सी यूनियन की मांग मंजूर, CM फडणवीस ने डेडलाइन 1 साल के लिए बढ़ाई। ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को मराठी सीखने के लिए 1 साल की मोहलत देकर बोले CM फडणवीस, इस दौरान नहीं होगी कोई कार्रवाई। बिल पावर के लिए 160 करोड़ रुपए, बैंक फ्रॉड केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मुंबई वडोदरा में 10 ठिकानों पर छापेमारी। ईडी के रेड में 44,90,000 कैश और करीब 12.5 करोड़ की ज्वेलरी जब्त। महाराष्ट्र में धर्मांतरण कानून से पहले चर्चों में बड़ी हलचल, मुंबई पालघर में नए श्रद्धालुओं का सेल्फ डिक्लेरेशन शुरू, पादरी बोले उत्पीड़न से बचने की तैयारी, बजरंग दल ने उठाए सवाल। आरक्षण हटाओ आंदोलन पर अभिजीत दिपके का जेपी नड्डा से संवाद, बोले 21 अगस्त को आंदोलन पर पीएम मोदी का क्या कहना है, देश जानना चाहता है। FDA भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच में लव अफेयर एंगल का दावा, शिक्षक कोचिंग संचालक की भूमिका जांच के घेरे में। अंबादास दानवे ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब आम बात हो गई, सिस्टम में नैतिकता खत्म हो चुकी है और सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। गोवा में FDA का बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तर में 3 कैंटीन बंद, किचन हाइजीन और स्ट्रक्चर में मिली गंभीर खामियां। जालना में शिक्षक की कमी को लेकर अभिभावकों ने जिला परिषद स्कूल को लगाया ताला, 4 साल से 1 शिक्षक गैर हाजिर, 1 से 5 तक पढ़ाई में 1 शिक्षक के भरोसे। काल पालघर में 620 करोड़ रुपए खर्च करके हाईवे वैतरणा पुल पर बड़ा गड्ढा, हादसे का खतरा। कानपुर नगर निगम के खिलाफ समाजवादी पार्टी विधायक ने 20 फीट गड्ढे में शुरू किया धरना। विधायक का ऐलान, नगर निगम अधिकारी जब तक नहीं आएंगे बैठा रहूंगा गड्ढे में। इंदौर में 9 दिन में दूसरी सड़क धसी, 20 फीट गहरा गड्ढा। वाल्मीकि बस्ती की सड़क से रोजाना 10,000 वाहन गुजरते हैं। अनाज के बीज में सूखे से बिगड़े हालात, चारे के बिना बिलख रहे मवेशी, महिला किसानों की आंखें नम। बाराबंकी में मासूम बच्ची की डीएम से गुहार, डीएम अंकल रोड बनवा दीजिए, वायरल वीडियो पर प्रशासन ने लिया एक्शन। आज है भाई बहन का प्यार का खास त्यौहार रक्षाबंधन, इस दिन भाई बहन की कलाई पर बांधती है राखी। रक्षाबंधन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बच्चों को बांधी राखी, दिखा भावुक और खास पर। ये त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके पीछे इंद्र और इंद्राणी, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना जैसी कई पौराणिक कथाएं हैं। आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन भर रहेगा मौजूद। बहने सुबह, दोपहर या शाम किसी भी समय बांध सकती हैं राखी। नीमच में बना अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्ष और 12 ज्योतिर्लिंग की उकेरी गई है तस्वीर। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जिम से बाहर आए अंकित पर चार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। केरलम के एर्नाकुलम में भीषण सड़क हादसा, स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में पलटी टूरिस्ट बस, 35 यात्री जख्मी। बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस की डंपर से भीषण टक्कर, 2 की मौत, 24 घायल। दिल्ली के ISI जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पति पत्नी साहिल और समीरा गिरफ्तार। 2024 से पाकिस्तान के लिए कर रहे थे जासूसी, जानकारी के बदले पैसे देते थे हैंडलर्स। गुजरात के खंबाक में मौजूद मजदूर की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, जवाब में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली के तिलक नगर में एनकाउंटर, मुस्कान हत्याकांड, आरोपी इमरान के दोनों पैरों में लगी गोली, जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में गोली मारी गई। उधमपुर में NH44 पर भीषण हादसा, फ्यूल टैंकर और डंपर की टक्कर के बाद लगी आग। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने में स्टोर रूम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। अजमेर के अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। अलवर में सरकारी अस्पताल पर लोगों ने जड़ा ताला, 15 दिन से डॉक्टर ड्यूटी से गायब। ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी का मामला, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में दी शिकायत। मेरठ में दोस्त की गर्लफ्रेंड की शादी कराने पर हुई थी युवक की हत्या, होटल में गोली मारकर शव नहर में फेंका, 3 गिरफ्तार, 1 फरार। बिजनौर में स्कूटी सवार चलकर भाग रहे ट्रक के सामने से आ रहे कैंटर से भीषण भिड़ंत, दोनों वाहनों में लगी भयंकर आग, ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। कानपुर में AI से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को बताया जा रहा था गर्लफ्रेंड से तंग आकर नीट छात्रा ने किया था सुसाइड। गाजीपुर में 2 सगे नाबालिग भाइयों की हत्या, मां गिरफ्तार, 9 साल की बहन के बयान से खुला राज, लोहे की रॉड बरामद। नागपुर के कोंडाली स्थित फार्म हाउस में लगी भीषण आग, 40 मिनट में फार्म हाउस जलकर खाक। चंद्रपुर में फर्जी डिग्री का करोड़ों का खेल, 5 से 10 लाख बिक रही है नामी यूनिवर्सिटी की बोगस डिग्रियां। पुणे के चेंबर में फंसकर 2 मजदूरों की मौत, पिछले साल इसी चेंबर में 3 लोगों की गई थी जान। जयपुर में 2 दिन में 2 स्टूडेंट्स की आत्महत्या, निम्स यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में पत्नी ने पति की गला घोटकर किया हत्या, पत्नी हुई गिरफ्तार, पत्नी का अवैध संबंध और शराब पीकर पति का पत्नी को पीटने का प्रकरण आया सामने। पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, मारुती इको खाई में गिरी, 6 लोगों की मौत, 3 घायल। रायगढ़ में सब्जी बनाने को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या, शव जलाकर हड्डियां दफन की, DNA रिपोर्ट से खुले अंधे कत्ल के राज। रक्षाबंधन पर गुरुराम से घर लौट रही दलित युवती की हत्या, शिकोहाबाद मिला शव, परिजनों ने दुष्कर्म की आशंका जताई। पटना में दलान पर सो रहे युवक को मारी गई गोली, हालत गंभीर, वारदात से पुलिस ने किए भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस के परेड में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, पुलिस की सूझबूझ से चला बड़ा विवाद, SRPF तैनात। मुंबई के भांडुप में 10वीं मंजिल से छत से गिरी महिला, पेड़ की डालियों में फंसी, मशक्कत से रेस्क्यू कर उतारा गया। टीवी में मां की हत्या कर जंगल में छिपा आरोपी बेटा गिरफ्तार, 4 पुलिस टीमों ने चलाया सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन। रोहतास में इलेक्ट्रिक स्कूटी के गोदाम में लगी आग, 85 इलेक्ट्रिक स्कूटी और 200 बैटरी जलकर राख। करनाल में नेशनल हाईवे किनारे पर फैक्ट्री में भीषण आग, 10 से 12 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ के बुधेश्वर शिव मंदिर में चेन चोरी का हैरान करने वाला मामला, महिला ने दांत से काटकर श्रद्धालु की सोने की चेन उड़ाई। आज अंतर की कॉमेडी फिल्म कोसला का घोसला 2 हो रही है रिलीज, लगभग 20 साल बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा भी आज हो रही है OTT पर लॉन्च, नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम। सिनेमाघर में धमाल मचाने के बाद OTT पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बंदर, Z5 पर होगी स्ट्रीम। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। सुमित व्यास, टीना गुप्ता, देवेन भुजानी और मायरा दस्तूर का अहम रोल। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल, 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर हो रही है रिलीज। रूस का यूक्रेनी शहरों पर भीषण हमला, राजधानी की ओडेसा और सुवी पर बरसाए बम, 3 हमलों में 1 की मौत, 7 लोग घायल। मौशतबा खामने की मौत पर अटकलों पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा मुझे नहीं लगता ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत हुई है, वो जिंदा है। ईरान दौरे पर कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद, राजधानी तेहरान में ईरानी विदेश मंत्री से की मुलाकात। नाटो से 10 देशों पर हमले की खबर को रूस ने किया खारिज, क्रेमलिन ने कहा अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठी है। रूस ने यूरोपीय संघ को दी सख्त चेतावनी, क्रेमलिन ने कहा अगर यूरोपीय संघ फ्रीज संपत्ति का इस्तेमाल यूक्रेन की मदद के लिए करता है तो गैर कानूनी कदम को रोकने के लिए कोर्ट जाएगा रूस।

0: बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने एसआई नेटवर्क को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। एसआई के जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। इनका नाम साहिल और समीरा बताया जा रहा है। ये दोनों जासूस सैन्य ठिकानों की तस्वीरें पाकिस्तान भेजते थे और हैंडलर्स दोनों को जानकारी के बदले पैसे देते थे। एसआई के लिए ये जासूस बने थे। सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और अन्य जानकारियां पाकिस्तान के हैंडलर्स को भेज रहे थे। अंशुल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अंशुल, और क्या जानकारी मिली है इस पति पत्नी के बारे में?
1: जी हाँ, ये एक बड़ी कामयाबी है जो दिल्ली पुलिस को मिली है। दरअसल 2024 से ही जो है ये आईएसआई के साथ जुड़े हुए थे और लगातार जो है भारत से जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो आईएसआई के हैंडल्स से और हैंडलर्स को लगातार भेज रहे थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस को बाद में जाकर ये पता लगा कि किस तरीके स्पेशल सेल को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो दंपत्ति है, ये दंपत्ति ही पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व थी और इसके बाद जाकर हिरासत में ले लिया गया है। अभी आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है। दिल्ली पुलिस ये पता लगाने की अभी भी कोशिश कर रही है कि और किस तरह की इन्फॉर्मेशन और ऐसी है जिसके
2: जो पाकिस्तान तक पहुंचाई गई है, और इसके अलावा और कौन से लोग हैं जो इस पूरे संगठन में जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि एक ये बड़ा संगठन हो सकता है जो दिल्ली में चल रहा है। हमने पिछले करीब एक साल से ज़्यादा से देखा है कि किस तरीके से भारत के अलग अलग कोनों से ऐसे लोग हिरासत में लिए गए हैं जो लगातार ISI को जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे, और उसी कड़ी में अब ये हिरासत में आए हैं। अब ये देखना होगा कि ये एग्जैक्ट कौन सा नेक्सस था, कि कौन सा हैंडलर था जो ISI से इनसे बात कर रहा था, और हैंडलर से बाकी और कितने लोग यहाँ भारत में जुड़े हैं, और क्या इन दंपत्ति से भी और भी कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो इनको इन्फॉर्मेशन देते थे फिर ये आगे ISI तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते थे।
0: Okay, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात केलम के एर्नाकुलम से आई बेहद डरावने वीडियो की, जहां शादी में शामिल होने जा रहे लोगों से भरी एक टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यह हादसा एक स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में हुआ, जहां बस पेट्रोल पंप के बैरियर से जा टकराई। हादसे में बस सवार तकरीबन 35 यात्री घायल हो गए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। घायलों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के वक्त की तस्वीरें देखिए, एक स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में ये बस अनियंत्रित होकर गिर पड़ी और आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: पापा।
4: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
4: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
4: हाँ ला भाई मेरा बैट।
5: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
6: चार्ज हुआ यार।
7: बैट किसका है?
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
5: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
6: आगे आगे,
7: अरे उधर
6: उधर,
7: करेक्ट करेक्ट,
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: सो सॉरी।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

क्या चीन ही नेपाल में तबाही का जिम्मेदार है? क्या चीन ने नेपाल को समय रहते अलर्ट नहीं किया? क्या ग्लेशियर से आपदा पर झूठ बोल रहा चीन? जिनपिंग की जिद क्या नेपाल में फिर तबाही मचाएगी? सबसे पहले नेपाल में चीन के प्रवक्ता की ओर से जारी पोस्ट पर गौर कीजिए। चीन कह रहा है कि समय पर नेपाल को वार्निंग ना देने के कारण नेपाल में बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने की बात फेक न्यूज है। चीन ने उसके नीचे इस खबर को भी फेक न्यूज बता दिया कि चीन के हिस्से में बने मलबे के बांध के ध्वस्त होने से नेपाल में भारी तबाही मची। तो चीन के हिसाब से सच क्या है? उसके हिसाब से सच ये है कि भूकंप या ग्लेशियर के ढहने से भूकंप नेपाल के हिस्से में आया, जिससे इतने लोग मारे गए और तबाही मची। चीन जिसे फेक न्यूज बता रहा है वो सही खबर है, और जिसे वो सच बता रहा है वो सफेद झूठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी यानी प्लैनेट लैब्स की तस्वीरें और स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने साफ दिखाया है कि मलबे का मुख्य बहाव तिब्बत के अंदर लिंडे नदी के ब्लॉक होने से शुरू हुआ था। अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के विश्लेषण से भी साबित हो चुका है कि मुख्य घटना तिब्बत के हिस्से में हुई थी। वहीं पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटने के बाद मलबे ने लिंडे नदी का रास्ता रोका था। यहां कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं आया था, बल्कि ग्लेशियर गिरने की ताकत से ही भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड हुए थे। इस वजह से ही नेपाल के पत्रकार चीन पर सही समय पर चेतावनी न देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर चीन पर नेपाली पत्रकारों को भरोसा क्यों नहीं? नेपाल के कई पत्रकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने तिब्बत सीमा पर पहाड़ों को काटकर और नदियों का रुख बदलकर जो शाओकान स्मार्ट विलेज बनाया है, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। निर्माण कार्यों के कारण ही अब हर साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन और विनाशकारी बाढ़ आ रही है। यही नहीं, नेपाल के जल विज्ञानी और अधिकारियों का लंबे समय से आरोप रहा है कि चीन सीमा पार की नदियों के जलस्तर और बारिश का रियल टाइम डेटा साझा करने में हमेशा हिचकिचाता है। आरोपों को चीनी मूल के स्वतंत्र लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शिनयांग यांग ने अपनी पोस्ट से मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR की 60वीं वर्षगांठ के जश्न के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग या दोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हर हाल में आगे बढ़ाने की जिद कर रहे हैं। यांग का दावा है कि ये प्रोजेक्ट उसी इलाके में है जहां वो जीरोंग पोर्ट है जो तबाही में तिनके की तरह उड़ गया। शियांग कहते हैं कि चीनी इंजीनियर चाहे कितनी भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर ले, प्रकृति के प्रकोप के आगे सब बेकार है। नंगा पर्वत ब्लॉक के पास थोड़ी सी भी हलचल पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पल भर में तबाह कर देगी। उनका आरोप है कि अपनी राजनीतिक जिद और महत्वाकांक्षा के चक्कर में जिनपिंग जानबूझकर एक और बड़ी तबाही को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि जिनपिंग बार बार कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं रखते। शियांग के मुताबिक असल में ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 469 से ज्यादा लोगों की कई जान, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी है रेस्क्यू, भारत से पहुंची मदद की खेप। नेपाल में फिर जल विस्फोट की चेतावनी, कभी भी फट सकती है एक और उफनती झील, कुछ दिन बारिश हुई तो दोबारा आ सकता है ऐसा जानलेवा सैलाब, चीन ने जारी की खतरनाक चेतावनी। जेंजी आंदोलन के बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी, रोजगार, शिक्षा, महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पति पत्नी, सैन्य ठिकानों की तस्वीरें भेज रहे थे पाकिस्तान, साहिल और समीरा को जानकारी के बदले पैसे देते थे हैंडलर्स। राज्य रक्षा बंधन पर पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीएम शुभेंदु अधिकारी करेंगे वंदे मातरम का गान, एसएफआई और एबीवीपी में टकराव के बाद राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने की मुहिम।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health का सच, in association with
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 的吗？我找到了。我的妈的！
1: का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक फंस गया था इस मलबे में।
2: एक बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे थे। अच्छा। हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।

0: यहाँ पर कृषि विकास कार्यालय था नुआकोट का, पूरी की पूरी पहली और दूसरी मंजिल जो है इस समय मलबे में है। तो आप समझिए कि नदी जो उससे भी ज्यादा 50 मीटर पीछे है वो आगे आई और उसकी धारा इतनी ऊंची थी कि उसने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।
1: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बर्बादी की तस्वीरें, और बर्बादी खासकर जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है।
2: मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुंच चुकी है।

नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। नेपाल में हमारी तमाम टीमें लगातार मौजूद हैं और आप तक हरी खबर लेकर आ रही हैं। एक तरफ 400 से ज्यादा आंकड़ा मरने वालों का हो चुका है, हजारों अभी भी यहां पर लापता बताए जा रहे हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, और उस सबके बीच बड़ी खबर ये है कि अभी भी नेपाल में खतरा टला नहीं है। यानी जितने भी इलाके हैं वहां पर एक तरीके से इस समय एक बेचैनी है, क्योंकि चीन की तरफ से सतर्क किया गया है कि जो पहली जो दुर्घटना हुई है, पहला जो हादसा हुआ है, उसी तरीके का कोई दूसरा हादसा भी हो सकता है। और पहले मामले में भले ही ये कहा गया कि चीन की तरफ से पहले क्यों नहीं अलर्ट किया गया, लेकिन इस दूसरे अलर्ट के बाद किस तरह से तैयारियां चल रही हैं कि कम से कम अगर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी लोगों से अलर्ट रहने की स्थिति में क्या ऐसी आपदा को झेलने की ताकत ये इंसानी बस्तियां रखती हैं। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 469 हो चुका है। पहले दिन केवल 3 जो आंकड़ा था वो तेजी से इसीलिए बढ़ा क्योंकि उस पूरे रूट पे, यानी कि नेपाल के उत्तर में तिब्बत से लगती उसकी सीमा से लेकर नेपाल के दक्षिण में भारत से लगती उसकी सीमा तक तलाशी अभियान लगातार जारी है। ढूंढा जा रहा है उन लोगों को जो लापता बताए गए। 469 अब तक मौत का आंकड़ा नेपाल की सरकार की तरफ से जारी किया गया है। तो नेपाल के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस तरीके से हमने आपको नुआकोट की तस्वीरें दिखाई, दारिंग की तस्वीरें दिखाई, इन सब के बीच सबसे वर्स्ट अफेक्टेड ये डिस्ट्रिक्ट्स बताए जा रहे हैं। त्रिशूली बाजार जो कि नुआकोट में ही पड़ता है, वहां पर बर्बादी की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो जिस तरफ देखिए आपको मलबे के नीचे दफन वो पूरा का पूरा बाजार, वो हिस्सा, वो दुकानें जो शायद एक समय गुलजार रहा करते होंगे, वो नजर आता है। बर्बादी की तस्वीरें ये बताती हैं कि जब सैलाब आया तो अपने साथ कितना कुछ बर्बाद कर गया। अगस्त की कई तस्वीरें सामने आ रही है। एक और भयावह तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो नेपाल तिब्बत सीमा पर नदी के उफनने के बाद जब आगे त्रिशूली नदी में वो उफान आगे बढ़ता हुआ चला गया, किस तरीके से पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टान, एक तरीके से ऐसा लग रहा है पहाड़ का ही एक हिस्सा टूटकर साथ में बहता जा रहा है, उसकी तस्वीरें आप सोचिए कि इन चट्टानों की चपेट में जो आए, उस पानी, उस मलबे के साथ इन चट्टानों की चपेट में जो कुछ भी आए, आखिर किस तरीके से वो बच सकता है। बर्बादी और लाचारी की तस्वीरें

अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ ये बर्बादी है जिससे जूझने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है, दूसरी तरफ वो चेतावनी जो चीन की तरफ से जारी की गई है और उससे किस तरीके का खतरा बन रहा है।

0: नेपाल में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसकी तस्वीरें अभी धुंधली भी नहीं हुई हैं। सैकड़ों जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, हजारों लोग लापता हैं, लेकिन नेपाल के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि तबाही का खतरा अभी टला नहीं है। जिस भोटेकोशी नदी ने बुधवार को विनाश मचाया था, उसी नदी के उद्गम केंद्र पर अब एक नई बैरियर झील बन गई है। अगर ये झील टूटी तो नेपाल को एक बार फिर अचानक और बेहद तेज बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। चीन की चेतावनी के मुताबिक झील में पहले से करीब 20 लाख घन मीटर पानी जमा है। सबसे चिंता की बात यह है कि झील में पानी का ओवरफ्लो भी हो रहा है और अगले 3 दिनों में करीब 30 लाख घन मीटर और पानी इस झील में आने का अनुमान है। यानी पानी बढ़ता गया तो इस प्राकृतिक बांध पर दबाव भी बढ़ता जाएगा। अब सवाल है कि ये बैरियर झील इतनी खतरनाक क्यों है? पहाड़ों में जब भूस्खलन, चट्टाने, बर्फ और मलबा किसी नदी का रास्ता रोक देते हैं तो नदी का पानी एक जगह जमा होने लगता है, धीरे धीरे वहाँ एक झील बन जाती है। ये कोई मजबूत कंक्रीट का बांध नहीं होता बल्कि मिट्टी, पत्थर, बर्फ और मलबे से बना प्राकृतिक बांध होता है। और जैसे जैसे झील में पानी बढ़ता है इस प्राकृतिक बांध पर दबाव बढ़ता जाता है। अगर बांध अचानक टूट गया तो पानी एक साथ नीचे की तरफ भागेगा और यही नेपाल के लिए सबसे बड़ा खतरा है।
1: नेपाल पर अब एक और आपदा, एक और संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि चीन ने नेपाल को चेतावनी एडवाइजरी जारी की है कि एक बार फिर उसकी ऐसी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। दरअसल नेपाल कन्फ्लुएंस में चीन के पास से बनती हुई नदियों में एक बार फिर ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि हमने रुसवा में देखा था। इस ग्लेशियर फॉर्मेशन का सीधा सा मतलब है कि 27 अगस्त की सुबह तक 2 मिलियन क्यूबिक अगर पानी जमा हुआ है और अगले 3 दिनों में यहां पर 3 मिलियन क्यूबिक पानी और जमा हो सकता था। तो जाहिर है पहाड़ की ऊंची चोटियों में जो बाउल बनेंगे, जो लेक बनेंगे, उस लेक की दीवारें टूट सकती हैं और वो पानी नीचे आ सकता है। इसके चलते नेपाल ने नदियों के किनारे अपने तमाम रहने वाले लोगों को आगाह कर दिया है, उन्हें कह दिया कि वो किनारे पर रहें। इस समय नेपाल हाई अलर्ट पर है।
0: खतरा सिर्फ पानी का नहीं है, पहली फ्लैश फ्लड में नदी का रास्ता मलबे से भर चुका है, कई जगह नदी का प्राकृतिक बहाव बदला है। ऐसे में अगर ऊपर से अचानक लाखों घन मीटर पानी नीचे आया तो रास्ते में जमा मलबा भी बह सकता है। यानी दूसरी लहर सिर्फ बाढ़ नहीं होगी, उसके साथ मिट्टी, पत्थर और मलबे का नया सैलाब भी आ सकता है। नेपाल के अधिकारियों ने भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को भी नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिन इलाकों में राहत और बचाव का काम चल रहा है वहीं दूसरी बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। तिब्बत की तरफ से भी झील पर लगातार नजर रखी जा रही है। चीनी अधिकारी संभावित बांध टूटने की स्थिति में फ्लड सिमुलेशन और रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं ताकि अगर पानी अचानक नीचे आया तो उसके संभावित असर का अनुमान लगाया जा सके। तिब्बत से निकलने वाली नदियां चौचेन खोला और पुरुपे त्सांगपो आगे जाकर भोटेकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बनती है और फिर यही पानी आगे त्रिशूली नदी के रास्ते डाउनस्ट्रीम इलाकों की तरफ बढ़ता है। बुधवार की तबाही के बाद नेपाल अभी अपने जख्म भर भी नहीं पाया है और अब पहाड़ों में जमा होता पानी एक बार फिर नेपाल के लिए खतरे का अलार्म बजा रहा है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से आशुतोष मिश्रा, पंकज दास के साथ आज तक ब्यूरो।
2: दरअसल अगर आप वो पूरा क्षेत्र देखेंगे तिब्बत का तो वहां पर छोटे बड़े ग्लेशियर्स जो है बड़ी संख्या में है, ग्लेशियर लेक्स बड़ी संख्या में है। रोसुआ जहां पर ये इम्पैक्ट हुआ, जहां से ये पूरा पानी आना शुरू हुआ, वहां तक अब जो राहत कर्मी है वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे संवाददाता, दो संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ हैं और पंकज हमारे साथ हैं, पंकज दास। आशुतोष, पहले ये बताइए कि रोज हम सब जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो बर्बादी की कोई नई दास्तान दिखती है। सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए यही है कि मलबा इतना ज्यादा है कि आप पैदल जो है वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसकी तरफ, और सिर्फ एयरड्रॉप करना पड़ रहा है जो राहत कर्मियों को रसुआ वाले उस इलाके में। बर्बादी का मैग्नीट्यूड अकल्पनीय है बिल्कुल।
3: और रुसवा ही नहीं श्वेता, रुसवा से डाउनस्ट्रीम में भी 10-12 किलोमीटर के जो बीच में दो बाजार शहर थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, पुल थे, उन इलाकों में भी दलदल इतनी ज्यादा है। दरअसल यहां तो हमें लग रहा है जैसे अब मैं जा रहा हूं हाइड्रो प्रोजेक्ट की ओर, जो त्रिशूली हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ है, वहां के रास्ते में हूं, लेकिन इन इलाकों में इतनी दलदल है। जिस गांव के किनारे नदी के पास हमें लग रहा है कि देख के अब तो सूख गई है, लेकिन अगर आप पैर डालेंगे तो जूते धंसना तो छोड़िए, घुटने तक पैर अंदर चले जाएंगे। तो अब ऐसे में एक जोखिम है कि अगर सड़क के जो दूसरी तरफ इन इलाकों में जो एक तरह का आइलैंड नुमा बन चुका है जहां लोग फंसे हैं, तो अब वहां आज ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर पैरा ड्रॉप करके खाना रसद भेजी जाए, दवाइयां पहुंचाई जाए। दूसरा, इवैक्यूएशन के लिए दिन भर में आप 80-90 से ज्यादा सॉर्टी नहीं उड़ा सकते, 14-15 आपके पास हेलीकॉप्टर है। नेपाल सरकार कह रही है हमें विदेशी मदद नहीं लेनी है, 2015 में अच्छा अनुभव नहीं था, लेकिन अगर आप वो मदद नहीं लेते हैं, दुनिया भर की एजेंसियां नहीं आती, तो रास्ता कौन खोलेगा? सक्षम नेपाल है रेस्क्यू वैक ऑपरेशन के लिए, लेकिन जितने ज्यादा लोगों के आपका रास्ता खोला जा सकता है। और देखिए, हमेशा तारीख में ये गवा रही है, बड़े पैमाने पर मदद, बड़े मदद तभी पहुंचती है जब रास्तों के जरिए लोग वहां पर पहुंचेंगे। एयर ड्रॉप की एक अपनी कैपेबिलिटी है। अभी मौसम है वैली में, फिर देख रहा हूं पैक होने वाली है, जैसे क्लाउड वुमेन्स वैली को पैक करेगा, हेवी ऑपरेशन को आपको रोकना पड़ेगा। 5:15 के बाद आपके चॉपर उड़ान नहीं भर सकते। कुल मिलाकर के एयर ऑपरेशन में जो इवैक्यूएशन है वो 600-700 लोगों का है, मिसिंग जो लोग हैं वो 800-900 हैं, मरने वालों का आंकड़ा 500 पहुंच चुका है। ये संख्या बताती है कि इस तरह की कोशिशें, अभी आप जो है अपने संसाधनों से ज्यादा जो है अपनी हिम्मत और हौसले से नेपाल लड़ रहा है, उस हौसले को सलाम है, लेकिन यहां वो कोशिशें नाकाफी हो रही हैं, क्योंकि यहां पर वक्त के साथ लड़ाई है। जिंदगी की जंग में, रेस अगेंस्ट टाइम में सबसे जरूरी होता है कि कम समय में ज्यादातर मदद वहां पर भेजी जा सके। और ऐसे में 2015 में कोऑर्डिनेशन भले एक दिक्कत रही होगी, लेकिन दुनिया भर की एजेंसियों की वजह से हुआ क्या था कि जल्दी से जल्दी रिस्टोरेशन पॉसिबल हो चुका हो संभव था। तो अभी में वो रिस्टोरेशन तो चुनौती है नहीं, अभी तो है कि जितने जीवित लोग हैं उन्हें निकाल लिया जाए, जिनके जीवित होने की संभावना है आपको अर्थ पेनिट्रेटिंग रडार जैसे इक्विपमेंट इस्तेमाल करने होंगे, देखने कि क्या मलबे के नीचे कोई घर है, लेकिन अगर वहां वेंटिलेशन, वहां कोई लोग जिंदा हो सकते हैं। इन चुनौतियों से पार पाना सबसे बड़ा अभी एक मुश्किल टास्क लग रहा है नेपाल के लिए। लेकिन हाँ, एयर ऑपरेशन, अभी मैं जिन जगहों पर गया हूं श्वेता, बड़ा मार्मिक दृश्य था। एक बेटी अपने पिता का नाम खोज रही थी उस लिस्ट में जिनको बचाया गया था, उसने सारे लिस्ट के नाम 3 बार पढ़े, और जब आखिरी नाम वो जब पहुंचा और उस नाम में पिता का नाम नहीं मिला, तो वो फूट फूट करके रोने लगी। आज बहुत सारी आंखों में आंसू देखे हैं, इंतजार देखे हैं। कुछ लोग उस पन्ने को देखते हैं, इसमें हमारे अपनों का नाम होगा, नहीं होते तो आंखों में सिर्फ आंसू आते हैं, चिंता होती है। एक बेटा था, अपने माता पिता से बिछड़ा हुआ था, श्रेयस नाम है उसका, वो कह रहे हैं माता पिता ठीक है, गांव के दूसरी तरफ हैं, कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी वहां तक पहुंच जाएं, उन तक माता पिता तक पहुंच जाएं। एक बेटी है जिसका वो पहुंच तो गई, उसे इवैक्यूएट कर लिया गया, उसका स्कूल जो दब गया था, लेकिन अब उसके भाई का पता नहीं चल रहा है। ऐसी मार्मिक कहानियां हम यहां पर देख रहे हैं लोगों के अपने से बिछड़ने का,

0: एक्शन का श्वेता देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पर।
1: नहीं वाकई, और नेपाल की आर्मी, नेपाल के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, नेपाल की पुलिस, सब ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। सब यहां पर फावड़े कुदाल लेकर कि मलबा हटा सकें, रास्ते से लोगों तक पहुंच सकें, कोशिशें बहुत दिख रही हैं। पंकज, ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि जिस टाइम की बात हम करते हैं कि शुरुआत के जो कुछ घंटे होते हैं, 24 से 48 घंटे का समय, वो बहुत क्रूशियल होता है अगर आपको लापता लोगों को, किसी भी तरह की सर्वाइवर्स को आपको ढूंढ निकालना है। और बहुत मुश्किल परिस्थितियों में नेपाल इस समय काम कर रहा है। पंकज
2: जी, बिल्कुल, सबसे बड़ी जरूरत इस समय जो लोग फंसे हैं, और ये सेना को ये पता है, प्रशासन को पता है कि वहाँ ये लोग फंसे हैं और वहां से उद्धार नहीं हो पाना, ये सबसे बड़ी दुखद अवस्था इस समय है। अभी एक नेपाली सेना के तरफ से जानकारी दी गई, जो रसुवा डिस्ट्रिक्ट में लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, वहाँ पिछले 3 दिनों से 18 मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन आज सुबह भी रेस्क्यू के लिए वहाँ हेलीकॉप्टर गया, तो हेलीकॉप्टर लैंड करने की बात तो दूर की बात है, वहाँ एयर ड्रॉप भी नहीं किया जा सका। इतने मलबे हैं और इतने ऊंचे मलबे हैं कि वहाँ एयर ड्रॉप करके किसी आर्मी को उतारा भी नहीं जा सका, और वापस चाहते हुए भी नेपाल आर्मी जो है वहाँ जो फंसे मजदूर हैं उनका उद्धार नहीं कर पाई और वापस हेलीकॉप्टर आ गया, कोई और रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो इस तरह के कई सारे स्थान है जहाँ पे लोग फंसे हुए, लोग आर्मी को पता है कि वहाँ फंसे हैं, लेकिन सिर्फ हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ रेस्क्यू करने में काफी असमर्थता हो रही है नेपाल सरकार को। ये सबसे बड़ी चुनौती इस समय है।
1: बहुत बड़ी चुनौती है ये, यहाँ पर सब समझ रहे हैं। और हम आपको अब वो तस्वीरें दिखाते हैं जो 26 अगस्त से पहले की तस्वीर है और 26 अगस्त के बाद की तस्वीर है। पहले क्या स्थिति थी और अब उन्हीं इलाकों में क्या स्थिति हो गई है। हालांकि अगर आप उस पूरे नदी के कोर्स की तस्वीरों को देखें तो आपको साफ समझ में आ जाता है कि किस तरह से और किस पैमाने पर यह त्रासदी आई, ये त्रासदी झेली नेपाल ने। और ये जो पूरा हिस्सा है जो प्रभावित हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि कोई अलग थलग यहाँ पर, हाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे जहां पर मजदूरों को बड़ी संख्या में रेस्क्यू भी किया गया, अभी भी कुछ एरियाज में रेस्क्यू करना बाकी है। कई ऐसे इलाके जहां पर लोगों के घरों तक ऊपर तक भर गया है मलबा, कुछ ऐसे इलाके भी रहे जहां पर लोग फॉर्चुनेट रहे कि उन्हें समय से पहले सचेत किया गया, वो पीछे हटे और उसके बाद उनके गांव में, कस्बे में पूरी तरीके से वो मलबा भर गया। लेकिन अभी भी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उन लापता लोगों की तलाश है। अब नुवाकोट से आशुतोष की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
3: मैं इस समय नुवाकोट के सबसे आखिरी बाजार के उस बेस कैंप पे हूँ जहाँ पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, एयर ऑपरेशन चल रहे हैं, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेपाल पुलिस के वो लोग हैं और प्रहरी हैं जो दरअसल नागरिक सुविधा केंद्र बनाई है, और वो इसलिए जरूरी है कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में यहाँ जानकारियां दी जा रही हैं, वो इन जानकारियों को दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद जिन लोगों का को रिकवर कर लिया जा रहा है, जिनको वापस इवैक्यूएट कर लिया जा रहा है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो लोग लापता हैं उनको खोजा जा सके। अभी भी देखेंगे आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है, तो दूर दराज के इलाकों से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास ये नाम हो, जरूरत के लोग हो, कौन कहाँ है, तो सर यहाँ पर किस तरह की जानकारी दर्ज की जा रही है?
4: एक तो हरा को मान्छे को अनि त्यो सम्पर्क विहीन भएको मान्छे
3: मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। जो लोग मिसिंग है उनको इस तरह की जानकारियां इन्होंने दर्ज की हुई है, और कोशिश ये हो रही है कि जब अपनों को खोजने के लिए लोग आते हैं तो उनको बताया जा सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है तो उनको कहाँ ले जाया गया है।
1: ये हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज है, और जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी आशुतोष।
3: आज तक इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, मैं आगे रुसवा जाने की लगातार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बंद रास्तों के चलते मुश्किलें काफी ज्यादा है। नुवाकोट के आगे त्रिशूली की तस्वीरें मैं दिखाई, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि

0: फिर कैसे चीन नेपाल में आई इस आपदा के लिए दोषी साबित हो गया? अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर तैयार होता तो संभवतः इस खतरे को टाला जा सकता था। समय रहते उसने अपने ग्लेशियर में होने वाले उस बदलाव की जानकारी नेपाल को नहीं दी। दरअसल मेरे पीछे जो पहाड़ियां आपको देख रही हैं, ये रुसवा का इलाका है, ये बर्फीली पहाड़ियां और इसी के बाद ये लिंगोर रेंज है और ये रुसवा जिले में आता है। अब इन्हीं पहाड़ियों के पीछे दरअसल जो आप रेंज देख रहे हैं, यहां से तिब्बत की शुरुआत होती है। ये चीन और नेपाल की सीमा है और इसी के ठीक पीछे तिब्बत की सीमा जो है शुरू होती है। और इन्हीं इलाकों में, इन पहाड़ी ग्लेशियर्स को आप जब देख रहे हैं, इन्हीं बर्फीली पहाड़ियों के बीच में दरअसल बोल शेप लेक फॉर्मेशन, इसे कहा जाता है, लेक फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन अगर वहां बदलाव के चलते एक बड़ा टुकड़ा या तो आइस रॉक एवलॉन्च या फिर एक बड़ा टुकड़ा गिर करके उन नदियों में जाता है, जिसके वो तालाब जो जलाशय हैं वो उन पर दबाव पड़ता है, टूट जाते हैं। लेकिन वो तब, क्योंकि चीन की सैटेलाइट लगातार इन इलाकों पर नजर रखती है, समय रहते अगर वो ये जानकारी दे पाते तो जो पानी नीचे रफ्तार में आया उसके पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम अलार्म बजाया जा सकता था, ताकि हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन ये रेंज, दरअसल हम इसीलिए इसको आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे ये बिल्कुल जो बेहद फ्रेजाइल सेस्मिक रूप से बहुत एक्टिविटी हिमालय है, और जिस ऊंचाई से पानी की रफ्तार आप सोचिए कि आई होगी, वो अपने साथ इतनी तबाही कैसे लेकर के आएगी, इतना सारा मलबा, इतना सारा पानी उन इलाकों से बचते हुए। तो बिल्कुल इसी तरह के ग्लेशियर फॉर्मेशन है और ये ऐसे ही वो टेरेन है जहां से जो पानी है ढेर सारा मलबा लेके वो नीचे आया। पहले वो जो बॉर्डर पोस्ट है चीन और नेपाल की, उसको ध्वस्त करता गया और उसके बाद आगे त्रिशूली जो बैराज है उसको तोड़ता हुआ गया, हाइड्रो प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया और उसके बाद त्रिशूली शहर के आता नोवा कोड, और इस तरह भयानक त्रासदी लेकर के आया है। ग्राउंड जीरो पर मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: रुक गए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
3: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
4: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
5: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
6: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
7: अब मैं क्या ही बोलूं?
8: परिवार अटूट भरोसा।
9: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
10: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
11: लायन डेट नट बाइट्स।
12: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: पापा
16: सॉरी यार, गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
17: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
16: छक्का?
17: सब कैशलेस हो गया है।
16: हाँ ओला ला भाई मेरा बैट।
17: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
18: बिलोटे चार्ज हुआ यार।
19: ओला बैट किसका है?
20: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: The new BE6 Sportage.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: इन एसोसिएशन विद
5: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
4: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
3: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
5: 19 साल के छात्र साहिल रजाब ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
3: हर बात देश के सामने।
4: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसलिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
3: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: भारत की सड़कों से लेकर बड़े शहरों के शोर शराबे तक हर तरफ तरक्की की एक नई चमक दिखाई दे रही है। लोगों की मेहनत और बिजनेस वर्ल्ड के बढ़ते कदमों ने देश के मार्केट को नई ऊर्जा से भर दिया है। देश की इस आर्थिक उड़ान के बीच जेब की ताकत को लेकर बेहद दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। SBI रिसर्च की ताजा रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि देश में भारी भरकम कमाई करने वालों का दायरा जबरदस्त स्पीड से फैल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2026 में 100 करोड़ से ज्यादा आय वाले टैक्स पेयर्स 39% बढ़कर 576 हो गए, जबकि एक साल पहले यानी 2025 में ये आंकड़ा 415 दर्ज किया गया था। वहीं 2022 में 100 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले केवल 142 टैक्स पेयर्स थे। सुपर रिच कैटेगरी में आए इस उछाल के साथ साथ हाई इनकम ग्रुप का दायरा भी काफी तेजी से बढ़ा है। मध्यम से उच्च वर्ग के बिजनेस और सैलरीड क्लास की ग्रोथ ने ओवरऑल टैक्स बेस को काफी मजबूत बना दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा सालाना आय वाले टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़कर 5,35,672 पहुँच गयी है। वहीं 2025 में 1 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की संख्या 4,71,419 थी, यानी सालाना आधार पर इस कैटेगरी में 14% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। और 2022 के मुकाबले 1 करोड़ से ज्यादा कमाई वाले टैक्स पेयर्स की संख्या दोगुने से ज्यादा हो गई है। टैक्स पेयर्स की बढ़ती संख्या के साथ साथ देश की ओवरऑल इकोनॉमी को लेकर भी पॉजिटिव संकेत सामने आ रहे हैं। आने वाले वक्त में देश की ग्रोथ रेट और रिजर्व दोनों ही मोर्चों पर बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026-27 की पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान है। वहीं क्रेडिट ग्रोथ में 19.3% की मजबूती दर्ज होने की संभावना भी जताई गई है और विदेशी मुद्रा भंडार 707 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल तक पहुँचने का अनुमान है। हालांकि आर्थिक बढ़त के बीच कुछ सेक्टर्स के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। हेल्थ केयर, सीमेंट और एंटरटेनमेंट जैसे सेक्टर्स के प्रॉफिट पर थोड़ा दबाव देखा गया है। इसके बावजूद ओवरऑल मार्केट में दिख रही ये तेजी भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को साफ दिखाती है। आदित्य के राणा आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक फंस गया था इस मलबे में।
1: एक बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे थे, हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।

0: यहाँ पर कृषि विकास कार्यालय था नुआकोट का, पूरी की पूरी पहली और दूसरी मंजिल जो है इस समय मलबे में है। तो आप समझिए कि नदी जो उससे भी ज्यादा 50 मीटर पीछे है वो आगे आई और उसकी धारा इतनी ऊंची थी कि उसने इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।
1: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बर्बादी की तस्वीरें, और बर्बादी खासकर जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है।
2: मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुंच चुकी है।

0: आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ, मैं हूं श्वेता सिंह। नेपाल से एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जिस इलाके में ये सैलाब सबसे पहले आया है वहां पर कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स रहे। त्रिशूली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहा वहां पर मजदूर जो फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करने की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 100 से अधिक संख्या में मजदूर यहां पर फंसे रहे, बहुत ही मुश्किल हालात हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां वहां पर हैं, लेकिन उस मलबे में से, उस जगह पे से, उस प्रोजेक्ट में से उन मजदूरों को वहां से निकालने की ये तस्वीरें, और भी इलाकों से उस पूरे एरिया में अभी इस तरह के रेस्क्यू की कोशिशें चल रही हैं। कई रिहायशी इलाके इसकी चपेट में आए और रिहायशी इलाकों में नुआकोट जो जिला है उसके कई इलाके इसमें प्रभावित हुए। त्रिशूली बाजार में 26 अगस्त को कैसी अफरा तफरी मची वो हम आपको दिखाते हैं।
1: अगस्त को नेपाल में जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें अब आई। बुधवार को यह जिंदगी और मौत की जंग थी। जिस वक्त नेपाल में पहाड़ से सैलाब मौत बनकर दौड़ा, उस वक्त लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये भयावह तस्वीरें नेपाल के नुआकोट जिले के त्रिशूली बाजार की है। काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये बाजार सबसे खौफनाक सैलाब की चपेट में आया। 26 अगस्त भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। लहरें बाजार को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थीं। लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागे जा रहे थे। जो जहां था, जिस भी स्थिति में था, वो बस भागे जा रहा था। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिला, हर कोई बेबस था। मार्केट से बड़ी संख्या में गाड़ियों में सवार लोग सुरक्षित इलाके की ओर जाने की कोशिश में जुटे थे। साइकिल सवार भी भागे जा रहे थे, तो दूसरी ओर तबाही मचाता सैलाब सब कुछ बर्बाद करके आगे बढ़ता जा रहा था। 26 अगस्त को आपदा के वक्त की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। त्रिशूली बाजार की हालत देखिए, सैलाब के साथ मलबा तेजी से बाजार में फैल गया। भारी भरकम सामान और बाइक बहते नजर आए।
2: गाड़ी, गाड़ी।
1: अब ये एक और तस्वीर देखिए। 26 अगस्त को तारुका इलाके में ऐसे हालात हो गए कि वजनदार पत्थर भी बेजान सा पड़ गया। बाढ़ की विभीषिका में बड़े बड़े पत्थर तैरते नजर आए। ये वीडियो नदी के उद्गम स्थल से 50 मील दूर तारुका गांव का है। कुदरत के इस क्रोध ने नेपाल को बड़ा सदमा दे दिया है। बेरैनी से श्वेता सिंह, चितवन से रोहित कुमार सिंह और काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
2: गाड़ी, बाइक, सब
0: जो ब्रिजेस टूटे हैं नेपाल के इस पूरे हिस्से में वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। जो त्रिशूली नदी है उसके ऊपर कई ब्रिजेस क्षतिग्रस्त हुई हैं। ऐसे ही एक इलाके से देखिए मेरी ये रिपोर्ट।
3: बैग पानी है, हम लोग ऊपर भागे थे।
0: अच्छा।
3: हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।
4: बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है, एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, साथ खाने के लिए कुछ नहीं है।
5: ये अकल्पनीय रूप में जे खालको क्षति हामीले बेहोर्नु परेको छ।
6: दो मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दब जाते सर।
7: 15 मिनट में तहस नहस करके चला गया सब कुछ, कुछ भी हम लोग के पास नहीं बचा।
8: नेपाल की जमीन पर 26 अगस्त की उस तबाही के जख्म दर्ज हैं, जिन्हें भरने में वक्त लगेगा, शायद बहुत वक्त, क्योंकि वक्त की ही गवाही इन दो वीडियो में दर्ज है। जहां नेपाल के उत्तरी हिस्से में खुशहाली खिलखिलाती थी, जहां इंसानी बस्तियां पर्यटन का आसमान सजाती थी, वहां दूसरी तस्वीर दिखाती है कैसे सब कुछ बह गया। घर के घर गायब हो गए, बस्तियां या तो बह गई या मलबे में ढह गई। जो बच गए वो खुशनसीब, उन्हीं खुशनसीबों में बुधवार का ये वीडियो, ये फिर से याद कराना जरूरी है, बताना जरूरी है कि प्रलय जब बर्फ का पहाड़ टूटने के बाद त्रिशूली नदी में बाढ़ के रूप में आई तो चंद जिंदगी थी जिन्होंने विनाश के इस बहाव के आगे सरेंडर करने से मना कर दिया और तब उन्हें बचाया गया। तो कुछ इस तरह भी, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा नहीं, ये चंद लोग हैं जिनकी जिंदगी नेपाल में बहती आफत के बाद शुरू हुए राहत के काम में बच पाई। महाविनाश काल के 30 घंटे के बाद अब कैसा है नेपाल, जहां घरों की पहली मंजिल तक जब बाढ़ का मलबा आकर समेट गया बहुत कुछ, तब बचाव रस्सियों के सहारे कुछ यूं होता भी देखा गया, लेकिन जमीन पर क्या हाल, क्या बचा। और तब ये तीन तस्वीरें देखिए, त्रिशूली नदी, तिब्बत से निकलने वाली नदी जिसे तिब्बत में किरोंग संगपो कहा जाता है, 165 किलोमीटर तक बहती है, तिब्बत से नेपाल आती है। नेपाल की वो लोकप्रिय नदी जो अपने तेज बहाव और व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए मशहूर रही, लेकिन बुधवार को इसी त्रिशूली नदी में ऐसा शूल तूफान प्रलय का उठता है जिसने एक तरफ धादिन दूसरी तरफ नुवाकोट में तबाही ला दी। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह धादिन में, संवाददाता आशुतोष मिश्रा नदी के दूसरी तरफ नुवाकोट से आगे बढ़े, एक एक करके आपको इसी त्रिशूली नदी के दोनों तरफ आए विनाश के शूल का सच आज तक पर हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के साथ हम नेपाल के धादिन की तरफ ले चलते हैं, जहां त्रिशूली नदी जब बुधवार को सब कुछ बहाने लगी तो लोग रोते बिलखते किसी तरह बचते हुए भागते दिखे, अपनों को तलाशते दिखे। जहां नेपाली सेना लोगों को एक एक करके तबाही के मलबे के बीच से निकालने में जुटी हुई है, जहां त्रिशूली नदी के बह जाने के बाद धादिन इलाके में अब जो कुछ बचा है उसे समेटने में लोग जुटे हैं, वहीं आज तक संवाददाता श्वेता सिंह जब त्रिशूली नदी में आए सैलाब के गुजरने के बाद के हालात को रिपोर्ट करती है तो मिट्टी के ऊपर नजर आता है एक हाथ का निशान, वो निशान जो बताता है कि जिंदगी यहाँ बचने को छटपटाई होगी, सैलाब के बाद कहीं से बचने की आस तो जगाई होगी। ये निशान देने वाला हाथ पता नहीं बचा या नहीं, लेकिन नेपाल में तबाही के निशान बहुत कुछ बताते हैं।
0: घरों का हाल देखिए आप, ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है, वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से, कुछ यहां पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है, उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है। बस अब ये बिजली के तारों में उलझे हुए जो पेड़ों के हिस्से हैं उससे आप समझिए कि कहां तक ऊपर तक ये पहुंचा होगा मलबा। हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं क्योंकि ये सड़क जो है वो अब यातायात के लिए बंद की गई है, क्योंकि ये बीच का जो हिस्सा है ये बहुत ज्यादा प्रभाव का हिस्सा है। ट्रक देखिए, ट्रक का जब पानी उतरा भी है, मलबा नीचे गया भी है, तो उसका आधा चक्का अभी भी उसके नीचे है, लेकिन ऊपर तक अगर आप देखेंगे तो ये ट्रक धस गया था इस मलबे में, रेत ही रेत। ये इलाका रेतीला नहीं है, लेकिन यहाँ जमीन को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको रेत ही रेत हर तरफ नजर आएगी, रेत में जैसे ये पूरा इलाका ढक गया है। ये इनका घर भी है, अब घर और सड़क के बीच में पूरा दलदल आ गया है। घर में भी भर गया क्या भैया? घर में भी भर गया है पूरा, ऊपर तक आ गया था। उनके इशारों से हम समझते हैं वो दूर है, ना वो हम तक आ सकते हैं ना हम उन तक जा सकते हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि दरवाजे के ऊपर के हिस्से तक आया था वो मलबा।
8: मुश्किल से 3 लाख की आबादी वाले धादिन के लोग याद करते हैं वो मंजर तो सहम जाते हैं।
0: कितना यहाँ पर घरों को नुकसान हुआ है अभी तक, क्या आप लोग ने आकलन किया है?
9: यो इंसिडेंट में झन्डै 100 भन्दा बढी घरहरु नोक्सानी भएको छन् र त्यो घर भित्र गरिएका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु सबै ध्वस्त भएका छन्। यहाँ धेरै अब व्यावसायिक मान्छेहरुका ठूलो नोक्सानी पनि भएको छ र अब जे हिसाबले पूर्वदेखि बसोबास गरे उनीहरू बेघर बार भएका छन् र यो अकल्पनीय रूपमा जे खालको क्षति हामीले बेहोर्नु परेको छ योले हामीलाई असाध्यै पीड़ा पनि भएको छ।
8: 26 अगस्त की सुबह से पहले 1920 वर्ग किलोमीटर यानी दिल्ली से थोड़ा बड़ा जितना शहर धादिन नेपाल का जो बसा रहा खुशहाली के साथ, जहां 26 अगस्त को आए विनाश के बाद अब खामोशी पसरी पड़ी।
0: सबसे बड़ा प्रयास ये है कि नेपाल की जो ये लाइफलाइन सड़क को माना जाता है, यहां पर ये मलबा आ गया है और इस मलबे को जेसीबी के साथ किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि कम से कम एक तरफ का रास्ता तो खुला रहे, एक तरफ का रास्ता तो चलता रहे, वरना ये इतनी फिसलन वाली पूरी जमीन है और इतनी धसने वाली जमीन है, एक तरीके से दलदल उतर आया है यहाँ की सड़क पर कि गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है वहां की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक हैं, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरी सड़क है वो उसका एक हिस्सा और अहम हिस्सा वो खुला रहे। देखिए जेसीबी के साथ इस मलबे को किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, एक तरफ कम से कम किया जाए ताकि सड़क यहाँ पर चल पाए। ये NH4 है जो सीधा उसी एरिया को जाता है जहां पर ये हादसा हुआ है। अब देखिए कि है बहुत मुश्किल, ये काम है बहुत मुश्किल काम, एक जेसीबी यहाँ पर लगी है क्योंकि पूरा एरिया जो है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड है।
8: नेपाल में रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती तौर पर 35 पुल, 45 सस्पेंशन ब्रिज और 50 किलोमीटर से ज्यादा की पक्की सड़कें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। आगे और विनाश का ब्यौरा जुटाया जा रहा है।
0: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक। नदी के साथ साथ ही लोगों की बसावट होती है। भूटेकोशी में जिस तरह से पानी का स्तर बढ़ा, सैलाब आगे बढ़ता हुआ त्रिशूली नदी में आया और उसके बाद ये डर भी हुआ कि कहीं भारत तक गंडक के पानी के साथ साथ कोई खतरा न आए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, पानी पीछे हटा है। त्रिशूली का हाल मेरे सहयोगी आशुतोष बता रहे हैं।
10: हम इस समय मौजूद हैं त्रिशूली में। दरअसल रसुआ में जो हुआ उसका असर जो दिखाई दिया वो एक त्रिशूली में दिखाई दिया और त्रिशूली के बाद आगे नोवाकोटा में। तो अब नोवाकोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ। देख लीजिए सैलाब का ये सितम, या जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ आंखों से ओझल इसलिए है क्योंकि ये बसा बसाया एक शहर था। अब आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भगवान बुद्ध का एक मंदिर था और यहाँ पर एक पुल था, हैंगिंग पुल हुआ करता था, लेकिन ये पुल अब बह चुका है पानी का सैलाब। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये त्रिशूली नदी बह रही है। ऊंचाई देखिए, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, ये 100 फीट तक पानी ऊपर चला गया था। ये जो पानी के निशान आप देख रहे हैं ये सैलाब लेकर के आया था। इसी के साथ अब आपको ये जो मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है, दरअसल ये त्रिशूली का बस स्टैंड था। आपको ऐसा लग रहा होगा ये तो नदी का किनारा कोई बीच है, ये एक बस स्टैंड था, ये समतल है और अभी भी लगातार हवा में जो हेलीकॉप्टर है वो मंडरा रहे हैं जो रोसोवो तक लोगों को रेस्क्यू करके आगे पहुंचा रहे हैं सुरक्षित। लेकिन बस स्टैंड पूरी तरह एक मलबे में तब्दील हो चुका है, लगता ही नहीं कि यहाँ का भी बस स्टैंड रहा होगा। इसके आगे देखिए, ये जो खाली मैदानी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल ये एक स्कूल हुआ करता था लेकिन अब पूरा का पूरा स्कूल जो है वो समतल हो चुका है। झूले पर लोग थे, कहां गए नहीं पता। स्कूल में बच्चे थे, कहां गए नहीं पता। इन मकानों में जो आपको कई सारी मंजिलें जो है जमीन के नीचे दब गई हैं, वो लोग कहां थे नहीं पता। जितनों को लोग निकाल पाए, बाकी जो कहां हैं कोई नहीं जानता। और इसीलिए ये संख्या, ये वो तस्वीरें हैं जो आप आज तक पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो पर, खासकर कैसे एक नदी प्रलय लेकर के आती है, तिब्बत से पानी और मलबा अपने साथ नेपाल में घुसती है, तो ऐसा सैलाब लेकर के आती है कि उसके बाद मानो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया हो। त्रिशूली की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोवा कोटा में। यही त्रिशूली नदी जिसके नाम पर ये त्रिशूली बाजार बना हुआ है, और अब त्रिशूली बाजार का अस्तित्व जो है वो पूरी तरह से खत्म हो।
0: एक छोटे से ब्रेक के लिए, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: The new BE6 Sportage.
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया तो कुछ ने ग्लेशियर झील के फटने का, लेकिन अब अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है। शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मोहर लगा दी क्योंकि ये चीन को सूट करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। USGS के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीज़मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर दिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 469 से ज्यादा लोगों की गई जान। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी है रेस्क्यू, भारत से पहुंची मदद की खेप।
1: जल विस्फोट की वार्निंग कभी भी फट सकती है। एक और अफंती झील, कुछ दिन बारिश हुई तो दोबारा आ सकता है जानलेवा सैलाब। चीन ने जारी की खतरनाक चेतावनी।
0: जेन जी आंदोलन के बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी। रोजगार, शिक्षा, महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा।
1: आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पति पत्नी। सैन ठिकानों की तस्वीरें भेज रहे थे पाकिस्तान। साहिल और समीरा को जानकारी के बदले पैसे देते थे हैंडलर्स।
0: आज रक्षाबंधन पर पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में सीएम शुभेंदु अधिकारी करेंगे वंदे मातरम का गान। एसएफआई और एबीवीपी में टकराव के बाद राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने की मुहिम।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथ।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं शतकास्तर।

0: नेपाल की भीषण बाढ़ में अब तक 470 लोगों की मौत। भोटे कोशी नदी में फिर उफान का खतरा, कुल 1500 से ज्यादा लापता। सैकड़ों लोग अब भी लापता, मलबे से जारी है जीवन की तलाश। रसुआ में चितवन तक भयंकर तबाही, सड़क पुल मकान दुकान होटल सब बाढ़ में बह गए। भोटे कोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कैंप और मजदूरों के टीन शेड तबाह, खौफनाक मंजर। नेपाल में आई बाढ़ के कारण 290 भारतीय नागरिकों से फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य में टिटरी टीमों ने सफलता हासिल करते हुए 84 भारतीयों को सुरक्षित बचाया। रेस्क्यू किए गए लोगों में त्रिशूली प्रोजेक्ट में फंसे 63 वर्कर और तमिलनाडु के रहने वाले 21 लोग शामिल। नेपाल में ग्लेशियर ढहने से तबाही का शक, लहदे नदी में आई भीषण बाढ़, सैटेलाइट तस्वीरों में देखे टूटे ग्लेशियर। रसुआगढ़ी सीमा के ऊपर नदी में बड़ी रुकावट से बनी झील, नेपाल सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट, निचले तटीय इलाकों को सतर्क रहने की चेतावनी। नेपाल में बाढ़ के मलबे के सामान निकालने के लिए जान जोखिम में डाल रहे लोग, पुलिस ने वीडियो जारी कर दी सुरक्षित रहने की चेतावनी। नुआकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में यूनिसेफ टीम ने किया दौरा, राहत गतिविधियों की निगरानी। नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने लॉन्च किया इंटरनेशनल डोनेशन पोर्टल, विदेशी दाता सीधे राहत कोष में जमा कर सकेंगे रकम।
1: नेपाल में बाढ़ के बीच हाइड्रो पावर टनल में फंसे लोगों का रेस्क्यू, नेपाली सेना ने संभाला मोर्चा। नेपाल में आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री बालेन शाह हालात का जायजा लेने नुआकोट पहुंचे, मौके से बालेन शाह की तस्वीरें आई सामने, सुरक्षा बलों से बातचीत करते और हालात का मुआयना करते आए नजर। बालेन शाह ने प्रभावित नागरिकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सुरक्षाकर्मियों, डॉक्टर्स और राहत कार्य में जुटी टीमों से सीधी बात करके जमीनी हकीकत जानी। निरीक्षण के बाद काठमांडू लौटे प्रधानमंत्री, स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है, राज्य के सभी प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में तैनात है। नेपाल बाढ़ में फंसे महाराष्ट्र के 114 पर्यटक, 53 सुरक्षित, सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉल पर कहा डरिए मत सरकार आपके साथ है। फडणवीस ने विदेश मंत्रालय से की बात, 24 घंटे कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन जारी। नेपाल में फ्लैश फ्लड से तबाही, ड्रोन फुटेज में दिखा खौफनाक मंजर, नदी किनारे बस्तियां तबाह, फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में भारी तबाही, ड्रोन से सामने आई तस्वीरें। त्रिशूली बाजार में फ्लैश फ्लड की भीषण तबाही, ड्रोन फुटेज में मलबे और कीचड़ से घिरी बस्तियां। नेपाल में बाढ़ भूकंप का डबल अलर्ट, बैरियर झील ओवरफ्लो, टूटने का बड़ा खतरा, 350 मजदूरों का रेस्क्यू। बाढ़ के बाद नई मुसीबत, 3.2 तीव्रता का भूकंप, ओवरफ्लो बैरियर झील से तबाही का डर। नेपाल बाढ़ और भूकंप के बीच बड़ा खतरा, झील में 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का अनुमान, भारत की मदद जारी, भारत भेजेगा C-130J।
0: परिसीमन पर सियासत तेज, खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग। राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, 28 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू, सरकार ने आधिकारिक घोषणा की। पटना में TRE-4 को लेकर छात्रों का धरना खत्म, सम्राट सरकार से मांगों पर बनी सहमति। TRE-4 छात्रों के आंदोलन का अंत, माने मांगे मानी जाने के बाद जस्ट में डूबे प्रदर्शनकारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक, राज्यों के चुनावी रोडमैप पर मंथन हुआ। कोलकाता में TMC कार्यकर्ताओं, पुलिस में भिड़ंत, अभिषेक बनर्जी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जादवपुर में सुवेंदु अधिकारी गाएंगे वंदे मातरम, देशभक्ति के जरिए सियासी संदेश की तैयारी। आरएस प्रमुख मोहन भागवत के मेडिसन स्क्वायर गार्डन कार्यक्रम के आयोजकों का एक्स अकाउंट बहाल, कुछ देर के सस्पेंशन के बाद VR बैकअप। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील घोषित, सीएम धामी ने नियमित निगरानी के लिए निर्देश दिया, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा मजबूत।
1: बीजेपी के अमरपाल मौर्य का SP पर हमला, बोले 2027 में गया झील लेकर ले जाकर करेंगे पिंडदान, यूपी में सपा का भूत भी नहीं दिखेगा, पिछड़े वर्ग के लिए काम कर रही है बीजेपी सरकार। अयोध्या के बाद मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानों पर बैन की मांग, 30 अगस्त को लखनऊ की कूच, विश्व हिंदू 36,000 करोड़ के गंगा एक्सप्रेस वे पर फिर सवाल, पांच वर्ग के आधे घंटे बाद दोबारा आई दरारें, 15 फीट सड़क में दिखे क्रैक। JP-NIC निजीकरण विवाद पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले कमीशन ही बीजेपी का मिशन है, बीजेपी ने JP-NIC निजी हाथों में बेचा। आरक्षण हटाओ आंदोलन पर अभिजीत दीपके का जेपी नड्डा से सवाल, बोले 21 अगस्त से आंदोलन पर पीएम मोदी का क्या कहना है, देश जानना चाहता है। FD भर्ती परीक्षा पेपर लीक की जांच में लव अफेयर एंगल का दावा, एक शिक्षक कोचिंग संचालक की भूमिका में जांच के घेरे में। अंबादास दानवे ने कहा कि सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होना अब आम बात हो गई है, सिस्टम में नैतिकता खत्म हो चुकी है और सरकार का प्रशासन का नियंत्रण नहीं रहा है। गोवा में FDA का बड़ा एक्शन, सरकारी दफ्तरों की 3 कैंटीन बंद, किचन हाइजीन और स्ट्रक्चर में मिली गंभीर खामियां। जालना में शिक्षक की कमी को लेकर अभिभावकों ने जिला परिषद स्कूल को लगाया ताला, 4 साल से 1 शिक्षक गैर हाजिर, पहली से पांचवी तक की पढ़ाई के लिए एक ही शिक्षक के भरोसे है स्कूल।
0: पालघर में 620 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी हाईवे बेहाल। वैतरणा पुल पर बड़ा गड्ढा हो गया, हादसे का खतरा। कानपुर में नगर निगम के खिलाफ समाजवादी पार्टी विधायक ने 20 फीट गड्ढे में शुरू किया धरना। विधायक का ऐलान, नगर निगम अधिकारी जब तक नहीं आएंगे बैठा रहूंगा गड्ढे में। इंदौर में 9 दिन में दूसरी सड़क धसी, 20 फीट गहरा गड्ढा। वाल्मीकि बस्ती की सड़क से रोज 10,000 वाहन गुजरते हैं, ड्रेनेज लाइन से धंसने की आशंका। महाराष्ट्र के बीड़ में सूखे से बिगड़े हालात, चारे के बिना बिलख रहे हैं मवेशी, महिला किसानों की आंखों में आंसू। बाराबंकी में मासूम बच्चे की डीएम से गुहार, डीएम अंकल रोड बनवा दीजिए, वायरल वीडियो पर प्रशासन ने एक्शन लिया। आज है भाई बहन के प्यार का खास त्यौहार रक्षाबंधन, इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है। रक्षाबंधन पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता को बच्चों ने बांधी राखी, भावुक और खास पल दिखा। राहुल गांधी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, बोले प्रेम और विश्वास से मजबूत हो भाई बहन का रिश्ता। आज राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दिन भर रहेगा मौजूद, बहने सुबह दोपहर या शाम किसी भी समय बांध सकती है राखी। नीमच में बनी अनोखी शिव राखी, 13 रुद्राक्षों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की उकेरी गई है तस्वीरें।
1: रक्षाबंधन पर अखिलेश का महिलाओं से संवाद, बड़े ऐलानों के बाद सपा का महिला संपर्क अभियान तेज। सावन पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ी आस्था की भीड़, सरयू में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। लखनऊ जेल में रक्षाबंधन की खुशियां, बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी सजाई, भावुक हुए भाई। रक्षाबंधन पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा, मंगला आरती के दौरान भगवान को अर्पित की गई राखी। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं संग मनाया रक्षाबंधन, राखी बांधकर जताया सम्मान। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश से हाईवे और बाजार डूबे, लगभग 200 दुकानों में लाखों का सामान बर्बाद। यूपी के एटा में पुलिस और विनाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में चोरों का अजीब कारनामा, जेवर के साथ 30 किलो चीनी ले उड़े। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, जिम के बाहर अंकित पर 4 बदमाशों ने बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। शामली घटना को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले क्या सीएम योगी जाट समाज के आक्रोश और दुखी पिता की आवाज सुनेंगे।
0: ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यादव पर अभद्र टिप्पणी का मामला, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में दी शिकायत। यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, 9वीं से 12वीं तक छात्रों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए अपार आईडी पर जोर, छात्रों की मार्कशीट से टीसी तक डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित, अपार आईडी बनेगी 12 अंकों की स्थायी पहचान। बिजनौर में स्कूटी सवार को उछलकर भाग रहे ट्रक की सामने से आ रहे कैंटर से भीषण भिड़ंत, दोनों वाहनों में लगी भयंकर आग, ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। कानपुर में एआई से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को बताता था गर्लफ्रेंड, तंग आकर नीच छात्रा ने किया सुसाइड। गाजीपुर में 2 सगे नाबालिग भाइयों की हत्या, मां गिरफ्तार, 9 साल की बहन के बयान से खुला राज, लोहे की रॉड बरामद। सोनभद्र में महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध, चीनी बनी दूल्हा, प्याज बनी दुल्हन, सब्जियों के बढ़ते दाम पर प्रदर्शन। केरलम के एर्नाकुलम में भीषण सड़क हादसा, स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में पलटी टूरिस्ट बस, शादी में जा रहे 35 यात्री घायल। बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस की डंपर से भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 2 की मौत, 24 घायल। दिल्ली में आईएसआई जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पति पत्नी साहिल और समीरा गिरफ्तार, 2024 से आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। गुजरात के खंबात में मजदूर की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, जवाब में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले।
1: मुस्कान हत्याकांड का आरोपी इमरान के दोनों पैर में लगी गोली, घायल हुआ, जवाबी फायरिंग में दोनों पैरों में मारनी पड़ी गोली। उधमपुर में NH-44 पर भीषण हादसा, फ्यूल टैंकर और डंपर की टक्कर के बाद लगी आग। चाणक्यपुरी थाने के स्टोर रूम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। अलवर में सरकारी अस्पताल में लोगों ने जड़ा ताला, 15 दिन से डॉक्टर ड्यूटी से गायब। नागपुर के कुंडाली स्थित फार्म हाउस में लगी भीषण आग, 40 मिनट में फार्म हाउस जलकर खाक। चंद्रपुर में फर्जी डिग्री का करोड़ों का खेल, 5 से 10 लाख में नहीं बिक रही है नामी यूनिवर्सिटी की बोगस डिग्रियां, एक गिरफ्तार। पुणे में चेंबर में फंसकर 2 मजदूरों की मौत, पिछले साल इसी चेंबर में 3 लोगों की गई थी जान। जयपुर में 2 दिन में 2 स्टूडेंट्स की आत्महत्या, निम्स यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में पत्नी ने पति की गला घोटकर की हत्या, पत्नी हुई गिरफ्तार, पत्नी के अवैध संबंध और शराब पीकर पति का पत्नी को पीटने का प्रकरण आया सामने।
0: पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, मारुति इको खाई में गिरे 6 लोगों की मौत, 3 घायल। रायगढ़ में सब्जी बनाने को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या, शव जलाकर हड्डियां दफन की, डीएनए रिपोर्ट से खुला अंधे कत्ल का राज, पति गिरफ्तार। रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से घर लौट रही दलित युवती की हत्या, शकोहाबाद में मिला शव, परिजनों ने दुष्कर्म की आशंका जताई। पटना में दलान पर सो रहे युवक को मारी गोली, हालत गंभीर, मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। मुंबई के परेल में दो कुत्तों के बीच झड़प के बाद तनाव, पुलिस की सूझबूझ से चला बड़ा विवाद। मुंबई के भांडुप में 10वीं मंजिल की छत से गिरी महिला, पेड़ की डालियों में फंसी, मशक्कत से रेस्क्यू कर उतारा। टिहरी में मां की हत्या कर जंगल में छिपा आरोपित बेटा गिरफ्तार, चार पुलिस टीमों ने चलाया सघन कॉम्बिंग अभियान। रोहतास में इलेक्ट्रिक स्कूटी के गोदाम में लगी भीषण आग, 85 इलेक्ट्रिक स्कूटी और 200 बैटरी जलकर राख। करनाल में नेशनल हाईवे किनारे एक फैक्ट्री में भीषण आग, 10 से 12 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया, भारी नुकसान की आशंका। लखनऊ के मुद्देश्वर शिव मंदिर में चैन चोरी का हैरान करने वाला मामला, महिला ने दांत से काटकर श्रद्धालु की सोने की चैन उड़ाई, सीसीटीवी में कैद हुई। आज अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म कौसला का कौसला 2 रिलीज हुई, लगभग 20 साल बाद सीक्वल आ रहा है। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा आज से हो रही है ओटीटी पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बद्दर, आज से G5 पर। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी आज से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध, सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देविन भोजानी और अमायरा दस्तूर का है विरोध। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल, 29 अगस्त को जियो हॉटस्टार पर।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, नेपाल में एक और जल विस्फोट का खतरा मंडरा रहा है। नुवाकोट इलाके में खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। नदियों में 5 गुना पानी आ सकता है। सेना और पुलिस इलाके को खाली कराने में जुट गई है। ऊपरी इलाकों की झील में हलचल की खबर है।
1: बड़ी खबर आपको बता रहे, नेपाल में एक और जल विस्फोट का खतरा और अभी तक न जाने कितने लोगों की मौत होगी, कितने लापता हैं, और इसीलिए चेतावनी जारी की गई है कि अगर दोबारा से ऐसा कुछ होता है तो पहले से सावधानी बरती जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। नदियों में 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है, ऐसी चेतावनी जारी की गई। ऊपरी इलाके की झील में हलचल की खबर है और उसके बाद सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। एक और जल विस्फोट का खतरा, एक जल विस्फोट की विभीषिका अभी भी हम देख रहे हैं, जहां भारी तबाही मची, घर दुकान सब कुछ बर्बाद हो गया और लोगों की आंखों में सिर्फ आंसू रह गए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि खतरा भी पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुआ, खतरा अभी भी बाकी है।
0: कहा जा रहा है कि नदियों में 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। सेना और पुलिस इलाका खाली कराने में जुटी हुई।
2: क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
2: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
2: तो नुवाकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है, और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए आप पुलिस सही, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: सबसे
2: कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहां से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है। जितने भी लोग हैं और ये कहा गया कि यहां से निकल जाएं क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहां से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहां से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरे बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, आपने टीम्स को सुना कैसे इस वक्त प्राथमिकता यह है कि उन इलाकों से लोगों को हटाया जाए, इवैक्यूएट किया जाए जहां पर इस वक्त एक बार जल सैलाब की आशंका बनी हुई है। खतरे का अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में वो तमाम मॉनिटरिंग सिस्टम्स इस वक्त काम कर रहे हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कब

0: की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि चीन और तिब्बत की ओर से भी इस बात का अलर्ट आ रहा है।
1: देखिए आज तक की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हर एक वो तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। और आज में अभी आपने देखा आशुतोष की वो रिपोर्ट जहां पर स्थानीय लोग और जो रेस्क्यू टीम है वो लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को ये चेतावनी दे रही है कि आप नदी किनारे मत रहिए, नदी से बहुत दूरी बना के रखिए, क्योंकि जब सैलाब आता है तो वो सिर्फ नदी तक सीमित नहीं रहता है, नदी से ऊपर सड़क, मकान, घर, दुकान सब कुछ अपनी चपेट में ले लेता है। और उसकी जीती जात जो उदाहरण है वो ये तस्वीर है, ये देखिए जहां लोग भाग रहे हैं, यहाँ कोई नदी नहीं है, यहाँ पर रोड है, दुकानें हैं, घर हैं, प्रतिष्ठान है, लेकिन यहाँ पर इतना तेज बहाव आता है कि सब कुछ अपने साथ में बहा ले जाता है। और जैसा खतरा भी बताया गया कि अभी एक बार फिर से जल प्रलय आ सकता है नेपाल में, और इसीलिए लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आप सुरक्षित जगह पर जाइए। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नेपाल त्रिशूली नदी के लिए खतरे का अलर्ट अभी भी जारी किया गया है, खतरे की चेतावनी अभी भी जारी की गई है। 26 अगस्त को जो हुआ वो सबने देखा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी खतरा ज्यादा है, 5 गुना तेजी से बढ़ सकता है त्रिशूली नदी का पानी। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां लोगों को सजग और सतर्क किया जा रहा है।
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ है अभी यहाँ पे?
3: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
2: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
2: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
2: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
2: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
3: कृपया
2: कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो हैं वो लोग वहां से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है, कितने भी लोग हैं, और ये कहा गया कि यहां से निकल जाएं क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहां से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहां से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरे बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जैसा कि रिपोर्ट्स में आपने सुना, अगला आधे से एक घंटा इस पूरे इलाके के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील, क्योंकि यहां पर पानी का लेवल बढ़ सकता है, एक और जल विस्फोट हो सकता है, जिसका अलर्ट एजेंसियां जारी कर रही हैं। आपने वहां पर कई कर्मियों को ये कहते सुना कि अगले 20 से 25 मिनट में ये जल प्रलय आ सकता है, यही वजह है कि वहां से लोगों को हटाया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है सुरक्षित स्थान पर।
1: और देखिए ये एक और जो बड़ी खबर आ रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी रोका गया है खतरे के चलते, बचाव दल को पीछे हटने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है और वो भी ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए लोगों की जान बचाना सबसे पहले प्राथमिकता है। विपक्ष के नेता यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। नेपाल में
4: यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सब भी ऊपर जाने के लिए भी मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और सब हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं, और आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपने प्लेस से ठम से वो सब कीजिए, हम लगे रहे हैं
0: भारत की तरफ से लगातार मदद,
4: सब सब भारत भी और सब हमारे छिमे की देश के लिए
5: सब कर रही है, लेकिन इस बीच अनाउंसमेंट हो रहा है कि
0: रिवर में
5: वाटर लेवल बढ़ने वाला
4: वो,
5: है।
4: हाँ, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ? क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है इसीलिए हम सब कर रहे हैं, नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस हम तीनों

0: स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं। दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 वाला और निजी क्षेत्र प्राइवेट, ये सब चेने हेलीकॉप्टर लग रहे हैं।
1: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चीन से आ रही है खबर, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को फिलहाल रोक दिया है। जल प्रलय के खतरे को देखते हुए अब रेस्क्यू टीम से भी कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, ये ऑपरेशन अब रुक चुका है। चीन ने दरअसल ये अलर्ट जारी किया था और बचाव दल को अब 1 किलोमीटर पीछे हटने के लिए कहा गया है।
2: देखिए, जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बहुत से लोगों को बचाने के लिए नदी किनारे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, लेकिन अब खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। मलबे से बनी झील के फटने का खतरा है, और ऐसे में अगर वो झील फटती है तो उसके बाद बहाव बहुत तेजी के साथ निचले इलाकों में आएगा, और इसलिए कह दिया गया है कि जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे अभी रोक दिया जाए, क्योंकि खतरे में नहीं चाहते कि किसी और की जान जाए। तो इसलिए 1 किलोमीटर उनको पीछे हटने के लिए कहा गया है, ऊंचे इलाकों पर जाने के लिए उनसे कह दिया गया है, ताकि अगर झील फटती है और उसके बाद पानी का बहाव बहुत तेजी के साथ नीचे आता है तो लोगों की जान बचाई जा सके और ज्यादा नुकसान ना हो। रेस्क्यू ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन सावधानी बरतना इस वक्त जारी है। और यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa!
2: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया
2: है।
3: हाँ।
2: ला, ला भाई मेरा बैट।
3: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
4: अभी तो चार्ज हुआ यार।
5: बैट किसका है?
6: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
0: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: इस बीच बड़ी खबर चीन के सिचुआन प्रांत से, जहां पर भूकंप की खबर है। यहां पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जो भूकंप आया था वो लगभग 4 की तीव्रता का था, इस बार और ज्यादा तीव्रता का भूकंप आया है। लांगचांग शहर में भूकंप के झटके महसूस किए गए।
6: देखिए, चीन का सिचुआन प्रांत भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5.1 तीव्रता का भूकंप है रिक्टर स्केल पर और अब अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, सावधानी बरतने के लिए भी कहा गया है। रुकेंगे एक और बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
0: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
8: सोच बदलो और बैंक भी।

0: 스쿼시 와우.
1: ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बाढ़ आ रही थी। तब तक नदी अपने हदों में बह रही थी, दोनों तरफ घास के मैदान थे। दूर पहाड़ी के कोने से सैलाब का सिर नजर आने लगा था। आगे आगे नदी का सफेद पानी, पीछे से मटमैले पानी की करीब 20 से 25 फीट छलांग लगाती प्रचंड प्रवाह। एक मिनट के अंदर सैलाब की दूसरी प्रचंड धारा आई। तब तक नदी के किनारे स्क्रीन पर बाईं ओर दिख रहा ये मकान वजूद में था। दूसरा मिनट गुजरते गुजरते वो इकलौता मकान डूब चुका था। बाईं ओर की इस बस्ती पर खतरा था। तीसरे मिनट में इस बस्ती के अंदर सैलाब की धारा घुस चुकी थी। पहाड़ी से सैलाब की लहर पर लहर उतरती जा रही थी। और चौथा मिनट गुजरते गुजरते करीब दर्जन भर इमारतों वाली ये बस्ती खत्म हो चुकी थी। अब इन दो तस्वीरों में फर्क देखिए। चार मिनट के फर्क में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जन्म भर की मशक्कत और बरसों की उम्मीदें सिर्फ चार मिनट में मलबा बन गई थी। एक और तस्वीर देखिए, जब पहाड़ी पर सैलाब का प्रचंड प्रवाह किसी वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा होगा तो कैसा नजारा रहा होगा। नदी में उतरी सैलाब की धारा की सीधी टक्कर जिस जगह पर हुई वहां की इमारतों के बीच प्रचंड प्रवाह ने देखते ही देखते तबाही मचा दी। लोग भागने की कोशिश करते रहे। चंद सेकंड के अंदर सब कुछ सैलाब की चपेट में था। आज तक ब्यूरो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: नेपाल त्रासदी से जुड़ी अभी की एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल पर एक और जल प्रलय का खतरा मंडरा रहा है और ये खबर है कि नुवाकोट के ऊपरी इलाके में बनी झील में हलचल शुरू हो गई है। ग्लेशियर के फटने की आशंका है और ऐसा हुआ तो इस बार पहले से 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है और इसीलिए सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। लोगों को चेताया जा रहा है, लाउड स्पीकर से उनको संदेश दिया जा रहा है कि जितना दूर हो सके नदी से दूर हो जाए। आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष, इस वक्त क्या हालात है वहां पर और क्या चेतावनी जारी की गई है?
1: ढूंढगे के पास में हूँ, नुवाकोटी का ये आखिरी शहर है और यही वो शहर है जो पूरी तरह बर्बाद हुआ। ये इन मशीनों को आपने मेरी पहले रिपोर्ट्स में देखा होगा जो यहाँ पर सड़क को रिस्टोर कर रहे थे ताकि रासुआ और आगे त्रिशूली बाजार का रास्ता खुले। इन भारी मशीनों को भी वहां से हटा दिया गया, ये बिल्कुल आए हैं। इसी के साथ मेरे पीछे जो सड़क है नुवाकोटी की आगे ढूंढगे के पास, इस सड़क को पुलिस ने बैरिकेड करके बंद कर दिया है, पूरे शहर को खाली करा दिया गया। हालांकि शहर पहले ही खाली हो चुका था लेकिन अभी अभी मुझे अधिकारियों ने बताया कि जो जलाशय बना हुआ था वो उसमें से एक ने अपनी सीमा तोड़ दी। और अगर ऐसा हुए, देखिए पूरी सड़क अब सन्नाटे में है, ज्यादातर जो लोग हैं उन्हें लगातार आपको सीटियों की आवाज आ रही है, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। इस तरफ जो घर थे, गांव थे, वहां कुछ लोग गए थे, उनको भी तुरंत हटाया गया था। यहां पर एपीएफ का एक हेडक्वार्टर था, उसे खाली करा दिया गया। जितनी दुकानें आपको दिख रही हैं, सुबह खुली भी थी, इन सबको बंद कर दिया गया। लोग यहां से छोड़ के जा चुके हैं और वो इसलिए कि चेतावनी इस तरह की है कि जिस तरह का ग्लेशियर फॉर्मेशन था, अगर वो पानी नीचे आता है तो खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब तक जो तबाही देखी थी संभवतः ये नुकसान उससे 5 गुना ज्यादा हो सकता है। और उसी के बाद और पानी, और ये कहा गया था कि अब से किसी भी मिनट नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और बिल्कुल मैं अचानक यहीं पर बैठा था, मैं अपनी रिपोर्ट फाइल कर रहा था और अचानक एक कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहां से गाड़ियां गुजरती हैं, सायरन बजाते हुए, स्पीकर पर आवाज देते हुए, छटपट गाड़ियां बंद होती। उधर से हमने लोगों को भागते हुए दौड़ते हुए देखा। जब तक कुछ समझ पाता तब तक पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो एकदम हरकत में आ गया था, इसलिए क्योंकि इस बार जो दो, खासकर आप देखिए कि भाटकोशी नदी और उसी के साथ त्रिशूली, भाटकोशी के पास एक नदी पर पहले हमने देखा था जो चीन ने चेतावनी दी है कि वहां पर लगभग 20 लाख क्यूबिक मीटर का पानी का जमावड़ा है। और अगर हमें ऊपर और बारिश होती है तिब्बत के प्लेटो में तो वहां से पानी आएगा तो दीवार कमजोर हो सकती है, जिस मलबे से वो दीवार बनी है प्राकृतिक वो टूट सकती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है त्रिशूली के पास ऊपर जो हिस्से में पानी जमा था, और इसीलिए और हम जहां पर थे नीचे, ये इलाका उससे लगभग करीबन 60 से 70 फीट ऊंचा है। हालांकि अभी भी हमें कहा जा रहा है थोड़ी देर में हम यहाँ से इस रिपोर्ट के बाद संभवतः हम और ऊंचे इलाकों पर चले जाएंगे। और इसीलिए कहा गया कि यहाँ कोई नहीं रुकेगा, सिर्फ प्रशासन के लोग हैं सारी, मतलब जिस तरह का अलर्ट लेवल हमने देखा है कि अगर पहले यही समझ में आता, अगर चीन ने पहले चेतावनी दी होती तो संभवतः कैजुअलिटी इतनी नहीं होती। प्रशासन जिन इलाकों पर रहता है, देखिए आपके सीटियों की आवाज आ रही है लगातार, लोगों को कहा जा रहा है यहाँ कोई नहीं रुकेगा। ऊपर जो
0: चौपर ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया, ये खबर आ रही है। अच्छा आशुतोष, ये बताइए आप जहाँ पर मौजूद है वहां से नदी कितनी दूर है, और दूसरी बात ये कि इम्पैक्ट कितनी दूर तक कहा जा रहा है, जो विशेषज्ञ जो ये बता रहे हैं इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि कितनी दूर तक उसका इम्पैक्ट हो सकता है अगर वो झील फटती है और पानी का सैलाब आता है तो?
1: देखिए पानी तो नीचे जाएगा, नदी की धारा जहां तक है पानी तो वहां तक जाएगा, लेकिन जिस ऊंचाई से पानी आ रहा है सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट दिखाई देगा, ये अंदाजा नहीं है कि क्या ये 10 लाख क्यूबिक मीटर के जलाशय का पानी है, 20 लाख है, पानी है कितना इस पर निर्भर करता है। मसलन एक ग्लास पानी नीचे गिरे और एक बाल्टी पानी गिरे, पानी का घनत्व तो जितना ज्यादा होगा मात्रा उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होगा। तो पानी नीचे तो आ रहा है तो जाहिर है कि जो सबसे पहला रोसाऊ है वहां पर उसका असर होगा, क्योंकि वो खाली हो चुका है, वहां पानी तेज होगा। फिर जैसे जैसे ये 50 किलोमीटर का टेरेन है, इस 50 किलोमीटर पानी आएगा उसकी रफ्तार कम हो रहेगी धीरे धीरे। लेकिन हम जहां पर हैं, क्योंकि एजेंसियों को ये अनुमान है कि नदी में पहले ही बहुत सारा मलबा, देखिए नदी की चौड़ाई कम हो चुकी है और बाकी जगह पर मलबा भरा हुआ है, पानी अगर आएगा तो उस मलबे के ऊपर आएगा, इस वजह से जिस पानी को नीचे होना चाहिए था अब उसकी ऊंचाई का स्तर काफी ज्यादा होगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि 5 गुना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हम देख रहे हैं पुलिस हेडक्वार्टर के पास की जो भी गाड़ियां हैं मेरे पीछे पीछे, वो भी अब यहां से निकल रहे हैं, वो भी वहां से खाली कर रहे हैं, क्योंकि इलाका अब किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तो अब विदेशी मीडिया भी यहां पर बहुत बड़ा जमावड़ा, उनको भी यहां से हटाया जा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इनको कहा जा रहा है कि यहां से और पीछे जाएं। तो ये संभावना, उन्हें अंदाजा है कि दोबारा वो ऐसा रिस्क जोखिम नहीं ले सकते थे। रेस्क्यू ऑपरेशंस को अब फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि जहां आपको अपने लोगों को उतारना है, जवानों को उतारना है, पहले उनको अब इवैक्यूएट करना जरूरी है ताकि वहां पर दोबारा कोई मुसीबत ना, या फिर वो क्योंकि वो ट्रेंड है वो फिर भी ऊंचे इलाकों तक चले जाएंगे। तो हम जहां तक है यहां तक तो पानी का स्तर होगा, लेकिन इसके आगे चूंकि आप जब वैली के आगे की तरफ जाएंगे जो दूसरे जिले हैं वहां पर पानी बढ़ेगा तो उसमें कुछ समय लगेगा, नदी का स्तर लेकिन बढ़ेगा नीचे तक, पानी कितना है मलबा कितना है उस पर तय करेगा। मलबा अगर ज्यादा है तो चूंकि ढलान का इलाका है मलबा आगे तक आएगा, पानी ज्यादा है तो नीचे आप समझिए कि सीमावर्ती इलाकों तक भी पहुंच सकता है, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है कि उसमें पानी कितना है, मलबा कितना है, इसलिए सबको इंतजार है कि जो त्रासदी है ये जल्दी से बस यहां से पार करके बिना किसी नुकसान के निकल जाए।
2: इस बीच नेता विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से लोगों को सावधान रहने की अपील है, सुनिए।
3: यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सबके लिए भी ऊपर जाने के लिए भी ये मौसम भी अच्छा नहीं है, फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और सब हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है, इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं, और आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपने प्लेस से ठम से वो सब कीजिए, हम लगे रहे हैं
4: भारत की तरफ से लगातार मदद
3: सब पहुंचाई सब भारत भी और सब हमारे सीमे की देश के लिए
5: देश कर रही है, लेकिन इस बीच अनाउंसमेंट हो रहा है कि रिवर में
4: फ्लो बढ़ने
3: वाला है। हाँ, अभी वो भी अभी अनाउंसमेंट हुआ है, हा? क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है इसीलिए हम सब कर रहे हैं, नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय हम सब कर रहे हैं।
4: कितने हेलीकॉप्टर?
3: दो सेना का हेलीकॉप्टर है, नौवाड़ा और निजी क्षेत्र प्राइवेट ये सब चेन्नई हेलीकॉप्टर लग रहे हैं।
0: तो नेपाल में जहां जहां त्रासदी आई है वहां वहां आज तक के रिपोर्टर मौजूद है। आशुतोष की रिपोर्ट अभी आपने देखी, पंकज दास भी हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज, आप जहां पर मौजूद है वहां पर अब क्या सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जल प्रलय एक बार फिर से आ सकती है नेपाल में?
6: अभी बिल्कुल, नेपाल सरकार चीन सरकार की तरफ से अभी कुछ देर पहले नेपाल को ये ऑफिशियली जानकारी दी गई है, जो दूसरा साल इसकी टूटने की आशंका कल से की जा रही थी और कल भी चाइना ने नेपाल को ये आगाह किया था कि किसी भी वक्त ये टूट सकता है। तो अब से 10-15 पहले ही ये साल टूट चुका है और चीन ने नेपाल को कहा कि वो अपने नागरिकों को आगाह कर दे। नेपाल की तरफ से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है उन सभी इलाकों में जहाँ इससे पहले भी चढ़ाई हुई थी और जहाँ बच गए थे।
2: ठीक है, आपकी आवाज साफ नहीं है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल और चीन सीमा पर इस वक्त दो दो झीलों के जल प्रलय का खतरा है। ये दोनों झील मलबा जमा होने और ग्लेशियर के फटने से बनी, और इन्हीं झीलों में से एक झील में इस वक्त हलचल की खबर है।
0: चीन और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां इन झीलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये झील फटती है तो 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है।
7: नेपाल पर जल प्रलय का अलर्ट, नेपाल पर खतरा भी टला नहीं, बॉर्डर पर जल विस्फोट का डेंजर, दो झीलों में बढ़ रहा जल स्तर, 1 सितंबर तक महातबाही का खतरा। नेपाल में बाढ़ की विभीषिका की इन तस्वीरों को जिसने देखा दहलकर रह गया। तबाही की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। आज तक संवाददाता जहां भी जाते हैं बर्बादी की भयानक तस्वीरें नजर आती हैं।
8: घरों का हाल देखिए आप, ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है। वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से, कुछ यहाँ पर जेसीबीज हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है। उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है।
7: नेपाल इस तबाही से जूझ रहा है। माना जा रहा है कि इस तबाही से उबरने में नेपाल को कई साल लग जाएंगे, लेकिन ये तबाही अभी पूरी तरह टली नहीं है। अभी ऐसी और तबाही का खतरा नेपाल के सिर पर मंडरा रहा है। नेपाल और चीन ने चेतावनी दी है कि झीलें फटने से बाढ़ का नया खतरा पैदा हो सकता है। नेपाल और चीन दोनों ने गुरुवार को हिमालय में बाढ़ के नए खतरे के बारे में चेतावनी दी। सीमा के दोनों ओर बनी दो झीलें फटने की कगार पर हैं, जबकि ये इलाका पहले से ही इस हफ्ते आई भयानक बाढ़ से जूझ रहा है।
1: नेपाल अभी एक आपदा से उबरा ही नहीं था कि अब उस पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि नेपाल और चीन की सीमा पर इन पहाड़ों के बीच एक बार फिर से जो लेक हैं, वो फिर से बनने शुरू हो गई हैं। दरअसल भोटे कोशी नदी और उसके आसपास के दूसरे इलाकों पे ये माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर 50 लाख क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले जलाशय तैयार हो जाएंगे, और जब इतनी क्षमता होगी तो जलाशय की दीवारें कभी भी टूट सकती हैं, और अगर ऐसा होगा तो इन पहाड़ों से तेजी से गिरता हुआ मलबा एक बार फिर नीचे आ सकता है। त्रिशूली, भोटे कोशी, नारायणी, ये वो नदियां थी जिनके चलते नेपाल ने सैलाब देखा, तबाही देखी है, और एक बार फिर अगर ऐसी तबाही आती है तो इस घाव से उभर रहे नेपाल की चोट और गहरी हो सकती है।
7: नेपाल और चीन दोनों देशों ने मौजूदा तबाही के लिए ग्लेशियर के टूटने को जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी वजह से पहाड़ों में मौजूद नदी प्रणालियों में चट्टान, बर्फ, कीचड़ और मलबा भर गया। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बाढ़ वाली जगह पर नदी का रास्ता मलबे से रुक गया है और इसके कारण बनी झील का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके फटने का खतरा है। एक बयान में प्राधिकरण ने कहा, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों, यात्रियों, बचाव कार्य में लगे लोगों और सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वो विशेष सावधानी बरतें और नदी के किनारों व जोखिम वाले इलाकों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो नेपाल और चीन दोनों तरफ दो अस्थायी झील बन चुके हैं और इनमें लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये खतरा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, क्योंकि चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने आने वाले हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की सीमा में बनी झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने की आशंका है। ये पानी 1200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में पानी जमा होने पर झील के टूटने का भारी खतरा है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर के आसपास पानी का बहाव सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। गुरुवार को चीनी बचाव दल ने हवाई फुटेज में मलबे से बनी झील को देखा। फुटेज में भूरे रंग का पानी एक ऐसे बेसिन में जमा होता दिख रहा है जिसका कोई स्पष्ट निकास मार्ग नहीं था। पानी पहले ही झाड़ियों और पेड़ों को डुबो चुका था और मलबे और पत्थरों की रुकावट पर दबाव डालता हुआ दिख रहा था। यानी नेपाल को फिलहाल इस कुदरती संकट से राहत मिलता नहीं दिख रहा। अगर वाकई चीन और नेपाल की सीमाओं में बनी दोनों झीलें फटती हैं तो महाविनाश तय है। इसलिए ये वक्त बेहद सावधान और खबरदार रहने की है। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: तो नेपाल में भीषण तबाही की लगातार आ रही तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। नेपाल से आ रही हर एक तस्वीर आह निकाल देने वाली है, और 1 और 1:11 में वो जल प्रलय की कुछ और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप पूरी विनाश लीला और अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात वहां रहे होंगे।
2: साथ ही आपको बताएंगे जल प्रलय के 3 दिन बाद वहां क्या हालात हैं, हालात सामान्य होने में अभी वहां और कितना वक्त लग सकता है। आज तक सवा तक ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं।

0: आपने बहुमंजिली इमारत को तिनके की तरफ बहते देखा। आपने कंक्रीट के पुल को पल भर में धराशायी होते देखा। आपने सैलाब को अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाते देखा। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, ऐसी तस्वीर आपने पहले नहीं देखी होगी। देखिए, जब सैलाब आया तो ये विशाल पत्थर कैसे कागज के टुकड़े की तरफ बहता चला गया। सैलाब की ताकत के सामने इस पत्थर की जैसे कोई हैसियत ही नहीं रही। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ऐसे सैलाब के सामने इंसानों की क्या स्थिति रही होगी। 26 अगस्त को तारुका इलाके में ऐसे हालात हो गए कि वजनदार पत्थर भी बेबस होकर रह गया। ये भयावह तस्वीरें नेपाल के नुवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार की हैं। काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये बाजार सबसे खौफनाक सैलाब की चपेट में आया। 26 अगस्त को भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। लहरें बाजार को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रही थी। लोग जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे थे। जो जहां था, जिस स्थिति में था, वो बस भागे जा रहा था। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई बेबस था। मार्केट से बड़ी संख्या में गाड़ियों में सवार लोग सुरक्षित इलाके की ओर जाने की कोशिश में जुटे थे। साइकिल सवार भी भागे जा रहे थे तो दूसरी ओर तबाही मचाता सैलाब सब कुछ बर्बाद करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। जब सैलाब आया तो उसके सामने किसी की कुछ नहीं चली। रास्ते में जो कुछ भी आया, सैलाब उसे रौंदता बहाता लेकर चला गया। पुल, इमारत, बड़े वाहन सब बहते चले गए।
1: 35 मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही विसात।
0: सैलाब जहां से भी गुजरा तबाही की कहानी लिखता चला गया। आज तक संवाददाता श्वेता सिंह बरेली शहर पहुंची तो वहां की तस्वीर दिल दहलाने वाली थी। बरेली से श्वेता सिंह, चितवन से रोहित कुमार सिंह और काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
2: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU
7: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या चीन ही नेपाल में तबाही का जिम्मेदार है? क्या चीन ने नेपाल को समय रहते अलर्ट नहीं किया? क्या ग्लेशियर से आपदा पर झूठ बोल रहा चीन? जिनपिंग की जिद क्या नेपाल में फिर तबाही मचाएगी? सबसे पहले नेपाल में चीन के प्रवक्ता की ओर से जारी पोस्ट पर गौर कीजिए। चीन कह रहा है कि समय पर नेपाल को वार्निंग ना देने के कारण नेपाल में बहुत ज्यादा लोगों की जान जाने की बात फेक न्यूज है। चीन ने उसके नीचे इस खबर को भी फेक न्यूज बता दिया कि चीन के हिस्से में बने मलबे के बांध के ध्वस्त होने से नेपाल में भारी तबाही मची। तो चीन के हिसाब से सच क्या है? उसके हिसाब से सच ये है कि भूकंप या ग्लेशियर के ढहने से भूकंप नेपाल के हिस्से में आया, जिससे इतने लोग मारे गए और तबाही मची। चीन जिसे फेक न्यूज बता रहा है वो सही खबर है, और जिसे वो सच बता रहा है वो सफेद झूठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सैटेलाइट इमेजरी यानी प्लैनेट लैब्स की तस्वीरें और स्वतंत्र वैज्ञानिकों ने साफ दिखाया है कि मलबे का मुख्य बहाव तिब्बत के अंदर लिंडे नदी के ब्लॉक होने से शुरू हुआ था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के विश्लेषण से भी साबित हो चुका है कि मुख्य घटना तिब्बत के हिस्से में हुई थी। वहीं पर ग्लेशियर का हिस्सा टूटने के बाद मलबे ने लिंडे नदी का रास्ता रोका था। यहां कोई प्राकृतिक भूकंप नहीं आया था, बल्कि ग्लेशियर गिरने की ताकत से ही भूकंप जैसे झटके रिकॉर्ड हुए थे। इस वजह से ही नेपाल के पत्रकार चीन पर सही समय पर चेतावनी न देने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर चीन पर नेपाली पत्रकारों को भरोसा क्यों नहीं? नेपाल के कई पत्रकार संगठनों का आरोप है कि चीन ने तिब्बत सीमा पर पहाड़ों को काटकर और नदियों का रुख बदलकर जो शाओकान स्मार्ट विलेज बनाया है, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। निर्माण कार्यों के कारण ही अब हर साल बड़े पैमाने पर भूस्खलन और विनाशकारी बाढ़ आ रही है। यही नहीं, नेपाल के जल विज्ञानी और अधिकारियों का लंबे समय से आरोप रहा है कि चीन सीमा पार की नदियों के जल स्तर और बारिश का रियल टाइम डेटा साझा करने में हमेशा हिचकिचाता है। आरोपों को चीनी मूल के स्वतंत्र लेखक और राजनीतिक विश्लेषक शिनयांग यांग ने अपनी पोस्ट से मजबूत किया है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी TAR की 60वीं वर्षगांठ के जश्न के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग यादोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हर हाल में आगे बढ़ाने की जिद कर रहे हैं। यांग का दावा है कि ये प्रोजेक्ट उसी इलाके में है जहां वो जीरोंग पोर्ट है जो तबाही में तिनके की तरह उड़ गया। शियांग कहते हैं कि चीनी इंजीनियर चाहे कितनी भी बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल कर ले, प्रकृति के प्रकोप के आगे सब बेकार है। नंगा पर्वत ब्लॉक के पास थोड़ी सी भी हलचल पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पल भर में तबाह कर देगी। उनका आरोप है कि अपनी राजनीतिक जिद और महत्वाकांक्षा के चक्कर में जिनपिंग जानबूझकर एक और बड़ी तबाही को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, वो ये भी सवाल उठाते हैं कि जिनपिंग बार बार कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को सुरक्षित बताया गया है, लेकिन वो रिपोर्ट कभी सामने नहीं रखते। शियांग के मुताबिक असल में ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं। आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: सो सॉरी।

0: जो घटना हुई उसको लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार वो क्लैश फ्लड क्यों शुरू हुआ। आप लोग क्योंकि उस पूरे रीजन पे नजर बनाए रखते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, आपके संस्थान के हिसाब से इनिशियल एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब भी कोई डिजास्टर होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में असेस करना कि क्या ट्रिगर्स रहे, क्या कंडीशन है। जो अभी सर्टेन चीजें हैं जो कि कंफर्म हम कह सकते हैं वो ये है कि ये एक ग्लेशियर कोलैप्स है, और इसको हम समझ सकते हैं कि एक आइस एंड रॉक मिक्स्ड मिक्सचर का एक एवलॉन्च हुआ है उस वैली में। अब ट्रिगर्स की बात करते हैं तो ट्रिगर हो सकता है कि जो उससे जस्ट पहले बताया जा रहा है कि एक अर्थक्वेक आया है 3.2 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का, सो हो सकता है कि उसने भी इसमें कुछ ट्रिगर किया हो उसको। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये डिजास्टर हुआ है और वो जो मास जो ऊपर से आके नीचे वैली बॉटम में गिरा है उसने एक लोकली स्केल पर अर्थक्वेक वेव जनरेट की हो। तो बहरहाल बात यह है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। सो वो उस टिपिंग पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर कुछ भी छोटा मोटा ट्रिगर उनको मिलता हैवी रेनफॉल या फिर एक अर्थक्वेक, वो भी काफी होता है उनको एक डिजास्टर स्टार्ट करने के लिए।
0: डॉक्टर फारूक, क्योंकि आप उस पूरे एरिया को खुद स्टडी कर रहे हो और आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी इस बात पे है कि कैसे वहाँ आइस मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर पे किस तरह का खतरा आ रहा है, तो क्या इससे पहले भी कोई आप लोगों की रीडिंग थी, स्टडी थी, जिससे इस तरह के अलार्मिंग ट्रेंड्स दिख रहे थे, या आपने अलर्ट किया था? क्योंकि ये मल्टी स्टेट एजेंसी है जिसके साथ आप इस वक्त जुड़े हुए हैं आईसी मोड में।
1: देखिए, जो हिमालय है वो लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज है, तो अब इसको ऑल टुगेदर मॉनिटर करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात तो तय है कि जो पिछले हम एक दशक में देखते हैं खास तौर पे, या फिर कहें कि केदारनाथ डिजास्टर जब हुआ था उस तरह से अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इस तरह के जो त्रासदी हो रही है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही है अभी, और उसका जो एक मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं वो बड़े हैं पिछले कुछ 10 सालों में, और ऐसी पूरी संभावना है कि ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: की चेतावनी, एक और फलती झील फटी। त्रिशूली और भोटे कोशी नदी से 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका। चीन ने तिब्बत में ऑपरेशन रोका। नेपाल त्रासदी में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 469 से ज्यादा लोगों की गई जान। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। लगातार जारी है रेस्क्यू। भारत से पहुंची मदद की खेप। जनजी आंदोलन के बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी। रोजगार, शिक्षा, महंगाई पर असंतोष। सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस के गिरफ्त में आए पति पत्नी। सैन्य ठिकानों की तस्वीरें भेज रहे थे पाकिस्तान। साहिल और समीरा को जानकारी के बदले पैसे देते थे हैंडलर्स। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। सीएम योगी ने बंधवाई बच्चियों से राखी। रक्षा मंत्री की कलाई पर ब्रह्म कुमारी की बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। नेपाल में एक बार फिर से जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जो ये था वो तो था, लेकिन अब एक नया खतरा है। और ताजा जानकारी ये आई है कि ऊपरी इलाके में ग्लेशियर टूटे हैं, जिसकी वजह से नुवाकोट के ढुक्के बाजार में अफरा तफरी इस वक्त मची हुई है। रसुआ में फिलहाल हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। यह ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे के लिए रोका गया है। सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लोग अब ऊंचाई वाले हिस्से पर जा रहे हैं। नेपाल पुलिस ने भी लोगों को आगाह किया है। कहा है कि तिब्बत की तरफ झील फिर से टूट गई है। नेपाल पुलिस ने अपील की है कि बचाव और राहत कार्यों में शामिल सभी सुरक्षा कर्मियों, बचाव कर्मियों और आम लोग तुरंत सतर्क हो जाएं और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ जाएं। या फिर लोगों को सुरक्षित स्थान के बारे में जानकारी दी जा रही है कि आप यहां पर जाएंगे तो वहां आप सुरक्षित रहेंगे। अब देखिए, आशंका यह जताई जा रही है कि झील टूटने से 5 गुना ज्यादा गंभीर बाढ़ का खतरा है, क्योंकि नीचे जो नदी का मार्ग था उस पर तो मलबा है। तो अब अगर पानी का बहाव बहुत तेजी से आएगा तो वो इधर उधर जगह बना सकता है और ज्यादा नुकसान कर सकता है। कभी भी झील का पानी नेपाल पहुंच सकता है। सावधानी बरती जा रही है। एजेंसी अलर्ट पर है, रेस्क्यू टीम अलर्ट पर है, आर्मी से लेकर नेपाल में जो भी लोगों तक मदद पहुंचा रहे सब अलर्ट पर है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल सरकार ने भी ताजा संकट को लेकर लोगों को आगाह कर दिया है। यह जानकारी दी गई है कि रसुआ की भोटे कोशी नदी के इलाके में पानी का बहाव फिर से बढ़ गया है। अब नेपाल की सरकार लोगों को अलर्ट कर रही है कि सावधान हो जाइए, सुरक्षित जगह जाइए, क्योंकि भोटे कोशी नदी में जल स्तर बढ़ गया। ये नेपाल सरकार कह रही है एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। और इसीलिए ये सरकार अपील कर रही है कि जोखिम वाले क्षेत्र में लोग सावधानियां बरतें, जितना हो सके नदी से दूरी बना लें, ऊंचाई वाले इलाकों में चले जाएं। त्रिशूली नदी के किनारों पर बचाव राहत कार्य में जितने भी लोग लगे हुए हैं सभी को अलग अलग कारणों से जोखिम वाले क्षेत्र में मौजूद लोगों से विशेष अनुरोध है कि वो ज्यादा सावधानी बरते। किसी भी तरह का अगर खतरा महसूस हो तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाएं, रिस्क बिल्कुल ना लें। देखिए, हर एक तस्वीर आज तक आपको पहुंचा रहा है, आप तक पहुंचाई जा रही है वो तस्वीरें जो आपसे दूर थी। नुवाकोट एयरबेस से आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, अभी वहां पर क्या हालात है, क्या सावधानियां बरती जा रही है, आपके पास क्या खबर आ रही है?
2: मैं जिस इलाके में था यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे, और वही निचला इलाका था नुआ को उपाध ढूंढ के बाजार ही सबसे ज्यादा तबाह हुआ था। और जैसा आपने जिक्र किया कि मलबा है तो पानी अब और आगे फैल सकता है, तो मुझे अधिकारियों ने बताया कि जिस तरह एक तो भोटे कशी नदी और दूसरा त्रिशूली नदी उसी के किनारे पर मैं हूं, और वहां पर नदी का जलस्तर बढ़ सकता है और इसीलिए आप लोग बहुत ऊपर जाएं। तो हम 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। मेरे ठीक पीछे दरअसल एयरबेस है, आपको हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही होगी। तो उस इलाके में यानी यहां से ऊपर ये जो पहाड़ी का इलाका आप मेरे पीछे वीडियो में देख रहे हैं, इन पहाड़ियों के पीछे से आगे दरअसल दरअसल रोसोवो का वो इलाका है। तो आगे वहां तक जहां लैंडिंग पॉइंट है, जहां से इवैक्यूएशन हो रहा है, वहां के ऑपरेशन तो चल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रोसोवो का इलाका जहां पर सबसे ज्यादा त्रासदी थी, वहां ऑपरेशन भी रोका गया है। जो सैनिक, जो लोग थे पर्सनल, जो वहां बचाव कार्य चलते, उन्हें भी कहा गया ऊंचाई पे चले जाएं। पीछे की जो दुकान है वो बंद है उसके पास से अब, यानी एयरबेस के नीचे का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है, इसलिए कि दूसरे दौर की एक बार फिर, अभी पहले दौर से का जख्म भी नहीं भरा
3: जी, समझ रहे थे। देखिए, पहले दौर का जख्म अभी नहीं भरा है और दूसरे दौर का खतरा यहां पर मंडराने लगा। ये देखिए, ये पहले जब जल प्रलय आई तो उस वक्त की तबाही, अब आप सोचिए अगर 5 गुना ज्यादा बहाव तेजी के साथ नीचे आएगा तो क्या हालात यहां पर हो जाएंगे। देखिए, नई आशंकाओं के बीच आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने नेपाल के अधिकारियों से बात की, जिन्होंने बताया कि कैसे एक बार फिर से ये खतरा बढ़ गया है।
2: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ है अभी यहाँ पे?
4: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
2: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। एक बार फिर मैं जहाँ पर हूँ, बिल्कुल ठीक मेरे पीछे कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
5: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
2: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
5: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
2: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
5: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
2: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई। और देखिए आप पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहाँ से चले जाए और इनको खाली कराया जा रहा है, जितने भी लोग हैं। और ये कहा गया कि यहाँ से निकल जाए क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहाँ से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ से निकल जाए। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरे बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है नेपाल में। मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
3: और देखिए कितना बड़ा खतरा है, कितना बड़ा खतरा है। एक तो जीता जागता हमने देख लिया कि हालात कैसे, लोग रो रहे हैं, सब कुछ खो दिया है, लेकिन यहां पर अब आप समझिए अलर्ट किस तरह का है। तिब्बत की तरफ बना बांध फिर से टूट गया है, अब इसको लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है कि वाटर डैम ऑन तिब्बत साइड बर्स्ट अगेन, फिर से ऐसा हो गया है। अब देखिए, यह जानकारी यहां पर मिली है, ये जो नेपाल है, ये नेपाल पुलिस, उसकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया। जो मोबाइल पर अलर्ट आता है ना, जब विषम परिस्थितियां होती हैं, हालात बेहद खराब हो जाते हैं, तो उस वक्त इस तरह का अलर्ट। तो यहां पर इस बारे में बताया गया है कि तिब्बत की तरफ बना बांध फिर से टूट गया है और जितने भी सुरक्षा अधिकारी हैं, ऑल सिक्योरिटी पर्सनल, रेस्क्यू वर्कर्स जो बचाव कर्मी है, और जितने भी जनरल पब्लिक डिप्लॉयड है, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, वो सभी लोग अभी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन रोके और एक सुरक्षित जगह पर चलाएं। ये देखिए, रिलीफ ऑपरेशन आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन अलर्ट, सावधान रहें, सतर्क रहें, एक सुरक्षित जगह पर जाएं, इमीडिएटली मूव टू अ सेफ लोकेशन, रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन। अब देखिए, एक सुरक्षित जगह पर चले जाएं तुरंत, तत्काल प्रभाव से। ये देखिए यहां पर लिखा है, तत्काल प्रभाव से जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, जो राहत बचाव कर्मी है, जो आम लोग हैं, जो लोगों को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो तुरंत एक सुरक्षित जगह पर चले जाएं। क्यों चले जाएं? तिब्बत की तरफ बना बांध फिर से टूट गया है। और ऐसा ही होता है आमतौर पर, जब भी विषम परिस्थिति आती है या फिर भूकंप आता है या फिर इस तरह के हालात होते हैं, ये एक अलर्ट मोबाइल में आपके पास भी आया होगा। भारत में भी एक बार ट्रायल हुआ था, आपको याद होगा, अचानक मोबाइल में वाइब्रेशन होने लगा था, बीप आने लगा था, साउंड आने लगा था, इस तरह के मैसेज आने लगे थे, याद होगा आपको। तो ऐसा ही नेपाल में भी हुआ है और नेपाल में अब लोगों को कहा गया है सावधानी बरतने के लिए। क्यों? क्योंकि खतरा पहले से 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कही गई है।
0: वहीं नेपाली प्रतिनिधि सभा के नेता विपक्ष ने भी मौसम को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अभी मौसम अच्छा नहीं है और उनके मुताबिक नेपाल सेना के जवान, हेलीकॉप्टर सब जुटे हुए हैं। नदी में जलस्तर फिर से अब बढ़ने वाला है।
6: वो भी है क्योंकि यहाँ का जो भौगोलिक बनोट है ना, ये सब के लिए भी ऊपर जाने के लिए भी ये मौसम भी अच्छा नहीं है। फिर भी हमारा सब ये हेलीकॉप्टर, हमारा सेना और सब हम सब लगे रहे हैं यहाँ पर है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोग सब ये सब आपका शुभेच्छा हम चाहते हैं और आपका सब लोगों के सब सहयोग भी आप चाहते हैं। आप जितना भी आप लोग कर सकते हैं अपने अपने प्लेस से, ठम से, वो सब कीजिए। हम लगे रहे हैं
7: भारत की तरफ से लगातार मदद पहुंचाई।
6: सब भारत भी और सब हमारे छिमे की
8: सर, आज से नेपाल गवर्नमेंट काफी तेज रेस्क्यू कर रही है, लेकिन इस बीच अनाउंसमेंट हो रहा है कि रिवर में वाटर लेवल बढ़ने वाला है।
6: हाँ, अभी अभी वो भी अभी अभी अनाउंसमेंट हुआ है क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
7: कितने हेलीकॉप्टर?
6: दो सेना का हेलीकॉप्टर है, नौवाड़ा और निजी क्षेत्र प्राइवेट ये सब चेने हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं हम। प्लीज
0: तो देखिए, नेपाल के ऊपर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इसी बीच चीन के सीसीटीवी ने दावा किया है कि ग्योरांग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर बनी झील ओवरफ्लो होने लगी है और इस वजह से जो बचाव कार्य है उसको कुछ समय के लिए रोका गया है। ये चीन की तरफ से स्पष्ट किया गया। अधिकारियों के खतरे का आकलन करने के दौरान बचाव दलों को 1 किलोमीटर पीछे हटने को आदेश दिया गया है। अभी भी सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं और मलबे से बनी झील अब बचाव कार्यों के लिए एक नई चुनौती बन गई है और 1 किलोमीटर पीछे हटने को कहा गया है। ग्योरांग बॉर्डर पोर्ट पर बनी झील ओवरफ्लो हो गई है। क्यों? क्योंकि मलबा आ गया है वहां पर। पंकज दास काठमांडू से हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज, ये बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर पीछे लोगों को हटने को कहा गया है। क्यों? क्योंकि ग्योरांग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर जो बनी झील थी वो ओवरफ्लो होने लगी है। इससे कितना खतरा है?
9: नेपाल सरकार लगातार अपने सभी जो उनके रेस्क्यू में लगे हुए सबको अपील कर रही है कि वो जहां भी है असुरक्षित स्थान पे चले जाएं क्योंकि खतरा और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। जैसे जिस तरह से चीन से सूचना आई, तत्काल वहां जो सीडीओ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रसुआ के, उन्होंने काठमांडू को खबर किया और काठमांडू से नेपाल पुलिस, नेपाल आर्मी और जो मौसम विज्ञान विभाग के लोग हैं वो और सरकार की सारी तंत्र जो है वो लगातार जो तटीय इलाके में लोग हैं, खासकर घोटे कोसी, त्रिशूली और नारायणी नदी, उन सब इलाकों में लगातार अनाउंसिंग की जा रही है, लगातार सबको बताया जा रहा है, SMS के जरिए सबको सुरक्षित रहने के लिए भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी सभी बचाव कर्मियों को कहा गया है कि वो फिलहाल सुरक्षित स्थान पर चले जाए। इस समय बचाव के जो काम है वो रोक दिए गए। जिन रास्ते में आशंका है कि वहां से बाढ़ का पानी फिर से आ सकता है, उन सभी जगहों पर रेस्क्यू के काम को रोक दिया गया है। हेलीकॉप्टर को भी उन स्थानों पर फिलहाल जाने से अभी रोक दिया गया है। जैसे आगे की सिचुएशन होगी उसके बाद सरकार का निर्देश आएगा कि रेस्क्यू फिर से कब शुरू करना है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ये इस वक्त नेपाल के लिए बहुत अहम वक्त है क्योंकि सावधानी बरती यहां पर जा रही है और ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात है कि क्या सावधानी अब लोगों को कैसे बचाना है, सुरक्षित रखना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं 26 अगस्त की एक नई तस्वीर जिसमें भोटे कोशी नदी में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया 3 शेड तबाह हो गया। ये देखिए, अब आपको दूर से जब आप देखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि ये AI वीडियो आपने हॉलीवुड फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि जहां पर पूरा प्लेनेट तबाह हो जाता है, लेकिन ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। 26 तारीख का वीडियो है ये
10: पूरे के।
0: सुनिए आप,
10: कंपनी ने भेटे नहीं अब।
0: ये जो 3 शेड आप देख रहे हैं, इन 3 शेड में न जाने कितने लोग होंगे, कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बनाया गया है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों के लिए। अब सोचिए, ये पूरा एक झटके में सफा, एक झटके में साफ।
3: और ये तो शुरुआत थी, इसके बाद तो और तेजी के साथ बढ़ता चला गया बहाव, जलस्तर और बढ़ता चला गया, अपने साथ में मलबा लाया, बड़े बड़े पत्थर लाया, चट्टान लाया और जो सामने तहस नहस सब बर्बाद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल के रसुवा से बड़ी खबर, जहां त्रिशूली नदी टनल में फंसे लोगों को रेस्क्यू की मुहिम जारी है। नेपाल सेना ने जानकारी दी है कि अभी भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, 100 से ज्यादा लोग फंसे बताए जा रहे हैं। अब खबर जो अभी तक मिली है उसके मुताबिक त्रिशूली टनल में 350 लोगों को बचाया गया है। अब नेपाल सेना की कोशिश है कि सुरंग में फंसे अन्य लोगों को भी आज किसी तरह बचा लिया जाए। अब ये देखिए हालात, देखिए दिक्कत यह है कि जो बहाव आया, मलबा लाया, उसके बाद सब जगह गाद कीचड़, अब देखिए आधा आधा पैर पूरा धस रहा है। अब ऐसे में कैसे लोगों को बचाना, कितनी बड़ी चुनौती हो गया है, ये चुनौती आप समझिए, इतनी कीचड़ में लोगों को खींचा जा रहा है, दल दल बन चुका है, चलना मुश्किल है, आप जहां पर हैं वहां पर आप फंस गए हैं। और ये है वो टनल, देखिए ये टनल आधी से ज्यादा पूरी तरह से भर चुकी है, किससे, कीचड़ से। अब ऐसे में एक एक शख्स को रेस्क्यू करना, जो लोग फंसे हुए उनको रेस्क्यू करना, सोचिए कि कितनी मेहनत उसमें है, लेकिन करना है ये काम, हर एक जान कीमती है। ये रसुवा की टनल है और 100 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए, 350 लोग थे जो फंस गए थे, लेकिन उसके बाद विषम परिस्थितियों में, जिसकी ट्रेनिंग आर्मी को होती है, तो नेपाल की सेना ने इन विषम परिस्थितियों में भी अपना हौसला दिखाया, जज्बा दिखाया और इन लोगों को रेस्क्यू किया, कंधे पर लाद कर लोगों को बचाया है। और ये कीचड़ देखिए, ये बचाना आसान नहीं था किसी, लेकिन एक एक जान को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं।

0: बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि हर जगह गाद है, हर जगह मलबा है, कीचड़ है। आप हेलीकॉप्टर लैंड कर नहीं सकते हैं। देखिए जो बातचीत हो रही है ना, ये नेपाली भाषा में बातचीत हो रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है, लोगों को कैसे बचाने के लिए जद्दोजहद तो की जा रही है, लेकिन मुश्किल बहुत हो रही है। और सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, हालात जैसे विषम परिस्थितियों में लोगों को बचाना है। हेलीकॉप्टर से आप सीमित दायरे में रहकर मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको एयर लिफ्ट करना है, एयर ड्रॉप करना है, तो उसके लिए भी आपको जगह चाहिए। अब वहां पर भी हर जगह कीचड़ है, हर जगह कीचड़ है, वहां पर हेलीकॉप्टर लैंड हो नहीं सकता है। आपको पता नहीं है कि आप जिस कीचड़ में पैर रखेंगे वहां पर आप कितना धस रहे हैं। नेपाल के नुवाकोट में 26 अगस्त के पीड़ित परिवार अपनों को तलाशने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि कोई अपना उनका कहीं तो मिल जाए। प्रशासन ने कई नामों की लिस्ट लगाई है। कैंप पर पहुंच रहे लोग अपनों को खोज रहे हैं जो इधर गायब हो चुके हैं, उनका कुशल क्षेम जानना चाह रहे हैं। वो
1: इस त्रासदी में इस बेटी को उम्मीद थी कि जिन लोगों का नाम पर्चे पर है उनमें एक नाम इसके पापा का भी होगा जो तैमूरे के पास हो गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। राहत बचाव कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। सब बहुत लोग लौटे हैं लेकिन इस बच्ची के पापा नहीं लौटे हैं और अभी तक पापा के इंतजार में ये बेटी। आंखों के आंसू यहाँ पर सामान्य है। ये पीड़ा जो है बहुत सारे लोगों के अंदर है जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी बचा लिया जाएगा, लेकिन ये राहत बचाव कार्य जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां। और इसीलिए जब ये नाम निकल करके इन जगहों पर आते हैं कि इन लोगों को बचा लिया गया है तो बहुत सारे लोग उम्मीद में आते हैं कि शायद उनके अपने भी लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से इस त्रासदीग्रस्त नेपाल में दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। आप किसको खोज रहे हैं यहाँ पर लास्ट में?
2: मेरा भाई का नाम खोज रहा है लेकिन इधर नहीं है।
1: कहाँ पर काम
2: करता है? पेत्रावती में काम करता है, जॉब उधर करता है मेरा भाई।
1: कितने लोगों को देख करके लगा कि वापस उम्मीद बनी कि भाई भी आ जाएगा?
2: आ जाएगा, आज लग रहा है लेकिन संपर्क भी नहीं है ना। इधर है कैसे है, कैसे हालत में है, क्या क्या कर रहा है मालूम नहीं। फोन में हुई घटना होने के दो दिन बाद अगला दिन बात हुआ था लेकिन उसके दिन बात ही नहीं हुआ अभी तक।
1: तबाही अपने साथ क्या लेकर के आती है, अगर आपको समझना हो तो आप इस एयरबेस पर आइए। ये उन लोगों के नाम है जो लापता है, इनके नाम लगा दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो अपनों को खोजने के लिए आए हैं और जब पूरी मेहनत करते हैं और सैकड़ों नाम में अपनों का नाम नहीं मिलता तो उसके बाद आंखों में आंसू होते हैं। वो लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की और इस उम्मीद के साथ कि उनके अपनों का नाम शायद लिस्ट में हो, लेकिन ये वो बहन है जो अपने परिवार के लोगों को खोज रही थी, सारी लिस्ट चेक किया और उसके बाद उस दलदले के बाद जो परिवार पर हुआ अब वो दलदला आंखों में दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सी आंखों में उम्मीद है तो बहुत सी आंखों में आंसू है क्योंकि वो अपनों को खोजने के लिए इस लिस्ट में आते हैं कि शायद वो अपने अपनों को खोज पाएंगे जो लोग लापता हैं, जिनका नाम उन्होंने लिखवाया है, जिनकी जानकारी यहाँ बता दी गई है। लेकिन आप सोचिए कि ऐसा दिल पर क्या बीतेगी जब बहुतों को ये ना पता चले कि अपने आपका आप किसको खोज रहे हैं।
3: मैं अपना सालों को खोज रहा हूँ।
1: पता चला उनके बारे में?
3: कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक।
1: वो कहाँ पर थे?
3: वो कहाँ पर थे? वो टिमोरे में थे, टिमोरे टिमोरे रसागढ़ी वो नाका में थे। ड्राइवर था, एक सीनू कंपनी का गाड़ी चलाता था, वो अभी 3 दिन से लापता है।
1: नाम इसमें नाम है उनका?
3: नाम देख रहा हूँ, एक ही नहीं, कल सुबह मैंने उसका नाम लिस्ट टिपाया था। अभी अभी रेस्क्यू टीम में है कि नहीं?
1: वो लोग हैं जिनको बचाया गया।
3: हाँ, ये बचाया गया है, उसका मैं नाम देख रहा हूँ।
1: आप सोचिए कि जो लोग उम्मीद से आ रहे हैं उन्हें लग रहा है कि यहाँ वो नाम है मेरे पीछे जिन्हें बचा लिया गया है, और अगर इनमें वो अपनों को पाते हैं तो खुशी होगी, आंखों में फिर खुशी के आंसू होंगे। लेकिन जो अपनों को नहीं खोज पाएंगे सोचिए उनके दिल पर क्या बीतेगी। नेपाल में इस त्रासदी के केंद्र से मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।
0: देखिए खतरा अभी टला नहीं है लेकिन इस खतरे से लड़ने का जज्बा नेपाल के लोगों की आंखों में साफ दिख रहा है। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: The new BE6 Sportage.
3: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
4: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
5: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: इनो पीने से आराम मिल गया है या एंटासिड लेने से आपके छाती का दर्द कम हो गया है, तो ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक नहीं है। देखिए, वर्ल्ड ओवर एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक अराउंड 60 इयर्स, बट इंडिया में ये 10 साल कम है, यानी कि 50 इयर्स है। सो बाईपास सर्जरी बेसिकली जब आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर एंजाइना यानी कि दर्द रहता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तब स्टेंट की जगह यू नो वी प्रेफर बाईपास सर्जरी। दूसरे, अगर कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी हेल्दी है।
3: हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है?
2: कार्डियक अरेस्ट इज फाइनली द कॉज ऑफ डेथ, यहाँ के ऊपर होने वाला कोई भी पेन, कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है।
0: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
4: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
0: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
5: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
0: हर बात देश के सामने।
4: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
0: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: Niemeyer. Let's go. The new BE6 Sportage.
1: आंखों से भरी इन आंखों को अपने परिजनों का इंतजार है। ये इस वक्त इस खौफ में जी रहे हैं कि इनके अपने जिंदा भी हैं या नहीं। ये नुआकोटा की तस्वीरें हैं, जहां अपने परिजनों की खैर खबर लेने लोग पहुंचते हैं। सबके चेहरों पर एक डर है अनहोनी का, किसी भी वक्त बुरी खबर आने का।
2: ये वो लोग हैं जिनके अपने कहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कहीं 50 किलोमीटर का जो लंबा ट्रेन अलग अलग जगह काम कर रहे थे, उन्हें अपनों की तलाश है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर आर्मी ने एक बेस कैंप बनाया हुआ है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है। ये लोग अपनों को तलाश कर रहे हैं क्योंकि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी है वो यहाँ देते हैं, कोई जानकारी है वो यहाँ आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद बनती है जब ये हेलीकॉप्टर आते हैं, इस उम्मीद के साथ अगर वो आए हैं तो किसी अपने को लेकर के जरूर आएंगे। नेपाल के लिए ये बेहद मुश्किल समय है और हर कोई मिलकर के दुआ कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। सैकड़ों मिसिंग हैं, 150 से ज्यादा मारे गए हैं, उसके बावजूद भी इन उम्मीदों में तमाम लोगों का जमावड़ा है कि जब भी हेलीकॉप्टर आएगा किसी न किसी को जीवित लेकर जरूर आएगा।
1: आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस वक्त नुआकोटा में है, जो कि अब पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का कमांड सेंटर है। आशुतोष उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं जो जल प्रलय से प्रभावित हुए हैं। उनकी मुलाकात ऐसे ही एक परिवार से हुई जो इस त्रासदी की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। सुनिए उस परिवार की आप बीती।
2: तो आप लोग थे घर में जब ये हुआ, शुरू हुआ था?
3: यही ऊपर में था सर, हम सब यही ऊपर में था, यही एक तला ऊपर।
2: इतना मौका मिला था भागने के लिए? यहाँ
3: भागने के लिए तो वही 4-5 मिनट मात्र बचा था सर, हम सब यहाँ से भागने के लिए
4: बचे थे सर, सिर्फ 2 मिनट से बच गए हम लोग, नहीं तो हम सब परिवार इसी में दब जाते सर। ऐसा भूकंप, ऐसा पानी आया ना कि हम लोग देख नहीं पाया, डर से इतना करेजा धक धक करने लगा कि बातें छोड़ दो।
2: सामान वामान तो सब चला गया?
3: सामान सब चला गया साहब, सामान एक भी नहीं है, सामान एक भी नहीं है साहब, सोना-चांदी सब चला गया, पैसा कौड़ी सब चला गया,
2: खाना पीना
4: दाम था, गाड़ी घोड़ा सब था, वो सब
2: बस्ती में चला गया, गोदाम
5: बर्बाद
3: है, बच्चा को नुगा भी नहीं है, सब चला गया है, एक भी नहीं है, बाकी कुछ नहीं है साहब, खाने के लिए कुछ नहीं है।
2: सोचिए तबाही अपने साथ ऐसी बर्बादी लेकर के आई है कि सब कुछ जो बचत थी, जमा पूंजी थी और जो कुछ घर में था वो सब कुछ तहस नहस हो चुका है।
1: ये तो चंद परिवारों की कहानी है, ऐसे सैकड़ों परिवार इस वक्त जल प्रलय की त्रासदी के शिकार हैं और इस वक्त तबाही की पीड़ा झेल रहे हैं। नेपाल से आई तस्वीरें बता रही हैं कि जल प्रलय में सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। नेपाल की राहत एजेंसियां इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, सेना के जवान कंधे पर लाद कर एक शख्स की जान बचाने में लगे हैं, पांव मलबे में धंस रहा है लेकिन हौसलों के साथ हालात का सामना कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा, नुआकोटा, नेपाल, आज तक।
6: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

राइए हम शुरुआत करते हैं यूपी एक्सप्रेस वे की। लखनऊ में रक्षाबंधन पर सीएम योगी का स्नेह बंधन कार्यक्रम, दिखा भाई बहन के रिश्ते का रंग। सीएम योगी ने बच्चों के साथ मनाया पर्व। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 6,03,000 महिलाओं ने उठाया लाभ, 27 से 29 अगस्त तक सेवा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं संग मनाया रक्षाबंधन, राखी बंधवाकर जताया सम्मान। रक्षाबंधन पर बांके बिहारी मंदिर में आस्था का रंग, महिला श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को अर्पित की राखी। मथुरा में रक्षाबंधन की खास तस्वीर, महिला श्रद्धालुओं ने बांके बिहारी को चढ़ाई राखी। रक्षाबंधन पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा, मंगल आरती के दौरान भगवान को अर्पित की गई राखी। रक्षाबंधन पर अखिलेश का महिलाओं से संवाद, बड़े ऐलानों के बाद समाजवादी पार्टी का महिला संपर्क अभियान तेज। सावन पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ी आस्था, सरयू में श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। लखनऊ जेल में रक्षाबंधन की खुशियां, बहनों ने भाइयों की कलाई सजाई, भावुक हुए कैदी। कानपुर में रक्षाबंधन पर डीएम की दरिया दिली, छात्रा ने बांधी राखी तो माफ कराई 6 महीने की फीस और गिफ्ट की साइकिल। बरेली में रक्षाबंधन कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात, साड़ी वितरण कार्यक्रम में एक महिला की मौत, मेयर और पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साधी। बीजेपी के अमरपाल मौर्य का एसपी पर हमला, बोले 2027 में गया जी लेकर ले जाकर करेंगे पिंडदान, यूपी में सपा का भूत भी नहीं दिखेगा। अयोध्या के बाद मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर मांस मुद्रा की दुकानों पर बैन की मांग, 30 अगस्त को लखनऊ से कूच विश्व हिंदू रक्षा परिषद यात्रा निकालेगी। मथुरा के धार्मिक मुद्दे पर पोस्टर से गरमाई सियासत, लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने पोस्टर लगाया। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी, विधानसभा चुनाव से पहले कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मुद्दा गरमाया। 30,000 करोड़ के गंगा एक्सप्रेस वे पर फिर सवाल उठे, पैचवर्क के आधे घंटे बाद दोबारा आई दरारें, 15 फीट सड़क में क्रैक दिखा। जेपीएनआईसी निजीकरण विवाद पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले कमीशन ही बीजेपी का मिशन, बीजेपी ने जेपीएनआईसी निजी हाथों में बीचा। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश से हाईवे और बाजार डूबे, लगभग 200 दुकानों में लाखों का सामान बर्बाद हुआ। यूपी के एटा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से घायल आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में चोरों का अजीब कारनामा, जेवर के साथ 30 किलो चीनी भी ले उड़े। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिम से बाहर आए अंकित पर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। शामली घटना को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, बोले क्या सीएम योगी जाट समाज के आक्रोश और दुखी पिता की आवाज सुनेंगे।

0: और अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल में राहत बचाव के बीच ये बड़ी खबर है। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या अब और ज्यादा बढ़ गई और ताजा खबर के मुताबिक अब तक 475 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक रसुआ में 12, नुवाकोट में 37, धारडढ़ में 27 और चितवन में 179 शव बरामद किए गए। इसी तरह गोरखा में 44, तनहू में 28 और पूर्वी नवलपरासी में 110 शव बरामद किए गए हैं। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पंकज दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या खबर है? चितवन और पूर्वी नवलपरासी में सबसे ज्यादा शव मिले हैं, क्या वहां रेस्क्यू ज्यादा तेज है या सबसे ज्यादा नुकसान इसी इलाके में?
1: जी नहीं, सबसे ज्यादा नुकसान जो है रसुआ इलाके में, क्योंकि बाढ़ का पानी इतना तेज था, उसका बहाव इतना तीव्र था, सारे जो शव है जो लोग लापता थे वो रसुआ से सीधे जो चितवन, मतलब कि आप समझ सकते हैं नेपाल और चीन के बॉर्डर पे हादसा हुआ। सबसे ज्यादा इफेक्टिव नेपाल चीन बॉर्डर का जो इलाका है रसुआ, वहां रहा। लेकिन ये जो डेड बॉडी मिल रहे हैं ये सभी इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास मिल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले भारत के उत्तर प्रदेश से भी खबर है कि 7 शव वहां भी मिले हैं, लेकिन अभी नेपाल ने उसकी पहचान नहीं की है, इसलिए बातचीत चल रही है उसको लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा शव इसलिए सुस्ता के नवलपरासी और चितवन में मिल रहे हैं क्योंकि सारे जो डेड बॉडी यहाँ पहाड़ों में बह के वो उस इलाके में चले गए, इसलिए सबसे ज्यादा जो डेड बॉडी है वहां मिल रहा है।
0: शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने, बने रहिए पंकज, दोबारा हम आपसे जुड़ेंगे। वहीं नेपाल में एक बार फिर बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, त्रिशूली इलाके में लोगों को नदी के किनारे से दूर किया जा रहा है कि जितना हो सके नदी के किनारे से दूर रहिए। राहत बचाव कार्य अभी रोक दिया गया है, अलर्ट है कि और खतरनाक बाढ़ आ सकती है। नेपाल सरकार ने NDRRMA ने अलर्ट जारी किया है कि रसुआ के भोटे कोशी नदी में जलस्तर अचानक बढ़ने का खतरा है और इसीलिए राहत बचाव में लगे लोगों को रिस्क जोन से दूर जाने की सलाह दी जाती है। पंकज हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज, अलर्ट जारी किया गया है, नदी से जितना दूर हो सके दूर रहिए, ये चेतावनी जारी की गई है, तो किस तरह से इस पर काम आगे बढ़ रहा है?
1: ये नेपाल सरकार ने एक तो लोगों को आगाह किया है कि वो तटीय इलाका छोड़कर कहीं सुरक्षित स्थान पे चले जाए, साथ साथ जो सारे रेस्क्यू टीम है जो नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस और आर्म पुलिस फोर्स, इसके साथ जो प्राइवेट जो लोग रेस्क्यू के काम में लगे हैं उन सभी से को भी कहा गया है कि वो फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर चले जाए और रेस्क्यू का काम फिलहाल बंद कर दे, क्योंकि किसी भी समय बाढ़ का पानी जो है वो तेज गति से उस तरफ आ सकता है। तो भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी ऊपर नेपाल चीन सीमा से लेकर नीचे नेपाल भारत सीमा तक के उन सारी नदियों के जो तटीय इलाकों में जो लोग रेस्क्यू के काम में लगे हैं उन सभी से कहा गया कि वो फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रहें।
0: शुक्रिया पंकज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा देखिए, नेपाल का नवलपरासी जहां से सबसे ज्यादा शव मिले हैं, वहां से रोहित सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल चितवन में थे वो, चितवन से भी उन्होंने बताया था 108 शव मिले थे, अब तो और आंकड़ा बढ़ गया है। रोहित हमारे साथ में इस वक्त बने हुए हैं। रोहित, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां से क्या तस्वीरें आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है, सावधानी क्या बरती जा रही है?
2: हिमांशु, देखिए मैं इस वक्त नवलपरासी जिले में मौजूद हूँ, जिला मुख्यालय पर मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये यहाँ का सरकारी अस्पताल है, पृथ्वी चंद्र अस्पताल। और नवलपरासी क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और भारत से लगा हुआ ये आखिरी जिला है, इसके बाद आप भारत में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर भी क्योंकि मैदानी क्षेत्र है जो तो पहाड़ों के इलाके से जो भी पानी आया है, साथ में जो लाशें तैर तैर के आई हैं उसमें से तकरीबन नवलपरासी में बताया जा रहा है कि 140 शव जो है अब तक बरामद किए जा चुके हैं। पूर्वी नवलपरासी और पश्चिमी नवलपरासी को मिलाकर कुल 140 शव जो है पिछले 48 घंटे में जो है वो नदी में से जो है वो रिकवर किया गया है, उनको निकाला गया है और विभिन्न अस्पतालों में उसको शिनाख्त के लिए, पोस्टमार्टम के लिए जो है वो रखा गया है। और इस वक्त हम नवलपरासी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस सरकारी अस्पताल में बताया जा रहा है कि 8 से 10 शव जो है वो लाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और क्योंकि अभी जो चीन से खबर जो आई है कि एक और जो प्राकृतिक झील है वो भी फट गया है, तो जाहिर सी बात है ये सब खतरा जो है अभी टला नहीं है बिल्कुल भी खतरा,
0: और उसी खतरे को ध्यान में रखते हुए हर सावधानी बरती जा रही है जिससे एक एक जान को बचाया जा सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेपाल में जो त्रासदी आई है उस संकट से उभरने में ना जाने कितना वक्त लगेगा, ये हालात देखकर आप समझिए। लेकिन बड़ी फिक्र की बात यह है कि चीन ने वैसे ही एक और बड़े खतरे का अलार्म काफी पहले बजा दिया। चीन ने कहा है कि 20 लाख घन मीटर पानी वाली एक और झील बन चुकी है और जो कभी भी फट सकती है। नेपाल ने भी कहा कि रसुआ घड़ी से 18 किलोमीटर ऊपर की तरफ लेंदे नदी का बहाव रुका हुआ है और करीब 1,10,000 वर्ग मीटर की झील बन गई है।

0: नेपाल में तिब्बत की सरहद पर ग्लेशियर लेक के फटने से जो तबाही आई है उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया को दहला रही हैं। सत्रह हजार फीट की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से 2 करोड़ लीटर पानी का एक साथ प्रहार ने रास्ते में आने वाली हर बाधा को नस्त नाबूद कर दिया है। 4-4 मंजिला इमारतें 30-40 फीट मलबे के नीचे समा चुकी हैं। तबाही ऐसी कि आसमान से देखने पर आफत का असर साफ दिखता है। चीन के गिरांग पोर्ट से लेकर रसुआगढ़ी बॉर्डर तक बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद की तस्वीरें देखकर साफ पता चलता है कि पहाड़ी दर्रों के बीच एक पतली सी रेखा की तरह दिखने वाली नदी में कयामत का सैलाब किस कदर उतरा था। ये दहशत अभी खत्म भी नहीं हुई है कि नए खतरे का अलार्म बज चुका है। नेपाल की डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जारी तस्वीरों में बताया गया है कि रसुआगढ़ी से लेकर एक और खतरे वाली झील बन चुकी है जो कभी भी फट सकती है।
1: दरअसल भोटे कोशी नदी और उसके आसपास के दूसरे इलाकों पे यह माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर 50 लाख क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले जलाशय तैयार हो जाएंगे और जब इतनी क्षमता होगी तो जलाशय की दीवारें कभी भी टूट सकती हैं और अगर ऐसा होगा तो इन पहाड़ों से तेजी से गिरता हुआ मलबा एक बार फिर नीचे आ सकता है। त्रिशूली, भोटे कोशी, नारायणी ये वो नदियां थी जिनके चलते नेपाल ने सैलाब देखा, तबाही देखी है और एक बार फिर अगर ऐसी तबाही आती है तो इस घाव से उभर रहे नेपाल की चोट और गहरी हो सकती है।
0: 27 अगस्त को सुबह 11:44 पर जारी तस्वीरों में दिख रहा है कि रसुआ से 18 किलोमीटर ऊपर लहंडे नदी का बहाव रुका हुआ है। यहां करीब 0.11 वर्ग किलोमीटर यानी 1,10,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाली झील बन चुकी है जो कि फुटबॉल के 15 मैदानों के बराबर है।
2: 2 सेना का हेलीकॉप्टर है, नौवाड़ा और निजी क्षेत्र प्राइवेट ये सब चले हेलीकॉप्टर लग रहे हैं, हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं। इसीलिए हमारा सब सुरक्षा निकाय जितने भी हैं ये सब हम ये सब अनाउंस कर रहे हैं सुरक्षित रहने के लिए।
0: चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने भी गुरुवार रात तिब्बत इलाके में आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। चीन ने कहा है कि छोचेन, खोला और पुरेरु त्यांगपून नदियों के संगम के पास झील बनी है जिसमें गुरुवार तक 20 लाख घन मीटर पानी जमा हो चुका है जो अगले 3 दिनों में 30 लाख घन मीटर तक हो सकता है। अगर ये झील टूटी तो फिर उसी तरह की कयामत आ सकती है, लिहाजा चीन ने लेवल 4 की वार्निंग जारी कर दी है और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी CNSA को इलाके पर सैटेलाइट से चौकस नजर बनाए रखने को कहा गया है।
1: चीन ने इस बार चेतावनी दे दी है, वो गलती नहीं कि जो उसने पहले की, लेकिन इस चेतावनी के बाद नेपाल ने तटीय किनारों के रहने वाले अपने तमाम लोगों को आगाह कर दिया है, एहतियात के कदम उठा लिए हैं लेकिन खतरा भी टला नहीं है।
0: चीन ने इलाके की व्यापक निगरानी के लिए हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस अपना मानव रहित हवाई वाहन विंग लूंग को भी इस क्षेत्र में तैनात कर रखा है। चीन के सरकारी इंजीनियरिंग और बचाव कंपनी चाइना एनएंग की 8 सदस्यों की टीम भी इलाके में मौजूद है जो बैरियर लेक के खतरे से निपटने के उपाय तलाश रही है। आज तक ब्यूरो।
3: तो देखिए, नेपाल पर एक खतरा खत्म नहीं हुआ कि दूसरा खतरा बढ़ता दिख रहा है और थोड़ी देर पहले एक खबर आई कि चीन ने अपनी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन इसीलिए रोक दिया क्योंकि एक और झील के टूटने का खतरा बना हुआ है और इस झील में 20 लाख घन मीटर पानी पहले से जमा हो चुका था। तो आखिर यह संकट बार बार पैदा क्यों हो रहा है, क्या है यह डिजास्टर फेनोमिना, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सांकेतिक तौर पर हम आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर आता है। अब जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं वो बड़े बड़े ग्लेशियर जब टूटते हैं उसके बाद जब पानी में जाते हैं तो बहुत तेज हलचल मचती है और फिर उसी तेज बहाव के साथ निचले इलाकों में आता है। ये देखिए अपने साथ में मलबा बड़े बड़े बोल्डर आपने देखा होगा ना, आज तक कहीं हमने वो वीडियो दिखाया था, चट्टान आई थी और उसके बाद ये सब तोड़ते हुए जब नीचे आया तो पानी का बहाव इतना था कि हजारों जिंदगियों का कुछ अता पता नहीं।

0: हिंदू कुश से अरुणाचल तक 12,000 किलोमीटर की लंबाई वाला हिमालयन रेंज, पहाड़ की ऊंची चोटियां जो न जाने कितनी सदियों से बर्फ से ढकी हुई हैं। इन्हीं चोटियों के ऊपर की बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब पिघलने लगती है तो पहाड़ी की चोटियों पर झीलें बनने लगती हैं। ये ग्लेशियर पिघलने के साथ पहाड़ी की मोरेन वाली सतह को खुरच कर कमजोर कर रहे हैं और यही मोरेन पिघले हुए ग्लेशियर से बनी झील की दीवार का काम करते हैं। जब ग्लेशियर झीलें फटती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF, यह हादसा जब होता है तो पहाड़ से कयामत उतरती है। करोड़ों अरबों लीटर पानी एक साथ पहाड़ से टनों टन भारी चट्टानों मलबे के साथ 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। उस मोमेंटम के आगे खुद पहाड़ का टिकना नामुमकिन होता है और फिर जो तबाही होती है उसमें पहाड़ी से आए लाखों करोड़ों टन के मलबे में पूरा इलाका दफन हो जाता है।
1: तो जो वर्टिकल ड्रॉप होता है तो उसका जो काइनेटिक वेलोसिटी होता है उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिसिपेट हुआ है, उसके बाद में जो डैमिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी राइज होता है वो भी डैम मतलब आर्टिफिशियल डैम जो आइस से बना है, रॉक आइस से बना है, वो भी टूटने के बाद जो एनर्जी रहता है वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है मगर इट इज विद वेरी वेरी हाई वेलोसिटी।
0: क्यों फटती है ग्लेशियर झीलें? ग्लेशियर्स के पिघलने के बाद बनी झीलों का बांध बेहद भुरभुरे मटेरियल यानी कंकड़ पत्थर के मोरेन से बना होता है। जब ऊंचे पहाड़ों से बर्फ के विशाल पहाड़ टूटकर इन झीलों में गिरते हैं तो झील की दीवारें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। मलबे के अंदर ही अंदर पानी रिसने लगता है जिससे बांध अंदर से खोखला हो जाता है और अचानक ठह जाता है। सुबोध कुमार, दिल्ली, आज तक।
2: तो देखिए, नेपाल में जो कुछ हादसा हुआ उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। नेपाल में यह त्रासदी तो सिर्फ एक ग्लेशियर लेक फटने के कारण मची है लेकिन हिंदुस्तान की चोटियों पर ऐसी दर्जनों ग्लेशियर लेक्स का खतरा 24 घंटे बना हुआ है। और यह कितना बड़ा खतरा है, कितनी बड़ी चेतावनी है और क्या है हमारी तैयारी, तो वो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल की पहाड़ियों तक हिमालय हिंदुस्तान का जितना बड़ा प्रहरी है उतनी ही बड़ी चुनौती भी, क्योंकि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक हिंदुस्तान के 6 ऐसे प्रदेश हैं जहां ग्लेशियर लेक्स का खतरा लगातार बना हुआ है। अब इनमें सिर्फ जम्मू कश्मीर में 62 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं, ये डोडा से लेकर किश्तवाड़ और कारगिल से लेकर लेह तक के इलाकों में मौजूद हैं। चाहे कोलाहोई हो, थाजीवास हो या शोपिया की भागसर जैसी झीलें हो, ये झीलें प्रदेश के सिर पर मंडराते खतरे की तरह हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में NDMA ने 48 ग्लेशियर झीलों को खतरनाक बताया है जो लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा जिलों में है। तिब्बत से आने वाली सतलुज से पूर्वी हिमाचल को खतरा है और ठीक इसी तरह उत्तराखंड में चोराबाड़ी से जो केदारनाथ हादसा हुआ था या ऋषि गंगा से चमोली में जो भयानक त्रासदी आई थी, उसके बाद भी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जिले में गंगा और अलकनंदा के रास्ते में रुकावट बनी हुई है।
3: देखिए, जो हिमालय है वो लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज है, तो अब इसको ऑल टुगेदर मॉनिटर करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात तो तय है कि जो पिछले हम एक दशक में देखते हैं खास तौर पे, या फिर कहें कि केदारनाथ डिजास्टर जब हुआ था उस तरह से अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इस तरह के जो त्रासदी हो रही है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही है अभी, और उसका जो एक मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं वो बड़े हैं पिछले कुछ 10 सालों में, और ऐसी पूरी संभावना है कि ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं।
2: दरअसल बर्फ का पहाड़ टूटने या चट्टानी खिसकने से तो ये झील टूट ही सकती, भूकंप के झटकों से मोरेन की बनी प्राकृतिक रुकावटें टूटने से भी फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।
4: हिमालयन रीजन में अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय में ऑलमोस्ट जो है सभी रीजन जो है वल्नरेबल है और खतरनाक है। ग्लेशियर रिट्रीट होने की वजह से जो है आगे जो वैकेट एरिया है उस वैकेट एरिया में लूज एंड कंसोलिडेटेड मटेरियल है जो हाईली या तो हाईली सैचुरेटेड है या फिर ड्राई है, उसके जो है हल्के से भी रेनफॉल होने से उस रीजन में एक बड़ा डिजास्टर का खतरा हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल हमने जो है 2013 में केदारनाथ, थराली और तमोक में भी देखे हैं।
2: अब ये भारत के वैज्ञानिक अक्सर चेतावनी देते हैं कि सिक्किम में दक्षिण लोहनक झील से तीस्ता प्रोजेक्ट तबाह हुई थी। मंगन जिले में चुंगथांग में करीब 17 झीलें खतरनाक हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी पूर्वी सीमा पर 12 से ज्यादा बेहद खतरनाक ग्लेशियल झीलें हैं जो तवांग, पकामेग, सुबनसिरी के ऊपरी इलाकों में खतरनाक बनी हुई हैं। हिमालय की चोटियों पर मौजूद ग्लेशियर में पिघलाव और झीलों के पोटेंशियल खतरों को देखते हुए भारत सरकार ने इसरो और डीआरडीओ को सैटेलाइट से निगरानी का उपाय रखा है, लेकिन बादलों की सूरत में ऑप्टिकल सैटेलाइट नाकाम रहते हैं, लिहाजा भारत सरकार की एनडीएमए और इसरो ने हाइब्रिड सिस्टम की तैयारी की है जिसमें झीलों के पास सेंसर लगाए गए हैं। अगर झील का पानी 1 सेंटीमीटर भी बढ़ता है तो अलार्म बज जाता है। और यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया तो कुछ ने ग्लेशियर झील के फटने का, लेकिन अब अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है। शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मोहर लगा दी क्योंकि ये चीन को सूट करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। USGS के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीज़मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर लिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

स्वाद और सुविधा के इस दौर में पैकेज्ड फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर ग्राहक को ये साफ साफ क्यों नहीं बताया जाता कि वो जो खा रहा है उसमें चीनी, नमक और फैट कितना ज्यादा है। अदालत ने केंद्र सरकार और फसाई को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो अदालत खुद आदेश जारी करेगी। कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए पूछा है कि क्या इस मामले में कॉरपोरेट दबाव काम कर रहा है। वहीं बढ़ते बच्चों और आम नागरिकों की सेहत को प्राथमिकता देने पर जोर देने की बात कही है। इसके लिए सरकार और FSSAI को 2 हफ्तों में कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट की सख्ती के पीछे लंबे समय से चल रही बहस है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि फसाई पैकेट के सामने साफ चेतावनी देने की जगह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। वहीं फूड इंडस्ट्री का तर्क है कि पैकेट पर चेतावनी वाले निशान लगाने से बिक्री प्रभावित हो सकती है। फसाई ने विकल्प के तौर पर न्यूट्रिशन टेबल को प्रमुखता देने का सुझाव दिया है। वहीं सरकार ने कहा है कि कई पारंपरिक भारतीय स्नैक्स में नमक और फैट स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है और ऐसे मानक लागू होने पर कई उत्पादों पर चेतावनी चिन्ह लग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि कंपनियों का कारोबार जनता की सेहत से बड़ा नहीं हो सकता। अदालत के मुताबिक ग्राहक को ये जानने का पूरा अधिकार है कि वो क्या खा रहा है, उसमें कितनी चीनी, नमक या फैट मौजूद है। दरअसल दुनिया के कई देशों में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल पहले से लागू है और वहाँ इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। इन लेबल्स का मकसद किसी उत्पाद की बिक्री रोकना नहीं, ग्राहक को खरीदारी के समय जरूरी जानकारी देना है। इन लेबल के लागू होने के बाद कई देशों में कंपनियों ने अपने उत्पादों की संरचना में बदलाव किए हैं और ग्राहकों में हेल्दी विकल्प चुनने की जागरूकता भी बढ़ गई है। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि चेतावनी लेबल लगाने का मतलब किसी उत्पाद पर प्रतिबंध लगाना नहीं है, क्योंकि फैसला ग्राहक का ही रहेगा, लेकिन खरीदने से पहले उसे पूरी जानकारी मिलनी ही चाहिए। अगर भारत में फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल का नियम लागू होता है तो पैकेट के सामने ही साफ दिखाई देगा कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा है या नहीं। जाहिर है ये कदम करोड़ों ग्राहकों को ज्यादा जागरूक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इसमें चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन या कोई पैकेज्ड फूड खरीदने पर उन्हें कीमत और एक्सपायरी डेट के साथ ही उसमें मौजूद चीनी, नमक और फैट की मात्रा की भी जानकारी मिल जाएगी। आज तक ब्यूरो।

नेपाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग और फंती झील फटी। त्रिशूली और बोडे कोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। खाली कराया जा रहा पूरा इलाका। चीन ने तिब्बत में ऑपरेशन रोका। नेपाल झांसी में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 475 से ज्यादा की गई जान। 288 भारत समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। लगातार जारी रेस्क्यू, भारत से पहुंची मदद की खेप। जेएनजी आंदोलन के बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर बीजेपी। रोजगार शिक्षा महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए पति पत्नी। सैन ठिकानों की तस्वीरें भेज रहे थे पाकिस्तान। साहिल और समीरा को जानकारी के बदले पैसे देते थे हैंडलर्स। देश भर मनाया जा रहा रक्षाबंधन का पावन त्योहार। सीएम योगी ने बंधवाई बच्चियों से राखी। रक्षा मंत्री खिलाए पर ब्रह्म कुमारियों की बहनों ने बांधा रक्षा सूत्र।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वक्त हो गया है नॉनस्टॉप 100 का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नेपाल के भीषण बाढ़ में अब तक 475 की मौत। बोझे कोशी नदी में फिर उफान का खतरा। कुल 1500 से ज्यादा लोग लापता। सैकड़ों लोग लापता। मलबे में जारी है जीवन की तलाश। रसुआ से लेकर चितवन तक भयंकर तबाही। सड़क पुल से लेकर मकान दुकान और रिटेल में बाढ़ में बहे। बोझे कोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कैंप और मजदूरों के 3 शेड तबाह। चीन के सिचुआन प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप। सीएनसी ने दी जानकारी। दक्षिण पश्चिमी चीन में महसूस किए गए झटके। त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों का रेस्क्यू। सेना ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। कई भारतीय मजदूर भी शामिल। नेपाल में ग्लेशियर रहने से तबाही का मंजर। लहिंदे नदी में आई भीषण बाढ़। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखे टूटे ग्लेशियर। यूएसजीएस ने भूकंप के दावे को नकारा। ग्लोबल वार्मिंग में तेजी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर्स। रसुआगढ़ी सीमा के ऊपर नदी में बड़ी रुकावट से बनी झील। नेपाल सरकार ने जारी किया हाई अलर्ट। निचले तटीय इलाकों को सतर्क रहने की चेतावनी। नेपाल में बाढ़ के मलबे में सामान निकालने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। पुलिस ने वीडियो जारी कर सुरक्षित रहने की चेतावनी दी। नुवाकोट में बाढ़ प्रभावित इलाकों में यूनिसेफ की टीम ने किया दौरा। राहत गतिविधियों की निगरानी। नेपाल बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार ने लॉन्च किया इंटरनेशनल डोनेशन पोर्टल। विदेशी दाता सीधे राहत कोष में जमा कर सकेंगे रकम। नेपाल में बाढ़ के बीच हाइड्रो पावर टनल फंसे लोगों का रेस्क्यू। नेपाली सेना ने संभाला मोर्चा। नेपाल सीमा पर झील फटने का खतरा। चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका। केरुंग में बचाव दलों को घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर रहने का निर्देश। नेपाल सीमा पर ग्लेशियर से बनी झील ओवरफ्लो। चीन ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोका। 2.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पार हुआ पानी। झील टूटने का बड़ा खतरा। निरीक्षण के बाद काठमांडू लौटे प्रधानमंत्री बालिन शाह ने कहा स्थिति अब भी चुनौतीपूर्ण। राज्य के सभी प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ मैदान में तैनात है। नेपाल की बाढ़ में फंसे महाराष्ट्र के 114 पर्यटक। 53 सुरक्षित। सीएम फडणवीस ने वीडियो कॉल पर कहा डरिए मत सरकार आपके साथ है। नेपाल में फ्लैश फ्लड की तबाही। ड्रोन फुटेज में दिखा खौफनाक मंजर। नदी किनारे बस्तियां तबाह। फ्लैश फ्लड के बाद नेपाल में भारी तबाही। ड्रोन से सामने आई तस्वीरें। त्रिशूली बाजार में फ्लैश फ्लड की भीषण तबाही। ड्रोन फुटेज में मलबे और कीचड़ से घिरी बस्तियां। नेपाल में बाढ़ और भूकंप का डबल अलर्ट। बैरियर झील ओवरफ्लो। टूटने का बड़ा खतरा। 350 मजदूरों का रेस्क्यू। नेपाल में बाढ़ के बाद नई मुसीबत। 3.2 तीव्रता का भूकंप। ओवरफ्लो बैरियर झील से तबाही का डर। नेपाल में बाढ़ भूकंप के बीच बड़ा खतरा। झील ने 50 लाख क्यूबिक मीटर पानी का अनुमान। भारत की मदद जारी। भारत भेजेगा C-130J। देश भर में मनाया जा रहा भाई बहन के प्यार का खास त्यौहार रक्षाबंधन। इस दिन भाई बहन की लाइफ पर बांधती है राखी। रक्षाबंधन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को बच्चों ने बांधी राखी। दिखा भावुक और खास पर। राहुल गांधी ने देशवासियों को दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। बोले प्रेम और विश्वास मजबूत हो भाई बहन का रिश्ता। श्रीनगर में एसएसबी ने स्थानीय बच्चों संग बनाया रक्षाबंधन। सेविंग द फ्यूचर एनजीओ के साथ जवानों ने बच्चों और स्थानीय लोगों में बांटी खुशियां। नीमच बनी अनोखी शिव राखी। 13 रुद्राक्ष और 12 ज्योतिर्लिंगों को घेरा गया है। रक्षाबंधन पर सीएम योगी का स्नेह बंधन कार्यक्रम। बहनों के साथ मनाया भाई बहन का त्यौहार। सीएम योगी ने बच्चों के साथ मनाया पर्व। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। 6 लाख महिलाओं ने उठाया लाभ। 27 से 29 अगस्त तक सेवा। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं संग मनाया रक्षाबंधन। राखी बनवाकर जताया सम्मान। रक्षाबंधन बांके बिहारी मंदिर में आस्था का रंग। महिला श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को अर्पित की राखी। रक्षाबंधन में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। मंगला आरती के दौरान भगवान को अर्पित की गई राखी। रक्षाबंधन पर अखिलेश का महिलाओं से संवाद। बड़े ऐलानों के साथ सपा का महिला संपर्क अभियान तेज। सावन की पूर्णिमा पर अयोध्या में उमड़ा आस्था और भक्ति का रंग। श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। लखनऊ जेल में रक्षाबंधन की खुशियां। बहनों ने भाइयों की कलाई पर सजाई राखी। भावुक हुए कैदी। कानपुर में रक्षाबंधन पर डीएम की दरिया दिली। छात्रा ने बांधी राखी तो माफ कराई 6 महीने की फीस और गिफ्ट की साइकिल। बरेली में रक्षाबंधन कार्यक्रम में भगदड़ जैसे हालात। सारी वितरण कार्यक्रम में एक महिला की मौत। मेयर और पुलिस प्रशासन ने साधी चुप्पी। बीजेपी के अमरपाल मौर्य का एसपी पर हमला। बोले 27 में गया जी ले जाकर करेंगे पिंडदान। यूपी में सपा का भूत भी नहीं दिखेगा। अयोध्या के बाद मथुरा में परिक्रमा मार्ग पर मांस मदिरा की दुकानों पर बैन की मांग। 30 अगस्त को लखनऊ से कूच। विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकालेगी यात्रा। मथुरा के धार्मिक मुद्दे पर पोस्टर से करवाई सियासत। लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लगाया पोस्टर। अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। विधानसभा चुनाव से पहले कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मुद्दा करवाया। 36,000 करोड़ ने गंगा एक्सप्रेस वे पर फिर बचे सवाल। पैचवर्क के आधे घंटे बाद दोबारा आई दरारें। 15 फीट सड़क पर दिखे क्रैक। जेपीएनआईसी निजीकरण विवाद पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। बोले कमीशन ही बीजेपी का मिशन है। बीजेपी ने जेपीएनआईसी निजी हाथों में बेचा। परिसीमन पर सियासत तेज। खड़गे ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग।
राहुल गांधी को विशेषाधिकार समिति का नोटिस, 28 अगस्त तक जवाब देने का निर्देश। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून आज से लागू, सरकार ने आधिकारिक घोषणा की। पटना में TRE-4 को लेकर छात्रों का धरना खत्म, सम्राट सरकार से मांगों पर बनी सहमति। TRE-4 छात्रों के आंदोलन का अंत, मांगे माने जाने के बाद जश्न में डूबे प्रदर्शनकारी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम के साथ बैठक, राज्यों के चुनावी रोडमैप पर मंथन। कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ताओं और पुलिस की भिड़ंत, अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा। जादवपुर में शुभेंदु अधिकारी गाएंगे वंदे मातरम, देशभक्ति के जरिए सियासी संदेश की तैयारी। RSS प्रमुख मोहन भागवत के मैडिसन स्क्वेयर गार्डन कार्यक्रम के आयोजकों का एक्स अकाउंट बहाल, कुछ देर बाद सस्पेंशन के बाद वी आर बैक अप लिखा। उत्तराखंड में 13 ग्लेशियर झीले संवेदनशील घोषित, सीएम धामी ने नियमित निगरानी के लिए दिए निर्देश, अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा मजबूत। यूपी बोर्ड का बड़ा कदम, 9वीं से 12वीं के छात्रों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए अपार आईडी पर जोर, छात्रों को मार्कशीट से TC तक डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित। यूपी के महोबा में मूसलाधार बारिश से हाईवे और बाजार डूबे, लगभग 200 दुकानों में लाखों का सामान बर्बाद। यूपी के सीतापुर में चोरों का अजीबोगरीब कारनामा, जेवर के साथ 30 किलो चीनी भी ले उड़े। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित वालियान हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। शामली घटना को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले क्या सीएम योगी जाट समाज के आक्रोश और दुखी पिता की आवाज सुनेंगे। ग्रेटर नोएडा में अखिलेश यादव की अभद्र टिप्पणी का मामला, सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में की शिकायत। यूपी के एटा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, गोली लगने से घायल आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में स्कूटी सवार, कुचल भाग रहे ट्रक की सामने सारे कैंटर से भिड़ा, दोनों वाहनों में लगी भयंकर आग, ट्रक चालक की जिंदा जलकर मौत। कानपुर में आए से वीडियो बनाकर फुफेरी बहन को बताते थे गर्लफ्रेंड, तंग आकर नीच छात्रा ने किया सुसाइड। गाजीपुर में दो सगे नाबालिग भाइयों की हत्या, मां गिरफ्तार, 9 साल की बहन के बयान से खुले राज, लोहे की रॉड बरामद। सोनभद्र में महंगाई के खिलाफ अनोखा विरोध, चीनी बनी दूल्हा, प्याज बनी दुल्हन, सब्जियों के बढ़ते दाम पर प्रदर्शन। केरलम के एर्नाकुलम में भीषण सड़क हादसा, स्कूटर सवार को बचाने के चक्कर में पलटी टूरिस्ट बस, 35 यात्री घायल। बुलंदशहर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज बस की डंपर से भीषण टक्कर, 2 की मौत, 24 घायल। दिल्ली में ऐसा है जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, पति पत्नी साहिल और समीरा गिरफ्तार। गुजरात के खंभात में मजदूर की मौत पर बवाल, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, जवाब में पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। दिल्ली के तिलक नगर में एनकाउंटर, मुस्कान हत्याकांड का आरोपी इमरान के दोनों पैरों में लगी गोली, हुआ घायल, जवाबी फायरिंग में पैर में लगी थी गोली। उधमपुर में NH-44 पर भीषण सड़क हादसा, फ्यूल टैंकर और डंपर की टक्कर के बाद लगी आग। दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने के स्टोर रूम में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, मशक्कत से पाया गया आग पर काबू। अजमेर में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश, कार्रवाई नहीं हुई तो नगर निकाय चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। अलवर में सरकारी अस्पताल में लोगों ने जड़ा ताला, 15 दिन से डॉक्टर ड्यूटी से गायब। नागपुर के कोंडाली स्थित फार्म हाउस में लगी आग, 40 मिनट में फार्म हाउस जलकर खाक। चंद्रपुर में फर्जी डिग्री का करोड़ों का खेल, 5 से 10 लाख बिक्री है नाम यूनिवर्सिटी की बोगस डिग्रियां, 1 गिरफ्तार। पुणे के चेंबर में फंसकर 2 मजदूरों की मौत, पिछले साल इस चेंबर में 3 लोगों की गई थी जान। जयपुर में 2 दिन में 2 स्टूडेंट्स की आत्महत्या, निम्स यूनिवर्सिटी में मचा हड़कंप। बुलंदशहर में पत्नी ने पति की गला रेतकर की घटना की हत्या, पत्नी हुई गिरफ्तार, पत्नी के अवैध संबंध और शराब पीकर पति का पत्नी को पीटने का प्रकरण आया सामने। पुंछ में दर्दनाक सड़क हादसा, मारती को खाई में गिरी, 6 की मौत, 3 घायल। रायगढ़ में सब्जी बनाने को लेकर विवाद में पत्नी की हत्या, शव जलाकर हड्डियां दफन की। रक्षाबंधन पर गुरुग्राम से घर लौट रही दलित युवती की हत्या, शिकोहाबाद में मिला शव, परिजनों ने दुष्कर्म की जताई आशंका। पटना में दलान पर सो रहे युवक को मारी गई गोली, हालात गंभीर, मौके वारदात से पुलिस ने किए भारी हथियार बरामद। मुंबई के परेल में 2 गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव, पुलिस की सूझबूझ से चला बड़ा विवाद, SRPF तैनात। मुंबई के भांडो में 10वीं मंजिल से गिरी महिला, पेड़ की डालियों में फंसी, मशक्कत के साथ रेस्क्यू कर उतारा गया। टीरी में मां की हत्या कर जंगल में छिपा आरोपी बेटा गिरफ्तार, 4 पुलिस टीमों ने चलाया सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन। रोहतास में इलेक्ट्रिक स्कूटी के गोदाम में लगी भीषण आग, 85 इलेक्ट्रिक स्कूटी और 200 बैटरी जलकर खाक। करनाल में नेशनल हाईवे किनारे एक फैक्ट्री में आग, 10 से 12 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। लखनऊ बदेश्वर शिव मंदिर में चेन चोरी का हैरान करने वाला मामला, महिला ने दांत से काटकर श्रद्धालु की सोने की चेन उड़ाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आज अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म कोसला का घोसला 2 रिलीज, 20 साल बाद आ रहा है सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा आज हो रही OTT पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर होगी स्ट्रीम।
सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर स्ट्रीम होगी बॉबी देओल की बंदर, Z5 पर होगी स्ट्रीम। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक व्यास नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध, सुमित व्यास, टीना गुप्ता, देवेंद्र भुजानी और अमायरा दस्तूर की है फिल्म। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के जन्मदिन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी उनकी बायोपिक फिल्म माइकल।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में साहिल और समीर नाम के दंपत्ति को गिरफ्तार किया है। साहिल और समीरा आईएसआई के लिए जासूसी करते थे। दोनों साल 2024 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आए और फिर धीरे धीरे भारत से जुड़ी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने लगे। जांच में सामने आया कि दोनों ने भारतीय सिम कार्ड दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा और इसी के जरिए जासूसी का पूरा जाल बना। पुलिस को पूछताछ से पता चला कि जो भारतीय सिम कार्ड इन दोनों ने पाकिस्तान भेजे उन्हें पाकिस्तान व्हाट्सएप पर एक्टिवेट किया गया। इन अकाउंट्स का इस्तेमाल भारतीय लोगों से संपर्क करने और संवेदनशील जानकारी जुटाने के लिए किया गया। ये भी पता चला है कि 2024 और 2025 के दौरान साहिल और समीरा ने कुल 8 भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे, जिसके लिए पाकिस्तानी हैंडलर्स ने उन्हें ₹30,000 का भुगतान किया। जांच में यह भी सामने आया कि साहिल ने हैंडलर्स को सेना के कई जवानों की जानकारी उपलब्ध कराई, खासतौर पर उन जवानों की जिनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई ट्राइब्यूनल के सामने लंबित थी। पुलिस के मुताबिक साहिल 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए एक पाकिस्तानी एजेंट के संपर्क में आया। ये संपर्क साहिल की दोस्त समीरा के जरिए हुआ। बाद में साहिल और समीरा की शादी हो गई। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सिम के जरिए कैसे जानकारी मुहैया कराई जा रही थी, कहां भेजा जा रहा था ये सिम और कैसे?
1: इंडियन सिम ये प्रोक्योर करते थे समीर और जो साहिल है उनकी पत्नी जो है, और इस सिम को वो अपने पीआईओ जो हैंडलर था यहाँ पे इंडिया में, उस हैंडलर के जरिए ये सिम भेजते थे पाकिस्तान आईएसआई के जो इनके लोग वहां बैठे थे। 8 सिम एक साल के अंदर भेज चुके थे नेहा, और उन 8 सिम को जब ये ऑन किए उसका व्हाट्सएप ऑपरेट किया, और व्हाट्सएप ऑपरेट करके इंडिया के जो अलग अलग ग्रुप थे उनमें वो जुड़ने की कोशिश करते थे, क्योंकि नंबर इंडियंस था इसलिए किसी को शक नहीं होता था, और उसके जरिए वो लगातार कोशिश करते थे कि किसी तरीके से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ से पहुंच सके। अब इसके अलावा भी इस पति पत्नी का काम था, ये लोग जो सेंसिटिव प्लेसेस थे वहां जाते थे, वहां की तस्वीरें खींचते थे, वो अपने पीआईओ और आईएसआई को सीधे भेजते थे। इतना ही नहीं, आप सोचिए जो जब इनके चैट खंगाले गए तो पता चला कि आईएसआई इनसे उन अधिकारियों के लिस्ट मांग रही थी जिन अधिकारियों का कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग थी। आप सोचिए कितने खतरनाक इनके इरादे थे, आईएसआई किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल को चला रहा था। लेकिन इस पूरे मॉड्यूल के पकड़े जाने से दो चीजें जो इंडियन एजेंसीज के हाथ लगी, एक तो आईएसआई के काम करने का पूरा जो तरीका है, खासतौर से जो नॉर्दर्न इंडिया से लेके सेंट्रल इंडिया में उनका चल रहा है, उसका भंडाफोड़ हुआ। नंबर दो, जो लोग जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पति पत्नी थे ये सारी चीजें मुहैया कराने के अलावा लोकल लेवल पे रेडिकलाइज करके लोगों को अपने साथ जोड़ते थे और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करने के लिए उनको तरह तरह के लालच भी देते थे। ₹30,000 भी मिले थे जो सिम इन्होंने भेजे थे पति पत्नी ने, उसके बदले ₹30,000 भी उन्हें मिले थे। और चैट से ये बात सामने आई है कि जैसे ये दूसरे इंफॉर्मेशन जो आर्मी से जुड़ी गोपनीय जानकारी है वो अगर ये पहुंचाते उन तक तो इनको और रकम मिलती। इनके पीआईओ जो था जो इनसे लगातार संपर्क में था, कई बार गाइडेंस भी उनके जरिए इनको मिली थी कि किस एरिया में जाना है, कहां पर जाके फोटोग्राफ्स खींचनी है। अभी हमने देखा था पिछले कुछ समय पहले जो सीसीटीवी का पूरा मॉड्यूल था कि किस तरीके से आर्मी का जो मूवमेंट वाला इलाका है वहां पर सीसीटीवी लगाने हैं ताकि लाइव स्ट्रीमिंग आईएसआई बैठ के कर सके, जो इंडियन मिलिट्री की पूरी मूवमेंट है, जो अधिकारियों के चेहरे वो आ सके। तो इससे काफी फायदा इंडियन एजेंसीज को मिला पकड़े जाने से। जी नेहा,
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता रहे, दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मॉडल मुस्कान की हत्या के आरोपी इमरान पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिम दिल्ली इलाके में पुलिस और आरोपी इमरान के बीच एनकाउंटर हुआ जिसमें उसके पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक 26 साल का इमरान बुधवार शाम मुस्कान के घर पहुंचा, उस वक्त 21 साल की मुस्कान घर में अकेली थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ जिसके बाद इमरान ने चाकू से मुस्कान पर कई वार किए और वहां से फरार हो गया। मुस्कान को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तिलक नगर इलाके की ये वारदात जिसमें अब आप आरोपी को देख सकते हैं कैसे उसके दोनों पैरों में गोली लगी है एनकाउंटर के बाद मॉडल मुस्कान की हत्या का आरोप इस पर है। एक जिम ट्रेनर बताया जा रहा है जो एक तरफा प्यार करता था मॉडल मुस्कान से। 21 साल की मुस्कान जिसकी बेरहमी से उसी के घर में हत्या कर दी गई। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या इसे बिना एनकाउंटर के बिना गोली मारे पकड़ा जा सकता था?
1: देखिए, पुलिस का कहना है कि 15 टीमें लगातार ट्रैक कर रही थी। परसों शाम से जब ये इंसिडेंट को अंजाम देके भागा तो वहां पर पुलिस जब पहुंची और पहले सीसीटीवी में ही इमरान की शक्ल साफ नजर आ गई, फिर मोबाइल चेक करने पे क्लियर हो गया, तो उसके बाद इमरान की तलाश शुरू की गई। तमाम जो इसके जहां पे ये जा सकता था उन कहीं पर ये नहीं मिला। उसके बाद 15 टीमें लगाई गई। एक बात क्लियर हो गया था कि इसके पास हथियार हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में जो तमाम पुलिस टीम इसकी तलाश में लगी हुई थी उन्हें

0: क्योंकि जैसे ही इसको बीती रात इसको ट्रैक किया गया, इसके मोबाइल टेक्निकल एविडेंसेस जुटाए जा रहे थे लगातार, तो इसको जैसे ही ट्रैक किया गया और इसको रुकने का इशारा किया गया, इसने पुलिस टीम पर गोली चला दिया था, पुलिस का कहना है। जिसके बाद चूंकि अंधेरा था और पुलिस टीम का कहना है कि बहुत वक्त नहीं था उनके पास, क्योंकि जब इमरान ने भागने की कोशिश की तो पुलिस टीम ने रिटेलिएशन किया, जो उसने गोली चलाई तो उसके दोनों पैरों में गोली लगती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया।
1: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी कलाई पर राखी बंधवा रहे हैं। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कैसे आज ये पावन पर्व वो स्कूली बच्चों के साथ मना रहे हैं। इस वक्त ये जो तस्वीरें आ रही हैं, दरअसल प्रधानमंत्री उन सभी से मुखातिब होते हुए जो रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधेंगी और इस त्यौहार को उनके साथ मनाएंगी।
2: कौन सा करते हैं? अच्छा ये करना है, ऐसे करना है। अच्छा
3: आपका बचपन का सपना
2: आप लोगों को मिलने का
3: आपका बचपन का सपना
2: आप लोगों को मिलने का कौन सा करते हैं? अच्छा ये करना है, ऐसे करना है। अच्छा
3: आपका बचपन का सपना
2: आप लोगों को मिलने का
1: तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी ने भी आज बच्चियों के साथ राखी मनाई, उन्हें त्योहार के मौके पर भेंट दी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ब्रह्म कुमारियों से अपनी कलाई पर राखी बंधवाई। ये तीन दिग्गज राजनीति के क्षेत्र में जो आज का पावन त्योहार कुछ अलग अंदाज में मना रहे हैं।
3: आपका बचपन का सपना
1: राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ रक्षाबंधन पर तस्वीर साझा की है और बधाई दी है सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के मौके की। तो राजनीतिक जगत में भी आज रक्षाबंधन के दिन इस पावन पर्व को राजनीतिज्ञ अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उजला टिकते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा,
6: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
6: हाँ ला भाई मेरा बैट, वो अभी तो ठीक हुआ।
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है।
2: ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
3: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के कंगन सेनको से ही लिए थे,
4: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां।
1: इसीलिए सेनको इंडिया का
5: अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द टीआरएफ।
2: अब मैं क्या ही बोलूं?
6: परिवार, अटूट भरोसा।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर किधर?
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है। दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: नंदिका क्या हुआ?
1: शॉर्ट सर्किट हो गया।
0: यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सहित चलती रहे।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ये तस्वीरें देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब बाढ़ आ रही थी। तब तक नदी अपने हदों में बह रही थी, दोनों तरफ घास के मैदान थे। दूर पहाड़ी के कोने से सैलाब का सिर नजर आने लगा था। आगे आगे नदी का सफेद पानी, पीछे से मटमैले पानी की करीब 20 से 25 फीट छलांग लगाती प्रचंड प्रवाह। एक मिनट के अंदर सैलाब की दूसरी प्रचंड धारा आई। तब तक नदी के किनारे स्क्रीन पर बाईं ओर दिख रहा ये मकान वजूद में था। दूसरा मिनट गुजरते गुजरते वो इकलौता मकान डूब चुका था। बाईं ओर की इस बस्ती पर खतरा था। तीसरे मिनट में इस बस्ती के अंदर सैलाब की धारा घुस चुकी थी। पहाड़ी से सैलाब की लहर पर लहर उतरती जा रही थी। और चौथा मिनट गुजरते गुजरते करीब दर्जन भर इमारतों वाली ये बस्ती खत्म हो चुकी थी। अब इन दो तस्वीरों में फर्क देखिए। चार मिनट के फर्क में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई थी कि जन्म भर की मशक्कत और बरसों की उम्मीदें सिर्फ चार मिनट में मलबा बन गई थी। एक और तस्वीर देखिए, जब पहाड़ी पर सैलाब का प्रचंड प्रवाह किसी वक्त 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा होगा तो कैसा नजारा रहा होगा। नदी में उतरी सैलाब की धारा की सीधी टक्कर जिस जगह पर हुई वहां की इमारतों के बीच प्रचंड प्रवाह ने देखते ही देखते तबाही मचा दी। लोग भागने की कोशिश करते रहे। चंद सेकंड के अंदर सब कुछ सैलाब की चपेट में था। आज तक ब्यूरो।
3: सोना केवल एक गहना नहीं, ये भारतीय घरों में बचत और सुरक्षा का एक बड़ा जरिया भी है। यही वजह है कि जब ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग, कौरफंती झील फटी, त्रिशूली और भोटेकोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब, खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका, चीन ने तिब्बत में ऑपरेशन रोका। नेपाल की त्रासदी में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 475 से ज्यादा लोगों की गई जान, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, भारत से पहुंच रही है मदद की खेप। जेन जी आंदोलन के बावजूद आज तक सी वोटर सर्वे में एनडीए को 326 सीट का अनुमान, लेकिन अकेले बहुमत से दूर है बीजेपी, रोजगार शिक्षा महंगाई पर असंतोष, सर्वे में मोदी की नीतियों पर दिखा भरोसा। घर में घुसकर मुस्कान का मर्डर करने वाले जिम ट्रेनर इमरान को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा, दोनों पैरों में लगी गोली। देश भर में रक्षाबंधन की धूम, बच्चियों से राखी बंधवाकर पीएम मोदी ने किया जैन अल्फा वाला संवाद, सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने बंधवाया रक्षा सूत्र, प्रियंका की तस्वीर के साथ राहुल गांधी का पोस्ट।

0: लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था।
1: बेतरा वेदी करके कोई जगह है, वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला है कि मतलब बाढ़ उधर से बाढ़ आ रही है, कि आपने अपने जान बचा लो। कोई बातचीत नहीं हुई, उनके परिवार जो गए वो तो गए, और जो घर में हैं वो भी पूरे ढूंढने में निकले हैं, तो घर पूरा तितर बितर हुआ है।
2: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कल लास्ट बात हुई थी।

0: नमस्कार, मैं इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आपदा नेपाल में आई है, लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हैं। ये त्रासदी कई परिवारों को कभी न भरने वाला जख्म दे गई है। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता है। आपदा की तस्वीरें देखकर परिजन सहम गए हैं। अनहोनी की आशंकाएं बढ़ गई है, लेकिन मन में उम्मीद ये भी है कि शायद भगवान का कोई करिश्मा हो जाए, उनके परिजन मिल जाएं, किसी का भाई, किसी का पिता, तो किसी का पूरा परिवार 26 अगस्त से ही संपर्क में नहीं है।
1: मोबाइल में अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें देखती, ऊपर वाले से दुआएं मांगती ये दीक्षा चौरसिया हैं, जिनके परिजन नेपाल की त्रासदी के बाद से लापता हैं।
2: वो लोग नेपाल में नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट त्रिशुली बाजार में रहते थे। सुरक्षित हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ बचा नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि सुरक्षित हैं कि नहीं।
1: नेपाल के त्रिशुली में जब आपदा आई तो लोगों को भागने का अवसर तक नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, सैलाब इतने आवेग से आया, चौरसिया परिवार लापता हो गया।
3: अभी कोई कांटेक्ट होता है?
2: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती है कि गुरुवार की सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशुली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब खत्म कर दिया। दीक्षा बताती हैं कि 26 अगस्त को बड़े पापा अशोक चौरसिया ने सुबह 9 बजे फोन किया। बात करते करते फोन कट गया और फिर दोबारा कॉल कनेक्ट नहीं हुई।
2: कल सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: हालांकि बाद में पता चला कि दीक्षा के ताऊ जैसे तैसे बच गए, लेकिन 54 साल की उनकी ताई और उसके 18 साल के भाई का पता नहीं चल सका। नेपाल में कुदरत के कहर ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग अब भी लापता हैं। इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
4: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है, वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला है कि मतलब बाढ़ आ रही है, कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के, अपने झोला झांपटा जो के छोड़ के, वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उन्होंने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंदे है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: नेपाल त्रासदी ने कई परिवारों को कभी खत्म न होने वाले दर्द दिए हैं। इस आपदा में कई परिवार लापता हो गए। भोपाल का खनाल परिवार तीर्थाटन के लिए नेपाल गया था। इन लोगों ने एक निजी बस किराए पर ली थी, जिसमें 29 लोग सवार थे और ये सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। 26 अगस्त की सुबह 6 बजे सभी 29 लोग बस में सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बेतरा वेदी के पास एक ढाबे में खाने के लिए रुके, तभी तबाही ने दस्तक दी।
4: मेरे जेठ जेठानी और देवर देवरानी गोसेकुंड करके एक तीर्थ करने जाते हैं, वहाँ पे गए थे और एक बस करके गए थे, उसमें 29 लोग थे। 29 लोग मेरे सब अपने लोग हैं, परिचय वाले सब हैं, बस ये है कि थोड़ा रिश्तेदार थोड़ा पास के या दूर के ऐसा करके हैं। 29 लोग सब परिचय के थे वो 6:30 बजे घर से निकले थे।
5: कोई बातचीत नहीं हुई उनके परिवार, जो गए वो तो गए और जो घर में हैं वो भी पूरे ढूंढने में निकले हैं, तो घर पूरा तितर बितर हुआ है। नेपाल की हालत बहुत खराब हो रही है, अब हमारे तो पूरे रिश्तेदारी पूरा गाँव ही खाली हो गई है।
1: भोपाल का खनाल परिवार और उसके रिश्तेदार अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लोग सुरक्षित हों। समय कठिन है, हर पल नेपाल से आने वाली खबरें चिंताजनक हैं। रेस्क्यू टीमों को मलबे से लाशें मिल रही हैं, लेकिन जिंदगी की तलाश जारी है। शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कोई जिंदा मिल जाए। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो नेपाल में जो भारतीय तीर्थयात्री लापता हैं उनमें ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे या फिर नेपाल में तीर्थाटन को निकले थे। सबसे ज्यादा लोग बंगाल के हैं जो कैलाश मानसरोवर गए थे और आपदा का शिकार हो गए। सिलीगुड़ी का एक परिवार इमिग्रेशन चेक पोस्ट पार कर रहा था लेकिन तबियत बिगड़ी तो वापस लौटना पड़ा। रूट वही था जहां पर आपदा आई। अब ये लोग कहां हैं किसी को पता नहीं।
6: नेपाल त्रासदी की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसमें कोई बचा नहीं होगा। पानी का प्रचंड प्रहार जिधर से निकला सब कुछ समतल करके निकल गया। आपदा की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों। मन आशंकाओं से भरा है, तस्वीरें देखकर लोग सहमे हुए हैं कि इस त्रासदी से भगवान ही बचाएं। इंसान तो इसमें करे भी तो क्या करे। दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सोमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सोमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा है।
7: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
6: सोमार मंडल 16 अगस्त को सिलीगुड़ी से कैलाश मानसरोवर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तबियत खराब हुई तो वापस लौटना पड़ा और इसी दौरान वो नेपाल त्रासदी में फंस गए। अब परिजनों का बुरा हाल है, घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि सोमार मंडल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।
7: यहाँ से 16 तारीख को निकला था काठमांडू के लिए, 17 तारीख को पहुंच गया था, वहाँ से कैलाश यात्रा के लिए निकल गए थे, उसके बाद तो हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे।
6: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद कुछ पता नहीं चल रहा। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंकाएं भी आती हैं, लेकिन आस फिर भी है शायद वो सुरक्षित हों।
8: हमारा खबर मिला है जे गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका छेले साथ नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
9: सुबह में
8: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
6: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थी।
10: वो अभी तक नहीं दिया है, हम उसको फोन कर रहे थे, वो लोगों को 3-4 घंटे और लगेगा, उसके बाद आपको खबर मिलेगा।
6: हैदराबाद की कानी बल्ला सुहासनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासनी भी लापता है।
11: वो परसों संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहां से कनेक्शन कट हुआ।
6: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। जिनके अपने अभी तक लापता हैं वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता है। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
0: अब आपको गुजरात के किनारे परिवार की दास्तां बताते हैं। अमेरिका से पटेल परिवार गुजरात आया और फिर नेपाल के रास्ते मानसरोवर यात्रा पर निकला। तिब्बत नेपाल सीमा पर इमिग्रेशन के लिए पहुंचे थे कि फ्लैश फ्लड आ गया। अब ना तो वह इमिग्रेशन चेक पोस्ट बचा है और ना ही वहां पर मौजूद किसी शख्स के बारे में कोई जानकारी मिल रही है।

0: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आए और नेपाल घूमने चले गए थे। नेपाल के जल प्रलय में गुजरात के विमल पटेल भी लापता है। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जब आपदा आई तो विमल पटेल भी अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उस तबाही के बाद विमल और उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला।
1: जो लापता हुए वो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, उसका नाम है विमल पटेल और उसकी वाइफ का नाम है जयमीना बेन पटेल। वो नेपाल गए हुए थे, वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका। मानसरोवर जाने के लिए इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए थे,
2: लेकिन
1: वो कल सुबह गए थे मानसरोवर के लिए, लेकिन इमिग्रेशन में जब गए उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट एजेंट से भी नहीं हुआ और हमारे से भी नहीं हुआ।
0: अब परिवार में मातम है, परिजन परेशान है। खोजबीन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। मासूम बच्चों को पता भी नहीं है कि उसके माता पिता के साथ नेपाल में क्या हुआ।
1: मालूम है वहाँ पे जो नेपाल के टूरिज्म है उसके नमस्ते नेपाल, उसके थ्रू वो नेपाल में घूमने गए थे। उसके बाद वहाँ से वो मानसरोवर के लिए जाने वाले थे, वो लीप हॉलीडे है उसमें मानसरोवर जाने के लिए जाने वाले थे। उसका लड़का है वो हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमने उसको कुछ बताया नहीं है कि उसके माँ बाप ऐसे है ऐसे, कुछ अभी तक उसको कुछ मालूम ही नहीं है।
0: पटेल परिवार के अलावा गुजरात के तीन और लोग भी नेपाल में लापता हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा। सूरत के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में अफसर ने बताया कि उनमें से कुछ लोग अमेरिका से आए थे।
3: स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार तीन यात्री मिसिंग है जो सूरत के बताए जाते, और जो हमें प्राप्त माहिती के अनुसार उसमें से दो यूएसए के निवासी है, एक मुंबई के निवासी है। उनके किसी पहचान वाले गीता बेन ने ये सूचना दी है, उसके अनुसार ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हमें ये सूचना मिली है। जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों यात्री पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है।
0: सूरत के इस आपदा कंट्रोल रूम में लगातार लोग फोन कर रहे हैं, अपनों के बारे में जानकारियां मांग रहे हैं, लेकिन आपदा कंट्रोल रूम भी वही जानकारी दे पाता है जो उनके पास मौजूद रहती है। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन चीन का वो चेक पोस्ट भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहाँ जो लोग चेकिंग के लिए आए थे उनकी कोई खोज खबर नहीं है आज तक। ब्यूरो।
4: इस बीच नेपाल में सबसे बड़ी तबाही जो आई है, इस आपदा ने नेपाल के प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वो समतल हो गया है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कुछ गुना ज्यादा चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरें तबाही की पूरी दास्तां बयां कर रही हैं।
5: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आई प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाने थे वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुआ, त्रिशूली, नुवाकोट तक की ज्योग्राफी बदल दी है। सबसे पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर बने इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को देखिए। जब यहाँ पानी आया तो इस चेक पॉइंट पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन भाग कर गए कहाँ? अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान तक नहीं है। रसुआ, थाडिंग, नुआकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाठ दोगुने से अधिक दिख रहा है।
2: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा खुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
5: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गया, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
6: मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया, आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही विसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
4: वही नुवाकोटी में कई लोग अपने परिजनों का इंतजार कर रहे हैं, वो हर हेलीकॉप्टर को ताकते हैं कि शायद उसमें उनका कोई अपना हो। नुवाकोटी में समय वो लोग भी हैं जिन्होंने तबाही को अपनी आंखों से देखा है।
7: हम लोग इधर बसते हैं यहाँ पर, के बोल सा डूंगे में हम लोग रहते हैं। हजूर हमारा फैमिली तरफ से बुरु ताली गति
8: में था। आपकी फैमिली?
7: मेरे फैमिली रसुआ में था।
8: तो क्या नंबर नहीं लग रहा है किसी का?
7: किसी का भी फोन नहीं रहा लग रहा है।
8: तो रसुआ में बहुत लोग मिसिंग हैं, लेकिन मिल सकते हैं वो लोग, सरकार खोज रही
7: है। दाई कहले बैठ सके मम्मी, तीनटा बहनी एउटा छोरी, पांच जना घर को लपाता था, बाबा अब भाई उता सामान की ना जाने बात यो ठूल लगाओ उता बस ना बात हो।
8: अभी आप रसुआ नहीं जा सकते, हेलीकॉप्टर के जरिए सरकार काफी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर ला रही है। आगे आगे आगे एक जगह है, वहाँ लिस्ट लगी है, जाके देखो वहाँ।
7: हमारा फैमिली का नाम नहीं है दाई वहाँ पर।
8: देखा आपने?
7: देखा,
8: पूरी लिस्ट
7: फोटो भी डाला है, कोई पता नहीं चल रहा है वहाँ पर, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा तीन दिन बैठे के ना कोई नहीं भेज रहा हमारा फैमिली, उम्मीद है हमारा फैमिली जल्दी से जल्दी मिल जाए दाई। तो बोल रहे हैं कोई कहाँ है, कोई था सही नहीं, हम लोग का कोई था पता नहीं था। बुधवार के दिन हम लोग अपना काम में अपने व्यस्त हो, जब हम लोग देखे ना आदमी से जा रहा है तो हम लोग बोले ऐसा ही जा रहा है, जब देखे कि त्रिशूली पुल का पुराना पुल है ना वहाँ पर देखे 150 फीट इतना दूर पानी आ रहा है, तब देख कर हम लोग भागे तो यहाँ गणेश मंदिर था ना उसी जगह हम लोग फंस गए। इतना पाक कितना लोग
4: ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग। एक और उफनती झील फटी। त्रिशूली और भोटे कोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका। चीन ने तिब्बत में ऑपरेशन रोका। नेपाल त्रासदी से फिर बड़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 475 से ज्यादा लोगों की गई जान। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। भारत से पहुंची मदद की खेप। गुरुग्राम जलभराव की घटना पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। जापान की कंपनी को दिया सर्वे का काम। यमुना तक पानी लाने का होगा इंतजाम। दिल्ली के साथ भी मिलकर बनेगा प्लान। घर में घुसकर मुस्कान का मर्डर करने वाला जिम ट्रेनर इमरान को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा। दोनों पैरों में लगी गोली। लड़की को मारने के बाद से थी तलाश। और देश भर में रक्षाबंधन की धूम। बच्चियों से राखी बंधवाकर पीएम मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद। सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने भी बनवाया रक्षा सूत्र। प्रियंका की तस्वीर के साथ राहुल का पोस्ट।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 2 बज चुके हैं, न्यूज रूम लाइव का वक्त हो चला है। तो न्यूज रूम लाइव में कौन सी खबरें, जैसा हम हर बार बताते हैं वैसा ही आपको बताते हैं। आज नेपाल की ही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि महातबाही 2 ऐसा क्यों कहा जा रहा है और इससे बचने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं। खतरे का अलर्ट जो जारी किया गया है। दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो भी नेपाल से ही होगी। कैसे टूटी नई झील और अब कैसे खतरा मंडरा रहा है और कहां कहां तक तबाही जा सकती है, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा नेपाल की ही जब बात करेंगे तो नेपाल में अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहां चल रहा है, जिंदगी की जंग कैसे लड़ी जा रही है और नई आफत की बारी जो सामने आ रही है उससे लड़ते हुए कैसे लोगों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं और क्या क्या मदद अलग अलग जगह से आ रही है, ये भी हम आपको बताएंगे। और नेपाल से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। तबाही के एपिसेंटर पर आज तक मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हर एक वो तस्वीर दिखा रहा है जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखी होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे नेपाल में महातबाही पार्ट 2 की।
1: तीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं।
2: एक बैग पानी आया, हम लोग ऊपर भागे चले। अच्छा। हम लोग की जिंदगी हम लोग खत्म हो गया।

0: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं। अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। सबसे कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहां से चले जाएं।
1: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बर्बादी की तस्वीरें और बर्बादी खासकर जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है।
2: मैं काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ, जहाँ पर भारत की तरफ से भेजी गई राहत की दूसरी खेप पहुंच चुकी है।

0: तो देखिए नेपाल में तबाही का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 26 तारीख को जो तबाही हुई वो सबने देखा, लेकिन अब डराने वाली बात यह है कि अब महातबाही पार्ट टू की बात की जा रही है। और नेपाल तिब्बत जो बॉर्डर है वहां पर बताया जा रहा है कि जो बैरियर लेक है वो फट चुकी है। उसके बाद पानी लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए अब चेतावनी जारी की जा रही है। भोटेकोशी जो नदी बताई जा रही है उसका जलस्तर भी अब तेजी से बढ़ने लगा है। तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जहां पर मलबे में कई लोग दबे हुए हो सकते हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, अब सावधानी बरतते हुए उस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी से आप लोग दूर रहिएगा। सुनिए जरा,
1: सबै खाली गरेको छ, त्यसैले कृपया सबैजना बुझेर आफै पनि अलि परपर सुरक्षित भएर बस्दिनु होला। धन्यवाद
2: सर। यहाँ कोही खतरा है क्या? आप अनाउंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
3: नीचे जो है ना,
2: इसी में बोलिए। नहीं, क्या हो रहा है सर इधर?
3: वो थोड़ा सा क्या बाप बढ़ के आ रहा है रसवा से, इसलिए यहाँ पर खाली।
2: तो त्रिशूली नदी में पानी बढ़ने वाला है,
3: इसलिए
2: तो सबको एविक्युट करवा रहे हैं, खाली करवा रहे हैं।
0: और देखिए ग्राउंड जीरो पर आज तक मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है, जहां पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। और वहां का दर्द जो आंखों देखी है वो आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं, एक रिपोर्ट उनकी आपको दिखाते हैं।
4: तो फिर जो जलाशय है उसके टूटने की जानकारी है, जिसके बाद से भटकोशी समेत तमाम नदियों का स्तर बढ़ने लगा। मेरे पीछे जो है ये त्रिशूली का स्तर है, लेकिन ठीक पीछे जो ऊंचाई का इलाका है वहां से भटकोशी हो और दूसरी कई सारी नदियों का उद्गम होता है, वहां से शुरुआत होती है। और वो धाराएं जब एक के अलग इलाका में, क्योंकि टेरेन जो हिमालय का है वो बहुत लंबा है, और ऐसे में जब जलस्तर बढ़ेगा तो तबाही की दूसरी वेव न जाने कितना नुकसान करेगी। और इसका आकलन लगाने के लिए यहां पर तैयारियां बहुत ज्यादा हैं। लोगों को किनारे के इलाकों से हटा दिया गया है, और इसी के साथ साथ जो स्काउट गाइड हैं, डिफेंस के लोग हैं, पुलिस हैं, उनको तैनात किया गया है। पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है और यहाँ से अनाउंसमेंट की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रही है, लोगों के कह रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं। और वो ऊपर का जो गांव है ना, ये पूरा इलाका, इनको भी खाली कर दिया गया है, इसके आगे जाने की इजाजत नहीं है। हम आगे जाते थे, यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, और ये स्काउट के लोग हैं, ये भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, हाथों में माइक लेकर के लगातार लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। वो इसलिए कि दोबारा से बहुत बड़ा नुकसान ना हो। आकलन ये था कि अगर ये पानी नीचे आता है और यहाँ का स्तर बढ़ने लगा गया, हालांकि अभी भी हमें चेतावनी दी जा रही है कि जो त्रिशूली का स्तर है उसमें भी मामूली बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब पानी नीचे किस रफ्तार से आएगा, कितना मलबा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर आता है तो ये 5 गुना मुश्किल ला सकता है। अगर आप देखेंगे कि ये रास्ता नीचे है और हम उससे अब लगभग 50-70 फीट की ऊंचाई पर, और इसीलिए हमें कहा जा रहा है कि लगातार आप और ऊपर जाएं। यानी आपदा की ये सूरत जो देखने को मिली, अगर चीन ने पहले भी इस तरह की जानकारी दी होती तो संभवतः इसे टाला जा सकता था, लेकिन अब जो जानकारी मिली है उस नुकसान के बाद से एक और बड़ी तबाही का दूसरा दौर ना हो, इसके चलते एहतियात के तमाम कदम यहां उठाए जा रहे हैं। नुआकोट जिले के इस आखिरी गांव से मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: और देखिए रोहित सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नवल पराशी से वो मौजूद हैं। और नवल पराशी वही जगह है जहां पर बहुत ज्यादा डेड बॉडी मिली है, बहुत सारे लोगों के शव मिले हैं वहां पर। रोहित, आप जहां पर मौजूद हो वहां से क्या तस्वीरें सामने आ पा रही है, अभी तक क्या खबर है, कितने लोगों की शिनाख्त तो हो पाई है और कितने शव बरामद हुए?
5: हिमांशु, जैसे कि जानकारी आ रही है तकरीबन 500 जो है लाशें वो अभी तक मिल चुकी हैं, और चितवन से सबसे ज़्यादा जो है वो लाशें मिली हैं तकरीबन 180 के आसपास, और उसके बाद नवल परासी में तकरीबन 140 शव जो है पिछले 24 घंटे में पानी में बहते हुए पाए गए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं नवल परासी ज़िले के में, जो अस्पताल का पीछा भी ये देख सकते हैं, दरअसल ये मॉर्चुरी है इस अस्पताल का, जहाँ पर 7 शवों को जो है वो रखा गया है। ये जो 7 शव हैं ये कल से आज तक में जो है ये पानी में बहते हुए पाए गए थे, और इनको यहाँ से निकाला गया है, जिसमें 5 पुरुष हैं, 2 महिलाओं का शव है, एक महिला का केवल जांग का हिस्सा ही जो है वो मिला है और पूरा धड़ जो है वो नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि लगातार त्रिशूली नदी हो या नारायणी नदी हो, वहाँ से जो है वो लाश जो है पानी में बहते हुए जो पहुँच रही है यहाँ पर, उनको निकाला जा रहा है रेस्क्यू टीम के द्वारा। और फिलहाल इस अस्पताल में भी 7 शवों को जो है वो रखा गया है, और नवल परासी में भी जो है तकरीबन 140 शव जो हैं वो पानी से निकाले गए हैं, और अभी भी ये माना जा रहा है कि ये मौत का आंकड़ा और ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। हिमांशु,
0: बिल्कुल मौत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए नई झील के फटने से दहशत है, लोगों के अंदर डर है। जो 26 तारीख का मंजर देख चुके हैं वो लोग डरे सहमे हैं कि अब अगर ये नई झील फटती है और उसके बाद जल स्तर बढ़ता है जो भोटे कोशी नदी है, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो 26 अगस्त को तबाही हुई थी उससे ज्यादा तबाही अब देखने को मिल सकती है?
6: नेपाल में बाढ़ की विभीषिका की तस्वीरों को जिसने देखा तहलकर रह गया। पहाड़ों से आया पानी, पानी के साथ बहता मलबा और मलबे के साथ बहती जिंदगियां। सड़कें बह गईं, पुल बह गए, घर और गाड़ियां मलबे में समा गईं। नेपाल के कई इलाकों में तबाही का ऐसा ही मंजर दिखा, मानो कुदरत ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। अब तबाही टू आ रही है। तिब्बत के पहाड़ पर बनी झील फिर फट गई, झील का बैरियर टूट गया। इस बार खतरा और भी बड़ा है, 5 गुनी तबाही का अलर्ट है।
4: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ है अभी यहाँ पे?
7: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था प्राकृतिक बांध वो फिर से टूट गया है, उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
4: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूं और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है।
6: 26 अगस्त को महाविनाश लाने वाली भोटे कोशी नदी में पानी का जल स्तर बढ़ रहा है। स्थानीय जिला अधिकारी के मुताबिक उन्हें नोटिस मिला है कि झील ने अपने किनारे छोड़ दिए हैं, अब उसका पानी बाहर निकलने लगा है और अगर ऊपर से पानी का दबाव और बढ़ा तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है। और अब इसका असर सीधे राहत और बचाव अभियान पर दिखाई दे रहा है। नेपाल आर्मी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है क्योंकि नदी का पानी बढ़ रहा है और नदी में उतरना रेस्क्यू टीमों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। रसुआ में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पहाड़ी की तरफ भागकर ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया है। जिस इलाके में कल तक लोग दूसरों की जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, आज वही लोग खुद अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भाग रहे हैं। तिब्बत से आने वाली चोचेन खोला और पूर्वित सांगपो नदियां आगे जाकर मिलती है। नेपाल में प्रवेश के बाद यही नदी यंत्र भोटे कोशी कहलाता है और भोटे कोशी आगे त्रिशूली नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। ऊपर पहाड़ों में पानी का अचानक रिलीज होना नीचे नदी किनारे बसे इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसीलिए नेपाल का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रख रहा है। लोगों से नदी किनारे और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है। अब समझिए यह खतरा इतना बड़ा क्यों है। पहले फ्लड में पहाड़ों से बर्फ, चट्टान, मिट्टी और भारी मलबा नीचे आया। इस मलबे ने नदी के रास्ते को जगह जगह बाधित किया और इसी वजह से प्राकृतिक बैरियर लेक बनी। अब इस झील में लगातार पानी जमा हो रहा है। पहली तबाही ने दूसरी तबाही का रास्ता तैयार कर दिया है। अगर ये प्राकृतिक बांध पूरी तरह से टूटा तो सिर्फ पानी नहीं आएगा, पानी के साथ जमा मलबा, पत्थर और चट्टाने भी नीचे की तरफ दौड़ सकती है। और चीन की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो इस खतरे की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। चीनी अधिकारियों के मुताबिक बैरियर लेक में 25 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी जमा है, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि नई झील के टूटने से कैसी तबाही मचेगी। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: और देखिए, ये आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि जब पानी आता है, सिर्फ पानी नहीं आता, मलबा, बड़ी बड़ी चट्टाने सब आता है और उससे खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नुआकोट में बहुत तबाही मची थी, अभी भी सावधानी बरतने के लिए वहां कहा जा रहा है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष, आप वहां पर मौजूद हैं, जो चेतावनी जारी की जा रही थी वो भी आप बता रहे थे समय समय पर, अभी वहां पर क्या हालात है और जो चेतावनी जारी की गई थी कि कुछ वक्त बाद बड़ी प्रलय आ सकती है, उसको लेकर कोई जानकारी?
4: जानकारी ये है कि अभी जो त्रिशूली नदी है जिसके पास मैं खड़ा हूँ उसके जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। रुसवा का जो इलाका है वहां पर जो नदियां आती हैं उसके जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन चिंता की बात भटकोशी के लिए हो सकती है क्योंकि ये पूरी टेरेन आप समझिए कि एक लाइन से पहाड़ी टेरेन है, जहां पर ये पानी की जलधारा टूटी है, जहां से झील टूटी है, वो सारा पानी एक नदी में नहीं, वो एक जगह पर जा रहा है, और इसलिए ये चेतावनी सबसे ज्यादा भटकोशी के लिए दी गई है। अब भटकोशी से आगे कटते हुए जो नहरें हैं कई जगह डाइवर्सिफाई हो रही हैं, वो दूसरे नदी नालों में मिल रही हैं, तो वहां से निकलने वाली और उससे मिलने वाले जितने और दूसरे सब्सिडरी नदी नाले होंगे उनके जलस्तर में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो त्रिशूली के स्तर में तो बढ़ोतरी हुई है, और इसीलिए देखिए यहाँ पर इस तरह का अलर्ट है कि यह शहर ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत हो चुका है। जितने लोग थे सबको आनंद फानंद में यहाँ से निकाला गया, अधिकारियों की जो विजिट है वो हो रही है। संभवतः ये हो सकता है कि एक बड़े नुकसान को समय रहते नेपाल ने टाल दिया है। जो दूसरा वेव था उसका असर अभी आने में बाकी है, थोड़ा समय और लगेगा क्योंकि पानी मलबा धीरे धीरे निकल रहा है। भटकोशी का स्तर हो सकता है थोड़ा सा बढ़े, त्रिशूली का भी बढ़े, लेकिन चूंकि ये नहीं पता कि जो पानी आ रहा है वो कितना होगा, मलबा कितना होगा, तो इससे ये आकलन लगाना मुश्किल है कि ऊंचाई कितनी छुएगा। तो अभी जहां से शुरुआत हुई है वहां कोई नुकसान की खबर बहुत ज्यादा नहीं आ रही है, इसलिए हेली ऑपरेशन जो इवैक्यूएशन का था कुछ इलाकों में तैमूर और दूसरे इलाकों में उसे शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन अभी भी प्रशासन कम से कम 6 से 8 घंटे इंतजार करना चाहता है, वो इसलिए कि 6 से 8 घंटों में उसके असर से वो गुजर चुका होगा अगर पानी कम है तो भी, और उसी के साथ साथ ये भी देखना कि वहां से जो पानी रिलीज हुआ उसके बाद उस जलाशय में और रिपोर्ट आ जाए कि वहां पर क्या और पानी इकट्ठा हो रहा है। दूसरा, हर बार जब पानी इकट्ठा होता है एक मलबे का हिस्सा होता है जो बचे हुए पानी को रोक लेता है, वो कितना मजबूत है, जब तक उसके एनालिसिस उसकी रिपोर्ट चीन के जरिए तिब्बत के इलाके से जब तक नेपाल को नहीं दी जाती तब तक इस अलर्ट को विड्रॉ नहीं करेगी सरकार, और लोगों को अभी भी एकदम हाई अलर्ट मोड पर रखा गया। कोई भी इसके आगे हमें भी वहां जाने के लिए जब 2 या 4 मिनट के लिए एक रिपोर्ट बनाने जा सकते हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल खड़ा होने की अनुमति नहीं दे रहा है। उन्होंने देखा है कि कुछ ही सेकंड में तो प्रलय आया था, और ऐसा ना हो इसी के लिए जो हेलीकॉप्टर से वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं पानी के स्तर की।
8: बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, और ये सावधानी बरतनी भी चाहिए हर एक आम नागरिक को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ तबाह होते हुए देखा भी। आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन देखिए भोटे कोशी नदी की बात की है, अब जल प्रलय पार्ट 2 की जो बात की जा रही है, और पानी का जल विस्फोट अगर होता है तो भोटे कोशी नदी की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। और ये भी हम आपको बता दें मामूली जलस्तर बढ़ा है, जैसा कि अभी आशुतोष बता

0: है कि मॉनिटरिंग करते रहिए ऊपर से, अगर भाव अचानक तेज होता है तो तुरंत आप सीटी बजाकर या फिर किसी और इक्विपमेंट के जरिए लोगों को सावधान करेंगे। और ये 12:30 बजे का वीडियो आप देख रहे हैं, बोटे कोशी नदी पर ये नजर रखी जा रही है और ये ऊंचाई से कि अगर यहाँ पर बहाव थोड़ा सा भी तेज हुआ या फिर अचानक से सामने से सैलाब आता है तो ऊंचाई से सीटी बजाते हुए या फिर किसी और तरीके से आप लोगों को सावधान कर सके ताकि आने वाले वक्त में जो आगे आगे बहाव तेज बढ़ेगा तो वहां पर लोगों की जान बचाई जा सके, क्योंकि 26 तारीख को जो हुआ था अचानक हुआ था, उसके बाद लोगों को संभलने का भी मौका नहीं मिला था। तो इसलिए यहां पर अब ये सावधानियां बरती जा रही है कि अगर कहीं पर भी कोई आपातकाल स्थिति आती है तो लोगों को सतर्क किया जा सके पहले से ही। और देखिए 26 तारीख को जब ये आपदा आई, त्रासदी आई, तो बहुत से लोग लापता हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता भाई बहन पति पत्नी का इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। एक लिस्ट यहां पर लगा दी गई है लापता लोगों की और उसके लिए भी लोग बाग वहां पर पहुंच रहे हैं कि शायद उनके अपनों का नाम उसमें हो। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं नुवा कोट से।
1: कोई खो गया आपका?
2: हमारा 2-4 लोग खो गए।
1: तो लिस्ट बार बार नहीं आ लगता है?
2: आ रहा है।
1: अभी लिस्ट में आ गया नाम कि नहीं?
2: नाम नहीं, पता नहीं कहीं नहीं।
1: कैसे घूम रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा होगा।
2: नहीं कुछ नहीं पता है कैसे इस नहीं
3: कॉन्टैक्ट भी नहीं है अभी नहीं
2: कॉन्टैक्ट भी नहीं कहीं लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है।
3: गाड़ी आया था उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है।
1: आपके एक दोस्त थे?
3: नहीं दो दोस्त है।
1: दो दोस्त
3: वो गाड़ी लेके रोस्ट हो रहे थे चाइना बॉर्डर, अभी तक नहीं कॉन्टैक्ट भी नहीं।
1: और नाम भी नहीं?
3: हाँ नाम भी नहीं, अभी रेस्क्यू हो रहा है, थोड़ी देर में पता चलेगा।
1: उम्मीद है आपको। ये जिस जगह पर हम है ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है। आप यहाँ पर देखिए जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो उन सबको यहाँ पर दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है, जो एक दो की संख्या में ही है और बहुत घंटे बीत गए हैं एक भी नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुंचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। बहुत मुश्किल स्थिति है क्योंकि यहाँ पर ही जो नेपाल के सेना के जवान है उन सबको जवाब देना है, उन सबको संख्या वो लिखनी है, जोड़ती जानी है। एक भी संख्या में इजाफा बहुत बड़ा होता है इसके लिए। और यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशन है उनके लिए भी बहुत सामग्री भी लाई जा रही है क्योंकि ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित है, जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं जहां से, और जहां पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। अलग अलग एरिया से आकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सबके हाथों में आप हेलमेट देखेंगे, गाड़ियां सबकी बाइक्स यहां पर पार्क्ड हैं और साथ में यहां पर बार बार उस लिस्ट को इनकी आंखें जो है वो निहार रहे हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, विदुर, आज तक।
0: और देखिए मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं और अब जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है तो बहुत से लोगों के शव मिल रहे हैं। चितवन से कल हमने आपको बताया था कि कितने शव बरामद हुए थे, अलग अलग जगह से शव मिल रहे हैं। अब देखिए 475 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, हालांकि कई जगह ये भी खबर है कि 500 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। अब पुलिस के मुताबिक रसुवा में 12, नुवाकोट में 37, दाडिंग में 27, चितवन में 179 शव बरामद हुए हैं और इसी तरह गोरखा में 44, तनहूम 28, पूर्वी नवलपरासी में 110 शव बरामद किए गए हैं, जहां से आपने कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रोहित सिंह की एक रिपोर्ट देखी थी। और नवलपरासी की जब बात की जा रही है, पूर्वी नवलपरासी, तो 179 शव वहां पर बरामद किए गए हैं और जिस जगह पर इन शवों को रखा गया, जहां पर लोग अपनों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं, वहां से हमारे सहयोगी रोहित सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
4: पहाड़ों के इलाके से जो भी पानी आया है, साथ में जो लाशें तैर तैर के आई हैं, उसमें से तकरीबन नवलपरासी में बताया जा रहा है कि 140 शव जो है अब तक बरामद किए जा चुके हैं। पूर्वी नवलपरासी और पश्चिमी नवलपरासी को मिलाकर कुल 140 शव जो है पिछले 48 घंटे में जो है वो नदी में से जो है वो रिकवर किया गया है, उनको निकाला गया है और विभिन्न अस्पतालों में उसको शिनाख्त के लिए, पोस्टमार्टम के लिए जो है वो रखा गया है। और इस वक्त हम नवलपरासी की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस सरकारी अस्पताल में बताया जा रहा है कि 8 से 10 शव जो है वो लाया गया है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

0: क्योंकि अभी जो चीन से खबर जो आई है कि एक और जो प्राकृतिक झील है वो भी फट गया है, तो जाहिर सी बात है ये सब खतरा जो है अभी टला नहीं है बिल्कुल भी, खतरा भी बिल्कुल बरकरार है।
1: और यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत छोटा सा ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: The new BE6 Sportec.
1: In association with
2: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
3: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती.
4: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था. हम लोग गरीब छात्र लोग हैं. तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है.
3: खबरों के साथ पक्षपात नहीं.
5: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई.
3: हर बात देश के सामने.
6: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं.
3: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: The new BE6 Sporter.
1: मैं इस समय नुआकोट के सबसे आखिरी बाजार के उस बेस कैंप पे हूँ जहाँ पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, एयर ऑपरेशन चल रहे हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेपाल पुलिस के वो लोग हैं और प्रहरी हैं जो दरअसल नागरिक सुविधा केंद्र बनाई है और वो इसलिए जरूरी है कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में यहाँ जानकारियां दी जा रही हैं, वो इन जानकारियों को दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद जिन लोगों का को रिकवर कर लिया जा रहा है, जिनको वापस इवैक्यूएट कर लिया जा रहा है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो लोग लापता हैं, उनको खोजा जा सके। अभी भी देखेंगे आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को चल रहा है तो दूर दराज के इलाकों से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है, लेकिन पुलिस के रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास ये नाम हो, जरूरत के लोग हो, कौन कहाँ है, तो सर यहाँ पर किस तरह की जानकारी दर्ज की जा रही है?
2: ये तो हरा को मानसे को अनि तो संपर्क बीन भएको मान्छे
1: आपको लिस्ट दिखाता हूँ। जो लोग मिसिंग है उनको इस तरह की जानकारियां इन्होंने दर्ज की हुई है और कोशिश ये हो रही है कि जब अपनों को खोजने के लिए लोग आते हैं तो उनको बताया जा सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है तो उनको कहाँ ले जाया गया है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग। एक और उफनती झील फटी। त्रिशूली और भोटेकोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका। चीन ने तिब्बत में रेस्क्यू ऑपरेशन रोका। नेपाल त्रासदी में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा। अब तक 475 से ज्यादा लोगों की मौत। 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। लगातार जारी है रेस्क्यू। भारत से पहुंची मदद की खेप। गुरुग्राम जल भराव की घटना पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। जापान की कंपनी को दिया सर्वे का काम। यमुना तक पानी लाने का होगा इंतजाम। दिल्ली के साथ भी मिलकर बनेगा प्लान। घर में घुसकर मुस्कान का मर्डर करने वाले जिम ट्रेनर इमरान को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा। दोनों पैरों में लगी गोली। लड़की को मारने के बाद से थी तलाश। और देश भर में रक्षाबंधन की धूम। बच्चियों से राखी बंधवाकर पीएम मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद। सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने भी बनवाया रक्षा सूत्र। प्रियंका की तस्वीर के साथ राहुल की पोस्ट।

0: तीन दिन पहले आई नेपाल में भारी त्रासदी के बाद अभी नेपाल उभर भी नहीं पाया कि अब एक और खतरा नेपाल पर मंडरा रहा है, और वो खतरा छोटा मोटा नहीं है बल्कि बताया जा रहा है कि 5 गुना ज्यादा खतरा इस बार नेपाल के सामने, और उस खतरे से निपटने के लिए हर वो इंतजाम किए जा रहे हैं, हर वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, और उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप यहाँ पर समझेंगे कि हालात इस वक्त कैसे सावधानी पूर्वक यहाँ पर बनाए हुए हैं। अलग अलग जगह पर त्रिशूली का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ये बात सामने आ रही है। इसके साथ 5 गुना पानी का जो प्रहार है उससे निपटने के लिए सावधानी बरती जा रही है। लाउड स्पीकर पर अनाउंस किया जा रहा है कि जितना हो सके आप नदी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि हालात यहां पर लगातार खराब हो सकती है, कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो झील थी मलबे की वजह से वो फट चुकी है, और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि हालात और ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, और ये कोई नहीं चाहता कि आंकड़ा बढ़े लेकिन ऐसा हो रहा है। नेपाल में मृतकों की तादाद बढ़कर 489 पहुंच चुकी है। 393 शवों की अब तक पहचान नहीं हुई है, क्योंकि बहुत क्षत हालत में ये शव मिले हैं। त्रिशूली नदी के पास बड़े खतरे की चेतावनी बरकरार है, और देखिए 489 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, कई शव बरामद हो चुके हैं। सिर्फ पलसारी में ही 180 से ज्यादा नव पलसारी में ही 180 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हुए हैं। चितवन में कई शव बरामद हुए हैं। अलग अलग जगहों से ऐसी खबर सामने आ रही है। मरने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और देखिए सबसे दुखद खबर तभी होती है जब एक जीता जागता इंसान जब आंकड़ों में तब्दील हो जाता है। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आशुतोष, 489 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है, और ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में तो अभी तक कोई जानकारी ही नहीं मिल पाई होगी। आपके पास और क्या जानकारी आ रही है?
1: जानकारी ये कि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये त्रिशूली रिवर है, और इस पर लगातार प्रशासन की नजर है, क्योंकि तो इसका भी जलस्तर में मामूली जो है बढ़ोतरी अभी तक हुई है। हालांकि अभी तक चिंता की बात यहाँ नहीं है, क्योंकि तो अगर मैं धीरे से आपको दिखाऊं कि मेरे पीछे मैं जहां पर हूं, यह आखिरी धुंडुगे गांव है, और इसी के पास से इस पूरे गांव को खाली करा लिया गया है। यहां तक कि मेरे पीछे के जो आप देख रहे हैं इलाके, ये सारे गांव लगभग खाली करा दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रेस्क्यूअर्स के अलावा यहां इस समय कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बार वो तस्वीरें दिखाऊं उस नदी की, जिसके जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी है, और इतना ही नहीं, इसके उस पार कई सारे अभी गांव अगर आप देखेंगे तो यहां के गांव में भी लोग हैं जिनको ऊपर जाने को कह दिया गया कि वो नीचे ना आए। और ये वो त्रिशूली का स्तर है जिसमें मामूली ही बढ़ोतरी अभी तक हुई है, लेकिन ये बढ़ोतरी हुई और वो चिंता की बात जरूर है। हालांकि एक मुश्किल ये भी आई है कि अब यहाँ बारिश शुरू हो चुकी है, और लोगों का जो जमावड़ा है इसमें जो है रेस्क्यूअर्स है वो अभी भी, ये देखिए कई सारे लोग हैं जो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन अब इनको प्रशासन रोक रहा है कि आप इसके आगे नहीं जा सकते। ये ग्रामीण है, कह रहे हमारा घर है आगे, हमें अपनी माल मत्ता सामान के लिए जाना है आगे ले जाने के लिए, और हम धुंडुगे के उस आखिरी गांव में, एक्सक्लूसिव इमेजेस आप आज तक पर देख रहे हो, उस गांव में है, और इसके आगे जाने की अब अनुमति किसी को है नहीं, लेकिन यहां पर प्रशासन नहीं चाहता। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर के जो गांव है इनको भी खाली करा दिया गया है। अब ऐसे में राहत बचाव कार्य में मुश्किलें दरअसल इसलिए आ सकती है कि एक तो सॉर्टी ऑपरेशन है उनको रोकना पड़ जाएगा, यहाँ फिर से मौसम खराब हुआ है, बारिश तेज से होने लगी है, और पहाड़ों पर जब बारिश होती है आप समझते हैं उससे भी पानी काफी नीचे आता है। हालांकि तेज बरसात नहीं है,
0: अगर बरसात होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कत आती है। आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है वो भी दिखा देते हैं, तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि खतरा कितना तेजी के साथ बढ़ रहा है, कितनी तेजी के साथ खतरा बढ़ रहा है यह मैं आपको बताएंगे। हिमालय पर नए खतरे की तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो आप देखिए, और इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कितनी तेजी के साथ ये बहाव नीचे की ओर आ रहा है, और ऐसे में यही एक तरीका होता है, यही एक आप समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि कैसे बड़ा सैलाब बनता है। जब ऊपर से पानी इतनी तेज धार के साथ नीचे आता है तो नीचे आप देखिए झील है, नीचे पानी जमा हुआ है, जब ऊपर से मलबा आएगा और तेजी के साथ ये पानी नीचे टकराएगा उसके बाद सैलाब उभरता है, और फिर वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है निचले इलाकों में जहां पर सब जगह सिर्फ बर्बादी और तबाही की तस्वीरें सामने आती हैं। अब आशुतोष हमारे साथ बने हुए, आशुतोष ड्रोन से वो तस्वीरें कैद हुई हैं, एक नए खतरे की, बर्फ ढके पहाड़ पर एवलांच का पता चला है, और वो वीडियो में देखा जा सकता है कि बहाव कितनी तेजी के साथ आ रहा है, वो भी एक झील पर।
1: दरअसल एवलांच रे दो तरह के, इस तरह के ग्लेशियर बर्स्ट होते हैं, एक तो है कि मान लीजिए कहीं पानी का जमाव है, फ्लैश फ्लड आ जाए तो बैरियर को ब्रीच कर देता है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो ये कि पहाड़ पे जो आइस रॉक जिसे कहते हैं, आइस रॉक एवलांच, वो अगर आता है और उसका आकार कितना बड़ा है ये उस पर निर्भर करता है कि उसमें ताकत कितनी होगी। और अभी जो तस्वीर हम देख रहे हैं संभवतः उसी तरह के एक आइस रॉक एवलांच की है, जिसके बाद से उस जलाशय पर दबाव बढ़ा है, जिसके बाद उसने सीमाएं तोड़ी है, पानी का स्तर बढ़ा है, और जैसे में वो बैरियर तोड़ेगा उसके बाद जब पानी नीचे आएगा उसकी मात्रा, वहां जलाशय में पानी कितना था, वो किस ऊंचाई पर है, ये सारे पैमाने पर ये निर्भर करेगा कि नीचे उसकी रफ्तार कितनी होगी और उसे नुकसान कितना होगा। हिमांशु
0: बिल्कुल, आशुतोष आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन अभी आप ये समझिए कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये खतरा और तेजी के साथ बढ़ रहा है, क्योंकि अभी आपने जो वीडियो देखा ऐसे ही ये बताया गया है कि महाप्रलय, महातबाही का पार्ट टू यहां पर आ सकता है, क्योंकि ऊपरी झील फटी है और ऊपरी झील जब फटेगी तो वहां बहुत तेजी के साथ नीचे आएगा। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि 26 अगस्त को यानी 3 दिन पहले जो त्रासदी आई नेपाल में उसमें इतना नुकसान हुआ, तो अगर आगे दोबारा उससे 5 गुना ज्यादा खतरा है तो उसमें कितनी तबाही मचेगी।
2: क्या नेपाल में पर फिर महातबाही दस्तक देने वाली है? क्या एक बार फिर सैलाबी संकट नेपाल में हाहाकार मचाने को तैयार है? नेपाल में फिर से खतरे का अलर्ट है, लोगों में डर है, सरकार सतर्क है, और इस बीच सैलाब तेजी से नेपाल की ओर बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक त्रिशूली नदी के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है और बढ़ता पानी इतना ज्यादा है कि इस बार 5 गुना तक तबाही मचा सकता है। इस अलर्ट के बाद ही सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए। नदी के किनारे से लोगों को हटा दिया गया है और इसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है, दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर किस तरह का अलर्ट इशू हुआ अभी यहाँ पे?
3: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था प्राकृतिक बांध वो फिर से टूट गया है, उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है, तो जो बांध जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई।
2: दरअसल नेपाल पर फिर से ये खतरा पैदा हुआ है। रसुआ जिले में तिब्बत सीमा पर बनी झील पर बने प्राकृतिक बांध के टूटने से, ये वही झील है जिसे लेकर पिछले 24 घंटे से चीन और नेपाल में अलर्ट जारी किया था। आशंका थी कि अगर प्राकृतिक मलबे से बनी ये झील अचानक टूटती है तो बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आ सकता है और पहले से तबाह इलाकों में दूसरी बड़ी बाढ़ ला सकता है। झील से पानी बाहर निकलने की खबर के बाद खतरे को देखते हुए नेपाली सेना ने राहत और बचाव अभियान अस्थायी तौर पर रोक दिया है। बड़े खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है।
1: नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहां पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहां से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहां पहुंच सकता है। तो ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहां पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: सबसे
1: कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो हैं वो लोग वहां से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है, और ये कहा गया कि यहां से निकल जाएं क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहां से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहां से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरे बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
2: दरअसल चीन की ओर से किए गए सर्वे में पता चला था कि झील में करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। एक दिन पहले चीनी इंजीनियरिंग टीम ने इसमें करीब 15 से 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी होने का अनुमान लगाया था, यानी थोड़े ही समय में जलस्तर और पानी की मात्रा में काफी बढ़ोतरी हुई है। और अब प्राकृतिक बांध के टूटने के बाद ये सैलाबी संकट बनकर नेपाल के कई इलाकों में बढ़ रहा है। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर सावधानी सतर्कता बरती जा रही है। अब सबसे अहम बात यहाँ पर क्या आ जाती है, भोटे कोशी नदी जिसका जलस्तर बहुत तेजी के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब वहाँ आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जो बता रहे हैं कि क्या सावधानी सतर्कता इस वक्त बरती जा रही है।
5: नेपाल में आपदा का क्या दूसरा चरण आने वाला, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एक बार फिर तिब्बत के इलाके में जिस तरह से जो जलाशय बन रहा था उसका बांध टूटा है, उसके बाद भटकोशी नदी का स्तर बढ़ने लगा है। सरकार और प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे से दूर जाने को कहा है। अब नुआकोट में इसी के साथ असर ये हुआ है कि ये त्रिशूली नदी है और ये ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे पहाड़ों की ओर से तो आगे जो रुसवा और आगे फिर तिब्बत का इलाका शुरू होता है, तो ऐसा हो कि भटकोशी के साथ पानी अगर यहां पर आता है तो यहां पर भी पानी का स्तर बढ़ सकता है और ऐसे में चेतावनी ये दी गई है कि लोग इन किनारों से हट जाएं। और इसलिए नुआकोटे के आस से जो ढेंग इलाका है देखिए पूरा सब कुछ खाली करा लिया गया है। यहाँ जो स्काउट के लोग हैं, प्रशासन पुलिस के लोग हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और इसलिए ऊपर के जो गांव है, ये जो इलाके हैं, इनको भी खाली कराया गया है। साथ ही पीछे जहां पर राहत बचाव कार्य, दरअसल ये जो गांव है इसके आगे सड़क पूरी तरह कट चुकी है, यहां पर जो है सड़क का रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, लोगों को मलबे में खोजा भी जा रहा था, लेकिन अब वो सारा ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। हेली ऑपरेशन उन इलाकों में बंद कर दिया है जहां पर सेना को या एपीएफ को या फिर रेस्क्यू फोर्सेस को उतारना पड़ रहा है क्योंकि अब पानी का स्तर, और इसी के साथ ये वो नदी है त्रिशूली नदी जिसको आप देख रहे हैं, यहां पर भी इसका स्तर पानी का बढ़ सकता है। और अगर ऐसी स्थिति हुई तो चेतावनी ये भी दी गई है कि कहीं ये पिछले यानी वेव टू जो है वो वेव वन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तीव्रता ला सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर तबाही बढ़ सकती है, लेकिन समय रहते प्रशासन ने लोगों को सचेत किया, अलर्ट किया और उन्हें यहां से जाने को कहा।
0: देखिए नेपाल और चीन दोनों जगह पर दो झील जो बनी हुई हैं उस वजह से खतरा अभी बरकरार है और नेपाल और चीन की जो सुरक्षा एजेंसियां वो बहुत बारीकी से ध्यान रखे हुए हैं। एक एक गतिविधि अगर होती है, कहीं पर बहाव ज्यादा हो जाता है, कहीं पर दबाव कैसे पड़ रहा है, क्योंकि ये खतरा अभी बरकरार है, लोगों की जान अभी भी खतरे में है।
6: नेपाल पर जल प्रलय का अलर्ट, नेपाल पर खतरा भी टला नहीं, बॉर्डर पर जल विस्फोट का डेंजर, दो झीलों में बढ़ रहा जल स्तर, 1 सितंबर तक महातबाही का खतरा। नेपाल में बाढ़ की विभीषिका की इन तस्वीरों को जिसने देखा दहलकर रह गया, तबाही की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गई। आज तक संवाददाता जहां भी जाते हैं बर्बादी की भयानक तस्वीरें नजर आती हैं।
7: घरों का हाल देखिए आप, ये जिस रोड पर हम खड़े हैं इस समय, ये एक पक्की सड़क है और एक अच्छी सड़क है, एक चौड़ी सड़क है, हाईवे का हिस्सा है इनके, लेकिन अभी इस पर देखिए रेत मलबा, ये घर के अंदर का हिस्सा अगर आप देखें तो वहां तक पानी पहुंच गया है, वहां तक पहुंचने के बीच में जो है वो दलदल है। घर वाले वहां पर खड़े हैं अभी किसी तरीके से, कुछ यहां पर जेसीबी हमें दिख रही हैं जिसके साथ इसको खोदने की कोशिश हो रही है। वहां पर एक जेसीबी को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे मलबे के नीचे वो आकर दबा है, उसके आगे बाइक घुसी हुई है, उसके नीचे आकर बाइक घुसी हुई। ये हम बस कल्पना कर सकते हैं कि ये शहर पहले कैसा रहा होगा और अभी कैसा दिख रहा है।
6: नेपाल इस तबाही से जूझ रहा है, माना जा रहा है कि इस तबाही से उबरने में नेपाल को कई साल लग जाएंगे, लेकिन ये तबाही अभी पूरी तरह टली नहीं है। अभी ऐसी और तबाही का खतरा नेपाल के सिर पर मंडरा रहा है। नेपाल और चीन ने चेतावनी दी है कि झीलें फटने से बाढ़ का नया खतरा पैदा हो सकता है। नेपाल और चीन दोनों ने गुरुवार को हिमालय में बाढ़ के नए खतरे के बारे में चेतावनी दी। सीमा के दोनों ओर बनी दो झीलें फटने की कगार पर हैं, जबकि ये इलाका पहले से ही इस हफ्ते आई भयानक बाढ़ से जूझ रहा है।
1: नेपाल अभी एक आपदा से उबरा ही नहीं था कि अब उस पर एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वो इसलिए क्योंकि नेपाल और चीन की सीमा पर इन पहाड़ों के बीच एक बार फिर से जो लेक है वो फिर से बनने शुरू हो गई है। दरअसल भोटे कोशी नदी और उसके आसपास के दूसरे इलाकों पे ये माना जा रहा है कि अगले 3 दिनों के भीतर 50 लाख क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले जलाशय तैयार हो जाएंगे और जब इतनी क्षमता होगी तो जलाशय की दीवारें कभी भी टूट सकती हैं और अगर ऐसा होगा तो इन पहाड़ों से तेजी से गिरता हुआ मलबा एक बार फिर नीचे आ सकता है। त्रिशूली, भोटे कोशी, नारायणी, ये वो नदियां थी जिनके चलते नेपाल ने सैलाब देखा, तबाही देखी है और एक बार फिर अगर ऐसी तबाही आती है तो इस घाव से उभर रहे नेपाल की चोट और गहरी हो सकती है।
6: नेपाल और चीन दोनों देशों ने मौजूदा तबाही के लिए ग्लेशियर के टूटने को जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी वजह से पहाड़ों में मौजूद नदी प्रणालियों में चट्टान, बर्फ, कीचड़ और मलबा भर गया। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि बाढ़ वाली जगह पर नदी का रास्ता मलबे से रुक गया है और इसके कारण बनी झील का जलस्तर बढ़ रहा है और इसके फटने का खतरा है। एक बयान में प्राधिकरण ने कहा, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों, यात्रियों, बचाव कार्य में लगे लोगों और सभी संबंधित लोगों से अनुरोध है कि वो विशेष सावधानी बरतें और नदी के किनारों व जोखिम वाले इलाकों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहें। तो नेपाल और चीन दोनों तरफ दो अस्थायी झील बन चुके हैं और इनमें लगातार पानी का स्तर बढ़ रहा है। ये खतरा आने वाले दिनों में और बढ़ेगा क्योंकि चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने आने वाले हफ्ते में भारी बारिश की चेतावनी दी है। एक अनुमान के मुताबिक चीन की सीमा में बनी झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने की आशंका है। ये पानी 1200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में पानी जमा होने पर झील के टूटने का भारी खतरा है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर के आसपास पानी का बहाव सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। गुरुवार को चीनी बचाव दल ने हवाई फुटेज में मलबे से बनी झील को देखा। फुटेज में भूरे रंग का पानी एक ऐसे बेसिन में जमा होता दिख रहा है जिसका कोई स्पष्ट निकास मार्ग नहीं था। पानी पहले ही झाड़ियों और पेड़ों को डुबो चुका था और मलबे और पत्थरों की रुकावट पर दबाव डालता हुआ दिख रहा था। यानी नेपाल को फिलहाल इस कुदरती संकट से राहत मिलता नहीं दिख रहा। अगर वाकई चीन और नेपाल की सीमाओं में बनी दोनों झीलें फटती हैं तो महाविनाश तय है। इसलिए ये वक्त बेहद सावधान और खबरदार रहने की है। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
0: यहाँ पर वक्त चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ पेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की मुस्कान की हत्या का आरोपित इमरान को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी दिल्ली इलाके में पुलिस और इमरान के बीच में एनकाउंटर हुआ जिसमें इमरान के दोनों पैरों में गोली लगी है। 26 साल का इमरान बुधवार को मुस्कान के घर पर जाता है और उसके बाद 21 साल की मुस्कान को जब अकेले पाता है उसके बाद चाकू से कई बार वार कर देता है और इसी के बाद से इमरान फरार चल रहा था जिसके बाद पुलिस इमरान की तलाश कर रही थी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: 26 अगस्त को नेपाल में जो हुआ उसकी कुछ तस्वीरें अब आई। बुधवार को ये जिंदगी और मौत की जंग थी। जिस वक्त नेपाल में पहाड़ से सैलाब मौत बनकर दौड़ा, उस वक्त लोग अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। ये भयावह तस्वीरें नेपाल के नुवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार की। काठमांडू से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित ये बाजार सबसे खौफनाक सैलाब की चपेट में आया। 26 अगस्त भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई तो बाजार में अफरा तफरी मच गई। लहरें बाजार को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही थी। लोग जान बचाने के लिए तेजी से भागे जा रहे थे। जो जहां था, जिस भी स्थिति में था, वो बस भागे जा रहा था। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई बेबस था। मार्केट से बड़ी संख्या में गाड़ियों में सवार लोग सुरक्षित इलाके की ओर जाने की कोशिश में जुटे थे। साइकिल सवार भी भागे जा रहे थे, तो दूसरी ओर तबाही मचाता सैलाब सब कुछ बर्बाद करके आगे बढ़ता जा रहा था। 26 अगस्त को आपदा के वक्त की ये तस्वीरें रूह कपाने वाली हैं। त्रिशूली बाजार की हालत देखिए। सैलाब के साथ मलबा तेजी से बाजार में फैल गया। भारी भरकम सामान और बाइक बहते नजर आए। अब ये एक और तस्वीर देखिए। 26 अगस्त को तारुका इलाके में ऐसे हालात हो गए कि वजनदार पत्थर भी बेजान सा पड़ गया। बाढ़ की विभीषिका में बड़े बड़े पत्थर तैरते नजर आए। ये वीडियो नदी के उद्गम स्थल से 50 मील दूर तारुका गांव का है। कुदरत के इस क्रोध ने नेपाल को बड़ा सदमा दे दिया है। बेरैनी से श्वेता सिंह, चितवन से रोहित कुमार सिंह और काठमांडू से पंकज दास के साथ आशुतोष मिश्रा त्रिशूली नेपाल आज तक।
1: गाड़ी बाइक सब
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया तो कुछ ने ग्लेशियल झील के फटने का, लेकिन अब अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है। शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मोहर लगा दी क्योंकि ये चीन को सूट करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। USGS के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीज़मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर दिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो।

नेपाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग, एक और उफनती झील फटी। त्रिशूली और भूटेकोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब, खाली कराया जा सकता है पूरा इलाका। चीन ने तिब्बत में ऑपरेशन रोका।

नेपाल त्रासदी में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 489 से ज्यादा लोगों की जान गई, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता, लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, भारत से पहुंची मदद की खेप।

दबोचा, दोनों पैरों में लगी गोली। लड़की को मारने के बाद से थी इसकी तलाश।

0: प्रलय पार्ट टू से नेपाल में फिर हड़कंप
1: है, जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही दशा।
0: दूसरी झील में विस्फोट की चेतावनी, अब की बार 5 गुना विनाश का लाभ।
2: नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: चीन से नेपाल तक मचा कोहराम। दुनिया को चेता रहे तबाही के निशान। हिमालय में फिर फूटेगा वाटर बम।
1: यहाँ की सड़क पर की गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है, वहाँ की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक है, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की।
0: नेपाल को फिर क्यों डरा रही महा तबाही। सबसे बड़ी नॉनस्टॉप कवरेज सिर्फ आज तक पर।
3: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और आप नेपाल में आई तबाही पर हमारी महा कवरेज देख रहे हैं। नेपाल में एक बार फिर से दहशत है। लैंडस्लाइड से बनी एक और नई झील आज ओवरफ्लो होने लगी है, जिससे बाढ़ से तबाह हुए इलाकों पर नया खतरा मंडराने लगा है। झील में 25 लाख टन मीटर पानी इकट्ठा हो चुका है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। झील में रिसाव के बाद नेपाल और चीन दोनों को बचाव का काम कुछ देर के लिए रोकना पड़ा था। हालांकि उसका खतरा कुछ कम होने के बाद दोनों तरफ से रेस्क्यू के ऑपरेशंस दोबारा से शुरू कर दिए गए। हालांकि जब ये चेतावनी आई तब चीन के तिब्बत से सटे नेपाल के रसुवा जिले में लोग नदी जल स्तर बढ़ने के बाद पहाड़ियों की ओर भागते हुए भी दिखे। बुधवार को इस इलाके में ग्लेशियर टूटने से नेपाल में मरने वालों की संख्या अब कुल करीबन 489 तक हो गई है, जबकि नेपाल और तिब्बत में लगभग 1000 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में 540 विदेशी नागरिक भी है और नेपाल तिब्बत सीमा पर हाई अलर्ट भी घोषित कर दिया गया। नदी किनारे रहने वालों को ऊंची जगहों पर भेज दिया गया और हिमालय में इस इलाके में आई महातबाही पर अगले 2 घंटे तक हम आपको विस्तार से ये पूरी कवरेज दिखाएंगे और हमारे साथ हमारे कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि त्रिशूली और तेजी से बढ़ रहा है त्रिशूली नदी का जलस्तर। ये खबरें भी लगातार सामने आ रही है, तेजी से त्रिशूली नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और अब तक करीबन, और देखिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट जो आपको बताएगी कि आखिरकार वहां पर किस तरीके से नए खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

0: ये है वो कुदरती झील जिसने टाइम बम की तरह चीन और नेपाल में खौफ पैदा कर दिया। छब्बीस अगस्त को ऐसी ही झील के फटने से मौत का वो तांडव हुआ जिसकी त्रासदी अब भी रोंगटे खड़े कर रही है। एक बार फिर वही खौफ लौट आया। चीन ने नेपाल को अलर्ट किया कि लाखों घन मीटर पानी समेट बनी झील फट चुकी है। चेतावनी के कुछ ही मिनट बाद त्रिशूली नदी उफान पर आने लगी और फिर से दहशत फैल गई।
1: जैसे ही बाढ़ का पानी आएगा उसके बाद नदी का स्तर है जो बढ़ने लगा है। सर, क्या पानी फिर से बढ़ रहा है यहाँ पे? देखे, ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है कि खतरा एक बार फिर बढ़ सकता है, ऊपर से पानी आने की गुंजाइश फिर।
0: इसके ठीक पहले नेपाल पुलिस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि तिब्बत की तरफ बनी झील फट चुकी है, लोगों को फौरन पहाड़ पर ऊंची और सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। डेढ़ घंटे के बाद नेपाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। चीन ने भी तिब्बत में बचाव अभियान पर ब्रेक लगा दिया। चीन ने अपनी टीम को एक किलोमीटर पीछे बुला लिया। इधर नुवाकोट के झुंडे बाजार में दहशत बढ़ती जा रही थी।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है।
0: दरअसल जो चेतावनी आई उसके मुताबिक ऊपर टूटे ग्लेशियर से बुधवार को आए फ्लैश फ्लड से 5 गुना ज्यादा ताकत से पानी आ सकता है। इस डर से उन सैकड़ों लोगों को बचाने का मिशन रोक दिया गया जो अब तक लापता है। दरअसल बुधवार की सुबह जब मौत की तरह दौड़ता हुआ सैलाब आया तब लोग बुरी तरह जान बचाकर भागते दिखे। आगे आगे लोग भाग रहे थे और उनके पीछे पानी किसी दैत्य की तरह पीछा कर रहा था। नेपाल में ऐसी दहशत पहले कभी नहीं देखी गई। अभी इस दहशत और तबाही के 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि फिर से आई नई चेतावनी ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। चीन ने इस बार छोचैन खोला और पुरेपूत सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील को लेकर पहले ही चेतावनी दे दी थी। ये नदियां नेपाल की भोटे कोशी और त्रिशूली में मिल जाती हैं। चीन के मुताबिक इसमें 20 लाख घन मीटर पानी जमा है और अगले 3 दिनों में लगभग 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और जमा हो जाएगा, यानी इतना पानी जो 1200 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल के बराबर है। और इतना पानी बहकर आया तो पहले से 5 गुना तबाही मचेगी। इस बीच चीन ने तिब्बत में नेपाल सीमा के पास अचानक आई बाढ़ से प्रभावित इलाके में बचाव कार्यों में मदद के लिए सैटेलाइट और ड्रोन तैनात किए। शिनुआ की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इलाके को पूरी तरह से टोह लेने के लिए हाई डेफिनेशन कैमरों से लैस अपना अनमैंड एरियल व्हीकल विंग लूंग भी यहां तैनात किया। वहीं बचाव कर्मी अपने ऑपरेशन के लिए छूटे यूएवी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच सैटेलाइट की तस्वीरें आई हैं जो दिखाती हैं कि नेपाल तिब्बत सीमा पर चीन का इमिग्रेशन ऑफिस पहले साफ तौर पर दिख रहा था, लेकिन तबाही के बाद वहां सब कुछ साफ हो चुका है और अब नया खतरा फिर से डरा रहा है। चीन ने कुदरत से अंधाधुंध छेड़छाड़ कर टूटते हुए पिघलते हुए ग्लेशियर को टाइम बम बना दिया है। नेपाल से ग्राउंड जीरो पर श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।
2: और देखिए, रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन अब आपको बता दें, अब से कुछ ही देर पहले चीन ने अपने इलाके में हुए एक और एवलांच की तस्वीरें भी जारी किया। ये वीडियो आज सुबह का बताया जा रहा है जो चीन के ड्रोन कैमरों में कैद हुआ है। और 26 अगस्त को ऐसा ही हिमस्खलन या एवलांच हुआ था जिसके बाद सैलाब ने चीन और नेपाल की सीमा में भारी तबाही मचाई थी और नेपाल के निचले इलाकों में भयानक तबाही की तस्वीरें और उसकी अपनी त्रासदी को पूरी दुनिया ने देखा था। एक बार फिर से चीन के ड्रोन कैमरों ने कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज सुबह कैद की है जिसमें नए एवलांच की बात और उसकी तस्वीरें जारी की गई। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष वहां से इलाके में लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आशुतोष, आज लगातार ये कहा गया था कि एक बार फिर से एक नया खतरा बनता जा रहा है क्योंकि एवलांच आया और कहा जा रहा है कि जल स्तर बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर वहां पर लोगों में किस तरीके का पैनिक है?
1: वो इसलिए भी है क्योंकि भट्टकोशी में जलस्तर काफी बड़ा है। मैं त्रिशूली से अगर मैं कहूं तो रेडियस में सिर्फ 50 मीटर की किनारे पर खड़ा हूं, लेकिन मेरे ठीक पीछे देखिए निचला इलाका, मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी ज्यादातर ये आपको दुकानें दिखाई देंगी वो बंद हैं, और ये जो लोग हैं वहां से या तो निकल रहे हैं और इक्का दुक्का लोग हैं जो जाना चाहते हैं, इनको बंद कर दिया गया। और एहतियात के तौर पर इसलिए किया गया है कि अगर एक बार फिर नदी का जलस्तर बढ़ता, मतलब मेरे पीछे अगर आप देखेंगे ये देखिए ये पूरा बड़ा बैरिकेड और इसके आगे किसी भी गाड़ी को किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं, हम भी यहाँ से 50 मीटर से आगे कहीं और जा नहीं सकते कि जलस्तर जलस्तर बढ़ रहा। और ये कि अभी ये इस बात का आकलन नहीं किया क्योंकि वहां उन्होंने देखा कि जो जलाशय है वो टूटा है। अब आप समझें कि अगर जो सब्सिडरीज हैं वो इस कोने पर, उसका पानी सीधे जो है त्रिशूली में नहीं आना है लेकिन भट्टकोशी नदी में वो जलस्तर बढ़ाएगा। और अगर आप देखेंगे कि नेपाल और चीन की लगती हुई जो सीमाएं हैं तिब्बत की प्लेट, तो वहां सिर्फ एक नदी नहीं है, वहां से ऐसी 7 से 8 जो सब्सिडरीज भी निकलती हैं जो आगे भट्टकोशी को रास्ता देती हैं, फिर आगे वो जो नारायणी है उसको भी जोड़ लेती हैं और फिर उसके साथ साथ त्रिशूली नदी को भी देती हैं। तो जो जलस्तर का खतरा वो भट्टकोशी का है लेकिन उसके साथ कई और नदियां निकलती हैं, उनका पानी फिर आने की संभावना है जो त्रिशूली में भी आएगा, लेकिन वो आकार कितना है जलाशय का जो टूटा है उसके बारे में भी सही जानकारी नहीं है। दूसरा वो फ्लैश फ्लड क्या बर्फ पिघलने की वजह से है, वहां तेज बारिश हुई है या फिर कोई रॉक आइस एवलॉन्च जैसी स्थिति है, ये उस पर निर्भर करेगा कि पानी का दबाव कितना है। और इसीलिए आमतौर पर 20 मिनट में पानी आता था, अभी तक यहां कोई सिग्निफिकेंट जो थ्रेट है उस तरह नहीं देखा गया, लेकिन 8 से 9 घंटे प्रशासन अलर्ट पर रहना चाहता है कि मान लीजिए अगर एक ब्रीच हुआ है और उस ब्रीच में बहुत सारा पानी फिर भी रुका रह गया मलबे के चलते, फिर हो जाए तो 8 से 9 घंटे प्रशासन एहतियात पर रह चाहता है। ये पूरा इलाका खाली कर दिया गया है, यहाँ सिर्फ रेस्क्यूअर्स हैं, स्काउट की टीमें हैं, आर्मी की टीमें हैं, पुलिस की टीमें हैं और उन्हीं के साथ साथ मीडिया है जो लगातार जमीन पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है। तो अभी फिलहाल देखिए पैनिक की स्थिति है, लोगों को जाना पड़ा है, मन में डर है, दहशत की एक वेव देखी है, दूसरी वेव कितनी खतरनाक होगी कोई नहीं जानता, लेकिन
2: डर इसी बात का है क्योंकि जब ये पानी या फिर ये मलबा आता है तो अपने साथ बड़े बड़े आप कह सकते हैं पत्थर बोल्डर या फिर अपने साथ बड़े साजो सामान लेकर आता है और शायद इनके सामने कोई बड़ी दीवार या कोई बड़ा रुकावट इनके सामने टिक नहीं पाती और शायद यही सबसे बड़ा खतरा भी है। आशुतोष आप सेफ भी रहिए लगातार और हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाते रहिए। लेकिन हमारे दो और सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ पंकज दास भी है और हमारे साथ रोहित सिंह भी, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार नेपाल के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जो चीन में जब नेपाल को एक नई झील से रिसाव का अलर्ट जारी हुआ तो फिर से त्रिशूली नदी के किनारे पैनिक फैल गया, नदी में पानी बढ़ने लगा और लोगों को उसके किनारे से दूर जाने के लिए चेतावनी दी जाने लगी। श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
3: चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके बाद यहां पर उन सभी कनेक्टेड नदियों का जलस्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने जो आप नदी देख रहे हैं इसी में जब वो बाढ़ आई तो ये पूरा त्रिशूली बाजार और नुआकोट का पूरा एरिया फ्लड हो गया था। उनमें से अनेकों अनेक अभी भी मिसिंग है। सरकार की तरफ से यहां पर जरूर 1500 का आंकड़ा दिया जा रहा है, लोग बहुत सारे आपको अलग अलग यहां पर फिगर्स देंगे। लेकिन अब एक बार फिर इस नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी का आवेग बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों को इधर रोक दिया गया है सबको कि इसके आगे कोई फिलहाल नहीं जा सकता है। यानी इस पूरे एरिया में अभी बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी जो पानी जब से यहाँ पर हमें भी अनाउंस क्योंकि पानी बढ़ रहा है, ये बेहद खतरे की जगह और जो घर है अधिकांश उन्हें अभी खाली कराया जा चुका है इस पूरे एरिया के, यानी कि नदी के साथ चलते चलते वाला जो पूरा इलाका है पूरा हिस्सा है उस सबको खाली करते हुए चला जा रहा है। क्योंकि किसी भी समय अचानक उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, एक मिनट के भीतर जहाँ पर पानी भर गया था पानी आ गया था और फिर यहाँ पर परिस्थितियाँ बेहद भयावह बन गई थी। तो आज भी ये कहा जा रहा है कि किसी भी समय आप कुछ भी होने की आशंका है, इसीलिए हायर ग्राउंड की तरफ जाए, जितनी ऊंचाई की तरफ यानी कि नदी का जो लेवल है वो लेवल है उसकी तुलना में जितनी ऊंचाई की तरफ जा सके उतनी ऊंचाई की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है।
2: श्वेता सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे दो सहयोगी लगातार आपको आशुतोष और श्वेता बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर खतरा अब भी बरकरार रहा। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित सिंह का रुख कर लेते हैं, नवल परासी के अंदर वो मौजूद है। रोहित, ये कहा जा रहा है कि वहां पर कई शवों की बरामदगी हुई है, लगातार अब भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाए जा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय यह भी है कि आखिरकार इतने तेज पानी के बहाव के साथ कई लोग थे, कई शव थे जो आगे बह गए होंगे, उनको निकालने का उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी जारी है।
4: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब पहाड़ों से पानी जब नीचे आता है मैदानी इलाकों में, तो जाहिर सी बात है कई शव ऐसे हैं जो पहाड़ों से बहते हुए जो है वो मैदानी इलाकों में आए हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो मौत का आंकड़ा है उसमें जो बॉडी रिकवरी हुई है सबसे ज़्यादा चितवन और नवलपरासी में हुई है। चितवन में तकरीबन 180 के आसपास जो है वो शव जो पानी से निकाले गए हैं, और नवलपरासी से भी लगभग 140 शव जो है वो निकाले गए हैं। और हम इस वक्त नवलपरासी में ही मौजूद हैं, और यहाँ पर दरअसल ये इस ज़िले में कई ऐसे छोटे छोटे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ पर शवों को रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं जिस सरकारी अस्पताल में था वहाँ पर 7 शव जो है वो पिछले 24 घंटे में लाए गए हैं। 5 पुरुष 2 महिलाएँ उनका शव था, एक महिला का केवल एक जांग का हिस्सा ही बस जो है बरामद हुआ है, बाकी का धड़ के बारे में कोई पता नहीं है। और सभी शव जो है छत पिछत हालत में हैं, और वहाँ के डॉक्टर्स बता रहे थे कि सड़ना गलना भी शुरू हो गया है, इसीलिए जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी एक मेडिकल बोर्ड बैठाकर उनका डीएनए सैंपल रखा जाएगा और शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा, क्योंकि शव जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो चुके हैं। तो हालात कितने खराब हैं इस वक्त, तो खासकर मैदानी इलाकों में त्रिशूली नदी हो या फिर नारायणी नदी, वहाँ से लगातार रह रहकर जो है कई शव जो है वो निकाले जा रहे हैं जो बहते हुए पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में पहुंचे हैं।
2: बिल्कुल, और रोहित सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि ऐसी, क्योंकि इतनी मोटी लेयर बन जाती है उसकी, सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत, कि उसमें से शवों को निकाल पाना, उनको आइडेंटिफाई कर पाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। चलिए यार आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू होकर लोग विटूर सेंटर पहुंच रहे हैं जहां लोग अपनों की तलाश भी कर रहे हैं। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने कई लोगों से बात की, उनके चेहरों पर चिंता और तनाव की जो लकीरें दिख रही हैं वो इस त्रासदी की कहानी को बयां करें। श्वेता सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
5: तो लिस्ट बार बार नया लगता है,
6: आ रहा है
5: अभी,
6: तो
5: लिस्ट में आ गया नाम कि नहीं?
6: नाम नहीं, पता नहीं, कहीं नहीं।
5: कैसे घूम रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा होगा।
6: नहीं, कुछ नहीं पता है कैसे नाम नहीं आ रहा है।
7: बाढ़ आया था उससे कॉन्टेक्ट भी लिए, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है।
5: आपके एक दोस्त
7: है? नहीं, दो दोस्त है।
5: दो दोस्त है।
7: वो गाड़ी लेके रोस्ट हो रहे थे चाइना बॉर्डर, अभी तक नहीं कॉन्टेक्ट भी नहीं।
5: और नाम भी नहीं?
7: हाँ, नाम भी नहीं। अभी रेस्क्यू हो रहा है, थोड़ी देर में पता चलेगा।
5: उम्मीद है आपको। ये जिस जगह पर हम हैं ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है। आप यहाँ पर देखिए जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो उन सबको यहाँ पर, दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है जो एक दो की संख्या में ही है, और बहुत घंटे बीत गए हैं एक भी नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुंचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी जो नेपाल के सेना के जवान है उन सबको जवाब देना है, उन सबको संख्या बोली लिखनी है, जोड़ती जानी है। एक भी संख्या में इजाफा बहुत बड़ा होता है इनके लिए, और यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशन हैं उनके लिए भी बहुत सामग्री भी लाई जा रही है, क्योंकि ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित हैं, जहां पर लोग विस्थापित हुए हैं जहां से, और जहां पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है। अलग अलग एरिया से आकर लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, सबके हाथों में आप हेलमेट देखेंगे। आपका कोई मिसिंग है?
8: हम लोग तो काठमांडू से आए इधर रेस्क्यू करने के लिए।
5: रेस्क्यू में?
8: हम लोग 10 गाड़ी तो रेस्क्यू के लिए ला दिया इधर आ गया है, 10 गाड़ी हम लोग लेके आए खुद।
5: अच्छा,
8: मुस्लिम समाज से हम लोग खुद लेके आए हैं,
5: हेल्प कर रहे हैं। सीधा ये रेस्क्यू होकर जो लोग आए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और सब आगे अब बढ़ रहे हैं। आप पहनावों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग ये हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो बूट्स और वो औजार और वो यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। उन्हें सीधा यहाँ पर लाकर यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, जो लोग अपनों को तलाश रहे हैं, साथ ही जो लोग रेस्क्यू होकर लाए जा रहे हैं उन सबको यहाँ पर, और भी लोगों को आप देखिए आगे वहाँ पर, वो जितना सामान हाथ में, कुछ उसमें टूरिस्ट भी लग रहे हैं जो

0: और कुछ ये जो टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं आगे बैग्स के साथ वो आगे जाते हुए, और जो बच गया है, जो मिल गया है, वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत इस समय समझ रहा है। कहाँ कहाँ पर से आए हैं आप लोग?
1: यहीं
0: रहते हैं। 26 तारीख के बाद नहीं मिल पाए हैं।
1: अभी उधर मिसिंग है 46 लोग, फंस रहे हैं अभी, तो रेस्क्यू हो रहे थे, अभी बंद हो गए, फिर से बाढ़ आ गई।
0: आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है,
1: आपको तो हमको पता भी नहीं,
0: सोच ही नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है उसके दिन भैया वापस आ जाए, बस मिल जाए जानकारी।
2: और विटूर से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष, लगातार हमने विटूर की तस्वीरें दिखाई, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाया जा रहा है, लोग कैसे अपने परिजनों को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको उनकी खोज के लिए वहां पहुंच रहे हैं। किस तरीके का अभी हालात है, खासतौर पर क्योंकि जलस्तर बढ़ने के बाद ये कहा जा रहा था कि रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया, अभी ताजा हालात कैसे हैं?
3: रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आप में बहुत मुश्किल है। देखिए, सबसे पहले तो सर्च ऑपरेशंस के लिए उन्होंने आर्मी उतारी है, पुलिस उतारी है, एपीएफ के जवान उतारे हैं, स्काउट्स को उतारा है। सर्च ऑपरेशन करने के बाद जहां जहां आपको सिग्नल मिले हैं, जहां जहां से फोन कॉल या डिस्ट्रेस कॉल आई हैं, वहां आप सर्च कर रहे हैं, उनको एयरलिफ्ट कर रहे हैं। उसके अलावा फ्लड के इलाके में जो लोग सुरक्षित पहुंच गए, किसी बिल्डिंग पर फंसे हैं या पहाड़ी इलाकों के वैली के हिस्से में, उनको इवैक। अब कहीं पर इन इलाकों में भी हेलीपैड नहीं है, लैंडिंग की जगह ही तैयार नहीं हो रही, क्योंकि जो मलबा है बहुत लूज है, चॉपर जाएगा तो बैठ जाएगा, तो उनको विंच करके, आप समझते हैं जो टेक्नोलॉजी होती है हेलीकॉप्टर से, उनको ऐसे विंचिंग अप करके ऊपर उठाना, लेकर के आना, तो ऐसे में आप 2 से 3-4 लेकर आते हैं। और इसीलिए अगर आप देखें कि दिन भर में 80 से 90 सॉर्टी होती है, तो 300 या 400 लोग अधिकतम उसमें से निकाले जा पा रहे हैं। दूसरा, जो बड़े इलाके हैं जहां उन्हें सुरक्षित लाया गया, उनको इवैक करके, फिर कई लोग घायल हैं, चोटिल हैं, उनका इलाज कराना, ये है। सबसे मुश्किल क्या है, 14 से 15 हेलीकॉप्टर और जो ट्रेन है जहां मैं हूं इस समय, ये जो एयरबेस है, ये 50 किलोमीटर लंबा ट्रेन है। इस 50 किलोमीटर लंबे ट्रेन में कुल जो जगह है हादसे की, वो 6 से 7 हैं। तो बाजार हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, बैराज हैं, हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट, और उसके बाद रूसवा जो अपने आप में जो तबाही का मंजर है, उन सब जगहों पर चॉपर को सस्पेंड करके रखना, वहां हॉवर करना, वहां से लिफ्ट करना, एक एक को लेके आना, फिर साथ में एडिशनल फोर्स। अभी हमें जो जानकारी दी गई कि अकेले नदी के किनारे का जो इलाका है, वहां 1200 कर्मियों को सेना ने लगाया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि वो सर्च कर सकें। अभी कोशिश ये है कि जहां से डिस्ट्रेस कॉल है, हर एक जिंदा व्यक्ति को निकाला जा सके, क्योंकि रेस अगेंस्ट टाइम में बहुत कम संभावना है कि अगर मलबे में कोई दबा है वो जीवित हो। लेकिन कई सारे घर हमने ऐसे देखे हैं जहां पर वेंटिलेशन की जगह बच गई है, पहली मंजिल दूसरी मंजिल तक मलबा भरा है, तो ये कोशिश करना कि वो निकल जाएं। इसी तरह आपने जो टनल प्रोजेक्ट देखा, हाइड्रो,
2: बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, देखिए सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना ही अपने आप में चैलेंज होता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हेप्टर्स को हेलीकॉप्टर्स की मदद से इस पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन को चलाना, रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाना एक बड़े चुनौती के, एक बड़े युद्ध के तौर पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लेकिन हमारी सहयोगी श्वेता सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस समय के वहां के इस त्रासदी के बाद या इस बड़े तबाही के बाद वहां का मंजर क्या, क्या रिपोर्ट है। ये पूरी खबर, ये पूरी महाकवरेज आप देखते रहिए आज तक पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
7: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
8: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ ओले ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
5: अभी तो चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: मिल गया।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
1: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवा के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आई प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाने थे वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुआ, त्रिशुली, नुवाकुंड तक की ज्योग्राफी बदल दी है। सबसे पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर बने इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को देखिए। जब यहाँ पानी आया तो इस चेक पॉइंट पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन भाग कर गए कहाँ? अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान तक नहीं है। रसुआ, थाडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाठ दोगुने से अधिक दिख रहा है।
3: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा खुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
2: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गया, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नेपाल में फिर जल विस्फोट की वार्निंग, एक और उफनती झील फटी। त्रिशूली और भोटेकोशी नदी पर 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब, खाली कराया जा सकता है पूरा इलाका। चीन ने तिब्बत में रोका ऑपरेशन। नेपाल त्रासदी में फिर बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 489 से ज्यादा लोगों की गई जान, 288 भारतीय समेत करीब 900 विदेशी नागरिक लापता। लगातार जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, भारत से पहुंची मदद की खेप। गुरुग्राम जलभराव की घटना पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, जापान की कंपनी को दिया सर्वे का काम, यमुना तक पानी लाने का होगा इंतजाम, दिल्ली के साथ भी मिलकर बनेगा प्लान। घर में घुसकर मुस्कान का मर्डर करने वाले जिम ट्रेनर इमरान को दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद दबोचा, दोनों पैरों में लगी गोली। लड़की को मारने के बाद से उसकी थी तलाश। देश भर में रक्षाबंधन की धूम, बच्चियों से राखी बंधवाकर पीएम मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद, सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने भी बंधवाया रक्षा सूत्र। प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने पोस्ट की तस्वीर।
1: लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था।
2: बेतरा वेदी करके कोई जगह है, वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ उधर से बाढ़ आ रही है कि आपने अपने जान बचा लो। कोई बातचीत नहीं हुई, उनके परिवार जो गए वो तो गए और जो घर में हैं वो भी पूरे ढूंढने में निकले हैं, तो घर पूरा तितर बितर हुआ है।
3: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। कल लास्ट बात हुई थी।
4: श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। मैं नेपाल में उस जिले में इस समय मौजूद हूं जो सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है नेपाल की जो बाढ़ थी, और अब जब अलर्ट दिया जा रहा है नेपाल की सरकार की तरफ से, तो यहां पर जितने भी रिहायशी इलाके जो लो लाइंग है उन सबसे लोगों को हटाया जा रहा है। हम सब भी थोड़ा सा पीछे हटकर एक ऊंचाई से नीचे जो नदी का रास्ता है, त्रिशूली नदी का रास्ता है, उस तरफ हर कोई संशय के साथ देख रहा है, न जाने कब पानी का वो बहाव आ जाए। तैयारियां इस बार पूरी है इस हिसाब से कि कोई नुकसान न हो, क्योंकि 26 अगस्त को जब यहां पर सैलाब आया तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, जो पीछे छूटा उसे दबा दिया। न जाने कितने लोग लापता है और उसमें भारतीयों की भी बड़ी संख्या है। अलग अलग राज्यों में लोग नेपाल की हर खबर और नेपाल से आ रही हर सूचना की तरफ ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि अपनों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा।
5: मोबाइल में अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें देखती, ऊपर वाले से दुआएं मांगती, ये दीक्षा चौरसिया हैं, जिनके परिजन नेपाल की त्रासदी के बाद से लापता हैं।
1: वो लोग नेपाल में नुआकोट डिस्ट्रिक्ट त्रिशूली बाजार में रहते थे, सुरक्षित हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ बचा नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि सुरक्षित हैं कि नहीं है।
5: नेपाल के त्रिशूली में जब आपदा आई तो लोगों को भागने का अवसर तक नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, सैलाब इतने आवेग से आया, चौरसिया परिवार लापता हो गया।
6: अभी कोई कांटेक्ट होता है?
1: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा, क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
5: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली है। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं कि गुरुवार की सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब खत्म कर दिया। दीक्षा बताती है कि 26 अगस्त को बड़े पापा अशोक चौरसिया ने सुबह 9 बजे फोन किया। बात करते करते फोन कट गया और फिर दोबारा कॉल कनेक्ट नहीं हुई।
1: कल सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
5: हालांकि बाद में पता चला कि दीक्षा के ताऊ जैसे तैसे बच गए, लेकिन 54 साल की उनकी ताई और उसके 18 साल के भाई का पता नहीं चल सका। नेपाल में कुदरत के कहर ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग अब भी लापता हैं। इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बंद है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
5: नेपाल त्रासदी ने कई परिवारों को कभी खत्म न होने वाले दर्द दिए हैं। इस आपदा में कई परिवार लापता हो गए। भोपाल का खनाल परिवार तीर्थाटन के लिए नेपाल गया था। इन लोगों ने एक निजी बस किराए पर ली थी जिसमें 29 लोग सवार थे और ये सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। 26 अगस्त की सुबह 6 बजे सभी 29 लोग बस में सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बेतरा वेदी के पास एक ढाबे में खाने के लिए रुके, तभी तबाही ने दस्तक दी।
2: मेरे जेठ जेठानी और देवर देवरानी गोसाईकुंड करके एक तीर्थ करने जाते हैं, वहाँ पे गए थे और एक बस करके गए थे, उसमें 29 लोग थे। 29 लोग मेरे सब अपने लोग हैं, परिचय वाले सब हैं, बस ये है कि थोड़ा रिश्तेदार थोड़ा पास के या दूर के ऐसा करके हैं। 29 लोग सब परिचय के थे। वो 6:30 बजे घर से निकले थे, कोई बातचीत नहीं हुई। उनके परिवार जो गए वो तो गए और जो घर में हैं वो भी पूरे ढूंढने में निकले हैं, तो घर पूरा तितर बितर हुआ है। नेपाल की हालत बहुत खराब हो रही है, अब हमारे तो पूरे रिश्तेदारी पूरा गाँव ही खाली हो गई है।
5: भोपाल का खनाल परिवार और उसके रिश्तेदार अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके लोग सुरक्षित हों। समय कठिन है, हर पल नेपाल से आने वाली खबरें चिंताजनक हैं। रेस्क्यू टीमों को मलबे से लाशें मिल रही हैं, लेकिन जिंदगी की तलाश जारी है। शायद कहीं कोई चमत्कार हो जाए, कोई जिंदा मिल जाए। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: कि आपको बता दें कि इस तबाही के अंदर नेपाल में मृतकों की तादाद बढ़ गई है, अब ये संख्या 538 पहुंच चुकी है। बता दें आपको कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल में मृतकों की तादाद बढ़कर अब 538 तक पहुंच चुकी है। करीबन 393 शवों को अब तक पहचाना नहीं जा चुका, उनकी पहचान उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुका नेपाल में, लेकिन अब मृतकों की संख्या बढ़ गई है, इसका आंकड़ा बढ़ गया और करीबन 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं।
7: दरअसल जो यात्री हैं, जो भारतीय हैं, जो ज्यादातर लापता हैं, इस समय नहीं मिल रहे हैं, वो सब कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे और वहां से फिर उनका कोई भी निशान, कोई भी कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है। ये जहां पर ये घटना हुई है जिसकी वजह से पानी का वो पूरा बवंडर नीचे की तरफ बहा है, ये नेपाल तिब्बत की सीमा पर उसी क्षेत्र में, तिब्बत के उस इलाके में आता है जो कैलाश मानसरोवर का क्षेत्र है, और इसीलिए बड़ी संख्या में तीर्थयात्री वहां पर मौजूद थे।
8: नेपाल त्रासदी की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इसमें कोई बचा नहीं होगा। पानी का प्रचंड प्रहार जिधर से निकला सब कुछ समतल करके निकल गया। आपदा की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों। मन आशंकाओं से भरा है, तस्वीरें देखकर लोग सहमे हुए हैं कि इस त्रासदी से भगवान ही बचाएं, इंसान तो इसमें करे भी तो क्या करे। दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे, नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सोमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सोमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा है।
3: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
8: सोमार मंडल 16 अगस्त को सिलीगुड़ी से कैलाश मानसरोवर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तबीयत खराब हुई तो वापस लौटना पड़ा और इसी दौरान वो नेपाल त्रासदी में फंस गए। अब परिजनों का बुरा हाल है, घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि सोमार मंडल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।
3: यहाँ से 16 तारीख को निकला था काठमांडू के लिए, 17 तारीख को पहुंच गया था, वहाँ से कैलाश यात्रा के लिए निकल गए थे, उसके बाद तो हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे।
8: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद कुछ पता नहीं चल रहा। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंकाएं भी आती हैं, लेकिन आस फिर भी है शायद वो सुरक्षित हो।
9: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका छेले था, नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था
10: सुबह में
9: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
8: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों के साथ नेपाल गई थी।
11: वो अभी तक नहीं दिया है, हम इसको फोन कर रहे थे, वो लोग 3-4 घंटे और लगेगा, उसके बाद आपको खबर मिलेगा।
8: हैदराबाद की कानी बल्ला सुहासनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है, नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासनी भी लापता है।
12: वो परसों संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूसडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहां से कनेक्शन कट हुआ।
8: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। जिनके अपने अभी तक लापता हैं वो भारतीय परिवार घबराए हुए हैं। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता है। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
4: न केवल हिंदुस्तान से गए हुए भारतीय बल्कि जो एनआरआई थे उनमें भी कई जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहुंचते हैं, इन्हीं में से एक पटेल परिवार जिसका कोई पता नहीं लग पा रहा है।

0: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आए और नेपाल घूमने चले गए थे। नेपाल के जल प्रलय में गुजरात के विमल पटेल भी लापता हैं। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जब आपदा आई तो विमल पटेल भी अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उस तबाही के बाद विमल और उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला।
1: जो लापता हुए वो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, उसका नाम है विमल पटेल और उसकी वाइफ का नाम है जयमीना बेन पटेल। वो नेपाल गए हुए थे, वहां से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका। मानसरोवर जाने के लिए इमिग्रेशन के लिए खड़े हुए थे,
2: लेकिन
1: वो कल सुबह गए थे मानसरोवर के लिए, लेकिन इमिग्रेशन में जब गए उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट एजेंट से भी नहीं हुआ और हमारे से भी नहीं हुआ।
0: अब परिवार में मातम है, परिजन परेशान है, खोजबीन के लिए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करते हैं लेकिन कोई खबर नहीं मिल रही। मासूम बच्चों को पता भी नहीं है कि उसके माता पिता के साथ नेपाल में क्या हुआ।
1: मालूम है वहाँ पे जो नेपाल के टूरिज्म है उसके नमस्ते नेपाल, उसके थ्रू वो नेपाल में घूमने गए थे, उसके बाद वहाँ से वो मानसरोवर के लिए जाने वाले थे। वो लीप होलीडे है उसमें मानसरोवर जाने के लिए जाने वाले थे। उसका लड़का है वो हमारे पास है, लेकिन अभी तक हमने उसको कुछ बताया नहीं है कि उसके माँ बाप ऐसे है ऐसे, कुछ अभी तक उसको कुछ मालूम ही नहीं है।
0: पटेल परिवार के अलावा गुजरात के तीन और लोग भी नेपाल में लापता हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा। सूरत के आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में अफसर ने बताया कि उनमें से कुछ लोग अमेरिका से आए थे।
3: स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार तीन यात्री मिसिंग है जो सूरत के बताए जाते, और जो हमें प्राप्त माहिती के अनुसार उसमें से दो यूएसए के निवासी है, एक मुंबई के निवासी है। उनके किसी पहचान वाले गीता बेन ने ये सूचना दी है, उसके अनुसार ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हमें ये सूचना मिली है। जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों यात्री पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है।
0: सूरत के इस आपदा कंट्रोल रूम में लगातार लोग फोन कर रहे हैं, अपनों के बारे में जानकारियां मांग रहे हैं, लेकिन आपदा कंट्रोल रूम भी वही जानकारी दे पाता है जो उनके पास मौजूद रहती है। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने के लिए चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है, लेकिन चीन का वो चेक पोस्ट भी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। वहाँ जो लोग चेकिंग के लिए आए थे उनकी कोई खोज खबर नहीं है आज तक। ब्यूरो,
4: ये पूरा हिस्सा जहां से होते हुए त्रिशूली नदी अपने तेज बहाव के साथ आगे बढ़ी है, मेरे पीछे नदी का बहाव है, हम थोड़ा आगे आकर आपसे कैमरे के जरिए बात कर रहे हैं क्योंकि सिग्नल उस एरिया में बिल्कुल नहीं, और दूर संचार को वापस बहाल करने की कोशिश ही इस समय यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। लेकिन ये जो नदी का बहाव अचानक बढ़ा, ये थोड़ी सी ऊंचाई की जगह है, लेकिन अभी हम कालीघाट बाजार से होकर आए हैं। त्रिशूली बाजार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, कालीघाट बाजार बिल्कुल गायब हो चुका है, मंदिर उसमें सिर्फ ऊपर का शिखर दिख रहा है, घर उसमें सिर्फ शायद ऊपर की कोई छत का हिस्सा दिख रहा होगा, बाजार पूरा का पूरा जमींदोज हो गया है। यानी कुल मिलाकर समझिए कि पूरे उस हिस्से का भूगोल ही बदल चुका है।
5: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आई प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाने थे वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर रसुवा त्रिशूली नुवाकोट तक की ज्योग्राफी बदल दी है। सबसे पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर बने इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को देखिए। जब यहाँ पानी आया तो इस चेक पॉइंट पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन भाग कर गए कहाँ? अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान तक नहीं है। रसुआ, थाडिंग, नुआकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाट दोगुने से अधिक दिख रहा है।
2: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं। तो आप देखिए, सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, और इस तरफ सारे रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंचा है। बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
5: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गया, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
6: मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
4: लगातार खबरों का सिलसिला आज तक पर जारी है, नेपाल से, ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
10: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
11: सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: सो सॉरी।

0: कल जो घटना हुई उसको लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार वो क्राश फ्लड क्यों शुरू हुआ। आप लोग क्योंकि उस पूरे रीजन पे नजर बनाए रखते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, आपके संस्थान के हिसाब से इनिशियल एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब भी कोई डिजास्टर होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में एसेस करना कि क्या ट्रिगर्स रहे, क्या कंडीशन है। जो अभी सर्टेन चीजें हैं जो कि कंफर्म हम कह सकते हैं, वो ये है कि ये एक ग्लेशियर कोलैप्स है, और इसको हम समझ सकते हैं कि एक आइस एंड रॉक मिक्स्ड मिक्सचर का एक एवलॉन्च हुआ है उस वैली में। अब ट्रिगर्स की बात करते हैं, तो ट्रिगर हो सकता है कि जो उससे जस्ट पहले बताया जा रहा है कि एक अर्थक्वेक आया है 3.2 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का, सो हो सकता है कि उसने भी इसमें कुछ ट्रिगर किया हो उसको। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये डिजास्टर हुआ है और वो जो मास जो ऊपर से आके नीचे वैली बॉटम में गिरा है, उसने एक लोकली स्केल पर अर्थक्वेक वेव जनरेट की हो। तो बहरहाल बात यह है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। सो वो उस टिपिंग पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर कुछ भी छोटा मोटा ट्रिगर उनको मिलता हैवी रेनफॉल या फिर एक अर्थक्वेक, वो भी काफी होता है उनको एक डिजास्टर स्टार्ट करने के लिए।
0: डॉक्टर फारूक, क्योंकि आप उस पूरे एरिया को खुद स्टडी कर रहे हो और आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी इस बात पे है कि कैसे वहाँ आइस मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर पे किस तरह का खतरा आ रहा है, तो क्या इससे पहले भी कोई आप लोगों की रीडिंग थी, स्टडी थी, जिससे इस तरह के अलार्मिंग ट्रेंड्स दिख रहे थे, या आपने अलर्ट किया था? क्योंकि ये मल्टी स्टेट एजेंसी है जिसके साथ आप इस वक्त जुड़े हुए हैं आईसी मोड में।
1: देखिए, जो तो हिमालय है वो लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज है, तो अब इसको ऑल टुगेदर मॉनिटर करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात तो तय है कि जो पिछले हम एक दशक में देखते हैं खास तौर पे, या फिर कहें कि केदारनाथ डिजास्टर जब हुआ था उस तरह से अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इस तरह के जो त्रासदी हो रही है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही है अभी, और उसका जो एक मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं वो बड़े हैं पिछले कुछ 10 सालों में, और ऐसी पूरी संभावना है कि ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल त्रासदी में बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 547 लोगों की गई जान, करीब 1000 लोग लापता, भारत से पहुंची मदद की खेप। नेपाल में फिर जल विस्फोट की आशंका, तिब्बत में एक कुफंती झील से रिसाव शुरू, त्रिशूली और भोटेकोशिक में नदी 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब, खाली कराया गया पूरा इलाका। ममता बैनर्जी ने फिर बोला मोदी सरकार पर धावा, एसआईआर से चुनाव में धांधली कर बंगाल चुनाव जीतने का लगाया आरोप, कहा जहां जाएगी बीजेपी वहां आएगी तबाही। गुरुग्राम जल भराव की घटना पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, जापान की कंपनी को दिए गए सर्वे का काम, यमुना तक पानी लाने का होगा इंतजाम, दिल्ली के साथ भी मिलकर करेंगे प्लान। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक, बच्चियों से राखी बंधवाकर पीएम मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद, सीएम योगी और रक्षा मंत्री ने भी बंधवाया रक्षा सूत्र, प्रियंका गांधी की तस्वीरों के साथ राहुल गांधी ने रक्षाबंधन की पोस्ट की सार्वजनिक।

0: नमस्कार, 4 बजे की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और इस महाविनाशकारी पले को हम आपको बताएंगे, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, तमाम बड़ी खबरें। लेकिन नेपाल में आई जलप्रलय का पर हमारी ये महाकवरेज जारी रहेगी। पिछले 2 दिनों से नेपाल के तमाम इलाकों में हजारों लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। इन सब के बीच सरकारी और निजी स्तर पर लोगों को बचाने का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुदरत ने जिस फुर्सत से इस देश की खूबसूरती को तराशा था, उसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ खींचे चले आते थे। लेकिन आज यहाँ की तस्वीरें पूरी तरीके से भयानक हो गई और एक खौफजदा भविष्य को रेखांकित भी कर रहे हैं। इस देश में एक बार फिर से त्रासदी का शिकार होकर तबाही का तांडव देखा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये तांडव कुदरत का प्रकोप है या फिर विकास के नाम पर संवेदनशील इलाकों में हो रहे निर्माण से विनाशकारी नींव रखी जा रही है। जाहिर है, चीन जिस तरीके से हिमालय के संवेदनशील इलाकों में तेजी से बांध और रेलवे ट्रैक बना रहा है, सैकड़ों गांव बसा रहा है, उसे वाटर बम जैसे खतरे पैदा हो गए हैं। इस शो में इस बारे में हम तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार कैसे भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के कई शहर चीन के इस वाटर बम की जद में आ चुके हैं। ये तमाम रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल में मृतकों की तादाद बढ़कर अब 547 हो गई है। आपको बता दें कि लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और अभी करीबन 393 शवों की शिनाख्त आइडेंटिफिकेशन होनी बाकी है। 1000 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अब मौत का आंकड़ा 547 तक पहुंच चुका है।
1: चीन बना रहा वाटर बम, हर दिन घुट रहा पर्यावरण का दम, तबाही को न्योता विकास का ये कैसा मौका। बड़े बड़े बांध, कई कई किलोमीटर लंबी सड़कें, हजारों फीट ऊंचाई पर रेल लाइनें और सैकड़ों गांवों की बसावट। चीन ये सब कर रहा है हिमालय के उन इलाकों में जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। क्या विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया जा रहा है? नेपाल हादसे ने एक बार फिर ये सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ये सवाल सिर्फ नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी उतना ही संवेदनशील है, जिसकी सरहदों के बेहद पास चीन कई सालों से निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम देता रहा है। BRI यानी द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की वो महत्वाकांक्षी परियोजना है जो करीब 13 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मद्देनजर लॉन्च की गई थी। इसी के तहत चीन ट्रांस हिमालयन नेटवर्क के जरिए तिब्बत से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाना चाहता है। लेकिन इस बाढ़ के बाद इस प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये रेल लाइन दुनिया के सबसे संवेदनशील और भूकंप संभावित इलाके से गुजरेगी। जानकार काफी वक्त से ये आशंका जता रहे हैं कि भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान ये रेल नेटवर्क कभी भी ध्वस्त हो सकता है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए सुरंगों और पटरियों के बनाने से हिमालय का संवेदनशील इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो जाएगा और हर साल बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। चीन तिब्बत में बहने वाली नदियों पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम यारलुंग सांगपो बना रहा है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी से लगे इलाकों में खतरा बढ़ रहा है। ये भारत और नेपाल दोनों के लिए एक वाटर बम की तरह है। इसके अलावा तिब्बत के बेदोग में चीन के सुपर डैम प्रोजेक्ट को भी वाटर बम कहा जा रहा है। करीब 1 साल से इसका निर्माण चल रहा है और करीब 150 अरब डॉलर की लागत से अगले 8 सालों में इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत के 2 पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गिरोंग पोर्ट और चीन नेपाल हाईवे के बनने से हो रही लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ से भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत भूटान और नेपाल सीमाओं के पास चीन लगातार च्याओकांग यानी समृद्ध गांव बसा रहा है। इनकी तादाद 600 से ज्यादा हो चुकी है। एक बड़ी दिक्कत अचानक पानी छोड़ने की भी है और कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन बिना पूर्व चेतावनी के अपने बांधों से पानी छोड़ देता है, जिससे नेपाल के तराई, भारत के असम, अरुणाचल और बिहार के इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। नेपाल से भी अब ये मांग उठ रही है कि पहाड़ों की संवेदनशीलता और बार बार हो रहे हादसों को देखते हुए बेहतर तालमेल किया जाना बेहद जरूरी है।
2: दिस टाइम वी गॉट वेरी लेट दैट इन्फॉर्मेशन, सो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इज अ बिग चैलेंज। And but this has been realized the very first day, the day before yesterday. Yesterday and today they have been sharing more information. That's why we know what's happened, you know, upstream there. Mm-hmm. But it needs to be strengthened. And it's a, not just only a, like two countries, it's a tri-country. Nepal, India and China should work together to get, you know, because the
1: चीन सीमावर्ती इलाकों और पड़ोसी देशों में जिस तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है वो किसी वाटर बम से कम नहीं है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि रेड क्रॉस के आकलन के मुताबिक नेपाल में कम से कम 93,000 से ज्यादा लोग इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। रेड क्रॉस का कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है और उन्हें डर है कि बाढ़ की दूसरी लहर भी कई खतरों के साथ आ सकती है। देखिए, लगातार रेड क्रॉस की तरफ से यह आकलन किया जा रहा है कि यह आंकड़ा करीबन 93,000 से ज्यादा लोगों इससे प्रभावित हो सकते हैं और अभी दूसरी लहर इस खतरे की आनी बाकी है।

0: और इस माह कवरेज में हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर नरेश कुमार वैज्ञानिक है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल देहरादून से। इसके अलावा डॉक्टर अंकित अग्रवाल एसोसिएट प्रोफेसर है हाइड्रोलॉजी विभाग के IIT रुड़की से। डॉक्टर नरेश कुमार, ये क्या लगातार हम जो चीजें देख रहे हैं, क्या ये फंडामेंटल चेंजेस हैं खासतौर पर हिमालयन प्लेट्स के अंदर, हिमालय के अंदर, या फिर इस पूरे इवेंट को एक आइसोलेटेड एक अलग से एक इवेंट के तौर पर या फिर एक बड़ी त्रासदी के तौर पर देखा जाएगा?
1: नमस्कार, मैं नरेश बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो एक ये ही घटना नहीं है। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें, पहले सिक्किम में हुआ और उत्तराखंड में भी आपका ऋषिगंगा में हुआ, केदारनाथ में हुआ, तो ये घटनाएं तो बढ़ रही हैं और एक क्लाइमेट चेंज का असर तो है इसमें
0: जी।
1: उसी से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और वो है, तो इसको एक अकेले तो नहीं देखा जा सकता है। पूरे हिमालय में एक इफेक्ट देख सकते हैं जो पूरे हिमालय में हो रहा है, क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, तो एक ग्लेशियर लेक का एक ये डिजास्टर था जो अभी 26 अगस्त को देखा गया, और इस तरह की ऋषिगंगा में एक 2021 में उत्तराखंड में हो चुका है। लेकिन ये त्रासदी बहुत बड़ी है, और अगर वॉल्यूम हम देखें, जितना बड़ा ग्लेशियर डिजास्टर हुआ है, लैंडस्लाइड हुई है, इसमें अगर हम सेस्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तकरीबन 5.1-5.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक के बराबर एक एनर्जी रिलीज हुई। तो एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी त्रासदी है और सबसे बड़ा ये एपिसोड है इन हिमालय।
0: बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अंकित अग्रवाल भी जुड़े। डॉक्टर अंकित अग्रवाल, जिस तरीके से नरेश सर भी बता रहे थे कि देखिए ये चीजें बहुत मैसिव स्केल पर फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इस पूरी त्रासदी के बाद अभी लोग उभरे भी नहीं थे, लगातार लोगों के शवों की तलाश जारी है, लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन एक और झील का, एक और बड़े पानी के स्रोत का आकलन कहा जा रहा है कि वो भी तैयार हो चुका है और लगातार जिस तरीके से उसमें रिसाव हो रहा है, तो एक और बड़ी त्रासदी, एक और बड़ा इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ सकता है।
2: नमस्कार सभी श्रोताओं को, अभिनंदन। आप सही बोल रहे हैं, ये एक डेफिनेटली फंडामेंटल चेंजेस देख रहे हैं। जब एक एक इस तरह की त्रासदी होती है या इस तरह का एक इवेंट आप मैसिव स्केल इवेंट देखते हैं, तो ये इवेंट्स अपने पीछे कुछ सिग्नेचर छोड़ देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे लल्लॉफ या फिर लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट वर्क, ये एक तरह से आउटबर्स्ट नहीं है, लेकिन जो कि मलबा पीछे छूट गया था, जो रिसाव पानी भरा हुआ है, यही सेम चीज, ऐसा नहीं है कि इसी पर्टिकुलर इवेंट में देखने को मिल रही है। यही चीज हमने चमोली में, जो चमोली त्रासदी हुई थी, उसमें भी हमने ये चीज देखी थी। चमोली में जब एक हिमचट्टान स्खलन हुआ और वो जब नदी में पानी से मिला और एक तरह से मलबा बना, तो उसने भी एक पीछे टेम्परेरी, जिसे हम बोलते हैं, अवरोध क्रिएट किया था या लेक बना दी थी, और उस लेक के टूटने का, रिसाव होने का डर बना हुआ था। तो ये इस मैसिव स्केल के जब आपदा आती है, त्रासदी आती है, तो उसका एक सिग्नेचर माना जाता है, जिसमें ये खतरा बना रहता है जब तक कि उसे पूरी तरीके से हम अपनी इंजीनियरिंग टेक्निक से, अपनी साइंस से उसे खत्म ना कर दें। तो ये खतरा अभी भी बना हुआ है, जो कि आज हमें देखने को मिला, 28 अगस्त को देखने को मिला, और हो सकता है ये अभी भी वहां एक तरह से खतरे के रूप में मंडरा रहा हो, जिसकी पुष्टि करना अपनी बाकी है।
0: बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, लेकिन अभी आपको हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं कि कैसे खतरा अभी भी बना हुआ है और तिब्बत की तरफ से आने वाली पानी की एक और फिर से लगातार एक नई लहर या फिर एक नया डर मंडराने लगा है।
3: नेपाल में आपदा का क्या दूसरा चरण आने वाला, ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एक बार फिर तिब्बत के इलाके में जिस तरह से जो जलाशय बन रहा था उसका बांध टूटा है, उसके बाद भटकोशी नदी का स्तर बढ़ने लगा है। सरकार और प्रशासन ने लोगों को नदियों के किनारे से दूर जाने को कहा है। अब नुआकोट में इसी के साथ असर ये हुआ है कि ये त्रिशूली नदी है और ये ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे पहाड़ों की ओर से, तो आगे जो रुसवा और आगे फिर तिब्बत का इलाका शुरू होता है, तो ऐसा हो कि भटकोशी के साथ पानी अगर यहां पर आता है तो यहां पर भी पानी का स्तर बढ़ सकता है, और ऐसे में चेतावनी ये दी गई रही है कि लोग इन किनारों से हट जाएं, और इसलिए नुआकोटी के आसे जो ढेंग इलाका है देखिए पूरा सब कुछ खाली करा लिया गया है। यहाँ जो स्काउट के लोग हैं, प्रशासन पुलिस के लोग हैं, वो लोगों से कह रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, और इसलिए ऊपर के जो गांव हैं, ये जो इलाके हैं, इनको भी खाली कराया गया है। साथ ही पीछे जहां पर राहत बचाव कार्य, दरअसल ये जो गांव है इसके आगे सड़क पूरी तरह कट चुकी है, यहां पर जो है सड़क का रिस्टोरेशन का काम चल रहा था, लोगों को मलबे में खोजा भी जा रहा था, लेकिन अब वो सारा ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। हेली ऑपरेशन उन इलाकों में बंद कर दिया है जहां पर सेना को या एपीएफ को या फिर रेस्क्यू फोर्सेस को उतारना पड़ रहा है, क्योंकि अब पानी का स्तर, और इसी के साथ ये वो नदी है त्रिशूली नदी जिसको आप देख रहे हैं, यहां पर भी इसका स्तर पानी का बढ़ सकता है। और अगर ऐसी स्थिति हुई तो चेतावनी ये भी दी गई है कि कहीं ये पिछले यानी वेव टू जो है वो वेव वन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा तीव्रता ला सकता है, अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर तबाही बढ़ सकती है। लेकिन समय रहते प्रशासन ने लोगों को सचेत किया, अलर्ट किया और उन्हें यहां से जाने को कहा।
0: आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी, और इस जल प्रलय ने नेपाल के कई इलाकों का भूगोल ही बदल दिया है। सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि सब कुछ बर्बाद कर देने पर आमदा पानी की रफ्तार ने मजबूती से जमीन पर खड़े मकान, दुकान और दफ्तरों तक के नामो निशान मिटा दिए।
4: पड़ोसी देश नेपाल इस सदी की सबसे बड़ी तबाही से गुजरा है। 26 अगस्त को आई प्रलय ने नेपाल के त्रासदी प्रभावित इलाकों का भूगोल बदल दिया है। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां आशियाने थे वहां पत्थरों का ढेर है। नेपाल के फ्लैश फ्लड ने तिब्बत बॉर्डर से लेकर ग्रसवा, त्रिशूली, नुवाकोट तक की ज्योग्राफी बदल दी है। सबसे पहले तिब्बत नेपाल सीमा पर बने इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट को देखिए। जब यहाँ पानी आया तो इस चेक पॉइंट पर मौजूद लोग भागने लगे, लेकिन भाग कर गए कहाँ? अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान तक नहीं है। रसवा, थाडिंग, नुआकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाठ दोगुने से अधिक दिख रहा है।
3: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा खुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
4: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गया, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
5: मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहाँ पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर
6: राइट एंड दे टोल्ड मी अबाउट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू देम, हाउ द फ्लड्स केम एंड दे वर वेरी थैंकफुल पर्टिकुलरली टू द नेपाल आर्मी व्हिच made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. Right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. Even today I spoke in the morning to the Nepal Foreign Minister. We have given them range of support offers. They are evaluating it. Whatever they feel is appropriate, they will pick up for their needs. I think the main thing is that in one place where there is a hydroelectric project, there could be possibility of people who may be in a tunnel. So we are sending a team to help with the who are experts in tunneling. Also, they need some Bailey bridges. So we are sending bridges. These are, you know, bridges which can be quickly put together along with a team. There may be some medical teams also going out there. And, you know, on other things from our side, if they require NDRF people to go, we will send them. We have given them that option. Two planes of relief supplies have already gone out there. Third plane will be taking off today. So as you can see, this is for us right now. It's our number one priority, how to respond to this situation, how to support the relief efforts in Nepal, how to, to help in the rescue and the return of our people, and also other nationals, Nepalis, other foreigners who are out there. So I'm particularly glad that this group of people really came through in a very extraordinary manner. They were talking to me about it, that they have come back safe and sound. So really it is something, very moving experience. Thank you.
7: So the rescue efforts are still ongoing. How many teams have been deployed on ground?
6: No, these are mostly the rescue efforts are being done by the Nepal

0: भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। वो बता रहे थे कि आज जो नेपाल से भारत पहुंचे हैं सैलानी या फिर जो भारतीय नागरिक हैं उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर संभव मदद के लिए भारत तैयार है। दो एयरक्राफ्ट लगातार रिलीफ मटेरियल के साथ पहुंच चुके हैं और तीसरा आज फिर से नेपाल के लिए रवाना होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि टनलिंग के विशेषज्ञ भी लगातार भारत के मदद करने के लिए तैयार है। और अब से कुछ देर पहले चीन ने अपने इलाके में हुए हिमस्खलन यानी एवलांच की तस्वीरें भी जारी की हैं। यह वीडियो आज सुबह का है जो चीन के ड्रोन कैमरे में कैद हुआ है। 26 अगस्त को ऐसे ही एवलांच हुआ था जिसके बाद सैलाब ने चीन नेपाल सीमा में सब कुछ तबाह कर दिया। इसके अलावा नेपाल के निचले इलाकों में भयानक तबाही भी मचाई। एक बार फिर से चीन के इस ड्रोन कैमरा ने ये तस्वीरें कैद की है जिससे साफ नजर आता है कि एक बड़ा सैलाब लगातार इसमें बह गया। और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर नरेश। इन तस्वीरों को देखकर आप किस तरीके से आकलन कर सकते हैं कि स्थिति अभी कैसी होगी? क्योंकि देखिए लगातार हम जिस तरीके से कह रहे थे एक फंडामेंटल चेंज लगातार हिमालयंस में हम देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरीके के मेजर चेंजेस या फिर मेजर इम्पैक्ट लगातार इस इलाकों में देखे जा सकते हैं?
1: हाँ, एक तो पहले अभी भी एक इसमें आर्टिफिशियल लेक बनी बन गई है तो उसका भी एक प्रभाव देख रहे हैं, और अगर वो आर्टिफिशियल लेक दोबारा से ब्रीच होती है तो उससे भी इफेक्ट हो सकता है। तो उस तरह से अभी तो उसमें खतरा बना हुआ है जब तक उसको क्लियर नहीं किया, क्योंकि इस तरह से देखा है हमने द्राली में भी जब पीछे इसी तरह का एक एपिसोड हुआ था तो वहां भी एक आर्टिफिशियल लेक बन गई थी और उसको क्लियर करना पड़ा था, तब उसके बाद उसमें खतरा टला था। तो खतरा तो अभी भी है, वहां बना हुआ है और फ्यूचर में भी हो सकता है खतरा, क्योंकि ये जो खतरे हैं वो क्लाइमेट चेंज और उस तरह का इफेक्ट देखने को मिले हैं। हम कहीं भी देख लें हिमालय में या कहीं भी, और ये इवेंट तो इस तरह लगती है कि ऑल ओवर ग्लोब हम देखें तो सबसे बड़ी इवेंट है जो ये हुई है नेपाल में। और इसमें जितना भी मलबा आया, जितना वॉल्यूम में उसमें था, वो चीन से आया नेपाल में आया और उसमें जितना भी बहा के ले गया, इट वॉज ए वेरी बिग डिजास्टर।
0: बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर अंकित अग्रवाल भी हैं और लेकिन उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार किस पड़े के बाद या फिर इस पूरी त्रासदी के बाद क्या माहौल बन रहा और क्या अभी खतरा मंडरा रहा है, ये तमाम जानकारी लेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: सेनको से मेरा नाता सालों पुराना है, ये मेरे लिए बस एक ब्रांड नहीं है,
5: ये है एक लेगेसी। मेरी शादी के ये कंगन सेनको से ही लिए थे
6: क्योंकि ऐसी बारीक कारीगरी और कहां,
7: इसीलिए सेनको इंडिया का अमंगस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड एज नॉमिनेटेड बाय द TRA।
8: अब मैं क्या ही बोलूं?
9: परिवार, अटूट भरोसा,

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
1: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
2: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: Squish World.
1: In association with
2: E3 HDMR, ye rishta lamba chalega. Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
3: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
4: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
3: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
5: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
3: हर बात देश के सामने।
6: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
3: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल त्रासदी में बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 547 लोगों की गई जान, करीब 1000 लोग लापता। जयशंकर ने कहा कि भारत से लगातार पहुंच रही है मदद।

अब शुरू त्रिशूली और भोटेश कोशी में नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब, खाली कराया जा रहा है पूरा इलाका। ममता बनर्जी ने फिर बोला मोदी सरकार पर धावा, एसआईआर से चुनाव में धांधली कर बंगाल चुनाव जीतने का जड़ाया आरोप, कहा जहां जाएगी बीजेपी वहां आएगी तबाही। गुरुग्राम जलभराव की घटना पर सीएम नायब सिंह नैन सैनी का बयान, जापान की कंपनी को दिए सर्वे का काम, यमुना तक पानी लाने का होगा इंतजाम। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक, बच्चियों से राखी बंधवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद, अमित शाह ने अहमदाबाद में बंधवाया रक्षा सूत्र, प्रियंका गांधी वाड्रा की तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने पोस्ट की तस्वीर।

0: कंट्रोल है पार्ट टू से। नेपाल में फिर हड़कम
1: है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही विशाल।
0: दूसरी झील में विस्फोट की चेतावनी, अब की बार 5 गुना विनाश का लाभ।
2: नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: चीन से नेपाल तक मचा कोहराम। दुनिया को चेता रहे तबाही के निशान। हिमालय में फिर फूटेगा वाटर बम।
1: यहाँ की सड़क पर की गाड़ियां तो गाड़ियां, कोई पैदल भी यहाँ पर नहीं चल सकता है। किसी भी देश में जब कोई आपदा आती है वहाँ की सेनाएं सबसे पहले जो जमीन पर है वो उतरती हैं। यहाँ पर भी नेपाल में हम देख रहे हैं कि नेपाल के जो सुरक्षा बल है, नेपाल के सैनिक है, वो सब यहाँ उतर रहे हैं और मदद कर रहे हैं आम लोगों की।
0: नेपाल को फिर क्यों डरा रही महातबाही। सबसे बड़ी नॉनस्टॉप कवरेज सिर्फ आज तक पर।
3: नेपाल की महातबाही पर आप देख रहे हैं हमारी नॉनस्टॉप कवरेज आपके साथ। मैं ही सुमित चौधरी, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल त्रासदी को लेकर कि नेपाल से दिल्ली लौटा है भारतीय टूरिस्ट का एक दल। आपको बता दें कि इससे थोड़ी देर पहले भी विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि वो खुद मिलने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे और अब ये तस्वीरें भी सामने आ गई जिसमें विदेश मंत्री अजय शंकर लगातार उन टूरिस्टों से, उन भारतीयों से लगातार मुलाकात करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे। नेपाल आपदा के बाद लौटा पहला भारतीय दल, ये उसकी तस्वीर है जहां पर खुद विदेश मंत्री अजय शंकर उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये भी बताया था कि आखिरकार भारत लगातार नेपाल की किस तरीके से मदद कर रहा है और किस तरीके से आज एक और बड़ा एयरक्राफ्ट नेपाल के लिए रवाना होगा जो राहत सामग्री के साथ नेपाल जाएगा।
4: Two minutes I am going to bids further go to floods.
5: Any special thanks you want to say our government and
4: Andhra Pradesh government and India government? I am safely and minute to minute talking for my family members. Specially thanks to Andhra Pradesh Chief Minister and Lokesh Babu and my constituency MLA Ganta Srinivas Rao.
3: और देखिए ये वो लोग थे जो लगातार वहां से बचकर वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री अजय शंकर ने वहां इन सभी भारतीयों से मुलाकात की। जो पहला जत्था या फिर जो पहला आप कह सकते हैं बैच है भारतीयों का वो वापस लौटा है और उन्होंने क्या कुछ कहा है खासतौर पे नेपाल की मदद को लेकर और किस तरीके से भारत लगातार नेपाल की मदद कर रहा है ये भी आपको सुनाते हैं।
6: नॉट बीन कॉन्टेक्टेड, roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived. They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal Army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were. Right now our effort is on supporting Nepal in the relief, in the rescue of people. So even today I spoke in the morning to the Nepal Foreign Minister. We have given them range of support offers. They are evaluating it, whatever they feel is appropriate they will pick up for their needs. I think the main thing is that in one place where there is a hydroelectric project there could be possibility of people who may be in a tunnel, so we are sending a team to help with the who are experts in tunneling. Also they need some Bailey bridges, so we are sending bridges these are, you know, bridges which can be quickly put together along with a team. There may be some medical teams also going out there. And, you know, on other things from our side, if they require NDRF people to go, we will send them. We have given them that option. Two planes of relief supplies have already gone out there. Third plane will be taking off today. So as you can see, this is for us right now. It's our number one priority, how to respond to this situation, how to support the relief efforts in Nepal, how to to help in the rescue and the return of our people, and also other nationals, Nepalis, for other foreigners who are out there. So I'm particularly glad that this group of people really came through in a very extraordinary manner. They were talking to me about it, that they have come back safe and sound. So really it is...
3: विदेश मंत्री अजय शंकर को आप सुन रहे थे बता रहे थे कि किस तरीके से भारत ना सिर्फ राहत सामग्री के लिए बल्कि टेक्निकली भी और कई चीजों में मदद कर रहा है नेपाल के। और अभी आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल आपदा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ चुका है और अभी यह आंकड़ा 587 तक पहुंच चुका है। आपको बता दें 587 यह आंकड़ा पहुंच चुका है। नेपाल आपदा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह आंकड़ा 587 तक पहुंच चुका है और इसमें हजार से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि अब भी मिसिंग है, लापता है, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और उनके खोजने के लिए लगातार बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इस जल प्रलय में कई लोगों की जान चली गई लेकिन कई लोगों को मौत के मुंह से बचा भी लिया गया है। इसका श्रेय जाता है 24 घंटे सीमित संसाधनों के साथ और मुश्किल हालातों में काम करने वाले रेस्क्यू टीम के लोगों का। आइए आपको इन देवदूतों की मेहनत, इनके साहस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: नेपाल में देवदूत कर रहे सबसे बड़ा काम। जल प्रलय से जिंदगी को बचाने का संग्राम। मलबे और पानी में फंसे लोगों को बचाने का 24 घंटे अभियान। जान पर खेलकर रेस्क्यू करने वालों को दुनिया कर रही सलाम। जल प्रलय से शुरू हुई विनाश लीला ने एक झटके में हजारों लोगों को अपनों से दूर कर दिया। कोई मलबे में फंस गया, कोई पानी में बह गया, कोई पत्थर के नीचे दब गया, तो कोई दलदल से बाहर ही नहीं निकल पाया। पानी की सुनामी ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली, लेकिन जो बच गए उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना भी आसान नहीं था। इस त्रासदी के फौरन बाद पुलिस प्रशासन, नेपाली सेना और स्थानीय लोग अपने अपने स्तर पर बचाव अभियान में लग गए। किसी को आर्मी के हेलीकॉप्टर से मकानों की छतों से बचाया जा रहा है, तो किसी को मलबे से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा ही एक साहसिक अभियान चलाया नेपाली सेना ने। इस अभियान की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। ये है त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल, जिसमें 350 कर्मचारी फंस गए थे। इनमें कई भारतीय भी शामिल थे। कमर से ऊपर तक मलबा और एक कदम भी बढ़ाना मुश्किल। गनीमत थी कि जान बच गई, लेकिन जो जहां था वहीं फंस गया। इन्हें बचाने के लिए नेपाली सेना पहुंची तो एक जोखिम ये था कि बाहर जमा मलबे को पार कर अंदर जाया कैसे जाए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे रेंगते हुए सेना के जवान सुरंग तक पहुंच रहे हैं और एक एक करके वहां फंसे हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी दिक्कत रास्तों की तबाही से आ रही है। सड़कें बह गई हैं, कच्चे रास्ते खतरनाक हो चले हैं, जिससे रेस्क्यू टीमों का लोगों तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है।
1: अभी रास्ता नहीं है, हेली से रहेगा और पैदल जाने के लिए वो रास्ता नहीं है।
2: गाड़ी भी नहीं,
1: ऊपर से जाएगा तो
2: गाड़ी भी नहीं,
1: गाड़ी के लिए रास्ता नहीं है।
2: टनल जो था रसवा का, वो भी
1: सब कुछ गए, कुछ भी बाकी नहीं है इधर का।
2: यहाँ की सबसे बड़ी चैलेंजेस क्या है अभी?
1: इधर के सबसे बड़ी चैलेंजेस तो अभी
2: रास्ता
1: वो सबसे बड़ा वो रास्ता ही है, क्योंकि ऊपर जो चाइना बॉर्डर के लिए जाना के लिए रास्ता है ना, वो नहीं है। मेन रास्ता ही है और दूसरा रास्ता नहीं है, वो पैदल के लिए है, वो गाड़ी के जाने के लिए नहीं है।
0: रेस्क्यू की इन दिक्कतों को देखते हुए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों के साथ साथ निजी कंपनियों के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में लगा दिए गए हैं,
3: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
4: कितने हेलीकॉप्टर?
3: दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 और निजी क्षेत्र प्राइवेट, ये सब चेन्नई हेलीकॉप्टर लग रहे हैं। हम लग रहे हैं और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं।
0: बचाव अभियान में लगी टीमों के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान वक्त का भी है। हर बीतते घंटे के साथ साथ फंसे लोगों की सांसें कम हो रही हैं। उन तक वक्त पर पहुंचना और उन्हें सकुशल निकालने की चुनौती पार करने में नेपाल के देवदूतों ने सब कुछ झोंक दिया है। इसी का नतीजा है कि कई लोग इस भयानक त्रासदी से बच गए हैं।
5: उनका सब अच्छा से सब लोग निकल गए, सुरक्षित है। हम लोग इतना पार्क में फंसे हुए थे, हम लोग का पूरे जी ते डूंगे खोला है ना, तिसुली खोला, धोबी खोला, ते ही हम लोग का घर घर दुकान उकान कुछ भी नहीं। हम लोग का
2: आदमी बच गया,
5: आदमी तो बहुत सुरक्षित। हम लोग इतना थे पार्क में, हमारे पुलिस ताने रसरी तान कर निकाल कर हम लोग का सुरक्षित।
0: खतरा अभी टला नहीं है, इसीलिए लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुँचाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और आज तक की महा कवरेज जारी, और हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए। हमारे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए और हमारे साथ प्रोफेसर अंकित अग्रवाल भी। अंकित अग्रवाल, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए ये कहा जाता है कि हिमालय एक बड़ा सोर्स है, खासतौर पर एक स्रोत है पानी का, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि नेपाल के लिए, भूटान के लिए, कई और देशों के लिए भी। और जिस तरीके से यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं, इससे जो रिवर कोर्स है यानी जो पानी का स्रोत है उसमें भी बदलाव आएगा, और यही कोर्स लगातार बड़ी तबाही का एक कारण भी है, क्योंकि इसके बदलने से तमाम उन रिहायशी इलाकों में पानी जा रहा है या फिर चीजें जा रही हैं जो अब तक हमने नहीं देखा था।
7: यस, आप सही बोल रहे हैं। हिमालय और हिंदू कुश हिमालय इज नोन एज अ वाटर टावर। अपने आप में ये बहुत बहुत बड़ा स्रोत है और एक सीनिक प्लेस भी है, घाटी है हमारी। लेकिन इसी के साथ जो आप बोल रहे हैं कि मूलभूत रूप से आप देख रहे हैं कि फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, बड़ी त्रासदी जो आपदा बड़े लेवल की आ रही है, जो कि नेपाल आपदा एक अभी जीता जागता उदाहरण है, ये दिखाता है कि रिवर अपना कोर्सेस बदल रही हैं, सिस्टम चेंज हो रहे हैं मूलभूत रूप से। अगर आप देखा जाए वाटर सप्लाई, द रेनफॉल इज चेंजिंग, क्लाइमेट इज चेंजिंग, टेम्परेचर इज चेंजिंग, एंड
6: बिल्कुल. और
7: डेफिनेटली
6: अंकित,
7: दिस
6: मुझे लगता है
7: ब्रिंग
6: कि
7: अस
6: ये
7: टू
6: चेंजिंग ऑफ पैटर्न ही मेरे ख्याल से सबसे बड़ा अलर्ट भी है हम सभी के लिए कि अपनी कई चीजों को हमें दुरुस्त करना और इस प्रकृति को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क भी रहना है. चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे दोनों खास मेहमानों का. लेकिन अब आपको बताते हैं कि नेपाल में हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे और लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है. और नेपाल के विटूर से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं.
4: जिस जगह पर हम हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है. आप यहाँ पर देखिए, जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं. तो उन सबको यहाँ पर, दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है, जो एक दो की संख्या में ही है, और बहुत घंटे बीत गए हैं, एक भी नहीं हो पाया है. लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है, सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुंचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है. बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी जो नेपाल के सेना के जवान है उन सबको जवाब देना है, उन सबको संख्या वो लिखनी है, जोड़ती जानी है. एक भी संख्या में इजाफा बहुत बड़ा होता है इनके लिए. और यहाँ पर जो रिलीफ ऑपरेशन है उनके लिए भी बहुत सामग्री भी लाई जा रही है, क्योंकि ये सबसे, ये हब है, ये जहाँ पर पीड़ित हैं, जहाँ पर लोग विस्थापित हुए हैं जहाँ से, और जहाँ पर सबसे बड़ी तलाश चल रही है. अलग अलग एरिया से आकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं. सबके हाथों में आप हेलमेट देखेंगे, गाड़ियाँ सबकी, बाइक्स यहाँ पर पार्क हैं, और साथ में यहाँ पर बार बार उस लिस्ट को, बार बार उस लिस्ट को इनकी आंखें जो है वो निहार रही है. कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, विदुर, आज तक.
6: और चलिए अगली खबर का भी रुख करते हैं, जो गुरुग्राम से. गुरुग्राम जलभराव को लेकर हरियाणा सरकार एक्शन में. सीएम नायाब सिंह सैनी ने हालातों से निपटने के लिए जापान की कंपनी को सर्वे का काम दिया है. इस प्रोजेक्ट में यमुना तक पानी लाने का इंतजाम भी होगा और नया प्लान दिल्ली के साथ मिलकर भी तैयार किया जाएगा.
8: हमने एक जापान की कंपनी को हायर किया है, वो सर्वे कर रही है. निपोन कोई कंपनी है, उसको हायर किया है. गुरुग्राम के अंदर जो जल भराव की समस्या है, जो लो लाइन एरिया है, उस पानी को हम नू के तरफ ले जाकर के उसको यमुना तक पहुंचाने का काम करेंगे. गंदा पानी हम यमुना में नहीं जाने देंगे, उसके लिए हम एसटीपी ट्रीट करके पानी को छोड़ने का काम कर रहे हैं.
6: नेपाल त्रासदी पर हमारी महाकवरेज जारी रहेगी. वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक.
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
11: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम. एयू,
12: सोच बदलो और बैंक भी.
13: नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं. कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया तो कुछ ने ग्लेशियर झील के फटने का. लेकिन अब अमेरिकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी यूएसजीएस के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है.
14: चलो
13: शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मोहर लगा दी क्योंकि ये चीन को सूट करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। यूएसजीएस के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीज़मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर दिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ब्रेक के बाद आज तक पे आपका एक बार फिर से स्वागत है और देश भर में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्कूली छात्राओं से राखी बंधवाकर उनसे संवाद किया।
3: शाबाश, बहुत बड़ा काम किया।
4: कौन सा करते हैं? अच्छा, ये करना है, ऐसे करना है।
5: सबको रक्षाबंधन के आशीर्वाद।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन अ
6: क्या नेपाल में एक बार फिर महातबाही दस्तक देने वाली है? क्या एक बार फिर सैलाबी संकट नेपाल में हाहाकार मचाने को तैयार है? नेपाल में फिर से खतरे का अलर्ट है, लोगों में डर है, सरकार सतर्क है और इस बीच सैलाब तेजी से नेपाल की ओर बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक त्रिशूली नदी के जलस्तर में एक बार फिर तेजी से इजाफा हो रहा है और बढ़ता पानी इतना ज्यादा है कि इस बार 5 गुना तक तबाही मचा सकता है। इस अलर्ट के बाद ही सरकार ने एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नदी के किनारे से लोगों को हटा दिया गया है और इसका असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर भी पड़ रहा है।
7: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
8: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
7: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई।
6: दरअसल नेपाल पर फिर से ये खतरा पैदा हुआ है। रसुआ जिले में तिब्बत सीमा पर बनी झील पर बने प्राकृतिक बांध के टूटने से, ये वही झील है जिसे लेकर पिछले 24 घंटे से चीन और नेपाल में अलर्ट जारी किया था। आशंका थी कि अगर प्राकृतिक मलबे से बनी ये झील अचानक टूटती है तो बड़ी मात्रा में पानी और मलबा नीचे की ओर आ सकता है और पहले से तबाह इलाकों में दूसरी बड़ी बाढ़ ला सकता है। झील से पानी बाहर निकलने की खबर के बाद खतरे को देखते हुए नेपाली सेना ने राहत और बचाव अभियान अस्थायी तौर पर रोक दिया है। बड़े खतरे को देखते हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 587 लोगों की गई जान, करीब 1000 लापता। काठमांडू से दिल्ली लौटे भारतीयों से मिले मंत्री जयशंकर। नेपाल में फिर जल विस्फोट की आशंका, तिब्बत में एक उफनती झील से रिसाव शुरू, त्रिशूली और भोटेकोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। ममता ने फिर बोला मोदी सरकार पर धावा, एसआईआर से चुनाव में धांधली कर बंगाल चुनाव जीतने का जड़ा आरोप, कहा जहां जाएगी बीजेपी वहां आएगी तबाही।

0: देश भर में रक्षाबंधन की रौनक, बच्चियों से राखी बंधवाकर पीएम मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद, अमित शाह ने अहमदाबाद में बनवाया रक्षा सूत्र, प्रियंका की तस्वीर के साथ राहुल का पोस्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश की इकोनॉमी और आम लोगों के हालात पर उसके असर को लेकर है। देश में पिछले कुछ दिनों से विपक्ष लगातार आम लोगों के सामने बढ़ती चुनौतियों का मुद्दा उठा रही है। पेट्रोल डीजल इथेनॉल से लेकर चीनी प्याज तक के मुद्दे विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सरकार इसे बस सियासत बताती है। दिल्ली में 40 जगह पर सरकारी सस्ती प्याज मिलने जा रही है। 450 टन प्याज आ चुकी है। चीनी भी हफ्ते भर में कंट्रोल में आ सकेगी। मतलब महंगाई के आरोपों को सरकार ने खारिज कर दिया और उस पर काम भी चल रहा है। उधर आर्थिक मोर्चे पर भी हौसले बुलंद हैं। संसद के इसी मानसून सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कह चुकी है कि IMF के अनुमान के मुताबिक इंडियन इकोनॉमी का आकार 2028-2029 तक ही $5 लाख का हो जाएगा। GDP ग्रोथ रेट का अनुमान भी 7% के आसपास बताया जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार $690 अरब के पास है। खुदरा महंगाई दर भी 4.5% से नीचे है। यानी सरकार के दावे के हिसाब से देश की इकोनॉमी बुलंदी छू रही है। लेकिन इस इकोनॉमी पर मुल्क का मिजाज क्या कहता है, लोग क्या समझते हैं? क्योंकि देश के लोगों की राय में देश की अर्थव्यवस्था और उसकी यानी उनकी खुद की आम आदमी की आर्थिक स्थिति का क्या हाल है, इसी पर हमने देश के लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की है। वो आपके सामने हम पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं।

0: उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्षी दल चीनी, गुड़, प्याज, सब्जी के दामों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई विरोध का प्रदर्शन ऐसा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक एक किलो चीनी उपहार के रूप में भेंट कर दी।
1: भाई साहब, की शक्कर को तोहफे के रूप में आपने क्यों चुना, क्योंकि आमतौर पर लिफाफा दिया जाता है बहनों को।
2: शक्कर के भाव जो किसी जमाने में 20-25 थे, आज 70-75 हो गए।
0: शक्कर के भाव से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। इस बीच विपक्ष ने तमाम आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए। चीनी एक महीने में 20%, गुड़ 15 दिन में 25%, चाय पत्ती 2 महीनों में 20%, प्याज 1 महीने में 45%, हरी सब्जियां 2 दिनों में 30%, धनिया 15 दिन में 100%, और ये सिलसिला थमता ही नहीं। हाँ, प्याज की महंगाई का उपाय सरकार ने जरूर तलाश लिया। नासिक से 450 टन से ज्यादा प्याज लेकर प्याज एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से सड़क मार्ग से प्याज की सप्लाई चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे दूसरे बाजारों तक की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ प्याज की महंगाई का नहीं, त्योहारी सीजन में चीनी की महंगाई का भी मुद्दा है। विपक्ष चीनी की महंगाई को लेकर एथेनॉल वाला डबल अटैक कर रहा है।
3: ये बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वहीं सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है, क्या मिलावट नहीं कर सकते? लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है, एथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा।
4: चीनी घोटाला तो जरूर हुए है, चीनी घोटाला होने के चलते और बाजार में सारे चीनी के दाम में आग लग चुके हैं, तो सारे गन्ने जब इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो चीनी बनाने के लिए गन्ने कहाँ मिलेगा।
0: हालांकि चीनी की महंगाई का एथेनॉल कनेक्शन सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है, पर महंगाई का शोर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं। पिछले साल इसी अगस्त महीने की तुलना में देखा जाए तो अगर 41 रुपए किलो की चीनी 63 रुपए किलो है तो 40 रुपए का गुड़ 66 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो की चाय पत्ती 276 रुपए किलो है, 27 रुपए किलो वाला प्याज 55 रुपए किलो है, 140 रुपए का लहसुन 250 रुपए किलो में है, पेट्रोल 94.77 रुपए से 7.35 रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 14.53 रुपए महंगा होकर 102.15 रुपए प्रति लीटर का मिल रहा है, सीएनजी का दाम 76.09 रुपए से 6 रुपए ज्यादा बढ़कर 83.09 रुपए हो चुका है, रसोई गैस 853 रुपए से 89 रुपए बढ़कर 942 रुपए।
3: डीजल पेट्रोल की महंगाई कितनी बड़ी है, आपके बाजार में सामान देखिए, हर सामान महंगा हो गया, त्योहार के समय पर जो खरीद होती थी वो भी खरीद नहीं हो पा रही है, आपके त्योहार फीके हो गए, वो रौनक जो बाजार में होनी चाहिए महंगाई की वजह से नहीं है, और ये जो महंगाई है उसका कारण है सरकार मुनाफा कमा रही है, और मुनाफा कमाने के लिए उद्योगपतियों को खुली छूट दे दी है। आज चीनी अगर महंगी हुई है उसका कारण क्या है, या इथेनॉल मिला रहे हैं उसका कारण क्या है, और महंगी चीनी जो बाजार में बिक रही है उसका मुनाफा किसके पास जा रहा है, पेट्रोल जब महंगा खरीदा है उसका मुनाफा किसके पास जा रहा है, इस मुनाफे में तो कहीं बंटवारा नहीं हो रहा है, चंदा तो नहीं वसूला जा रहा है।
0: वैसे चीनी की महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच चीनी उत्पादक संघ ने दावा किया है कि अगले हफ्ते तक चीनी के दाम स्थिर हो जाएंगे, लेकिन प्याज और बाकी सब्जियों के दाम की अस्थिरता का इंतजार देश को अब भी बना हुआ है।
5: लेकिन उसके बावजूद जनता क्या सोचती है, क्योंकि सरकार का कहना है कि ये सारे जो बातें कही जा रही है वो सियासती है, इसीलिए हम जनता के पास गए और जनता से ही पूछने की कोशिश की। क्या हमने सवाल पूछे, क्या जनता ने जवाब दी, वो हम आपके सामने रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, यशवंत देशमुख सेफोलॉजिस्ट फाउंडर डायरेक्टर सी वोटर जिनका ये सर्वे है वो भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं, सिद्धार्थ जरावी ग्रुप एडिटर है बिजनेस टुडे के, और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तो आप सभी मेहमानों के सामने देश के मिजाज का सर्वे पेश करने के पहले हम आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हम सामने पेश करने जा रहे हैं इसमें देश के सभी राज्यों और लोकसभा क्षेत्रों में 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच हर आयु वर्ग जाति धर्म लिंग वाले 25,184 बालिगों की राय ली गई है और इसके अलावा पिछले 24 हफ्तों में 91,795 लोगों से भी राय ली गई है। राय का विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया है और इस तरह कुल 1,16,644 लोगों की राय का निचोड़ लेकर हम आपके सामने आए हैं। तो मुल्क का मिजाज जो हम आपके सामने पेश करें, क्योंकि इकोनॉमी की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है और अच्छे दिन के वादे कर 2014 में यह सरकार आई थी, तो पहला सवाल, मोदी सरकार अर्थव्यवस्था कैसे संभाल रही है? शानदार कहने वाले 47.2% लोग हैं, औसत कहने वाले 18.4% लोग हैं, बहुत ही खराब कहने वाले 28.6% लोग उस पर देखे गए। दूसरा सवाल, बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा आम आदमी को हो रहा है क्या? यह सवाल पूछा गया था। हाँ, काफी हद तक हो रहा है, 25.4%। मध्यम वर्ग को हो रहा है, 18.1%। केवल धनी लोगों को हो रहा है, 43.7%। और बिल्कुल नहीं हो रहा है, 7.5% लोगों ने कहा, पता नहीं कहने वाले भी 5.2% लोग थे। अगला सवाल, एनडीए सरकार में आर्थिक नीतियों का फायदा सबसे ज्यादा किसे हो रहा है? 55.7% लोगों ने कहा कि बड़े व्यापारियों को हो रहा है, किसानों को 8.1%, वेतन भोगी 7.4%, छोटे व्यापारी 6.4%, दैनिक मजदूर 5.5% और पता नहीं कहने वाले 12.1% लोग। और चौथा सवाल था, देश की अर्थव्यवस्था किसने बढ़िया तरीके से संभाली? नरेंद्र मोदी 47.3%। पिछले 12 साल से प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 43.5% लोगों ने कहा कि उन्होंने बेहतर संभाली, पता नहीं कहने वाले भी 9.2% लोग देखे गए हैं। पांचवा सवाल था, 2014 के बाद आपकी क्या आर्थिक स्थिति बदली है, सुधरी है कहने वाले 34.2% रहे, वैसी ही रही 30.5% लोग गए, बिगड़ी 31.1%, यानी पिछले 12 साल में स्थिति सुधरी है कहने वाले 34.2% रहे, जबकि 30% लोगों को लगता है कि कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बिगड़ गई उल्टा कहने वाले 31.1% लोग हैं। छठा आखिरी सवाल कि पिछले साल के मुकाबले आपका दैनिक खर्च कितना बड़ा है? बड़ा है मगर हद में बड़ा है, 27.2%। लेकिन 65% लोग कह रहे हैं कि खर्च मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, खर्च खट गया है 6.3%, और पता नहीं कहने वाले 1.6% लोग इस पे देखे गए हैं। सैयद जफर इस्लाम, अगर इस सर्वे पर हम नजर डालें, यशवंत देशमुख भी हमारे साथ है, उनसे भी हम इसके बारे में पूछेंगे, लेकिन अगर इस सर्वे पर नजर डालें, जो सी वोटर का सर्वे हमने आपके सामने रखा हुआ है, जो आंकड़े अमूमन सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, पीआईबी के आंकड़ों पर मैं भी नजर डाल रहा था, एवरेज इन्फ्लेशन 2004 से 2014 के बीच में 8.1% रहा है, जबकि 2014 से 25 तक 5.1% एवरेज इन्फ्लेशन देखा गया है, लेकिन उसके बावजूद कई लोग कहते हैं कि खर्च मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पे लोगों के मन में डिस्ट्रेस है, यह साफ यहां पर नजर आता है। हालांकि अभी भी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था ठीक तरीके से संभाली हुई है, लेकिन जो डिस्ट्रेस है उस बात को लेकर सरकार की क्या भूमिका रहेगी और आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर?
6: देखिए साहिल जी, आपने जो पूछा सवाल कि किसने बेहतर तरीके से इकोनॉमी को मैनेज की, 47-47% जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए है, लेकिन हकीकत ये देखिए कि सैंपल होता है, आप पूरे आज आंकड़े उठा के देखिए देश के इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को, जो भी समझता होगा वो जानता है कि इस वक्त देश की इकोनॉमी बहुत ही मजबूत नहीं कह रहा, बहुत ही मजबूत हालत में है, बहुत मजबूत हाथों में है, और इसीलिए आज जिस तरह के भी आंकड़े आप स्लाइस करके जैसे चाहिए देखिए तो आपको समझ में आएगा। आप छोटी सी बात, लोग कहते थे कि आप जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, आप जरा क्रेडिट ग्रोथ देखिए बैंक का, तो आपको समझ में आएगा कि 20 साल पहले इस तरह का क्रेडिट ग्रोथ जो है देखा जाता था। आप उसी तरह से इन्फ्लेशन को उठा के देखिए, आपने खुद आंकड़े बताया इन्फ्लेशन का, तो एक तरफ ग्रोथ भी है एक तरफ इन्फ्लेशन भी कंटेन कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही आइडियल सिचुएशन किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए है। नहीं तो अगर ग्रोथ बढ़ता है तो जो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ दोनों चीज बिल्कुल जिस तरह से आइडियल सिचुएशन होना चाहिए वो है। बाकी सारे चीज देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आप एक्सपोर्ट का नंबर उठा के देख लीजिए, जीडीपी ग्रो कर रही है, तो हर तरह के इकोनॉमी में जिस सब जो है अर्थव्यवस्था अच्छे तरह से चल रही है। अब छोटी मोटी चीजें जो है वो सीजनल फैक्टर की वजह से होती है, उसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट नहीं होता, बट बहुत थोड़े समय में जैसे आप देखिए पेट्रोल के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में अचानक बढ़ गए, जब सिचुएशन सुधर गया तो प्राइस कर नीचे भी आ गए। उसी तरह से सीजनल फैक्टर होता है, कभी कभी सब्जियों के दाम बढ़ते हैं।
5: ये बात मैं मानता हूँ सैयद जफर इस्लाम, ये बात मैं मानता हूँ कि सीजनल फैक्टर होता है, कई बार सप्लाई डिमांड के हिसाब से भी कई कीमतें ऊपर नीचे उछाल होता है, कभी गिर जाती है, जिसमें प्याज की कीमतें हैं, शुगर की कीमतें हैं, बाकी सारी चीजों की कीमतें भी उसमें दिखाई दे। लेकिन छठा सवाल जरा स्क्रीन पर दिखाइएगा, जिस बात को लेकर दरअसल मैंने सवाल जफर इस्लाम जी आपको पूछा था कि सवाल ये पूछा गया था कि पिछले साल के मुकाबले आपका दैनिक खर्च कितना बढ़ा है, और उसमें 65% लोग ये कह रहे हैं कि खर्च मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। ये आंकड़े एक तरफ है और ये आंकड़े एक तरफ है, इसका क्या मतलब निकला?
6: आप जरा इसको मेरी बात को सुनिएगा, और हो सकता है इस वक्त वैलिडेट आप ना करें, लेकिन आंकड़े को जाके देखिएगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, तो आपकी बात मुझे सही लगी। आज के दिन में जो पहले आउटलेट होते थे खर्च करने के, वो बहुत कम होते थे पहले के, अब आउटलेट ज्यादा है, बहुत तरह की चीजें, एस्पिरेशनल देश है हमारा, तो खर्च भी बहुत तरह के करते हैं वो लोग, तो उससे थोड़ा बहुत जो खर्चा लोगों का बढ़ा है।
5: आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिजूल खर्ची के वजह से हो रहा है?
6: देखिए वर्ड मैंने बिल्कुल इस्तेमाल किया, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा, इसलिए कि पहले आउटलेट ही नहीं है। आप जैसे आप देखिए फॉर इंस्टेंस, आप एक गाँव में जाइए जहाँ कुछ नहीं है, आपके घर के बैठने के अलावा कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आपके पॉकेट में जो पैसे रहेंगे। लेकिन आप एक शहर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसमें खर्चा होता है। इसीलिए कभी कभी एक सर्वे मैंने पढ़ा है इसके बारे में, डिटेल सर्वे, जिसमें दिखाता है कि एस्पिरेशन की वजह से थोड़ा बहुत लोग ज्यादा भी खर्च करते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इन्फ्लेशन है, चाहे कोर इन्फ्लेशन देखिए या सीपीआई इंडेक्स देखिए, वो बिल्कुल कंटेन करके रखा।
5: यही मुद्दा था, यही मुद्दा था कि सीपीआई इंडेक्स हो,
6: थोड़ी बात, दस सेकंड। इसी यही वजह है कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी सीजनल फैक्टर को ऐसे अचानक तेज किसी चीज के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे अभी आप अनियन की बात करें, प्याज की, अब वो बारिश की वजह से, सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से, वहां पर से ट्रांसपोर्टेशन देर में आने की वजह से, तो मंडी में जो सबसे बड़ी मंडी में जो प्याज नहीं आया दो मंडियों में, उससे थोड़ा सा दाम में अचानक उछाला है, लेकिन वो फिर कंटेन हो रहा है। धीरे धीरे चीनी के प्राइस भी नीचे आ रहे हैं, धीरे धीरे वो भी नीचे आ रहे हैं।
5: ठीक है, तो आपको लगता है कि इसके बावजूद यानी लोगों के खर्चे बढ़ गए, इसके लिए शायद वो मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे उनका बजट, लेकिन बाकी जो सवाल पूछा गया था कि 2014 के मुकाबले आपकी क्या आर्थिक स्थिति बदली है, तो महज 34% लोग कहते हैं कि हमारी स्थिति बदली है, लेकिन बाकी अगर हमने देखा तो लोग कहते हैं कि या तो वही रही है या तो डिटेरियरेट भी हुई है। लेकिन दूसरा इसमें एक सवाल था, वो जो ज्यादा मुझे लगता है कि लोगों के मन में किस तरीके से इस बारे में चर्चा होती है, एनडीए सरकार में आर्थिक नीतियों का फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किसे रहा है? बड़े व्यापारियों को फायदा रहा, 55.7% लोग आज की स्थिति में ये सोचते हैं कि बड़े व्यापारियों को इसका फायदा रहा है। सिद्धार्थ जरा भी आपसे इसके बारे में जानना है, क्योंकि लोगों के का जो परसेप्शन इसके बारे में है, अतुल लोंडे पाटिल पहले आप जवाब देंगे, लेकिन सिद्धार्थ जरा भी परसेप्शन लोगों का कि नई आर्थिक नीतियां लाई गई, फिर बहुत सारे बदलाव जो उसमें किए गए, जीएसटी जैसा बदलाव, एक लैंडमार्क बदलाव की तरह सरकार ने उसे रखने की कोशिश की, इनकम टैक्स में जिस तरीके से, स्लैब्स में जिस तरीके से बदलाव किए गए, लेकिन इसके बावजूद लोगों को लगता है कि बड़े व्यापारियों को आर्थिक पॉलिसीज का फायदा सबसे ज्यादा रहा है।
7: साहिल देखिए, दो बातें हमें माननी पड़ेंगी और आपने उनका उल्लेख भी किया। पहला, अगर मोदी सरकार के कार्यकाल को पिछले 10-12 सालों में इसका ओवरऑल आंकलन किया जाए तो

0: एक बड़ी चीज निकल के आती है, डिमोनेटाइजेशन, उसके पश्चात जीएसटी और जो अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम और पॉलिसीज हुई हैं उसके कारण फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी हमारी अर्थव्यवस्था में फॉर्मलाइजेशन हो, जो ऐसे ही चल रहे हैं उद्योग वो कम हो के वो एक फॉर्मल नेट में आए, वहां पे कर्मचारियों का भी ध्यान रखा जाए, वो टैक्स भी दें, जीएसटी की कवरेज में भी आए। इसका एक नतीजा ये निकला है कि अर्थव्यवस्था फॉर्मलाइज हुई है और इसके कारण कंपनीज भी उसी प्रकार से और बढ़ती गई हैं। जो छोटी कंपनी थी वो मीडियम साइज्ड बनी है, जो मीडियम साइज्ड कंपनी थी वो बड़ी बनी है। दूसरी बात जो हमें समझना पड़ेगा कि इस परसेप्शन को ड्राइव क्या कर रहा है, हकीकत क्या है। दूसरी हकीकत साहिल ये है, और ये विषय आपने मैंने पहले भी चर्चा किया है बाकी हमारे गेस्ट के साथ, वो ये है कि कोविड के बाद एक के शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी पूरी दुनिया में देखी गई और वो हमारे देश में भी देखी गई। कोविड के बाद जो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड कंपनीज थी, जिनमें स्टेइंग पावर थी, जिनके कैश रिजर्व्स थे, जो अपने प्रोडक्शन साइकिल को मेंटेन कर पाए, उन्होंने गति ज्यादा पकड़ी। मैं एक ही सेक्टर की एग्जाम्पल देना चाहूंगा, रियल एस्टेट सेक्टर, यानी घर हो, पक्का घर हो, छत हो, ये हर किसी भारतीय का एक ड्रीम है, एस्पिरेशन है। सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए हैं जिसमें घर दिए गए हैं सरकार द्वारा, राज्यों ने भी किया है, केंद्र का भी काफी बड़ा एक ये कार्यक्रम चला है। पर अगर आप प्राइवेट सेक्टर के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स देखें तो आपने उसमें ट्रेंड देखी होगी कि घर कोविड के बाद ज्यादा बड़े बने। जिसके पास 2 बेडरूम था उसने 3 बेडरूम चाहा, 3 वाले ने 5 पे छलांग लगाई। ये कुल मिला के ये जरूर दर्शाता है कि हमारी इकोनॉमी में बड़ी कंपनीज और बड़ी हो गई हैं। हमने ये एयरपोर्ट्स में देखा है, ये हमने
1: नहीं
0: सर्विसेज
1: सिद्धार्थ, बात
0: सेक्टर।
1: यहां पर यह है कि लोगों का परसेप्शन बना हुआ है कि बदली हुई इकोनॉमी, के शेप इकोनॉमी को समझ सकता हूं। यह भी बात मैं समझ सकता हूं कि कोविड के बाद जिसके पास साधन थे, जिसके पास मौका था, वो ज्यादा बढ़ पाया। लेकिन जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास वो मौका नहीं था, उनका नुकसान घाटा बढ़ता गया। लेकिन उसके साथ
0: तीस
1: साथ
0: सेकेंड
1: लोगों
0: साहिल,
1: के
0: तीस
1: मन,
0: सेकेंड में, 30 सेकेंड में इसका मैं आपको उत्तर
1: नहीं,
0: दूंगा।
1: मेरा सवाल यह है, मेरा सवाल यह है
0: जी
1: सिद्धार्थ, कि लोगों के मन में यह परसेप्शन क्यों है कि जो वेतन भोगी है, जो ओरिजिनली भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं, यानी सैलरीड एम्प्लॉयज, उनको लगता नहीं है कि उनको इतना फायदा हुआ है इन पॉलिसीज का, जबकि बड़े व्यापारियों को सबसे ज्यादा फायदा रहा। यह परसेप्शन लोगों के मन में क्यों है, और यही आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है।
0: अब साहिल आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं इसमें बस छोटा उत्तर देने से पहले एक क्लैरिफिकेशन, यानी दुकानदार का इनकम और बिजनेस उद्यमी का इनकम और एक सैलरीड वाले इनकम की हम तुलना नहीं करते हैं, पर आपने जो प्रश्न पूछा बिल्कुल सही है। दूसरी साइड की हकीकत ये है कि अगर हम देखें तो वेज ग्रोथ, जिसे कहते हैं कि आपकी सैलरी में ग्रोथ, पिछले 10 वर्षों में उतनी तेज गति से नहीं बढ़ी है। निजी क्षेत्र में आईटी क्षेत्र एक जो हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक स्तंभ रहा है, कई दशकों से रहा है, आईटी क्षेत्र में हमने देखा है पिछले 4-5 साल में कई कारणों से उसमें थोड़ी सी रुकावट आई है, उसमें ठंडी पड़ी है, धीमी गति में आईटी सेक्टर में जॉब और वेज ग्रोथ हुई है। आपने ये देखा होगा कि कई बार ये अटकलें लगती हैं कि आईटी का आज इंजीनियर वही सैलरी पे ज्वाइन कर रहा है जो 5 या 10 साल पहले हो रहा था। दूसरी तरफ अगर हम सरकारी क्षेत्र में देखें तो सरकारी क्षेत्र में वेज रिवीजन हर 10 साल बाद होता है। ये
1: ठीक है,
0: जरूर है कि साल में 2 बारी डीए का भी रिवीजन होता है, इसलिए वेज ग्रोथ और महंगाई, ये जो आपने प्रश्न पूछा उसका जवाब वेज ग्रोथ और महंगाई जो ओवरऑल 10 साल में हमने देखी है उसके कारण ये परसेप्शन और ये फीलिंग
1: और यही बात
0: महसूस
1: है
0: में
1: जो
0: जरूर
1: बात
0: है।
1: दरअसल मैं सैयद जफर इस्लाम को कहने की कोशिश कर रहा था कि भले ही आपने महंगाई का दर को घटाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद जो सैलरी नहीं बढ़ी है, लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है, उसका असर इस सर्वे में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अतुल लोंडे पाटिल, इसके बावजूद भी लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही है कि जो अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, यह रेटिंग इस तरीके से क्यों नजर आ रही है? हालांकि मनमोहन सिंह का रेटिंग भी उस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार अर्थव्यवस्था कैसे

0: संभाल रही है, शानदार कहने वाले 47.2% लोग, क्यों ऐसा नजर आ रहा है?
1: नहीं देखिए, 55% लोग कह रहे हैं कि धनी लोगों को ही फायदा हो रहा है जो भी पॉलिसी सरकार ला रही है, और अदानी अंबानी सबके सामने उदाहरण है, सब कुछ उनको ही बेचा जा रहा है। और 65% लोग कहते हैं कि उनका खर्चा जो है वो बड़ा है, और इसके बावजूद मोदी जी इकोनॉमी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। इसलिए मैं इस सर्वे को सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि ये आंकड़े इनके जो है वो दिखाते नहीं है ठीक से।

0: क्योंकि ये आंकड़े इनके जो है वो दिखाते नहीं है ठीक से।
1: कौन सा आंकड़ा खारिज कर रहे हैं, 55% वाला या 47% वाला?
0: नहीं नहीं मोदी जी ने
1: अच्छा, आपको जो चाहिए वो लेंगे बाकी का छोड़ देंगे।
0: ये नहीं नहीं नहीं ऐसा है कि जब 55% लोगों को लगता है कि धनी लोगों को ही फायदा हो रहा है और 65% लोग जो है वो कहते हैं कि खर्चा हमारा बड़ा है हम नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई के खुद के आंकड़े 50% से ज्यादा लोगों को अपना सोना गहना जो है वो गिरवी रखकर खर्चा चलाना पड़ रहा है और जीसीएफसी जो है वो काफी कम हो गया है। ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट कहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। हम -3% से ग्रो कर रहे हैं हमारा शेयर मार्केट जबकि पूरा एशिया का मार्केट जो है वो बढ़ रहा है। पेट्रोल जो है अभी 89 रुपया क्रूड ऑयल के एक दाम है, हमारे वक्त 112 145 डॉलर तक गए थे फिर भी पेट्रोल 110 रुपये 121 रुपया प्योर पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपये के आसपास डीजल मिल रहा है। गैस सिलेंडर हमारे वक्त 410 रुपये था अभी 1000 रुपया मिल रहा है। हमारे वक्त सारी चीजें जो इतनी सस्ती थी 58 रुपये का डीजल था अभी वो 97 रुपये मिल रहा है। सारी चीजें सस्ती थी लेकिन वो इकोनॉमी काफी बेकार मैनेज की गई थी। 10.8% तक हमने ग्रोथ रेट दिया था 2010-11 में और तब हमारा फिस्कल डेफिसिट भी 4.5% था। झूठा मकारी की गई देश के साथ और सारे जो है छूट गए। मनरेगा में 50% से भी ज्यादा कम रोजगार उत्पन्न हुआ है। डिमांड के खिलाफ उन्होंने उसको इंपीरिकल बना दिया है कि वो जो काम देंगे उतना ही करना पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बावजूद लोग बहुत खुश है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। अभी इनके ही इकोनॉमिस्ट विरल आचार्य, उर्जित पटेल, अरविंद पनगड़िया, अरविंद सुब्रमण्यम, ये सब लोगों ने जो है वो कहा कि फर्ज नंबर्स, गलत तरीके से इकोनॉमी मैनेज की जा रही है, वो लोग छोड़ कर गए। उर्जित पटेल तो इनके ब्लू वाइट बॉय थे, रिलायंस से उठाकर उनको लाया था और आरबीआई में डिप्टी गवर्नर और बाद में गवर्नर बनाया था, वो भी छोड़कर चले गए। अभी इन साहब ने कहा था कि हमने सबसे ज्यादा जो है वो पीएमएवाई यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 54,832 करोड़ का बजटरी प्रोविजन था, रिवाइज बजट 32,500 करोड़ तक नीचे लाया। पीएमएवाई अर्बन का 25,794 करोड़ का बजट था, वो 7,900 करोड़ रुपए ही खर्चा किए। जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ का बजट था लेकिन सिर्फ 17,000 करोड़ ही कम खर्च किए, 75% की कमी थी। तो जो आंकड़े बताए जा रहे हैं और वास्तविकता जमीन पे जो है वो इतनी भयावह है कि इस देश में 16 लाख से ज्यादा लोग जो असेट क्रिएट करते हैं इस देश को छोड़ के चले गए। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र जी जो है जो एक पैरेलल चैनल चलाते हैं आपके जैसा ही, वो उनको 22,000 करोड़ का कर्जा जो है वो 6.5 करोड़ में सेटल किया गया है। ऐसे कई उदाहरण जो है वो पड़े हुए 60 लाख के आसपास, मेरे पास पूरा फिगर है, डिपार्टमेंट वाइज फिगर है जिसमें नौकरियां जो है वो बन नहीं रही है। मैं जीसीएफसी जो है जो कम हो नहीं होने की वजह से, यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा, कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा, मैन्युफैक्चरिंग में पैसा, वो सारा जो बढ़ता है उससे रोजगार बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग जिसको विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं उसका जो शेयर था वो 17% से गिरकर 11.5% से 12% तक आया है। तो बताओ रोजगार कहां से आया है। और आज अंग्रेजों के जमाने में जो नहीं थी उससे भी बड़ी असमानता, आर्थिक असमानता जो है वो आज यहां दिखाई दे रही है। तो आपके आंकड़े वास्तविकता, आपके खुद के आंकड़े और जो आउटपुट निकलता है, यानी मनमोहन सिंह साहब के साथ अगर आप मोदी जी की तुलना कर रहे हो तो फिर स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ऊपर से हंस भी रहे होंगे, देश के सारे इकोनॉमिस्ट भी हंसेंगे इस बात को, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस वक्त देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से मैनेज किया था जब पूरे दुनिया में रिसेशन था। अभी और बताता हूं, ग्रामीण विकास 53,067 करोड़ कम खर्चा किए, आईटी टेलीकॉम 32,952 करोड़ कम खर्चा किए,
1: लेकिन इसके बावजूद
0: विज्ञान 18,655 करोड़, सामाजिक कल्याण 9,999 करोड़,
1: लेकिन इसके बावजूद
0: 601 करोड़, इतना पैसा कट किया है जहां रोजगार पूर्ण।
1: अतुल लोंडे पाटिल, क्या आपको नहीं लगता कि 2014 के पहले भी जब इस तरीके का सर्वे किया गया था तब भी इकोनॉमी को लेकर चिंता लोगों के मन में साफ नजर आ रही थी और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अच्छे दिन का एक मॉडल सामने रखा गया था, सबका विकास का मॉडल सामने रखा गया था। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विकास का मॉडल क्या होगा, इकोनॉमी का मॉडल क्या होगा, वो नहीं रखने के वजह से अभी भी प्रधानमंत्री की रेटिंग जो है इकोनॉमिक मैटर्स में अभी भी ज्यादा नजर आ रही है, ये कारण आपको नजर आता है?
0: मैं तो सर्वे
1: ये बाकी जो आंकड़े हैं वो सही है, वो स्थिति दिखा रहे हैं, लोगों के मन की स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा विपक्ष नहीं उठा पा रहा है, ये बात यहां पर पूछने की कोशिश हो रही है।
0: बताता हूं ना मैं, उस वक्त जिस तरह का षड्यंत्र किया गया है इन्हीं सरकार के रहते हुए, सारे जो आरोप थे वो खारिज हो गए, सारे आंकड़े जो है वो खारिज हो गए और क्या सच हुआ था ये सबसे सामने आया। तब डेमोक्रेसी थी, तब मीडिया को जो है वो कहने की एक छूट थी, तब हीरेन जोशी नाम का कोई ऐसा पीएमओ ऑफिस में बैठता नहीं था जो कंट्रोल करे, जो दबा के रखे, इंस्टीट्यूशंस को खत्म करे, ऐसा कुछ नहीं था। तो झूठ जो है वो सब जो है सामने पड़ चुका है, सामने आ चुका है
2: ना। थोड़ा शेयर मार्केट
0: सुनिए, हाँ दे असेंबल को ये कहते कि हमने किया।

0: का रिपोर्ट करता है कि तुम्हारी कौशल योजना जो है खत्म हो गई, क्या का रिपोर्ट कहता है कि आपने कितने घपले किए, आप इसमें आयुष्मान योजना में कितने घपले किए, ये क्या का रिपोर्ट कहता है, जो रोड था बॉम्बे का दिल्ली का, वो रोड जो है वो रोड में कितने 232 करोड़ रुपया पर किलोमीटर खाया गया, लेकिन उसके एक्शन टेकन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सब कुछ छुपाया जाता है, बलात्कार से लेकर
1: जफर इस्लाम जवाब दीजिए।
0: छुपाया जाता है, 70 पुल गिर गए,
2: हर मैं जवाब देता हूँ।
0: तो लखनऊ का
1: कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है ना इस बात को तो मानती है कि जो बाकी तीन नंबर है वो ठीक है। जब लोग कहते हैं कि 55% पॉलिसीज जो उनका परसेप्शन है वो सब तो आंकड़े ठीक है, लेकिन जब लोग ये कहना शुरू करते हैं कि अभी भी हमें लगता है कि इकोनॉमी प्रधानमंत्री ठीक से हैंडल कर रहे हैं, तो वो मानने को वो तैयार नहीं।
2: देखिए ये कांग्रेस की तो ये नीति रही सिलेक्टिव अप्रोच, अपने फायदे की बात लेके वो सिर्फ
0: नहीं, मैंने आंकड़े जो दिया है उसके ऊपर ही बोला दफा भाई, मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा।
2: अतुल भाई बीच में नहीं बोल, नहीं अतुल भाई बीच में नहीं बोल रहा हूँ, एक मिनट। दूसरी बात पे सर्वे में अब ये बताइए, सर्वे में तो अलग अलग आंकड़े आए हैं, अलग अलग आंकड़े आपने रख दीजिए। अगर हम थोड़ा सा 10 साल पहले 12-11 साल पहले चले आते हैं, उस वक्त की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। उस वक्त देखिए इन्फ्लेशन कहाँ, एक मिनट दरअसल इन्फ्लेशन कहाँ था उस वक्त, पॉलिसी पैरालिसिस थी उस वक्त। पॉलिसी पैरालिसिस को अपोजिशन की वजह से नहीं होती है, पॉलिसी पैरालिसिस सरकार जो है इस स्थिति में नहीं होती कि कोई पॉलिसी लेके आए, इसलिए हर जगह करप्शन ही करप्शन और घोटाले हो रहे थे। तीसरी बात आप देखिए उस वक्त जो है
0: इसका जवाब देने के लिए टाइम देना,
2: एक मिनट। जितने भी आज इकोनॉमी को जो जिस मापदंड पे आप उसको मेजर करते हैं वो सारे मैक्रो को देख लीजिए, मैक्रोस जो है उस वक्त थे जो वो आज मैक्रोस देख लीजिए। उस वक्त एकदम बोलते थे फ्रेजाइल फ्रेजाइल दुनिया की इकोनॉमी में सबसे कमजोर सबसे खस्ता हालत वाली इकोनॉमी, उसमें भारत का नाम आता था। आज इतनी मजबूत स्थिति है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और आंकड़े भी है इस बात को दर्शाते हैं। चाहे किसी देवे में देखिए जो मार्केट शेयर है, जो दुनिया में जो शेयर है ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में जो शेयर है, चाहे एक्सपोर्ट का हो चाहे और बिजनेस का, उसमें भारत का शेयर बढ़ता जा रहा है। भारत जो है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें समझ में आता है कि
1: लेकिन जफर इस्लाम जी
2: एक मिनट, रैंकिंग बढ़ी, रेटिंग बढ़ी, हमारी अर्थव्यवस्था जो है 11वें स्थान में।
1: लेकिन जफर इस्लाम जी ये बात बड़ी दिलचस्प है, जरा वो पहला आंकड़ा दिखाइएगा जिसमें नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना में, नहीं प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह की तुलना में कौन बेहतर अर्थव्यवस्था को संभाल सकता है, ये वाला जरा आंकड़ा दिखाइएगा। इसमें अगस्त 2026 में नरेंद्र मोदी को 47.3% लोगों का कहना है कि वो बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं, मनमोहन सिंह 43.5%। लेकिन वही 6 महीने पहले जब यही सवाल लोगों को पूछा गया था इसी सर्वे के जरिए, तब प्रधानमंत्री मोदी का रेटिंग 53.5% था, जबकि मनमोहन सिंह का रेटिंग 36.2% था। यानी करीब 6% का घाटा प्रधानमंत्री की रेटिंग में और करीब उतना ही इजाफा मनमोहन सिंह की रेटिंग में यहां पर नजर आ रहा है। सैयद जफर इस्लाम जी, 6 महीने में ऐसा क्या बदला है? 6 महीने के भीतर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो संकट रहा, 6 महीने के भीतर जो जंतर मंतर की कार्यवाही हुई, जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, इन सभी का असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी के दृष्टि से भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, क्या यह इसका मतलब निकाला जाए?
2: देखिए एक बात को समझना पड़ेगा कि इंडिया कोई आइसोलेशन में इंडियन इकोनॉमी नहीं है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन होता है दुनिया के किसी इलाके एरिया में भी, उसका हर इकोनॉमी पे असर पड़ता है, इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी उस पर भी असर पड़ता है, पड़ेगा ही। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है देश की अर्थव्यवस्था में जो है टेम्पररी फर्क पड़ता है या उसका असर दिखता है, लेकिन डोमेस्टिक अगर आंकड़े देखिए तो बहुत मजबूत स्थिति में। और एक और बात,
1: मैं आशुतोष को इस चर्चा में लाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दौर उसी तरीके से नजर आ रहा है, ये दौर इसी तरीके से नजर आ रहा है।
2: 10 सेकंड चलिए। अतुल भाई जो प्राइस के बारे में बोल रहे थे, बहुत सारे चीजों के प्राइस बताए कि हमारे 10 साल में आज से मतलब 2004 के बारे में, तो 2004 से पांच जो 5 साल पिछला भी ले लीजिए उससे भी ला लीजिए, तो भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है कि भाई इन्फ्लेशन के साथ चीजों के दाम भी बढ़ते हैं, तो 2098 से 2000।
1: जफर इस्लाम जी प्लीज इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इकोनॉमी एक परसेप्शन भी तैयार करता है, जो आर्थिक स्थिति है उसका आप किसी भी तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट हो सकता है, लेकिन परसेप्शन के बावजूद जो जो सड़क पर नीचे का जो इंसान है उसे जिस तरीके से फील हो रहा है उस अर्थव्यवस्था को लेकर, वो जो फेस करने की कोशिश कर रहा है उसी का असर कहीं ना कहीं यहां पर इस सर्वे में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आशुतोष मुझे आपको इस चर्चा में लेकर आना है इस मुद्दे को लेकर। एक मिनट, नहीं अतुल लंड, एक मिनट पहले आशुतोष बात करेंगे उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे मामले को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर यहां पर चर्चा चल रही है, 2004 में भी जब प्रधानमंत्री वाजपेयी और उनकी सरकार ने शाइनिंग इंडिया का एक एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा था, और एक बड़ा तबका ये सचमुच में मानने को भी तैयार था कि हां इंडिया शाइनिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी जो आम आदमी है वो उस मॉडल को उसने उस मॉडल को खारिज कर दिया। क्या आज की स्थिति में भी जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो और जो लोग महसूस कर रहे हैं वो, ये दोनों चीजें अलग है, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी का रेटिंग उसमें कम नहीं हो रहा है, इस बात को आप कैसे देखेंगे?
3: देखिए साहिल, वैसे भी तो 2024 के आसपास आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहे थे तो 400 सीटों का दावा सर्वे में किया गया था, लेकिन अंत में कितनी सीटें हैं ये
1: सीटों का दावा नहीं है। आज की चर्चा लोग अर्थव्यवस्था को लेकर क्या समझते हैं, सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर क्या समझते हैं, उसका सर्वे है।
3: मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा
1: जी।
3: तो मैं डेटा को थोड़ा विद सर्वे के डेटा को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेता हूं, लेकिन इसमें भी अगर आप देखें, अगर 65% ये लोग कह रहे हैं कि उनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो क्या ये क्या दर्शाता है? और जब पूछा गया कि आपकी आर्थिक हालत कितनी बदली है, तो 61% लोग कह रहे हैं कि उनकी हालत में या तो बदलाव नहीं हुआ या स्थिति बिगड़ी हुई है। ये छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। और 55% लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल बड़े व्यापारियों को फायदा हो रहा है, और इसके अलावा 43% लोग ये कह रहे हैं कि भाई केवल धनी लोगों को फायदा हो रहा। अगर ये आंकड़े आंख खोलने वाले नहीं है तो किस तरीके के आंकड़े आंख खोलने वाले होंगे? अभी जफर साहब ने, बड़े अच्छे विद्वान आदमी, आर्थिक नीति को समझदार आदमी है, मैं तो अर्थनीति का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा पढ़ता लिखता हूं, तो मैं सिर्फ 3 इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करूंगा जो सरकार से जुड़े रहे। सुरजीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, बहुत बड़ी बड़ी बात होती है कि फ्रजाइल 5 जब भारत को मिला तो भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 थी। सुरजीत भल्ला ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिख के कहा कि भारत फ्रजाइल 5 नहीं, फ्रजाइल 2 में है तुर्की के साथ। ये बात सुरजीत भल्ला, जो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर है, उन्होंने लिखी है। सुभाष चंद्र गर्ग, ये नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त सचिव रहे हैं, उन्होंने भी डेक्कन हेराल्ड में लेख लिखकर यह कहा है कि इंडिया इज द मोस्ट वल्नरेबल इकोनॉमी। अरविंद सुब्रमण्यम, जो 3 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि वक्त आ गया है जब भारत को अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप को बदलने की जरूरत, यानी वो सीधे नहीं कह रहे लेकिन साफ तौर कह रहे हैं कि वित्त मंत्री को बदलने की जरूरत है। सुरजीत भल्ला ने जो आंकड़े दिए हैं वो आंख खोलने वाले आंकड़े। बार बार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। सुरजीत भल्ला ने कहा है कि इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ इज 9th, यानी जीडीपी ग्रोथ के टर्म्स में 9th, 9वें नंबर पर है। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ 8वें नंबर पर है, और पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ यूएस डॉलर में 16वें नंबर पर है। अगर इसके बावजूद भी अगर हम चौंके जगते नहीं है, सुभाष चंद्र गर्ग ने क्या कहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा है कि सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक कि जो भारत की जो जीडीपी काउंटिंग की जा रही है, जिसमें इन्फ्लेशन को 1% कहा जा रहा है और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को 8.6% कहा जा रहा है, उसके आधार पर कहा जा रहा है 7.6% की जीडीपी ग्रोथ है, बोला ये फॉल्टी है। ये जो जो जो इस्तेमाल किया जा रहा, फिर कहते हैं कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक शोज ग्रोथ ओनली 4.2%। अरविंद सुब्रमण्यम ने लेख लिखकर कहा है कि भारत का जो डेटा है ये डाउटफुल डेटा है, स्ट्रक्चरल सीरियस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर पा रहा है। अब मैं तो नहीं कह रहा हूं ये बात, अरविंद सुब्रमण्यम जो सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, सुभाष चंद्र घोष जो सरकार के वित्त सचिव रह चुके हैं, सुरजीत भल्ला जो सरकार के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में है, ये उनके आलोचक नहीं है, ये उनके शुभ चिंतक है और कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम है ये। और हाल में मोन्टेक सिंह अहलुवालिया को भी अगर आप सुन लीजिएगा, जो दरअसल लंबे समय तक जब भारत का आर्थिक सुधार हो रहा था, बोला के शेप की ग्रोथ है लेकिन धनी धनी बढ़ते जा रहे हैं और जो गरीबों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
1: के शेप ग्रोथ का जिक्र सिद्धार्थ जरा भी इससे पहले कर रहे थे,
3: क्या हिंदुस्तान को के शेप की ग्रोथ चाहिए क्या, कि जहां बिलियनर्स की संख्या बढ़ती जाए और गरीब 80 करोड़ लोगों को आपको खाना खिलाना पड़े।
1: लेकिन जरा जल्दी से मुझे यशवंत देशमुख हमारे साथ जुड़े, उनसे यह प्रतिक्रिया जाननी है, क्योंकि यह मुद्दा अतुल लोंडे पाटिल भी इससे पहले उठा रहे थे। यशवंत जी, और क्योंकि इस पूरे सर्वे के कर्ता कर्वेता यशवंत जी है, तो उनसे ये सवाल पूछना मेरे ख्याल से वाजिब होगा। यशवंत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तीन पैरामीटर्स जिसके आधार पर अगर हम यानी सरकारी आंकड़े एक अलग होते हैं, इकोनॉमी के आंकड़े एक अलग होते हैं, लेकिन लोगों के परसेप्शन के आंकड़े जो आपके इस सर्वे के जरिए हम देश के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, पहला आंकड़ा 2014 के बाद आपकी आर्थिक हालात की स्थिति कैसे बदली है, सुधरी है कहने वाले महज 34.2% है, वैसे ही रही 30%, बिगड़ गई 31.1%, यानी 60% लोगों के आर्थिक स्थिति में सुधार या तो नहीं हुआ है या तो घटी है, वो कह रहे हैं। रोजमर्रा खर्च कितना बड़ा है, खर्च मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, 65% लोग इसके बारे में कह रहे हैं, और उससे भी ज्यादा जिसका जिक्र मैंने पहले किया था कि एनडीए की आर्थिक नीतियों का सबसे ज्यादा फायदा बड़े व्यापारियों को 55%, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ऐसा क्यों समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां शानदार रही, 47% लोग अभी भी सोचते हैं कि उनकी नीतियां शानदार रही, ये फर्क कैसे लग रहा है?
4: मेरे ख्याल से कंटेक्स्ट में देखते होंगे, कंटेक्स्ट उसमें यह है, देखिए आप आंकड़े जब सवाल पूछते हैं, अगर हम अतुल जी से सवाल पूछ रहे हैं उसी इंटरव्यू में वो कह रहे हैं एक्स वाई और जेड, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि अतुल जी एक्स और वाई तो सच बोल रहे हैं लेकिन जेड झूठ बोल रहे हैं। हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते आर्ग्यूमेंट्स में, तो कंटेक्स्ट हर जगह देखना पड़ेगा। कंटेक्स्ट उसमें यह है, हम लोग कोविड का कंटेक्स्ट देखते हैं, उसके कंटेक्स्ट में देखते हैं अपने तरीके, लेकिन एक सवाल और भी है जो हमारे ट्रैकर में होता है, जिसमें अक्सर हम लोग उसमें ये पूछते हैं कि भाई आपके हिसाब से देश सही दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, आगे जा रहा है, आपकी जिंदगी कंटेक्स्ट में क्या है, कि देश तो आगे जा रहा है, मेरी जिंदगी खराब है, मैं आगे जा रहा हूं लेकिन देश की स्थिति खराब है, हम दोनों की स्थिति अच्छी है, हम दोनों की स्थिति खराब है। देश में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसका ये मानना है कि देश तो बहुत आगे जा रहा है लेकिन मेरी व्यक्तिगत स्थिति खराब है, ठीक है ना। अब मेरी व्यक्तिगत स्थिति खराब है इसके लिए मैं सरकार से नाराज हूं, लेकिन देश अगर आगे जा रहा है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं उस बात के लिए अप्रिशिएट भी कर रहा हूं, तो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। कंट्राडिक्शन हमारी आपकी समझ का होता है, क्योंकि हम लोग ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधी खाली है ये अपनी सुविधा के हिसाब से पिक करते हैं, यही हमारा काम होता है जब हम राजनीति में होते हैं। पत्रकार का काम है ये बताना कि ग्लास आधा भरा भी है और आधा खाली भी है। तो इसलिए जफर इस्लाम साहब और अतुल भाई के बीच की जो लड़ाई है उसमें पड़े बगैर मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों की नाराजगी या परेशानियां अपनी जगह पे हैं, निश्चित तौर पर है, और उनको रीड करना ये सत्ता पक्ष का भी काम है, विपक्ष का भी काम है। और गंभीरता से अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें सरकार को परेशान करने वाले बहुत सारे आंकड़े हैं, एक तो नहीं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि ये 12 हफ्ते पिछले जो हैं साहिल, ये इस सरकार के 12 सालों पे भारी पड़े हैं।
1: और कई बार ऐसा ही होता है, दो महीने में, एक हफ्ते में, कई बार 5 दिन में सरकार का पूरा किया कराया काम पर पानी भी फेर सकता है, ये भी बात कई बार हमने देखी हुई है।
4: अगर आप 3 महीने पहले ये सर्वे कर रहे होते, जिस समय पश्चिम बंगाल की जीत के बाद में भारतीय जनता पार्टी हर जगह बम बम कर रही थी, तो उस समय इन आंकड़ों पे कोई, उस समय कोई ये कह नहीं सकता था कि 3 महीने बाद में इस तरीके के भी नाराजगी के आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हुई हैं, समझने की बात है। और एक बात और भी यहां बहुत साहिल समझना बहुत आवश्यक है, आशुतोष इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ज्यादा जेंजी की बात हो रही है
0: साहिल, मुझे 30 सेकंड देना
4: है ना साहिल, बहुत ज्यादा जेंजी की बात हो रही है, जेनेक्स की बात कोई नहीं कर रहा है, जेनेक्स यानी उस जेंजी के माता पिता। और पिछले 3-4 महीने में जो कुछ भी हुआ है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको कुरेदेंगे तो आप पाएंगे कि इस सरकार की जितनी मिट्टी पलीद यूजीसी के चलते हुई है बिना जाने अनजाने, उतनी किसी और मुद्दे से नहीं हुई है। क्योंकि ये जो जेनेक्स है ये उसने 89 और 90 की राजनीति सड़क वाली मंडल कमीशन वाली देखी है, झेली है, वो उसको आत्मसात करके अपनी जिंदगी बनाने में निकाल के कामयाब हुआ। ये इस जेंजी को अभी आप पूछेंगे, यूजीसी का फुल फॉर्म नहीं पता होगा 100 में 90 को साहिल, लेकिन वो जो जेंजी है उसने कहा कि मंडल के बावजूद हमने अपनी जिंदगी उसमें से नेविगेट करते हुए निकाली।
1: हम जब ये बात कर रहे हैं यशवंत जी, हम ये जब बात कर रहे हैं, अभी अभी जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक जो उत्पादन वृद्धि का दर जो है, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि का दर, वो भी घटा है पिछले 8.8% के मुकाबले। इस बार का दर, वृद्धि दर जो है 6.7% हो गया है। तो ये इस वक्त की स्थिति है।
4: आंकड़े दो तरीके के होते हैं। एक आंकड़े जो क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट लोग बताते हैं, जिनका नेतृत्व तो हमारे आशुतोष भाई भी कई बार लोग करते हैं, और एक आंकड़े हैं जो जनता बताती है, जो मैं बता देता हूं। आप अगर जनता को
1: जल्दी से, यशवंत जी एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहिए, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे चाहिए।
4: एक चीज बता दूं,
1: क्या 2004 में
4: जनता नहीं समझती,
1: क्या 2004 में जिस तरीके से शाइनिंग इंडिया की बात की, दरअसल ये सवाल मैंने आशुतोष को भी पूछा था, शाइनिंग इंडिया की बात चल रही थी, लेकिन उस वक्त लोगों के मन में परसेप्शन कुछ और था इकोनॉमी को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, क्या वही स्थिति अभी भी यहां पर दिखाई दे रही है? यशवंत जी जल्दी से जवाब, उसके बाद अतुल लोंडे।
4: 2000 और 2024 के बीच में बहुत गंगा बैठ चुकी है, यमुना भी बैठ चुकी है। मैंने जिस सवाल में वापस आपके उस पर बजाऊंगा कि 2024 से इस मामले में ये मसला अभी अलग इसलिए है कि लोग ये कहते हैं कि मैं वाइड स्प्रेड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मैं देख पा रहा हूं, जनता ये कह रही है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में,
1: लेकिन मेरे मुझे क्या,
4: मेरी जाति जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कत,
1: मुझे क्या, ये सवाल है। अतुल लोंडे पाटिल,
0: नहीं ऐसा है कि मेरे 4-6 पैरामीटर्स में से 5 पैरामीटर्स मेरे खिलाफ है, लेकिन फिर भी मोदी जी ग्रेट है, ये एक तरह का सर्वे। अब उनको ज्यादा समझता है मुझसे, मैं उसका ये नहीं करूंगा, लेकिन वेरिएबल्स में जो दिखता है वो तो यही सीधा रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब छात्रों ने क्या किया, ब्रांड पूरा ध्वस्त कर दिया। अब जेन एक्स और मिलेनियल्स, ये पिताजी, ये इनके माता पिता है, और इनको ही उनकी फीस देनी पड़ती है, और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ छात्रों को तकलीफ होती है, जेन एक्स को और मिलेनियल को नहीं होती है। ये एक अलग तरीके की बात है, ये ब्रांड बचाने की कोशिश है मुझे लगता है। अभी देखिए, इन्होंने कहा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन भी होता है सैयद भाई, लेकिन मुझे बताओ, 70 रुपए का तेल 170 से 200 रुपए तक हो गया है, लेकिन इन्फ्लेशन तो आपका कम हुआ है। आपके यहाँ 112 डॉलर प्रति क्रूड ऑयल था, प्रति बैरल, तो वो तो 89 और 50-18 तक नीचे गया था एवरेज।
1: कुल मिलाकर इकोनॉमी को लेकर लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मन में क्या परसेप्शन है, वही हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। एक और एक इम्पोर्टेंट बात, 2047 में विकसित भारत का सपना, 41% लोग अभी भी मानते हैं कि हाँ विकसित भारत का सपना पूरा होगा, लेकिन वो यात्रा पूरी करते समय लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उस बात को लेकर भी सरकार को कहीं ना कहीं गंभीरता से सोचना होगा। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: उधर
1: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: पापा,
5: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
6: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
5: छक्का?
6: सब कैशलेस हो गया।
5: ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ।
8: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: इतिहास, धर्म और संस्कृति की त्रिवेणी पर सजेगी यूपी के विकास की महफिल। कुंभनगरी प्रयागराज में होगी बड़े मुद्दों पर बात। विकसित यूपी बैठक प्रयागराज जल्द आ रहा है सिर्फ यूपी तक पर।
3: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
4: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
5: चीन बना रहा वाटर बम, हर दिन घुट रहा पर्यावरण का दम, तबाही को न्योता विकास का ये कैसा मौका। बड़े बड़े बांध, कई कई किलोमीटर लंबी सड़कें, हजारों फीट ऊंचाई पर रेल लाइनें और सैकड़ों गांवों की बसावट। चीन ये सब कर रहा है हिमालय के उन इलाकों में जो पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। क्या विकास के नाम पर विनाश को न्योता दिया जा रहा है? नेपाल हादसे ने एक बार फिर ये सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ये सवाल सिर्फ नेपाल और भूटान जैसे देशों के लिए ही अहम नहीं है, बल्कि भारत के लिए भी उतना ही संवेदनशील है, जिसकी सरहदों के बेहद पास चीन कई सालों से निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर अंजाम देता रहा है। BRI यानी द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की वो महत्वाकांक्षी परियोजना है जो करीब 13 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मद्देनजर लॉन्च की गई थी। इसी के तहत चीन ट्रांस हिमालयन नेटवर्क के जरिए तिब्बत से काठमांडू तक रेल लाइन बिछाना चाहता है, लेकिन इस बाढ़ के बाद इस प्रोजेक्ट पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये रेल लाइन दुनिया के सबसे संवेदनशील और भूकंप संभावित इलाके से गुजरेगी। जानकार काफी वक्त से ये आशंका जता रहे हैं कि भारी बारिश और भूस्खलन के दौरान ये रेल नेटवर्क कभी भी ध्वस्त हो सकता है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इसके लिए सुरंगों और पटरियों के बनाने से हिमालय का संवेदनशील इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो जाएगा और हर साल बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। चीन तिब्बत में बहने वाली नदियों पर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम यारलुंग सांगपो बना रहा है, जिससे ब्रह्मपुत्र नदी से लगे इलाकों में खतरा बढ़ रहा है। ये भारत और नेपाल दोनों के लिए एक बॉर्डर बम की तरह है। इसके अलावा तिब्बत के बेदोग में चीन के सुपर डैम प्रोजेक्ट को भी वाटर बम कहा जा रहा है। करीब एक साल से इसका निर्माण चल रहा है और करीब 150 अरब डॉलर की लागत से अगले 8 सालों में इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत के 2 पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश में बाढ़ का खतरा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। गिरोंग पोर्ट और चीन नेपाल हाईवे के बनने से हो रही लैंडस्लाइडिंग और बाढ़ से भी इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत भूटान और नेपाल सीमाओं के पास चीन लगातार च्याओकांग यानी समृद्ध गांव बसा रहा है। इनकी तादाद 600 से ज्यादा हो चुकी है। एक बड़ी दिक्कत अचानक पानी छोड़ने की भी है और कई बार ये आरोप लगते रहे हैं कि चीन बिना पूर्व चेतावनी के अपने बांधों से पानी छोड़ देता है, जिससे नेपाल के तराई, भारत के असम, अरुणाचल और बिहार के इलाकों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। नेपाल से भी अब ये मांग उठ रही है कि पहाड़ों की संवेदनशीलता और बार बार हो रहे हादसों को देखते हुए बेहतर तालमेल किया जाना बेहद जरूरी है। चीन सीमावर्ती इलाकों और पड़ोसी देशों में जिस तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है वो किसी वाटर बम से कम नहीं है। नेपाल में ग्राउंड जीरो से श्वेता सिंह और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्षी दल चीनी, गुड़, प्याज, सब्जी के दामों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई विरोध का प्रदर्शन ऐसा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक एक किलो चीनी उपहार के रूप में भेंट कर दी।
1: शक्कर को तोहफे के रूप में आपने क्यों चुना, क्योंकि आमतौर पर लिफाफा दिया जाता है बहनों को?
2: शक्कर के भाव जो किसी जमाने में 20-25-30 थे, आज 70-75 हो गए।
0: शक्कर के भाव से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। इस बीच विपक्ष ने तमाम आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए। चीनी एक महीने में 20%, गुड़ 15 दिन में 25%, चाय पत्ती 2 महीनों में 20%, प्याज 1 महीने में 45%, हरी सब्जियां 2 दिनों में 30%, धनिया 15 दिन में 100%, और ये सिलसिला थमता ही नहीं। हाँ, प्याज की महंगाई का उपाय सरकार ने जरूर तलाश लिया। नासिक से 450 टन से ज्यादा प्याज लेकर प्याज एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से सड़क मार्ग से प्याज की सप्लाई चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे दूसरे बाजारों तक की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ प्याज की महंगाई का नहीं, त्योहारी सीजन में चीनी की महंगाई का भी मुद्दा है। विपक्ष चीनी की महंगाई को लेकर एथेनॉल वाला डबल अटैक कर रहा है।
3: ये बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वहीं सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है, क्या मिलावट नहीं कर सकते? लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है, एथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा।
4: चीनी घोटाला तो जरूर हुए है, चीनी घोटाला होने के चलते और बाजार में सारे चीनी के दाम में आग लग चुके हैं, तो सारे गन्ने जब इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो चीनी बनाने के लिए गन्ने कहाँ मिलेगा?
0: हालांकि चीनी की महंगाई का एथेनॉल कनेक्शन सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है, पर महंगाई का शोर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं। पिछले साल इसी अगस्त महीने की तुलना में देखा जाए तो अगर 41 रुपए किलो की चीनी 63 रुपए किलो है तो 40 रुपए का गुड़ 66 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो की चाय पत्ती 276 रुपए किलो है, 27 रुपए किलो वाला प्याज 55 रुपए किलो है, 140 रुपए का लहसुन 250 रुपए किलो में है, पेट्रोल 94.77 रुपए से 7.35 रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 14.53 रुपए महंगा होकर 102.15 रुपए प्रति लीटर का मिल रहा है, सीएनजी का दाम 76.09 रुपए से 6 रुपए ज्यादा बढ़कर 83.09 रुपए हो चुका है, रसोई गैस 853 रुपए से 89 रुपए बढ़कर 942 रुपए। वैसे चीनी की महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच चीनी उत्पादक संघ ने दावा किया है कि अगले हफ्ते तक चीनी के दाम स्थिर हो जाएंगे, लेकिन प्याज और बाकी सब्जियों के दाम की अस्थिरता का इंतजार देश को अब भी बना हुआ है।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ, बने रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नेपाल त्रासदी में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 587 लोगों की गई जान, करीब 1000 लापता। काठमांडू से दिल्ली लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेपाल में फिर जल विस्फोट की आशंका, तिब्बत में एक उफनती झील से रिसाव शुरू, त्रिशूली और भोटेकोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। पेपरडी के आरोपों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एनटीए में 2 निदेशक और 1 जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति, अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में लगा हल्का ब्रेक, जून में 8.8% के मुकाबले जुलाई में 6.7% दर्ज, सरकार ने जारी किया आंकड़ा। देशभर में रक्षाबंधन की रौनक, बच्चियों से राखी बंधवाकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बंधवाया रक्षा सूत्र, प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ राहुल का पोस्ट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: And that's our focus here. I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
3: RSS का जो capture है हिंदुस्तान के system पर, दीमक का काम RSS ने किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खोखला कर दिया है।
4: सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से।
0: न्यूयॉर्क में भागवत बोलेंगे, भारत तक शोले भड़केंगे। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। इसी महीने मुंबई में जेन जी से संवाद के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पहला बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क में होने जा रहा है। कल हो रहे इस कार्यक्रम को लेकर आरएसएस ने जहां बड़ी तैयारियां की है, वहीं इसे लेकर राजनीति गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर 21 सवाल पूछे। अखिलेश यादव के सवाल आरएसएस के स्वदेशी से लेकर कथित सांप्रदायिकता, कथित सीक्रेट्स जैसे मसलों पर है। अखिलेश यादव को ये सवाल पूछने का मौका इसलिए मिला क्योंकि इस कार्यक्रम को जो आयोजन कर रहे हैं, करने वाला वाली संस्था है, क्योंकि कार्यक्रम के जो आयोजक हैं अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट इन डायलॉग, उनका एक्स अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया था। अभी अकाउंट बहाल तो हो चुका है लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी भी मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको मैं रुकवा नहीं सकता क्योंकि ये हम एक प्राइवेट इवेंट है। उधर कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में हिस्सा लेने वाले 2 सरकारी टीचर सस्पेंड हुए हैं। सोनिया गांधी की आत्मकथा के भारत में प्रकाशन पर अड़चन के बाद कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने आरएसएस को विवाद में घसीटा है। तो सवाल है आज संघ को लेकर, संघ की विचारधारा को लेकर। सवाल यह है कि आरएसएस पर विपक्ष का यह हंगामा क्या सिर्फ विचारधारा का विरोध कहा जा सकता है? मोहन भागवत के न्यूयॉर्क इवेंट पर हंगामा क्यों बरपा है? न्यूयॉर्क में भागवत बोलेंगे, भारत तक शोले भड़केंगे। इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं, चर्चा की शुरुआत करें, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इससे पहले कि हम अन्य मेहमानों से आपका परिचय कराएं, जल्दी से आपको पहले ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। न्यूयॉर्क में मोहन भागवत क्या बोलेंगे, उससे पहले वो वहां क्यों बोलेंगे, ये सवाल अमेरिका की सियासत से लेकर हिंदुस्तान की सियासत में गूंज उठा है। आरएसएस की विचारधारा के विरोध के नाम पर पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया।
2: You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and My mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
5: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
2: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
0: इधर भारत में अखिलेश यादव ने इवेंट के आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड फोरम का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने पर लिखा, विदेशों में जब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे। इसी के साथ अखिलेश ने 21 सवाल पूछ डाले। सवालों में शामिल था, स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश आखिर क्या लेने गए हैं, क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं, क्या भविष्य में वहां राजनीतिक प्रश्रय लेने की संभावना तलाशने गए हैं। वैसे अखिलेश यादव के सवालों की लिस्ट पढ़ी ही जा रही थी कि एक्स ने अहेड फोरम का अकाउंट बहाल कर दिया। इसके बाद अहेड फोरम ने एक्स पर लिखा, गुमराह विरोधियों का हम पर बॉट हमला हुआ जिन्होंने एक्स के एल्गोरिथम को प्रभावित कर हमारे हैंडल को ब्लॉक करवाने की कोशिश की। मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है। 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5000 लोगों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सल हार्मनी एंड यूनिवर्सल वननेस। आरएसएस ने इसे सर्वधर्म, मल्टीकल्चरल और विविधता वाला कार्यक्रम बताया है, जिसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आरएसएस से सीधे नहीं जुड़े हैं।
6: आदरणीय मोहन भागवत जी का जो आगमन हो रहा है और मैं भी उस कार्यक्रम में रहूंगा, तो वो एक संदेश लेकर हम आए हैं कि पूरी धरती एक परिवार है और उस धरती के हम सारे मनुष्य एक हैं, तो सभी के सम्मान और स्वाभिमान की हमको सजगता रहनी चाहिए। हम अत्यंत संवेदनशील प्राणी हैं, हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी वनस्पति का अहित हो, किसी भी प्राणी का, हम सभी को अपना मानते हैं।
0: मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर शुरू हुई सियासत के बीच कर्नाटक में आरएसएस पर फिर हंगामा मचा है। कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने वाले दो सरकारी स्कूल टीचर अन्ना साहेब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कर्नाटक में आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर संग्राम हो चुका है।
7: That's left to the education department. See, if somebody has complained and if the department thinks it's not fit to be participating, they will take action. And why should our employees take part in an unregistered organization?
8: This government showing a vengeance against the RSS. RSS is not a political outfit. So when the social organization and all the patriots of this country, so that any officer or anybody can join any organization, it which is a patriotic and the social organization.
0: RSS को लेकर लड़ाई सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशन पर सामने आए विवाद में भी RSS को घसीट लिया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के स्पष्टीकरण पर गौरव गोगोई ने लिखा, ये कितना कमजोर बयान है। पेंगुइन इंडिया को एग्जाम वॉरियर्स और RSS पर लिखी गई कई किताबें प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डरने लगे हैं कि भारत की जनता कोई किताब पढ़ लेगी। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद राष्ट्र प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, आलोक शर्मा जी राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए, विजय राठी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि निदेशक हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, पहला प्रश्न आप ही से है। वो कह रहे हैं अखिलेश जी कि स्वदेशी की बात करते हैं और बार बार विदेश जा रहे हैं, क्या मंशा लेकर वहां पर जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या वहां पर वो सीधा कह रहे हैं कि सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए संघ की तरफ से मोहन भागवत जा रहे
9: हैं। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा मेरे मोबाइल पे फोकस करें। इनको पता है कार्यक्रम का क्या थीम क्या है जो न्यूयॉर्क में होने जा रहा है मोहन भागवत जी का? द थीम इज यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन। बताइए दुनिया में कौन सा ऐसे संगठन है जो यूनिवर्सल वननेस को प्रोपोगेट करने की बात करते हैं? वो सिर्फ भारतीय संस्कृति कर सकती है जो ये कहती है सर्व खलमिदं ब्रह्म, जो कहती है सर्वे भवंतु सुखिना, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, और इसीलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए समस्या क्या है आज अमेरिका में भी, अंतर जानते क्या, वो अखिलेश जी को मैं बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो ये अंतर हुआ है कि वह योग जिसे 2013 में जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू किया था तो हो हल्ला मचाया था सेकुलरों ने कि नहीं साहब ये तो हिंदुइज्म का प्रतीक है, हिंदू धर्म का प्रतीक है, विरोध किया था। और जब प्रधानमंत्री जी ने उस योग को 177 देशों के समर्थन के साथ, जिसमें कि समर्थन नहीं था, दे बिकेम द सेकेंड प्रपोजल, जिसमें 40 से अधिक मुस्लिम देश थे, संयुक्त राष्ट्र संघ में योग दिवस मना, और इसी न्यूयॉर्क के जिस समय टाइम स्क्वायर के ऊपर कितने सारे लोगों ने योग किया और 177 देशों में लोग प्रभावित होते होंगे भारत से, उस भारतीय संस्कृति से, वो है यूनिवर्सल वननेस। और आज किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा, मैं बताना चाहता हूं, 1993 में स्वामी विवेकानंद की शिकागो वक्तृता के 100 साल पूरे हुए थे, एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था हम लोगों की तरफ से, एक एमपी नहीं आया था, एक कांग्रेसमैन नहीं आया था, एक कांग्रेसमैन का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आया था। आज पूरी की पूरा इंडिया कॉकस है, 125 से अधिक कांग्रेसमैन इंडिया के पक्ष में खड़े हैं। आज वो स्थिति में बदलाव आया है, क्योंकि समस्या क्या है कि भारत जब उभरता हुआ दिख रहा है तो वो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती। मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिस एक ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम स्कूल्स हो पूरी दुनिया में, विद्या भारती जो सरस्वती शिव मंदिर चलाता है, 30,000 है, दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड वो आरएसएस से वो लोग निकलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन कौन है, विश्व हिंदू परिषद, जिसमें कि आरएसएस के प्रचारक हैं। दुनिया में ट्राइबल्स में काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन कौन है, वनवासी कल्याण आश्रम, अदर देन क्रिश्चियन मिशनरीज जो कि कन्वर्जन के उद्देश्य से जाते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रधानमंत्री आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक रहे, और इन दोनों से डर जानते हैं क्यों लगता है, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आके पोखरण विस्फोट कर दिया था, और उसके बाद विपक्ष को लगा और विरोध में बैठी हुई वैश्विक शक्तियों को लगा कि आप तो भारत उभर आएगा, लगे सैंक्शन, हम नहीं झुके, और 2003-04 आते आते इंडिया सक्सेस स्टोरी, 2003-04 में हम करंट अकाउंट सरप्लस हुए, $100 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हुआ, और 2003 में हम चाइना से ट्रेड सरप्लस थे $1 बिलियन। अब मोदी जी आए, उन्होंने तो ले जाके एक नए डायमेंशन पे खड़ा कर दिया, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया, हमें डिफेंस प्रोडक्शन में दुनिया की एक महत्वपूर्ण ताकत बना दिया, और इसके साथ साथ भारत की जो वो छवि थी सॉफ्ट स्टेट की वो ओवर कर दी, टैरिफ में हम और चाइना सिर्फ दो ही नहीं झुके। तो मुझे लगता है जो जो ये उभार भारत का दिख रहा है त्यों तो पेट में बल पड़ रहा है उन भारत विरोधी शक्तियों के, जो मतलब स्वाभाविक है। और एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी आइडियोलॉजी से आज तक चेंज नहीं किया, और संघ का विचार एक पंक्ति में कह दूं, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल, हमने तो जलना सीखा है, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है।
0: ठीक है, इस रिश्ते पर पूछूंगी जो बीजेपी और संघ के बीच में, लेकिन आलोक शर्मा जी क्या दिक्कत है, अगर मतलब वहां पर तो आप देख रहे हैं पन्नू जैसे लोग हैं जो देश के खिलाफ आग उगलते हैं, सभी बोल रहे हैं, अगर वहां पर जा रहे हैं मोहन भागवत बोल रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? और दो टीचर्स इसलिए सस्पेंड हो जाएं क्योंकि वो संघ के मार्च में चले गए, ये तो दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा सामाजिक काम, शिक्षा का काम संघ कर रहा है, आरएसएस कर रहा है।
10: हमें दिक्कत इस बात से है कि जब आरएसएस के लोग विदेशों में जाते हैं और वहां पर सरेआम सड़कों पर उनका खुला विरोध प्रदर्शन होता है, लोग बैनर और स्टिकर्स लेकर मोहन भागवत का विरोध करते हैं, देश की छवि खराब होती है, हम इस बात का विरोध करते हैं। हमें जाने पे आने पे किसी का कोई वो नहीं है, हमें उनकी जो क्रियाकलाप है उनके ऊपर सख्त आपत्ति है। अब इन्होंने आरएसएस की बात की, आरएसएस वो ऑर्गेनाइजेशन है सबसे बड़ा है और पता नहीं क्या क्या विश्व बंधुत्व और कौन कौन सी बात कर रहे हैं, और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता है वो आरएसएस। आज अपने बड़े महल बना सकता है लेकिन अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकता है। वहां पर भी प्रोग्राम अगर करने वाली कोई संस्था है, ये तो कह रहे हैं यूनिवर्सल वननेस, ऐसा ही कहा, और ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, अमेरिकन हिंदूज। अरे भाई अमेरिकन इंडियंस कर देते, आप वहां पर भी हिंदुस्तान के जो लोग रहते हैं उनको भी हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। आप कहते हैं विश्व हिंदू परिषद सबसे बड़ा संस्थान है, अरे भाई वो संस्थान है जिसने राम मंदिर के यहां डकैती डाली है, चोरी की है, पूरे विश्व के अंदर हमारी कितनी थूथू हुई है कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर प्रभु राम के घर को लूट लिया, कितनी हमारी इंसल्ट हुई है पूरे विश्व के अंदर, वो भी आरएसएस साथ ही लेकर गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 6 साल के बच्चे से डर गए बिहार में, ऐसी पार्टी है आपकी। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो 6 साल का बच्चा उसको अरेस्ट करा दिया। आप लोग भी बात करेंगे, आज हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लूट लिया, कितनी हमारी इंसल्ट हुई है पूरे विश्व के अंदर, वो भी आरएसएस साथ ही लेकर गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 6 साल के बच्चे से डर गए बिहार में, ऐसी पार्टी है आपकी। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो 6 साल का बच्चा उसको अरेस्ट करा दिया। बीजेपी के लोगों ने मिलकर प्रभु राम के घर को लूट लिया, कितनी हमारी इंसल्ट हुई है पूरे विश्व के अंदर, वो भी आरएसएस साथ ही लेकर गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 6 साल के बच्चे से डर गए बिहार में, ऐसी पार्टी है आपकी। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो 6 साल का बच्चा उसको अरेस्ट करा दिया। आप लोग भी बात करेंगे, आज हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लूट लिया, कितनी हमारी इंसल्ट हुई है पूरे विश्व के अंदर, वो भी आरएसएस साथ ही लेकर गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 6 साल के बच्चे से डर गए बिहार में, ऐसी पार्टी है आपकी। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो 6 साल का बच्चा उसको अरेस्ट करा दिया। आप लोग भी बात करेंगे, आज हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। अरे भाई, अगर हिम्मत हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति से वहीं से खड़े होकर पूछना, मोहन भागवत जी, वैसे तो आप लोगों ने हमेशा से अंग्रेजों के बोलिएगा कि राम मंदिर में चोरी करने वाले लोग भी आरएसएस के थे, भाजपा के थे, और वो धन कहां चला गया? 1000 करोड़ रुपया प्रभु राम का आपने कर लिया, यहां पर बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 94,000 स्कूल बंद कर दिए, आप शिशु मंदिर की बात करते हैं। मोदी जी के आने के बाद 94,000 स्कूल इस देश के अंदर बंद हुए, चाहे वो राज्यों में हुए, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, आप शिशु मंदिर 1000 स्कूल इस देश के अंदर बंद हुए, चाहे वो राज्यों में हुए, मैक्सिमम राज्यों में आपकी सरकार है, आप शिशु मंदिर को प्रमोट करते हैं। अरे सुनिए भाई, शिशु मंदिर को आप प्रमोट करते हैं क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, आप एक तरफा यूनिवर्सल आइडियोलॉजी अपनी जो है उसको थोपना चाहते हैं देश के ऊपर।
0: यही तो हमारी, यही से चर्चा के लिए चलेंगे। लेकिन अन्ना साहब, देशमुख और जोशी जी ने क्या गलत किया था?
10: देखिये, मैं समझता हूँ एक अनरजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड संस्था है पूरी तरह से, अगर संस्था अपना
0: नौकरी से सस्पेंड
10: नहीं, सस्पेंड किया गया है उन्होंने। अभी मैं जो बयान सुना है आपने, पूरी तरह से सस्पेंड की तो बात, हालत यह है कि
0: वापस कर रही है आलोक जी। एक लेखपाल ने, अंजना
10: जी, एक लेखपाल ने केवल एक पोस्ट डाल दी थी सोशल मीडिया पे उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी के ऊपर, कि चीनी जो है उसके दाम बढ़ गए हैं, उसी के ऊपर सस्पेंड कर दिया। उसका क्या होगा? उसके ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है। हम फिर कह रहे हैं, अगर उन्होंने गलत नहीं किया होगा, कोई उनकी गलत चीज संलिप्तता नहीं होगी आरएसएस के उसमें, तो मैं समझता हूं उसके ऊपर विभाग अपने आप जांच करेगा। लेकिन एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं, हाँ, तो आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि तनख्वाह तो सरकार की लेंगे और काम भाजपा के लिए करेंगे, ये नहीं चलेगा।
0: चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है जितने बाकी लोग भी कांग्रेस शासित राज्यों में सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि इसका क्या आशय है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, वो उनका भी पॉइंट अपनी जगह पर सही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई वो अनऑर्गेनाइज मतलब अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर वो काम कर रहे हैं, मतलब नौकरी सरकार के लिए कर रहे हैं लेकिन काम कर रहे हैं संघ और बीजेपी।

0: लोगों की, अब इसे क्या कहा जाए, शब्द थोड़ा खराब लगता है, मूर्खता कहा जाए, क्या कहा जाए भाई, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन था तो आपने 3 बार प्रतिबंध कैसे लगाया? तो अदालत में तो लेके जाना पड़ता है ना कि साहब दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, ये उनका ऑफिशियल स्टेटस है और हमने बैन किया है। और लास्ट बैन वो तो हमें याद है 16 दिसंबर या 17 दिसंबर 1992 को लगा और बाहरी ट्रिब्यूनल की फाइनल रिपोर्ट आई, क्योंकि रूल ये है कि 90 दिन के अंदर आपको ट्रिब्यूनल में ले जाके साबित करना पड़ता है कोर्ट में कि बैन था, और कोई जाके चेक कर ले नेट पे, अभी ट्रिब्यूनल ने कहा, बाहरी ट्रिब्यूनल ने, कोई आधार नहीं बनता और संघ पे प्रतिबंध खारिज हुआ। तो मैं प्रियांक खड़गे जी से लेके सबसे पूछना चाहता हूं, भाई साहब वो प्रतिबंध लगाया किस पे था, हवा में? अब मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे समस्या क्या है। ये कहते हैं इनके जो केरल के सीएम है वी सतीशन, अभी जब पिछले बार में नेता प्रतिपक्ष चुनाव दौरान क्या बोले, जमाते इस्लामी से हमें साथ लेने में कोई समस्या नहीं है। पीएफआई की रैली अशोक गहलोत ने निकलवाई अलवर में संभवता। अब याद करिए 2023 के चुनाव में पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि 2018 के चुनावों में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन था जिसका कांग्रेस ने कभी खंडन नहीं किया। विदेश में जाकर राहुल गांधी कहते हैं मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट आरएसएस इज कम्युनल, पीएफआई इज सेकुलर, आरएसएस इज कम्युनल, सिमी इज अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और वो आरएसएस जिसने कि देश के लिए मैंने कहा हर क्षेत्र में जाकर इतना योगदान दिया, वो इनको कम्युनल नजर आ रही है। और मैं लास्ट में कहना चाहूंगा अमेरिका को भी समझना चाहिए, अमेरिकन्स आंखें खोलो और कान खोल के सुनो, 9/11 के 24 साल के अंदर ज़ोरान ममदानी जाकर न्यूयॉर्क का मेयर बन गया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, एक बताइए जो वहां पे आतंक के आरोपियों थे उनके खिलाफ इन्होंने कभी बोला हो, खालिद शेख, मोहम्मद अट्टा, 9/11 करने वाले, बताइए लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में हमले करने वालों पे, सिडनी और उनपे करने वालों पे कुछ नहीं बोला। अमेरिका को समझना होगा, यदि भारत से शिक्षा ली ठीक है, अन्यथा जो कुछ अमेरिका में दिख रहा है आप देखिए कि आगे अमेरिका किस मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रहा है।
1: अमेरिका इसको डाइवर्सिटी कहता है। एक सेकंड सवाल तो सुनिए, देखिए दूसरे तरफ का भी आर्ग्यूमेंट सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: वो कहते हैं डाइवर्सिटी है भाई, वोट करके बने ना अगर ममदानी बने तो। और ये जो अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग है, उस पर आलोक जी कह रहे हैं कि भाई ये इंडियंस की बात नहीं है, ये एक धर्म विशेष की बात है जिसको प्रोजेक्ट और मैग्निफाई करने की कोशिश।
0: बिल्कुल,
1: दोनों पर जवाब।
0: जो आपने कहा कि हिंदूज की बात, तो याद करिए 2016 में जब ट्रंप ही वॉज रनिंग फॉर हिज फर्स्ट प्रेसिडेंशियल, उन्होंने रिपब्लिकन इंडियन कोलिशन में आने से मना कर दिया था और वो रिपब्लिकन हिंदू कोलिशन में गए थे। और ये डाइवर्सिटी ने अमेरिका को वहां पहुंचाया है कि खुद उनका प्रेसिडेंट बोलता है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी एक सीधी स्वीकार्यता है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, अब अमेरिका ग्रेट नहीं रहा। इस डाइवर्सिटी के खाल में छुपे हुए डिजास्ट्रस डिटोनेटिंग एलिमेंट्स को अगर अमेरिका नहीं पहचान पाएगा, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं भारत ने इन चीजों को पहचाना है, भारत की जनता ने मैच्योरिटी दिखाई है, तो वो बेहतर स्थिति में रहेगा, अन्यथा मागा से कहां पहुंचेगा ये देखना।
1: फिर मैं बाकी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा।
2: अखिलेश जी ने लंबा ट्वीट किया, इस पूरी डिबेट में भी केवल हिंदू मुसलमान ही फोकस है, इसके आगे कुछ नहीं। हम कह रहे हैं आरएसएस की सोच में गड़बड़ है। एक आरएसएस का, क्योंकि केरल का नाम लिया, केरल के ही इनके एक आरएसएस के लीडर ने कहा कि अगर मैं वहां होता तो जैन जी को गोली मार देता। जिस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की ऐसी सोच हो, जिनका ब्रेन वॉश हो, उसको मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की आवश्यकता है कि वो कर क्या रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, उसको सांसद जी को सलाह देने की जरूरत नहीं। ये वही अमेरिकन थे जिनको हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और आप लोग हवन करते घूम रहे थे, आज आप कह रहे हो कि साहब वो भी सुधर जाएं। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर कहीं पर सुधरने की जरूरत है तो आरएसएस को है। हमने अपने गृहमान में झांकने की देखने की आवश्यकता है। हम अपने तमाम जो आंकड़े हैं देश के सरकार के उन पर चर्चा करें, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर नहीं बोला कि हथकड़ियां बेड़ियां लगकर आई थी, उस पर बोल दो,
1: बोल दीजिए।
0: हाँ, ये बताइए,
2: ऑफिशियल एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया।
0: सुनिए
2: बताइए,
0: ये बताइए, ये तो इलीगल्स को लाए हथकड़ियां बेड़ियां पहन के, ये जो लीगल इमिग्रेंट्स जाते थे उनके कपड़े उतरवाए जाते थे कि नहीं? माय नेम इज खान किसके जमाने में बनी थी?
2: देता हूं उस पे
0: कि शाहरुख खान के कपड़े उतरवाए गए। और सुनो, शाहरुख खान तो खाली फिल्म स्टार है भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के फ्रिस्किंग की गई, उनका कोट उतरवाया गया और ये कुछ नहीं बोले पार्लियामेंट में।

0: ब्रिटेन में वर्जिनिटी टेस्ट होता था ना, भारत की लड़कियों का ना, और वो भी बगैर डॉक्टर के होता था, और तब तो आयरन लेडी भारत में शासन कर रही थी, चुप रहे, इसलिए छोड़ी उस बात को।
1: आज मेरा केवल ये कहना है कि किसी भी देश का क्या सिक्योरिटी का रूल है वो भारत डिसाइड नहीं कर सकता, पहली चीज। मेरा सवाल सीधा ये है कि हमारे देश के नागरिकों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर भेजा गया क्या पाकिस्तान,
0: हमारे देश के नागरिकों के कपड़ों पर लाए गए जो लीगल थे, लीगल थे,
1: मुझे
0: जो लीगली जा रहे थे,
1: क्या पाकिस्तान, एक मिनट, क्या पाकिस्तान के लोगों को हथकड़ियां बेड़ियां लगाई गई, क्या उनको डिपोर्ट किया गया, नहीं, क्या बांग्लादेश वालों को किया गया, नहीं, क्या किसी दूसरे देश को किया गया, नहीं,
0: अरे तमाम देशों को किया गया, पता नहीं,
1: 56 इंच के सीने की कमजोर घुटने टेकने वाली सरकार थी इसलिए उनकी हिम्मत हुई।
2: विजय राठी
1: उस पर नहीं बोलेंगे,
2: विजय राठी
3: जी,
2: आखिर अखिलेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब मोहन भागवत को न्यूयॉर्क में बोलना नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है उनका, क्या सबसे बड़ा सवाल क्या है?
3: नहीं देखिए अंजना जी,
2: सीधा पूछे सुधांशु जी,
3: नहीं मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, अभी मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुन रहा था, आरएसएस वाले जब कोई बड़ा नेता विदेश जाता है ना तो देश डरता ही है। अगर आप इतिहास उठाएं इनका, मैं अभी सुन रहा था इन्होंने बात करी यूनिवर्सल वननेस की, वननेस का सीधा सीधा मीनिंग होता है अनडिवाइडेड, जबकि जैसे अनडिवाइडेड हम वर्ड यूज करेंगे ये उसका उल्टा करते हैं, ये करते हैं डिवीजन। इनके मैं कुछ क्रियाकलाप बताऊंगा आपको। 1931 में बीएस मुंजे जी गए थे इटली में, क्या करने गए थे, क्या थीम थी, इन्होंने बताया अभी की आरएसएस की जो थीम थी भागवत जी की वो थी यूनिवर्सल वननेस, और उनकी थीम क्या थी उस समय, उनकी थीम थी डिसिप्लिन, कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां जो बेलीला होता है, एक बेलीला जिसमें कहते हैं कि जो बेनिटो मुसोलिनी थे वो यूथ जो था उसको प्रशिक्षण देते थे डिसिप्लिन का, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आकर के उस तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग तैयार करें उसको, और पार्कों में बैठा करके उन्हें क्या करें कि उनकी जो सोच है वो फासिस्ट बनाए, और फासिस्ट सोच क्या होती है कि कैसे राष्ट्र आपकी सोच को कंट्रोल करेगा, कैसे जब आप स्वतंत्रता से बोलेंगे तो कैसे आपको दबा दिया जाएगा, कैसे आपको यह समझना है कि एक्सट्रीम राष्ट्रवाद जिसमें लोगों को गोली मार दो, जिसमें लोगों को दबा दो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे गोडसे को सावरकर साहब ने प्रशिक्षित किया था और गांधी जी को मारा था। तो इनकी जो थीम होती है उस थीम के पीछे आप देखो जिसको इस देश ने भुगता, क्या क्या नहीं भुगता हमने, इन्होंने कही यूनिवर्सल वननेस की थीम लेकर के मोहन भागवत जी चले, लेकिन इन्होंने किया क्या, हमारे झंडे की थीम क्या है यूनिवर्सल वननेस, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने 50 साल 52 साल झंडे को नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब फ्रीडम फाइटर हमारे लड़ रहे थे वो भी वननेस था, पूरे देश को इकट्ठा करके लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनको भी डिवाइड किया, और उन्होंने किताब में लिखा था दी ये जो मल्टायर्स होते हैं, मल्टायर्स आर फेमस और ग्रेट बट नॉट आइडल। इन्होंने कहा कि जितने भी भगत सिंह है या चंद्रशेखर आजाद है जो मर रहे हैं ये हो सकते हैं फेमस हो, लेकिन ये हमारे देश का आदर्श नहीं हो सकते, इनकी किताब में लिखा। इनकी तीन दो किताबें आप पढ़ लो, बंच ऑफ थॉट्स, और आप पढ़ लीजिए इनकी वी और अवर नेशन हुड डिफाइंड, और बंच ऑफ थॉट्स में तो ड्रिफ्टिंग एंड ड्राफ्टिंग पूरा चैप्टर है, उस पर देखिए झंडे तिरंगे के बारे में क्या लिखा इन्होंने। तो हमारा जो डर है वो जायज है। दूसरी बात, इन्होंने योग को लेकर के बात की कि योग पे हमने विरोध किया, योग पे हमने कोई विरोध नहीं किया, उठाइए इनकी वीडियो, लेकिन हां इन्होंने इतना जरूर किया कि एक व्यक्ति को उठा करके 20,000 करोड़ से ऊपर का बाबा बना करके उसके सारे प्रोडक्ट इस देश में बिकवा दिए इस नाम पर पे कि योगा चल रहा है। बहुत सारी बातें सुधांशु जी ने कही, लेकिन आरएसएस से देश को खतरा इसी बात का होता है। क्यों विरोध हुआ उनका, 65 ऑर्गेनाइजेशन विरोध किया अमेरिका में 65, आप उसमें से जो यहां के ये कह सकते हैं विपक्ष के लोग हैं चलो उन्हें हटा दो, ये कह सकते हैं मुस्लिम संगठन है उसको हटा दीजिए, लेकिन 65 में कौन लोग हैं अमेरिकन्स भी, और क्यों कर रहे हैं उसका रीजन सुनिए। ये क्या करते हैं जब वैलेंटाइन डे आता, क्या करते हैं क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ के इनके लोग मारते हैं, क्या होता है जब 25 दिसंबर आता है क्रिसमस डे, इनके लोग क्रिश्चियन को पकड़ पकड़ के मारते हैं। हमने कहा जो बोगे वो काटना पड़ेगा, जब अमेरिका में जाओगे विरोध तो झेलना पड़ेगा, और जब कंटेंट आपका चलता है सोशल मीडिया पे तो आपका अकाउंट भी बैन होगा, क्योंकि देश दुनिया ये बात देखती है कि क्या चीज इस देश को परोस रहे हैं आप। लास्ट बात, आपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बोली, आप भी बहुत सारी चीजें छुपा जाते हैं, आपने उनके बारे में बात बोली कि पोखरण कर दिया ये कर दिया, आपने ये नहीं बताया कि जब वो भीड़ का हिस्सा थे और पुलिस ने पकड़ लिया था और उसके बाद उन्होंने मुखबरी की, उनके चाचा लीलाधर वाजपेयी जेल चले गए 2.5 साल, आपने ये नहीं बताया, ये बताना चाहिए। उस समय तो वो 23 साल के ही थे, मुझे लग रहा है 1942 की बात है। तो बातें जो काला अध्याय भी है ना वो भी आपको बताना चाहिए।
2: चलिए ठीक है सुधांशु जी,
3: लेकिन लास्ट दो सेकंड में मैं लास्ट कर रहा हूं। मुझे आप ये जरूर बताइएगा

0: आरएसएस की आप बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं और मैं दो लाइनें सुधांशु जी सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूं, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा इस देश में आरएसएस का योगदान क्या रहा। ये जो जंतर मंतर पे आपने चलाई गोलियां और जो ये जितने आतंकी हमले होते हैं आरएसएस और लेकर के, आपके लिए दो लाइन बोलता हूं। आप इतने विद्वान प्रवक्ता है लेकिन सरकार को इतना भी मत बचाइए, आरएसएस को सच्चाई बोलिए। मासूमों का खून बहा है बहने दो, झेलम में कानून बहा है बहने दो, कश्मीरी घाटी रोती है रोने दो, गांधी की लाठी रोती है रोने दो। हम दरबारों की गलती पे क्यों बोले, हम इन गलतियों पे अपना मुंह क्यों खोले। संसद में अपनी जय जयकार हो, आपकी मुट्ठी में भारत सरकार हो, इसीलिए गीत बोलूंगा दरबारों के, इसीलिए आरतियां गाऊंगा सरकारों की। ये आपका हाल है
1: सुधांशु जी, उसके बाद में
0: विद्वान प्रवक्ता कम से कम सच्चाई रखा जी।
2: आपने जो बोला स्टेप बाय स्टेप जवाब देता हूं। ये क्रिश्चियंस को कौन मारता है, केरल में फादर जोसेफ का हाथ किसने काटा था और उस पर कौन चुप्पी रख के बैठा था,
3: और ग्राम
2: अभी पिछले साल 2000
3: उड़ीसा ग्राम स्टेंस
2: आपने टर्न पे, हाँ
3: बिल्कुल, नहीं कौन था बताइए ना।
2: हाँ बताइए,
3: यही बता दीजिए,
2: बताइए ग्राम स्टेंस के समय किसी ने रिकमेंडेशन किया सीबीआई की, आपकी सरकार थी,
3: मुझे जीप में जिंदा किसने जलाया बताइए जरा।
2: आपने जो
3: बताइए जरा, क्या वो बीएचपी के लोग थे कि नहीं थे, वो
2: नहीं थे और इसीलिए आप सीबीआई को रिकमेंड नहीं कर पाए।
3: तो रिकमेंडेशन हुआ कि सीएम को आरएसएस के लोग
2: चिल्ला रहे हो,
3: क्या तरीका भाई,
2: कट्टरवादी लोग थे।
3: बताइए
2: किसकी थी 99 में,
3: बताइए बताइए ना, आगे बढ़िए।
2: अरे उड़ीसा सरकार किसकी थी बोलो,
3: सरकार किसकी थी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सरकार किसकी थी वो
2: सरकार कांग्रेस की थी।
3: अरे भैया आज आरएसएस के लोग अगर हमारे राज्य में जाकर दंगा फैलाएंगे तो क्या सरकार जिम्मेदार है? उस सभी को हमने दोष, तभी तो हमने
2: वही चिल्लाने
3: शुरू कर देते, टीचर्स को सस्पेंड किया, सस्पेक्ट है वो।
1: ठीक चलिए
2: भाई, देखिए क्या तरीका,
1: हाथ उठाइएगा बारी बारी से।
2: सरकार कांग्रेस की थी, सीएम गिरधर गोमान थे, उनकी जांच में कहीं आरएसएस पे कुछ नहीं निकला और डिमांड की गई सीबीआई को रिफर करो और तब तक कांग्रेस की सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि सीबीआई को रिफर करे। दूसरी बात, फिर चिल्लाना शुरू मत करिए,
3: कोर्ट का वर्डिक्ट
2: केरल में फादर
3: जोसेफ वाले मैटर में
2: क्या तरीका, केरल में फादर जोसेफ का हाथ काटा गया कोई बोला? अब सुनिए, मुनम्बम में जहां 100% क्रिश्चियन रहते हैं, उनकी जमीन जो थी 400 एकड़ वक्फ बोर्ड ने कैप्चर कर ली, उन्होंने सब सांसदों को लिख के भेजा, सारे क्रिश्चियंस ने, कि इसको अलग हटाइए, नहीं बोला। अब बताइए कैथोलिक जो चर्च फेडरेशन है केरला की, उसने कहा कि लव जिहाद है, कुछ नहीं बोला। अरे क्रिश्चियंस के लिए भी अगर खड़ी रही उनकी हकीकत में तो भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आपको एक फैक्ट बोलने
3: वैलेंटाइन पे कौन हरदम करता है, ये भी बता दीजिए भाई,
2: ये क्या तरीका है।
3: मैं तो केवल सवाल पूछ रहा हूं,
2: तरीका सवाल अपने टर्न पे पूछिए,
1: क्या तरीका है। बीच में उन्होंने नहीं बोला, आप भी थोड़ा संयम रखिए।
2: अब मैं कोट करता हूं,
1: हाथ उठाइएगा,
2: सुनिए सुनिए। आई वेंट टू आरएसएस कैंप इन वर्धा when founder Dr. Hedgewar was alive and Mr. Jamnalal Bajaj has taken me to here. I was very much impressed with their discipline and complete absence of untouchability, rigorous simplicity, and since then the Sangh has grown. I am convinced that this organization which inspired the ideals of service, kisne bola? Mahatma Gandhi ne 1934 ke Wardha Shivir ke baad 1947 mein bola hai, Complete Works of Mahatma Gandhi volume 89 page number 193. अब सुनो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, अरे चुप रहो भाई, शांति से चिल्लाइए, मैंने एकदम शांति से बोला था,
3: आपने बोला वो मैं बता दूंगा,
1: आप ये करने लगते हैं, मैं आपसे जवाब ले लूंगी।
2: And I am surprised to find the Swayamsevaks moving in absolute equality and brotherhood without caring about the caste of others. ये बाबा साहब अंबेडकर 1939। अब आइए जेपी आंदोलन से तो राठी जी की पार्टी निकली। जयप्रकाश नारायण 3 नवंबर 1977 पटना की रैली में क्या बोल रहे हैं, योर्स इज अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन विद इन द फोरफ्रंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस टुडे एंड यू हैव अ कैपेसिटी टू एंड द कास्टिज्म एंड वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ पुअर्स। ये किसने बोला, जयप्रकाश नारायण ने। अब सुनिए, दलाई लामा जी ने सबका पढ़ने लगूं, 10 जनवरी 2014 को दलाई लामा जी ने बोला, जनरल करियप्पा ने बोला 1959 में, जाकिर हुसैन ने 20 नवंबर 1949 को बोला, कोका सुब्बाराव जी रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी ने उन्होंने बोला, और तो और मदन मोहन मालवीय जी ने बोला, जस्टिस सिकंदर हयात, कैलाशनाथ काटजू जो इनकी सरकार में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री रहे नेहरू जी की सरकार में, उन्होंने क्या बोला, संघ के शिविर में पहले ही आया हूं 1963 में बोला, चीन से लड़ाई हो चुकी है, अब एकता की जरूरत है और मैं कह सकता हूं कि संघ की शक्ति ने इसको जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सुनिए, अब बोलता हूं 6 जनवरी 1948 को सरदार पटेल ने क्या बोला कलकत्ता में, कोट करके बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के ऊपर जो भी आरोप हो मगर वो एक देशभक्त संगठन है, कुछ लोग कहते हैं उनको डंडे से डील करना चाहिए, डंडा अपराधियों के लिए होता है, उनकी कुछ बातें हमारे लिए गलत हो सकती है मगर वो मूलतः एक देशभक्त है। अब मैं बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, अब देखिए कितनी गलत बात है, राठी जी बाबा जी के ऊपर, योग वाले बाबा जी पे कमेंट करने लगे और यहां पर उनको ध्यान नहीं आता है कि जिस समाज के अखिलेश जी हैं उस समाज में शायद पिछले एक दो शताब्दियों में इतना बड़ा योग ऋषि नहीं पैदा हुआ होगा, मगर उसमें भी सकारात्मक पक्ष न देख के नकारात्मक पक्ष देखने का विचार करना मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है।
1: ठीक है आलोक जी, आप छोटा सा जवाब दीजिए, सिंह साहब इसके बाद आ रही हूं आपके पास, विनय जी।
4: देखिए मैं समझता हूं महात्मा गांधी जी के हत्यारे आरएसएस से निकले थे इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है,
2: और अरे 10 लाख लोग हत्यारे कहां से निकले थे
4: भाई, सुन लीजिए ना, देखिए
2: जो पार्टीशन में मारे गए वो 10 लाख की दिक्कत हो जाएगी, पौने 2 करोड़
4: दिक्कत होगी। देखिए मैं बीच में बोलूंगा तो
1: अभी आप सुधांशु जी कह रहे थे
4: आज दिक्कत ये हो रही है कि अमेरिका में लोग पोस्टर लेके खड़े हैं कि गांधी के हत्यारों का नुमाइंदा अमेरिका में आ रहा है, आज वहां पर ये नारे लग रहे हैं जो हम भी सुनकर शर्मसार हो रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि अगर वो आप देशभक्त थे तो आप 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर अंग्रेजों के साथ मुखबरी क्यों कर रहे थे, आप अंग्रेजों की सेना में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपने युवाओं को भर्ती करने की बात क्यों कर रहे थे, एक नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, 60 रुपए की पेंशन और बुलबुल और पता नहीं क्या क्या है, आज का विषय वो नहीं, आज का विषय यह है कि मोहन भागवत जी वहां गए हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हथकड़ी और बेड़ी लगाकर जो हमारे नागरिक आए हैं उन पर वो 2 शब्द बोलेंगे, वो ट्रेड डील पर भी बोलेंगे, वो केवल और केवल वहां पर आरएसएस के प्रचार के लिए धन इकट्ठा करने नहीं गए होंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और वो ये बताएंगे कि जो अमेरिका किसी लोगों ने राम मंदिर के लिए चढ़ावा दिया था, धन दिया था उसके निर्माण के लिए, उसकी चोरी आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मिलकर क्यों की है, वहां के हिंदुओं को ये बात बता कर आएंगे।
1: चलिए विनय जी, अब आप इस पूरी
2: एक लाइन बोल दूं,
1: सिर्फ एक लाइन।
2: पहली बात तो माननीय राठी जी ने बोला था अटल जी के बारे में, अटल जी का जन्म है 25 दिसंबर 1925 और 9 अगस्त 1942 को 16 साल के थे, नाबालिग थे। अब दूसरी बात बोलता हूं, कोई जाके चेक कर ले, 2020 में वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का डिसरिस्पेक्ट किया गया, उस पर तथाकथित खालिस्तानी झंडा फहराया गया, भारत सरकार ने विरोध किया, कांग्रेस ने नहीं बोला,
4: वो महात्मा गांधी की बात करते हैं
2: वॉशिंगटन डीसी में, नहीं बोला कांग्रेस ने, हमने विरोध किया,
4: कब गांधीवादी होना है, गांधी जी की हत्या कर दी है, ये बीजेपी और आरएसएस ही निर्भर निर्धारित करती
1: है, विनय जी
4: गांधी जी की हत्या कर दो, गांधी
1: का अमेरिका में बोलना अब देश की पॉलिटिक्स में भी गर्म मुद्दा बन रहा है, अभी तो बयान भी नहीं, अभी तो कार्यक्रम भी नहीं हुआ है, आप इसको कैसे देख रहे हैं?
5: अंजना जी, ये शुद्ध रूप से रिसर्च का विषय है, कहानी शुरू होती है इस विरोध की कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यूएससीआईआर एक रिपोर्ट जारी करता है, उस रिपोर्ट में वो जून में जारी करता है आरएडब्ल्यू जो हमारी खुफिया संस्था है और आरएसएस को बैन करने की बात करता है, वहां से ये बात शुरू होती है। अब यूएससीआईआरएफ है क्या, ये अमेरिका है क्या यूएससीआरएफ? नहीं, अमेरिका की एक संस्था है जिसको यूएस लॉ मेकर्स, यूएस कांग्रेस ने कई बार बैन करने की बात कही है, उसकी फंडिंग रोकने की बात कही है, आपस में बहुत सारे उनके लफड़े हैं, और सन 2020 से ही उसने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल रखा है, और उसी ने भारत को नहीं डाला है, भारत की जो एमईए है उसने भी यूएससीआरएफ को एंटिटी ऑफ कंसर्न डाल रखा है। अब दूसरा पहलू समझिए, यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आ गई, उसको जोहरान ममदानी ने उठाया, अब जोहरान ममदानी क्या है एक लाइन में नहीं बता सकते कि वो मेयर है वहां के, जोहरान ममदानी कौन है उसको समझने के लिए उनकी माताजी और उनकी पत्नी के बारे में भी चर्चा करना पड़ेगा। जोहरान ममदानी की माताजी इप्सटीन की मित्र हैं, उनके फोटोज आए थे एक पार्टी में, एक मिनट आप पाप मत टोकिए,
4: मोदी जी वाले
5: मैंने आपको सुनाया था,
4: वही एप्सटीन फाइल्स वाले,
5: नहीं बात मत कीजिए, मैं
4: चुप हो जाऊंगा, पूरी वाले एप्सटीन की बात कर रहे हैं,
5: मैं चुप हो जाऊंगा, बता दीजिए, चुप हो जाऊंगा, आप बेहुदा बात कर रहे हैं,
4: अरे नहीं मैं, अच्छा ये बेहुदा बात है, बेहुदा क्या होता है,
5: प्रधानमंत्री मोदी
4: की बेहुदा, मोदी जी का नाम एप्सटीन फाइल्स में आता है और आप कहते हैं बेहुदा बात है,
2: पीएम की फोटो दिखाओ, आप लोग पीएम की फोटो दिखाओ एप्सटीन के साथ,
4: वो पूरी जो है उसका एप्सटीन फाइल्स में नाम आ रहा है, मैं केवल ये पूछा वही एप्सटीन फाइल ना, वही एप्सटीन फाइल ना,
2: ये चिल्ला चिल्ली बहुत करते हैं भाई,
4: भाई मैं तो केवल
5: दूसरे
4: वही एप्सटीन फाइल का नाम डाल
5: करिए, स्मैश करिए जोरान
4: ममदानी,
2: फिर स्मैश पैट्रियार्की करिएगा,
4: मुझे केवल बताइए वही एप्सटीन फाइल है ना जिसमें मोदी जी का नाम है,
2: जिसमें मोदी जी की कोई फोटो नहीं है, उनकी
1: माता जी, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, पहुंचिए,
3: जो रमदानी के तो इतिहास में चले जाएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे। गजब है भाई,
5: आप कंप्लीट कर।
2: अरे बगैर रजिस्ट्रेशन के बैन कैसे
3: लगाएंगे?
2: कैसे लगाया था बैन? बोलो।
3: अरे भाई टेररिस्ट के रजिस्ट्रेशन होते हैं, उन पर भी तो बैन लगते हैं। बैन लगते हैं कि नहीं लगते हैं?
1: मिस्टर शर्मा, मिस्टर सिंह को कंप्लीट करने दीजिए।
5: जोहरान ममदानी की माताजी के बारे में बताया। जोहरान ममदानी की जो पत्नी है वो प्लेन हाईजैक और बॉम्बिंग को सपोर्ट करती है। जोहरान ममदानी ने कभी विरोध नहीं किया। वास्ता है उसके बाद इस कहानी को लेकर के उठाते हैं राहुल गांधी। अब USCIRF की जो रिपोर्ट है इना जी, उसको हम लोगों ने रिबट किया और USCIRF के जो चेयर हैं, जो कमिश्नर हैं, उनको हम लोगों ने पत्र लिखा था जून में, जिसका रिप्लाई नहीं आया। USCIRF की जो रिपोर्ट है उसको काउंटर अमेरिका की ही जो संस्था है UNOHCR है, और वहां की उसने जो रिसर्च है उनकी फाइंडिंग की मेथोडोलॉजी डिफाइन की है। USCIR की रिपोर्ट उसी मेथोडोलॉजी को काउंटर करती है। कहना ये चाहता हूं कि मोहन राव भागवत वहां जाकर के पूरी धरती एक परिवार है ये बात कर रहे हैं,
3: और हिंदू हिंदुओं के प्रोग्राम में जा रहे हैं, इंडियंस को इकट्ठा कर नहीं पा रहे वहां जाकर।
5: लड़की बहन नहीं है, लड़की माँ नहीं है, लड़की बेटी नहीं है, क्या नर और मादा का संबंध क्यों होना चाहिए?
3: अरे भाई मोहन भागवत जी का एक बयान अंकिता भंडारी पे दिखा दो मुझे।
5: लड़की बेटी है और लड़का
3: अंकिता भंडारी पे मोहन भागवत का एक बयान दिखा दो।
1: चिल्लाना नहीं, मनुस्मृति डिफेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? कहां
5: नहीं नहीं नहीं, मैं मनुस्मृति नहीं बोल रहा हूँ। आज रक्षाबंधन है अंजना जी, आज बहन भाई के संबंधों को सेलिब्रेट करके हम आ रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि लड़की बहन नहीं है। और राहुल गांधी और जोहरान ममदानी को उस बात का खतरा है कि भारत सांस्कृतिक
3: पहले बताया राहुल गांधी ने बहन के ऊपर कब से
1: अपन दिया
3: के
1: अरे राहुल जी के साथ इतना चिल्लाते हैं आप आलोक जी। अरे उन्होंने भी राखी बंधवाई है, वीडियो डाला है अपनी बहन से राखी बंधवाई
5: है।
1: कहाँ कहा है
5: उन्होंने?
1: इसने
5: कहा है कि लड़की माँ नहीं है। ये बहुत ये परिवार संस्था को आघात पहुंचाने वाला है।
3: परिवार
5: सामाजिक पूंजी से
3: अपनी घरवाली छोड़ा है, दूसरों को परिवार का पाठ पढ़ा
5: है। पूंजी है जिससे कि सर्वभूत हिते रहता।
1: एक सेकंड एक बुनियादी सवाल है आपसे। अगर पुरुष प्रधान समाज या पितृसत्ता के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए तो इससे परिवार का की जो पूंजी आप कह रहे हो कैसे हिल जाती है?
5: अंजना जी हाँ, पूंजी मैं छोड़ दीजिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। अमेरिका के एक फिलोसफर है रॉबर्ट पुटनम नाम
1: है,
5: वो ये कहते हैं कि सामाजिक पूंजी जो है वो इंटर रिलेशंस, इंट्रा रिलेशंस, इवेंकुलर रिलेशंस यानी चाचा चाची भाई भतीजा इन संबंधों से बनती है, और इन्हीं संबंधों पर आघात होता है जब आप कहते हैं इसमें पैट्रियार्च की लाइन से समस्या नहीं है, पैट्रियार्च खत्म होनी चाहिए,
1: समाज को खत्म
5: लेकिन आप बहन भाई के संबंधों को आप आघात पहुंचा रहे हैं, माँ बेटे के संबंधों पे आप
2: प्रधान व्यवस्था को स्मैश पैट्रियार्च की सोनिया जी कहे कि मैं अपने पति का सरनेम क्या नेम भी बदल लिया ना, कहे मैं अपना ओरिजिनल नाम रखूंगी एंटोनियो माइनो। राहुल गांधी का स्मैश पैट्रियार्की मैं पिता का नाम नहीं रखूंगा, मैं अपना नाम रखूंगा राहुल माइनो। बोलो बोलो स्मैश पैट्रियार्की बोलो।
4: दुर्भाग्य ये है, आप दुर्भाग्य ये है कि अंकिता भंडारी पर एक शब्द नहीं बोलेंगे। पुरुष सत्ता की जब बात करेंगे तो 2009 के कानून को पढ़िए।
3: अरे सुनिए ना भाई,
4: जिस समय पर सोनिया गांधी जी ने महिलाओं को बेटियों को जमीन में जायदाद में पूरे अधिकार दिए, हिंदू कोर्ट बिल से लेकर आज तक अगर हिंदू महिलाओं को कोई अधिकार दिए,
2: हिंदू कोर्ट बिल में कोई अधिकार नहीं मिला, डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध किया।
4: सुनिए प्रभु सुनिए, हिंदू कोर्ट
2: कोर्ट करिए,
4: आप लोगों ने विरोध
2: किया अधिकार दिया गया हिंदू कोर्ट बिल में,
4: सुनिए
2: कोर्ट करिए।
4: अरे सुनिए ना, आज हम तो केवल ये पूछ रहे हैं महिला आरक्षण का बिल अपने पीठ के नीचे क्यों दबा के बैठे हो भाई, उसको लागू
2: तो पास हो चुका
4: कर दो ना।
2: आप परिसीमन का लागू क्यों नहीं कर रहे? क्लॉज है, आप नहीं होने दे रहे,
3: आप उसको लागू क्यों नहीं कर रहे?
2: क्योंकि परिसीमन का क्लॉज है,
3: पढ़े लिखे नहीं हो, गलत है। आप परिसीमन के माध्यम से
2: परिसीमन का क्लॉज उस एक्ट में है,
3: और इलेक्शन कमीशन को पावर देना चाहते हैं। आपको महिलाओं के अधिकारों से कोई मतलब नहीं है।
1: 543 में क्यों नहीं लागू करते सुधार? बदलिए ना, अगर परिसीमन
3: लेना देना
1: नहीं, फिर चिल्ला रहे परिसीमन को रोका जा रहा है। अगर परिसीमन नहीं हो पा रहा, एक सेकंड सर, परिसीमन अगर नहीं हो पाता, आपने वादा किया ना कि 29 में करेंगे, अब परिसीमन अगर टल रहा है तो नहीं होगा,
2: तो जो परिसीमन नहीं कर रहा इसका मतलब वो खिलाफ में,
3: मान लो परिसीमन लिखा है जिसका सीमन के बाद
2: लिखा है परिसीमन के बाद होगा,
3: अगर परिसीमन मान लो दो तिहाई बहुमत आपको नहीं मिलता, परिसीमन नहीं होता है, तो क्या 29 में भी लागू नहीं करेंगे, 34 में लेकर जाएंगे?
2: तो चलो,
3: और आपकी सरकार चली
1: जाएगी। आलोक शर्मा जी, अब हो गया,
2: चलिए थोड़ा सा, तो मैं इनसे पूछता हूँ, इन्होंने लागू कर दिया है, आपकी सरकारों में एक तिहाई महिला है, बोलो,
3: जब आपको पता था दो तिहाई बहुमत
2: दोनों राज्यों में, बोलो
3: बोलो, केवल बताइए, मुझे केवल बताइए, मुझे केवल बताइए, जब आपके पास दो तिहाई बहुमत चाहिए था तो आपने परिसीमन का क्लॉज क्यों जोड़ा? इसका उत्तर दीजिए आप,
1: बोलिए राठी जी।
0: देखिए अभी दो तीन चीजें इन्होंने कही, सुधांशु भाई साहब ने बोला, जैसे ही मैंने योग के बाबा जी का नाम लिया तो इन्होंने सीधा जाति पे ले गए उसको,
3: योग के बाबा जी ने लाला, क्योंकि, लाला क्योंकि, नाम
0: क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि इन्होंने शुरू कर दिया उस बात को,
3: मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया।
1: अरे पर दिलचस्प चीज है जिनको आप लाला कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं आलोक जी,
0: आप गलत सही में सुन रहे हैं,
1: फूले आपके भी टाइम में,
0: अब सुन लीजिए,
1: यही तो उनकी कला थी, नहीं
0: आप
1: ना, ना, ना क्या कर रहे हैं,
0: आपको
3: हाँ जी बोलिए,
0: मैं बड़ी शांति से सुन रहा था, अभी मैं बोलूं उसके बाद भी बोल लेंगे। अभी सुधांशु जी ने पढ़े कई नाम और उसमें इन्होंने बताया कि आरएसएस के कैसे तारीफ की, बस इतना ही यहां से शुरू होकर इतना खत्म हो जाता, इतना शुरू, सुनिए सुनिए, इतना शुरू होकर इतना ही खत्म हो जाता है, आपको ये बार बार क्यों करना पड़ता, लेकिन आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे पेज बताते हैं, आप बंच ऑफ थोड़ का 237-238 बंच ऑफ थोड़ का पढ़ सकते हैं, आप पढ़ दीजिए एक बार ही, आप बताइए तिरंगे क्या लिखा, तीन नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कौन लोग हैं, आपको तो बहुत जानकारी है, हाँ, सुनिए तीन नाम बोलता हूँ,
2: अभी मैं बगैर पढ़े बता रहा हूँ,
0: आप बताइए बाबा मेंढे, रमेश और दिलीप कौन है तीन लोग, ये तीन लोग जानते हैं आप कौन है, बताइए जानते हैं नहीं जानते, क्योंकि आपने काम की चीज नहीं है, ये तीन लोग वो लड़के हैं जिन्होंने 2000 में आपके यहाँ झंडा फहराया तिरंगा और आपने जेल में डाल दिया था, 13 साल मुकदमा चला और 2013 में बरी हुए, आप इसको नहीं बोलते सबके सामने,
2: चलो चलो,
0: ये आपके सामने नहीं आ रहा, एक बार दूसरी बात
1: सुनिए,
0: इस देश को
2: सारे
0: हम तो सुनते ही रहते हैं ना, सवाल और पूछ लू ना, आप मुझे बताइए कभी भी आप तिरंगे पर, संविधान पर और गांधी जी पर जवाब नहीं देते, और ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो इस देश को जोड़ती हैं,
1: ठीक है,
0: आप बताइए गोडसे ने गांधी जी को मारा, गोडसे क्या चेला नहीं था सावरकर का, आप प्रूव कीजिए ना उस बात को, क्यों नहीं बोल, आप इधर उधर क्यों जाते हैं कि उसने तारीफ करी, उसने करी, मान लिया हमने तारीफ करी, आप इस पे जवाब दो ना, आपने क्यों 52 साल तिरंगा नहीं लहरा, क्यों उन्होंने कहा था कि इस झंडे को
1: मैंने जी, जवाब सुन लीजिए,
0: क्यों कहा था उन्होंने,
1: चलिए
2: जल्दी
1: स्पेसिफिक सवाल,
2: बिल्कुल स्पेसिफिक जवाब, पहली बात तो देखिए इनका चरित्र, कि डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और जेपी इनके लिए कोई लग
3: रहा है, 52 साल तिरंगा क्यों नहीं, और क्या आप दो रंगों के पक्ष में नहीं थे, हाँ या ना मैं उत्तर दे दीजिए,
2: अरे हाँ या ना मैं उत्तर दे रहा हूँ भाई, चिल्ला रहे हो बीच में, लगातार चिल्ला रहे हो, अब मेरी बात सुनो,
3: बच्चों के ऊपर 13 साल के तिरंगा उन्होंने आरएसएस के हेडक्वार्टर
2: पर क्या भाई लगातार चिल्ला,
3: मैं कह रहा स्पेसिफिक सवाल,
2: स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ भाई, सुनो तो,
1: बंद कीजिए,
3: तिरंगा नहीं लहराया,
2: सुनिए
3: तिरंगा लहराया,
2: अरे भाई बात सुनो,
3: अरे
2: चुप रहेंगे तब तो बोलेंगे भाई,
3: सुनिए यस और नो,
2: भाई यस और नो बोलने में कितना टाइम लगता,
3: बोल दीजिए यस नो,
1: राठी जी यहाँ लड़ने के लिए आए हैं क्या,
3: लड़ने के लिए,
1: शर्मा जी प्लीज अब जवाब सुनिए, नहीं राठी जी प्लीज स्टॉप,
3: यस और नो बोलने में,
1: मिस्टर राठी प्लीज स्टॉप, अब जवाब सुनिए,
2: सुनिए
1: हो गया,
2: सुनिए, नवीन जिंदल केस से पहले सरकारी संस्था के अलावा और कहीं झंडा नहीं लहराया जा सकता था 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा, बताओ
3: नो
2: सरकार, सरकारी
3: प्राइवेट
2: क्या तरीका यार चिल्लाने का, बदतमीजी की हद है भाई, लगातार चिल्ला रहे,
3: प्राइवेट स्कूलों में झंडा लहराया जाता था कि नहीं,
2: 15 अगस्त 26 जनवरी
3: के कार्यालय
2: पर झंडा
3: कार्यालय पे लहराया जाता था,
2: तरीका
3: लहराया जाता था ना वो सरकारी कार्यालय,
2: 26 जनवरी 15 अगस्त में भी नहीं लहराया,
3: कभी भी नहीं
2: लहराया, कभी नहीं लहराया 52 साल में, ये कह रहे हैं पहले तो वो सब लोग नहीं फहरा सकते थे, अरे 26 जनवरी 15 अगस्त पे तो सब फहराते थे, आपने तब भी नहीं फोटो दिखा हुआ, आप 2001 से पहले का फोटो दिखा दो, अब मैं बोल सकता हूँ भाई, हद हो गई है भाई, डिस्टर्ब करने की, दर्शक देख सकते हैं,
3: स्कूल
2: फैक्ट नहीं बोलने दे रहे, 10 साल तक आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर में लाल चौक पे झंडा राज्यपाल भी नहीं फहरा सकता था, मोदी जी ने जान के खेल को बांधने में फहराया।
3: क्या तरीका
2: है भाई? अरे नहीं, रुकिए, मैं कहना चाहता हूँ कोई तरीका नहीं होता। 19 जुलाई 1947 गांधी ने कहा कि अंग्रेजों के झंडे से हमारे कोई विरोध नहीं है और हमें खुद ये वॉलंटरी छोड़ दे। बहुत गांधी ने कहा।
1: 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। नेपाल की त्रासदी पर आपको दिखाएंगे इतने सारे लोगों के मारे जाने की और त्रासदी की जो तस्वीरें आ रही है वो हिला रही है। वहीं दूसरी तरफ महिला के शव से सोने चुराने वाले कौन है, वहीं दूसरी तरफ एक शख्स सोना लेकर घूम रहा है कि ये किसका है और वो ईमानदारी दिखा रहा है। आखिर चाइना ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों रोका है? और अंत में आपको दिखाएंगे दिल्ली मुस्कान मर्डर केस में हाफ एनकाउंटर हुआ है क्या, पूरा मामला क्या है, ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है, भागवत के कार्यक्रम के आयोजकों का अकाउंट बंद कैसे हुआ और न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध क्यों, देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बहुत टायर्ड हो गई।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: Papa.
2: सॉरी यार गलती हो गई है ये चोट खर्चा वर्चा
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा
2: छक्का
3: सब कैशलेस हो गया
2: है ला भाई मेरा बैट वो अभी तो ठीक हुआ तू
4: चार्ज हुआ यार
5: बैट किसका है
6: टाटा AIG है तो भरोसा है
7: यानी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा रुंगटा स्टील TMT से बना
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड

0: EU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: Hey Maya, let's go. The new BE6 Sportage.
4: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
5: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
4: असली शहद, असली स्वाद।
6: In association with
7: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
9: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
10: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
9: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
11: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
9: हर बात देश के सामने।
12: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए हैं, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
9: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
2: Money, money, money, money, every month.
3: सोच बदलो और बैंक भी.
4: न्यूयॉर्क में मोहन भागवत क्या बोलेंगे, उससे पहले वो वहां क्यों बोलेंगे, ये सवाल अमेरिका की सियासत से लेकर हिंदुस्तान की सियासत में गूंज उठा है. आरएसएस की विचारधारा के विरोध के नाम पर पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया.
5: No, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history. And my mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
6: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
5: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
4: इधर भारत में अखिलेश यादव ने इवेंट के आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड फोरम का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने पर लिखा, विदेशों में जब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे. इसी के साथ अखिलेश ने 21 सवाल पूछ डाले. सवालों में शामिल था, स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश आखिर क्या लेने गए हैं, क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं, क्या भविष्य में वहां राजनीतिक प्रश्रय लेने की संभावना तलाशने गए हैं. वैसे अखिलेश यादव के सवालों की लिस्ट पड़ी ही जा रही थी कि एक्स ने अहेड फोरम का अकाउंट बहाल कर दिया. इसके बाद अहेड फोरम ने एक्स पर लिखा, गुमराह विरोधियों का हम पर बॉट हमला हुआ जिन्होंने एक्स के एल्गोरिथम को प्रभावित कर हमारे हैंडल को ब्लॉक करवाने की कोशिश की. मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है. 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे. इस कार्यक्रम की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सल हार्मनी एंड यूनिवर्सल वननेस. आरएसएस ने इसे सर्वधर्म, मल्टीकल्चरल और विविधता वाला कार्यक्रम बताया है, जिसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आरएसएस से सीधे नहीं जुड़े हैं. मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर शुरू हुई सियासत के बीच कर्नाटक में आरएसएस पर फिर हंगामा मचा है. कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने वाले दो सरकारी स्कूल टीचर अन्ना साहेब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया है. इससे पहले कर्नाटक में आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर संग्राम हो चुका है. आरएसएस को लेकर लड़ाई सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशन पर सामने आए विवाद में भी आरएसएस को घसीट लिया है. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के स्पष्टीकरण पर गौरव गोगोई ने लिखा, ये कितना कमजोर बयान है. पेंगुइन इंडिया को एग्जाम वॉरियर्स और आरएसएस पर लिखी गई कई किताबें प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है. इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डरने लगे हैं कि भारत की जनता कोई किताब पढ़ लेगी. आज तक ब्यूरो,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

करीब 1000 लापता काठमांडू से दिल्ली लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। नेपाल में फिर जल विस्फोट की आशंका, तिब्बत में आई एक उफानी झील से पानी आना शुरू। त्रिशूली और भिटुकिशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। पेपर लीक के आरोपों के बीच सरकार का बड़ा फैसला, एनटीए में 2 डायरेक्टर्स और 1 जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति, अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर में आई गिरावट। देश भर में रक्षाबंधन की रौनक, बच्चियों से राखी बंधवा कर पीएम मोदी ने किया जेन अल्फा वाला संवाद। अमित शाह ने अहमदाबाद में बंधवाया रक्षा सूत्र, प्रियंका की तस्वीर के साथ राहुल का पोस्ट। नमस्कार, मैं हूं मारिया शकील। नेपाल से आई तबाही की तस्वीरों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों की तलाश भी जारी है। आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से नेपाल के हालात और दिखाएंगे उन परिवारों का दर्द जिन्हें अपनों के वापस आने की अभी भी उम्मीद है। लेकिन शो की शुरुआत उस खतरे के साथ जिसने सबकी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि नेपाल में अभी खतरा टला नहीं है। इस तबाही से बड़ी त्रासदी आने की आशंका जताई जा रही है।

0: ये तबाही का सिर्फ ट्रेलर था। अब नेपाल में इससे 5 गुना ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही है। नेपाल में तबाही डुबाने का खतरा बना हुआ है, जो पहले से 5 गुना ज्यादा हो सकती है। तिब्बत के पहाड़ पर बनी झील फिर फट गई है। नेपाल के अधिकारियों को सूचना मिली कि झील ने अपने किनारे तोड़ दिए हैं। चीनी सरकारी प्रसारक CCTV ने भी बताया कि ग्युरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर बनी डैम झील ओवरफ्लो करने लगी है। ग्युरोंग बॉर्डर पोर्ट के ऊपर बैरियर झील हाल ही में बनी है, जो नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा के पास है। ये एक बांध की तरह है। इसके बनने की वजह भी 26 अगस्त को नेपाल चीन सीमा के पास अचानक आई बाढ़ ही है। चीन की सीमा में बनी झील में 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने की आशंका है। ये पानी 1200 ओलंपिक स्विमिंग पूल के बराबर है। इतनी बड़ी तादाद में पानी जमा होने पर झील के टूटने का भारी खतरा है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर के आसपास पानी का बहाव सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। गुरुवार को चीनी बचाव दल ने हवाई फुटेज में मलबे से बनी झील को देखा। फुटेज में भूरे रंग का पानी एक ऐसे बेसिन में जमा होता दिख रहा था, जिसका कोई स्पष्ट निकास मार्ग नहीं था। पानी पहले ही झाड़ियों और पेड़ों को डुबो चुका था और अब मलबों और पत्थरों की रुकावट पर दबाव डालता हुआ दिख रहा था। सैटेलाइट तस्वीरों में पता चला है कि 24 से 27 अगस्त के बीच इस झील में पानी जमा हो रहा है। तस्वीरों में जमीन और आसपास का पूरा इलाका भी बाढ़ और मलबे से काफी बदला हुआ दिखाई दिया। यानी जो मलबा पहले बाढ़ की वजह बना, वही अब पानी रोकने वाली प्राकृतिक दीवार बन गया है। अब ये ओवरफ्लो करने लगी है। 26 अगस्त को महाविनाश लाने वाली भोटे कोशी नदी में पानी का स्तर बढ़ रहा है। स्थानीय जिला अधिकारी के मुताबिक उन्हें नोटिस मिला है कि झील ने अपने किनारे छोड़ दिए हैं। अब उसका पानी बाहर निकलने लगा है। अगर ऊपर से पानी का दबाव और बढ़ा तो तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल है।
1: सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे। इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है। और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ, और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
3: सब जाना कृपया माथी माथी बस्ते हो रहा हमी आप इतनी स्वयं
1: से कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहां से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है।
0: इसका असर अब सीधे राहत और बचाव अभियान पर दिखाई दे रहा है। नेपाल आर्मी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है, क्योंकि नदी का पानी बढ़ रहा है और नदी में उतरना रेस्क्यू टीमों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। रसुआ में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पहाड़ी की तरफ भागकर ऊंचाई पर जाना शुरू कर दिया है। जिस इलाके में कल तक लोग दूसरों की जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे, आज वही लोग खुद अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भाग रहे हैं। समस्या यह है कि यह कोई मजबूत बांध नहीं है। झील को रोकने वाली दीवार चट्टानों और बाढ़ के मलबे से बनी है। अगर झील में पानी बढ़ता रहा और ये प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ तो वो टूट सकता है। ऐसी स्थिति में झील का पानी अचानक नीचे की ओर बह सकता है। इससे फिर से तेज बाढ़ आ सकती है। नई बनी ये झील उस इलाके में है जहाँ पहले ही बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। अगर झील का पानी अचानक नीचे आता है तो सबसे पहले भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। इसी वजह से NDRRMA ने भोटे कोशी इलाके में पानी का बहाव फिर बढ़ने की सूचना के बाद नया हाई अलर्ट जारी किया है। भोटे कोशी के बाद चिंता त्रिशूली नदी को लेकर है। तिब्बत से आने वाली चोत्वेन खोला और पुरपित सांगपो नदियां आगे जाकर मिलती हैं। नेपाल में प्रवेश के बाद ये नदी तंत्र भोटे कोशी कहलाता है और भोटे कोशी आगे त्रिशूली नदी तंत्र का हिस्सा बनती है। ऊपर पहाड़ों में पानी का अचानक रिलीज होना नीचे नदी किनारे बसे इलाकों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए नेपाल का फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम भोटे कोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को अलर्ट पर रख रहा है। लोगों से नदी किनारे और जोखिम वाले इलाकों से दूर रहने को कहा गया है।
4: चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके बाद यहाँ पर उन सभी कनेक्टेड नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे सामने जो आप नदी देख रहे हैं इसी में जब वो बाढ़ आई तो ये पूरा त्रिशूली बाजार और नुआकोट का पूरा एरिया फ्लड हो गया था। उनमें से अनेकों अनेक अभी भी मिसिंग है। सरकार की तरफ से यहाँ पर जरूर 1500 का आंकड़ा दिया जा रहा है। लोग बहुत सारे आपको अलग अलग यहाँ पर फिगर्स देंगे, लेकिन अब एक बार फिर इस नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी का आवेग बढ़ रहा है।
0: अगर ये प्राकृतिक बांध पूरी तरह से टूटा तो सिर्फ पानी नहीं आएगा, पानी के साथ जमा मलबा, पत्थर और चट्टाने भी नीचे की तरफ दौड़ सकती है। और चीन की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो इस खतरे की गंभीरता को और बढ़ाते हैं। चीनी अधिकारियों के मुताबिक बैरियर लेक में 25 लाख घन मीटर से ज्यादा पानी जमा है, इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि नई झील के टूटने से कैसी तबाही आएगी। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
5: जहां तबाही का अलर्ट है वहीं हमारी सहयोगी श्वेता सिंह मौजूद हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि तबाही का खतरा इस बार कितना बड़ा है।
6: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज़्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर हो रहा है। और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज़्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो अभी जिस तरीके से आप जल की ये धारा को तेज़ होकर बहते हुए इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है। जितने भी लोग हों वो थोड़ी सी ऊंचाई की जगह रहें, क्योंकि जब 26 अगस्त का भी हादसा हुआ था उसमें जो बस्तियों का बसाव जो नीचे के लेवल पर रहे वहाँ पर बहुत बड़ा प्रभाव देखा गया था। पर यहाँ पर सभी सख्ते में भी हैं लेकिन सचेत भी हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, आज तक।
5: अब पंकज दास के पास चलते हैं जो काठमांडू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अभी क्या स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरा अभी एक अलर्ट जारी किया गया है वो पहली घटना से शायद ज्यादा इस बार त्रासदी कर सकता है।
7: बिल्कुल, ये चीन की तरफ से कहा गया नेपाल को आधिकारिक रूप से आज दोपहर जब से ये ग्लेशियर टूटा है और पानी का बहाव शुरू हो गया तब से ही नेपाल में सतर्कता अपनाई जा रही है और सभी रेस्क्यू ऑपरेशंस को बंद कर दिए गए हैं। और सरकार ने सभी को जो तटीय इलाकों में रहते हैं, खासकर भोटेकोशी, नारायणी, त्रिशूली नदी के किनारे रहते हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। और किसी को भी इन रास्तों में इन नदियों के बगल से होकर जाने वाली जो भी राजमार्ग है सभी को बंद कर दिया गया है। और सारे रेस्क्यू जो रेस्क्यू करने वाले जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन सभी को आज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस को बंद करने के लिए भी कहा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि खतरे के अंदेशा को देखते हुए सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया। हालांकि आज दोपहर को जब कैबिनेट मीटिंग हुई उसके बाद जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि फिलहाल खतरा उस तरह का नहीं है जिस तरह का बुधवार को यहाँ पे 26 तारीख को आया था। सरकार ने एक हेलीकॉप्टर भेजकर वहां पर एरियल सर्वे भी करवाया है कि किस तरह के बहाव कितने तीव्र गति से वहां से आ रहे हैं, लेकिन भोटेकोशी से लेकर पूरे एरिए का एरियल सर्वे कराया गया है। तो सरकार को लग रहा है कि शायद खतरा उस तरह का नहीं है, फिर भी सतर्कता अपनाई जा रही है।
5: चलिए पंकज, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के हालातों पर भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है। भारत में नेपाल में हर संभव मदद की कोशिश की कर रहा है। राहत सामग्री की खेप लगातार नेपाल पहुंच रही है। वहीं देश के सामने एक और चुनौती है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित वापस लाया जाए।
8: तबाही की इन तस्वीरों के बीच इंसान पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है। बस कोशिश जारी है जिंदगियों को बचाने की। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भी सरकार ने कमर कस रखी है। नेपाल त्रासदी में 650 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। वहीं कई लापता लोगों की तलाश जारी है। अब तक 300 से ज्यादा भारतीयों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।
9: हमारे पास जो लापता लोगों का जो लिस्ट है वो अभी 320 का है, लेकिन ये मान के चलिए चूंकि स्थिति हर घड़ी बदल रही है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं करीबन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
8: उधर नेपाल से लौटे भारतीयों से विदेश मंत्री जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि देशवासियों को सुरक्षित वापस लाने की हर संभव कोशिश की जाएगी।
10: आई वॉन्ट टू से राइट नाउ we are still very much focused on contacting all the Indians who are dead. We believe little more than 300, exact number keeps going up and down. About 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived.
8: बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किए गए 21 भारतीय काठमांडू से दिल्ली पहुंच गए। इससे पहले त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना में काम कर रहे 63 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं चीन की तरफ फंसे 96 भारतीय नागरिक सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं।
11: आई एम ऑल्सो जस्ट 100 मीटर्स बिफोर फ्लड्स गॉड माई हेल्प सो आई एम हैप्पी my family members are very very very sad situation ladies are washroom just 10 minutes bridge cross the aim floor
8: बाढ़ के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत से राहत सामग्री लेकर पहुंच रही है। उधर नेपाल सरकार ने चीन और अमेरिका समेत कई देशों से मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। 2015 की त्रासदी का हवाला देते हुए नेपाल सरकार ने कहा है कि इससे रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन में परेशानी होती है। उसकी अपनी सुरक्षा एजेंसियां राहत और बचाव कार्य चलाने में पूरी तरह सक्षम हैं। वहीं नेपाल के रेस्क्यू की तारीफ भारत ने भी की है।
10: They told me about exactly what happened to them, how the floods came, and they were very thankful, particularly to the Nepal army, which made this great effort to get them out of that very difficult place where they were.
8: बहरहाल अब कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, काठमांडू आज तक।
5: अब काठमांडू चलते हैं जहां आशुतोष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, भारतीयों की खबर दीजिए कि बहुत सारे जो मिसिंग थे उनके बारे में क्या रिपोर्ट है, जो वहां पर एम्बेसी है उसके पास उसके आप संपर्क में होंगे।
1: दूतावास में जो भारतीय हैं वो संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मिसिंग है वो दूतावास को जानकारी दे रहे हैं। साथ के साथ नेपाल सरकार ने जो हेल्पलाइन जारी की है उस पर भी, तो सरकार और दूतावासों के बीच, दुनिया भर के जितने दूतावास वो सक्रिय हैं, वो डेटा ये जुटा रहे हैं कि कौन कहां पर था उस समय, और यहां तक दूतावास अधिकारियों को भी बता रहे हैं कि हमारे ये लोग यहां पर थे। जो रेस्क्यू करके लाए जाते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, वहां उनका डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। हमने वो जगह देखी, बाकायदा लिस्ट लगाई गई थी, और वो जिस देश के नागरिक हैं उसके बाद तुरंत पुलिस प्रशासन के जरिए दूतावासों को जानकारी दी जा रही है। दरअसल रेस्क्यू से लेकर के आगे जानकारी देने में समय नहीं लग रहा है, लेकिन ये पता करना, जैसे प्रशासनिक अधिकारी को बताया गया कि ये जो बेड़ा जो खासकर यात्रा पे गया था वो उस समय यहां पहुंचा था, कोई SOS कॉल है, उनके परिजन बता रहे हैं, वहां जा करके सर्च ऑपरेशन बड़ी मुश्किल बन रहा है, क्योंकि जो ज्यादातर लोग तो SOS कॉल कर पा रहे हैं वो या तो कहीं मौजूद हैं वहां से इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं। अब वो संख्या धीरे धीरे इसलिए कम हो रही है क्योंकि ज्यादातर जो मिसिंग कॉल थे, डिस्ट्रेस कॉल थे, उन्हें एड्रेस कर लिया गया है, और इसीलिए अब जो मिसिंग लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। कैजुअलिटी आप देखिए कि वो भी जो है अब लगभग 600 के करीब पहुंच चुका है, और हर 2 घंटे पर वो डेटा अपडेट हो रहा है। मुश्किल जरूर है क्योंकि कौन कहां था उस घड़ी में, उनके दूर दराज के परिवारजनों से वो पता चल रहा है। इस घड़ी में कौन कहां, अगर आपको याद हो कि जहां पर अभी सुबह का डेटा बता रहा है कि 100 से ज्यादा लोग तो नवल परासीपुर में उनके शव बरामद हुए हैं, क्योंकि जिस तरह का सैलाब था वहां पर बॉडी मिली, वो बहाव इतनी तेज लेकर के गया है, तो हाँ ये इस हादसे में अभी भी बहुत मुश्किलें आ रही है।
5: आशुतोष बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिनके अपनों की अभी तक खबर नहीं मिली है, आंखें नम हैं और दुआएं जारी हैं, जहां हो सुरक्षित हो और जल्द वापस आ जाएं।
0: मोबाइल में अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें देखती, ऊपर वाले से दुआएं मांगती ये दीक्षा चौरसिया है, जिनके परिजन नेपाल की त्रासदी के बाद से लापता है।
12: वो लोग नेपाल में नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट त्रिशुली बाजार में रहते थे। सुरक्षित हैं, लेकिन उन लोगों का कुछ बचा नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि सुरक्षित हैं कि नहीं।
0: चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशुली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था। लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया। दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली है। नेपाल की त्रासदी में उनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा बताती हैं कि गुरुवार की सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया।
12: कल सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
0: इस त्रासदी में भोपाल की रहने वाली राधिका भी अपनों के सही सलामत होने की दुआ कर रही हैं, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला है, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
13: वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
0: भोपाल का ये परिवार तीर्थाटन के लिए नेपाल गया था। इन लोगों ने एक निजी बस किराए पर ली थी, जिसमें 29 लोग सवार थे और ये सभी लोग एक दूसरे से परिचित थे। 26 अगस्त की सुबह 6 बजे सभी 29 लोग बस में सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल पड़े। रास्ते में बेत्रा बेदी के पास एक ढाबे में खाने के लिए रुके, तभी तबाही ने दस्तक दी।
13: मेरे जेठ जेठानी और देवर देवरानी गोसेकुंड करके एक तीर्थ करने जाते हैं, वहाँ पे गए थे और एक बस करके गए थे, उसमें 29 लोग थे। 29 लोग मेरे सब अपने लोग हैं, परिचय वाले सब हैं, बस ये है कि थोड़ा रिश्तेदार थोड़ा पास के या दूर के ऐसा करके हैं। 29 लोग सब परिचय के थे। वो 6:30 बजे घर से निकले थे, कोई बातचीत नहीं हुई। उनके परिवार जो गए वो तो गए और जो घर में हैं वो भी पूरे ढूंढने में निकले हैं, तो घर पूरा तितर बितर हुआ है। नेपाल की हालत बहुत खराब हो रही है, अब हमारे तो पूरे रिश्तेदारी पूरा गाँव ही खाली हो गई है।
0: नेपाल से आई तस्वीरों को देखकर परिवार सहमा हुआ है, बस दुआएं कर रहा है कि वो जहां भी हों सही सलामत हों। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
5: नेपाल में जो भारतीय तीर्थ यात्री लापता हैं, उनमें ज्यादातर लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, जो कि अलग अलग राज्यों से हैं। कुछ एनआरआई परिवार भी हैं जिनकी अभी तक खबर नहीं मिल रही है।

0: आपदा की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
1: তো কয়লা সমুদ্র সে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি।
0: सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा है।
2: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
0: सुमार मंडल 16 अगस्त को सिलीगुड़ी से कैलाश मानसरोवर के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तबीयत खराब हुई तो वापस लौटना पड़ा और इसी दौरान वो नेपाल त्रासदी में फंस गए। अब परिजनों का बुरा हाल है, घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि सुमार मंडल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है।
2: यहाँ से 16 तारीख को निकला था काठमांडू के लिए, 17 तारीख को पहुंच गया था, वहाँ से कैलाश यात्रा के लिए निकल गए थे, उसके बाद तो हम लोग कांटेक्ट कर रहे थे।
0: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद कुछ पता नहीं चल रहा। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा।
3: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका, शैलेश नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
4: सुबह में
3: आया था, बोलेगा
0: कि वो मिसिंग है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती के परिवार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
5: मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था, उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस अब चाइना का

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: पापा
8: सॉरी यार गलती हो गई है। ये चोट खर्चा वर्चा।
7: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
8: छक्का
7: सब कैशलेस हो गया है।
8: हाँ ला भाई मेरा बैट।
7: वो अभी तो ठीक हुआ तू।
8: चार्ज हुआ यार।
9: बैट किसका है?
10: टाटा AIG है तो भरोसा है।

0: आगे आगे
1: अरे उधर
0: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स और अब लाइन लाइना डेट्स। इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
7: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा आज तक।
4: नेपाल आपदा ने सैकड़ों परिवारों को जीवन भर का दर्द दे दिया। इस आपदा में अभी भी लापता लोगों की खोजबीन जारी है। त्रासदी की चपेट में कई भारतीय परिवार भी आए हैं। इसमें कुछ तो ऐसे हैं जो नेपाल में रोजी रोटी के लिए गए थे, कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका से आकर नेपाल घूमने गए थे। ये दीक्षा चौरसिया है। इनके ताऊ का परिवार नेपाल के त्रिशूली बाजार में रहता था, लेकिन परिवार लापता है। दीक्षा बताती है कि गुरुवार की सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ आने वाली है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया और फिर दोबारा संपर्क नहीं हो सका।
5: फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ आने वाला है, कुछ भी

0: हो सकता है, इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: रसुआ के त्रिशुल्ली बाजार में ऐसे ही न जाने कितने परिवार उजड़ गए। चौरसिया परिवार भी उन्हीं में से एक है। तबाही के बाद दीक्षा के ताऊ का तो पता चल गया कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन 54 साल की ताई और 18 साल का भाई लापता है। नेपाल के जल प्रलय में गुजरात के विमल पटेल भी लापता है। तिब्बत नेपाल सीमा पर चीन के इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर जब आपदा आई तो विमल पटेल में अपनी पत्नी के साथ वहां मौजूद थे, लेकिन उस तबाही के बाद विमल और उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चला।
2: जो लापता हुए वो मेरा छोटा भाई और उसकी वाइफ है, उसका नाम है बिमल पटेल और उसकी उसकी वाइफ का नाम है जयमीना बेन पटेल। वो नेपाल गए हुए थे, वहाँ से वो चाइना के लिए वो इमिग्रेशन करना पड़ता है ना, तो उसके लिए वो इमिग्रेशन के लिए गए थे, लेकिन उसके बाद कोई अता पता नहीं है उसका।
1: विमल पटेल मूल रूप से गुजरात के आनंद के रहने वाले थे, अमेरिका में रहकर नौकरी करते थे। 28 जुलाई को अमेरिका से अपने घर आनंद गए और फिर आनंद से प्लान बनाया कि नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाना है। कागजी कार्रवाई के लिए वो चीन के इमिग्रेशन दफ्तर गए थे। उस वक्त तक परिवार वालों के संपर्क में थे, लेकिन जैसे ही आपदा आई सब कुछ खत्म हो गया। विमल पटेल अपनी पत्नी के साथ गए थे, अब दोनों लापता हैं। उनका एक बेटा भी है जिसे उन लोगों ने अपने बड़े भाई के साथ कर दिया था। गुजरात के तीन और लोग नेपाल में लापता हैं। ये लोग नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे, लेकिन अब संपर्क नहीं हो पा रहा है।
3: स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर द्वारा हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार तीन यात्री मिसिंग है जो सूरत के बताए जाते, और जो हमें प्राप्त माहिती के अनुसार उसमें से दो USA के निवासी है, एक मुंबई के निवासी है। उनके किसी पहचान वाले गीताबेन ने ये सूचना दी है, उसके अनुसार ये स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से हमें ये सूचना मिली है। जो सूचना है उसके अनुसार ये तीनों यात्री पिछले 24 आवर्स से मिसिंग है।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नेपाल त्रासदी में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 587 लोगों की गई जान। करीब 1000 लापता। काठमांडू से दिल्ली लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। नेपाल में फिर जल विस्फोट की आशंका। तिब्बत में एक उफनती झील से पानी आना शुरू। त्रिशूली और भेटे कोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकता है सैलाब। बिलासपुर में टला विमान हादसा। दिल्ली से आ रहे एलायंस एयर विमान का टायर लैंडिंग के दौरान फटा। प्लेन में सवार थे कुल 37 लोग। पेपर लीक के आरोपों के बीच सरकार का बड़ा फैसला। एनटीए में 2 डायरेक्टर्स और 1 जॉइंट डायरेक्टर की नियुक्ति अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड इजाफा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर में

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: नेपाल दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक, लेकिन 11 सालों में इस देश ने ऐसी तबाही देखी जिसके बाद मानो जैसे इस देश पर किसी की नजर लग गई। और नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। विशेष में हम दिखाएंगे कि कैसे नेपाल एक ऐसी त्रासदी से जूझ रहा है जिसने नेपाल को मानो कई साल पीछे कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो मानो बर्बाद हो चुका है, तराई से लेकर के पहाड़ों के बीच की सड़कें ध्वस्त हो गई हैं, पुल बह चुके हैं, जो ऊर्जा के संयंत्र थे, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट थे, वो तहस नहस हो गए हैं। और ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा जब 600 के पास पहुंच रहा है, उसके बावजूद कोई अगर हिम्मत नहीं हार रहा है तो वो है नेपाल की सेना। देवदूत बनकर के वो मदद के लिए आई है, ऐसी बहादुरी दिखाई है, हिम्मत की मिसाल कायम की है कि उन हाइड्रो प्रोजेक्ट के भीतर जहां कोई जा भी नहीं सकता ऐसी हालत में, वहां नेपाल की सेना उतरी, लोगों को वहां से बचाया, 300 से ज्यादा मजदूरों को वहां से निकाला गया। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे नेपाल की सेना ने अद्भुत शौर्य का परिचय दिया है।

नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों की संख्या में लापता है और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुवा की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुवा के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही यह मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका, वापस भेजा और फिर इसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे 2 जवान नीचे गए। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, मजदूर को इस ट्रॉली पर बैठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर से ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाल की सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे जहां पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है, यहां कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहां हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे रेंगते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते और इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

0: एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधे पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे तो पैर इसमें धंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया क्योंकि इस गेट पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। इसी तरह से नेपाली सेना रसवा के दूर दराज के इलाकों में भी लगातार बचाव अभियान चला रही है। नेपाली सेना के मुताबिक बुधवार को सेना की एक यूनिट ने स्याफ्रुबेसी, तिमुरे, मैलुंग, ठुलो हाकू और हाकुबेसी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए और कई जगहों से 533 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इसके अलावा गुरुवार को रसवा के अलग अलग हिस्सों से 883 लोगों को बचाया गया। ये रसवा के लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। नीचे दिख रहा है कि जहां ये प्रोजेक्ट था वहां पूरा मैदान सा बना हुआ है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियोस आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ किस लेवल की थी। सैलाब में सब कुछ बह गया। नीचे बने निर्माण तो ऐसे टूटे जैसे कागज के बने रहे होंगे। ये भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही वीडियो बताया जा रहा है। ऊपर से बहुत फोर्स के साथ पानी आता है और एक एक करके तमाम निर्माण टूटते जा रहे थे। ये इस फ्लड के फोर्स को बताने वाली एक और तस्वीर है। देखिए कितनी बड़ी चट्टान है और नदी में ऐसे बह रही है जैसे कोई गुब्बारा होगा। ये वीडियो डरा रहा है। ये 26 अगस्त का ही वीडियो है। बाढ़ आने से पहले भगदड़ मची है। हर कोई बस अपनी जान बचाना चाहता है। लोग कारों को और बाइक को बहुत तेज स्पीड में दौड़ा रहे हैं क्योंकि पीछे से फ्लड आ रहा है। किसी की गोद में बच्चे हैं, सामान है। पता नहीं इनमें कितने लोग बच पाए होंगे, लेकिन इन लोगों ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। और फिर आता है पानी पूरे फोर्स के साथ। ये एक भरा पूरा बाजार दिख रहा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं बिना इस अनुमान के कि ये फ्लड कितनी तबाही मचाने वाला है। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत थे जो मिल जा रहे हैं और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा, आज तक।
1: हर प्राकृतिक त्रासदी अपने साथ एक नई त्रासदी लेकर के आती है और वो होती है मानवीय त्रासदी। नेपाल में इस आपदा के बाद कई लोग अपनों से पिछड़ गए हैं। उन बिछड़ों को मिलाने के लिए अलग अलग कैंप बनाए गए हैं और उसी नुआकोट के कैंप में जब मैंने पहुंचा, वहां मैंने देखे हैं लोगों की भावनाएं, लोगों की आंखों में आंसू। इंतजार अपनों के, जिनको बचा कर लाया गया, क्या उनका लिस्ट में नाम है या नहीं, और जिनके अपने नहीं मिले वो गमगीन है।

0: भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद नेपाल में यही हालात है। लोग ऐसे ही सरकारी कैंपों में जा जाकर अपनों को तलाश रहे हैं। किसी का पिता खो गया, कोई अपने घर से पिछड़ गया, किसी का पति नहीं मिल रहा। अपने रिश्तेदारों को खोजते हुए लोग ऐसे ही भटक रहे हैं।
1: किसको खोज रहे हैं? ये कौन है?
2: ये हमारा छोटा चाचा जो मिसिंग फ्रॉम गटेकुल्लो रसुआ। हम 3 दिन से इधर आकर ढूंढ रहा हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं।
0: असल में 26 अगस्त को जब नेपाल के 3 बड़े जिलों में यह फ्लैश फ्लड आया तो लोग नदी की घाटी छोड़कर ऊपरी इलाकों में चले गए। जो खुशकिस्मत थे इसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा परिवार बच गया। जिसको जैसा मौका लगा वो भाग गया, ऐसे ही जंगलों में चला गया। लेकिन इन तमाम लोगों के परिवारों के बहुत से सदस्य आपस में बिछड़ गए। अब ये लोग नेपाल सरकार के ऐसे ही कैंपों में जाकर अपनों को खोज रहे हैं। नेपाल की सेना दूर दराज के जंगलों और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालकर ऐसे ही कैंपों में ला रही है।
3: मैं इस समय नुआकोट के सबसे आखिरी बाजार के उस बेस कैंप पे हूँ जहाँ पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, एयर ऑपरेशन चल रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेपाल पुलिस के वो लोग हैं और प्रहरी हैं जो दरअसल नागरिक सुविधा केंद्र बनाई है, और वो इसलिए जरूरी है कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में यहाँ जानकारियां दी जा रही हैं, वो इन जानकारियों को दर्ज कर रहे हैं और उसके बाद जिन लोगों का को रिकवर कर लिया जा रहा है, जिनको वापस इवैक्यूएट कर लिया जा रहा है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो लोग लापता हैं उनको खोजा जा सके। अभी भी देखेंगे आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है, तो दूर दराज के इलाकों से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास ये नाम हो, जरूरत के लोग हो, कौन कहाँ है, तो सर यहाँ पर किस तरह की जानकारी दर्ज की जा रही है?
4: ये तो हरा को मान्छे को अनि त्यो सम्पर्क विहीन भएको मान्छे त
3: छोडेन। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जो लोग मिसिंग है उनको इस तरह की जानकारियां इन्होंने दर्ज की हुई है। और कोशिश ये हो रही है कि जब अपनों को खोजने के लिए लोग आते हैं तो उनको बताया जा सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है तो उनको कहाँ ले जाया गया है।
0: नेपाल के नुआकोट के इस बेस कैंप पर हर तरफ दर्द ही दर्द है। जैसे ये लड़की, इसके पिता नहीं मिल रहे। जब से ये बाढ़ आई है वो तब से लापता है। उसके साथ के बाकी लोग आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ लिस्ट में बार बार नाम चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता का कुछ पता नहीं चल पा रहा।
5: मेरे भिनाजू, भिना ब्रदर,
6: ये भाभी हैं आपकी?
5: भाभी नहीं, मेरे पांजी, पांजी वो दीदी, जीजा।
6: अच्छा,
5: जीजा।
6: इस लिस्ट में नाम नहीं है?
5: नाम नहीं है। इसका पापा,
3: इस त्रासदी में इस बेटी को उम्मीद थी कि जिन लोगों का नाम पर्चे पर है उनमें एक नाम इसके पापा का भी होगा जो तैमूरे के पास हो गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। राहत बचाव कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, सब बहुत लोग लौटे हैं लेकिन इस बच्ची के पापा नहीं लौटे हैं। और अभी तक पापा के इंतजार में ये बेटी, आंखों के आंसू यहाँ पर सामान्य है। ये पीड़ा जो है बहुत सारे लोगों के अंदर है जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी बचा लिया जाएगा। लेकिन ये राहत बचाव कार्य जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, और इसीलिए जब ये नाम निकल करके इन जगहों पर आते हैं कि इन लोगों को बचा लिया गया है तो बहुत सारे लोग उम्मीद में आते हैं कि शायद उनके अपने भी लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से इस त्रासदीग्रस्त नेपाल में दिखाई दे रहे हैं।
0: यहाँ ऐसी एक नहीं बहुत सी कहानियां हैं। किसी का भाई लापता है, किसी का कोई और रिश्तेदार, किसी की बाढ़ आने के बाद बात हुई थी लेकिन अब 2 दिन से फोन नहीं मिल रहा और ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है। सरकार के कैंपों में आकर लिस्ट चेक कर रहे हैं कि शायद आर्मी कहीं से बचा कर लाई होगी, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है।
7: मेरा भाई का नाम खोज रहा है लेकिन इधर नहीं है।
3: कहाँ पर काम करता है?
7: पेत्रावती में काम करता है, जॉब उधर करता है मेरा भाई।
3: कितने लोगों को देख करके लगा कि वापस उम्मीद बनी कि भाई भी आ जाएगा?
7: आ जाएगा, आज लग रहा है लेकिन संपर्क भी नहीं है ना, किधर है, कैसे है, कैसे हालत में है, क्या क्या कर रहा है मालूम नहीं। फोन में हुई घटना होने के 2 दिन बाद अगला दिन बात हुआ था लेकिन उसके दिन बात ही नहीं हुआ अभी तक।
8: मैं अपना सालों को खोज रहा हूँ, पता चला उनके बारे में? कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक।
3: वो कहाँ पर थे?
8: वो कहाँ पर थे? वो टिमोरे में थे, टिमोरे,
3: टिमोरे
8: रसागढ़ी, वो नाका में थे। ड्राइवर था, एक सीनू कंपनी का गाड़ी चलाता था, वो अभी 3 दिन से लापता है।
3: नाम इसमें नाम है उनका?
8: नाम देख रहा हूँ, एक ही नहीं, कल सुबह रही मैंने
9: उसका नाम नहीं टिपाया था, अभी अब ये रेस्क्यू टीम में हुए कि नहीं,
10: वो लोग है जिनको बचाया गया।
9: हाँ ये बचाया गया है, उसका मैं नाम देख रहा हूँ।
0: इन लोगों में श्रेयस खुशकिस्मत था। श्रेयस उस दिन अपने कॉलेज गया था जब बाढ़ आई, कॉलेज में हल्ला हुआ तो वो भी जान बचाने के लिए भागा। अब दो दिन के बाद पता चला है कि उसके माता पिता भी मौका रहते भाग गए थे, वो नदी के दूसरी तरफ है, लेकिन श्रेयस वहाँ कैसे जाएगा क्योंकि इस त्रासदी में तो सारे पुल ही बह गए।
9: श्रेयस जिस इलाके में रहते थे वहाँ कुछ बचा नहीं है, इनका घर चला गया था, माता पिता के बारे में पता चला तो वो सुरक्षित इलाकों पर नदी के उस पार चले गए त्रिशूली के। अब ये सोच रहे हैं किसी तरह रास्ता मिल जाए तो ये भी अपने माँ बाप के पास उस घर में पहुंच जाए। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं यहाँ पर कि लोगों ने। तो नेपाल में आई इस त्रासदी पर लगातार हमारी रिपोर्ट जारी रहेगी, पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। विशेष में फिलहाल इतना ही, रुक रहे हैं छोटी से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्षी दल चीनी, गुड़, प्याज, सब्जी के दामों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई विरोध का प्रदर्शन ऐसा कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को एक एक किलो चीनी उपहार के रूप में भेंट कर दी।
1: की शक्कर को तोहफे के रूप में आपने क्यों चुना, क्योंकि आमतौर पर लिफाफा दिया जाता है बहनों को।
2: शक्कर के भाव जो किसी जमाने में 20-25-30 थे, आज 70-75 हो गए।
0: शक्कर के भाव से पूरा हिंदुस्तान परेशान था। इस बीच विपक्ष ने तमाम आंकड़े पेश करने शुरू कर दिए। चीनी एक महीने में 20%, गुड़ 15 दिन में 25%, चाय पत्ती 2 महीनों में 20%, प्याज 1 महीने में 45%, हरी सब्जियां 2 दिनों में 30%, धनिया 15 दिन में 100%, और ये सिलसिला थमता ही नहीं। हाँ, प्याज की महंगाई का उपाय सरकार ने जरूर तलाश लिया। नासिक से 450 टन से ज्यादा प्याज लेकर प्याज एक्सप्रेस दिल्ली पहुंच चुकी है। सरकार की तरफ से सड़क मार्ग से प्याज की सप्लाई चेन्नई, कोलकाता, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, वाराणसी, लखनऊ, पटना, चंडीगढ़, जम्मू और अमृतसर जैसे दूसरे बाजारों तक की जा रही है। लेकिन मामला सिर्फ प्याज की महंगाई का नहीं, त्योहारी सीजन में चीनी की महंगाई का भी मुद्दा है। विपक्ष चीनी की महंगाई को लेकर एथेनॉल वाला डबल अटैक कर रहा है।
3: ये बात हो रही है और महंगी हो गई चीनी, वहीं सोचिए मिलावट के लिए कानून होता है, क्या मिलावट नहीं कर सकते? लेकिन सरकार तो पेट्रोल में मिलावट कर रही है, एथेनॉल का लाभ, चीनी महंगी का लाभ, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचा करके, क्योंकि चुनाव आने वाला है, उसे चंदा तो नहीं लिया जाएगा।
4: चीनी घोटाला तो जरूर हुए हैं, चीनी घोटाला होने के चलते और बाजार में सारे चीनी के दाम में आग लग चुके हैं, तो सारे गन्ने जब इथेनॉल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो चीनी बनाने के लिए गन्ने कहाँ मिलेगा।
0: हालांकि चीनी की महंगाई का एथेनॉल कनेक्शन सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है, पर महंगाई का शोर सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं। पिछले साल इसी अगस्त महीने की तुलना में देखा जाए तो अगर 41 रुपए किलो की चीनी 63 रुपए किलो है तो 40 रुपए का गुड़ 66 रुपए किलो है, 250 रुपए किलो की चाय पत्ती 276 रुपए किलो है, 27 रुपए किलो वाला प्याज 55 रुपए किलो है, 140 रुपए का लहसुन 250 रुपए किलो में है, पेट्रोल 94.77 रुपए से 7.35 रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, डीजल 14.53 रुपए महंगा होकर 102.15 रुपए प्रति लीटर का मिल रहा है, सीएनजी का दाम 76.09 रुपए से 6 रुपए ज्यादा बढ़कर 83.09 रुपए हो चुका है, रसोई गैस 853 रुपए से 89 रुपए बढ़कर 942 रुपए। वैसे चीनी की महंगाई पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच चीनी उत्पादक संघ ने दावा किया है कि अगले हफ्ते तक चीनी के दाम स्थिर हो जाएंगे, लेकिन प्याज और बाकी सब्जियों के दाम की अस्थिरता का इंतजार देश को अब भी बना हुआ है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: तक 587 लोगों की मौत, करीब 1000 लापता। काठमांडू से दिल्ली लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ दिल्ली से विमान रवाना। आपदाग्रस्त इलाकों में रोका गया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिलासपुर में टला विमान हादसा, दिल्ली से आ रहे अलायंस एयर का टायर लैंडिंग के दौरान फटा, प्लेन में थे कुल 38 लोग। पेपर लीक के आरोप के बीच सरकार का बड़ा निर्णय, एनटीए में 2 निदेशक एक ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति, अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 729.3 बिलियन डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा, लेकिन औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में आई हल्की गिरावट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एक बार फिर इस नदी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और पानी का आवेग बढ़ रहा है, इसीलिए लोगों को इधर रोक दिया गया है सबको।
1: अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
2: एक बार फिर से उसी प्रकार की आपदा का, उसी तरीके की त्रासदी का जो है कह सकते हैं अलर्ट जारी किया गया है और आशंका भी बढ़ी हुई है।
0: चीन की तरफ से जो चेतावनी दी गई है उसके बाद यहाँ पर उन सभी कनेक्टेड नदियों का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: नदी का स्तर है जो बढ़ने लगा है। सर, क्या पानी फिर से बढ़ रहा है यहाँ पे? देखे, ये पुलिस है और लगातार लोगों को कह रहे कि यहाँ से निकलिए, आगे की ओर जाइए। अब तमाम सारे जो लोग हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है।

0: नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं, वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मैं इस समय नेपाल के काठमांडू में मौजूद हूं, जहां पर पूरी अपडेट्स जो त्रासदी है उसके बाद की दी जाती है। आज मैं अलग अलग इलाकों से आपके लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स लेकर आई हूं। हमारी टीमें नेपाल के अलग अलग हिस्सों को कवर कर रही हैं और आपको लगातार अपडेट्स दे रही हैं। आज का दिन बहुत मिला जुला था, क्योंकि अचानक रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस के बीच में ये खबर आई कि एक और झील का जो बांध है वो टूट रहा है। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोकना पड़ा, जिसके बाद वापस वो रेस्क्यू ऑपरेशंस शुरू हुए और अब उस पानी के बढ़ते हुए झील को बस ध्यान से मॉनिटर किया जा रहा है। अब तक का अपडेट ये है कि मरने वालों की संख्या 587 हो चुकी है, 1000 से ज्यादा लोग लापता है, 315 भारतीयों की तलाश चल रही है। चीन से आज 153 भारतीय हालांकि नेपाल पहुंचे, आज ही नेपाल त्रासदी से बचाकर 21 भारतीयों वापस भारत लौट चुके हैं। नेपाल और तिब्बत में एक और झील का पानी बढ़ने से खतरा मंडरा रहा है, उसकी वजह से कुछ देर के लिए राहत और बचाव कार्य को भी रोका गया। लगभग 3 घंटे तक रिलीफ ऑपरेशंस को रोका गया था। हम सबको भी उन एरिया से पीछे हटना पड़ा था जहां पर नदी का फ्लो ज्यादा उस समय नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद 3 घंटे बाद वहां पर बचाव कार्य राहत कार्य एक बार फिर शुरू हो गया। लेकिन जो नए झील से जिससे संकट पैदा हो रहा है उसमें 25 लाख क्यूबिक मीटर पानी बताया जा रहा है कि जमा हो गया है।
1: नेपाल में तबाही के वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले, भोटे कोशी नदी में अचानक आया सैलाब अपने पीछे जीवन भर का गम छोड़ कर गया है। भारत नेपाल को खबरदार कर रहा है कि ग्लेशियर टूटने का खतरा अभी टला नहीं, लेकिन अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा, आशियाने डूबेंगे। जान बचाने के लिए इंसानी बेबसी फिर दिख सकती। इस वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों से भागने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सैलाब ने 26 अगस्त को उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। मुट्ठी भर लोग पहाड़ की तरफ भाग पाए, लेकिन इस सैलाब में वो बच पाए होंगे ये बड़ा सवाल। सबसे चिंता की बात ये कि नेपाल में अब तक खतरा टला नहीं, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील हट गई। ये झील चोचिन नदी और पुरेपु सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई। मतलब 26 अगस्त को ग्योरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद दोभान में झील फट गई। सोचिए, जो नेपाल एक झील फटने की तबाही की मार झेल रहा है, क्या वो एक और प्राकृतिक आपदा का मुकाबला कर पाएगा? सवाल है कि क्या नेपाल में एक बार फिर नुवाकोट के मशहूर त्रिशूली बाजार की तरह दुनिया तबाही देखे, जिसके लिए 26 अगस्त की सुबह विनाश लेकर आई। यहाँ रहने वाले लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे, क्योंकि पीछे साक्षात मौत नाचते हुए आ रही। लेकिन चीन ने बताया कि इससे भी बड़ा खतरा अभी बाकी है। चीन के मुताबिक तिब्बत में शुक्रवार सुबह तक नई झील में 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा होने का अनुमान है। अगले 3 दिन में 30 लाख क्यूबिक मीटर हो सकता है। मतलब नेपाल के ऊपर से तबाही का साया अभी हटा नहीं। नेपाल की मुसीबत यह है कि सिर्फ भोटे कोशी में ही उफान को लेकर उसे सतर्क नहीं रहना। जो भोटे कोशी आगे जाकर त्रिशूली नदी बन जाती, तेज बारिश से उसका भी जलस्तर बढ़ रहा है।
0: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है। तो अभी जिस तरीके से आप जल की ये धारा को तेज होकर बहते हुए इस समय यहाँ पर देख रहे हैं, जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
1: नेपाल के लिए खतरा अभी टला नहीं, बल्कि बड़े खतरे से सामना होना बाकी, जिससे नेपाल की घबराहट बढ़ गई है। चारों तरफ अफरा तफरी है। सरकार लोगों को तुरंत सुरक्षित जगह पर जाने को कह रही है।
2: कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में। नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
2: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
2: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
2: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है, और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है, और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुँच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नदी के किनारे जो है वो लोग वहाँ से चले जाएं और इनको खाली कराया जा रहा है। कितने भी लोग हैं? और ये कहा गया कि यहाँ से निकल जाएं क्योंकि नेपाल की ओर से फिर एक बार बाढ़ का खतरा है, संभवतः वहाँ से वाटर डिस्चार्ज हुआ है, तो लोगों को कहा गया है कि वो यहाँ से निकल जाएं। अभी एक त्रासदी से नेपाल उभरा नहीं था कि अब एक बार दूसरे बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
1: नेपाल में तबाही की अगली किश्त बोटेकोशी नदी से ही आई, इसलिए इस नदी पर नेपाल प्रशासन ने अपनी नजरें गड़ा दी। नेपाल पुलिस के लोग लगातार ऊंचाई से इस नदी का मुआयना कर रहे हैं। मकसद साफ है कि जैसे ही पानी का बहाव तेज होगा लोगों को खबरदार किया जाए। नेपाल का प्रशासन बोटेकोशी नदी का बहाव और जलस्तर देखने के लिए लगातार हेलीकॉप्टर से नजर बनाए हुए है। इस नदी का हवाई सर्वे किया जा रहा है
4: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है, इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
5: कितने हेलीकॉप्टर?
4: दो सेना का हेलीकॉप्टर है, 9 वाला और निजी क्षेत्र प्राइवेट ये सब चेने हेलीकॉप्टर लग रहे हैं, हम लग रहे हैं, और जितने भी हम प्राप्त कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं हम।
1: सोचिए जिस नेपाल को तबाही ने अधवारा कर दिया, उसे अभी इससे भी बड़े सैलाब को लेकर चीन खबरदार कर रहा है। चीन के ड्रोन से ली गई ये तस्वीर नेपाल को डराती है। ये सुबह सुबह की तस्वीर जिसमें बर्फ से ढके पहाड़ पर ड्रोन ने हिमस्खलन से खबरदार किया है। चीन की तरफ से एक और वीडियो इस झील का जारी किया गया जिसमें चीन के बचाव कर्मी ड्रोन को इस झील के ऊपर उड़ाते हैं तो पता चलता है कि झील में काफी पानी भरा हुआ है, मतलब खतरा बरकरार है, जिससे नेपाल के सतर्क रहने में ही भलाई है क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरें इससे बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है, जिसमें ग्लेशियर के 2/3 हिस्सा ढकने की बात इसरो की तरफ से बताई जा रही है, जो चेतावनी है कि हिमालय के ग्लेशियर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से तबाही के वाटर बम में तब्दील होते जा रहे हैं।
0: नेपाल में पिछली तबाही से कई गुना ज्यादा तबाही आने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन दरअसल हम हिमालय के पूरे क्षेत्र को देखें तो वो पूरी तरीके से बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही नाजुक एक ऐसा जोन है जिसको लेकर बहुत ख्याल रखने की जरूरत होती है प्राकृतिक रूप से, क्योंकि हम भारत में पहले भी देख चुके हैं कि केदारनाथ का हिस्सा हो, चमोली हो, सिक्किम में तो बार बार इस तरह की घटनाएं देखने के लिए मिली, पर नेपाल में ग्लेशियर टूटने को लेकर जो जानकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो सावधान कर रहे हैं।

0: नेपाल में ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा, पानी फिर किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियर झील फटने की हालात में है। इसरो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियर झीलें हैं। इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त टूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झील के रूप में मौजूद हैं। पहाड़ों पर झील बनने की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ लद्दाख में ही 3,219 ऐसी झीलों की पहचान की गई। सबसे खबरदार करने वाली बात ये कि इन झीलों की प्राकृतिक दीवारें बहुत कमजोर होती हैं। इसीलिए हिमालयी क्षेत्र में आने वाला भूकंप, भारी बारिश या फिर एवलांच इन दीवारों को तोड़ सकता है। सिक्किम की लोनक झील और उत्तराखंड की चमोली में आए जल प्रलय इसका जीता जागता उदाहरण है।
1: क्योंकि ग्लेशियर जो हैं वो वीक पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उसकी वजह से, और तीसरा हमारे जो नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो उनको वीकन करते हैं। तो उस वजह से क्या हो गया है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे मॉनिटर करें।
0: एक्सपर्ट कहते हैं कि ये खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि हिमालय में टूटे ग्लेशियर लगातार बढ़ रहे हैं। इसीलिए तबाही कभी साल 2013 में केदारनाथ तो कभी चमोली और सिक्किम के रूप में सामने आती है, क्योंकि हिमालय में ज्यादातर ग्लेशियर फ्रैक्चर्ड हो रहे हैं, यानी उनमें ठोस बर्फ की कमी हो रही है। कुछ ऐसे ग्लेशियर हैं जिनमें बीच बीच में बर्फ का घनत्व कम हो गया है। ऐसी स्थिति में लाखों टन वजनी बर्फ के पहाड़ अपना सपोर्ट खो रहे हैं और हैंगिंग यानी लटके ग्लेशियर की तरह खड़े हैं, जो कभी भी हल्के भूकंप, भारी बारिश और एवलांच से गिरकर बड़ी तबाही ला सकते हैं।
1: उस मॉनिटरिंग में फ्रैक्चर जो ग्लेशियर हैं बेसिकली वो टूटे हुए हिस्से होते हैं, जैसे कि आप एक पूरा फिक्स है अपने मोरिन पे, लेकिन वो अगर हिल जाता है तो एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्रैक्चर हो जाता है। ये जो मूव कर रहे होते हैं तो उसमें फ्रैक्चर हो जाते हैं, और फ्रैक्चर होने की वजह से उनके टूट के गिरने की या लेक पे या रिवराइन सिस्टम को ब्लॉक करने की संभावना बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से संभावित खतरे होते हैं। तो जो फ्रैक्चर आप कह सकते हैं ग्लेशियर है, वो इन सिंपल टर्म जो ग्लेशियर के वीकन पार्ट हैं, टूटे हुए क्रैक्स को दिखाने वाले संरचना हैं।
0: नेपाल में भी तबाही की शुरुआत ग्लेशियर का हिस्सा टूटकर नदी में गिरना रहा, जिससे ऐसी भयानक तबाही मची कि लोगों को बचने का मौका नहीं मिला। तिब्बत में बनी जिस पोस्ट से भारतीय कैलाश मानसरोवर जाते थे, जिसे चारों तरफ से सैलाब ने घेर कर दुनिया को डराया, वो 26 तारीख के बाद साफ हो गया। आप देख सकते हैं कि बॉर्डर पोस्ट तबाही से पहले देखी जा सकती है, लेकिन तबाही के बाद उसका नामो निशान नहीं दिखता है। चीन की सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में नेपाल चीन का बॉर्डर पूरी तरह तबाह दिखता है। इंसानी बस्तियां और रास्ते गायब हो गए। नेपाल का यह हादसा बताता है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
2: पड़ेगा ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है, और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: चीन की तरफ से जारी अब सैटेलाइट तस्वीरों को देखिए, जो बताती है कि झील ओवरफ्लो हो रही है। इसके बाद नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया, क्योंकि 26 तारीख जैसी तबाही का खतरा नेपाल में बढ़ रहा है। अब सवाल है कि इससे बचने का तरीका क्या है, भारत ऐसी आपदा से बचने के लिए क्या कुछ कर सकता है।
1: दो तरह के रिस्क होते हैं, पहले मैं वो बताना चाहूंगा। एक्चुअली पहला गल्फ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और दूसरा क्या है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो ग्लेशियर फ्रैक्चर होता है और फिर वो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देता है, जो हमने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन नेपाल में देखी, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। अब इसको लेकर भारत सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। सबसे पहला अगर आपको ध्यान हो तो मिशन मौसम लॉन्च हुआ लगभग 2 साल पहले, जिसमें वेदर रिलेटेड मॉनिटरिंग फोरकास्ट को बढ़ावा देना ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्थगन किया जा सके। दूसरा अगर आप देखेंगे कि इसमें हमने सैटेलाइट और मशीन लर्निंग या एआई का यूज बढ़ाया ताकि जो हमारी फोरकास्टिंग यानी कि जो टाइम लैग है उसे कम किया जाए।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी करके ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर तबाही की टिक-टिक से कम नहीं है।
3: नेपाल में आज एक अच्छी खबर भी आई, जब जो त्रिशूली का जो हाइड्रो पावर टनल है वहां से लोगों को रेस्क्यू किया गया, 300 से अधिक लोग वहां से रेस्क्यू किए जा सके। लेकिन क्या वो टनल ही एक तरीके से तारणहार बन गया, क्योंकि जब लोगों को वहां से निकाला गया तो बहुत राहत तो हुई, लेकिन ये समझिए कि वो थोड़ी ऊंचाई की जगह पर है, वो हायर ग्राउंड है, उसी से नीचे जो दूसरा इलाका है, जो देवी घाट का इलाका हो जाता है, वो निचला इलाका है और वहां पर भयंकर तबाही मची। देखिए वहां से मेरी ये खास रिपोर्ट।
0: क्या ये टनल ना होती तो 350 लोग जिंदा ना बचते। क्या त्रिशूली की टनल ने ही त्रिशूली नदी में आई प्रलयंकारी बाढ़ से सैकड़ों को बचाया। क्या त्रिशूली की टनल ही नेपाल में प्राण बचाने वाली रक्षक बनी। नेपाल आर्मी के ऑपरेशन त्रिशूली की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। 26 अगस्त की सुबह से लेकर अब तक नेपाल में 50 किलोमीटर से लंबा दायरा है, जहां किसी का बचना अब चमत्कार माना जाता है। जहां त्रिशूली नदी में आए विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने अपने साथ मकान, दुकान, इंसानों को या तो बहा दिया या फिर मलबे में समेट दिया। आसमानी तस्वीर बताती है, नेपाल में अब जो भी जिंदा बचता है उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन वो बच पाया क्योंकि या तो वो ऊपर की तरफ भागा या फिर उसने सहारा लिया एक टनल का। जिसे खोजा नेपाल आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हेलीकॉप्टर ने, जिन्हें अचानक एक मजदूर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल नंबर 3A के पास बचाव की मदद मांगता नजर आया। हेलीकॉप्टर देखकर मानो इस शख्स को लगा कि प्राण मिल गए, ये तुरंत आगे की तरफ भागने लगा। लेकिन सेना के जवान नेपाल में जानते थे खतरा आगे कितना बड़ा है, इसलिए जैसे ही सुरंग के बाहर फैले फ्लैश फ्लड के मलबे की तरफ ये भागता है, इसे रोका जाता है। ये वापस टनल के मुहाने के पास चट्टान के करीब जाकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मलबा ऐसा है जिसमें तेजी से भागने पर पैर फंस जाता है, तो उसे बाहर निकालना पहले से ज्यादा कठिन हो जाता है। इसीलिए दलदली मलबे से दूर इस शख्स को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ट्रॉली तैयार की जाती है, जिससे दो जवान नीचे आते हैं। फिर इस ट्रॉली में बैठकर नीचे उतरे जवान मजदूर के पास पहुंचते हैं, उसे ट्रॉली में बैठाया जाता है। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठता है और फिर हेलीकॉप्टर से ट्रॉली को ऊपर खींचा गया। इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन इसका पूरा हुआ। इसी के बाद सेना को पता चलता है कि त्रिशूली के इस 4 किलोमीटर लंबी टनल में अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे। फिर तुरंत नेपाली सेना ऑपरेशन को और विस्तार देती है। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहां दलदल वाला कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल यानी रेंगते हुए भीतर जाना पड़ रहा है। यहाँ मलबा इतना था कि एक जवान बड़ी मुश्किल से भीतर गया, फिर दूसरा जवान आता है और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो सके। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई है ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो खुद ना फंसे। फिर हाथों के सहारे रेंगते हुए जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया है। हर मजदूर को ऐसे यहाँ पर रेस्क्यू करके बाहर लाना कितना मुश्किल था ये इन तस्वीरों में दर्ज है। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधे पर भी उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चलते हैं तो पैर इनके धस रहे हैं। एक मजदूर तो इस मलबे में पूरी तरह फंस गया, वो आगे बढ़ तक नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया क्योंकि इस गेट पर मलबा ही मलबा दिखता है। नेपाली सेना का दावा है यहाँ पर 350 मजदूरों को बचाया गया है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, यहाँ भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया। वरना इसी टनल से नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है जहाँ आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची है और बताती है कि किस तरह देवी घाट में बहुत कुछ तबाह हो गया।
3: ये देवी घाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवी घाट बाजार है पूरा। त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा, और साथ ही वो दुकानों के शेड्स, इधर मंदिर का भी हिस्सा है जो पूरी तरीके से मिट्टी और मलबे के नीचे है।
0: श्वेता सिंह नेपाल में जहां से रिपोर्ट कर रही हैं, ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर मौजूद एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग तो बच गए लेकिन नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया।
3: ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बह चुका है। बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है ये रेसिडेंशियल एरिया है और घरों की आग का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान

0: लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा।
1: देवीघाट के इस इलाके में अब कुछ चंद लोग मिलते हैं, जो बचे हैं वो बताते हैं कितना खतरनाक रहा है लोगों को यहाँ बचाना तक।
2: अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है।
3: तो कितना फूट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं?
2: इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है, इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए,
3: धस सकते नीचे,
2: पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे, सुबह इधर नीचे से आपका दो आपका सब निकाला गया, एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिनाई है।
3: दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा?
2: हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता है।
0: यहाँ पर आप जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनको देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, इसके आगे फिर बाजार का एरिया हो जाता है जो मिट चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और कोशिशें यही जारी हैं कि किसी तरीके से जल्दी रिलीफ का ये काम किया जा सके, जो हमारे ये आप कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि कोशिशें ये हो रही हैं कि यहाँ जो गांव वाले जो अधिकांश लापता बताए जा रहे हैं उनको किसी तरीके से ढूंढा जा सके।
4: घर थे सब पूरा घर ही घर थे नहीं था, मंदिर भी मंदिर थे, घर थे, रोड थे, अनि राम्रो ठाउँ थियो नि,
0: सब अच्छा था। यहाँ
4: छैन अब, अहिले केही छैन,
0: अब कुछ नहीं।
1: त्रिशूलू में ऊपर से नीचे तक 3 दिन बाद भी तबाही के नए वीडियो सामने आते हैं जो बताते हैं कि बाढ़ किस तरह तबाही मचाती गई। सैलाब में सब कुछ बहा, नीचे बने निर्माण तो ऐसे टूटे जैसे कागज गेहूं। ये भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का ही वीडियो बताया जाता है। ऊपर से बहुत वेग के साथ पानी आया और तमाम मजबूत निर्माणों को तोड़ता चला गया। जहां तबाही के सैलाब के बाद जिंदगी की तलाश जारी है। श्वेता सिंह, देवीघाट, त्रिशूली, नेपाल आज तक।
0: नेपाल ने दूसरे देशों से रिलीफ के रूप में तो मदद स्वीकार की है लेकिन रेस्क्यू टीमों की मदद स्वीकार नहीं की है। इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें भले ही की जाएं लेकिन नेपाल की जो सेना है, यहां के पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो लगातार चाहे जो मलबा हटाना हो या फिर लोगों को रेस्क्यू करना हो, निकालना हो या फिर उन्हें रिलीफ पहुंचाना हो, ये सारे काम वही कर रहे हैं। नेपाल में ही विदुर का जो इलाका है वहां पर एक मिलिट्री बेस है जहां जिसको इस समय एक एयरबेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी हैं और जो सिविलियन हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन ये जगह इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी जगह पर लोगों को वापस लाने के बाद वो लिस्ट अपडेट होती है कि कितने लोग मिल गए, कितने बच गए, कितने आप अगर ढूंढ रहे हैं तो उन्हें इन सूचियों में ढूंढ सकते हैं। जिनका नाम नहीं होता वो लोग मायूस हो जाते हैं, उनके परिजन मायूस हो जाते हैं। देखिए वहीं से ये खास रिपोर्ट।
1: हाथ में मोबाइल इस कदर कसकर पकड़ा है कि एक मैसेज, एक कॉल छूट ना जाए जिससे सलामती की खबर आनी है। उस लिस्ट को टकटकी लगाकर देखती आंखें हैं जिनमें गुमशुदा अपने नाम की तलाश है। बैठा हुआ दिल, थम थम कर चलती सांसें, आंखों की पुतलियां 360 डिग्री लगातार घूमती हुई, भौहें ना चाहे बिना भी ऊपर खींची हुई। एक रजिस्टर जिसमें खबर आने के बाद दर्ज होता है नाम और तय होता है कि अपनों को लेकर भगवान को शुक्रिया कहना है या मुंह से निकलेगा हे भगवान। नुआकोट में विदुर आर्मी बेस पर आज तक संवाददाता श्वेता सिंह के कैमरे में कैद एक एक तस्वीर नेपाल की त्रासदी का सबूत है। जहां गुमसुम बैठी एक बहन मिलती है इस इंतजार में कि काश रक्षाबंधन के दिन ही भाई की सलामती की खबर मिल जाए।
5: आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है,
6: आपको तो पता भी नहीं,
5: तो सोच ही नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है उसके दिन भैया वापस आ जाए, बस मिल जाए जानकारी।
1: किसी को भाई का इंतजार है

0: को अपने पिता के बचने का।
1: पापा नहीं मिल पा रहे हैं। कहाँ कहाँ पर से आए हैं आप लोग? यहीं रहते हैं। 26 तारीख के बाद नहीं मिल पाए।
2: अभी उधर मिसिंग है, 46 लोग फंस रहे हैं। अभी रेस्क्यू हो रहा है, अभी बंद हो गए, फिर से बाढ़ आया।
0: कोई अपने दोस्त को तलाश रहा है।
1: हो गया आपका?
3: हाँ, मेरा दो चार लोग हुए।
1: तो लिस्ट बार बार नहीं आ लगता है।
3: आ रहा है
1: अभी
3: तो,
1: लिस्ट में आ गया नाम कि नहीं?
3: नाम नहीं, पता नहीं, कहीं नहीं।
1: कैसे घूम रहे हैं? बहुत मुश्किल हो रहा होगा।
3: नहीं, कुछ नहीं पता है कि कैसे इसमें नहीं
4: है। कॉन्टैक्ट
3: भी नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है।
4: रात को बाढ़ आया था, उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है।
0: नेपाल में दावा है 90,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, 1,000 से ज्यादा लोग मिसिंग है, जिनके नाम की तलाश इस वक्त नुवाकोट के आर्मी बेस पर चिपकने वाली लिस्ट पर करते परिजन हमें मिलते हैं।
1: यहाँ के ही जो लोग हैं, जो इधर नुवाकोट
5: भारत का भी है, तो बहुत है, भारत का भी है।
1: हाँ,
5: भारत का है ना, ये सब भारत का है। देखो ये लोग
4: सब भारत का है।
1: अच्छा,
5: वो भारत भारत बोल रहे हैं ना ये।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ।
5: वो भारत का है,
1: वो लोग मिल गए हैं।
5: हाँ, वो मिल गए हैं।
1: अच्छा,
5: और इधर इधर का है, नेपाल का है। हाँ।
1: तो ये पूरे एरिया में जितने लोग हैं, जो रसुआ के भी दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर आगे देखिए जो वो भारत का बता रहे हैं, ये टिमरे रसुआ से लोग जो मिले हैं, सैफ्रुवेशी रसुआ, किस्तार, नुवाकोट, तो ये पूरे एरिया से जो जो मिले हैं। और इधर देखिए ये जो भारत की तरफ से ये सूची है, जिसमें प्रमोद साहनी, सुदामा कुमार साह, चितरंजन, नेहा जलाम, ये सारी लिस्ट है पूरी, जो भारतवासी हैं जो अभी इसमें मिल गए हैं। अभी भी कई लापता हैं, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब आकर अपनों को ढूंढ रहे हैं कि कहीं उनका नाम हो तो जाकर रिलीफ कैंप में वो देख सकें। और हर कोई अपने घर वालों को यहाँ पर तलाशने के लिए आया है। लंबी सूची लगी है।
0: कोई छुट्टी मनाने आया नेपाल, कोई मानसरोवर यात्रा के लिए निकला, कोई हनीमून, कोई दोस्तों के साथ पहुंचा, कोई परिवार के साथ, जिनके अपने खो गए सब नजर रखे। कब नई लिस्ट लगेगी, उनके अपनों के बचने की गवाही मिलेगी।
1: जब भी कोई नया कुछ लोग मिलते हैं तो लास्ट में वो लिस्ट से स्नैड हो जाते हैं, और इसीलिए जो लोग यहाँ पर हैं वो वापस आकर यहाँ पर देखते हैं। तो वो पहले से जो लिस्ट लगी गई है, और ये जो सेकंड रो आप देख रहे हैं, उसमें जो भी नया मिल रहा है उन सबको यहाँ पर लाकर उनके नाम को यहाँ पर डाला जा रहा है, जिस इलाके से वो मिले हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप?
6: राजेश रोकर।
1: हाँ,
6: राजेश रोकर।
1: आपके दोस्त हैं, जानने वाले हैं कि?
6: जानने वाला है।
1: जानने वाले हैं आप? नहीं मिला अभी कहीं लिस्ट में नाम, नया लिस्ट लगा।
0: लिस्ट के अलावा यहाँ खड़े हर शख्स की नजर आर्मी के हर अगले लैंड करते हेलीकॉप्टर पर रहती है, क्योंकि लगातार नेपाल में लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करके जब निकाला जाता है तो बहुतों को इसी आर्मी बेस पर बचा कर लाया जाता है।
1: जिस जगह पर हम हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर जो नेपाल आर्मी है उसका बेस है। आप यहाँ पर देखिए, जो नेपाल आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, और उसके साथ ही जो सिविलियन चॉपर्स हैं वो भी इसमें मदद कर रहे हैं। तो उन सबको यहाँ पर, दरअसल कहीं से भी अगर कोई रेस्क्यू हो पाता है, जो एक दो की संख्या में ही है, और बहुत घंटे बीत गए हैं, एक भी नहीं हो पाया है, लेकिन जैसे ही एक भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर आता है, सभी लोग टकटकी लगाए यहाँ पर देखने लगते हैं कि क्या कोई आया तो नहीं, कोई पहुँचा तो नहीं, कोई नया नाम तो इस लिस्ट में नहीं जुड़ने वाला है। बहुत मुश्किल स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी जो नेपाल के सेना के जवान हैं उन सबको जवाब देना है, उन सबको संख्या वो लिखनी है, जोड़नी जानी है, एक भी संख्या में इजाफा बहुत बड़ा होता है।
0: जहाँ दावा है कि 1,000 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं, तब एक एक की तलाश बहुत जरूरी है, और इसमें नेपाल की सेना पूरे जी जान से लगी हुई है।
1: वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और सब आगे अब बढ़ रहे हैं। आप पहनावों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले लोग ये हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास वो बूट्स और वो औजार और वो यूनिफॉर्म नजर आ रहा है। उन्हें सीधा यहाँ पर लाकर यहाँ से आगे ले जाया जा रहा है। तो जो लोग यहाँ से आगे जाना चाहते हैं, जो लोग अपनों को तलाश रहे हैं, साथ ही जो लोग रेस्क्यू होकर लाए जा रहे हैं, उन सबको यहाँ पर और भी लोगों को आप देखिए आगे वहां पर वो जितना सामान हाथ में, कुछ उसमें टूरिस्ट भी लग रहे हैं जो अपने बैग्स के साथ आ रहे हैं। मोहसिन आपको दिखाएंगे वो क्लोजअप्स लेके उस एरिया के। अभी जो दो हेलीकॉप्टर्स आए हैं उसमें ही सवार कुछ जो मजदूर हैं और कुछ ये जो टूरिस्ट आपको दिख रहे हैं आगे बैग्स के साथ वो आगे जाते हुए, और जो बच गया है, जो मिल गया है, वो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत इस समय समझ रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, विदुर आज तक। ये जो त्रासदी हुई ये नेपाल तिब्बत सीमा पर हुई, वहां से पानी और सैलाब बहता हुआ आया और नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों में बर्बादी का वो मंजर नजर आया। न केवल नेपाल बल्कि चीन की सीमा के भीतर भी कई भारतीय फंसे। आज ही 150 भारतीयों को वहां से निकालकर नेपाल लाया गया, लेकिन अभी भी लगभग 315 भारतीय लापता हैं, उनके परिवार वाले बारीक सी उम्मीद की डोर को थामे हुए हैं।
0: नेपाल में तबाही याद दिलाती है कि कुदरत का गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, सब कुछ तबाह कर सकता है। वीडियो में बाढ़ के पानी और मलबे में घर पूरी तरह से घिरा हुआ दिखता है, जिसके दोनों तरफ से पानी बह रहा है। दुनिया को बता रहा है कि नेपाल के लोगों ने क्या कुछ झेला है। ऐसी ही तबाही से अब तक देश लौटने का चमत्कार 21 लोगों ने किया। नेपाल में बाढ़ से सुरक्षित निकाले गए तमिलनाडु के 21 कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्री काठमांडू से दिल्ली पहुंच गए। इन्हें नेपाली सेना ने बाढ़ प्रभावित इलाके से रेस्क्यू किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में इनसे मुलाकात कर आप बीती सुनी।
7: आई वॉन्ट टू से राइट नाउ वी आर स्टिल वेरी मच फोकस्ड ऑन कॉन्टेक्टिंग ऑल द इंडियंस हु आर डेड। We believe little more than 300, exact number keeps going up and down, about 315 Indians are still not been contacted. Roughly about 85 Indians have been rescued from various places, including this group of 21 people who have just arrived.
0: नेपाल त्रासदी में 650 से ज्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। वहीं कई लापता लोगों की तलाश जारी है। बाढ़ के बाद 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है या भी लापता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया करीब 100 भारतीय मूल के लोग भी संपर्क से बाहर हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लेकिन किसी दूसरे देश के नागरिक हैं।
8: हमारे पास जो लापता लोगों का जो लिस्ट है वो अभी 320 का है, लेकिन ये मान के चलिए चूंकि स्थिति हर घड़ी बदल रही है, इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके अलावा 100 ऐसे लोग हैं करीबन जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
0: भारत में कई परिवार इस वक्त बहुत परेशान है, अपनों का कुछ पता नहीं चल पाने से चिंतित है। मध्य प्रदेश के विदिशा की रहने वाली और कनाडा के टोरंटो में रह रही इंजीनियर स्वाति बागरेचा का परिवार भी इसमें शामिल है। स्वाति कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन तिब्बत सीमा के पास से लापता हुई। 26 अगस्त की सुबह 9 बजे परिवार से संपर्क टूट गया। स्वाति के मोबाइल पर अब भी घंटी जा रही है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हो रही।
9: वो मेरी सिस्टर है स्वाति, वो एक्चुअली कनाडा से आई थी फॉर ईशा फाउंडेशन ट्रैक के लिए जा रही थी। तो 2 वीक्स का ट्रैक था उसका, तो 13 को आई थी, 14 को उसने स्टार्ट किया था ट्रैकिंग करना। एंड 26th दिस इंसिडेंट हैपेंड, तो उसका लास्ट डे था लाइक व्हेन शी वाज कमिंग बैक टू काठमांडू।
0: परिवार कहता है कि जिस वक्त तबाही आई तब स्वाति नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर बने इमिग्रेशन पोस्ट में थी। तबाही के बाद स्वाति से संपर्क नहीं हो पाया। मोबाइल की लोकेशन चीन बॉर्डर के आसपास रही। परिजनों की मांग है कि संबंधित एजेंसियां उनकी बेटी की मोबाइल लोकेशन टेक्निकली ट्रैक करके स्वाति की सही लोकेशन का पता लगाएं।
10: पूरा ग्रुप था इनका, जिस ग्रुप में ये थी वो 77 लोग रही थे, अंदाज 77। वो सब लोग तो इमिग्रेशन हॉल में थे जब ये घटना हुई है, त्रासदी हुई है, और तेज बहाव से बिल्डिंग को बाहर ले गए सब लोग, ये लोग भी बाहर ले गए उसमें। अब अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये लोग सब इसकी स्थिति कहां पर है।
0: पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी लगातार ईश्वर से दुआ कर रहा है ताकि अपनों की किसी तरह खबर मिल जाए।
11: তো কয়লা সমুদ্র সে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরাও ওদের সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট করতে পারছি না, সেই জন্য আমরা বিভিন্ন আছি।
0: सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा।
12: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है। कल लास्ट बात हुई थी।
0: सुमार मंडल 16 अगस्त को सिलीगुड़ी से कैलाश मानसरोवर के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही तबीयत खराब हुई, वापस लौटना पड़ा और इसी दौरान वो नेपाल की त्रासदी में फंस गए। अब परिजनों का बुरा हाल है, घर वालों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि सुमार मंडल से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद कुछ पता नहीं चल रहा। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं लेकिन फोन नहीं लग रहा।
13: খবর মিলা হয় গতকাল 8 বাজে কথা হওয়া উসকা ছেলে সাথ নেপালকে তিব্বত বর্ডার মে ঢুকে গা পুলিশ আমার ঘর মে আয়া থা এই সুবামে আয়া থা ওনারা বলে গা যে ও মিসিং হ্যায়।
0: नेपाल और तिब्बत में बाढ़ भूस्खलन से अब तक 550 लोगों की जान गई, जबकि 1500 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। चीन में फंसे भारतीयों को निकालने की व्यवस्था की जा रही है।
14: चीनी तरफ टिबेट ऑटोनोमस रीजन जो है उस तरफ 400 के लगभग में भारतीय नागरिक वहां पर, जिससे हम संपर्क कर पाए हैं, और ये सभी लोग सुरक्षित हैं। इनकी अपने परिवारजनों से बात हुई है क्योंकि वहाँ पर टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध है, और इनसे हमारे एम्बेसी या तो इनसे खुद ही इनसे बात कर रहा है या इनके ट्रैवल एजेंट और इनके जो ग्रुप के लीडर हैं उनसे बात कर रहा है।
1: आपदा नेपाल में आई लेकिन उसके पीड़ित दुनिया के कई देशों के लोग हैं। सबसे बढ़कर कष्ट उन लोगों का है जो जिनके अपने लापता हैं, जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, जिनका फोन बंद है, उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कहीं से कोई लोकेशन, कोई खबर, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। किसी के पिता, किसी के भाई, किसी की बहन, सभी लोग टकटकी लगाए बस इंतजार में लगे हैं कि कहीं से कुछ तो अपने के बारे में जानकारी मिल जाए।
15: मोबाइल में अपने रिश्तेदारों की तस्वीरें देखती, ऊपर वाले से दुआएं मांगती ये दीक्षा चौरसिया हैं, जिनके परिजन नेपाल की त्रासदी के बाद से लापता हैं।
16: वो लोग नेपाल में नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट त्रिशुली बाजार में रहते थे। सुरक्षित हैं लेकिन उन लोगों का कुछ बचा नहीं है। अब ये भी नहीं कह सकते कि सुरक्षित है कि नहीं।
15: नेपाल के त्रिशुली में जब आपदा आई तो लोगों को भागने का अवसर तक नहीं मिला। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ, सैलाब इतने आवेग से आया, चौरसिया परिवार लापता हो गया।
17: अभी कोई कांटेक्ट होता है?
16: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
15: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती है कि गुरुवार की सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशुली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब खत्म कर दिया। दीक्षा बताती है कि 26 अगस्त को बड़े पापा अशोक चौरसिया ने सुबह 9 बजे फोन किया, बात करते करते फोन कट गया और फिर दोबारा कॉल कनेक्ट नहीं हुई।
16: कल सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ाने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी।
15: भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद नेपाल में यही हालात है। लोग ऐसे ही सरकारी कैंपों में जाकर अपनों को तलाश रहे हैं। किसी का पिता खो गया, कोई अपने घर से बिछड़ गया, किसी का पति नहीं मिल रहा है। अपने रिश्तेदारों को खोजते हुए लोग ऐसे ही भटक रहे हैं।
18: किसको खोज रहे हैं? ये कौन?
19: ये हमारा छोटा चाचा जो मिसिंग फ्रॉम गटेकुल्लो रसुआ। हम 3 दिन से इधर आकर ढूंढ रहा हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं।
15: असल में 26 अगस्त को जब नेपाल के 3 बड़े जिलों में ये फ्लैश फ्लड आया तो लोग नदी की घाटी छोड़कर ऊपरी इलाकों में चले गए। जो खुशकिस्मत थे इसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा परिवार बच गया हो। जिसको जैसा मौका लगा वो भाग गया, ऐसे ही जंगलों में चला गया। लेकिन इन तमाम लोगों के परिवार के बहुत से सदस्य आपस में बिछड़ गए। जैसे ये लड़की, इसके पिता नहीं मिल रहे हैं। जब से बाढ़ आई है तब से लापता है। उसके साथ के बाकी लोग आश्वासन दे रहे हैं।
20: मेरो भिनाजु, भिना ब्रदर,
21: ये भाभी हैं आपकी?
20: भाभी नहीं, मेरे पांजी, पांजी वो दीदी, जीजा।
21: अच्छा,
20: जीजा।
21: इस लिस्ट में नाम नहीं है?
20: नाम नहीं है।
22: इसका पापा,
23: इस त्रासदी में इस बेटी को उम्मीद थी कि जिन लोगों का नाम पर्चे पर है उनमें एक नाम इसके पापा का भी होगा, जो तैमूरे के पास हो गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। राहत बचाव कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। सब बहुत लोग लौटे हैं लेकिन इस बच्ची के पापा नहीं लौटे हैं, और अभी तक पापा के इंतजार में ये बेटी। आंखों के आंसू यहाँ पर सामान्य है। ये पीड़ा जो है बहुत सारे लोगों के अंदर है, जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी बचा लिया जाएगा। लेकिन ये राहत बचाव कार्य जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, और इसीलिए जब ये नाम निकल करके इन जगहों पर आते हैं कि इन लोगों को बचा लिया गया है, तो बहुत सारे लोग उम्मीद में आते हैं कि शायद उनके अपने भी लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से इस त्रासदीग्रस्त नेपाल में दिखाई दे रहे हैं।
15: इन लोगों में श्रेयस खुशकिस्मत था। श्रेयस उस दिन अपने कॉलेज गया था जब बाढ़ आई। कॉलेज में हल्ला हुआ तो वो भी जान बचाने के लिए भागा। अब 2 दिन के बाद पता चला है कि उसके माता पिता भी मौका रहते भाग गए थे, वो नदी के दूसरी तरफ है। लेकिन श्रेयस वहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि इस त्रासदी में तो सारे पुल ही बह गए हैं।
23: श्रेयस जिस इलाके में रहते थे वहाँ कुछ बचा नहीं है, इनका घर चला गया था। माता पिता के बारे में पता चला तो वो सुरक्षित इलाकों पर नदी के उस पार चले गए, त्रिशूली के। अब ये सोच रहे हैं किस तरह रास्ता मिल जाए तो ये भी अपने माँ बाप के पास उस घर में पहुंच जाए। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं यहाँ पर कि लोगों ने, किसी ने अपनों को खोया, किसी ने अपने घरों को खोया है। श्रेयस आप पढ़ते हैं?
24: हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ।
23: कॉलेज स्टूडेंट है। आपके बाकी दोस्तों के बारे में पता चला कहाँ है?
24: वो दोस्तों भी अपने रिश्तेदार के इधर ही रह रहे हैं। अभी तक तो वो लोग इधर आ रहे होंगे। इधर
23: सब सुरक्षित हैं?
24: सब सुरक्षित ही है।
23: आप थे उस दिन जब ये जलजला आया था, सब कुछ देखा था आपने?
24: मैं कॉलेज पे था और अचानक से सर ने कहा कि सब लोग निकलो, उधर रिवर बहुत तेज बाढ़ में आ रहा है। हम एकदम हलबला में सब इधर उधर हो गए। हम इधर रिवर के इस साइड पे कॉलेज थे अपना, उधर पढ़ रहे थे, अचानक से आ गया, हम सब बिछड़ गए। और पता चला कि
23: डर लगा था उस समय।
24: बहुत डर लगा था।
15: फिलहाल नेपाली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी भी तरह से प्रभावित लोगों को निकाला जा सके। बहुत से लोगों का तो शायद अभी तक पता नहीं चलेगा, जो इस बाढ़ में बह गए उनके तो शव भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है, नेपाली सेना की प्राथमिकता उनको बचाने की है। आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, आज तक।
25: नेपाल से खबरदार के इस विशेष बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट और हरदम रहिए खबरदार।
26: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
27: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 Products, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफटाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion Dates Nut Bites.
3: Lion Date Nut Bites.
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: पापा।
7: सॉरी यार, गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
8: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
7: छक्का?
8: सब कैशलेस हो गया है।
7: हाँ, ओले ला भाई मेरा बैट।
9: वो अभी तो ठीक हुआ तू?
10: वो अभी तो चार्ज हुआ यार।
11: ओले बैट किसका है?
12: टाटा AIG है तो भरोसा है।
13: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
14: Hee hee hee.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: एक दो एक
3: इश्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: नेपाल में आए भीषण फ्लैश फ्लड को लेकर अब तक कई थ्योरी सामने आ चुकी हैं। कुछ ने इसे भूकंप का नतीजा बताया तो कुछ ने ग्लेशियल झील के फटने का, लेकिन अब अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS के वैज्ञानिकों ने इसके असली कारण का खुलासा कर दिया है। शुरुआत में चीनी मीडिया और स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया था कि 4.4 तीव्रता के प्राकृतिक भूकंप ने ग्लेशियर को तोड़ा और फ्लैश फ्लड ला दिया। ये थ्योरी चीन ने दी और इस पर नेपाल के कुछ मंत्रियों ने भी मुहर लगा दी क्योंकि ये चीन को सूट करती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस भूकंप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। USGS के अनुसार असल में कोई प्राकृतिक भूकंप आया ही नहीं था। दरअसल पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों का एक बहुत विशालकाय हिस्सा इतनी भयानक ताकत से नीचे गिरा कि उसकी टक्कर से धरती कांप उठी, जिसे सीज़मोमीटर ने भूकंप की तरह रिकॉर्ड कर दिया। उपग्रह से मिली सैटेलाइट तस्वीरों ने तबाही के मुख्य कारण को साफ कर दिया है। जब ये विशालकाय आइस रॉक एवलांच नीचे गिरा तो इस भारी मलबे ने पहाड़ियों के बीच बहने वाली लेंदे नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। इस मलबे के कारण नदी पर एक कच्चा और अस्थायी बांध बन गया, जिसके पीछे भारी मात्रा में पानी जमा होने लगा। जैसे जैसे पानी का दबाव बढ़ा, मलबे का ये बांध अचानक फट गया और करीब 10 मीटर ऊंची पानी की दीवार निचले इलाकों में तबाही मचाती हुई निकल पड़ी। वैज्ञानिकों का अंतिम निष्कर्ष साफ है, प्राकृतिक भूकंप से नहीं बल्कि ग्लेशियर और चट्टान के गिरने से पैदा हुए झटकों और लेंदे नदी पर बने मलबे के बांध के फटने से नेपाल में ये भीषण त्रासदी हुई। ग्लेशियल झील यानी GLOF के फटने के सीधे सबूत भी अब तक नहीं मिले हैं। आज तक ब्यूरो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम नेपाल की उस बाढ़ की तस्वीर दिखाएंगे जिसने सिर्फ घर सड़कें ही नहीं बहाई बल्कि इंसान के भीतर छिपे लालच को भी सामने ला दिया है। ये सच है कि इस तबाही में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। कोई अपनों की तलाश में है, कोई अपने घर को ढूंढ रहा है और किसी के पास रोने के लिए भी अपना कोई नहीं बचा। इसी के साथ साथ एक नई परेशानी का भी सबब सामने है क्योंकि डर बना हुआ है। लेकिन इसी मातम के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो ये सवाल करती हैं कि क्या मौत के सामने भी इंसान का लालच जिंदा रह सकता है, ऐसी त्रासदी में जिंदा रह सकता है लालच। नेपाल में दो लोगों ने नारायणी नदी में बहकर आई एक महिला के शव से कानों की बालियां चुरा ली। ये भी तब हुआ जब ये शव इस नदी में सड़ रहा था। सोचने वाली बात यह है कि इस लालच ने इन लोगों को इतना अंधा बना दिया कि इन्हें छोटी सी सोने की बालियां तो दिख गई लेकिन इस महिला और उसका जो अंतिम संस्कार होना चाहिए वो सब नहीं दिखा। देखिए, ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है, परेशान करती है क्योंकि आखिर मानवीय आधार आज कहां पर समा गया है कि ये दुख भरी तस्वीर आई है। लेकिन इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि नेपाल में पहली तबाही के बाद दूसरे महाप्रलय का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है। आज सुबह चाइना ने तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चल रहा अपना रेस्क्यू ऑपरेशन अचानक रोक दिया। अब चाइना को ये डर है कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर जो बैरियर लेक बनी है वो कभी भी पूरी तरह टूट सकती है क्योंकि इसका आकार अगले दिनों में ओलंपिक खेलों के 2000 स्विमिंग पूल के बराबर हो सकता है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जब एक ग्लेशियर झील के फटने से इतनी भयानक तबाही आई है तो अभी तो कई झीलें इस इलाके में मौजूद हैं। अगर आप मैप पर वो झीलें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं नेपाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर वाटर बॉम्ब्स की तरह ये झीलें टिक टिक कर रही हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जब चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, भारत समेत कई देशों ने नेपाल को रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स भेजने की पेशकश की तो नेपाल ने ये मदद लेने से इनकार क्यों किया। नेपाल का कहना है कि वो राहत सामग्री, आर्थिक मदद, जरूरी सामान लेने को तो तैयार है लेकिन वो विदेशी रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स नहीं लेगा। इसकी एक बड़ी वजह है 2015 का वो विनाशकारी भूकंप जब दर्जनों देशों की रेस्क्यू टीम्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मेडिकल टीम्स नेपाल पहुंच गई थी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि नेपाल ने फिर यह तय कर लिया कि दूसरों देशों से हम आर्थिक मदद तो ले लेंगे, सामान ले लेंगे लेकिन उनकी टीम्स को नहीं आने देंगे, हम उनके हेलीकॉप्टर्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने कसम एक तरह से खा ली। आज इसकी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि दिल्ली के मुस्कान हत्याकांड के पीछे धर्म का एंगल है या इसके पीछे प्यार, शक, जुनून, बदले की कहानी और नशे की लत। क्योंकि इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए इमरान के हाफ एनकाउंटर के बाद ये चर्चा अब तेज हो गई है कि उसने जिम ट्रेनर बनकर मुस्कान से इतने झूठ बोले और फिर क्या इस तरह से हत्या कर दी। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के नेता भीड़ जुटाने की राजनीति में लोगों की जान की कीमत क्यों भूल जाते हैं। आज बरेली में बीजेपी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कहा कि जो महिलाएं वहां आएंगी उन्हें खाना, गिफ्ट, एक साड़ी दी जाएगी। मेयर साहब ने खुद को चमकाने के लिए पूरे पंडाल में हाई रेजोल्यूशन कैमरे और ड्रोन्स लगवा दिए। पूरे कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण शुरू हुआ। यही नहीं, महिलाओं को साड़ी बांटते हुए फोटो खिंचवाने के लिए मंच के सामने कई कैमरामैन भी खड़े कर दिए गए। मतलब स्टेज सेट हो गया। लेकिन जो नहीं किया वो थे सुरक्षा के इंतजाम। दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास जब बड़ी संख्या में महिलाएं साड़ी और गिफ्ट लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ी तो भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया। धक्का मुक्की के बीच कई महिलाएं और बच्चे गिरने लगे। इस अफरा तफरी में 45 साल की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हमारे देश में हर बार खुद को VIP समझने वाले ऐसे नेता भीड़ तो इकट्ठा करते हैं सोशल मीडिया पर चमकाते हैं, कैमरे हाई रेजोल्यूशन सब लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भगदड़ में जब आम जनता कुचलकर मारी जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से फुर्र हो जाते हैं। बीजेपी मेयर डॉक्टर उमेश गौतम कई सालों से सांसद या कम से कम विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए वो 2014 में बहुजन समाज पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़कर देख चुके हैं, लेकिन उनका सपना आज तक पूरा नहीं हुआ तो सोचा साड़ी ही बांटी जाए, हो सकता है फिर लॉटरी लग जाए। अब जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने बरेली में जमघट लगाने का सोचा, लेकिन इस जमघट ने कैसे एक महिला की जान ले ली, कई महिलाओं को जमीन पर कुचलने के लिए मजबूर कर दिया, पूरा देश आज देख रहा है। देखिए
1: भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए, हमको तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई।
0: आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रक्षाबंधन पर भारत के लोगों ने खर्च के सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अनुमान है कि इस बार भारतीयों ने रक्षाबंधन के त्योहार पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो दुनिया के 25 देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है, और इसमें पाकिस्तान के कुल 4 महीने का रक्षा बजट समा सकता है। अगली खबर, आज गांधीनगर में जलभराव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कसम खाई। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब वो गांधीनगर के लोगों से वोट मांगने आएंगे तब वहां जलभराव की समस्या खत्म हो चुकी होगी। इसके बाद ये बहस भी हो रही है कि क्या देश के सभी सांसदों को ऐसा ही करना चाहिए, सभी सांसदों विधायकों को जाकर अपने अपने क्षेत्र की सुध लेनी चाहिए, बारिश के मौसम में जिन मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं क्या सभी विधायकों और सांसदों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और ठीक इसी तरह से इस तरह की एक कम से कम कोशिश की शुरुआत करें। सड़कें बारिश में तालाब बन जाती हैं, क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं है। आज की एक और बड़ी खबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को लेकर है। कल हमने आपको मूड ऑफ द नेशन दिखाया था, उस सर्वे में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा 9% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 49% 49, राहुल गांधी को 27 और विजय को पहली एंट्री में 9% लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखना चाहते हैं। आज इस सर्वे की काफी चर्चा हो रही है और इसी चर्चा के बीच आज विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अपनी निर्धारित कुर्सी छोड़कर मंत्रियों के बीच बढ़ गए और इसके बाद उनकी परफेक्ट दिखने वाली राजनीति तमिलनाडु में बड़ी हेडलाइन बन गई। हालांकि डीएमके यही कह रही है कि मुख्यमंत्री विजय अपनी फिल्मी स्टाइल वाली छवि से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, असली काम कर ही नहीं पा रहे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नेपाल से आ रही है और वाकई दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि लापता हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1924 हो चुकी है। इतनी बड़ी आशंका, इतना बड़ा डर इस वक्त मंडरा रहा है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि आज शाम तक इस बाढ़ और प्रलय में लापता हुए लोगों की संख्या 1924 हो गई है, आगे ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे लापता हुए लोगों के परिवार और रिश्तेदार अथॉरिटी से संपर्क कर रहे हैं या हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे रहे हैं या बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को ढूंढा जा रहा है, वहां उनकी सूचना नहीं मिल रही तो उन्हें लापता लोगों में गिना जा रहा है और आगे ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नेपाल की बेबसी की कहानी है। कुछ लोग जिनको किसी तरह से बचाया भी जा रहा है मिट्टी से सने इस तरह से निकल रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप से अगर आप देखिए तो दिल दहल जाता है जो इस वक्त की स्थिति नेपाल में बनी हुई है। नेपाल के अलग अलग अखबारों का पहले ये अनुमान था कि 1,500 लोग लापता हो सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संख्या 3,000 या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। कल भी आपने लाइव शो में देखा था, मेरे साथ जो पत्रकार जुड़े थे नेपाल से वो कह रहे थे कि अभी तो कम संख्या बताई जा रही है, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, 1,000 पार कर सकता है और आज देखिए लगभग 2,000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच रहा है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि आज शाम तक 1,924 लोग इस भयानक बाढ़ और तबाही में लापता हुए हो सकते हैं, अभी तक का डेटा है। इससे पहले नेपाल की सरकार ने बताया था कि वहां मौतों का आंकड़ा 587 हो गया है, जो कल तक 369 था, यानी सिर्फ आज के दिन 200 से ज्यादा और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और उसके शव बाढ़ प्रभावित इलाकों और नदियों के मलबे से बरामद हुए हैं। भारत के 85 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 320 भारतीय इस आपदा में अब भी लापता हैं। देखिए,

ये खौफनाक मंजर जो है जल प्रलय का, मतलब कल्पना से परे है जिस रफ्तार से। और आज ये घर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरे रंग का घर, इसकी बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर। कई लोग तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इस घर में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग दिख भी रहे हैं, उनकी जान बच जाए। आप देख रहे हैं टेरेस में लोग हैं, दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से ये जो लहरें हैं वो किस तरह से उस तरफ उफान मार रही है, इधर से पूरा मलबा के साथ पानी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये घर उस तरह से टिका रहा है। इस घर के टेरेस पे जो लोग दिख रहे हैं, लोग उनके लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये घर किस तरह से इस प्रलय के बीच में टिका हुआ है, उसकी बड़ी चर्चा है। लेकिन वही है कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, लोग ये भी लिख रहे हैं। टेरेस में आपको दिख रहा है, जूम इन किया है हमने, किस तरह से लोग वहां पर मौजूद है और दोनों तरफ से जैसे जिसको कहते हैं ना मौत, एक तरह से जा रही है, उफान मार रही है। एक तरफ लहरें इतनी तेज, दूसरी तरफ मलबा इस मतलब ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इस बर्बादी और तबाही के बीच कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको भी हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। लालच की तस्वीरें हैं ये, जो इंसान को उस हद तक गिरा देता है जहां मौत के सामने भी, जहां त्रासदी में भी इंसानियत जिंदा ही नहीं रह पाती। नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर फटने और भारी भूस्खलन के बाद भोटेकोशी और नारायणी नदी में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों जिंदगियां इस आपदा में खत्म हो चुकी हैं। घर उजड़ गए, सड़कें बह गई, पुल टूट गए, ना जाने कितने परिवार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन हिला देती है ये तस्वीरें। आप देखिए इस बच्ची को किस तरह से रो रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनका सब कुछ एक दिन में लुट गया है। कल्पना कीजिए, जिसका आप कोई बचा ही नहीं इस दुनिया में, जिसका घर परिवार सब कुछ पानी में बह गया हो, ऐसी बच्चियां, ऐसे बेटे, ऐसी माएं, मतलब उनके लिए जिंदगी कितनी मुश्किल भरी है। एक सैलाब बाहर और आंसुओं का वो सैलाब अंदर जो हमेशा इस जिंदगी में भारी पड़ेगा। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा, इन आंसुओं के सैलाब के बीच इंसान के अंदर की एक और त्रासदी सामने आई है जो ना सिर्फ विचलित करती है बल्कि कई सवाल उठाती है। इसीलिए हमने सोचा आज ये तस्वीरें देखनी चाहिए। घटना एक महिला के शव से जुड़ी है। बाढ़ के पानी में बहते हुए नेपाल की नारायणी नदी के किनारे उनका शव पहुंचा और सोचिए इस शव को लेकर किसी भी इंसान का क्या फर्ज होना चाहिए था। इंसानियत के नाते वहां मौजूद लोगों को सम्मान के साथ इन महिला का शव बाहर निकालना चाहिए था। उनके परिवार तक कम से कम कोशिश करनी चाहिए थी कि खबर पहुंचे, पता लगाते कि कौन है, कहां से है। कम से कम उनके शव की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए थी, उनका अंतिम संस्कार ही कर देते। लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई देता है वो इस सोच को झकझोर देता है। यकीन नहीं होगा, जो दो लोग इस महिला का शव निकालने के लिए आए वो उनके कानों की बालियां चुराना चाहते थे। नेपाल की स्थानीय पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने महिला के बाल पकड़कर उसके सिर को खींचा ताकि वो कानों में पहनी बालियों तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद उन्होंने उसके कानों से सोने की इन बालियों को नोच लिया। सोचिए बाढ़, प्रलय, त्रासदी, इस महिला से पहले ही उसका सब कुछ छिन चुका था। लेकिन इंसान का लालच उसकी देह को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुदरत की बाढ़ ने घरों को बहाया, पेड़ों को उखाड़ा, पुलों को तोड़ा, जिंदगियां छीन ली, परिवार के परिवार, गांव के गांव बर्बाद कर दिए। लेकिन इस वीडियो ने एक दूसरी बाढ़ दिखाई और वो थी लालच की बाढ़। वो लालच जो इंसान को ये भी भुला देता है कि सामने कोई चीज नहीं बल्कि किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, एक महिला है। लेकिन अब तक नेपाल की बाढ़ में इंसानों को मरते हुए देखा होगा आपने। आज हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो में देखें कि कैसे इन लोगों ने इंसानियत को मार डाला।

नजरें झुक जाती हैं। सोचिए ये कैसा लालच है। इन लोगों को इस महिला के कानों में सोने की बालियां तो दिखाई दी, लेकिन उन्हें इस महिला की इतनी बड़ी जो उनकी उनका शरीर था वहां पर नहीं दिखा कि इसका अंतिम संस्कार करें। इस मामले में नेपाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी अब कर लिया है, जिनमें एक आरोपी का नाम मदन गुरुंग है जो 25 साल का है और दूसरे आरोपी का नाम उमेश चौधरी है जो 38 साल का है। दोनों आरोपी नेपाल के सुनसरी जिले के रहने वाले हैं, जिन पर शव का अपमान करने, आपदा के वक्त चोरी करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब वक्त ने इंसानों की परीक्षा ली है, तब तब वो इंसानियत की डगर पर कई बार लड़खड़ाए। आज से 120 साल पहले जब 1906 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक विनाशकारी भूकंप आया और इसमें हजारों लोग मारे गए, तब वहां बड़े पैमाने पर लूटपाट की घटनाएं भी हुई थी। लोगों ने ना केवल ढह चुकी दुकानों को लूटा, बल्कि मलबे में दबे लोगों, घायलों की उंगलियां काटकर सोने की अंगूठियां, गहने, जेबों से पैसे चुरा लिए। उस वक्त इन घटनाओं को देखते हुए लूटपाट करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बाद जब जांच हुई तो ये पता चला कि उस वक्त कुछ अमेरिकी नेशनल गार्ड के जवानों और पुलिसकर्मियों ने मलबे से कीमती सामान और शवों से गहने चुराए थे। और यह ऐसी पहली और आखिरी घटना नहीं रही। 2004 में जब जब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आए, या 2010 में हेटी में जब भूकंप आया, तब भी इन आपदाओं में मारे गए लोगों के शवों से सोना चुराने की घटनाएं हुई। और इन्हीं घटनाओं के कारण जिनीवा कन्वेंशन के तहत यह अनिवार्य किया गया कि किसी भी आपदा, किसी भी युद्ध के बाद मृतकों के शवों की पहचान, उनके सामान को सुरक्षित रखकर उनके परिजनों को सौंपना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सोचिए ऐसे कानून इंसान के लालच को आखिर कहां रोक पाते हैं। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर इंसान इन लोगों की तरह लालच में है, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे नेपाल में अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं। कोई अनजान व्यक्ति के लिए रस्सी लेकर दौड़ रहा है अपनी जान को खतरे में डालकर, तो कोई अपने घर का दरवाजा खोल देता है, कोई भूखे को खाना देता है, कोई मलबे में दबे इंसान को निकालने के लिए घंटों अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। खाना पीना भूल कर वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, आम लोग लगे हुए हैं। और यहां पर शख्स को भी देखिए जिसे बाढ़ के पानी से सोने के गहने और कुछ कैश मिला, लेकिन इस व्यक्ति ने इन गहनों को अपने पास नहीं रखा, मतलब उसके तो हाथ में आया। उसने कहा कि ये सोना जिन लोगों का भी रहा होगा वो उन्हें लौटाने के लिए तैयार है और पुलिस भी इस काम में उसकी मदद करे। ऐसे भी लोग हैं, देखिए। अब आप ये देखिए कि नेपाल में दूसरी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है। आज सुबह चाइना ने तिब्बत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अचानक अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया, रोक दिया। कारण यह बताया कि जिन दो नदियों में ग्लेशियर का मलबा फंसने से एक बैरियर झील बन गई थी, वो झील अब कभी भी फट सकती है। चाइना के सरकारी मीडिया के मुताबिक अभी इस झील का पानी ओवरफ्लो होकर लगातार नेपाल की नदियों में जा रहा है, लेकिन अगले कुछ घंटों या इस हफ्ते के आखिरी तक ये झील पूरी तरह फट सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कारण नेपाल में लगातार दूसरी बार महाप्रलय का संकट पैदा हो सकता है। चाइना के जल संसाधन मंत्रालय और सीसीटीवी न्यूज चैनल के मुताबिक ये बैरियर झील बुधवार को उस वक्त बनी जब ग्लेशियर या बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग होकर नीचे गिरा। अगर इसे इस ग्राफिक्स की मदद से समझें तो जब हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटता है और वो टूटकर नदी में गिरता है, तब इस मलबे ने नदी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। यानी जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है, ठीक उसी तरह इस मलबे के कारण यह नदी रुक गई और उसके पीछे पानी जमा होकर एक प्राकृतिक झील बन गई जिसे अब बैरियर लेक कहा जा रहा है। यह झील इसलिए खतरनाक है क्योंकि अभी इसका जो आकार है वो 7 करोड़ घन फीट है, लेकिन अगले 3 दिनों में यही आकार 17 करोड़ 60 लाख घन फीट हो जाएगा। चाइना का कहना है कि अगर इस इलाके में लगातार बारिश होती है, इसके कारण नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है,
तो यह आकार और भी विशाल रूप ले सकता है, जो किसी वाटर बॉम्ब जैसा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 करोड़ 60 लाख घन फीट पानी ओलंपिक खेलों के 2000 स्विमिंग पूल्स के पानी के बराबर होता है। इतना पानी अगर अचानक निकल जाए तो वो नीचे बहने वाली पूरी घाटी को तबाह कर सकता है, क्योंकि जब वो नीचे बहने लगता है तो अपने साथ मलबा लाता है, और उस मलबे के साथ जब वो नीचे आता है तब वो विनाशकारी होता है, और यही अभी नेपाल के सामने सबसे बड़ा संकट है। अब सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस झील का पानी अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है, यानी ये पानी इस झील में लगातार बढ़ रहा है और वो अब ऊपर से बहकर उसी नदी में जा रहा है जिसने बुधवार को नेपाल में तबाही मचाई थी, और इस नदी का नाम भोटेकोशी नदी है। अगर ये बैरियर झील अगले 2 दिनों में पूरी तरह टूट जाती है तो इससे नेपाल में दूसरी प्रलय भी उसी रास्ते से आएगी जिस रास्ते से पहली प्रलय आई। इससे उन लोगों का ज्यादा खतरा होगा जो नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त चला रहे हैं, क्योंकि यही कारण है कि पहले चाइना ने तिब्बत में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोका और अब नेपाल भी प्रभावित इलाकों में अपने बचाव कर्मियों को पीछे हटा रहा है, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा आ गया है। यहां बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो आलोचनाएं हो रही हैं उसके बाद भी इस बैरियर झील को लेकर चाइना ज्यादा सावधानी अब बरत रहा है। चाइना के वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट से इस झील की निगरानी कर रहे हैं, पानी का स्तर माप रहे हैं, कंप्यूटर मॉडल से अनुमान लगा रहे हैं कि बांध टूटने पर पानी कहां तक जाएगा, तबाही कैसे हो सकती है, कितनी बड़ी होगी। आप खुद देखिए जिस जगह ये झील बनी है उसके पास चाइना के वैज्ञानिक ड्रोन्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक ये झील फट सकती है, इसका पानी किस दिशा में जा सकता है।

0: a map that is provided by local authorities.
1: ये मैप लोकल अथॉरिटीज से हमें मिला है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तबाही हुई वो यहीं से शुरू हुई और ये जगह यहीं पर मार्क की गई है. बैरियर लेक समुद्र तल से लगभग 2950 मीटर की ऊंचाई पर है. यही बॉर्डर लाइन दिखाने वाली लाइन बहुत साफ नहीं है. लोकल अथॉरिटीज से मिली जानकारी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लेक असल में चीन और नेपाल दोनों तरफ है. तो जब बैरियर लेक से पानी का बहाव शुरू हुआ तो उसकी रफ्तार बेहद तेज थी. जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और कमांड सेंटर के मुताबिक पानी को लगभग 20 किलोमीटर बहने में सिर्फ 7 मिनट लगे. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रफ्तार कितनी तेज होगी और कितनी तेज पानी नीचे आया होगा. हम अभी यहाँ मौजूद हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि हम बॉर्डर गेट से लगभग 7.7 किलोमीटर दूर है. ये जो लाल डॉट दिख रहा है जो बॉर्डर गेट है वो असल में यहीं पर है.
2: आने वाले हफ्ते में जिरोंग पोर्ट इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को देखते हुए बैरियर लेक में पानी का बहाव लगभग 15 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है. जबकि पानी का फ्लो अभी भी बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से खतरा और बढ़ता जा रहा है.
3: द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरी नई झील भी देखी है. ये झील नेपाल के लांगटांग लिरुंग, एक पर्वत है लांगटांग लिरुंग, उस पर्वत की उत्तरी ढलान के नीचे बन रही है, ठीक वहीं जहां शुरुआती चट्टान और ग्लेशियर टकराए थे. और अगर ऐसा होता है तो नेपाल के लिए ये अच्छी खबर कतई नहीं होगी. पहले ही बर्बादी का मंजर आपने देखा है. इसके अलावा अगर मौजूदा संकट किसी तरह टल भी गया तब भी भविष्य में नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, बिहार, इन सबके लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं दिखाई देती हैं. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए अब आप हमारे इस विश्लेषण को जरूर देखिए. सबसे पहले ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस टिबेट में कभी सड़कें बनाना मुश्किल था वहां चाइना ने अंधाधुंध निर्माण कर दिया है. इस निर्माण के कारण तिब्बत

हो चट्टानों के बीच एक परमाफ्रॉस्ट होता है। अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है? इस परमाफ्रॉस्ट को आप प्राकृतिक सीमेंट कह सकते हैं, प्राकृतिक सीमेंट कहिए या फिर आप इसको गोंद की तरह, मतलब जो इकट्ठा करके चिपका के रखता है पहाड़ों को अपनी जगह से। ये परमाफ्रॉस्ट जो है वो हिलने नहीं देता है चट्टानों को, बर्फ को, पहाड़ की अलग अलग परतों को ये मजबूती से जोड़ कर रखता है। लेकिन जिस तरह पृथ्वी गर्म हो रही है, हिमालय क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहां पर प्राकृतिक ये जो एक साथ रखने वाला परमाफ्रॉस्ट है जो जोड़कर रखता है वो प्राकृतिक गोंद ही समझिए पिघलने लगा है। भाई इतना निर्माण होगा, इतना कंस्ट्रक्शन होगा, पहाड़ियों में इस तरह से टनल्स बनाए जाएंगे तो पूरा वो पहाड़ियां हिल जाती हैं और उसके बाद से धीरे धीरे पूरा तापमान बढ़ता है, प्रभाव एक के बाद एक जुड़ता जाता है और फिर ये हालत होती है। क्योंकि ये जो गोंद, ये जो परमाफ्रॉस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, इसीलिए पहाड़ों की ढलान कमजोर हो रही है, चट्टानें ज्यादा टूट रही हैं, ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ये प्रलय आ रही है। संक्षेप में कहें तो पहाड़ों के कमजोर होने से चट्टाने और ग्लेशियर टूटने का जो खतरा बढ़ रहा है उससे हिमालय में बनी ग्लेशियर लेक फट रही है। और अगर ये चीज आगे और बढ़ी तो इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए हम आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नेपाल, चाइना, भारत की सीमा पर हिमालय क्षेत्र में मार्क किए गए इन डॉट्स को देखेंगे जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए चलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी जो ग्लेशियर झीलें हैं नेपाल में, ये देखिए एक झील फटने से ही इतनी तबाही हुई है जो आप देख रहे हैं। इस लाइन को समझिए और फिर इसकी सिग्निफिकेंस को देखिए जो हम बता रहे हैं, क्योंकि एक झील फटने से इतना हुआ है। लेकिन जब आप देखेंगे ये है नेपाल, यहाँ पर ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ये नेपाल का बॉर्डर है, ऊपर है चाइना, ठीक है, ये ऊपर हो गया चाइना, ये इधर हो गया भारत इस तरफ। अब ये जो आप ग्लेशियर झीलें देख रहे हैं ये ब्लू, दूर से आपको लग रहा है मैप का हिस्सा है लेकिन आप इसको करीब से देखिए कितने सारे डॉट्स हैं। मैं बस एक एरिया में डॉट्स को आपके लिए करके दिखाती हूँ कितने सारे डॉट्स हैं। इतने सारे झील तो एक एरिया में है, मतलब इनको जब आप मैग्निफाई करेंगे, जूम इन करके दिखा दीजिए। और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरे इस इलाके में है जो आप देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख गए। अब यहां से होते हुए पूरा बढ़ते जाइए, ये जो पूरा एक तरह से ये जोन आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा आपको ऐसे झीलें दिख रही हैं, ऐसे ग्लेशियर झीलें। यही नहीं है, नीचे में भी है, यहां देखिए यहां तक, तो नेपाल वाले हिस्से में भी है। तो आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा जो मैंने आपके लिए नीले में किया है, ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये इसमें इतनी सारी झीलें हैं जो अनगिनत झीलें आप कह सकते हैं। और इस वजह से कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आपको इसका अगला जो है वो दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। हिमाचल में जो तबाही अभी तक हुई है उसमें अगर आप देखेंगे हिमालय में, इस पूरे इलाके में जब आप इंडिया में, तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं। 26 अगस्त को एवलांच और बाढ़ वाली जगह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जगह है वो, ये नेपाल का हिस्सा, फिर आप देख रहे हैं ये भारत, इधर भूटान है, चाइना है। तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं और उसी को यहाँ पर आप रेड वाले जोन में देख रहे हैं। तो येलो से सर्कल है और रेड जो आप ट्रायंगल, थोड़ा जूम इन कीजिए, जब आप जूम इन करेंगे तो आप दिखा पाएंगे, ये जो रेड ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं ये सारी ऐसी ग्लेशियर्स हैं जो टूटे हैं। तो साल 1900 के बाद हिमालय में कितने ग्लेशियर्स टूटे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं और उसी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये खतरा इस वक्त भी इन जगहों पर मंडरा रहा है। तो यहां जरूरी यह है कि तिब्बत में चाइना जो सड़कें, पुल, बड़े बड़े बांध बना रहा है उनके बारे में एक बार सोचा जाए। और ये सोचने की जरूरत क्यों है उसके लिए आप अब इस खबर को देख लीजिए। हमने पहले आपको दिखा दिया कितनी सारी वहां झीलें हैं, कितने ग्लेशियर्स टूट चुके हैं पहले, बहुत खतरनाक ये जोन बनता जा रहा है। साल 2020 में नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट आई, अब ये रिपोर्ट कहती थी कि तिब्बत में सड़कें, हाईवे बनाने के लिए 11 नदियों का रास्ता बदला गया, यानी ये नदियां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिस रास्ते बह रही थी वो रास्ते बंद कर दिए गए। और इसके कारण नेपाल का दावा है कि 36 हेक्टेयर जमीन चाइना के पास चली गई, यानी मान लीजिए जिस जगह में
अभी खड़ी हूँ, अगर यहाँ कोई नदी बह रही है

0: तो चाइना उस नदी का रास्ता बदलकर उसे यहाँ से काफी आगे तक ले जाते हैं जाता है और फिर जगह पर कब्जा करके इन्हीं नदियों पर बांध बनाकर पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स बना लेता है। और ये सब जानते हैं कि टनल बनाने के लिए पहाड़ों में कैसे ड्रिलिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं। बहुत आसान काम नहीं होता है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों में ड्रिलिंग करके टनल्स बनाना। पूरा इकोसिस्टम वहां का हिल जाता है, पूरे पहाड़ हिल जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जब चाइना, भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजने की कोशिश की, पेशकश की, तो नेपाल ने इनकार क्यों किया? नेपाल की सरकार ने कहा है कि वो दूसरे देशों से राहत सामग्री, आर्थिक मदद, जरूरी सामान, पैसा भी सब लेने को तैयार है, लेकिन अगर कोई देश अपनी रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजना चाहता है तो नेपाल इस मदद को लेने से इनकार करता है। अब नेपाल ने यह फैसला तब किया है जब चाइना, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि नेपाल की सरकार ने ऐसा क्यों किया है, भाई क्या ये उसकी गलती है, वो आखिर क्यों नहीं सहायता ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो ये पता चलता है कि नेपाल के पास इस फैसले के लिए कोई ठोस वजह है। उसे 2015 में भूकंप जब आया तो काफी कुछ सीखा। अप्रैल 2015 में जब नेपाल में लगभग 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, तब नेपाल में दूसरे देशों की फॉरेन रेस्क्यू टीम्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल टीम्स, इंजीनियर्स, अलग अलग देशों के दूसरे विशेषज्ञ भेजे गए। इससे नेपाल में बचाव अभियान को तो गति मिली, लेकिन इसी के साथ उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि उस वक्त नेपाल में इतने सारे अलग अलग देशों के लोग और संगठन एक साथ आ गए। हर टीम को कहां जाना है, किस इलाके में काम करना है, किससे संपर्क करना है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, कौन सा काम किसके हिस्से में जाएगा, हेलीकॉप्टर्स कहां उतरेगा। अब एक ही जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए, उसी हेलीपैड के लिए कई लोग बुकिंग मांग रहे थे, किसे पहले बचाया जाएगा। इन चीजों में नेपाल की सरकार उलझ कर रह गई। सरल भाषा में कहें तो ऐसी बुरी तरह से कंफ्यूजन फैला कि भूकंप से ज्यादा जटिल ये बचाओ अभियान बन गया और नेपाल की सरकार रेस्क्यू करने वाली टीम्स के बीच तालमेल बैठा नहीं पा रही थी। इसके अलावा उस वक्त नेपाल में जिन अलग अलग देशों से टीमें आई थी उनके बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, यानी हर देश ये दिखाने लगा कि उसे आपदा प्रबंधन, बचाव अभियान में ज्यादा महारत हासिल है। और उस वक्त भूकंप के कई महीनों बाद नेपाल की सरकार ने विदेशों से आई इस मदद की समीक्षा की और ये तय किया कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। इसकी वजह नेपाल की एक स्पष्ट कमांड बनाएगा, नेपाल ही बनाएगा, उसकी सुरक्षा एजेंसियां बचाव अभियान में मदद करेंगी और दूसरे देशों से मदद नहीं ली जाएगी, अभी नेपाल यही कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर पैसे दिए जाए, राहत सामग्री दिए जाए तो उसको नेपाल स्वीकार कर रहा है। यहां पर इन तस्वीरों को भी देखिए, दिल टूट जाएगा। इस वक्त मलबे और नदियों से निकाले जा रहे सैकड़ों शवों को नेपाल के अलग अलग अस्पतालों के मुर्दा घरों में ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज, ये तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि पानी और मलबे के भीषण बहाव के कारण कई शव इस कदर क्षत विक्षत हो चुके हैं कि उनको देख पाना मुश्किल है, क्योंकि अस्पतालों के मुर्दा घर पूरी तरह भर चुके हैं। इससे प्रशासन ने अब शवों के चेहरे, कपड़ों और शरीर के विशेष निशानों या शरीर पर गहने की तस्वीरें ली है और इन तस्वीरों को अस्पतालों के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जा रहा है। और जब अपनों की तलाश में आए लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो मानो उनका कलेजा फटा जा रहा है। और इनमें भी कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने इन कांपते हाथों से ये देख रहे हैं कि कहीं इनमें कोई शव उनके अपने का तो नहीं। देखिए,
1: बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बाबा बा

0: dapat si Pan Kevin mo ya.
1: अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है, कैसे कोई पता नहीं चल रहा है।

अब आप ये देखिए कि नेपाल 2300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मुश्किल हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहा है। 26 अगस्त को जब नेपाल में प्रलय आई तब वहां एक सुरंग में 450 से ज्यादा लोग फंस गए थे। ये सुरंग रसुवा के सबसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की थी। उस वक्त बाढ़ के मलबे और भारी कीचड़ के कारण सुरंग का मुख्य द्वार पूरी तरह छिप चुका था, जिससे शुरुआती तौर पर प्रवेश द्वार को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। और ऐसा माना जा रहा था कि सुरंग में कीचड़ का मलबा पत्थर आने के कारण 450 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद नेपाली सेना ने अपनी विशेष आपदा राहत टीम्स को इस सुरंग के पास तैनात किया, क्योंकि सुरंग के अंदर बिजली नहीं थी और हर जगह घने कीचड़ की मोटी परतें जमी थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने एक खास तरकीब अपनाई। कई लोगों की जिंदगी इससे बची है। उन्होंने क्रॉलिंग टेक्निक के तहत सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। यानी नेपाली सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर पेट के बल घिसटते हुए कीचड़ को चीरते हुए टनल के उन हिस्सों तक पहुंचे जहां लोग फंसे हुए थे। इंसानियत की इससे बड़ी तस्वीर नहीं दिख सकती है। हालांकि इसके बाद भी अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर लाना आसान नहीं था, क्योंकि टनल के मुहाने पर ही और अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारा मलवा, गाद और इतनी मोटी, जिसको कहते हैं स्लेट, जमी थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। और यह भी डर था कि रेस्क्यू टीम के साथ सुरंग में फंसे लोग अंदर धंस सकते हैं। इसी के बाद ये फैसला हुआ कि नेपाली सेना के जवान इन श्रमिकों को अपनी पीठ पर लादकर रेंगते हुए सुरंग से बाहर निकलेंगे और इनकी जान बचाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन असंभव माना जा रहा था, उसमें अब तक 350 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और बाकी 100 और लोगों को बाहर लाने की कोशिशें इस वक्त भी चल रही हैं। देखिए,

और अब हम दिल्ली में हुए उस मर्डर की बात करेंगे जिसमें दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आरोपी को 2 दिन के अंदर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त को तिलक नगर में 21 साल की लड़की मुस्कान की हत्या कर दी गई। मुस्कान एक स्टूडेंट थी और पार्ट टाइम में मॉडलिंग का भी काम करती थी। पुलिस के लिए हत्या की गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुस्कान की हत्या उसके ही घर के अंदर की गई। और शुरुआती जांच में तो पुलिस को यह पता चला कि मुस्कान जिस जिम में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी उस जिम के एक ट्रेनर इमरान को हत्या के दिन मुस्कान के घर से बाहर भागते हुए देखा गया था। इसके अलावा मुस्कान के भाई ने भी इमरान पर शक जताया था। उसके मुताबिक इमरान पिछले काफी समय से उसकी बहन मुस्कान को परेशान कर रहा था। पुलिस को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि हत्या में जिम ट्रेनर इमरान का हाथ हो सकता है। हत्या के बाद से ही इमरान करीब 2 दिनों तक सबकी नजरों से छिपता रहा, लेकिन कल रात दिल्ली पुलिस को इमरान की लोकेशन से जुड़ी एक खुफिया जानकारी मिली और उसके बाद देर रात ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और इमरान के बीच एक एनकाउंटर हुआ जिसमें इमरान को 3 गोलियां लगी। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इस एनकाउंटर में इमरान की तरफ से 4 राउंड फायरिंग की गई थी लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। इस एनकाउंटर में पुलिस की फायरिंग के आगे जल्दी ही इमरान ने हथियार डाल दिए थे और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इस एनकाउंटर में इमरान के पैरों में 3 गोलियां लगी। इमरान को गिरफ्त में लेने वाली पुलिस टीम को पता चला है कि मुस्कान और इमरान के बीच गहरी दोस्ती थी। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच ब्रेकअप से जुड़ा विवाद भी चल रहा था। 26 अगस्त की शाम को जब वो मुस्कान के घर पहुंचा तो इसी बात को लेकर दोनों में फिर से लड़ाई हुई, विवाद हुआ और इसके बाद इमरान ने गुस्से में आकर मुस्कान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले के बाद इमरान फरार है। मुस्कान की चीखें सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मुस्कान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुस्कान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को यह भी पता चला है कि मुस्कान की इमरान से मुलाकात एक जिम में हुई थी और दोनों एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। कुछ महीने पहले इमरान ने जिम छोड़ दिया था और इस बीच मुस्कान ने भी इमरान से दूरी बना ली। इमरान को शक था कि मुस्कान की दोस्ती किसी और से हो गई है और वो उससे बात करती है, बस यही शक। करीब 2 महीने से इमरान और मुस्कान के बीच विवाद की एक वजह यह भी थी कि मुस्कान ने उससे अब धीरे धीरे दूरी बना ली थी और इस लड़के का आरोप था कि वो किसी और लड़की से बात कर रही थी। हत्या के बाद इमरान खुद को बचाने के लिए भागा तो अपने साथ मुस्कान का मोबाइल फोन भी ले गया था। इस मोबाइल फोन में इमरान और मुस्कान के संबंधों से जुड़ी तस्वीरें थी, चैट्स थी। पुलिस को इमरान की लोकेशन दिलाने में इस मोबाइल ने बहुत मदद की। इस मोबाइल फोन से ही पुलिस को पता चला कि इमरान नांगल इलाके में कहीं पर मौजूद है। इमरान की तलाश के लिए पुलिस की 15 टीमें लगानी पड़ी जिन्होंने पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग की, चेक पोस्ट लगाए, चेकिंग हुई लेकिन इमरान बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और इस वजह से दिक्कतें आ रही थी पकड़ने में। हालांकि सीसीटीवी खंगालने पर इमरान की बदलती लोकेशन का भी पता चलता रहा और इसे ट्रेस करते हुए पुलिस आखिरकार राजौरी गार्डन में उसके ठिकाने के पास पहुंच ही गई। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी इमरान नशे का भी आदी था। उस पर हत्या के प्रयास का मामला तक दर्ज है। नशे की लत छुड़वाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा जा चुका है। इसके अलावा एक दावा यह है कि नशे की लत की वजह से ही एक बार उसने आत्महत्या की कोशिश की थी जिसके बाद उसे जिम से हटा दिया गया। मुस्कान के एक दोस्त ने दावा किया है कि इमरान सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता था। वो मुस्कान का पीछा करता था जबरदस्त तरीके से, मतलब किसी न किसी तरीके से बातचीत करने की कोशिश करता था। मुस्कान के मोबाइल फोन से जो चैट्स मिली हैं उसमें इमरान और मुस्कान के खराब संबंधों का पता चला कि कैसे लड़ाई चल रही थी और इसमें कुछ मैसेज में इमरान धोखा देने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मुस्कान का परिवार उनके संबंधों को लेकर बस यही कहता है कि इमरान मुस्कान को परेशान करता था।

0: इमरान तो जॉब कर रहा था, वो जिम करने आती थी मुस्कान।
1: कितने दिनों तक ये लोग यहाँ पे जिम कर रहे थे?
0: मुस्कान ने 6 महीने जिम किया था और इमरान तो 2-3 महीने पहले से छोड़ चुका था।
1: इमरान यहाँ से नौकरी छोड़ चुका था, उसके पीछे कोई वजह थी?
0: नहीं, उसके पीछे कोई वजह नहीं थी, बस वो लेट आता था तो उसको बोला जाता था, उसने छोड़ दिया था।
1: मुस्कान यहाँ किसके साथ रहती थी और कितने लोग रहते थे?
2: 2 सिस्टर और भी हैं, एक ब्रदर है, मदर है।
1: अच्छा, ये इमरान जो था इसको कभी गली में आते जाते हुए देखा आप लोगों ने?
3: यहाँ पर एक के बाद एक करीब 11 राउंड फायरिंग हुई और काफी खून भी बहा यहाँ पर। अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो ये जो मार्किंग है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कम से कम 11 ऐसे मार्किंग जो है यहाँ पे पुलिस ने की हुई है, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे ये सबूत इकट्ठा किए गए हैं कि यहाँ पे करीब 11 राउंड जो है फायरिंग हुई।
4: अब रुक करेंगे अगली खबर का जो आई है न्यूयॉर्क से। कल न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम का एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे और इसी वजह से इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और भारत दोनों जगहों पर हंगामा शुरू हो चुका है। ये कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय मूल के हिंदुओं के लिए आयोजित किया गया है, जिनको मोहन भागवत संबोधित करेंगे। यह आयोजन आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरा होने के मौके पर कई देशों में इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत मोहन भागवत इन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में उनकी मौजूदगी से न्यूयॉर्क के मेयर बहुत परेशान है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी आरएसएस के इस कार्यक्रम और उसमें मोहन भागवत के आने को लेकर विरोध जता रहे हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम है यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम में एकता, नागरिक जिम्मेदारी, वैश्विक सद्भाव के संदेश दिया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को ऐसा नहीं लगता। उनके मुताबिक ये कार्यक्रम बांटने वाली विचारधारा को बढ़ावा देता है और न्यूयॉर्क हर रंग हर धर्म को बराबर जगह देने में विश्वास करता है।
5: You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
6: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
5: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
4: इस कार्यक्रम का विरोध शुरू होने के कुछ ही समय बाद आयोजकों का जो एक्स अकाउंट था, एक्स प्लेटफॉर्म पर जो उनका अकाउंट था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। एक्स अकाउंट ब्लॉक होने के बाद हंगामा मच गया। दावा किया गया कि एक साजिश के तहत कार्यक्रम रोकने के लिए ऐसा किया गया है, हालांकि अहेड फोरम के प्रयासों से ये अकाउंट जल्दी ही फिर से शुरू हो गया। अब अकाउंट शुरू होने के बाद फोरम ने दावा किया है कि उनके विरोधियों ने एल्गोरिदम का गलत इस्तेमाल करते हुए बॉट्स के जरिए उनके अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया था। न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम का विरोध जोहरान ममदानी ही नहीं बल्कि अमेरिकी संस्था USCIRF भी कर रही है। इस संस्था ने मोहन भागवत की यात्रा को लेकर चिंता जताई है और अमेरिकी सरकार से मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की अपील की है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस संस्था की अपील को अनसुना कर दिया गया है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक ऐसी अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखती है। यह संस्था हर साल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर देशों की रैंकिंग जारी करती है। यह संस्था धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से भारत को विशेष चिंता वाला देश मानती है और आपको हैरानी होगी कि जानकर कि वो भारत में सभी धर्मों को मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की तुलना ईरान, लिबिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से करती है। और तो और वो श्रेणी में चाइना, रशिया, सऊदी अरब को भी आगे रखती है। भारतीय विदेश मंत्रालय तो USCIRF की टिप्पणियों को खुले तौर पर अफवाह बता रहा है। विदेश मंत्रालय ने संस्था को एक पक्षपाती संस्था कहते हुए दावा किया कि लंबे समय से भारत को लेकर भड़काऊ बयान देता रहा है, इसीलिए गंभीरता से ना ले। मोहन भागवत की न्यूयॉर्क यात्रा से विदेशी ही नहीं देसी नेता भी परेशान है। कई पार्टियों की तरफ से इसके खिलाफ बोला गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, 25 सवाल दागे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि जब विदेशों में अनरजिस्टर्ड और अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो एक्स अकाउंट तो सस्पेंड होंगे ही। उन्होंने मोहन भागवत की यात्रा पर सवाल उठाते हुए ये भी लिखा कि क्या वो वहां का सांप्रदायिक माहौल खराब करने आए हैं, जाएंगे। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत की इस यात्रा को लेकर करीब 21 सवाल पूछे। इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
1: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
2: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
0: मतलब
2: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
2: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: एक दो, एक श्राम।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते।
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय विक्टर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले वाटर टैंक्स, टंकी मतलब विक्टर्स।
1: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कल जो घटना हुई उसको लेके कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार वो फ्लैश फ्लड क्यों शुरू हुआ। आप लोग क्योंकि उस पूरे रीजन पे नजर बनाए रखते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, आपके संस्थान के हिसाब से इनिशियल एनालिसिस में क्या निकल के आ रहा है?
3: बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब भी कोई डिजास्टर होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है शुरू में एसेस करना कि क्या ट्रिगर्स रहे, क्या कंडीशन है। जो अभी सर्टेन चीजें हैं जो कि कंफर्म हम कह सकते हैं वो ये है कि ये एक ग्लेशियर कोलैप्स है, और इसको हम समझ सकते हैं कि एक आइस एंड रॉक मिक्स्ड मिक्सचर का एक एवलॉन्च हुआ है उस वैली में। अब ट्रिगर्स की बात करते हैं तो ट्रिगर हो सकता है कि जो उससे जस्ट पहले बताया जा रहा है कि एक अर्थक्वेक आया है 3.2 मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का, सो हो सकता है कि उसने भी इसमें कुछ ट्रिगर किया हो उसको। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये डिजास्टर हुआ है और वो जो मास जो ऊपर से आके नीचे वैली बॉटम में गिरा है उसने एक लोकली स्केल पर अर्थक्वेक वेव जनरेट की हो। तो बहरहाल बात यह है कि अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस वजह से ऑलरेडी जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। सो वो उस टिपिंग पॉइंट पे आ चुके हैं कि अगर कुछ भी छोटा मोटा ट्रिगर उनको मिलता हैवी रेनफॉल या फिर एक अर्थक्वेक, वो भी काफी होता है उनको एक डिजास्टर स्टार्ट करने के लिए।
2: डॉक्टर फारूक, क्योंकि आप उस पूरे एरिया को खुद स्टडी कर रहे हो और आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी इस बात पे है कि कैसे वहाँ आइस मेल्ट हो रहा है और ग्लेशियर पे किस तरह का खतरा आ रहा है, तो क्या इससे पहले भी कोई आप लोगों की रीडिंग थी, स्टडी थी, जिससे इस तरह के अलार्मिंग ट्रेंड्स दिख रहे थे, या आपने अलर्ट किया था? क्योंकि ये मल्टी स्टेट एजेंसी है जिसके साथ आप इस वक्त जुड़े हुए हैं आईसी मोड में।
3: देखिए, जो तो हिमालय है वो लगभग 2,500 किलोमीटर लंबी एक माउंटेन रेंज है, तो अब इसको ऑल टुगेदर मॉनिटर करना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक बात तो तय है कि जो पिछले हम एक दशक में देखते हैं खास तौर पे, या फिर कहें कि केदारनाथ डिजास्टर जब हुआ था उस तरह से अगर हम देखते हैं तो फ्रिक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। इस तरह के जो त्रासदी हो रही है वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रही है अभी, और उसका जो एक मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं वो बड़े हैं पिछले कुछ 10 सालों में, और ऐसी पूरी संभावना है कि ये और ज्यादा बढ़ सकते हैं।

0: ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और गजब दुनिया है, लोग खाली हाथ जाने के लिए इतना सब बटोरने में लगे हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सदी में बड़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 587 लोगों की मौत, करीब 2000 लापता। भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ दिल्ली से रवाना विमान, काठमांडू से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। अंकित बालियान की मौत पर यूपी में राजनीतिक युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल होगा इंसाफ, जब होगा बदलाव। पेपर लीक के आरोप के बीच सरकार का बड़ा निर्णय, एनटीए में 2 निदेशक, 1 ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति, अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 729.3 बिलियन डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा, लेकिन औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में आई हल्की गिरावट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक कि कैसे नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी। नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है और ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चैलेंज बना हुआ है। ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा नेपाल पर मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होने लगी। 26 अगस्त को नेपाल में जिस तरह से महाप्रलय आई, ऐसे में उसने 5 गुना बड़ी तबाही मचने की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो आइए दिखाएं आपको नेपाल में विनाश लीला रिटर्न्स।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा, नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांको नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए आप पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहुन्छ हामी।
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेफू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं नेपाल में विनाश लीला की सैटेलाइट तस्वीरें, जो ये बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे और मिट्टी में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल ही बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। आइए दिखाएं आपको सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामोनिशान नहीं है। रसुवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे कि किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के। अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, उनके परिजन उन्हें मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं और वो
1: आया। वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झांपटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंदे है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं

0: उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
1: সিয়া বরুসতে কালকে ডিপার্ট করেছে এবং আজকে ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
0: দুর্গাপুর কি মৌসুমি আর দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 21 আগস্ট কো ঘর সে নিকলে থে। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा।
2: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है।
0: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
3: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
4: सुबह में
3: आया था। उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
0: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
5: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा।
0: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
6: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
7: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
6: ग्रुप थे 30।
8: दर्शक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो आपको दिखाएंगे ऐसी तबाही देखी नहीं। सीधे आपको लिए चलेंगे नेपाल, और वहां से हमारी सहयोगी श्वेता सिंह और आशुतोष मिश्रा आपको नेपाल का हाल बताएंगे। आप देखते रहिए दस्तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
10: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पापा
2: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
3: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
2: छक्का?
3: सब कैशलेस हो गया है।
2: हाँ ला भाई मेरा बैट।
4: वो अभी तो ठीक हुआ। तू
5: चार्ज हुआ यार।
6: बैट किसका है?
7: टाटा AIG है तो भरोसा है।
8: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: Shabam!

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पापा
3: सॉरी यार गलती हो गई है, ये चोट खर्चा वर्चा।
4: अरे लास्ट बॉल पे छक्का भी तुम्हारा।
3: छक्का
4: सब कैशलेस हो गया है।
3: हाँ
5: तो भरोसा है।
6: नो मैटर व्हाट योर डे थ्रोज एट यू, स्टे इन द स्पा स्टेट ऑफ माइंड विद द कूलर स्पा एट होम।
7: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: हीरे के लिए मुझे भरोसा है सिर्फ सेनको गोल्डन डायमंड्स पर, क्योंकि सिर्फ सेनको देता है सर्टिफाइड डायमंड्स, बायबैक फैसिलिटी और 100% एक्सचेंज वैल्यू, साथ में लाइफ टाइम मेंटेनेंस, फ्री इंश्योरेंस। तो आप डायमंड्स खरीदने से पहले सेनको में जरूर आना।
5: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
6: No added sugar, preservative के बिना। डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
7: लायन डेट नट बाइट्स।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर गया
2: करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: यहाँ तक नहीं पहुँचती।
1: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज़ गूंज रही है।
0: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
2: 19 साल के छात्र साहिल रजाब ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
0: हर बात देश के सामने।
1: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
0: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया

हिंदू कुश से अरुणाचल तक 12,000 किलोमीटर की लंबाई वाला हिमालयन रेंज, पहाड़ की ऊंची चोटियां जो न जाने कितनी सदियों से बर्फ से ढकी हुई हैं। इन्हीं चोटियों के ऊपर की बर्फ ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब पिघलने लगती है तो पहाड़ी की चोटियों पर झीलें बनने लगती हैं। ये ग्लेशियर पिघलने के साथ पहाड़ी की मोरेन वाली सतह को खुरच कर कमजोर कर रहे हैं और यही मोरेन पिघले हुए ग्लेशियर से बनी झील की दीवार का काम करते हैं। जब ग्लेशियर झीलें फटती है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF, यह हादसा जब होता है तो पहाड़ से कयामत उतरती है। करोड़ों अरबों लीटर पानी एक साथ पहाड़ से टनों टन भारी चट्टानों मलबे के साथ 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है। उस मोमेंटम के आगे खुद पहाड़ का टिकना नामुमकिन होता है और फिर जो तबाही होती है उसमें पहाड़ी से आए लाखों करोड़ों टन के मलबे में पूरा इलाका दफन हो जाता है। क्यों फटती हैं ग्लेशियर झीलें? ग्लेशियर के पिघलने के बाद बनी झीलों का बांध बेहद भुरभुरे मटेरियल यानी कंकड़ पत्थर के मोरेन से बना होता है। जब ऊंचे पहाड़ों से बर्फ के विशाल पहाड़ टूटकर इन झीलों में गिरते हैं तो झील की दीवारें उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। मलबे के अंदर ही अंदर पानी रिसने लगता है जिससे बांध अंदर से खोखला हो जाता है और अचानक ठहर जाता है। सुबोध कुमार, दिल्ली, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक सीधे नेपाल से। हम जो ये विशेष बुलेटिन आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हम आपको नेपाल त्रासदी, यहाँ चल रहे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस, सबका पूरा हाल बताने वाले हैं। मैं श्वेता सिंह और मेरे सहयोगी आशुतोष मिश्रा अलग अलग जगहों पर नेपाल में जाकर आपके लिए वो तमाम रिपोर्ट्स ला रहे हैं जिसके जरिए आप यहां की परिस्थितियों को समझ सकें। नेपाल में जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहा है उसमें किसी भी तरह की विदेशी मदद तो नहीं ली जा रही है, लेकिन नेपाल की सेना, नेपाल के पैरामिलिट्री फोर्सेज, नेपाल की पुलिस लगातार दिन रात रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हैं। एक बहुत ही शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें एक तरीके से नेपाल की सेना देवदूत बनकर सामने आई, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल से 350 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा।

नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

0: और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया। एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है, जहां आज तक संवाददाता श्वेता सिंह पहुंची हैं।
1: ये देवी घाट की प्रहरी चौकी हम आपको दिखा रहे हैं और आगे देवी घाट बाजार है। पूरा त्रिशूली बाजार का हाल आपने देखा। ये देवी घाट की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये भी पूरी तरीके से इस मलबे और मिट्टी के नीचे ये पूरा बाजार का हिस्सा जा चुका है। चाहे आप छोटी सी एक चाय की दुकान को देख लें, यहां पर खड़े हुए ट्रैक्टर्स को देखकर शायद आपको वो पैमाना ज्यादा समझ में आएगा, और साथ ही वो दुकानों के शेड्स, इधर मंदिर का भी हिस्सा है जो पूरी तरीके से मिट्टी और मलबे के नीचे।
0: श्वेता सिंह नेपाल में जहां से रिपोर्ट कर रही हैं, ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है, जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वही नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया।
1: ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से बह चुका है। बाजार से पहले का जो ये हिस्सा है ये रेसिडेंशियल एरिया है, और घरों के हक का हाल देखकर आप समझ लीजिए। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि इस गांव में उस समय लोग सभी थे मौजूद इवैक्यूएशन के लिए। कुछ बातें कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए कहा गया था, लेकिन यहां पर गांव वाले थे, अपना सामान ले जाने की कोशिश कर रहे थे जल्दी से जल्दी, लेकिन देखकर ही पता चल रहा है कि शायद ये संभव नहीं हो सका होगा।
0: देवी घाट के इस इलाके में अब केवल चंद लोग मिलते हैं। जो बचे हैं वो बताते हैं कि यहाँ लोगों का बचना कितना खतरनाक रहा है।
2: अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता, इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग को दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है।
3: तो कितना फूट मिट्टी है ये जो आप कह रहे हो, इसके नीचे लोग दबे हो सकते हैं?
2: इधर तकरीबन आपका ये बोले कि 2-3 इंसान इसमें आराम से अंदर जा सकता है, इतना ऊपर तक मिट्टी आ चुका है, रमल आ चुका है। तो अभी इधर पैदल तो कोई भी सोच भी नहीं सकता है कि इधर से आगे जाए,
3: धस सकते नीचे,
2: पूरा धस जाता है। हम लोग सुबह कोशिश भी किए थे, सुबह इधर नीचे से आपका दो आपका सब निकाला गया, एक सब निकालने के लिए तकरीबन 45 मिनट लग गया था। इतना मुश्किल, इतना कठिनाई है।
3: दलदल में कोई आदमी उतरे तो वो नीचे चला जाएगा?
2: हाँ जी, और उसको खींचने के लिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई दूसरा बंदा उधर जा ही नहीं सकता है।
1: यहाँ पर आप जो रिलीफ वर्कर्स हैं उनको देख रहे हैं, ये पूरा एरिया, इसके आगे फिर बाजार का एरिया हो जाता है जो मिट चुका है, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और कोशिशें यही जारी हैं कि किसी तरीके से जल्दी रिलीफ का ये काम किया जा सके। जो हमारे ये आप कैनाइन स्क्वाड के भी दस्तों को इसमें शामिल देख सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमने देखा कई स्निफर डॉग्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि रेस्क्यू एफर्ट्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि कोशिशें ये हो रही हैं कि यहाँ जो गांव वाले, जो अधिकांश लापता बताए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से ढूंढा जा सके।
0: बुधवार को नेपाली सेना की एक यूनिट ने स्याफ रुबेसी, तिमुरे, मेलोंग, ठुलो हाकू और हाकू बेसी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कई जगहों से 533 और नागरिकों को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा गुरुवार को रसुआ के अलग अलग हिस्सों से 883 लोगों को बचाया गया। ये रसुआ के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहाँ ये प्रोजेक्ट था वहाँ नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए, अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसुआ से आशुतोष मिश्रा, आज तक।
1: एक पक्ष है रेस्क्यू जहां पर लोगों को निकाला जा रहा है, दूसरा पक्ष है इंतजार, जहां पर लोग अपनों के इंतजार में दिन रात बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कहीं से कोई खबर आ जाएगी। रेस्क्यू किए हुए लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट है नवाकोट, वहां पर जो विदुर आर्मी कैंप है वहां लेकर जाया जा रहा है। जो लोग अपनों को नहीं ढूंढ पा रहे हैं वो सब उस कैंप के बाहर दिन या रात, बरसात या गर्मी इंतजार कर रहे हैं। केवल जो लिस्ट अपडेट होती है उसमें अपनों के नाम को तलाशते हैं, अगर नाम नहीं होता तो फिर एक और लंबे इंतजार के लिए वहीं पर बैठ जाते हैं।

0: भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद नेपाल में यही हालात है। लोग ऐसे ही सरकारी कैंपों में जा जाकर अपनों को तलाश रहे हैं। किसी का पिता खो गया, कोई अपने घर से बिछड़ गया, किसी का पति नहीं मिल रहा। अपने रिश्तेदारों को खोजते हुए लोग ऐसे ही भटक रहे हैं।
1: किसको खोज रहे हैं? ये कौन है?
2: ये हमारा छोटा चाचा जो मिसिंग फ्रॉम गटेकुल्लो रसुआ। हम 3 दिन से इधर आकर ढूंढ रहा हूँ अभी तक, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं।
0: असल में 26 अगस्त को जब नेपाल के 3 बड़े जिलों में यह फ्लैश फ्लड आया तो लोग नदी की घाटी छोड़कर ऊपरी इलाकों में चले गए। जो खुशकिस्मत थे इसी तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा परिवार बच गया। जिसको जैसा मौका लगा वो भाग गया, ऐसे ही जंगलों में चला गया। लेकिन इन तमाम लोगों के परिवारों के बहुत से सदस्य आपस में बिछड़ गए। अब ये लोग नेपाल सरकार के ऐसे ही कैंपों में जाकर अपनों को खोज रहे हैं। नेपाल की सेना दूर दराज के जंगलों और बाढ़ के प्रभावित क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालकर ऐसे ही कैंपों में ला रही है।
3: मैं इस समय नुआकोट के सबसे आखिरी बाजार के उस बेस कैंप पे हूँ, जहाँ पर राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, एयर ऑपरेशन चल रहे हैं। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये नेपाल पुलिस के वो लोग हैं और प्रहरी हैं जो दरअसल नागरिक सुविधा केंद्र बनाई है। और वो इसलिए जरूरी है कि जो लोग लापता हैं उनके बारे में यहाँ जानकारियां दी जा रही हैं, वो इन जानकारियों को दर्ज करें और उसके बाद जिन लोगों का को रिकवर कर लिया जा रहा है, जिनको वापस इवैक्यूएट कर लिया जा रहा है, उनको यहाँ लाया जा रहा है और बाकायदा उनके नाम बताए जा रहे हैं। और ये इसलिए जरूरी है कि जो लोग हैं, जो लोग लापता हैं, उनको खोजा जा सके। अभी भी देखेंगे आप जो है रेस्क्यू ऑपरेशन वो चल रहा है, तो दूर दराज के इलाकों से उनको एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। लेकिन पुलिस के रोल इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर उनके पास ये नाम हो, जरूरत के लोग हो, कौन कहाँ है, तो सर यहाँ पर किस तरह की जानकारी दर्ज की जा रही है?
4: ये तो हरा को मान्छे को अनि त्यो सम्पर्क विहीन भएको मान्छे
3: मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ जो लोग मिसिंग है, उनको इस तरह की जानकारियां इन्होंने दर्ज की हुई है। और कोशिश ये हो रही है कि जब अपनों को खोजने के लिए लोग आते हैं तो उनको बताया जा सके कि वो कहाँ है, किस हाल में है, उनको एयरलिफ्ट किया गया है तो उनको कहाँ ले जाया गया है।
0: नेपाल के नुआकोट के इस बेस कैंप पर हर तरफ दर्द ही दर्द है। जैसे ये लड़की, इसके पिता नहीं मिल रहे। जब से ये बाढ़ आई है वो तब से लापता है। उसके साथ के बाकी लोग आश्वासन दे रहे हैं, यहाँ लिस्ट में बार बार नाम चेक कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता का कुछ पता नहीं चल पा रहा।
5: मेरे भिनाजू, भिना ब्रदर,
6: ये भाभी हैं आपकी?
5: भाभी नहीं, मेरे पांजी, पांजी वो दीदी, जीजा, जीजा।
6: इस लिस्ट में नाम नहीं है?
5: नाम नहीं है। इसका पापा।
3: इस त्रासदी में इस बेटी को उम्मीद थी कि जिन लोगों का नाम पर्चे पर है उनमें एक नाम इसके पापा का भी होगा, जो तैमूरे के पास खो गए थे लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। राहत बचाव कार्य चल रहा है, हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। सब बहुत लोग लौटे हैं लेकिन इस बच्ची के पापा नहीं लौटे हैं और अभी तक पापा के इंतजार में ये बेटी। ये आंखों के आंसू यहाँ पर सामान्य है। ये पीड़ा जो है बहुत सारे लोगों के अंदर है जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें भी बचा लिया जाएगा। लेकिन ये राहत बचाव कार्य जितना मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, और इसीलिए जब ये नाम निकल करके इन जगहों पर आते हैं कि इन लोगों को बचा लिया गया है तो बहुत सारे लोग उम्मीद में आते हैं कि शायद उनके अपने भी लौटेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से इस त्रासदीग्रस्त नेपाल में दिखाई दे रहे हैं।
0: यहाँ ऐसी एक नहीं बहुत सी कहानियां हैं। किसी का भाई लापता है, किसी का कोई और रिश्तेदार, किसी की बाढ़ आने के बाद बात हुई थी लेकिन अब 2 दिन से फोन नहीं मिल रहा और ना ही कोई जानकारी मिल पा रही है। सरकार के कैंपों में आकर लिस्ट चेक कर रहे हैं कि शायद आर्मी कहीं से बचा कर लाई होगी, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लग रही है।
7: मेरा भाई का नाम खोज रहा है लेकिन इधर नहीं है।
3: कहाँ पर काम करते हैं?
7: पेत्रावती में काम करता है, जॉब उधर करता है मेरा भाई।
3: इतने लोगों को देख करके लगा कि वापस उम्मीद बनी कि भाई भी आ जाएगा?
7: आ जाएगा, आज लग रहा है लेकिन संपर्क भी नहीं है ना। किधर है, कैसे है, कैसे हालत में है, क्या क्या कर रहा है मालूम नहीं। फोन में हुई घटना होने के 2 दिन बाद अगला दिन बात हुआ था लेकिन उसके 3 बात ही नहीं हुआ अभी तक।
8: मैं अपना सालों को खोज रहा हूँ, पता चला उनके बारे में? कुछ भी पता नहीं चल रहा है अभी तक।
3: वो कहाँ पर थे?
8: वो तिमोरे में थे, तिमोरे रसागढ़ी वो नाका में थे। ड्राइवर था, एक सिनू कंपनी का गाड़ी चलाता था, वो अभी 3 दिन से लापता है।
3: नाम इसमें नाम है
8: उनका? नाम देख रहा हूँ, एक ही नहीं, कल सुबह मैंने
9: उसका नाम निश्चित पाया था, अभी अब ये रेस्क्यू टीम में हो कि नहीं,
10: वो लोग है जिनको बचाया गया।
9: हाँ, ये बचाया गया है, उसका मैं नाम देख रहा हूँ।
0: इन लोगों में श्रेयस खुशकिस्मत था। श्रेयस उस दिन अपने कॉलेज गया था जब बाढ़ आई। कॉलेज में हल्ला हुआ तो वो भी जान बचाने के लिए भागा। अब दो दिन के बाद पता चला है कि उसके माता पिता भी मौका रहते भाग गए थे। वो नदी के दूसरी तरफ है, लेकिन श्रेयस वहाँ कैसे जाएगा, क्योंकि इस त्रासदी में तो सारे पुल ही बह गए।
9: श्रेयस जिस इलाके में रहते थे वहाँ कुछ बचा नहीं है, इनका घर चला गया था। माता पिता के बारे में पता चला तो वो सुरक्षित इलाकों पर नदी के उस पार चले गए, त्रिशूली के। अब ये सोच रहे हैं किसी तरह रास्ता मिल जाए तो ये भी अपने माँ बाप के पास उस घर में पहुंच जाए। ऐसे न जाने कितनी कहानियां हैं यहाँ पर कि लोगों ने, किसी ने अपनों को खोया, किसी ने अपने घरों को खोया है। श्रेयस आप पढ़ते हैं?
11: हाँ, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ।
9: कॉलेज स्टूडेंट हैं। आपके बाकी दोस्तों के बारे में पता चला कहाँ है?
11: वो दोस्तों भी अपने रिश्तेदार के इधर ही रह रहे हैं, अभी तक तो वो लोग इधर आ रहे होंगे। इधर
9: सब सुरक्षित हैं?
11: सब सुरक्षित ही है।
9: आप थे उस दिन जब ये जलजला आया था, सब कुछ देखा था आपने?
11: मैं कॉलेज पे था, अचानक से सर ने कहा कि सब लोग निकलो, उधर रिवर बहुत तेज बाढ़ में आ रहा है। हम एकदम हलबला में सब इधर उधर हो गए। हम इधर रिवर के इस साइड पे कॉलेज थे अपना, उधर पढ़ रहे थे, अचानक से आ गया, हम सब बिछड़ गए। और पता चला कि
9: डर लगा था उस समय,
11: बहुत डर लगा था।
0: फिलहाल नेपाली सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी भी तरह से प्रभावित लोगों को निकाला जा सके। बहुत से लोगों का तो शायद कभी पता ही नहीं चलेगा जो इस बाढ़ में बह गए, उनके तो शव भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जिन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है, नेपाली सेना की प्राथमिकता उनको बचाने की है।
12: अब तक कुल मिलाकर के जो राहत बचा, दिन में 80 से 90 सॉर्टीज हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ान भरते हैं। और ये देखिए, अब यहाँ से जो बच्चे हैं कुछ उन इलाकों पे जिनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ से निकाल के उन्हें सुरक्षित इलाकों पर ले जाया गया है। और इसी के साथ साथ जो जरूरत का सामान है, चाहे वो रसद हो, खाने पीने की जरूरत हो, दवाइयां हो, उनको भी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़े पैमाने पर राहत बचाव कार्य अभियान चलाया जा रहा है, और खासकर ऊपर का इलाका है रुसवा से लेकर के उसके नीचे जहां से लोगों को इवैक्यूएशन कराया गया था। हम यहाँ देख पा रहे कई सारे स्कूल के बच्चे हैं, वो भी बचाए गए थे। और अब उनको, क्योंकि इस तरह के हेलीकॉप्टर 7 से 8 एक बार में ज्यादा से ज्यादा ले जा सकते हैं, और उनको बचा करके अब सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे हर 30 सेकंड में एक के बाद एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर उतर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अभियान है। और लगातार आप समझिए कि सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही राहत बचाव कार्य पूरा किया जा सकता है। बहुत बड़ा मिशन इस समय नेपाल में चल रहा है, उन आपदा ग्रस्त इलाकों में लोगों को इवैक्यूएशन करने के लिए।
0: नेपाल में यह बहुत बड़ी तबाही हुई है। नेपाल तो कई साल पीछे चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जनहानि, पशुहानि तो हुई है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बाजार, गांव सब बह गए। जो बचे भी हैं, वो रहने की स्थिति में नहीं है। नेपाल से श्वेता सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।
13: नेपाल त्रासदी की पल पल की खबर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: न्यूयॉर्क में मोहन भागवत क्या बोलेंगे, उससे पहले वो वहां क्यों बोलेंगे, ये सवाल अमेरिका की सियासत से लेकर हिंदुस्तान की सियासत में गूंज उठा है। आरएसएस की विचारधारा के विरोध के नाम पर पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया।
1: You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
2: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
1: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
0: इधर भारत में अखिलेश यादव ने इवेंट के आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी अहेड फोरम का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने पर लिखा, विदेशों में जब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे। इसी के साथ अखिलेश ने 21 सवाल पूछ डाले। सवालों में शामिल था, स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश आखिर क्या लेने गए हैं, क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं, क्या भविष्य में वहां राजनीतिक प्रश्रय लेने की संभावना तलाशने गए हैं। वैसे अखिलेश यादव के सवालों की लिस्ट पढ़ी ही जा रही थी कि एक्स ने अहेड फोरम का अकाउंट बहाल कर दिया। इसके बाद अहेड फोरम ने एक्स पर लिखा, गुमराह विरोधियों का हम पर बॉट हमला हुआ जिन्होंने एक्स के एल्गोरिथम को प्रभावित कर हमारे हैंडल को ब्लॉक करवाने की कोशिश की। मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है। 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सल हार्मनी एंड यूनिवर्सल वननेस। आरएसएस ने इसे सर्वधर्म मल्टीकल्चरल और विविधता वाला कार्यक्रम बताया है जिसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आरएसएस से सीधे नहीं जुड़े हैं। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर शुरू हुई सियासत के बीच कर्नाटक में आरएसएस पर फिर हंगामा मचा है। कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने वाले दो सरकारी स्कूल टीचर अन्ना साहेब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कर्नाटक में आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर संग्राम हो चुका है। आरएसएस को लेकर लड़ाई सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशन पर सामने आए विवाद में भी आरएसएस को घसीट लिया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के स्पष्टीकरण पर गौरव गोगोई ने लिखा, ये कितना कमजोर बयान है। पेंगुइन इंडिया को एग्जाम वॉरियर्स और आरएसएस पर लिखी गई कई किताबें प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डरने लगे हैं कि भारत की जनता कोई किताब पढ़ लेगी। आज तक ब्यूरो।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: तक 587 लोगों की मौत, करीब 2000 लापता। भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ दिल्ली से रवाना विमान, काठमांडू से लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। अंकित बालियान की मौत पर यूपी में राजनीतिक युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल होगा इंसाफ, जब होगा बदलाव। पेपर लीक के आरोप के बीच सरकार का बड़ा निर्णय, एनडीए में 2 निदेशक, 1 ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति, अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 729.3 बिलियन डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा, लेकिन औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में आई हल्की गिरावट।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान को 4 शूटरों ने गोली मारी थी, लेकिन मौके पर इन 4 शूटरों का एक 5वां साथी भी मौजूद था, जो लगातार फोन पर उनसे संपर्क बनाए हुए था। बहुत मुमकिन है कि ये 5वां साथी उसी जिम के अंदर मौजूद था जिस जिम में अंकित बालियान थे, क्योंकि 4 शूटरों में से एक शूटर के पास एक फोन आया और फोन आते ही चारों शूटर अचानक जिम की तरफ दौड़ते हैं। इसके बाद शूट आउट होता है। शूट आउट की पूरी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ये शामली में मौजूद मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर से बस कुछ कदम की दूरी पर एक गली है। 26 अगस्त की शाम करीब 6 बजे के आसपास ये 4 लड़के उसी गली से निकले और उसी इलाके में मंडराते नजर आ रहे। कैमरे में जो वक्त दिख रहा है वो शाम के 6:36 का है। इस गली से एक एक कर 4 लड़के बाहर आ रहे हैं। सबसे आगे वाला लड़का अपने मोबाइल में कुछ देख रहा है, उसके पीछे चल रहा लड़का मोबाइल पर किसी से बात कर रहा है, तीसरे लड़के के हाथ में पीले रंग का कोई कपड़ा है, जबकि सबसे पीछे चौथा लड़का दौड़ता हुआ बाकी तीनों के पास जा रहा है। शायद मोबाइल पर कोई 5वां मौजूद है जो इन्हें कुछ बता रहा है, और उसी के बाद ये 4 लड़के तेजी के साथ उस जिम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के निकलने का अब वक्त हो गया है। अब तीसरा कैमरा दिखाऊं, उससे पहले आपको कुछ सुनाता हूं।

0: ये जो आप सुन रहे हैं ये गोलियों की आवाज है। आवाज इतनी तेज कि दूर तक लोगों के कानों तक पहुंच रही है। गोलियों की इस आवाज को पहले के लोगों ने पटाखा ही समझ लिया था।
1: पहले तो हमें लगा बुलेट की आवाज है, पटाखों की।
2: पहले तो ऐसे लगा कि कोई बुलेट से पटाखे मार रहा।
0: लेकिन फिर जब एक के बाद एक चार लड़के हवा में पिस्टल लहराते हुए भागते नजर आए, तब वहां मौजूद लोगों को सच्चाई पता चली कि अभी अभी यहां शूट आउट हुआ है। वो शूट आउट जिसमें हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की जान चली। ये 26 अगस्त की शाम का वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें अंकित बालियान का लाइव शूट आउट कैद है। सीसीटीवी कैमरे में घड़ी जो तारीख और वक्त दिखा रही वो है 26 दिसंबर शाम के ठीक 6:44। ये शामली में मौजूद मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर है। अंकित बालियान पिछले एक साल से इसी जिम में आया करते थे। बुधवार यानी 26 दिसंबर की शाम ठीक 6:44 पर वो जिम से बाहर निकलते दिखाई देते हैं, काली टी शर्ट और लोअर पहने हुए। यही अंकित बालियान है। हाथ में भूरे रंग का जिम बैग भी है। अंकित हमेशा जिम से करीब 10 मीटर दूर सड़क के दाहिनी तरफ अपनी काले रंग की स्कॉर्पियो पार्क करते थे। ड्राइविंग सीट दाहिनी तरफ बिल्कुल सड़क के किनारे है, जहां जगह बहुत कम है। जिम से निकलकर स्कॉर्पियो के करीब पहुंचकर अंकित गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलते हैं और जिम बैग रख देते हैं। अब वो कार के पीछे से घूमते हुए दीवार की तरफ जाने के लिए मुड़ते हैं ताकि ड्राइविंग सीट पर बैठ सके। पर जैसे ही वो गाड़ी का गेट खोलते हैं, अचानक पीछे से एक एक कर चार शूटर दौड़ते हुए अंकित की गाड़ी के करीब पहुंचते हैं और तीन तरफ से घेर कर अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। पहली गोली की आवाज सुनते ही सड़क पर चल रहे राहगीर अचानक अब भागने लगते हैं। कई राउंड की फायरिंग के बाद जब अंकित घायल वहीं किनारे गिर पड़ते हैं, तब शूटर पहले पीछे हटते हैं, फिर दोबारा अंकित के करीब जाते हैं और फिर से गोली मारते हैं। इसके बाद फ्रेम में चार शूटर हवा में पिस्टल लहराते और गोली चलाते हुए कैमरे से बाहर निकल जाते हैं। लौटते वक्त वो चिल्ला भी रहे थे, शायद ये बता रहे थे कि वो लोग कौन हैं और अंकित को क्यों मारते।

0: जिम के करीब ही एक दुकान के बाहर शूटरों की दो मोटरसाइकिल पार्क थी। चारों उसी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं और आराम से निकल भागते हैं। ये तस्वीर उन्हीं चार शूटरों की जिन्होंने अंकित को गोली मारी। जिस जगह जिम है वो सड़क बेहद कम चौड़ी है। हालांकि जब शूटर यहाँ घात लगाए बैठे थे तब भी सड़क पर चहल पहल थी। लगातार ई रिक्शा, बाइक और साइकिल सवार वहां से गुजर रहे थे। बहुत से लोग पैदल भी आ जा रहे थे। फिर भी शूटर बेखौफ करीब दो घंटे तक जिम के बाहर अंकित का इंतजार करते रहे। इस बीच सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कैमरे पर यह दावा किया जा रहा है कि उसी ने अंकित को मारा है। हालांकि इस वीडियो या दावे की पुष्टि हम नहीं करते।
1: दिन दहाड़े मारा मैंने उसे, तो कोई सा रोक ना पाया।
0: फिलहाल यूपी पुलिस की पूरी जांच गोगी गैंग की तरफ है, उसी गोगी गैंग की तरफ जिसने शूटआउट के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालकर अंकित की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस पोस्ट में लिखा है, सभी भाइयों को राम राम। ये जो आज अंकित बालियान का शामली में मर्डर हुआ है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं भोलू शाहपुरिया सोनीपत से लेता हूँ। यह हमारे दुश्मनों का साथ देता था। हमारे गोगी भाई के साथ हुई घटना पे इसने गाना बनाया था और हमारे दुश्मनों का आपराधिक कामों में साथ देता था। इसका अंजाम इसको मिल गया और जो भी हमारे दुश्मनों का साथ देगा उन सब का यही हाल होगा। ये तो अभी शुरुआत है, सबका नंबर आएगा। वेट एंड वॉच, गोगी भाई, फज्जो भाई, गोगी ग्रुप। पुलिस को शक है कि शूटआउट के बाद चारों शूटर बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर हरियाणा की तरफ निकल भागे। दरअसल शामली में जहां शूटआउट हुआ वहां से हरियाणा बॉर्डर बिल्कुल करीब है। यूपी पुलिस के पास चारों शूटरों की तस्वीर भी है, उसी की बिना पर पुलिस उनका नाम पता जानने की कोशिश कर रही है। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को ये भी पता चला है कि कुछ वक्त पहले ही अंकित की एक और हरियाणवी सिंगर से कुछ कहा सुनी हो गई, जिसके बाद से ही अंकित ने रोहतक में रहना कम कर दिया था और अब वो ज्यादातर शामली से 10 किलोमीटर दूर अपने गांव बंती खेड़ा में रहा करता था। खुद अंकित बालियान ने एक वीडियो में भी खुद को धमकी दिए जाने की बात कही थी, पर उन्हें धमकी कौन दे रहा था उसका नाम उन्होंने वीडियो में कहीं नहीं लिया।
2: मैंने कोई गलती नहीं कर रखी, और जो मेरा नाम लेना बेर बेर अंकित बालियान नु, अंकित बालियान नु कान खोल कर सुन लो, वेस्ट यूपी था हूँ मैं और सोनीपत में हूँ, तेरे पास जो पट्टा वो पाड़ ले, आज यार टेम कर ले, ठीक है ना? अगर सोशल मीडिया तेरी की डाल डेरे नहीं है, अरे मेहनत करके घर का नाश कर रखा, घर फूक कह रहे लैन में मेहनत करे रह दी, अगर बस नू फ्री फंड में कर लिया, फेम ले लिया, किसी का लेगा नहीं खा रखा, आई बात समझ गया।
0: चारों शूटर जिस बाइक पर आए थे उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं था। सड़क से जो खाली खोखे मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि उनके पास बेहद सोफिस्टिकेटेड वेपन था। यूपी पुलिस और एसटीएफ ये अंदाजा लगा रही है कि शूटरों का ताल्लुक हरियाणा से हो सकता है, क्योंकि गोगी गैंग का कनेक्शन भी हरियाणा से है। इसीलिए पुलिस की चार टीमें शूटरों की तलाश में हरियाणा में अलग अलग जगहों पर दबिश डाल रही है।
3: हमारे पास काफी क्लूज आ गए, हमारे यहाँ पे जो एसएसपी साहब हैं उनको बहुत इस पे आइडिया है, वो पहले बागपत में रह चुके हैं, एसीएम रह चुके हैं, बहुत सारे हम लोग पास क्लूज आ चुके हैं, लेकिन अभी किसी को सार्वजनिक करना विवेचना के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बहुत जल्दी इसके इसके बारे में खुलासा करके आप लोगों को पूरी घटनाक्रम के बारे में बताएंगे।
0: यूपी पुलिस का मानना है कि गोगी गैंग के जरिए कुछ नए गैंग यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये यूपी पुलिस के लिए चुनौती भी है, लेकिन यूपी पुलिस इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है।
4: तो शुरुआती जांच में यह जानकारी मिली है कि चार शूटर्स थे जो दो मोटरसाइकिलों से घटना करने के बाद फरार हो गए। घटनास्थल पर लगभग 18 कारतूस के खोखे मिले हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है। इसकी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर भोलू शाहपुरिया द्वारा ली गई है, जो अपने आप को गोगी गैंग का मेंबर बताता है। ये गोगी और टिल्लू ताजपुरिया ये आउटर दिल्ली और हरियाणा रोहतक आदि क्षेत्र के में प्रभाव रखने वाले अपराधी थे, दोनों ने यह ऐसा माना जाता है कि दोनों ने एक दूसरे की हत्या करवा दी। इन गैंग्स का प्रभाव अभी तक यूपी में नहीं रहा है और न ही कोई ऐसा नोन थ्रेट था अंकित बालियान पर।
0: अंकित बालियान इससे पहले भी हथियार, गोली, मर्डर जैसे शब्दों को अपने गाने के बोल बना चुके हैं। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला को लेकर हरियाणा और पंजाब के गैंग अलग अलग बटे हुए थे और जिस तरह सिद्धू मूसेवाला पर लॉरेंस गैंग के विरोधियों के लिए काम करने का या उन पर गाना बनाने का इल्जाम था, लगभग कुछ वैसा ही अंकित बालियान पर भी इल्जाम लग रहे थे। आपको याद होगा कि 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की उन्हीं के गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस के करीबी रहे गोल्डी बराड ने ली थी। इस बार भी जिस भोलू शाहपुरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अंकित बालियान के कत्ल की जिम्मेदारी ली, उसका कनेक्शन भी गोल्डी बराड और लॉरेंस के कुछ करीबियों से है।
5: अंकित बालियान हरियाणवी सिंगर और जिसके गानों में गैंगस्टर, जेल और कोर्ट में हुई वारदातें ही शामिल होती थीं। यही वजह है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद लॉरेंस विश्नोई गैंग के करीबी और मौजूदा समय में टोरंटो में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा भोलू साहपुरिया ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। उसने साफ कहा है कि अंकित बालियान गोगी भाई की हत्या पर गाने बनाया था। गोगी भाई का मतलब रोहिणी कोर्ट ने जिस तरीके से 2021 में गैंगस्टर जितेंद्र सिंह गोगी की हत्या को टिल्लू ताजपुरिया गैंग के लड़कों ने अंजाम दिया था, उसके बाद बनाए गए गाने से भोलू साहपुरिया रंजिश मानने लगा था और इस हत्याकांड को अंजाम देने की वजह भी उसने सोशल मीडिया पर यही बताई है।
0: अब इसे किस्मत का खेल कहें या कुछ और, अपनी मौत से कुछ देर पहले ही अंकित बालियान सोशल मीडिया पर गाड़ी में बैठे बैठे एक गाना गा रहे थे जिसके बोल थे, मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, यानी सड़क पर ही मर्डर कर दो। और इसके कुछ देर बाद ही सड़क पर ही चार शूटर अंकित बालियान का मर्डर कर देते हैं।
6: खास भाई की बड़क के ऊपर मर्डर मार दे सड़क के ऊपर, जो खटकेगा वो भटकेगा साला बच जावेगा कुकर।
0: 32 साल का अंकित बालियान उत्तर प्रदेश के शामली जिले के बद्दी खेड़ा गांव का रहने वाला था। ये गांव हरियाणा की सीमा के बेहद करीब है। अंकित ने हरियाणा के रोहतक में ही अपनी पढ़ाई की। उसे बचपन से कबड्डी प्लेयर बनना था। अंकित कबड्डी का एक अच्छा खिलाड़ी भी था, लेकिन 2022 में खेल के दौरान पैर में फ्रैक्चर हो जाने की वजह से उसने कबड्डी छोड़ दी। अंकित ने कुछ वक्त मोबाइल की दुकान भी चलाई। अंकित को म्यूजिक का भी शौक था। 2022 में कबड्डी से अलग होने के बाद अंकित रोहतक और सोनीपत में म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ गए, फिर हरियाणवी में गाना गाने लगे। भरी कोर्ट में गोली मारेंगे वाले जिस गाना के चलते अंकित की जान गई, 2023 में उसी गाने की वजह से असल में अंकित को पहली बार म्यूजिक इंडस्ट्री में एक मकाम हासिल हुआ था, क्योंकि ये गाना तब काफी मशहूर हुआ था। बाद में उत्कसूत, बेबी बदमाश, गेनर जैसे गाने भी काफी हिट रहे। उधर जिस भोलू शाहपुरिया ने अंकित के कत्ल की जिम्मेदारी ली है, वो दिल्ली हरियाणा में सक्रिय रहे गोगी गैंग के काफी करीब था। इस गैंग का सरगना दिल्ली के अलीपुर का रहने वाला जितेंद्र सिंह गोगी था। गोगी गैंग की दुश्मनी दिल्ली के ही एक और गैंग टिल्लू ताजपुरिया से थी। इस दुश्मनी के चलते 2021 में ताजपुरिया गैंग ने गोगी की रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोगी की हत्या के 2 साल बाद 2 मई 2023 की सुबह तिहाड़ जेल के अंदर बैरक में गोगी गैंग के 4 लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया पर तेज धार हथियार से 70 से ज्यादा वार कर उसकी हत्या कर दी। इस तरह गैंग ने गोगी की हत्या का बदला ले लिया था। शामली से शरद मलिक और आशीष श्रीवास्तव के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ आज तक। आज देशभर में भाई बहन के खूबसूरत प्यार का त्योहार रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। हालांकि बहुत सारे भाई या बहन ऐसे भी हैं जो कानून के गुनहगार हैं और इसीलिए जेल में हैं, लेकिन किसी भाई की कलाई सूनी न रह जाए इसलिए बड़ी तादाद में देश भर की अलग अलग जेलों में बहनों ने जाकर अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। इसके लिए जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। साल में बस ये एक दिन ऐसा होता है जब सूनी कलाई हर भाई को खटकती है, खटकती है क्योंकि राखी की शक्ल में सामने बहन नजर नहीं आती। साल में ये एक दिन उन भाइयों को भी शायद ये एहसास कचोटता होगा कि उन्होंने किसी की बहन पर जुल्म ढाया या उसके साथ जुर्म किया। साल में शायद ये एक दिन ऐसा होगा जब ऐसे भाइयों को भी ये महसूस होता होगा कि किसी की बहन के साथ कभी गलत मत करो। अगर इसी एहसास को महसूस करना है तो बस राखी के दिन देश के किसी भी जेल का मंजर देख लीजिए। इस खास दिन और खास मौके पर वहाँ कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं बल्कि आपको सिर्फ एक भाई नजर आएगा। राखी के दिन बहनें भाई के घर आती हैं राखी बांधने के लिए, लेकिन बहुत सी ऐसी बहनें या भाई जिन्हें राखी के दिन राखी बांधने या बंधवाने जेल जाना होता है क्योंकि उनका भाई या फिर बहन किसी न किसी जुर्म में जेल में बंद होते हैं।
7: मेरे भाई आएंगे मिलने के लिए, तीन भाई, एक भाई खत्म हो गए मेरे, बहुत ज्यादा याद आ रहे।
8: मैं बहुत दुखी था कि मुझे लगता था कि बहनों को परेशान ना करूं, लेकिन इनका प्यार खींच के लिए आया। इनको मैंने कल भी मना करा था कि मैंने कहा मत आना, फैमिली में ही रहना, लेकिन इनका बहन का और भाई का प्यार ऐसा होता है कि वो अगर ना चाह के भी खींच के लिए आता है। तो ये जितनी भी दूरी हो लेकिन दूरी तय नहीं होती, बस प्यार होता है कि एक दूसरे का प्यार होता है बहन भाई का कि वो खींच के लिए आता है।
0: जी नहीं, ना तो यहाँ कोई मेला लगा है ना ही ये किसी सत्संग की तस्वीर है। ये लंबी लंबी कतारें उन भाई बहनों की है जो यहाँ राखी बांधने या बंधवाने आए। ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर जेल की है। राखी के खास मौके पर जेल प्रशासन ने यहाँ खास इंतजाम किए हैं ताकि बंधन में होने के बाद भी रक्षा बंधन पर किसी भाई की कलाई सूनी न रह जाए।
9: कोई भी कलाई सूनी न रह जाए, इस थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कोई भी बहन या भाई कोई भी कारागार पे आए बिना भाई से मिले या बहन से मिले वो जाए नहीं। और चूंकि यह त्यौहार हम लोगों के भारतीय परंपरा में बहुत ही गौरवशाली एक त्यौहार है जिस पर यह माना जाता है कि अगर भाई ने अपनी बहन को कोई वादा दे दिया, वचन दे दिया, तो वो मरते दम तक उसको निभाता है। तो हम लोग यहाँ पर अपनी इन जो भी बहनें आ रही हैं, जो भी भाई आ रहे हैं, उनसे यह कह रहे हैं कि आप जो भी वादा लीजिए कि जो भी बंदी हमारी कारागार से छूटे, भूलवश या अज्ञानतावश कोई भी जो इसने गलती कर दी है, जब यह यहाँ से छूट कर जाए तो एक अच्छा व्यक्ति बन करके समाज को एक अच्छा मैसेज दे और समाज में अपने आप को पुनः स्थापित कर सके।
0: जेल के अंदर राखी पर राखी बांधने के लिए वक्त को भी नहीं बांधा गया है। सुबह से शाम तक जो भी बहन या भाई यहाँ आएंगे उन्हें आने की इजाजत है। बाकायदा इस खास मौके पर यहाँ टेंट और शामियाने लगे हैं।
10: रक्षाबंधन बहुत ही हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसमें एक रिलेशनशिप, एक बंधन, एक भाई बहन का प्यार, भाई बहन के बीच का जो इमोशनल बॉन्डिंग होता है उसको प्रदर्शित करता है, या परिवार में एक दूसरे की इमोशनल बॉन्डिंग का ये त्यौहार है। और ये कारागार में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप घर परिवार से दूर हैं, अपनों से दूर हैं, तो ये ऐसा त्यौहार है कि जब वो बंधन, रक्षाबंधन, वो बंधन आपको जेल तक लाता है। बहनें कितनी मुश्किलों से बसों में कैसे कैसे करके अपने भाइयों से मिलने पूरे जाम से सबसे निकल के जेल पे आती हैं, तो और भाई भी उनके लिए इंतज़ार करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है कि लोग जो टेंशन में रहते हैं उनका इमोशनल टेंशन ख़त्म हो जाता है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। एक एक खुली मुलाकात होती है, लोग बैठते हैं, अपनी बहनों से राखी बांधते हैं, एक टच थेरेपी होता है, उनके टेंशन ख़त्म होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, उनको भी उनके मन में भी प्यार सत्कार दूसरों के प्रति भी आदर आता है जो कि महत्वपूर्ण है इनके लिए, और हमको भी बहुत अच्छा लगता है। हमें बड़ा अच्छा लगा बाहर समाज के भी लोग जो हैं वो कुछ करना चाहते हैं आज के दिन। बाहर में आज हमारे जेल के बाहर उन्होंने आज पूरे जो भी माता बहनें आ रही हैं उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था की है, अपराध निरोधक समिति ने फल और

0: रक्षाबंधन मनाने के पीछे बाकी वजहों के साथ साथ जेल प्रशासन का एक मकसद शायद ये भी है।
1: बहुत सी ऐसी बहनें भी थी जो तमाम मुश्किलों के बावजूद लंबा सफर तय कर जेल पहुंची, पर भाई को राखी बांधने के बाद उनके चेहरे पर एक सुकून था। हर बहन की राखी बांधते वक्त एक ही ख्वाहिश थी, अपने भाइयों की सलामती और उनके जल्द घर लौट आने की दुआ, ताकि अगली राखी घर पर मनाए।
2: सबको हैप्पी रक्षाबंधन कहेंगे और जितने भाई हैं यहाँ से निकल जाए, बस
3: ये कहना चाहेंगे भाइयों को जल्दी से जल्दी रिहाई मिले, अगली राखी लोग अपने घर पे मनाए जाकर।
1: ये गाजियाबाद जिला कारागार है, यानी गाजियाबाद जेल। यहाँ भी राखी के मौके पर जेल प्रशासन ने खास इंतजाम किए थे। इस मौके पर सुबह से ही बड़ी तादाद में तमाम बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधने पहुंची थी।
4: कि कोई भी महिला जब कारागार में अपने बंदी से रक्षाबंधन के लिए मिलने आए तो उसको ऐसा भाव ना आए कि वो जेल में बंद अपने भाई से मिलने आ रही है, इसका जो त्योहार का उल्लास है वो कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो। इसी के भाव के तहत हम लोगों ने, आप देख रहे होंगे बाहर इतना अच्छा टेंट लगाया हुआ है, अंदर भी टेंट की व्यवस्था है, सबके लिए बैठने की व्यवस्था की गई गार्डन में, और वो जितने रिचुअल्स हैं वो सारे पूरे कर पाए राखी बंधन के साथ। इसलिए रोली तिलक लगाने की जो सामग्री है, मिठाई वगैरह, वो सारी हम लोगों ने एक थाली के साथ तैयार रखी है।
1: ये तस्वीर डिस्ट्रिक्ट जेल सोनीपत की है। यहाँ बाकायदा राखी के मौके पर जेल प्रशासन ने जेल के एक हिस्से में अलग से इंतजाम किया था। इसी तरह लखनऊ, पटना, इंदौर, जामनगर, बलरामपुर, फिरोजपुर, करनाल समेत देश के अलग अलग जेलों में राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। मनीषा झा और मैंगौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
2: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: सिंगर अंकित बालियान की मौत पर यूपी में राजनीतिक युद्ध। गायक के पिता से मिलने के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। पेपर लीक के आरोप के बीच सरकार का बड़ा निर्णय। एनटीए में दो निदेशक एक ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति। अब तक हटाए जा चुके हैं 600 विशेषज्ञ। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 729.3 बिलियन डॉलर पर पहुंचा आंकड़ा। लेकिन औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर में आई हल्की गिरावट।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: सीएम फडणवीस की पहल से तिब्बत में फंसे कैलाश मानसरोवर के 37 श्रद्धालु सुरक्षित रवाना, काठमांडू की यात्रा शुरू। मुंबई के टैक्सी चालकों ने सीएम फडणवीस को भेजी 1,00,000 राखियां, मराठी सीखने की मोहलत बढ़ाने पर आभार व्यक्त। मुंबई करों पर महंगाई की मार, 1 सितंबर से तबेले का दूध 9 रुपए महंगा, 93 रुपए की जगह 102 रुपए लीटर मिलेगा। ड्यूरेक्टिन प्लस मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, महाराष्ट्र एफडीए ने पुणे सीएनएफ का ड्रग लाइसेंस किया रद्द। दवाओं के स्टॉक में गड़बड़ी, रिकॉर्ड में गड़बड़ी और मिस ब्रांडिंग पर सिप्ला का लाइसेंस रद्द हुआ। रिएक्टिन प्लस का 12,00,000 रुपए का स्टॉक जब्त। सिप्ला का जवाब, पुणे एफडीए के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी बोली, दवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की सुरक्षा पर कोई सवाल नहीं। पुणे सातारा हाईवे पर युवक की चाकू मारकर हत्या, सीसीटीवी में कैद, आरोपी गिरफ्तार। विवाद के बाद बाबा रामदेव के कंगना से रिश्ते सुधारने की पहल, रक्षाबंधन पर मिठाई और तोहफा भेजा। बाबा रामदेव के तोहफे पर कंगना ने आभार व्यक्त किया, बोली, भूल चूक माफ। मलाला की किताब पढ़ रहे युवकों को बजरंग दल ने पीटा, अहमदाबाद के गार्डन में सीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता किताब पढ़ रहे थे, भीड़ आ गई, 20 लोगों के खिलाफ शिकायत। आज से महिला T20 एशिया कप, भारत पाकिस्तान महामुकाबला 5 सितंबर को दुबई में। इमरान के बेटों का इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी की धमकी, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड टेस्ट से हटने की चेतावनी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 729 बिलियन डॉलर के पार आंकड़ा। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की वृद्धि दर में गिरावट। सोने की चमक फीकी, लगातार तीसरे दिन 3,300 टूटा भाव, दिल्ली में 10 ग्राम सोना पहुंचा। डॉलर की मजबूती, मुनाफा वसूली से सोने चांदी पर दबाव, सोना 3 दिन में 4,700, चांदी 5,000 रुपए हुई सस्ती। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणा बाली, इंटरनेशनल एक्टर आर्नॉल्ड भी महत्वपूर्ण भूमिका। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला 2 रिलीज, लगभग 20 साल बाद आया सीक्वल। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर रिलीज, नेटफ्लिक्स पर हुई अल्फा रिलीज। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की बंदर। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक भी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध। सुमित व्यास नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो। मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी में मेयर के पद को लेकर महायुति गठबंधन में तकरार शुरू हो गई। बीएमसी में शिवसेना पार्षदों के नेता अमय घोले ने दावा किया कि फडणवीस और शिंदे के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिवसेना का मेयर बनेगा, लेकिन बीजेपी ने इस दावे को रद्द कर दिया। अब शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है, क्या है पावर शेयरिंग का फॉर्मूला, देखिए।

नेपाल त्रासदी में बढ़ा मौत का आंकड़ा, अब तक 587 की जान, 2000 लापता। भुटकोशी नदी का जलस्तर बढ़ा, त्रिशूलु नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की मार झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ दिल्ली से रवाना विमान। काठमांडू से लौटे भारतीयों से मिले जयशंकर।

0: मुंबई महानगर पालिका के नए मेयर को लेकर शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के बीच खींचतान तेज हो गई। शिवसेना का दावा है कि महायुति सरकार बनते समय ये तय हुआ था कि शुरुआती ढाई साल बीजेपी का मेयर रहेगा, उसके बाद अगले सवा साल के लिए शिवसेना और आखिरी सवा साल के लिए फिर से बीजेपी का मेयर होगा।
1: मुंबई में बीएमसी में अब मेयर को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच घमासान होते नजर आ रहा है, क्योंकि ढाई साल के बाद बीजेपी के मेयर के बाद शिवसेना का मेयर होगा, इस तरह की खबरें सामने आने लगी है। शिवसेना एकनाथ शिंदे पार्टी के गुट के नेता हमारे साथ हैं, अमय घोले। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या फॉर्मूला तय था, क्या कोई बातचीत हुई थी, क्योंकि बीजेपी से इस बात को सिरे से नकार रही है।
2: ये पहले से ही पूरा डिसीजन हुआ था, जब इलेक्शन जीतने के बाद महायुति की जब सत्ता ये महानगर पालिका में आई, उसके बाद ये डिसाइड दो शेष नेतृत्व में डिसाइड हुआ था कि ढाई साल मेयर ये बीजेपी का रहेगा, उसके बाद का जो सवा साल का कार्यकाल रहेगा वो शिवसेना का रहेगा, और उसके बाद का सवा साल का जो कुछ कार्यकाल रहेगा वो बीजेपी का वापस रहेगा। तो ये जो डिसीजन हुआ था वो माननीय शिंदे साहब और फडणवीस साहब के बीच में हुआ था, और उसके बाद शिंदे साहब ने ये सब चीज पूरे टीम को बताई थी। और इसके बाद अगर कोई अभी बोल रहा रहेगा कि उनको आइडिया नहीं है कि ऐसे नहीं हुआ, वो चर्चा में वो बिल्कुल नहीं थे वो मैटर में, और ये जब बात हुई उनको कुछ आइडिया नहीं रहेगा, इसलिए वो आज ये बोल रहे हैं कि ये कुछ डिसाइड नहीं था, ये नहीं, पर ये सब प्री डिसाइडेड था। कौन सा कमेटी किसको मिलेगा, कौन सी प्रभाग समिति किसको मिलेगी, और ऑन दैट लाइन ये सब डिसाइड होने के बाद वो सब फॉलो हुआ।
0: शिवसेना का दावा है कि इसी समझौते के तहत समिति और प्रभाग समितियों का बंटवारा हुआ था, इसलिए अब मेयर पद पर उनका ही हक बनता है। हालांकि बीजेपी ने शिंदे की शिवसेना के इन तमाम दावों को खारिज कर दिया है। बीजेपी कोटे से कैबिनेट मंत्री आशीष शेलार कह रहे हैं कि अगर वाकई ऐसी कोई शर्त या सहमति बनी होती तो उसका औपचारिक ऐलान किया जाता।
3: एकनाथ शिंदे जी हमारे एनडीए के नेता है, उन्होंने अनौपचारिक चर्चा में जो बात की उसकी औपचारिक चर्चा करना मुझे उचित नहीं लगता। जहां तक उनकी औपचारिक चर्चा औपचारिक रीति से मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से अगर हुई है तो उसकी जानकारी मुझे नहीं, और इसके लिए औपचारिक तरीके से दोनों की चर्चा अगर हुई होगी तो दोनों बयान स्पष्ट करेंगे।
0: इस बीच सूत्रों से खबर सामने आ रही है कि शिवसेना बीएमसी में ऑपरेशन टाइगर चलाने की तैयारी में है। इसके तहत शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के करीब 45 पार्षदों को अपने पाले में लाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे बीएमसी में अपना आंकड़ा बढ़ाकर मेयर पद पर अपनी दावेदारी को और मजबूत किया जा सके। मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो बीएमसी में बीजेपी के 89, शिंदे के शिवसेना के 29, समर्थक मिलाकर 33, उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के 65 और एनसीपी के 3 पार्षद हैं। कुल मिलाकर सीएम फडणवीस के करीबी मंत्री आशीष शेलार के बयान से साफ है कि बीजेपी आसानी से मेयर पद छोड़ने के मूड में नहीं है। अब देखना होगा कि क्या शिवसेना ऑपरेशन टाइगर के जरिए अपना पलड़ा भारी कर पाती है, या फिर फडणवीस शिंदे साथ बैठकर इस खींचतान का कोई नया रास्ता निकालने में एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे।
1: जिस तरह कुछ सालों पहले अखंड शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी में सीएम पद को लेकर तनाव देखने को मिला था, ठीक उसी तरह अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी में मेयर पद को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। अब देखना ये जरूरी होगा कि क्या मेयर पद पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपना दाव चला पाएगी, या फिर बीजेपी इस पर अड़ी रहेगी। आखिरकार आने वाले दिनों में मुंबई के मेयर पद पर कौन विराजमान होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
4: मराठी विवाद पर जब से मुख्यमंत्री फडणवीस ने गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स को एक साल की मोहलत दी, तब से उत्तर और दक्षिण भारत से आने वाले ऑटो टैक्सी चालकों में जश्न। यूपी से आने वाले ड्राइवर्स के परिवारों ने खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 1,00,000 राखियां भेजी। अब गैर मराठी ड्राइवर कह रहे हैं कि वो एक साल के अंदर हर हाल में मराठी सीख लेंगे।
0: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो टैक्सी ड्राइवर जश्न मना रहे हैं। देखिए ये ऑटो टैक्सी वाले हाथों में देवा भाव के पोस्टर लेकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। दरअसल 27 अगस्त को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालकों को राहत देते हुए मराठी भाषा सीखने की डेडलाइन एक साल के लिए बढ़ा दी।
5: ऑटो चालक और रिक्शा चालक और हमारे टैक्सी चालक संगठना के लोग मुझे मिले, उन्होंने पहले तो इस बात का समर्थन किया है कि मुंबई में काम चलाओ मराठी उनको सीखनी चाहिए जी। वो सब सीखना चाहते हैं, उनका पूरा उसको समर्थन है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अलग अलग उम्र के लोग इस व्यवसाय में हैं, कई लोगों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए इतने कम समय में इसको सीखना उनके लिए कठिन है। उन्होंने एक बहुत बृहद प्लान तैयार किया है काम चलाओ मराठी सिखाने का, और उन्होंने ये मांग की कि इसके लिए एक साल का समय उनको दिया जाए। राज्य सरकार ने उनकी बात को माना है, एक साल का समय उनको दिया जा रहा है। इस एक साल में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको मदद करके अलग अलग प्रकार से क्लासेस तैयार करके लिटरेचर तैयार करके काम चलाओ मराठी जो है वो उनको सिखाने का काम ये निश्चित रूप से किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुंबई में रिक्शा चालकों के परिवारों ने रक्षाबंधन के मौके पर उत्तर प्रदेश से सीएम फडणवीस को करीब 1,00,000 राखियां भेजी।
6: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल ऑटो और रिक्शा चालकों को मराठी सीखने के लिए एक साल तक की समय सीमा बढ़ा दी, जिसके बाद से आज मुंबई में ऑटो और टैक्सी चालक जो हैं वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, यहाँ पर खुशी मना रहे हैं, ढोल पैसे मंगाए गए हैं, एक जश्न की तरह इस फैसले का जो है वो स्वागत करके इसको मना रहे हैं। फिलहाल जो समय सीमा थी वो नहीं बढ़ाई गई थी परिवहन विभाग द्वारा, लेकिन परिवहन विभाग के फैसले को दरकिनार करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक साल की समय सीमा बढ़ा दी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी ऑटो या टैक्सी चालक का लाइसेंस जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, और इन्हें मराठी सीखने के लिए जो है और एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है, जिसके बाद से इन लोगों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इनकी मांग थी कि बारिश और कई कारणों की वजह से ज्यादातर लोग जो है मराठी नहीं सीख पाए थे, मराठी सिखाने के लिए जो क्लासेस शुरू किए गए हैं वो नहीं जा पाए थे उन क्लासेस में, जिसकी वजह से और 3 महीने का समय इन्होंने बढ़ाकर मांगा था, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल एक साल का समय बढ़ाकर इनको दिया है, और एक साल तक अब किसी ऑटो टैक्सी चालक का लाइसेंस जो है मराठी ना बोल पाने की वजह से सस्पेंड नहीं किया जाएगा।
0: ऑटो टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार की ओर से उन्हें मराठी सीखने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने से उन्हें बड़ी राहत मिली है, लेकिन वो एक साल के अंदर हर हाल में काम भर की मराठी जरूर सीख लेंगे।
7: अपने भाइयों को थोड़ा मोहलत मिल जाएगी और अच्छी मराठी सीख लेंगे, अभी तो थोड़ी बहुत सीखे हैं। हाँ, अच्छा है, भाई ने बहुत अच्छा और देवेंद्र फडणवीस ने जी ने बहुत अच्छा ये काम किया। मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। बहुत अच्छा लग रहा है, आशा भाई की बहुत बहुत मेहरबानी है जो हमारे लिए आवाज उठाए, तो उन्होंने बोले और किसी ने तो आवाज उठाया नहीं, अब हमको एक साल मिला, इंशाल्लाह हम पूरा कोशिश करें सीख जाएंगे, हम मराठी बोलेगी भी। बहुत खुश है अरफाज भाई ने हमारे लिए आवाज उठाए, और कोई आवाज ही तो नहीं उठाया था ना।
8: मुझे 1 वर्ष टाइम मिला है मराठी सीखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मराठी, 1 वर्ष के लिए मुझे टाइम मिला है।
0: सीएम फडणवीस ने बीजेपी ट्रांसपोर्ट सेल की मांग के बाद कहा था कि अब एक साल तक मराठी नहीं बोल पाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इस फैसले का रिक्शा टैक्सी चालकों ने स्वागत किया है।
9: बिल्कुल, ये दो मराठी लोगों के साथ में जो शक्ति की जा रही थी उसको महाराष्ट्र के दिलदार मुख्यमंत्री ने इंसाफ दिया, और आज से हम शुरुआत करेंगे मराठी बोला महाराष्ट्र छोड़ा, और हम सब मराठी सीखेंगे मराठी बोलेंगे, 100% इस महाराष्ट्र की अस्मिता की, इस महाराष्ट्र की शान हम हमेशा रखेंगे। ये गर्व की बात है, हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र में रोजगार करते, कोई दिक्कत बात नहीं मराठी सीखने में, लेकिन शक्ति नहीं होनी चाहिए। जो बात आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक साल की जो मोहलत दी, उत्तर प्रदेश से लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप गांव मत आओ मुंबई रहो, क्योंकि मुंबई का राजा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ओ मराठी पांडे जी, शुक्ला जी, गुप्ता जी, अब्दुल रहीम के साथ है, और सभी लोगों ने 1,00,000 उत्तर प्रदेश से राखी आई है उन रिक्शा वालों ने, रिक्शा वालों की परिवार के लोगों ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए 1,00,000 राखी भेजी है और कहा कि आप महाराष्ट्र में रहो, यूपी आने की जरूरत नहीं है और इंशाल्लाह ताला मैं इन सबको 1 साल के अंदर सुंदर अच्छी मराठी सिखाने में कामयाब रहूंगा।
0: पहले परिवहन विभाग ने मराठी नहीं बोल पाने वाले ड्राइवरों को 1 महीने का नोटिस दिया था। उसके बाद भी जो ड्राइवर मराठी नहीं सीख पाते उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होना था और फिर जो लोग मराठी नहीं सीखते उनका लाइसेंस और परमिट हमेशा के लिए रद्द होना था।
10: देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने जो निर्णय लिया वो निर्णय महायुति सरकार का निर्णय है। परिवहन खाते का मंत्री होने के नाते उन्होंने जो निर्णय लिया वो निर्णय हमारे लिए बंधनकारक है, मगर महाराष्ट्र की भूमि में हमारे जो अमराठी रिक्शा टैक्सी चालक बहुत सालों से व्यवसाय करते हैं या कुछ कम साल से अगर व्यवसाय करते हैं तो 1989 का एक हमारा रूल था उसमें हमने बदल करते हुए 12 अगस्त 2026 में रूल बनाया जिसमें 1 महीने का मोहलत दिया जाएगा रिक्शा टैक्सी चालक को। उस दरमियान अगर उसको हिंदी नहीं आई तो 3 महीने की मोहलत दी जाएगी और 3 महीने में यानी 4 महीने में अगर नहीं आई तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का अधिकार उस नियम के आधार पर हमें प्राप्त था। उस आधार पर हम कार्रवाई कर रहे थे। बहुत सारे रिक्शा टैक्सी चालक संगठना ने हमारे पास मांग की थी कि हमें मुदत बढ़ाई देनी चाहिए क्योंकि 105 दिनों का हमारा जो कार्यक्रम था उसमें 1,65,600 अमराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों ने मराठी सीखी थी।
0: इधर मुंबई बीजेपी उपाध्यक्ष और कामगार संघ के नेता अभिजीत राणे ने गैर मराठी ऑटो ड्राइवरों के साथ आतिशबाजी करके जश्न मनाया। दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।
4: इसी महीने मुंबई में जेन जी से संवाद के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का पहला बड़ा कार्यक्रम अमेरिका के न्यूयॉर्क में होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर 21 सवाल पूछे। न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी भी मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं। सवाल यह है कि आरएसएस पर विपक्ष का यह हंगामा क्या सिर्फ विचारधारा का विरोध कहा जा सकता है और आखिर मेडिसिन स्क्वायर पर होने वाले मोहन भागवत के इस इवेंट पर इतना हंगामा क्यों बढ़ पाए?
0: न्यूयॉर्क में मोहन भागवत क्या बोलेंगे, उससे पहले वो वहां क्यों बोलेंगे, ये सवाल अमेरिका की सियासत से लेकर हिंदुस्तान की सियासत में गूंज उठा है। आरएसएस की विचारधारा के विरोध के नाम पर पहले न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया।
11: You know, I also stand here as the first Indian American mayor in our city's history, and my mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
12: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
11: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
0: इधर भारत में अखिलेश यादव ने इवेंट के आयोजक अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी हेड फोरम का एक्स अकाउंट सस्पेंड होने पर लिखा। विदेशों में जब अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो उनके एक्स अकाउंट तो सस्पेंड किए ही जाएंगे। इसी के साथ अखिलेश ने 21 सवाल पूछ डाले। सवालों में शामिल था, स्वदेशी का नारा लगाने वाले विदेश आखिर क्या लेने गए हैं, क्या वहां भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने गए हैं, क्या भविष्य में वहां राजनीतिक प्रश्रय लेने की संभावना तलाशने गए हैं। वैसे अखिलेश यादव के सवालों की लिस्ट पढ़ी ही जा रही थी कि एक्स ने अहेड फोरम का अकाउंट बहाल कर दिया। इसके बाद अहेड फोरम ने एक्स पर लिखा, गुमराह विरोधियों का हम पर बोट हमला हुआ जिन्होंने एक्स के एल्गोरिदम को प्रभावित कर हमारे हैंडल को ब्लॉक करवाने की कोशिश की। मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर ग्लोबल आउटरीच प्रोग्राम है। 29 अगस्त को मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में करीब 5,000 लोगों को मोहन भागवत संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम की थीम है सेलिब्रेटिंग यूनिवर्सल हार्मोनी एंड यूनिवर्सल वननेस। आरएसएस ने इसे सर्वधर्म मल्टीकल्चरल और विविधता वाला कार्यक्रम बताया है जिसमें वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो आरएसएस से सीधे जुड़े नहीं हैं।
13: आदरणीय मोहन भागवत जी का जो आगमन हो रहा है और मैं भी उस कार्यक्रम में रहूंगा तो वो एक संदेश लेकर हम आए हैं कि पूरी धरती एक परिवार है और उस धरती के हम सारे मनुष्य एक हैं। तो सभी के सम्मान और स्वाभिमान की हमको सजगता रहनी चाहिए। हम अत्यंत संवेदनशील प्राणी हैं। हम तो कभी नहीं चाहते कि किसी वनस्पति का अहित हो, किसी भी प्राणी का। हम सभी को अपना मानते हैं।
14: मोहन भागवत के न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर शुरू हुई सियासत के बीच कर्नाटक में आरएसएस पर फिर हंगामा मचा है। कर्नाटक में आरएसएस के मार्च में शामिल होने वाले दो सरकारी टीचर अन्ना साहब देशमुख और गुरुराज जोशी को सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कर्नाटक में आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर संग्राम हो चुका है।
15: That's left to the education department. See, if somebody has complained and if the department thinks it's not fit to be participating, they will take action. And why should our employees take part in an unregistered organization?
16: This government showing a vengeance against the RSS. RSS is not a political outfit. So when the social organization and all the patriots of this country, so that any officer or anybody can join any organization which is a patriotic and the social organization.
14: आरएसएस को लेकर लड़ाई सिर्फ कर्नाटक में नहीं, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशन पर सामने आए विवाद में भी आरएसएस को घसीट लिया है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के स्पष्टीकरण पर गौरव गोगोई ने लिखा, ये कितना कमजोर बयान है। पेंगुइन इंडिया को एग्जाम वॉरियर्स और आरएसएस पर लिखी गई कई किताबें प्रकाशित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जो अब इस बात से डरने लगे हैं कि भारत की जनता कोई किताब पढ़ लेगी। आज तक ब्यूरो।
4: आज पूरे देश में रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में भी राखी का यह त्यौहार चर्चा में रहा। एनसीपी शरदगुड़ के सांसद सुप्रिया सुले ने भाई अजीत पवार को याद करते हुए बेहद भावुक पोस्ट करते हुए पिछली तस्वीरें शेयर की। बीजेपी के विधायक राम कदम 50,000 महिलाओं से राखी बंधवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रहे थे।
14: मुंबई में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक राम कदम 15 दिन तक रक्षाबंधन को त्यौहार मनाते हैं। ये सिलसिला पिछले 20 साल से चल रहा है। उन्होंने बताया कि 50,000 से ज्यादा महिलाओं से राखी बंधवाएंगे। इस साल उनका लक्ष्य सबसे ज्यादा बहनों से राखी बंधवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है।
17: देखिए, जन्म से मुझे सगी बहन नहीं है, पर इस मनुष्य देह में इस सारे बहनों का आशीर्वाद है। 15 दिनों तक ये सारी बहनें प्यार से माया के ममता से राखी बांधती है। इसके पीछे मूल कारण यह है कि ये किसी न किसी दूर गांव से मुंबई आई है, तो इनका सगा भाई, कुछ बहनों को सगा भाई नहीं है, कुछ बहनों को है, पर प्रॉपर्टी को लेकर इसको लेकर के झगड़ा कर रहा है, तो वो कभी राखी बांध करके नहीं लेता। और कुछ बहनों का भाई गांव में होने के कारण वो हर साल मुंबई आए, ये संभव नहीं होता। तो ऐसे बहनों का दुख होता है, उसकी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं होती, वो केवल चाहती है कि हम प्यार की ममता से हमारे भाई के कलाई के ऊपर राखी बांधे, ये प्यार का धागा बांधे। तो ये हर साल आती है, हम भाई बहनों का प्यार है, इनके हर सुख में, इनके हर दुख में एक सगे भाई की तरह मैं खड़े रहने का प्रयास करता हूँ।
14: राम कदम को राखी बांधने आई महिलाओं ने कहा कि वो उनके सगे भाई से बढ़कर हैं, क्योंकि उनके मुश्किल समय में वो उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं।
18: मैं तो 17-18 साल से राखी बांध रही हूँ और राम भाई को मैं अपने मतलब सगे भाई से भी ज्यादा मानती हूँ। और उन्होंने हमारे सब मतलब हमारे वार्ड में हमारे सब जगह पर उन्होंने बहुत सारी बहनों को बहुत सारी मदद की है, तो सारी बहनें बहुत दिल से और प्यार से आती है यहाँ पे।
14: वही एनसीपी शरदगुट की सांसद सुप्रिया सुले ने रक्षाबंधन के मौके पर महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और अपने भाई अजीत पवार को याद करते हुए बेहद भावुक पोस्ट लिखी। सुप्रिया सुले ने कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा, प्यारे दादा, आज रक्षाबंधन है, लेकिन इस बार आप हमारे साथ नहीं हैं और ये एहसास मेरे दिल को बहुत बेचैन कर रहा है। 7 महीने पहले वो भयानक सुबह और आपका अचानक चले जाना, आज भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। आपके न होने से जो खालीपन आया है वो कभी नहीं भरा जा सकता। आप जहां भी हो, आपका प्यार और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। वहीं केंद्रीय मंत्रियों और आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में काम करने वाली महिलाओं से राखी बंधवाई।
19: हाँ तो मतलब ये कामाटीपुरा ये जो एरिया है, एरिया मतलब हमारे तारंगाना महिलाएं बड़ी संख्या में रहती है और कामाटीपुरा का इतिहास भी ये है कि मतलब कामाटी लोग यहाँ रहते थे और ये कामाटी लोग विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिए अंग्रेज लोग उनको वहाँ यहाँ से ले जाते थे और उन्होंने मतलब वो विक्टोरिया टर्मिनल बनाया था जो आज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से है और इसीलिए इनका नाम कामाटीपुरा पड़ा है। तो इसीलिए आज यहाँ बड़ी संख्या में तारंगाना महिलाएं रहती है और मुझे आनंद इस बात का है कि भाई मेरे दूसरे बहन ने उनके हाथ से तो मेरी मैं राखी हमेशा बांधता ही हूँ लेकिन आज तारंगाना महिलाओं के हाथों से मतलब मेरे हाथ में राखी उन्होंने बांधी है इसका मुझे गर्व है आनंद भी है। लेकिन ये तारंगाना महिलाएं मतलब मजबूरी से यहाँ आती है और उनको पेट भरने के लिए उनको हिस्सा के विरोध में ये सब काम करना पड़ता है तो उनका पुनर्वसन करने के लिए जरूर हमारी सरकार के तरफ से हमारे पार्टी के तरफ से प्रयत्न करेंगे।
14: रक्षाबंधन के मौके पर नागपुर से बहुत शानदार तस्वीर सामने आई। यहाँ ललिता पब्लिक स्कूल के सैकड़ों बच्चों ने मिलकर विशालकाय राखी बनाई। इसका साइज 65x75 फीट है। इस स्कूल के कई बच्चों ने दिन रात की मेहनत करके ये रिकॉर्ड राखी तैयार की है।
20: देखिए बच्चों के द्वारा एक आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट है जिसमें हर वर्ष कुछ ना कुछ नया करने की हम लोग कोशिश करते हैं तो इस बार बच्चों ने ये राखी यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों ने मिलकर के यहाँ पे बनाई है और ये राखी 65x75 की है और इसमें सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है और बच्चों के क्राफ्ट के कारण यहाँ पे राखी जो छोटी छोटी आप लोग देख रहे हैं वो छोटी छोटी राखियाँ बच्चों ने बनाई है जिसमें अलग अलग बच्चों ने अपना अलग अलग संदेश यहाँ पर दिया गया है और ये सब छोटी छोटी राखियाँ मिलकर के एक बड़ी महाराखी का निर्माण यहाँ पे किया और सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे यूज किया गया है जिसमें हम लोगों ने बम्बू का और इको फ्रेंडली राखी है बम्बू भी यूज है इसमें लकड़ी का विनियर यूज किया गया है पेपर यूज किया गया है नारियल के छिलके यूज किए गए हैं झाड़ की पत्तियां यूज की गई है। इस तरह से ये राखी का बड़ी राखी महाराखी हम लोगों ने बनाई है और ये महाराखी हमने यूथ को समर्पित की गई है जो देश का भविष्य है।
21: क्या क्या कहेंगे कितने दिन लगे इसे क्या क्या और कितने बच्चों ने मिलकर बनाया?
20: ये 400-500 बच्चे लगभग उन्होंने मिलकर के बनाई और 8-10 दिन इसको लगे हैं बनाने में।
14: बच्चों ने कहा कि उन्हें कुछ अलग भी करना था और कुछ ऐसा भी जिसका सकारात्मक संदेश समाज में जाए। आज तक दिन
4: मुंबई मेट्रो में खबरों का सिलसिला जारी है, होते हैं उपस्थित, आप देखते रहिए आज तक।
22: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: स्वागत एक बार आपका फिर से मुंबई मेट्रो में। योग गुरु स्वामी रामदेव और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के बीच जुबानी तकरार अब खत्म होती दिखाई दे रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर स्वामी रामदेव ने कंगना को मिठाई और तोहफा भेजा। स्वामी रामदेव ने कहा कि हमारे देश में किसी भी कारण से नफरत नहीं होनी चाहिए, विवाद को संवाद के द्वारा खत्म कर दिया जाना चाहिए। स्वामी रामदेव ने बड़प्पन दिखाते हुए कंगना को फोन किया, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं कंगना ने भी स्वामी रामदेव के कदम का स्वागत किया और कहा कि भूल चूक माफ। कंगना बोली, स्वामी रामदेव को बड़े भाई का प्रेम और मिठाई स्वीकार करने की बात करते हुए धन्यवाद।
2: कंगना रनौत को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको ये मिठाई भी भेज रहे हैं, जिससे कि रिश्तों में मिठास बनी रहे। बहुत से ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया, हमने कुछ बोला, सब गिला शिकवा भुला करके हम एक दूसरे के साथ प्रीति से आगे बढ़े, यही रक्षाबंधन का संदेश है।
1: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समय नॉनस्टॉप 100 यानी कि देश दुनिया की 100 महत्वपूर्ण खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। वो बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और वो दाम अभी से, आज मध्य रात्रि से ही बढ़े हैं। दामों में प्रति किलो सीएनजी पर 3.89 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और ये अभी से लागू हो गए हैं। अब ये खबर देखने, सुबह 6 बजे से ये दाम लागू हुए हैं, मतलब कीमतें बढ़ गई हैं। अब आप सुबह से अगर सीएनजी भरवाएंगे तो वो सीएनजी आपको 3.89 रुपए हर किलो पर ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये असर हुआ है महंगाई का और ये सीएनजी चालकों पर, जिन टैक्सीज में सीएनजी लगी हुई है, जिन कार चालकों ने सीएनजी लगवाई है, जो ऑटो रिक्शा हैं सीएनजी से चल रहे हैं, उन लोगों पर बोझ पड़ेगा। और आइए अब आपको दिखाते हैं नॉनस्टॉप 100।

नेपाल त्रासदी में बढ़ा मौत का आंकड़ा, 550 लोगों की मौत, करीब 1,000 लापता। काठमांडू से दिल्ली लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। नेपाल बाढ़ में 1,924 अभी भी लापता, नेपाली डिजास्टर अथॉरिटी ने जारी किया आंकड़े। नेपाल में फिर जल विस्फोट की आशंका, तिब्बत में उफनती झील से पानी आना शुरू, त्रिशूली बोटेकोशी नदी में 5 गुना तेजी से आ सकती है बाढ़। नेपाल चीन सीमा पर ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद 2 झीलें बनी, एक में शुक्रवार से ओवरफ्लो, पूरी तरह खाली होने का बाढ़ का खतरा। ग्लेशियर धंसने वाली जगह पर सैटेलाइट तस्वीर में दिखी 2 झीलें, नेपाल कर रहा है निगरानी, तिमूरे समेत निचले इलाकों में कैमरे और सेंसर लगाने की तैयारी। हिमालय पर नए खतरे का वीडियो, चीन ने तिब्बत के खतरे वाले इलाके में बर्फ के पहाड़ के टूटने का ड्रोन वीडियो जारी किया, वीडियो में टूटता दिख रहा है बर्फ का पहाड़। बोटेकोशी नदी की बाढ़ से रसुआगढ़ी तबाह, 400 कंटेनर और ट्रक बहे, चालक व्यापारी समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता, सैकड़ों वाहन बहे। नेपाल के फ्लैश फ्लड के लिए यूरोपीय संघ की बड़ी मदद, 2 मिलियन यूरो की सहायता पहुंचेगी जल्द। चीन से आज कुल 149 भारतीय सीमा पार करके नेपाल पहुंचे, नेपाल में राहत और बचाव अभियान, सुरक्षित नेपाल पहुंचने की जानकारी सामने आई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, भारत की ओर से जो भी सहयोग नेपाल सरकार को दिया जा सकता है वो देंगे। नेपाल में राहत के लिए भारत की तीसरी उड़ान, 10 टन मानवीय सहायता के साथ डॉक्टर्स टनल रेस्क्यू टीम को भेजा गया। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बीच भारत ने अब तक करीब 60 टन राहत सामग्री भेजी, फंसे भारतीयों को निकालने पर फोकस। नेपाल बाढ़ पर सरकार का निर्णय, पीएम समेत सभी मंत्री एक एक महीने की सैलरी देंगे, राहत कोष में जमा होगी। चीन ने फिर दावा किया, नेपाल तिब्बत सीमा पर फ्लैश फ्लड के कारण हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर का टूटना, मलबे से नदी का रास्ता रुका। नेपाल फ्लैश फ्लड में 17,000 बच्चों की जिंदगी प्रभावित, घर स्कूल तबाह, यूनिसेफ ने कहा 10,000 बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करेंगे। पार्टी लाइन के खिलाफ बयान पर बीजेपी सख्त, संगरूर के पूर्व जिला अध्यक्षों समेत 3 से मांगा जवाब। नीट विवाद के बीच एनटीए में फेरबदल, 2 डायरेक्टर एक ज्वाइंट डायरेक्टर की नियुक्ति, एनटीए में रवि कुमार सिंह, प्रसन्न वेंकटेश बने डायरेक्टर, अमित समदरिया को ज्वाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में अनियमितता की जांच के दौरान सीआईडी एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, सफल 4 अभ्यर्थी गिरफ्तार। स्मृति ईरानी ने गिनाई जनधन योजना की उपलब्धियां, बोली 12 वर्ष में 59 करोड़ खाते खुले, महिलाओं ग्रामीण परिवार को बहुत फायदा हुआ। वाल्मीकि घोटाले के आरोप के बीच कर्नाटक के मंत्री नागेंद्र का इस्तीफा, बोले मुझे दलित होने के कारण निशाना बनाया। जादवपुर में 10,000 लोगों के साथ वंदे मातरम कार्यक्रम में पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, बोले जेएनयू उस्मानिया के बाद जादवपुर की बारी, राष्ट्रवादी उभार नहीं रुकेगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के कथित देश विरोधी नारे पर शुभेंदु का कड़ा संदेश, कैंपस में ड्रग्स की जांच के लिए ड्रोन का करेंगे इस्तेमाल। शुभेंदु अधिकारी के वंदे मातरम के दौरान जादवपुर यूनिवर्सिटी के गेट बंद, सड़क पर भी आवाजाही रोकी गई, बाहर बीजेपी समर्थकों ने लहराए तिरंगे, लगाए नारे। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में ममता का बीजेपी पर हमला, बोली एसआईआर के द्वारा वोटे लूट, हजारों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। ममता का केंद्र और पुलिस पर निशाना, बोली सत्ता के दम पर चुनाव हाईजैक, अभिषेक बैनर्जी के दफ्तर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर भी सवाल। टीएमसी छात्र कार्यक्रम में अभिषेक की हुंकार, बोले जब तक मैं मरा नहीं तब तक हारा नहीं, एजेंसी की कार्रवाई से डरूंगा नहीं। अभिषेक ने सीबीआई ईडी समेत सभी एजेंसियों को चुनौती दी, कहा जितनी शक्ति लगानी हो लगा लो, हम जॉय बोंगला और जॉय ममता बोलते रहेंगे। सीएम फडणवीस की पहल से तिब्बत में फंसे कैलाश मानसरोवर के 37 श्रद्धालु सुरक्षित रवाना, सागा से काठमांडू की यात्रा शुरू। मुंबई के रिक्शा टैक्सी चालकों ने फडणवीस को 1,00,000 राखियां बेची, मराठी सीखने की मोहलत पर आभार व्यक्त किया। मुंबई करों पर महंगाई की मार, 1 सितंबर से तबेले का दूध 9 रुपए महंगा, 93 रुपए की जगह अब 102 रुपए लीटर मिलेगा। रेक्टिन प्लस मामले में सिप्ला पर बड़ी कार्रवाई, एफडीए ने पुणे ड्रग लाइसेंस रद्द किया, दवाओं के स्टॉक रिकॉर्ड में गड़बड़ी पर सिप्ला का लाइसेंस रद्द हुआ, रेक्टिन प्लस का 12,00,000 रुपए का स्टॉक जब्त किया। सिप्ला का जवाब, हम आदेश को कोर्ट में चुनौती देंगे, दवाओं की गुणवत्ता से कोई सुरक्षा नहीं। स्वाइन फ्लू को लेकर सीएम योगी अलर्ट, बोले लक्षणों को नजरअंदाज न करें, तुरंत जांच करवाएं। सीएम योगी ने स्वाइन फ्लू पर अधिकारियों को सतर्क किया, अस्पतालों में पर्याप्त तैयारियों सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिलाधिकारियों को कहा मॉनिटरिंग करो।
सीएम योगी बलिया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। मलाला की किताब पढ़ रहे युवकों को बजरंग दल ने पीटा, अहमदाबाद में सीजेपी कार्यकर्ताओं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीटा, 20 के खिलाफ शिकायत। दतिया में युवक के निकलते ही गिरी जर्जर दीवार, बाल बाल बची जान। पुणे सतारा हाईवे पर युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 वर्ष की मासूम पर हमला कर दिया, घायल किया बुरी तरह से। विशाखापट्टनम में 4 वर्ष की बच्ची का आधी रात अपहरण, माता पिता के पास सड़क पर सो रही थी, उठाकर ले गए। ग्वालियर में डिलीवरी बॉय की गोली मारकर हत्या, 12 घंटे बाद भी आरोपी पकड़ा नहीं गया, भड़का आक्रोश। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 1 की मौत, 36 घायल। रक्षाबंधन पर कुल्लू में बड़ा हादसा, पहाड़ी से टकराई बस, 45 लोग घायल, अधिकांश घायलों में महिलाएं। केरल के कुटियाटूर कन्नूर रूट पर चल रही बस में समय रहते बुजुर्ग यात्री बचे, क्लीनर ने समय रहते बचाई जान। बिजनौर में चलती बाइक पर अचानक युवक के हाथ से लिपट गया सांप, युवक ने बाइक गिराकर बचाई अपनी जान। हिसार में हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मियों पर पुलिस ने कचरा फेंका, धक्कामुक्की हुई, कचरे के थैले सिर पर पटके। मथुरा जंक्शन पर जीआरपी हेड कांस्टेबल ने ट्रेन से घिसट रहे यात्री की बचाई जान, वीडियो आया सामने। कानपुर में आंगन की जमीन धंसी, 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरी 18 वर्ष की युवती, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जयपुर में निर्माणाधीन मकान के गड्ढे में डूबे भाई बहन, चप्पलें पानी में तैरती देख माता पिता का कांप उठा कलेजा, बोले ये तो मेरे बच्चे हैं। आंध्र प्रदेश में दंपति ने गोदावरी में छलांग लगाने की आशंका में 3 वर्ष की बेटी को पुल पर छोड़ा, तलाश जारी। गुजरात के खंभात में कंपनी में श्रमिक की मौत के बाद ग्रामीणों का भारी पथराव, इलाज के दौरान मजदूर ने तोड़ा दम, गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पीएम नरेंद्र मोदी जन अल्फा के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे थे, बच्चियों ने पीएम को बांधी राखी। बच्चियों के साथ पीएम का विशेष अंदाज, राखी के बाद पीएम ने बच्चियों के साथ हाईफाई किया। महाकाल के प्रसाद पर बच्ची से पीएम की प्यारी बात, बोले पीएम मोदी अगली बार मेरे लिए महाकाल का प्रसाद लेकर आना। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में बेटियों के साथ रक्षाबंधन मनाया, टाइप 1 डायबिटीज से जूझ रही बेटियों से बंधवाई राखी। राजनाथ सिंह ने छात्राओं और एनसीसी कैडेट से बंधवाई राखी, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर दी शुभकामनाएं। कानपुर में रक्षाबंधन पर डीएम की दरिया दिली, छात्रा ने बांधी राखी तो माफ कराई 6 महीने की फीस और गिफ्ट में दी साइकिल। रक्षाबंधन पर बागी बिहारी मंदिर में आस्था का रंग, महिला श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी को अर्पित की राखियां, रक्षाबंधन की विशेष तस्वीरें, बाकी बिहारी को राखी बांधी गई। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 6 लाख महिलाओं ने उठाया लाभ, 27 से 29 अगस्त तक फ्री। पारंपरिक खेती छोड़ ड्रैगन फ्रूट अपनाया, कम पानी लागत में जालना के किसानों ने आमदनी बढ़ाई। दुनिया भर में आसमान में दिखा अद्भुत चंद्र ग्रहण, अमेरिका से यूरोप तक खगोलीय दृश्य, 76% चांद पर पड़ी धरती की छाया। आज से महिला T20 एशिया का भारत पाकिस्तान महामुकाबला 5 सितंबर को दुबई में। इमरान के बेटों के इंटरव्यू दिखाने पर पीसीबी की धमकी, इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट से हटने की चेतावनी। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, $729 बिलियन के पार आंकड़ा, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में गिरावट। सोने की चमक फीकी, लगातार तीसरे दिन 3,300 टूटा भाव, दिल्ली में 10 ग्राम सोना 1,62,000 पर पहुंचा। डॉलर की मजबूती, मुनाफा वसूली, सोने चांदी का दबाव, सोना 3 दिन में 4,700, चांदी 5,000 रुपए सस्ती। पुरानी गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल के वापस आने के बयान से पलटे BPCL चेयरमैन, AGM के बाद कहा पुराने वाहनों के लिए कम एथनॉल वाला पेट्रोल ही देगी कंपनी। थोक बाजार में चीनी, गुड़, गेहूं, खाने के तेलों के दामों में नरमी आने से त्योहारों से पहले राहत, जल्द ही रिटेल बाजार में भी दामों में कमी का दिखेगा असर। भर्ती प्रक्रिया में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा, डेलॉयट इंडिया के सर्वे में दावा, 86% कंपनियां CV स्क्रीनिंग से लेकर कैंडिडेट असेसमेंट तक हर स्टेज पर AI से मदद ले रही हैं। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद S&P ने बरकरार रखी भारत की BBB सॉवरेन रेटिंग और स्टेबल आउटलुक, इस वर्ष भारतीय इकोनॉमी के 6.6% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान। ब्लिंकिट, जेप्टो, डीमार्ट समेत कई रिटेल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तय की चीनी खरीदने की लिमिट, 35% महंगी होने के बाद 2 से 5 किलो तक मिलेगी चीनी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे में 55.5% की बढ़ोतरी की, किसानों के लिए 6% आबादी भूखंड का प्रावधान भी दोबारा से लागू। क्रेडाई ने यूपी रेरा की 4 महीने की एक्सटेंशन पॉलिसी का विरोध किया, शर्तों के कारण अधिकतर डेवलपर्स को फायदा न मिलने की बात कहते हुए पॉलिसी वापस लेने की मांग।
इंडीड हायरिंग लैब हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरियां बढ़ी, आईटी सेक्टर में सुस्ती, जुलाई में जॉब पोस्टिंग सालाना आधार पर 8% बढ़ने की जानकारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय ईवी बाजार का आकार 2030 तक 20 लाख करोड़ होने का दावा किया। इलेक्ट्रिक वाहन सेक्टर में इकोनॉमी रोजगार दोनों को सहारा मिलने का दिया भरोसा। रेडसीर की रिपोर्ट में खुलासा, जिम से लेकर किचन तक पहुंच चुका है प्रोटीन का क्रेज। क्विक कॉमर्स पर प्रोटीन सप्लीमेंट्स के विकल्पों में 230% तक बढ़ोतरी। 16 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म राणा बाले, इंटरनेशनल एक्टर अर्नाल भी महत्वपूर्ण भूमिका में। अनुपम खेर की कॉमेडी फिल्म खोसला का घोसला लगभग 20 साल बाद रिलीज। आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा कल ओटीटी पर होगी स्ट्रीम। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर धमाल मचाएगी बॉबी देओल की फिल्म बंदर। मॉडर्न अर्बन हाउसिंग सोसाइटी पर बेस्ड चुंबक आज से नेटफ्लिक्स पर। सुमित व्यास, नीना गुप्ता, देवेंद्र भोजानी और अमायरा दस्तूर की महत्वपूर्ण रोल। विवाद के बाद स्वामी रामदेव की कंगना से रिश्ते सुधारने की पहल, रक्षाबंधन पर मिठाई और विशेष तोहफा बाबा ने भेजा। स्वामी रामदेव के तोहफे पर कंगना ने कहा धन्यवाद, भूल चूक माफ। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, टॉक्सिक की कमाई में 64% की गिरावट, नेगेटिव रिव्यू का असर, पहले दिन कमाई के बाद नुकसान। कृति सेनन के कपड़ों पर दिए बयान से पलट गई कंगना, बोली उन्हें कौन रोक रहा है, जो मन करे पहने, पहले कहा था बिकनी में राखी क्यों बांधोगी भाई। धर्म बदलकर राखी पर मक्का पहुंची एक्ट्रेस, बुरके में बदला हुलिया, रोते हुए अल्लाह से जेंजी के लिए मांगी नौकरी की दुआ। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका को रूसी विदेश मंत्री ने बताया बेहद नकारात्मक। एक दिन पहले रूसी सरकार ने दी थी ब्रिटेन को चेतावनी। ईरान के विदेश मंत्रालय द्वारा अमेरिका द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों पर निशाना, इन कदम को बताया आतंकवाद, कहा यह अवैध और निंदनीय। नॉर्वे के राजा हैराल्ड पंचम का 89 वर्ष की उम्र में निधन, क्राउन प्रिंस है कौन बने नए राजा। चीन से फिर टकराया नया समुद्री तूफान, तूफान के कारण भारी बारिश, इमरजेंसी लागू, लोगों को हटाया गया। पुर्तगाल समय यूरोप, उत्तरी दक्षिण अमेरिका कई देशों में देखा गया चंद्रग्रहण। आइसलैंड, ग्रीनलैंड समेत स्पेन समेत कई हफ्तों पहले दिखा सूर्य ग्रहण।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम नेपाल की उस बाढ़ की तस्वीर दिखाएंगे जिसने सिर्फ घर सड़कें ही नहीं बहाई बल्कि इंसान के भीतर छिपे लालच को भी सामने ला दिया है। ये सच है कि इस तबाही में सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। कोई अपनों की तलाश में है, कोई अपने घर को ढूंढ रहा है और किसी के पास रोने के लिए भी अपना कोई नहीं बचा। इसी के साथ साथ एक नई परेशानी का भी सबब सामने है क्योंकि डर बना हुआ है। लेकिन इसी मातम के बीच कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं जो ये सवाल करती हैं कि क्या मौत के सामने भी इंसान का लालच जिंदा रह सकता है, ऐसी त्रासदी में जिंदा रह सकता है लालच। नेपाल में दो लोगों ने नारायणी नदी में बहकर आई एक महिला के शव से कानों की बालियां चुरा ली। ये भी तब हुआ जब ये शव इस नदी में सड़ रहा था। सोचने वाली बात यह है कि इस लालच ने इन लोगों को इतना अंधा बना दिया कि इन्हें छोटी सी सोने की बालियां तो दिख गई लेकिन इस महिला और उसका जो अंतिम संस्कार होना चाहिए वो सब नहीं दिखा। देखिए, ये खबर हमें सोचने पर मजबूर करती है, परेशान करती है क्योंकि आखिर मानवीय आधार आज कहां पर समा गया है कि ये दुख भरी तस्वीर आई है। लेकिन इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि नेपाल में पहली तबाही के बाद दूसरी महाप्रलय का खतरा आखिर क्यों मंडरा रहा है। आज सुबह चाइना ने तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चल रहा अपना रेस्क्यू ऑपरेशन अचानक रोक दिया। अब चाइना को ये डर है कि नेपाल तिब्बत की सीमा पर जो बैरियर लेक बनी है वो कभी भी पूरी तरह टूट सकती है क्योंकि इसका आकार अगले दिनों में ओलंपिक खेलों के 2000 स्विमिंग पूल के बराबर हो सकता है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जब एक ग्लेशियर झील के फटने से इतनी भयानक तबाही आई है तो अभी तो कई झीलें इस इलाके में मौजूद हैं। अगर आप मैप पर वो झीलें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखाने वाले हैं नेपाल और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर वाटर बॉम्ब्स की तरह ये झीलें टिक टिक कर रही हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि जब चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, भारत समेत कई देशों ने नेपाल को रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स भेजने की पेशकश की तो नेपाल ने ये मदद लेने से इनकार क्यों किया। नेपाल का कहना है कि वो राहत सामग्री, आर्थिक मदद, जरूरी सामान लेने को तो तैयार है लेकिन वो विदेशी रेस्क्यू टीम और हेलीकॉप्टर्स नहीं लेगा। इसकी एक बड़ी वजह है 2015 का वो विनाशकारी भूकंप जब दर्जनों देशों की रेस्क्यू टीम्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मेडिकल टीम्स नेपाल पहुंच गई थी। उस वक्त ऐसा क्या हुआ था कि नेपाल ने फिर यह तय कर लिया कि दूसरों देशों से हम आर्थिक मदद तो ले लेंगे, सामान ले लेंगे लेकिन उनकी टीम्स को नहीं आने देंगे, हम उनके हेलीकॉप्टर्स नहीं यूज करेंगे क्योंकि उन्होंने कसम एक तरह से खा ली। आज इसकी पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया और इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि दिल्ली के मुस्कान हत्याकांड के पीछे धर्म का एंगल है या इसके पीछे प्यार, शक, जुनून, बदले की कहानी और नशे की लत। क्योंकि इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए इमरान के हाफ एनकाउंटर के बाद ये चर्चा अब तेज हो गई है कि उसने जिम ट्रेनर बनकर मुस्कान से इतने झूठ बोले और फिर क्या इस तरह से हत्या कर दी। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश के नेता भीड़ जुटाने की राजनीति में लोगों की जान की कीमत क्यों भूल जाते हैं। आज बरेली में बीजेपी के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने रक्षाबंधन के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कहा कि जो महिलाएं वहां आएंगी उन्हें खाना, गिफ्ट, एक साड़ी दी जाएगी। मेयर साहब ने खुद को चमकाने के लिए पूरे पंडाल में हाई रेजोल्यूशन कैमरे और ड्रोन्स लगवा दिए। पूरे कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण शुरू हुआ। यही नहीं, महिलाओं को साड़ी बांटते हुए फोटो खिंचवाने के लिए मंच के सामने कई कैमरामैन भी खड़े कर दिए गए। मतलब स्टेज सेट हो गया। लेकिन जो नहीं किया वो थे सुरक्षा के इंतजाम। दोपहर के करीब 3 बजे के आसपास जब बड़ी संख्या में महिलाएं साड़ी और गिफ्ट लेने के लिए मंच की तरफ बढ़ी तो भीड़ का दबाव बढ़ता चला गया। धक्का मुक्की के बीच कई महिलाएं और बच्चे गिरने लगे। इस अफरा तफरी में 45 साल की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। हमारे देश में हर बार खुद को VIP समझने वाले ऐसे नेता भीड़ तो इकट्ठा करते हैं, सोशल मीडिया पर चमकाते हैं, कैमरे हाई रेजोल्यूशन सब लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भगदड़ में जब आम जनता कुचलकर मारी जाती है तो वो अपनी जिम्मेदारी से फुर्र हो जाते हैं। बीजेपी मेयर डॉक्टर उमेश गौतम कई सालों से सांसद या कम से कम विधायक बनने का सपना देख रहे हैं। इसके लिए वो 2014 में बहुजन समाज पार्टी से भी लोकसभा का चुनाव लड़कर देख चुके हैं, लेकिन उनका सपना आज तक पूरा नहीं हुआ तो सोचा साड़ी ही बांटी जाए, हो सकता है फिर लॉटरी लग जाए। अब जब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं तो उन्होंने बरेली में जमघट लगाने का सोचा, लेकिन इस जमघट ने कैसे एक महिला की जान ले ली, कई महिलाओं को जमीन पर कुचलने के लिए मजबूर कर दिया, पूरा देश आज देख रहा है। देखिए
1: भगदड़ में वो भी दब गई, हम भी दब गए, हमको तो खींच के ऊपर निकाल लिया था, वो गिर गई।
0: आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रक्षाबंधन पर भारत के लोगों ने खर्च के सारे पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। अनुमान है कि इस बार भारतीयों ने रक्षाबंधन के त्योहार पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो दुनिया के 25 देशों की कुल GDP से भी ज्यादा है, और इसमें पाकिस्तान के कुल 4 महीने का रक्षा बजट समा सकता है। अगली खबर, आज गांधीनगर में जलभराव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कसम खाई। उन्होंने कहा है कि अगली बार जब वो गांधीनगर के लोगों से वोट मांगने आएंगे तब वहां जलभराव की समस्या खत्म हो चुकी होगी। इसके बाद ये बहस भी हो रही है कि क्या देश के सभी सांसदों को ऐसा ही करना चाहिए, सभी सांसदों विधायकों को जाकर अपने अपने क्षेत्र की सुध लेनी चाहिए, बारिश के मौसम में जिन मुश्किलों का लोग सामना कर रहे हैं क्या सभी विधायकों और सांसदों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएं और ठीक इसी तरह से इस तरह की एक कम से कम कोशिश की शुरुआत करें। सड़कें बारिश में तालाब बन जाती हैं, क्या उसको बदलने की जरूरत नहीं है। आज की एक और बड़ी खबर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को लेकर है। कल हमने आपको मूड ऑफ द नेशन दिखाया था, उस सर्वे में बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा 9% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 49%, 49% राहुल

चर्चा हो रही है और इसी चर्चा के बीच आज विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय अपनी निर्धारित कुर्सी छोड़कर मंत्रियों के बीच बढ़ गए और इसके बाद उनकी परफेक्ट दिखने वाली राजनीति तमिलनाडु में बड़ी हेडलाइन बन गई। हालांकि डीएमके यही कह रही है कि मुख्यमंत्री विजय अपनी फिल्मी स्टाइल वाली छवि से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, असली काम कर ही नहीं पा रहे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नेपाल से आ रही है और वाकई दिल दहला देने वाली खबर है, क्योंकि अब बताया जा रहा है कि लापता हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1924 हो चुकी है। इतनी बड़ी आशंका, इतना बड़ा डर इस वक्त मंडरा रहा है। नेपाल की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि आज शाम तक इस बाढ़ और प्रलय में लापता हुए लोगों की संख्या 1924 हो गई है। आगे ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे जैसे लापता हुए लोगों के परिवार और रिश्तेदार अथॉरिटी से संपर्क कर रहे हैं या हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे रहे हैं या बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को ढूंढा जा रहा है, वहां उनकी सूचना नहीं मिल रही तो उन्हें लापता लोगों में गिना जा रहा है और आगे ये संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नेपाल की बेबसी की कहानी है। कुछ लोग जिनको किसी तरह से बचाया भी जा रहा है, मिट्टी से सने इस तरह से निकल रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से अगर आप देखिए तो दिल दहल जाता है जो इस वक्त की स्थिति नेपाल में बनी हुई है। नेपाल के अलग अलग अखबारों का पहले यह अनुमान था कि 1500 लोग लापता हो सकते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि संख्या 3000 या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। कल भी आपने लाइव शो में देखा था, मेरे साथ जो पत्रकार जुड़े थे नेपाल से, वो कह रहे थे कि अभी तो कम संख्या बताई जा रही है, यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, 1000 पार कर सकता है। और आज देखिए लगभग 2000 के करीब यह आंकड़ा पहुंच रहा है। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि आज शाम तक 1924 लोग इस भयानक बाढ़ और तबाही में लापता हुए हो सकते हैं, अभी तक का डेटा है। इससे पहले नेपाल की सरकार ने बताया था कि वहां मौतों का आंकड़ा 587 हो गया है, जो कल तक 369 था। यानी सिर्फ आज के दिन 200 से ज्यादा और लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और उसके शव बाढ़ प्रभावित इलाकों और नदियों के मलबे से बरामद हुए हैं। भारत के 85 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि 320 भारतीय इस आपदा में अब भी लापता हैं। देखिए

ये खौफनाक मंजर जो है जल प्रलय का, मतलब कल्पना से परे है जिस रफ्तार से। और आज ये घर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हरे रंग का घर, इसकी बड़ी चर्चा है सोशल मीडिया पर। कई लोग तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि इस घर में जो लोग मौजूद हैं, जो लोग दिख भी रहे हैं, उनकी जान बच जाए। आप देख रहे हैं टेरेस में लोग हैं, दोनों तरफ आप देखिए किस तरह से ये जो लहरें हैं वो किस तरह से उस तरफ उफान मार रही है, इधर से पूरा मलबा के साथ पानी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये घर उस तरह से टिका रहा है। इस घर के टेरेस पे जो लोग दिख रहे हैं, लोग उनके लिए प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये घर किस तरह से इस प्रलय के बीच में टिका हुआ है, उसकी बड़ी चर्चा है। लेकिन वही है कि जाके राखे साइयां मार सके ना कोई, लोग ये भी लिख रहे हैं। टेरेस में आपको दिख रहा है, जूम इन किया है हमने, किस तरह से लोग वहां पर मौजूद हैं और दोनों तरफ से जैसे जिसको कहते हैं ना मौत, एक तरह से जा रही है, उफान मार रही है। एक तरफ लहरें इतनी तेज, दूसरी तरफ मलबा इस मतलब ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अब इस बर्बादी और तबाही के बीच कुछ ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जो आपको भी हैरान कर देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। लालच की तस्वीरें हैं ये, जो इंसान को उस हद तक गिरा देता है जहां मौत के सामने भी, जहां त्रासदी में भी इंसानियत जिंदा ही नहीं रह पाती।

नेपाल तिब्बत सीमा पर ग्लेशियर फटने और भारी भूस्खलन के बाद बोटेकोशी और नारायणी नदी में आई भयंकर बाढ़ ने तबाही मचा दी है। सैकड़ों जिंदगियां इस आपदा में खत्म हो चुकी हैं। घर उजड़ गए, सड़कें बह गई, पुल टूट गए, ना जाने कितने परिवार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन पिला देती है ये तस्वीरें, आप देखिए इस बच्ची को किस तरह से रो रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनका सब कुछ एक दिन

मचा दी है। सैकड़ों जिंदगियां इस आपदा में खत्म हो चुकी हैं, घर उजड़ गए, सड़कें बह गई, पुल टूट गए, ना जाने कितने परिवार अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन हिला देती है ये तस्वीरें। आप देखिए इस बच्ची को किस तरह से रो रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनका सब कुछ एक दिन में लुट गया है। कल्पना कीजिए, जिसका आप कोई बचा ही नहीं इस दुनिया में, जिसका घर परिवार सब कुछ पानी में बह गया, अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन हिला देती है ये तस्वीरें। आप देखिए इस बच्ची को किस तरह से रो रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनका सब कुछ एक दिन में

नहीं पा रहे कि उनका सब कुछ एक दिन में लुट गया है। कल्पना कीजिए, जिसका आप कोई बचा ही नहीं इस दुनिया में, जिसका घर परिवार सब कुछ पानी में बह गया, अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन खिला देती है ये तस्वीरें, आप देखिए इस बच्ची को किस तरह से रो रही है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि उनका सब कुछ एक दिन में लुट गया है। कल्पना कीजिए, जिसका आप कोई बचा ही नहीं इस दुनिया में, जिसका घर परिवार सब कुछ पानी में बह गया।

नजरें झुक जाती हैं। सोचिए ये कैसा लालच है। इन लोगों को इस महिला के कानों में सोने की बालियां तो दिखाई दी, लेकिन उन्हें इस महिला की इतनी बड़ी जो उनकी उनका शरीर था वहां पर नहीं दिखा कि इसका अंतिम संस्कार करें। इस मामले में नेपाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी अब कर लिया है, जिनमें एक आरोपी का नाम मदन गुरुंग है जो 25 साल का है और दूसरे आरोपी का नाम उमेश चौधरी है जो 38 साल का है। दोनों आरोपी नेपाल के सुनसरी जिले के रहने वाले हैं, जिन पर शव का अपमान करने, आपदा के वक्त चोरी करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। जब वक्त ने इंसानों की परीक्षा ली है, तब तब वो इंसानियत की डगर पर कई बार लड़खड़ाए। आज से 120 साल पहले जब 1906 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक विनाशकारी भूकंप आया और इसमें हजारों लोग मारे गए, तब वहां बड़े पैमाने पर लूटपाट की घटनाएं भी हुई थी। लोगों ने ना केवल ढह चुकी दुकानों को लूटा, बल्कि मलबे में दबे लोगों, घायलों की उंगलियां काटकर सोने की अंगूठियां, गहने, जेबों से पैसे चुरा लिए। उस वक्त इन घटनाओं को देखते हुए लूटपाट करने वाले लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके बाद जब जांच हुई तो यह पता चला कि उस वक्त कुछ अमेरिकी नेशनल गार्ड के जवानों और पुलिसकर्मियों ने मलबे से कीमती सामान और शवों से गहने चुराए थे। और यह ऐसी पहली और आखिरी घटना नहीं रही। 2004 में जब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आए, या 2010 में हेटी में जब भूकंप आया, तब भी इन आपदाओं में मारे गए लोगों के शवों से सोना चुराने की घटनाएं हुई। और इन्हीं घटनाओं के कारण जिनीवा कन्वेंशन के तहत यह अनिवार्य किया गया कि किसी भी आपदा, किसी भी युद्ध के बाद मृतकों के शवों की पहचान, उनके सामान को सुरक्षित रखकर उनके परिजनों को सौंपना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सोचिए ऐसे कानून इंसान के लालच को आखिर कहां रोक पाते हैं। हालांकि यहां हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर इंसान इन लोगों की तरह लालच में है, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें आप देखेंगे नेपाल में अभी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो जान जोखिम में डाल रहे हैं, दूसरों को बचा रहे हैं। कोई अनजान व्यक्ति के लिए रस्सी लेकर दौड़ रहा है अपनी जान को खतरे में डालकर, तो कोई अपने घर का दरवाजा खोल देता है, कोई भूखे को खाना देता है, कोई मलबे में दबे इंसान को निकालने के लिए घंटों अपनी जान की परवाह तक नहीं करता। खाना पीना भूल कर वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, आम लोग लगे हुए हैं। और यहां पर शख्स को भी देखिए जिसे बाढ़ के पानी से सोने के गहने और कुछ कैश मिला, लेकिन इस व्यक्ति ने इन गहनों को अपने पास नहीं रखा, मतलब उसके तो हाथ में आया। उसने कहा कि ये सोना जिन लोगों का भी रहा होगा वो उन्हें लौटाने के लिए तैयार है और पुलिस भी इस काम में उसकी मदद करे। ऐसे भी लोग हैं, देखिए। अब आप ये देखिए कि नेपाल में दूसरी तबाही का खतरा क्यों मंडरा रहा है। आज सुबह चाइना ने तिब्बत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अचानक अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को स्थगित कर दिया, रोक दिया। कारण यह बताया कि जिन दो नदियों में ग्लेशियर का मलबा फंसने से एक बैरियर झील बन गई थी, वो झील अब कभी भी फट सकती है। चाइना के सरकारी मीडिया के मुताबिक

भी इस झील का पानी ओवरफ्लो होकर लगातार नेपाल की नदियों में जा रहा है, लेकिन अगले कुछ घंटों या इस हफ्ते के आखिरी तक ये झील पूरी तरह फट सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कारण नेपाल में लगातार दूसरी बार महाप्रलय का संकट पैदा हो सकता है। चाइना के जल संसाधन मंत्रालय और सीसीटीवी न्यूज चैनल के मुताबिक ये बैरियर झील बुधवार को उस वक्त बनी जब ग्लेशियर या बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा अलग होकर नीचे गिरा। अगर इसे इस ग्राफिक्स की मदद से समझें तो जब हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटता है और वो टूटकर नदी में गिरता है, तब इस मलबे ने नदी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। यानी जैसे स्विमिंग पूल में पानी भरने लगता है, ठीक उसी तरह इस मलबे के कारण ये नदी रुक गई और उसके पीछे पानी जमा होकर एक प्राकृतिक झील बन गई, जिसे अब बैरियर लेक कहा जा रहा है। ये झील इसलिए खतरनाक है क्योंकि अभी इसका जो आकार है वो 7 करोड़ घन फीट है, लेकिन अगले 3 दिनों में यही आकार 17 करोड़ 60 लाख घन फीट हो जाएगा। चाइना का कहना है कि अगर इस इलाके में लगातार बारिश होती है, इसके कारण नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है, तो यह आकार और भी विशाल रूप ले सकता है, जो किसी वाटर बॉम्ब जैसा होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 17 करोड़ 60 लाख घन फीट पानी ओलंपिक खेलों के 2000 स्विमिंग पूल्स के पानी के बराबर होता है। इतना पानी अगर अचानक निकल जाए तो वो नीचे बहने वाली पूरी घाटी को तबाह कर सकता है, क्योंकि जब वो नीचे बहने लगता है तो अपने साथ मलबा लाता है और उस मलबे के साथ जब वो नीचे आता है तब वो विनाशकारी होता है। और यही अभी नेपाल के सामने सबसे बड़ा संकट है। अब सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस झील का पानी अब ओवरफ्लो होना शुरू हो गया है, यानी ये पानी इस झील में लगातार बढ़ रहा है और वो अब ऊपर से बहकर उसी नदी में जा रहा है जिसने बुधवार को नेपाल में तबाही मचाई थी, और इस नदी का नाम भोटेकोशी नदी है। अगर ये बैरियर झील अगले 2 दिनों में पूरी तरह टूट जाती है तो इससे नेपाल में दूसरी प्रलय भी उसी रास्ते से आएगी जिस रास्ते से पहली प्रलय आई। इससे उन लोगों का ज्यादा खतरा होगा जो नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस इस वक्त चला रहे हैं, क्योंकि यही कारण है कि पहले चाइना ने तिब्बत में अपने रेस्क्यू ऑपरेशंस को रोका और अब नेपाल भी प्रभावित इलाकों में अपने बचाव कर्मियों को पीछे हटा रहा है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा आ गया है। यहां बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में जो आलोचनाएं हो रही हैं उसके बाद भी इस बैरियर झील को लेकर चाइना ज्यादा सावधानी अब बरत रहा है। चाइना के वैज्ञानिक लगातार सैटेलाइट से इस झील की निगरानी कर रहे हैं, पानी का स्तर माप रहे हैं, कंप्यूटर मॉडल से अनुमान लगा रहे हैं कि बांध टूटने पर पानी कहां तक जाएगा, तबाही कैसे हो सकती है, कितनी बड़ी होगी। आप खुद देखिए जिस जगह ये झील बनी है उसके पास चाइना के वैज्ञानिक ड्रोन्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कब तक ये झील फट सकती है, इसका पानी किस दिशा में जा सकता है।

0: a map that is provided by local authorities.
1: ये मैप लोकल अथॉरिटीज से हमें मिला है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो तबाही हुई वो यहीं से शुरू हुई और ये जगह यहीं पर मार्क की गई है. बैरियर लेक समुद्र तल से लगभग 2950 मीटर की ऊंचाई पर है. यहीं बॉर्डर लाइन दिखाने वाली लाइन बहुत साफ नहीं है. लोकल अथॉरिटीज से मिली जानकारी और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये लेक असल में चीन और नेपाल दोनों तरफ है. तो जब बैरियर लेक से पानी का बहाव शुरू हुआ तो उसकी रफ्तार बेहद तेज थी. जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स और कमांड सेंटर के मुताबिक पानी को लगभग 20 किलोमीटर बहने में सिर्फ 7 मिनट लगे. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रफ्तार कितनी तेज होगी और कितनी तेज पानी नीचे आया होगा. हम अभी यहाँ मौजूद हैं और जैसा मैंने पहले बताया कि हम बॉर्डर गेट से लगभग 7.7 किलोमीटर दूर है. ये जो लाल डॉट दिख रहा है जो बॉर्डर गेट है वो असल में यहीं पर है.
2: आने वाले हफ्ते में जिरोंग पोर्ट इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को देखते हुए बैरियर लेक में पानी का बहाव लगभग 15 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड रहने का अनुमान है. जबकि पानी का फ्लो अभी भी बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से खतरा और बढ़ता जा रहा है.
3: द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि चाइना के वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक नहीं बल्कि दूसरी नई झील भी देखी है. ये झील नेपाल के लांगटांग लिरुंग, एक पर्वत है लांगटांग लिरुंग, उस पर्वत की उत्तरी ढलान के नीचे बन रही है, ठीक वहीं जहां शुरुआती चट्टान और ग्लेशियर टकराए थे. और अगर ऐसा होता है तो नेपाल के लिए ये अच्छी खबर कतई नहीं होगी. पहले ही बर्बादी का मंजर आपने देखा है. इसके अलावा अगर मौजूदा संकट किसी तरह टल भी गया तब भी भविष्य में नेपाल, भूटान और भारत के नॉर्थ ईस्ट जो राज्य हैं, बिहार, इन सब के लिए परिस्थितियां अच्छी नहीं दिखाई देती हैं. और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए अब आप हमारे इस विश्लेषण को जरूर देखिए. सबसे पहले ये बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जिस टिबेट में कभी सड़कें बनाना मुश्किल था वहां चाइना ने अंधाधुंध निर्माण कर दिया है. इस निर्माण के कारण तिब्बत का हिमालय क्षेत्र और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है, बहुत सेंसिटिव इकोसिस्टम हो गया है. असल में हिमालय में बहुत ऊंचाई पर जमीन हो, चट्टानों के बीच एक परमाफ्रॉस्ट होता है. अब ये परमाफ्रॉस्ट क्या है? इस परमाफ्रॉस्ट को आप प्राकृतिक सीमेंट कह सकते हैं. प्राकृतिक सीमेंट कहिए या फिर आप इसको गोंद की तरह, मतलब जो इकट्ठा करके चिपका के रखता है पहाड़ों को अपनी जगह से. ये परमाफ्रॉस्ट जो है वो हिलने नहीं देता है चट्टानों को, बर्फ को, पहाड़ की अलग अलग परतों को, ये मजबूती से जोड़ कर रखता है. लेकिन जिस तरह पृथ्वी गर्म हो रही है, हिमालय क्षेत्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, वहां पर प्राकृतिक ये जो एक साथ रखने वाला परमाफ्रॉस्ट है जो जोड़ कर रखता है वो प्राकृतिक गोंद ही समझिए पिघलने लगा है. भाई इतना निर्माण होगा, इतना कंस्ट्रक्शन होगा, पहाड़ियों में इस तरह से टनल्स बनाए जाएंगे तो पूरा वो पहाड़ियां हिल जाती हैं और उसके बाद से धीरे धीरे पूरा तापमान बढ़ता है, प्रभाव एक के बाद एक जुड़ता जाता है और फिर ये हालत होती है. क्योंकि ये जो गोंद, ये जो परमाफ्रॉस्ट हम आपको बता रहे हैं, ये परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, इसीलिए पहाड़ों की ढलान कमजोर हो रही है, चट्टानें ज्यादा टूट रही हैं, ग्लेशियर के टूटने का खतरा बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से ये प्रलय आ रही है. संक्षेप में कहें तो पहाड़ों के कमजोर होने से चट्टानें और ग्लेशियर टूटने का जो खतरा बढ़ रहा है उससे हिमालय में बनी ग्लेशियर लेक फट रही है. और अगर ये चीज आगे और बढ़ी तो इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसके लिए हम आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाएंगे. लेकिन उससे पहले अगर आप नेपाल, चाइना, भारत की सीमा पर हिमालय क्षेत्र में मार्क किए गए इन डॉट्स को देखेंगे जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आइए चलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी जो ग्लेशियर झीलें हैं नेपाल में, ये देखिए एक झील फटने से ही इतनी तबाही हुई है जो आप देख रहे हैं. इस लाइन को समझिए और फिर इसके सिग्निफिकेंस को देखिए जो हम बता रहे हैं. क्योंकि एक झील फटने से इतना हुआ है, लेकिन जब आप देखेंगे ये है नेपाल, यहाँ पर ये जो आप आउटलाइन देख रहे हैं ये नेपाल का बॉर्डर है, ऊपर है चाइना, ठीक है, ये ऊपर हो गया चाइना, ये इधर हो गया भारत इस तरफ. अब ये जो आप ग्लेशियर झीले देख रहे हैं ये ब्लू, दूर से आपको लग रहा है मैप का हिस्सा है लेकिन आप इसको करीब से देखिए कितने सारे डॉट्स हैं. मैं बस एक एरिया में डॉट्स को आपके लिए करके दिखाती हूँ कितने सारे डॉट्स हैं. इतने सारे झील तो एक एरिया में है. मतलब इनको जब आप मैग्निफाई करेंगे, जूम इन करके दिखा दीजिए, और ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये पूरे इस इलाके में है जो आप देख रहे हैं। ये वाला हिस्सा देखिए, ये यहाँ पे आपको दिख गए। अब यहां से होते हुए पूरा बढ़ते जाइए, ये जो पूरा एक तरह से ये जोन आप देख रहे हैं ऊपर, ये सारा आपको ऐसे झीलें दिख रही हैं, ऐसे ग्लेशियल झीलें। यही नहीं है, नीचे में भी है, यहां देखिए यहां तक, तो नेपाल वाले हिस्से में भी है। तो आप समझिए कि ये पूरा हिस्सा जो मैंने आपके लिए नीले में किया है, ये पूरा हिस्सा ऐसे, ये इसमें इतनी सारी झीलें हैं, जो अनगिनत झीलें आप कह सकते हैं, और इस वजह से कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है उसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब आपको इसका अगला जो है वो दिखा देते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। हिमाचल में जो तबाही अभी तक हुई है उसमें अगर आप देखेंगे, हिमालय में इस पूरे इलाके में, जब आप इंडिया में, तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं। 26 अगस्त को एवलांच और बाढ़ वाली जगह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाली जगह है वो, ये नेपाल का हिस्सा, फिर आप देख रहे हैं ये भारत, इधर भूटान है, चाइना है। तो 1900 के बाद हिमालय में कई ग्लेशियर्स टूटे हैं, और उसी को यहां पर आप रेड वाले जोन में देख रहे हैं। तो येलो से सर्कल है और रेड जो आप ट्रायंगल, थोड़ा जूम इन कीजिए, जब आप जूम इन करेंगे तो आप दिखा पाएंगे, ये जो रेड ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, ये सारी ऐसी ग्लेशियर्स हैं जो टूटे हैं। तो साल 1900 के बाद हिमालय में कितने ग्लेशियर्स टूटे हैं उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, और उसी से आपको समझ में भी आ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर ये खतरा इस वक्त भी इन जगहों पर मंडरा रहा है। तो यहां जरूरी यह है कि तिब्बत में चाइना जो सड़कें, पुल, बड़े बड़े बांध बना रहा है, उनके बारे में एक बार सोचा जाए। और ये सोचने की जरूरत क्यों है, उसके लिए आप अब इस खबर को देख लीजिए। हमने पहले आपको दिखा दिया कितनी सारी वहां झीलें हैं, कितने ग्लेशियर्स टूट चुके हैं पहले, बहुत खतरनाक ये जोन बनता जा रहा है। साल 2020 में नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट आई। अब ये रिपोर्ट कहती थी कि तिब्बत में सड़कें, हाईवे बनाने के लिए 11 नदियों का रास्ता बदला गया, यानी ये नदियां ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जिस रास्ते बह रही थी वो रास्ते बंद कर दिए गए, और इसके कारण नेपाल का दावा है कि 36 हेक्टेयर जमीन चाइना के पास चली गई। यानी मान लीजिए जिस जगह मैं अभी खड़ी हूं, अगर यहां कोई नदी बह रही है तो चाइना उस नदी का रास्ता बदलकर उसे यहां से काफी आगे तक ले जाते हैं, जाता है, और फिर जगह पर कब्जा करके इन्हीं नदियों पर बांध बनाकर पहाड़ों के अंदर बड़ी बड़ी टनल्स बना लेता है। और ये सब जानते हैं कि टनल बनाने के लिए पहाड़ों में कैसे ड्रिलिंग मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, बहुत आसान काम नहीं होता है ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ों में ड्रिलिंग करके टनल्स बनाना, पूरा इकोसिस्टम वहां का हिल जाता है, पूरे पहाड़ हिल जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जब चाइना, भारत, अमेरिका समेत कई देशों ने अपनी रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजने की कोशिश की, पेशकश की, तो नेपाल ने इनकार क्यों किया। नेपाल की सरकार ने कहा है कि वो दूसरे देशों से राहत सामग्री, आर्थिक मदद, जरूरी सामान, पैसा भी सब लेने को तैयार है, लेकिन अगर कोई देश अपनी रेस्क्यू टीम्स, हेलीकॉप्टर्स नेपाल में भेजना चाहता है तो नेपाल इस मदद को लेने से इनकार करता है। अब नेपाल ने यह फैसला तब किया है जब चाइना, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत कई देशों ने मदद की पेशकश की। इससे कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि नेपाल की सरकार ने ऐसा क्यों किया है, भाई क्या ये उसकी गलती है, वो आखिर क्यों नहीं सहायता ले रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। अगर इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो ये पता चलता है कि नेपाल के पास इस फैसले के लिए कोई ठोस वजह है। उसे 2015 में भूकंप जब आया तो काफी कुछ सीखा। अप्रैल 2015 में जब नेपाल में लगभग 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, तब नेपाल में दूसरे देशों की फॉरेन रेस्क्यू टीम्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिकल टीम्स, इंजीनियर्स, अलग अलग देशों के दूसरे विशेषज्ञ भेजे गए। इससे नेपाल में बचाव अभियान को तो गति मिली, लेकिन इसी के साथ उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। समस्या ये थी कि उस वक्त नेपाल में इतने सारे अलग अलग देशों के लोग और संगठन एक साथ आ गए, हर टीम को कहां जाना है, किस इलाके में काम करना है, किससे संपर्क करना है, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत, कौन सा काम किसके हिस्से में जाएगा, हेलीकॉप्टर्स कहां उतरेगा। अब एक ही जगह पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराने के लिए, उसी हेलीपैड के लिए कई लोग बुकिंग मांग रहे थे, किसे पहले बचाया जाएगा, इन चीजों में नेपाल की सरकार उलझ कर रह गई। सरल भाषा में कहें तो ऐसी बुरी तरह से कंफ्यूजन फैला कि भूकंप से ज्यादा जटिल ये बचाओ अभियान बन गया, और नेपाल की सरकार रेस्क्यू करने वाली टीम्स के बीच तालमेल बैठा नहीं पा रही थी। इसके अलावा उस वक्त नेपाल में जिन अलग अलग देशों से टीमें आई थी उनके बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया, प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, यानी हर देश ये दिखाने लगा कि उसे आपदा प्रबंधन बचाव अभियान में ज्यादा महारत हासिल है। और उस वक्त भूकंप के कई महीनों बाद नेपाल की सरकार ने विदेशों से आई इस मदद की समीक्षा की और ये तय किया कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। इसकी वजह नेपाल की एक स्पष्ट कमांड बनाएगा, नेपाल ही बनाएगा, उसकी सुरक्षा एजेंसियां बचाव अभियान में मदद करेंगी और दूसरे देशों से मदद नहीं ली जाएगी, अभी नेपाल यही कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर पैसे दिए जाए, राहत सामग्री दिए जाए तो उसको नेपाल स्वीकार कर रहा है। यहां पर इन तस्वीरों को भी देखिए, दिल टूट जाएगा। इस वक्त मलबे और नदियों से निकाले जा रहे सैकड़ों शवों को नेपाल के अलग अलग अस्पतालों के मुर्दा घरों में ले जाया जा रहा है। और सबसे बड़ा चैलेंज, ये तस्वीरें देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि पानी और मलबे के भीषण बहाव के कारण कई शव इस कदर क्षत विक्षत हो चुके हैं कि उनको देख पाना मुश्किल है, क्योंकि अस्पतालों के मुर्दा घर पूरी तरह भर चुके हैं। इसलिए प्रशासन ने अब शवों के चेहरे, कपड़ों और शरीर के विशेष निशानों या शरीर पर गहने की तस्वीरें ली है और इन तस्वीरों को अस्पतालों के बाहर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जा रहा है। और जब अपनों की तलाश में आए लोग इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो मानो उनका कलेजा फटा जा रहा है। और इनमें भी कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने इन कांपते हाथों से ये देख रहे हैं कि कहीं इनमें कोई शव उनके अपने का तो नहीं। देखिए,

0: 아버지 권재빈 보여.
1: अभी तक उसका कोई खबर नहीं आया है, कैसे कोई पता नहीं चल रहा है।

अब आप ये देखिए कि नेपाल 2300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे मुश्किल हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहा है। 26 अगस्त को जब नेपाल में प्रलय आई तब वहां एक सुरंग में 450 से ज्यादा लोग फंस गए थे। ये सुरंग रसुवा के सबसे बड़े हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की थी। उस वक्त बाढ़ के मलबे और भारी कीचड़ के कारण सुरंग का मुख्य द्वार पूरी तरह छिप चुका था, जिससे शुरुआती तौर पर प्रवेश द्वार को ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। और ऐसा माना जा रहा था कि सुरंग में कीचड़ का मलबा पत्थर आने के कारण 450 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके बाद नेपाली सेना ने अपनी विशेष आपदा राहत टीम्स को इस सुरंग के पास तैनात किया, क्योंकि सुरंग के अंदर बिजली नहीं थी और हर जगह घने कीचड़ की मोटी परतें जमी थी। इसलिए रेस्क्यू टीम ने एक खास तरकीब अपनाई। कई लोगों की जिंदगी इससे बची है। उन्होंने क्रॉलिंग टेक्निक के तहत सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। यानी नेपाली सेना के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर पेट के बल घिसटते हुए कीचड़ को चीरते हुए टनल के उन हिस्सों तक पहुंचे जहां लोग फंसे हुए थे। इंसानियत की इससे बड़ी तस्वीर नहीं दिख सकती है। हालांकि इसके बाद भी अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर लाना आसान नहीं था, क्योंकि टनल के मुहाने पर ही और अंदरूनी हिस्सों में बहुत सारा मलवा, गाद और इतनी मोटी, जिसको कहते हैं स्लेट, जमी थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। और यह भी डर था कि रेस्क्यू टीम के साथ सुरंग में फंसे लोग अंदर धंस सकते हैं। इसी के बाद ये फैसला हुआ कि नेपाली सेना के जवान इन श्रमिकों को अपनी पीठ पर लादकर रेंगते हुए सुरंग से बाहर निकलेंगे और इनकी जान बचाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन असंभव माना जा रहा था, उसमें अब तक 350 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है और बाकी 100 और लोगों को बाहर लाने की कोशिशें इस वक्त भी चल रही हैं। देखिए,

और अब हम दिल्ली में हुए उस मर्डर की बात करेंगे जिसमें दिल्ली पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए आरोपी को 2 दिन के अंदर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। 26 अगस्त को तिलक नगर में 21 साल की लड़की मुस्कान की हत्या कर दी गई। मुस्कान एक स्टूडेंट थी और पार्ट टाइम में मॉडलिंग का भी काम करती थी। पुलिस के लिए हत्या की गुत्थी सुलझाना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुस्कान की हत्या उसके ही घर के अंदर की गई। और शुरुआती जांच में तो पुलिस को यह पता चला कि मुस्कान जिस जिम में ट्रेनिंग के लिए जा रही थी उस जिम के एक ट्रेनर इमरान को हत्या के दिन मुस्कान के घर से बाहर भागते हुए देखा गया था। इसके अलावा मुस्कान के भाई ने भी इमरान पर शक जताया था। उसके मुताबिक इमरान पिछले काफी समय से उसकी बहन मुस्कान को परेशान कर रहा था। पुलिस को यह समझने में बिल्कुल देर नहीं लगी कि हत्या में जिम ट्रेनर इमरान का हाथ हो सकता है। हत्या के बाद से ही इमरान करीब 2 दिनों तक सबकी नजरों से छिपता रहा, लेकिन कल रात दिल्ली पुलिस को इमरान की लोकेशन से जुड़ी एक खुफिया जानकारी मिली और उसके बाद देर रात ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और इमरान के बीच एक एनकाउंटर हुआ जिसमें इमरान को 3 गोलियां लगी। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। इस एनकाउंटर में इमरान की तरफ से 4 राउंड फायरिंग की गई थी लेकिन पुलिस ने जल्दी ही उसे पकड़ लिया। इस एनकाउंटर में पुलिस की फायरिंग के आगे जल्दी ही इमरान ने हथियार डाल दिए थे और फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया। इस एनकाउंटर में इमरान के पैरों में 3 गोलियां लगी। इमरान को गिरफ्त में लेने वाली पुलिस टीम को पता चला है कि मुस्कान और इमरान के बीच गहरी दोस्ती थी। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच ब्रेकअप से जुड़ा विवाद भी चल रहा था। 26 अगस्त की शाम को जब वो मुस्कान के घर पहुंचा तो इसी बात को लेकर दोनों में फिर से लड़ाई हुई, विवाद हुआ और इसके बाद इमरान ने गुस्से में आकर मुस्कान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले के बाद इमरान फरार है। मुस्कान की चीखें सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने मुस्कान को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मुस्कान को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को यह भी पता चला है कि मुस्कान की इमरान से मुलाकात एक जिम में हुई थी और दोनों एक दूसरे को करीब 1.5 साल से जानते थे। कुछ महीने पहले इमरान ने जिम छोड़ दिया था और इस बीच मुस्कान ने भी इमरान से दूरी बना ली। इमरान को शक था कि मुस्कान की दोस्ती किसी और से हो गई है और वो उससे बात करती है, बस यही शक। करीब 2 महीने से इमरान और मुस्कान के बीच विवाद की एक वजह यह भी थी कि मुस्कान ने उससे अब धीरे धीरे दूरी बना ली थी और इस लड़के का आरोप था कि वो किसी और लड़की से बात कर रही थी। हत्या के बाद इमरान खुद को बचाने के लिए भागा तो अपने साथ मुस्कान का मोबाइल फोन भी ले गया था। इस मोबाइल फोन में इमरान और मुस्कान के संबंधों से जुड़ी तस्वीरें थी, चैट्स थी। पुलिस को इमरान की लोकेशन दिलाने में इस मोबाइल ने बहुत मदद की। इस मोबाइल फोन से ही पुलिस को पता चला कि इमरान नांगल इलाके में कहीं पर मौजूद है। इमरान की तलाश के लिए पुलिस की 15 टीमें लगानी पड़ी जिन्होंने पूरी दिल्ली में बैरिकेडिंग की, चेक पोस्ट लगाए, चेकिंग हुई लेकिन इमरान बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था और इस वजह से दिक्कतें आ रही थी पकड़ने में। हालांकि सीसीटीवी खंगालने पर इमरान की बदलती लोकेशन का भी पता चलता रहा और इसे ट्रेस करते हुए पुलिस आखिरकार राजौरी गार्डन में उसके ठिकाने के पास पहुंच ही गई। पुलिस को अपनी शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी इमरान नशे का भी आदी था। उस पर हत्या के प्रयास का मामला तक दर्ज है। नशे की लत छुड़वाने के लिए उसे नशा मुक्ति केंद्र भी भेजा जा चुका है। इसके अलावा एक दावा यह है कि नशे की लत की वजह से ही एक बार उसने आत्महत्या की कोशिश की थी जिसके बाद उसे जिम से हटा दिया गया। मुस्कान के एक दोस्त ने दावा किया है कि इमरान सामान्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता था। वो मुस्कान का पीछा करता था जबरदस्त तरीके से, मतलब किसी ना किसी तरीके से बातचीत करने की कोशिश करता था। मुस्कान के मोबाइल फोन से जो चैट्स मिली हैं उसमें इमरान और मुस्कान के खराब संबंधों का पता चला कि कैसे लड़ाई चल रही थी और इसमें कुछ मैसेज में इमरान धोखा देने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मुस्कान का परिवार उनके संबंधों को लेकर बस यही कहता है कि इमरान मुस्कान को परेशान करता था।

0: खान यहाँ किसके साथ रहती थी और कितने लोग रहते थे?
1: दो सिस्टर और भी हैं, एक ब्रदर है, मदर है।
0: अच्छा, ये इमरान जो था इसको कभी गली में आते जाते हुए देखा आप लोगों ने?
2: यहाँ पर एक के बाद एक करीब 11 राउंड फायरिंग हुई और काफी खून भी बहा यहाँ पर। अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो ये जो मार्किंग है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम से कम 11 ऐसे मार्किंग जो है यहाँ पे पुलिस ने की हुई है, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे ये सबूत इकट्ठा किए गए हैं कि यहाँ पे करीब 11 राउंड जो है फायरिंग हुई।
3: अब रुक करेंगे अगली खबर का जो आई है न्यूयॉर्क से। कल न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम का एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत भी हिस्सा लेंगे और इसी वजह से इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और भारत दोनों जगहों पर हंगामा शुरू हो चुका है। ये कार्यक्रम मूल रूप से भारतीय मूल के हिंदुओं के लिए आयोजित किया गया है, जिनको मोहन भागवत संबोधित करेंगे। यह आयोजन आरएसएस के शताब्दी वर्ष के ग्लोबल आउटरीच कार्यक्रम के तहत हो रहा है। आरएसएस के 100 साल पूरा होने के मौके पर कई देशों में इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर आयोजित हो रहे हैं। इसी के तहत मोहन भागवत इन कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में उनकी मौजूदगी से न्यूयॉर्क के मेयर बहुत परेशान है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी आरएसएस के इस कार्यक्रम और उसमें मोहन भागवत के आने को लेकर विरोध जता रहे हैं। मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का नाम है यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम में एकता, नागरिक जिम्मेदारी, वैश्विक सद्भाव के संदेश दिया जाएगा। वो ये भी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग भी शामिल होंगे, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को ऐसा नहीं लगता। उनके मुताबिक ये कार्यक्रम बांटने वाली विचारधारा को बढ़ावा देता है और न्यूयॉर्क हर रंग हर धर्म को बराबर जगह देने में विश्वास करता है।
4: My mother's family is all still in India. I grew up being very familiar with was of a pluralistic society, of a secular republic that believed in the belonging of each and every person who was from India. And it has been incredibly troubling to see the rise of a movement that is predicated on an exclusionary vision.
5: Should the rally be canceled, though, at MSG this weekend?
4: I don't support the rally, but I don't know if the city has any jurisdiction on canceling a private event.
3: इस कार्यक्रम का विरोध शुरू होने के कुछ ही समय बाद आयोजकों का जो एक्स अकाउंट था, एक्स प्लेटफॉर्म पर जो उनका अकाउंट था, उसको ब्लॉक कर दिया गया। एक्स अकाउंट ब्लॉक होने के बाद हंगामा मच गया। दावा किया गया कि एक साजिश के तहत कार्यक्रम रोकने के लिए ऐसा किया गया है, हालांकि अहेड फोरम के प्रयासों से ये अकाउंट जल्दी ही फिर से शुरू हो गया। अब अकाउंट शुरू होने के बाद फोरम ने दावा किया है कि उनके विरोधियों ने एल्गोरिदम का गलत इस्तेमाल करते हुए बॉट्स के जरिए उनके अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया था। न्यूयॉर्क में होने वाले इस कार्यक्रम का विरोध जोहरान ममदानी ही नहीं बल्कि अमेरिकी संस्था USCIRF भी कर रही है। इस संस्था ने मोहन भागवत की यात्रा को लेकर चिंता जताई है और अमेरिकी सरकार से मोहन भागवत का वीजा रद्द करने की अपील की है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस संस्था की अपील को अनसुना कर दिया गया है। USCIRF यानी यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक ऐसी अमेरिकी संस्था है जो दुनिया भर के देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर नजर रखती है। यह संस्था हर साल धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर देशों की रैंकिंग जारी करती है। यह संस्था धार्मिक स्वतंत्रता के नजरिए से भारत को विशेष चिंता वाला देश मानती है और आपको हैरानी होगी कि जानकर कि वो भारत में सभी धर्मों को मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता की तुलना ईरान, लिबिया, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से करती है। और तो और वो श्रेणी में चाइना, रशिया, सऊदी अरब को भी आगे रखती है। भारतीय विदेश मंत्रालय तो USCIRF की टिप्पणियों को खुले तौर पर अफवाह बता रहा है। विदेश मंत्रालय ने संस्था को एक पक्षपाती संस्था कहते हुए दावा किया कि लंबे समय से भारत को लेकर भड़काऊ बयान देता रहा है, इसीलिए गंभीरता से ना ले। मोहन भागवत की न्यूयॉर्क यात्रा से विदेशी ही नहीं देसी नेता भी परेशान है। कई पार्टियों की तरफ से इसके खिलाफ बोला गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, 25 सवाल दागे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि जब विदेशों में अनरजिस्टर्ड और अंडरग्राउंड लोग उभर कर आएंगे तो एक्स अकाउंट तो सस्पेंड होंगे ही। उन्होंने मोहन भागवत की यात्रा पर सवाल उठाते हुए ये भी लिखा कि क्या वो वहां का सांप्रदायिक माहौल खराब करने आए हैं, जाएंगे। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत की इस यात्रा को लेकर करीब 21 सवाल पूछे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और गजब दुनिया है, लोग खाली हाथ जाने के लिए इतना सब बटोरने में लगे हैं। नमस्कार।
6: क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है। ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है। ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महाखतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आस पास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ है अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
2: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
2: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
2: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुँच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए, पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
3: सब जाना कृपया माथि माथि बस्ते रहनु हामी।
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
3: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
4: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
5: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% हैं।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही है। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस स्तर की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
3: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था, देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूप जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भेज गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सिया बोरुसते काल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ओदे ओखान थेके बेरिये जाओयार कथा छिलो।

0: কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सोमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सोमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
2: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
3: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका छेले साथ नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
4: सुबह में
3: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
5: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो, और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
6: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
7: और किसी के साथ, कितना ग्रुप गया था?
6: ग्रुप थे 30 वन।
7: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
6: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
8: हम संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। कोई जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
9: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

लापता भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपु सांको नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आस पास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ है अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
2: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
2: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
2: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुँच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए, पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
3: सब जाना कृपया माथि माथि बस्दै रहनु हामी।
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
3: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
4: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
5: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं। तो आप देखिए, सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा खुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस स्तर की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
3: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था, देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूप जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं, महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झांपटा जो के छोड़ के वो अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंदे है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई हैं सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: সিয়া বরুসুতে কালকে ডিপার্ট করেছে এবং আজকে ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार-बार स्विच अप बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे का कथा हुआ उसका साथ नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 31 अगस्त को शाम को जो निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो, और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: जाते कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपने आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी बल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। कोई जल्दी से जल्दी हमारे को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

0: एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसवा के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था, वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं, और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा, आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयन चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा, नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपु सांको नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ है अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इशू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इशू कर दी गई है। इतनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में। नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई और देखिए पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: सब जाना कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहोला। हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज़्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज़्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटौर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, थडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूप जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस तहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के, अपने झोला झांपटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंद है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई हैं सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सिया बोरुसुते काल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ओदेर ओखान थेके बेरिये जाओयार कथा छिलो कैलाशेर उद्देश्य। तो कैलाशेर उद्देश्य बेरिये जाओयार कथा छिलो, किन्तु आज के एई धरनेर क्लाउड बास्ट होवार पर थेके आर ओर मेयेओ कोनो ओदेर साथे कन्टैक्ट करते पारेनि, प्लस आमरा।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका शैलेश नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को जो निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो, और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, दो तीन फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। वही जल्दी जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ लूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ फोन भी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल

0: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे 2 जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के

0: जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसवा के रामतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए, अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा, नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है। ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपु सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आस पास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इशू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, डुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इशू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम सिर्फ साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहोला। हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है। वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए। हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पाट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही विसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूप जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है, वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला है कि मतलब बाढ़ आ रही है, कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के, अपने झोला झापटा जो के छोड़ के, वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंद है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: সিয়াবরুসতে কালকে ডিপার্ট করেছে এবং আজকে ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका शैलेश नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी बल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहां से कनेक्शन कट हुआ। कोई जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे रेंगते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

0: एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें धंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है, जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसवा के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था, वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं, और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा, आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टाने टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचे नदी और पुरेपू सांको नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महाखतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए आप पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: कृपया माथि माथि बस्दै हो र हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीले हैं। इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीले हैं। पहाड़ों पर झीले बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए। हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, थडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस स्तर की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दी गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सियाबुरु से कल के डिपार्ट करे से एवं आज के उधर उखान देखे बेरी जा कथा चिलो कोयलासर उद्देश्य, तो कोयलासर उद्देश्य बेरी जा कथा चिलो, किंतु आज के इधर ने क्लाउड बस हॉर पर थे क्या और मेयो कोनो उधर से कांटेक्ट करते पड़े नहीं प्लस हमला।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है जे गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका छेले साथ नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चौलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि

0: प्रोसेस बाकी था, अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
2: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर
3: और किसी के साथ? कितना ग्रुप गया था?
2: ग्रुप थे 30 वुमन।
3: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
2: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
4: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, दो तीन फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। वही जल्दी जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ लूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ फोन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
5: नेपाल में आपदा से बहुत
1: आज तक ब्यूरो।
5: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेना, नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर

0: अंदर से आए, इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया। एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है, जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसवा के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं, और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं, और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा, आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भोटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा, नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है। ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में। नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुँच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए, पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: कृपया माथि माथि बस्दै हामी।
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामोनिशान नहीं है। रसुवा, थडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं। तो आप देखिए, सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस स्तर की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था, देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं, महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला है कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सिया बोरुसते काल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ओदेर ओखान थेके बेरिये जाओयार कथा छिलो कैलाशेर उद्देश्ये। तो कैलाशेर उद्देश्ये बेरिये जाओयार कथा छिलो किन्तु आज के ई धरनेर क्लाउड बास्ट होवार पर थेके आर ओर मेयेओ कोनो ओदेर साथे कन्टैक्ट करते पारेनि, प्लस आमरा।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका शैलेश नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चौलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली, दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। कोई जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही उठा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा, और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे 2 जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया।

आंकड़ा, अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान, दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है। ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महाखतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आस पास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ है अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
2: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
2: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
2: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुँच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए, पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
3: सब जाना कृपया माथि माथि बस्ते रहनु हामी।
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपु सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है, वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
3: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज़्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज़्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
4: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
5: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए। हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% हैं।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है, ज्यादातर जो घर हैं। तो आप देखिए, सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी। तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं, मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे। लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस स्तर की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
3: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूट कर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काट कर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था, देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं, महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे, तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झांपटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंदे है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सिया बोरुसते काल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ओदे ओखान थेके बेरिये जाओयार कथा छिलो कैलाशेर उद्देश्ये। तो कैलाशेर उद्देश्ये बेरिये जाओयार कथा छिलो, किन्तु आज के एई धरनेर क्लाउड ब्लास्ट होवार पर थेके आर ओर मेयेओ कोनो ओदेर साथे कन्टैक्ट करते पारेनि, प्लस आमरा।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे।

0: ठाकुर दर्शन होते।
1: सिलीगुड़ी के सोमार मंडल का परिवार भी चिंतित है क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सोमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा।
2: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
3: हमारा खबर मिला है जे गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका छेले साथ नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
4: सुबह में
3: आया था। उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
5: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलोजाई ट्रैवल क्लब के सामने से और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
6: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर
7: और किसी के साथ? कितना ग्रुप गया था?
6: ग्रुप थे 30 वो।
7: आपने आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
6: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी मल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
8: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। वही जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा, हो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता है। परिवार की आंखों में आंसू है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
9: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

0: प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहां से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया। एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था, ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा है कि जब त्रिशूली नदी में बाढ़ का उफान आया तो ये लोग टनल की तरफ भागे, जहां भीतर ऊंचाई तक बाढ़ का जानलेवा मलबा नहीं पहुंच पाया, वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसुआ के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए। अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसुआ से आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टाने टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है, ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचे नदी और पुरेपू सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तूफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है, लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इश्यू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, धुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए आप पुलिस से, ये देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
4: कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहोला। हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है। वो चोचेन और पुरुपे नदियां तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहां इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय, संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीले हैं। इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीले हैं। पहाड़ों पर झीले बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय हिमालयी इलाके की कुल 7,500 से ज्यादा झीलों में से 189 का रेड जोन में होना बहुत चिंताजनक है।
6: ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, उनसे क्या हो रहा है उसके रिट्रीट होने से, उसमें यानी बड़े ग्लेशियर लेक्स बन रहे हैं और उसमें नेचुरल मोरेन डैम पर प्रेशर बढ़ा रहा है और उसमें आइस या रॉक का एवलेंच होने का खतरा और ग्लोफ होने की संभावना ये बढ़ जाती है।
0: इस तरह हिमालय में लगातार ग्लेशियर उससे बनने वाली झीलों की निगरानी पर नजर रखकर ही इस तरह की आपदा के खतरे को कम किया जा सकता है, ताकि समय रहते लोगों को बचाया जा सके। लेकिन विशेषज्ञ भी मानते हैं कि टूटते ग्लेशियर कभी भी महातबाही का सबब बन सकते हैं। त्रिशूली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है, बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए। हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसुवा, थडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन 3 जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसुवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन 3 जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंचा है, बचा कुचा सामान लेकर के। अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं, जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस स्तर की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही बिसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूट जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
7: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दी गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं, अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला है कि मतलब बाढ़ आ रही है, कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वहीं गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के, अपने झोला झापटा जो के छोड़ के, वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने ये मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख देख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क भी नहीं है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई है सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल। विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सियाबुरु से कल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল কৈলাসের উদ্দেশ্যে। তো কৈলাসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আজকে এই ধরনের ক্লাউড বাস্ট হওয়ার পর থেকে আর ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

केरला अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भूटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास। मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

0: महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले जा सकता है तो कारें और मकान तो तिनके के समान हैं। और सोचिए, जब तिब्बत से ग्लेशियर टूटा होगा तो न जाने ऐसी कितनी चट्टानें टूट कर आई होंगी। यही वजह है कि नेपाल के 3 जिलों में सब कुछ तहस नहस हो गया है। लेकिन अब इससे भी 5 गुना बड़ा खतरा, नेपाल में फिर से विनाश लीला मचाने को तैयार है। 26 अगस्त को तिब्बत में कैसे ग्लेशियर टूटा और उसके बाद जल विस्फोट होता है। ये उसका रियल वीडियो है। चीन के ड्रोन कैमरे में ये वीडियो कैद हुआ है। और फिर नेपाल में जो महाप्रलय आया है उसका मंजर सबके सामने है। लेकिन अब इससे भी बड़ी तबाही फिर से नेपाल पर मंडरा रही है और इस महातबाही की चेतावनी चीन ने दी है। जी हाँ, चीन ने आगाह किया है कि नेपाल में एक और जल विस्फोट की संभावना बन रही है, क्योंकि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील फट गई है। ये झील चोचेन नदी और पुरेपु सांगपो नदी के संगम के पास बनी थी, जिसकी आशंका चीन ने एक दिन पहले ही जताई थी। मतलब 26 अगस्त को गिरोंग में झील फटी तो इसके 2 दिन बाद तोफान में झील फट गई। चीनी अधिकारी इस झील पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और इसकी तस्वीरें भी जारी की गई हैं। आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीचों बीच बनी झील की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक झील में अभी 20 लाख घन मीटर पानी का अनुमान है और अगले कुछ घंटों में इस झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है। झील टूट चुकी है, पानी तिब्बत से बहकर नेपाल की नदियों में आना शुरू हो गया है। अब अगर कोई ग्लेशियर टूटा, अगर हिमस्खलन हुआ तो नेपाल में और भयंकर विनाश लीला मच सकती है। और इस महा खतरे को देखते हुए नेपाल में भोटे कोशी नदी और त्रिशूली नदी के आस पास के इलाकों को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है।
1: मेरे ठीक पीछे बिल्कुल त्रिशूली नदी है और ये अपने साथ सैलाब लेकर के आई थी और एक बार फिर इसका पानी बढ़ने को है, जिसके बाद इलाके में पूरा पैनिक फैला है। लोग डरे हुए हैं, इन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। दुनिया भर के जर्नलिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं और हर किसी को अब यहाँ से जाने के लिए कहा जा रहा है। सर, किस तरह का अलर्ट इशू हुआ अभी यहाँ पे?
2: अभी यहाँ पे जस्ट टिमोरे से एक खबर आया है कि वहाँ का जो बांध बना था, प्राकृतिक बांध, वो फिर से टूट गया है। उससे जो आया था उससे 5 गुना ज्यादा बाढ़ आने वाला है यहाँ पे, इसीलिए आप लोग कृपया करके ऊपर चलिए, यहाँ पे हाई अलर्ट पे।
1: तो हाई अलर्ट इश्यू कर दिया गया है। तो जो बांध, जिस तरह का सैलाब आया था, जलाशय में पानी था, वो एक बार फिर बढ़ चुका है और अब कहा जा रहा है कि आप लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं, 5 गुना ज्यादा पानी आ सकता है। और इसीलिए देखिए, डुंडे जो इलाका है, मैं उससे काफी ऊंचाई पर हूँ और अब इन इलाकों में भी लोगों को जाने के लिए तत्काल कह दिया गया है, हाई अलर्ट वार्निंग यहाँ पर इश्यू कर दी गई है। कितनी देर में पानी पहुंच रहा है यहाँ पे?
3: 20-25 मिनट में, नेपाल पुलिस ने बोला है 20-25 मिनट में इधर आएगा।
1: तो आप लोग क्या वार्निंग दे रहे हैं लोगों को?
3: हम शिफ्ट साइड में जाइए,
1: यहाँ से हटा रहे हैं लोगों को।
3: हाँ, यहाँ से हटा रहे हैं।
1: तो नुआकोटी का आखिरी जो धुंडे इलाका, मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरा था, अब यहाँ से पुलिस जो है लोगों को हटा रही है और वो इसलिए क्योंकि खतरा बड़ा है और वो कह रहे हैं 20 से 25 मिनट में पानी फिर से यहाँ पहुंच सकता है। सर, वार्निंग इश्यू हुई है लोगों को जाने के लिए? वार्निंग इश्यू हुई? और देखिए आप पुलिस सही है, देखिए पूरी तरह से अनाउंसमेंट की जा रही है, आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर अनाउंसमेंट करके लोगों को हटाया जा रहा है।
3: कृपया माथि माथि बस्दै हुनुहोला। हामी
0: आपको बता दें कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर जिन चोचेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास ये झील फटी है। वो चोचेन और पुरुपे नदियाँ तिब्बत से निकलती हैं और नेपाल में प्रवेश करने से पहले आपस में मिल जाती हैं, जहाँ इसे भोटेकोशी नदी के नाम से जाना जाता है। भोटेकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदी है।
4: ये त्रिशूली नदी के बढ़ते आवेग को मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उसकी लहरों को देखिए कि किस तरीके से बहुत तेजी से उसमें पानी का स्तर आपको इस समय ज्यादा दिख रहा है। बारिश बहुत तेज शुरू हो गई है, जो मौसम है बहुत ज्यादा खराब यहाँ पर हो रहा है, और उसके साथ ही जो नेपाल तिब्बत सीमा पर भोटेकाशी का उद्गम स्थल है, वहाँ पर जो झील है उसका बांध टूटने के कारण बहुत सारा पानी उसमें आया है। चीन की तरफ से चेतावनी भी दी गई इसको लेकर, और ये भी बताया गया कि 5 गुना ज्यादा खतरा 26 अगस्त की तुलना में अगर देखा जाए तो 5 गुना ज्यादा खतरा हो सकता है।
0: नेपाल में अगली विनाश लीला भोटेकोशी नदी से आएगी, ऐसे में महाप्रलय का अलर्ट जारी किया जा रहा है,
5: क्योंकि हमारा जो ऊपर का अवस्था है इसीलिए तुरंत जो भी हो सकता है, इसीलिए हम सब कर रहे हैं। नेपाल सरकार कुछ भी से लोकल गवर्नमेंट प्रोविंस, हम तीनों स्थानीय निकाय संघ प्रदेश और स्थानीय निकाय, हम सब कर रहे हैं।
0: नेपाल में एक ग्लेशियर ने इतनी बड़ी तबाही मचाई, बर्फ का पहाड़ टूटकर नदी में गिरा और नदी का रास्ता रुकने से झील बनी और ज्यादा पानी भरने से मलबा हटा और पानी किसी बम की तरह नेपाल पर फूट पड़ा। नेपाल में जो हुआ उसका खतरा भारत को लेकर भी कम नहीं है, क्योंकि भारत में 189 ग्लेशियल झील फटने की स्थिति में है। इसरो और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़े डराने वाले हैं, जो बताते हैं कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र में 7,500 से ज्यादा ग्लेशियल झीलें हैं, इनमें से 189 रेड जोन में हैं और किसी भी वक्त फूट सकती हैं। ये झीलें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की चोटियों पर छोटी बड़ी झीलें हैं। पहाड़ों पर झीलें बनने की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ लद्दाख में ही 3219 झीलों की पहचान की गई है। नेपाल का यह हादसा बता रहा है कि हिमालयी क्षेत्र में आपदा का जोखिम बढ़ रहा है, ग्लेशियर अस्थिर हो रहे
6: हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं नेपाल की विनाश लीला में सैटेलाइट की तस्वीरें, जो बता रही हैं कि कैसे नेपाल के 3 जिलों में विनाशकारी बाढ़ ने सब कुछ मलबे में मिला दिया। तिब्बत से आई विनाश लीला ने नेपाल में भूगोल बदल दिया। जहां बाजार था वहां मलबा है, जहां शहर था वहां समतल हो चुका है। त्रिशूली नदी का बहाव क्षेत्र अपने मूल स्वरूप से कई गुना अधिक चौड़ा हो गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में नेपाल की पूरी महातबाही देखिए।
0: नेपाल की ये त्रासदी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि महातबाही की तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे नेपाल के 3 जिलों में मची विनाश लीला की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे पता लग रहा है कि नेपाल में महाप्रलय ने कैसा मंजर दिखाया। नेपाल में 26 अगस्त की बाढ़ से हुई तबाही सैटेलाइट से भी दिखाई दे रही है। सैलाब में गांव और बाजार बह गए, सड़कें और पुल मलबे में दब गए, हर तरफ मटमैला पानी और पहाड़ी मलबा नजर आ रहा है। इस बाढ़ ने नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पूरे इलाके का नक्शा बदल दिया। सभी सैटेलाइट तस्वीरें तिब्बत सीमा से लगे नेपाल के रसुवा जिले की हैं, जहां त्रिशूली नदी अपने किनारे बसे गांवों और बस्तियों को 6 घंटे की बाढ़ से लीलती चली गई। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि कैसे नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पूरे के पूरे गांव, पुल और बड़े बुनियादी ढांचे ताश के पत्तों की तरह बह गए और उनकी निशानी तक नहीं बची। बाढ़ प्रभावित नेपाल के रसुवा जिले स्थित चीन नेपाल की रसुवा गढ़ी सीमा बाढ़ से बुरी तरह तबाह हुई है। विंटोर की ओर से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों में चीन नेपाल की रसवा गढ़ी सीमा को दिखाया गया है कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया है। बाढ़ से पहले की तस्वीरों में यहां बड़े पुल और इंफ्रास्ट्रक्चर खराब दिख रहा है। बाढ़ के बाद ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में इसी जगह पर सिर्फ मलबा दिखाई दे रहा है। अब अंदाजा लगा लीजिए कि यहां जो लोग मौजूद रहे होंगे उनका क्या हुआ होगा। आज की स्थिति यह है कि इस चीनी इमिग्रेशन चेक पोस्ट की इमारत का कोई अस्तित्व नहीं है। सैटेलाइट और हेलीकॉप्टर तस्वीरों में कहीं भी इस इमारत का नामो निशान नहीं है। रसवा, धडिंग, नुवाकोट की बस्तियों की हालत देखिए। पहले नदी की पतली सी धारा दिख रही थी, लेकिन फ्लैश फ्लड के बाद त्रिशूली नदी का पार्ट दोगुने से अधिक दिख रहा है। इस विनाशकारी बाढ़ ने जिन तीन जिलों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनके नाम हैं रसवा, नुवाकोट और धाडिंग। यहीं से त्रिशूली नदी गुजरती है जिसमें ये बाढ़ आई है। 2021 की जनगणना के मुताबिक इन तीन जिलों में करीब 6,35,790 लोग रहते हैं, जो नेपाल की कुल जनसंख्या के 2% है।
1: यहाँ से पता चलता है कि शहर में बचा कुछ भी नहीं है। ज्यादातर जो घर हैं, तो आप देखिए सड़क का एक हिस्सा है ना, यहाँ पर सारी दुकानें, ये कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, और इस तरफ सारी रिहायश इलाके थी, तो जो दुकान मकान वो तो डूबे ही हैं। मकान जो है इस तरफ उनको भी नुकसान हुआ है। अब देखिए कैसे वो दंपत्ति गया हुआ है जेसीबी के सहारे के किस तरह अपने घर तक पहुंच जाए, बचा कुचा सामान लेकर के। अगर वो आ जाए तो कम से कम जीविका तो चलती रहे, जिंदगी चलती रहे, लेकिन यहाँ जिंदगी पर ब्रेक नहीं बल्कि पूरे शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक इस सैलाब ने लगाया है। सारे मकान जो है यहाँ पर ध्वस्त हो चुके हैं। जो पहली दूसरी मंजिल है वो लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी है।
0: त्रिशूली नदी किनारे बसे इन शहरों में किस तरह की तबाही हुई है उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि कंक्रीट के बड़े पुल भी बह गए, हाईवे बह गए, बाजारों घरों तक मलबा आ गया।
4: पैंतीस मोटरेबल ब्रिज, 45 सस्पेंशन ब्रिज और लगभग 40 किलोमीटर सड़क बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं इस सैलाब से, इस मलबे से। यहां पर ऐसी ही एक ब्रिज का हिस्सा आप देख सकते हैं जिस पर पेड़ पूरी तरीके से टूटकर गिर गए हैं, उनका कुछ हिस्सा काटकर हटाया गया है, लेकिन मलबा पूरी तरीके से कैसे इस ब्रिज को लेते हुए धस गया है। ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया। आवेग भी कैसा, ऐसा जिसके सामने कंक्रीट का एक ब्रिज नहीं टिक पाया। सोचिए इंसानों की क्या ही विसात।
0: नेपाल को इतना नुकसान हो चुका है कि जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। नेपाल के कस्बे तबाह हो चुके हैं। ये सेंट्रल नेपाल के वो इलाके थे जहां बहुत टूरिज्म फल फूल रहा था। देसी विदेशी पर्यटक यहां आते थे और यहीं से कैलाश मानसरोवर का रूप जाता था। सैकड़ों करोड़ का कारोबार था, लेकिन अब सब कुछ जैसे तहस नहस हो गया है। आज तक ब्यूरो।
6: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे विनाश लीला नेपाल में आई, लेकिन दर्द दुनिया के कई देशों को दे गई। सैकड़ों भारतीय नेपाल में लापता हैं। महातबाही की तस्वीरें देखकर परिजन सहमे हुए हैं। अनहोनी की आशंकाएं हैं, लेकिन मन में उम्मीद भी है कि शायद कोई चमत्कार हो, परिजन मिल जाएं।

0: अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा क्योंकि वहाँ पे लाइट नेटवर्क नहीं है और वो लोगों के पास भी चार्जर वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मोबाइल ऑफ है।
1: दीक्षा चौरसिया यूपी के बलिया की रहने वाली हैं। नेपाल की त्रासदी में इनकी ताई और इनका भाई लापता है। दीक्षा के ताऊ अशोक चौरसिया का पूरा परिवार इस आपदा से प्रभावित है। दीक्षा बताती हैं, 26 अगस्त को सुबह बड़े पिता का फोन आया था कि बाढ़ का अलर्ट नेपाल प्रशासन की ओर से आया है। इससे पहले की बात पूरी हो पाती फोन कट गया। चौरसिया परिवार करीब 20 साल पहले नेपाल शिफ्ट हो गया था। नेपाल के त्रिशूली में उन्होंने अपना ठिकाना बनाया, वहीं पर उनकी दुकान थी, वहीं कारोबार था, लेकिन 26 अगस्त की आपदा ने सब कुछ खत्म कर दिया।
0: सुबह 9 बजे फोन आया तो अचानक से पापा का फोन आया, तो बोल रहे हैं कि इधर बाढ़ उड़ आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। इतना बोलने के बाद फोन कट गया, फिर फोन लग नहीं रहा था। फिर बाद में बात हुआ तो पता चला कि वो लोग सुरक्षित हैं, बड़ी मम्मी और राहुल, जो कि मिल नहीं रहे हैं।
1: इसी त्रासदी में भोपाल का एक परिवार भी लापता है। भोपाल की रहने वाली देविका अधिकारी के परिवार के 4 सदस्य नेपाल आपदा में लापता हैं, जिसमें उनके बड़े भाई, छोटे भाई और दोनों भाभियां शामिल हैं।
2: वो 6:30 बजे घर से निकले थे और 9:30 बजे बेतरा वेदी करके कोई जगह है वहाँ जाके वो लोग खाना खा रहे थे। तो खाना खाते समय वहाँ पे उनको पता चला है कि मतलब बाढ़ आ रही है कि अपने अपने जान बचा लो और कहीं भी मतलब अपने अपने जान बचा लो करके ऐसा करके अलाउंस हुआ। और वो लोग वही गाड़ी घोड़ा जो भी छोड़ के अपने झोला झापटा जो के छोड़ के वो अपने जान बचाने के लिए पहाड़ चढ़ गए, किसी के मकान के छत में जाके बैठे। तो छत में जाने के बाद उनको ने जैसा देखा कि ये घर भी डूब रहा है, तो अपने परिवार फैमिली वाले को फोन करके उनने मैसेज कर दिया कि हम लोग, हमारी गाड़ी तो पहले भी गई है और अब हम लोग भी जाने वाले, अब हम भी नहीं बचेंगे, अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को देखभाल रेख रेख कर देना करके बस उनने इतना बोला था। और उसके बाद पूरा फोन भी नहीं हो पाया, उसके बाद संपर्क बिंद है, उसके बाद बात नहीं हो पाई, अभी तक किसी से कोई संपर्क नहीं है।
1: चारों ओर हाहाकार है, विनाश का मंजर है, गूंज रही है चीखें, टूट रही है जीवन की डोर। काल के इस तांडव से पल भर में सब मलबा बन गया है, थम गई हैं सांसें, रुक गई है सृष्टि की चाल, विनाश लीला के आगे इंसान बेबस है। महातबाही की इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर का ये परिवार भी देख रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं उम्मीद जिंदा है कि शायद उनके परिजन बच गए हों।
3: सिया बोरुसते काल के डिपार्ट करे छे एवं आज के ओदेर ओखान थेके बेरिये जावार कथा छिलो कैलाशेर उद्देश्य। तो कैलाशेर उद्देश्य बेरिये जावार कथा छिलो, किन्तु आज के ई धरनेर क्लाउड बास्ट होवार पर थेके आर ওর মেয়েও কোনো ওদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেনি, প্লাস আমরা।
1: दुर्गापुर की मौसमी और दिलीप बंदोपाध्याय 21 अगस्त को घर से निकले थे। नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाना था, लेकिन अब ये लोग कहाँ हैं, किस हालत में हैं, इसको लेकर परिवार वाले चिंतित हैं। सिलीगुड़ी के सुमार मंडल का परिवार भी चिंतित है, क्योंकि नेपाल त्रासदी के बाद सुमार मंडल का कुछ पता नहीं चल रहा,
4: संपर्क नहीं हो रहा है, बार बार स्विच ऑफ बोल रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है।
1: हावड़ा की अनीता दास का भी नेपाल त्रासदी के बाद से कुछ पता नहीं चल पाया है। उनके परिजन दिन भर मोबाइल में उनका नंबर डायल करते हैं, लेकिन फोन लग नहीं रहा। मन में अनहोनी की आशंका भी होती है, लेकिन आस फिर भी है कि शायद वो सुरक्षित हों।
5: हमारा खबर मिला है ये गतकाल 8 बजे को कथा हुआ उसका खेले साथ नेपाल के तिब्बत बॉर्डर में ढुकेगा। पुलिस हमारा घर में आया था,
6: सुबह में
5: आया था, उन्होंने बोलेगा कि वो मिसिंग है।
1: अनीता दास के परिजन बता रहे हैं कि तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर उनका स्टे था, उसके बाद से कोई खबर नहीं है। कोलकाता की शुभ्रा चक्रवर्ती से भी परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है।
6: 21 अगस्त को शाम को निकले थे चलो जाई ट्रैवल क्लब के सामने से, और ये है मैम की फोटो। और मेरे साथ उनका बात हुआ था घटना के दिन ही सुबह 8:03 पे अंतिम वार्तालाप हुआ था। उसमें ये आया था कि उन लोग ऑलरेडी नेपाल कस्टम्स हो गया था उनका इमिग्रेशन प्रोसेस, अब चाइना का इमिग्रेशन प्रोसेस बाकी था। अब उसके बाद से उनसे कोई संबंध नहीं हो पा रहा है।
1: पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर की टीचर केया प्रमाणिक लापता हो गई हैं। वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के सपने के साथ अपने सहयोगियों संग नेपाल गई थी।
7: यात्रा कर रहे थे कैलाश मानसरोवर,
8: और किसी के साथ कितना ग्रुप गया था?
7: ग्रुप थे 30 वन।
8: आपका जो बहन है क्या काम कर रहा था?
7: स्कूल टीचर।
1: हैदराबाद की कांदी बल्ला सुहासिनी के परिवार का दिल भी बैठा जा रहा है। नेपाल त्रासदी के बाद से सुहासिनी भी लापता हैं।
9: संडे के दिन काठमांडू के रास्ते इधर से यहाँ से दिल्ली टू काठमांडू गए। वो संडे के दिन शाम में बात करे, मंडे के दिन शाम में बात करे, 2-3 फोटो भी जाए मंदिर को जाके, और ट्यूजडे के लास्ट 7:30 को बात करे, फिर वहाँ से कनेक्शन कट हुआ। वही जल्दी से जल्दी हमारा को कुछ रूट के कुछ इंफॉर्मेशन दिखाए तो वहाँ कौन भी नहीं रेस्पेक्ट कर रहा, वो टोल फ्री नंबर में कौन भी बात नहीं कर रहा, वो फोन ही छूटा रहा नहीं।
1: इसी तरह से बहुत से ऐसे भारतीय परिवार हैं जिनके अपने नेपाल में आए महाप्रलय में लापता हैं। भारतीयों की तलाश में सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारत की तरफ से नेपाल को पूरी मदद भेजी जा रही है। तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की 49 साल की विमला रवि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लापता हैं। परिवार की आंखों में आंसू हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आज तक ब्यूरो।
10: नेपाल में आपदा से बहुत कुछ बर्बाद हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो तहस नहस हो गया। हम आपको ये बता दें कि लापता लोगों को खोजने में नेपाल ने पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे में देवदूत बनकर आई नेपाल की सेना। नेपाल की सेना ने एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट की टनल में एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जो बहुत मुश्किल था। 350 से अधिक मजदूरों को नेपाल की सेना ने सुरक्षित बचाया। देखिए,
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के 3 दिनों के बाद सबसे बड़ा संकट है रेस्क्यू ऑपरेशन का। चीन बॉर्डर से शुरू हुई बाढ़ ने भारत के बॉर्डर तक तबाही मचाई है, तो सोचिए नेपाल में किस कदर ये बर्बादी हुई होगी। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं, हजारों की संख्या में लापता हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे गए हैं। लगातार शव मिल रहे हैं और लापता लोगों को खोजने में नेपाली आर्मी देवदूत बनी है।

और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे खतरनाक वीडियो ये आया है। ये रसुआ की एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल से बचाए गए मजदूरों का वीडियो है। यहाँ से नेपाल की सेना ने 350 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला है। ये ऑपरेशन बहुत कठिन था। नेपाली सेना ऐसे ही हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी किसी इलाके में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही नेपाली सेना का हेलीकॉप्टर रसुआ के त्रिशूली इलाके में पहुंचा, इस सुरंग के बाहर एक मजदूर खड़ा दिखा। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही उसने हाथ हिलाया। सुरंग के बाहर मलबा और भीषण कीचड़ है। सेना के हेलीकॉप्टर को देखते ही ये मजदूर कीचड़ की तरफ भाग रहा था, लेकिन सेना के जवानों ने उसे रोका और वापस भेजा और फिर उसे बचाने की कोशिशें शुरू हुई। सेना ने एक ट्रॉली तैयार की जिससे दो जवान नीचे उतरे। इस ट्रॉली में बैठकर इन जवानों को नीचे भेजा गया। ये जवान नीचे उतरकर उस मजदूर के पास पहुंचे, उस मजदूर को इस ट्रॉली में बिठाया। एक जवान मजदूर के साथ ट्रॉली में बैठा और फिर हेलीकॉप्टर में ट्रॉली को वापस खींचा गया और इस तरह से इस मजदूर की जान बची। तब तक ये जानकारी मिल चुकी थी कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की इस टनल के अंदर सैकड़ों मजदूर फंसे हैं। तुरंत नेपाली सेना ने पूरा ऑपरेशन शुरू किया। नेपाली सेना के जवान सबसे पहले इस टनल के मुहाने पर पहुंचे। यहाँ पूरा कीचड़ भरा हुआ था। आप देख सकते हैं कि कैसे इन जवानों को क्रॉल करके अंदर जाना पड़ रहा है। यहाँ कीचड़ ही इतना था। फिर एक जवान बड़ी मुश्किल से अंदर गया, फिर दूसरा जवान भी गया और वहाँ हेलीकॉप्टर से एक ट्रॉली लटकाई गई ताकि जो मजदूर अंदर से आए इसके सहारे उनका रेस्क्यू हो। इन जवानों ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी हुई थी ताकि इस कीचड़ के दलदल में वो फंसे नहीं। फिर हाथों के सहारे देखते हुए ये जवान इस टनल के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि मिट्टी में चलते तो फंस जाते। और फिर इस तरह से वो टनल के अंदर दाखिल हुए। अंदर बहुत से मजदूर फंसे हुए थे जिन्हें बाद में एक एक करके बाहर निकाला गया। एक एक मजदूर को ऐसे बाहर निकाल कर लाना कितना मुश्किल था ये इन तस्वीरों से समझिए। इन मजदूरों को ऐसे ही नेपाली सेना के जवान अपने कंधों पर उठाकर बाहर लाए। इस दलदल में जब वो चल रहे थे, पैर इसमें फंस रहे थे। एक मजदूर तो इस मलबे में बुरी तरह से फंस गया। वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। उसको यहाँ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया, क्योंकि सुरंग के मुहाने पर मलबा ही मलबा है। नेपाली सेना की तरफ से बताया गया है कि त्रिशूली हाइड्रो पावर टनल में फंसे 350 मजदूरों को बचाया गया। अभी भी 100 और मजदूर यहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने का काम चल रहा है। सुरंग के अंदर लगातार नेपाली सेना के जवानों की तैनाती है। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि दावा

0: वरना इसी टनल के नीचे त्रिशूली में देवी घाट आता है। ये त्रिशूली देवी घाट मुख्य रूप से नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली और तादी नदियों के संगम पर स्थित एक ऐतिहासिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व का क्षेत्र है। जहां ऊपर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में 350 लोग बच गए, वहीं नीचे देवी घाट तक बहाव ने बहुत कुछ खत्म कर दिया। ये रसवा के लांगतांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की एरियल तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्बाद नजर आ रहा है। जहां ये प्रोजेक्ट था वहां नीचे पूरा मैदान दिख रहा है। 3 दिन बाद भी तबाही के नए नए वीडियो आते जा रहे हैं और ये वीडियो बता रहे हैं कि बाढ़ कितनी भीषण थी। इसी तबाही में हजारों लोग बिछड़ गए, सैकड़ों लोग मारे गए, अभी भी लापता लोगों की तलाश चल रही है। कुछ खुशकिस्मत हैं जो मिल जा रहे हैं और कुछ बदकिस्मत ऐसे भी हैं जिनका कुछ भी पता नहीं चल रहा। नेपाल के रसवा से आशुतोष मिश्रा आज तक।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

केरला अब तक 580 से ज्यादा की मौत, 2000 लापता। भोटोकोशी नदी का जलस्तर बढ़ने से त्रिशूली नदी के आसपास हाई अलर्ट। त्रासदी की बाढ़ झेल रहे नेपाल में भारत ने भेजी मदद की तीसरी खेप, 10 टन राहत सामग्री के साथ काठमांडू पहुंचा विमान। दिल्ली से नेपाल लौटे भारतीयों से मिले विदेश मंत्री। सिंगर अंकित बालियान की हत्या पर यूपी में युद्ध, गायक के पिता से मुलाकात के बाद बोले अखिलेश, आज नहीं तो कल इंसाफ होगा जब बदलाव होगा। जयंत चौधरी ने किया पलटवार, मृतक की जाति तलाशना संवेदनहीनता। आज न्यूयॉर्क में कार्यक्रम से पहले इस्कॉन में मोहन भागवत का संबोधन, बोले दुनिया में अभी बहुत सारे टकराव और विरोधाभास, मेयर ममदानी ने किया है संघ प्रमुख का विरोध। और दिल्ली में बढ़े सीएनजी के दाम, कीमत में प्रति किलो 3.89 रुपए की बढ़ोतरी, आज से ही लागू नई दरें। क्या नेपाल में एक और विनाश लीला तैयार खड़ी है? नेपाल में तिब्बत से आई विनाशकारी बाढ़ अब तक 550 से अधिक जिंदगियों को लील चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, करीब 1000 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत चैलेंजिंग बना हुआ है, ऊपर से महाप्रलय का एक और खतरा मंडराना शुरू हो गया। नेपाल तिब्बत बॉर्डर के पास बनी एक और झील फट गई, ऐसे में अगर खुदा न खास्ता एक और ग्लेशियर टूटा तो नेपाल में क्या होगा, ये सोचकर दहशत होती है।

महाप्रलय के बाद नेपाल में जल विस्फोट 2.0। तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर झील बम फूटा, दहशत में लोग। नदियों में बढ़ने लगा पानी, महातबाही का अलर्ट भारी। फिर से ग्लेशियर टूटा तो 5 गुना बड़ी तबाही का खतरा। विनाशकारी बाढ़ का खौफ, नेपाल में विनाश लीला रिटर्न। इससे सैलाब का जोर पता चलता है। विनाशकारी बाढ़ में बहकर आती ये चट्टान बता रही है क्यों नेपाल में सब कुछ मलबे में दफन हो गया है। सोचिए, जब इतनी भारी भरकम चट्टान को सैलाब बहाकर ले